0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज का जीएनटी स्पेशल है सुपर स्पेशल, क्योंकि आज बात होगी उन सुपर हीरोज की जो यूं तो हमारे दिलों पर हमेशा से राज करते आए हैं, लेकिन अब ये सिनेमा के पर्दे पर भी राज कर रहे हैं। वो नायक जो अनादिकाल से भारत के जनमानस की आस्था का केंद्र रहे हैं, लेकिन आज की पीढ़ी इन सुपर गॉड्स को सुपर हीरोज की तरह देखती है। देश की मिट्टी से निकले एक ऐसे ही नायक की कहानी है फिल्म हनुमान अंश। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश फिल्म ने ऐसा कमाल किया है जिसकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। बजट 2 करोड़ रुपए से भी कम, प्रमोशन के लिए पैसा नहीं, रिलीज से पहले कोई खास बज नहीं, और शुरुआत में महज कुछ चुनिंदा शोज, लेकिन दर्शकों ने फिल्म देखी, पसंद की, और फिर शुरू हुआ असली खेल वर्ड ऑफ माउथ का। देश के एक संत के जीवन से जुड़ी ये कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई। सोशल मीडिया पर फिल्म की इतनी तारीफ हुई कि हनुमान अंश ने कामयाबी का नया रिकॉर्ड बना दिया।
1: अरे भाई, क्या फसाद हो गया
2: साहब? भूत
3: सुबह सुबह भांग वांग खा के आए हो क्या?
4: अरे साहब, वो आदमी नहीं, भूत है।
1: कौन आदमी?
5: मुझे तो अंतर्यामी लगता है।
6: खबरी भी तो हो सकता है।
5: तुम यहीं पर रुको और देखना कि पुलिस यहाँ पर आती है या नहीं।
7: बहुत कोशिश की साहब, अरे चलना तो छोड़िए साहब, गाड़ी हिली तक नहीं, एक बाबा को उतार दिया है।
8: ये कहानी है चमत्कार की, एक ऐसा चमत्कार जो भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर हुआ। एक गुमनाम फिल्म, न जिसके बारे में किसी को मालूम था, न जिसके हीरो को कोई जानता था, और तो और डायरेक्टर भी अनजाने थे। फिल्म का न तो भव्य प्रमोशन हुआ और न इसके फर्स्ट लुक, टीजर और ट्रेलर की कोई खबर थी। फिल्म चुपचाप रिलीज हुई और चुपचाप ही शायद पर्दे से उतर भी जाती, लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं होता।
9: स्वामी हो तुम गाढ़ो नाता बाबा जी।
8: फिल्म हनुमान अंश जब 7 अगस्त को रिलीज हुई तो ओपनिंग डे पर सिर्फ 10 लाख रुपए की कमाई की। 2 हफ्तों तक फिल्म की टिकट खिड़की जैसे खाली ही रही। हालात ये थे कि फिल्म को देखने के लिए हनुमान अंश के हीरो को अपील तक करनी पड़ी।
10: सीताराम, मैं शोभिनो सत्य आज आपके सामने एक निवेदन लेकर आया हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारी फिल्म हनुमान अंश सिनेमाघरों में आ चुकी है। आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन आज मैं मतलब तहे दिल से एक निवेदन करने आया हूँ और आप लोगों को मानना होगा। वो ये है कि इस फिल्म के बारे में अगर आप देख कर आ रहे हैं और आपको फिल्म अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ उसको अपने तक ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, और बस केवल स्टेटस भी डाल के छोड़ देना, ऐसा ना करें। मतलब पर्सनल इस फिल्म को अपनी फिल्म समझ के इसको प्रमोट करना है। अगर आपको वो चीज़ फील हुई है, अगर आपने वो भावना को अंदर महसूस किया है।
8: लेकिन फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्तों बाद अचानक प्लॉट ट्विस्ट आया। देखते ही देखते सिनेमा घरों में लोग हनुमान अंश को देखने के लिए उमड़ने लगे। हालात ये हो गए कि पिक्चर हॉल्स को शोज की संख्या में इजाफा करना पड़ा, और नतीजा ये हुआ कि रिलीज के 24वें दिन फिल्म की कमाई 40 करोड़ के पार जा पहुंची। जरा सोचिए, जिस फिल्म का कुल बजट केवल 2 करोड़ रुपए था, वो अब तक बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। हनुमान अंश हिंदी में बनी एक भक्ति ड्रामा फिल्म, जिसे विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म संत नीव करोरी बाबा के जीवन पर आधारित है। महज 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी हनुमान अंश ने 24 दिनों में देश भर में 40 करोड़ का नेट कलेक्शन और 47 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस बिजनेस कर लिया है। यानी ये अपनी लागत की तुलना में 22 गुना से ज्यादा मुनाफा अब तक कमा चुकी है। जब फिल्म रिलीज हुई थी तो बॉक्स ऑफिस पर एक तरफ यश की टॉक्सिक थी, तो दूसरी तरफ इमरान हाशमी की आवारापन 2। इन सब के बीच फिल्म ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया। यानी हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होने लगे। फिलहाल सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। लोग फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। फिल्म की कहानी लोगों के दिलों को छू रही है। यही वजह है कि धीमी शुरुआत करने वाली हनुमान अंश अब रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। रिलीज के दिन लाखों की कमाई करने वाली फिल्म ने धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाया और अब ये कमाई करोड़ों तक जा पहुंची है। हनुमान अंश ने हफ्ता दर हफ्ता सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। फिल्म की कमाई पर हफ्तेवार नजर डालें तो पहले हफ्ते में फिल्म ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाए थे, दूसरे हफ्ते में 40 लाख, लेकिन तीसरे हफ्ते में ये कमाई लगभग 10.5 करोड़ तक जा पहुंची थी। फिल्म ने रिलीज के 22वें दिन शुक्रवार को 6.25 करोड़ की कमाई की, तो वहीं 23वें दिन लगभग 9.25 करोड़ और रिलीज के 24वें दिन रविवार को फिल्म ने 12.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। मजेदार बात यह है कि देश में अपने चौथे रविवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में अब हनुमान अंश तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इसके ऊपर पहले नंबर पर धुरंधर और दूसरे नंबर पर धुरंधर 2 है। इस धार्मिक फिल्म ने लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। अब तक चौथे रविवार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 22.5 करोड़ रुपए के साथ धुरंधर 1 पहले नंबर पर है, जबकि 14.5 करोड़ की कमाई के साथ धुरंधर 2 का नंबर दूसरा है। तो वहीं 12.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर हनुमान अंश अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। अगला नंबर 11 करोड़ की कमाई के साथ स्त्री 2 का है। तो वहीं 11.25 करोड़ रुपए कमाने वाली छावा स्त्री 2 के बाद अगले नंबर पर है। इसके बाद 9 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली जवान, लगभग 9 करोड़ कमाने वाली हुरी, लगभग 8 करोड़ कमाने वाली गदर 2, तो वहीं 6 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली तानाजी और अंत में 6 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली दृश्यम 2 इस लिस्ट में है। दिलचस्प बात ये भी है कि हनुमान अंश को लेकर दर्शकों के बदले रुझान को देखते हुए सिनेमा घरों में इसके शोज भी जबरदस्त तरीके से बढ़ाए गए हैं। रिलीज के 15वें दिन तक जहां ये फिल्म 133 शोज में दिखाई जा रही थी, वहीं अब इसके 5000

0: घटते देखा गया है। एक ऐसा दौर जहां धार्मिक पौराणिक इतिहास और मिट्टी से जुड़ी देशज कहानियों और सुपर हीरोज को देखने के लिए दर्शक सिनेमा घरों में उमड़ने लगे
1: हैं।
2: तो फर्स्ट डे 10 लाख आई, फिर 6 लाख, 3 लाख, 17वें दिन सीधा 1.25 करोड़, फिर 2.5 करोड़, फिर अभी कल तक तो 12 करोड़ थी, आज भी स्टेडी है, 5 करोड़ के आसपास है। तो ये तो 50 करोड़ के ऊपर जाएगी और फिल्म बनी है तकरीबन 2.25 करोड़ में। और टॉक्सिक को तो खैर बीट कर ही रही है, टॉक्सिक तो फ्लॉप हो गई है बॉक्स ऑफिस पे, बट ये फिल्म का जीतने का सक्सेस का कारण है नीम करोली बाबा की बहुत मानता है। विदेशों से अपने स्टीव जॉब्स जी जाया करते थे, उनसे उनको काफी फल मिले, काफी रिजल्ट्स मिले। जूलिया रॉबर्ट्स बहुत बड़ी हॉलीवुड स्टार है, वो उनकी भक्ति।
3: करना क्या चाहते
0: हो? ऐसी कहानी जिससे भारत के आम दर्शकों ने रिलेट किया, एक ऐसी कहानी जिसमें एक देसी भारतीय के सामने वो किरदार था जिसे वो असल जिंदगी में भी लार्जर देन लाइफ सुपर हीरो की तरह ही देखता है। उसी सुपर हीरो की कहानी को इस फिल्म में सादगी से दिखाया गया है। और तो और, एक संत के जीवन पर बनी इस फिल्म को बनाने में एक दूसरे संत प्रेमानंद जी महाराज की खास सलाह का भी पालन किया गया। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विशाल चतुर्वेदी ने खुद इस बात को कंफर्म किया है। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद इसके प्रोड्यूसर ने प्रेमानंद महाराज से खास सुझाव मांगे थे। विशाल ने बताया कि प्रेमानंद महाराज जी ने फिल्म की लीड स्टार कास्ट को खास तौर पर शाकाहारी भोजन करने की सलाह दी थी।
4: एक महात्मा का चरित्र सारे संसार को पवित्र कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो तो सिद्ध महापुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। भगवत प्राप्त महापुरुष के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, उनका अभिनय करने के लिए हमारा खान पान ठीक होना चाहिए, हमारा चरित्र ठीक होना चाहिए, हमारे आचरणों में पवित्रता आनी चाहिए, वाणी में मृदुता होनी चाहिए। पहले कुछ दिन साधना करवाना चाहिए अभिनय करने वालों को। अगर किसी महापुरुष का चरित्र करना है तो पहले कुछ दिन साधना पूर्वक रहना चाहिए, कुछ दिन फल फूल आदि खा के रहना चाहिए, उसके लिए थोड़ा पवित्र फलाहार, पवित्र सात्विक भोजन, संतों का संग, संतों के चरित्र पढ़ो और बड़े पवित्रता में, तब आप ऐसे महापुरुषों का अभिनय कर सकते हो। नहीं तो बाहरी नाटक दिखा सकते हो, वो सत्यता हिला सकते हो।
0: नहीं नहीं, फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर मेकर्स ने कई नियमों का पालन किया था। शूटिंग शुरू करने से पहले सेट पर हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ होता था। शूटिंग खत्म होने के बाद भी हनुमान चालीसा का पाठ करना अनिवार्य था। शूटिंग के दौरान जब भी कोई अड़चन या परेशानी आती थी तब पूरी टीम साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। सेट पर सिर्फ शाकाहारी खाना खाने की परमिशन थी। फिल्म से जुड़े हर शख्स पर शराब पीने की पाबंदी थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी को भी सेट पर गाली देना सख्ती से मना था। लड़ाई झगड़ों से दूर रहने का नियम था। खाली वक्त में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता था।
5: करोली बाबा ये संत हैं, उनके ऊपर कोई फिल्म बना रहे हैं तो उनका जो किरदार कर रहा है उसको बहुत ध्यान से ये सब देख लो, आप आपकी फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। हाँ मतलब बहुत सारे
6: मेरे हमारे सेट पे कोई गाली नहीं दे सकता, तेज आवाज में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नॉन वेज नहीं आगे, वेजिटेरियन से कोई अल्कोहल नहीं पिएगा। और इसके अलावा बहुत सारी, और रोज हनुमान चालीसा हम करेंगे, पूजा पाठ शुरू फिल्म से, फिल्म का डे शुरू वहाँ से होगा और एंड भी वहाँ से होगा। कोशिश करके हम एंड भी हनुमान चालीसा से करेंगे तो कहीं ना कहीं, और सारी हमारी प्रॉब्लम जो सेट पे होती थी उसमें हनुमान चालीसा सॉल्व हो जाती
5: है। हाँ मतलब, अरे वाह, तो मतलब बहुत ही जबरदस्त था कि हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं
6: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
5: हाँ गणपति रोल,
6: गणपति रोल बोलते हैं, गणपति रोल क्या, फिर पूरी पूरी
5: हनुमान चालीसा
6: करी, फिर हनुमान एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होता
5: है। हाँ आराम से मस्ती में,
6: जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक
5: सब सॉल्व,
6: फंसा ही पड़ा है
5: तो क्या कर सकते हैं,
6: ये तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था वो कुछ ना कुछ वहाँ से
5: सोल्यूशन आ जाता था।
0: मेकर्स का कहना है कि फिल्म का बजट कम होने की वजह से फिल्म के प्रमोशन तक के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में मेकर्स ने प्रमोशन के लिए भंडारों का आयोजन किया। इन भंडारों ने उनके लिए प्रमोशनल कैंपेन का काम किया। मुश्किलों के बावजूद CBFC ने बिना किसी रुकावट के फिल्म को यूज सर्टिफिकेट दे दिया। जिस रफ्तार से ये फिल्म फिलहाल आगे बढ़ रही है, उम्मीद

0: फिल्मों के सितारे आसमान तक जा पहुँचे हैं। हाल के सालों में ऐसी कहानियों और किरदारों की स्वीकार्यता कितनी बढ़ी है, ये फिल्म इसका जीता जागता प्रमाण है। फिलहाल जिस गति से ये फिल्म आगे बढ़ रही है, हो सकता है कि हनुमान अंश ब्लॉकबस्टर के दर्जे से आगे निकल 100 करोड़ कमाई के क्लब में एंट्री कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, एक वक्त हुआ करता था जब सुपर हीरो और फैंटेसी फिक्शन के नाम पर हम हॉलीवुड की ओर देखा करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडियन बॉक्स ऑफिस की तस्वीर बेहद बदल गई है। अब भारत के अपने पौराणिक इतिहास और लोक जीवन की कहानियों और किरदारों को सिनेमा के पर्दे पर खूब जगह मिल रही है। नए दौर के डायरेक्टर देश की मिट्टी से उठे नायकों, धर्म ग्रंथों में वर्णित चरित्रों को अपनी कहानियों का सेंट्रल कैरेक्टर बना रहे हैं। दुनिया के दिग्गज एनिमेटर्स और ग्राफिक्स आर्टिस्ट के साथ मिलकर भारत की इन कहानियों को वर्ल्ड क्लास सिनेमा में तब्दील कर रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि मेड इन इंडिया सुपर हीरो फिल्मों को दर्शकों का खूब प्यार भी मिल रहा है। अब यूं समझिए कि भारत की अपनी कहानियां पर्दे पर दिखाने के लिए ये सुनहरा दौर है। अगले कुछ महीनों में ऐसी कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। दिग्गज डायरेक्टर इन मेगा प्रोजेक्ट्स को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी देसी कहानियां और किरदार आपको जल्द सिनेमा के पर्दे पर नजर आएंगे।

0: भारतीय सिनेमा में एक ऐसा भी दौर था जब धार्मिक, ऐतिहासिक और माइथोलॉजिकल फिल्में खूब बना करती थी और पर्दे पर अच्छी कमाई भी करती थी, फिर उनकी तादाद कम होती
1: थी।
0: लेकिन फिर वक्त के साथ उनकी तादाद कम होती चली गई। लेकिन अब दौर एक बार फिर से बदला है। एक बार फिर पौराणिक विषयों पर फिल्में खूब बन भी रही हैं और पसंद भी की जा रही हैं।
1: कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई हैं।
0: ऐसी फिल्में जिनकी कहानी का सुपर हीरो हल्क नहीं है बल्कि चिरंजीवी हनुमान है। ये कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि ये भारत की कांतारा है। ये ब्लैक पैंथर की कहानी नहीं, ये बाहुबली की दास्तां है। यह कैप्टन मार्वल नहीं बल्कि महावतार नरसिम्हा का जलवा है। कहानियां जिनमें थॉर नहीं, आयरन मैन नहीं बल्कि हनुमान है। यानी देश की कहानियां और देश के किरदार।
2: जय श्री राम।
0: भारत की कहानियों और भारत के किरदारों से जुड़ा मेड इन इंडिया विशुद्ध देसी सिनेमा। वो फिल्में जिनमें भारत के पौराणिक इतिहास और हमारे अपने सुपर हीरोज और सुपर गॉड्स की कहानियों को ग्रैंड अंदाज में दिखाया जा रहा है। वही ग्रैंड स्केल और लार्जर देन लाइफ विजन जिसे ये शानदार कहानियां हमेशा से डिजर्व करती रही हैं। न्यू एज सिनेमा और यंग डायरेक्टर्स का विजन अब इन कहानियों के स्केल को उस स्तर तक पहुंचा रहा है जहां ये वर्ल्ड सिनेमा के बंच पर किसी भी सुपर हीरो फिल्म को टक्कर देने का मादा रखती है।
3: देखो, अब धुरंधर भी देश के ऊपर थी, एंटी पाकिस्तान, कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी, ये सारी चीजें साबित करती है कि देश की बात। और धार्मिक अगर देखो तो बाहुबली थी, फिर अभी ये हनुमान अंश है, फिर उसके पहले भी एक हनुमान के ऊपर आई थी, थोड़ी सी एनिमेटेड भी थी, बट ब्यूटीफुल बिजनेस, इट हैड डन मोर देन 180 crores के ऊपर गई थी और बहुत ही कम 5 crore में बनी थी क्योंकि उसमें VFX ज्यादा था। ये तो और भी सस्ते में बनी। तो एक जमाना था जय संतोषी माँ, अगर आपको याद हो, बहुत सस्ती फिल्म बनी थी और शोले को टक्कर दी थी, इतना जबरदस्त बिजनेस हुआ था। तो अभी फिर से ये एक धारणा लोगों में, एक फीलिंग आ गई भारत की, फील प्राउड दैट यू आर अ हिंदू, फील प्राउड दैट यू आर एन इंडियन, पहले नहीं था।
0: आने वाले 2 सालों में पर्दे पर एक के बाद एक कई बड़ी माइथोलॉजिकल फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इनमें बड़े स्टार काम कर रहे हैं, ये ग्रैंड स्केल पर बनाई गई हैं। इस लिस्ट की तमाम फिल्मों में सबसे ज्यादा चर्चा है रणबीर कपूर की रामायणम की। रामायण पर आधारित ये फिल्म 2 पार्ट्स में आने वाली है। इसका पहला पार्ट इसी साल जबकि दूसरा पार्ट 2027 में आएगा। खास बात यह है कि ये फिल्म 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बन रही है। हॉलीवुड में कई ऑस्कर जीतने वाली DNEG कंपनी रामायणम के VFX एनिमेशन पर काम कर रही है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सुपरस्टार्स से सजी इस फिल्म का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। इसी लिस्ट में शामिल है भारतीय सिनेमा को बाहुबली जैसा नायाब सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाले लेजेंड SS राजामौली की अगली फिल्म वाराणसी। वाराणसी एक एक्शन एडवेंचर माइथोलॉजिकल फिल्म है। बताया जा रहा है कि इसकी कहानी रामायण के संजीवनी बूटी वाले प्रसंग के आसपास बुनी गई है। राजामौली ने इसे मॉडर्न ट्विस्ट दिया है। रिपोर्ट्स हैं कि इसमें महेश बाबू एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट की भूमिका निभाएंगे जो संजीवनी बूटी की खोज में निकलता है और इस यात्रा में ये किरदार भयानक खतरे मोल लेता है। इस फिल्म में काशी के इतिहास को दिखाया जाएगा। इसके लिए राजामौली ने हैदराबाद में काशी शहर का रेप्लिका दिखने वाला भव्य सेट लगवाया था। हैदराबाद के अलावा इसकी शूटिंग केन्या, तंजानिया और जॉर्जिया में भी हुई। वाराणसी का बजट 1300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है जो इसे रामायणम के बाद भारतीय सिनेमा इतिहास की दूसरी सबसे महंगी फिल्म बनाता है। भारतीय पौराणिक इतिहास को जोरदार अंदाज में दिखाने वाली फिल्मों में एक और नाम जुड़ा है, फिल्म महाकाली का। ये प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म है। फिल्म महाकाली पर आधारित है। अक्षय खन्ना इस फिल्म में अपना तेलुगु डेब्यू करने जा रहे हैं।
1: के समय देवों एवं असुरों के समान श्रमदान करने के पश्चात
0: वो इसमें असुर गुरु शुक्राचार्य का पात्र निभा रहे हैं, तो वहीं भूमि शेट्टी महाकाली के पात्र में है।
1: ये धर्म है या अधर्म?
0: बताया जा रहा है कि ये फिल्म पौराणिक प्रसंग दिखाने के साथ साथ अपनी कहानी में सामाजिक संदेश भी समेटे है। फिल्म को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा।
1: केवल 14 दिनों में असुरों का विजय घोष हमारे कानों में गूंज उठेगा।
0: इसी लिस्ट में शामिल है बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1। दरअसल बाहुबली 1 और 2 की अपार सफलता के बाद राजा मौली ने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह लोग उम्मीद कर रहे थे। राजा मौली ने इस फ्रेंचाइज की अगली किश्त के रूप में एक एनिमेशन फिल्म अनाउंस की। नवंबर 2025 में इसका टीजर आया, जिसके मुताबिक इस फिल्म में अमरेंद्र बाहुबली की आफ्टर लाइफ को एक्सप्लोर किया गया है। यानी बाहुबली में जब कटप्पा ने अमरेंद्र बाहुबली को मार दिया, उसके बाद अमरेंद्र बाहुबली के साथ क्या हुआ वो इस फिल्म में दिखाया जाएगा।
4: हट जाओ विशासुर, बाहुबली मुझसे नहीं बचेगा।
5: इंद्र मेरे भाई, बाहुबली को पाने के लिए तुझे मेरी भुजाएं लांघनी पड़ेंगी।
0: टीजर में अमरेंद्र बाहुबली को देवासुर संग्राम से जोड़कर दिखाया गया है। ये फिल्म भी दो पार्ट में रिलीज होगी। इसी कड़ी में अगला नाम है भगवान विष्णु के सबसे ज्वलंत अवतार, परमवीर परम योद्धा भगवान परशुराम का। मेडॉक फिल्म्स परशुराम पर आधारित ये फिल्म बना रही है, जिसमें अभिनेता विकी कौशल परशुराम का किरदार निभाएंगे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए विकी कौशल बल की फिजिक बना रहे हैं, हिंदी और संस्कृत उच्चारण पर काम भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में शामिल है चिरंजीवी की सोशियो मैथो फैंटेसी तेलुगु फिल्म विषमभरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में एक आम आदमी की कहानी है, मगर अचानक उसकी आम सी जिंदगी में एक खास मोड़ आता है। वो शख्स अपनी पत्नी को बचाने के लिए धरती से स्वर्ग तक की यात्रा करता है। कई बुरी शक्तियाँ इस सफर में उसकी राह का रोड़ा बनती है। इसी तरह हनुमान कल्कि ब्रह्मास्त्र का अगला भाग और नागबंधम के रूप में विशुद्ध भारतीय कहानियों और किरदारों पर आधारित कई फिल्में आने वाले महीनों में रिलीज होने वाली हैं।
6: अरे बंगार पुष्पम कादम,
3: इन्होंने अभी रियलाइज किया है। इंटीरियर्स में देखो ना क्या बिजनेस हो रहा है, सिटीज में देखो क्या बिजनेस है हनुमान अंश का। पहले भी जो भक्त हनुमान आई थी, अभी रामायण देखना आप, रामायण पे इन्होंने तकरीबन बोलते 7,000 करोड़ खर्चा कर दिया है। पूरे वर्ल्ड में रिलीज हो रही है, फार ईस्ट, जापान, चाइना में 30,000 स्क्रीन्स मिले हैं, अमेरिका में सोनी पिक्चर्स ने लिया है। तो सोचो कहां तक पहुंच रहा है हमारा हिंदू कल्चर, हिंदू माइथोलॉजी। बहुत लोग तो बोलते हैं ये सच्चाई थी जो श्रीलंका तक जो हमारे वो जो कनेक्टेड है रामेश्वरम से, तो बहुत सी चीजों को स्टडी किया जा रहा है जर्मनी में, वर्ल्ड में। पीपल हैव सडनली रियलाइज्ड दैट हिंदुइज्म इज लाइक साइंस। तो इसलिए रामायण विल बी बिग, वाराणसी विल बी बिग। उसके बाद आपको पता है आदित्य धार चंद्रगुप्त मौर्य पे फिल्म बना रहे हैं। अभी इतने इतने हमारी जो डायनेस्टीज है उनको पकड़ा जा रहा है सब्जेक्ट में कि लाओ, जैसे वहां रोमन एम्पायर में बनाते हैं वेस्ट में, अपने सब पुरानी हिस्ट्री खड़ा करते हैं कि ये थे उस टाइम पे, ये हमने वॉर लड़ी, वो लड़ी, यहाँ हमारी कितनी बड़ी बड़ी है चोला डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य पे ऑलरेडी वर्किंग चल रही है, तो आई थिंक इट इज ऑन द राइट ट्रैक।
0: न्यू एज डायरेक्टर्स ने इन प्राचीन भारतीय कहानियों को नए दौर में ढालने के लिए कई जगहों पर अध्यात्म के धागों के साथ इंसानियत के धर्म और विज्ञान के लॉजिक को बड़े असरदार तरीके से पिरोने और बुनने का भी काम किया है।
7: पावर सिर्फ सूट में हो ये काफी नहीं है,
0: इन फिल्मों में न केवल भावनाओं और आस्था को उचित सम्मान दिया गया है बल्कि कहानी और सिनेमा मेकिंग के उत्कृष्ट मानदंडों को छूने की कोशिश भी इनके प्रोमो और टीजर साफ तौर पर दिखा रहे हैं। यही वजह है कि फैंस ने भारतीय सुपर हीरोज और सुपर गॉड्स की कहानियों से जुड़ी इन फिल्मों से खासी उम्मीद लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: कितना अच्छा सपना देख रहा था, हम दोनों कॉम्प्लेक्स में थे।
8: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी सुपर स्पेशल एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जा रही हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: कौन सा राजयोग जीवन में उच्च पद देता है? मंगल का कौन सा राजयोग व्यक्ति को बहुत धनवान बना देता है? कौन से हैं मंगल के राजयोग और क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक, नए CEO समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम पर हो सकता है फैसला। सर्च कमेटी ने 3 नाम ट्रस्ट को सौंपे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में विशेष तैयारी, 15 मिनट के विशेष ड्रोन शो का होगा आयोजन, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। पुणे समेत महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में, डगरू शेठ पेशवाई और बाल गणेश जैसे रूपों में आकार ले रहे बप्पा। सोशल मीडिया पर छाए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, बुजुर्ग महिला को गिफ्ट किया कीमती चश्मा, विजय के अंदाज की हो रही है तारीफ। NCR में आज बारिश का अलर्ट, यूपी बिहार समेत कई राज्यों में भी बारिश की संभावना, बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पे लगा ब्रेक। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं GNT। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अच्छी बात धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।

एक बात तुम याद रखना मेरे पागलो, कुछ भी स्थाई है नहीं, एक पल में कब कैसे क्या बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है जिंदगी का। नेपाल से देखो, ना बारिश ना बादल, भयंकर धूप और 20 फुट ऊंची मलबे में घर दब गए, जिंदगियां दब गईं। परिवारों के परिवारों का आता पता नहीं है, जिंदगी कागज की पुड़िया की तरह है, कब ये गीली हो जाए कोई ठिकाना नहीं। जिंदगी पानी के बबूले की तरह है, कब फूट जाए कोई पक्का नहीं। जिंदगी धुआं के फुहार की तरह है, कब बिखर जाए कोई ठिकाना नहीं है। जिंदगी मिट्टी के ढेले की तरह है कि एक पानी की बूंद पड़ी नहीं कि बिखर गया। यहां कुछ भी पक्का नहीं है, इसलिए जो दिन है जो तुम्हें मिले हैं यार, वो मौज में जियो, मुस्कुरा के जियो, लड़के नहीं हंस के जियो, रोते तो सब हैं और रोके क्या जीना। एक बात तुम याद रखना, चाहे तुम रोके जियो या हमारी तरह हंस के, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी चाहे जो हो जाए। उसको तुम मना ना कर पाओगे, उसको तुम ना ना कह पाओगे, जीनी तो पड़ेगी। तो रोने से बेहतर है हंस के जिए। रोना तो है ही है सबको, अपन रोने वाली लाइन में क्यों खड़े हो जब लाखों लोग बुरा कर रहे हो, तो हम उनके लाइन में अच्छा करके खड़े हो जाएं। जब लाखों लोग झूठ बोल रहे हो, तो हम अकेले ही सही सच बोल करके खड़े हो जाएं। तुम कभी अंदाजा लगाना, हम कभी कभी एयरपोर्ट पर जब जाते हैं, विदेश जाते हैं, बड़े बड़े महंगे पैंट पहनने वाले लोग, प्रादा लुबटीन का चश्मा लगाने वाले लोग, गुच्ची का चश्मा लगाने वाले लोग, 5-5 लाख का चश्मा और 2.5-2.5 लाख के पैंट पहनने वाले लोग हमारे 60 रुपया के कुर्ता की तरफ देखते रहते हैं। इसी को जलाना कहते हैं। बड़े बड़े महंगे जूते पहनने वाले लोग, बाटा के जूता, अन्य ब्रांड के जूता पहनने वाले लोग, जब लाखों लोग लाइन में खड़े होते हैं हजारों, और हम 250 रुपया की 200 रुपया की लकड़ी की चप्पल पहनकर जाते हैं, तो उनके वो लाखों के जूते फीके पड़ जाते हैं, नजर हम पर टिक जाती है। ये उदाहरण देकर हम तुम्हें ये समझाना चाह रहे कि जब लाखों लोग झूठ बोलकर करोड़पति बन गए हो, तो तुम सच बनकर के फकीर बन जाना। गलत काम करके जब लाखों लोग अमीर बन जाए, तो तुम अच्छा काम करके गरीब जरूर बन जाना, पर अमीर ना बनना। कम से कम तुम्हें संतुष्टि तो रहेगी। तुम मरोगे तो भले ही दुनिया तुमसे ना पूछे, पर तुम्हारा जिगर तो तुमसे पूछेगा कि जिए भी तो जी भर कर जिए। और मेरे पागलो, जिंदगी में कुछ भी स्थाई नहीं है, ये पक्का है। आर्मी की जब परेड होती है, उसमें लाइन से खड़ा किया जाता है, तब परेड कराने वाला जो मुखिया होता है,
वो खड़ा होता है और इशारे करके कुछ बोलता है, क्रिया करने को कहता है। तो जो सबसे आगे खड़ा होता, उसको जो परेड कराने वाला व्यक्ति होता है, ऑफिसर एकदम पास होता है, जो सबसे आगे खड़ा होता लाइन में, 100 लोग लाइन में लगे हो, जो सबसे आगे होता है वो ऑफिसर के एकदम नजदीक होता है। लेकिन उसी वक्त ऑफिसर कहता है पीछे मुड़, तो जो सबसे आगे खड़ा होता है वो सबसे पीछे हो जाता है, और जो सबसे पीछे होता है वो सबसे आगे हो जाता है। एक इशारा पीछे मुड़, तो जितने भी यहां पीछे बैठे हैं, यहां बैठे हैं, या संसार में तुम पीछे की लाइन में लगे हो, घबराना नहीं, बस इंतजार करो कब तुम्हारा गुरु और कब तुम्हारा परमात्मा कह दे पीछे मुड़। और जिस दिन उसने ये कह दिया पीछे मुड़, देखना तुम आगे हो जाओगे, जमाना पीछे हो जाएगा, और फिर तुम फिल्मी गीत गाओगे, आज मैं ऊपर जमाना नीचे। इंग्लैंड का एक दार्शनिक हुआ, बड़ा ऊंचा आदमी। इंग्लैंड में एक जगह है लेस्टर, लेस्टर के आसपास एक गांव में उसका जन्म हुआ। फकीर था, शादीशुदा था, पर बड़ा प्रसिद्ध था। एक चर्च में उसको बुलाया गया कि तुमको प्रवचन करने, भाषण देने आना है चर्च में। तो प्रवचन देने के लिए जिन्होंने निमंत्रण दिया, उन्होंने कहा कि सुनो, तुम भूलने में बहुत माहिर हो, 2 बजे की कह के 4 बजे आते, 12 बजे की कह के 2 बजे आते, भूलने में बहुत माहिर हो, तो कृपा करो कि कल 4 बजे ही आना, क्योंकि कल बहुत बड़ा भाषण है और चर्च में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पोप भी आ रहे हैं, इसलिए समय पे आ जाना। उसने कहा आप चिंता मत करो, हम समय पे आ जाएं। चर्च वालों ने फिर समझाया कि फिर सुनो, 4 बजे मतलब 4

रात को ही रख दिया गया कि आप घोड़े से आए ताकि आप जल्दी आ सकें। वो फकीर उस घोड़े पर बैठा और चर्च की तरफ चला और ठीक 2:30 बजे निकल भी गया कि लेट ना हो जाए। उन्होंने कहा था पक्के टाइम पे आना। बेचारा गया, चला, उसका मन हुआ कि घोड़ा चल ही रहा है, टाइम है ही है, जरा सिगरेट पी ली जाए, सिगरेट का मजा ले ले। उसने सिगरेट निकाली, लाइटर निकाला तो बड़ी जोर की सामने से हवा आ रही थी, तो बार बार लाइटर बुझ जाए और सिगरेट जले ना, तो उसने सोचा कि ये तो बड़ा लफड़ा है, क्या किया जाए कि सिगरेट जल जाए। उसने देखा कि इस तरफ से हवा आ रही, पीछे की तरफ हवा नहीं आएगी, तो उसने घोड़ा मोड़ दिया, जिस तरफ से आया था उसी तरफ, और सिगरेट में इतना डूब गया सिगरेट पीते पीते कि उसे होश ही नहीं रहा कि घोड़ा मुड़ गया है और इस तरफ नहीं जाना, फिर से मोड़ना है। जिस तरफ मुड़ा था वो उसी तरफ चल पड़ा। घोड़ा लौटकर घर वापस आ गया। इधर 4 बज गए। चर्च वाले लोग भागे भागे घर गए कि हमने कल कहा था कि आप 4 बजे आ जाना। बोले हम तो 4 बजे पहुंच जाते पर घोड़ा ही उल्टा है, ये कब मुड़ गया, कब इस तरफ आ गया, पता नहीं चला। मेरे पागलो, ये फकीर आज 4 बजे पहुंच जाता टाइम पर यदि ये सिगरेट में ना फंसता, और सिगरेट में फंस भी गया था यदि ये घोड़ा ना मोड़ता, और घोड़ा मोड़ भी लिया था तो वापस यदि मोड़ लेता तो 4 बजे चला जाता, लेकिन उसने घोड़ा मोड़ लिया तो वापस ना जा पाया, वापस उल्टा घर आ गया, चर्च ना पहुंच पाया। ऐसी जिंदगी है, जिंदगी में एक मोड़ तुम्हारी मंजिल बदल देती है। यदि तुम वापस घर की तरफ मुड़ना चाहते हो तो वापस घर जाओ, और यदि तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो यहां से बालाजी की तरफ मुड़ जाओ। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इस तरफ मुड़ना है या इस तरफ मुड़ना है। घर वापसी की तरफ मुड़ोगे कुछ ना पाओगे, और तुम हमारे तरफ भी मत मुड़ना। मुड़ने का मतलब साइड बदलना नहीं होता, मुड़ने का मतलब मन का मुड़ना होता है। तुम भले ही घर चले जाओ पर मन बालाजी के पास हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास लोग आते हैं, हमें बताते हैं कि अब आजकल तो हम जब से घर गए हैं सपने में भी धाम दिखता है, और 10-15 दिन से ज्यादा रह नहीं पाते, बार बार खुजली होती है, और फिर लगता है कि चलो यार भाई बड़ी देर हो गई है, बड़े दिन हो गए हैं, मंगलवार शनिवार आता है तो फिर याद आती है, चाहे जो हो जाए चलो धाम। इसका मतलब है तुम मुड़ चुके हो, और तुम मुड़ चुके हो मतलब सही जगह मुड़ चुके हो। यदि तुम्हें बालाजी की बार बार याद आती है तो तुम मुड़ चुके हो, और ये याद बनी रहे, दुनिया की याद से तो बेहतर है परमात्मा की याद बनी रहे। अंत में एक बात और सुने तुम्हारे काम की। परमात्मा तब तक चमत्कार नहीं कर सकता जब तक तुम अपना चमत्कार खुद नहीं चाहते। और हम एक बात तुम्हें बहुत दावे के साथ कहना चाह रहे कि छोटे मोटे चमत्कारों से तुम प्रभावित ना हो। मन की बात बता देना, पर्चा बना लेना, पर्चे में नाम आ जाना, या पर्चे में बिना बताए बातें आ जाना, ये बहुत छोटी बातें, इनसे तुम प्रभावित ना हो। ये कोई गहरे राज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा गहरा रहस्य नहीं है, क्योंकि जो मन की बातें तुम जानते हो वही हम बता देते हैं, कुछ खास बात नहीं है। हम तो तुम्हें जीवन की बात बताने बैठे हैं, मन की बात बताने नहीं बैठे। हम चाहते हैं तुम्हारे जीवन में हमेशा दुख आते ही रहना है। आज हम तुम्हारा पर्चा बना दें, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, कल सिर का दर्द तुम्हारा करेगा, सिर का दर्द ठीक होगा परसों पड़ोसी दर्द करेगा, पड़ोसी का दर्द ठीक होगा लुगाई दर्द करने लगेगी, लुगाई ठीक होगी तो पड़ोसन परेशान करेगी। एक ना एक तुम्हें झंझट बने ही रहना है, एक ना एक तुम्हें दिक्कत बनी रहनी है। तुम हमारे पास आए हो, हम तुम्हें ऐसी चाबी देना चाहते हैं कि तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाए, ताकि दर्द आते रहे, संकट आते रहे, पर संकट मोचन तुम्हारे बने रहे। भाई संकट तो आते रहना है, किसी ने जब छाता बनाया होगा बारिश से बचने के लिए तो पहले ऐसा छाता बनाया।

गया था कि एक बारिश में सिर्फ एक छाता काम आएगा, अब वो फट जाता था। ज्यादा तेज बारिश होती थी, वो फट जाता था। तो छाता बनाने वालों ने शोध किया, रिसर्च किया, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे कि भाई एक बारिश छाता झेल पाता, आदमी ऐसे कितने छाता खरीदेगा। चार महीने में बड़ी बारिशें होती हैं, हर रोज बारिश होती है, दिन में दो दो तीन तीन बार होती है। ऐसा छाता बनाया जाना चाहिए कि जो कई बारिश झेल पाए और फटे ना। और फिर बाद में धीरे धीरे अपग्रेड हुआ और ऐसा छाता बन गया आज कि अनेक बारिश होती है, छाता कई सालों तक चलता है। यही हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहां संकट तो रोज आते ही जाते रहने हैं। हम चाहते हैं हम तुम्हें एक ऐसा छाता, छाता नहीं बालाजी की ऐसी छत्र छाया तुमको दे दी जाए, ऐसी छत्र छाया तुम्हें मिल जाए ताकि तुम्हारे जीवन में संकट आते रहेंगे, आने दो, आते रहेंगे, घबराओ मत। तुम कोई नए आदमी नहीं हो कि तुम पे दिक्कत है, तुम कोई अकेले आदमी नहीं हो कि तुम बहुत परेशान हो। यहां ये जितने भीड़ दिखाई पड़ रही है, ये सब परेशान लोगों की दिखाई पड़ रही है। अरे तुम अपनी छोड़ो, हम तुम तो आम हैं। राम के जीवन में भी यही हुआ, मीरा को उसके देवर ने जहर दिया, सूरदास को गांव के लोगों ने धक्के दिए। तुम तो कुशल मनाओ कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जरा राम जी के जीवन में तो देखो, कल राजा बनना था, रात को ही वनवास मिल गया, तुम्हें तो घर से अभी निकाला भी नहीं गया। और उनके जीवन में तो देखो कि वो जंगल गए माता जानकी जी को लेके, लक्ष्मण जी को लेके, और घरवाली हर गई, चोरी हो गई। कम से कम तुम्हारी चोरी तो नहीं हुई, तुम्हारी अभी बची है। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं मिला, ज्यादा पीड़ा नहीं मिली। जब भगवान राम को भी इतनी पीड़ा सहनी पड़ी तो तुम सोचो तुम्हें कितनी सहनी पड़ेगी। पर हम इतना कहेंगे, समस्याओं के पास समस्या मिलेगी, संसार में समस्या होंगी, संसार में जन्म लिया है, समस्याएं आएंगी, तुम्हारे जीवन में भी आते, हमारे जीवन में भी आती। बस हमने जीने का तरीका बदल लिया। हम समस्याओं से डरते इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं डरते क्योंकि जब भी समस्या आती है तो हम परमात्मा से नहीं कहते कि समस्या विकट है। हम परमात्मा के पास जाके नहीं कहते कि समस्या बड़ी विकट है, समस्या के पास जाकर के कहते हैं कि बालाजी निकट है। और काम हो जाता, वो लाज रख देते हैं, वो कृपा कर देते हैं। हमारे अंदर भी चिंता आती है कभी कभी, गुरुकुलम कैसे चलेगा, कन्या विवाह कैसे होगा, कैंसर हॉस्पिटल कैसे बनेगा। अभी नेपाल में हजारों लोग घर बेघर हो गए तो 1000 लोगों को राशन भेजा बागेश्वर धाम से, 1000 परिवार। तो हमें भी कभी कभी विचार आता पर सोचते नहीं है, भगवान दया कर देते हैं। जिनके सहारे बैठे हैं वो हमारी चिंता करते हैं क्योंकि हम उनका काम करने आए हैं, तो हमारी चिंता वो करें। हम तुमसे भी यही कह देते, अब तक की तुम्हारी जितनी बकवास थी, जितने झंझट थे, आज के बाद उनको तुम इन पे छोड़ दो, हम पे छोड़ दो, आगे की तुम देख लेना। हम इतना कह सकते हैं, आज के बाद तुम फ्री होकर के जीना सीख लो, जो भी समस्या है छोड़ दो, या तो तुम गुरु को छोड़ दो या गुरु पर छोड़ दो। एक बात बताओ, हनुमान जी को कौन कौन छोड़ना चाहता है? ठीक से सुना नहीं। एक बात बताओ, हनुमान जी को कौन कौन छोड़ना चाहता है? हाथ उठाओ। छोड़ना चाहती हैं, इन्हें खड़ा करो, जरा खड़ा करो, बहन जी को खड़ी हो, बहन खड़ी हो जाओ, जगत जननी छोड़ना चाहती हैं। कहो बहन जी। तो हनुमान जी को कौन कौन छोड़ना चाहता है, बोलो छोड़ना चाहते हो? तो एक बात बताओ, हनुमान जी पर कौन कौन अपने आप को छोड़ना चाहता है? पक्का या कच्चा? जोर से बोलो, पक्का? एक दो दिन के लिए या जीवन भर के लिए?
सोच लो पक्का तो जाओ, हम भी वचन दे रहे जब तक तुम्हारी समस्या न निपट जाएगी तब तक हम बालाजी से तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे।

0: कौन सा राजयोग जीवन में उच्च पद देता है? मंगल का कौन सा राजयोग व्यक्ति को बहुत धनवान बना देता है? कौन से हैं मंगल के राजयोग और क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: जम्मू कश्मीर के वादियों में बसी माछिल घाटी सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। एलओसी के करीब बसे इस इलाके में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा होने से स्थानीय लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। उम्मीद है कि पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से कारोबार को रफ्तार मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी बनेंगे।
9: जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कुदरत की गोद में बसा माछिल सेक्टर, इसे देखकर लगता है मानो कुदरत ने अपने हाथों से सजाया। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पर छाई हरियाली, कल कल बहते झरने और दूर तक फैले खूबसूरत वादी। माछिल की यही खूबसूरती अब सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। एलओसी के करीब बसा ये इलाका बॉर्डर टूरिज्म के नए ठिकाने के तौर पर पहचाना जा रहा है। कभी जहां पहुंचना आसान नहीं था, अब वहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है। माछिल की ऊंची पहाड़ियों पर बना है नाजे हिंद, ये स्मृति और पर्यटन स्थल माछिल की खूबसूरती के साथ साथ सीमा की हिफाजत करने वाले जवानों की वीरता की कहानी भी बताता है। यहाँ सेना के जवानों के स्टैचू, हथियार और सैन्य साजो सामान भी प्रदर्शित किए गए हैं। यानी नाजे हिंद में पर्यटकों को कुदरत के साथ देश की सुरक्षा और जवानों के शौर्य की झलक भी मिलती है। माछिल की पहचान का एक और खास हिस्सा है यहाँ लहराता विशाल तिरंगा। करीब 140 फीट ऊंचा ये ध्वज बर्फीले पहाड़ों के बीच दूर से ही नजर आता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, होम स्टे, स्थानीय कारोबार और परिवहन से जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ेगी। यानी माछिल की इन वादियों में अब कुदरत के साथ साथ विकास की नई तस्वीर भी आकार ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक, नए सीईओ समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम पर हो सकता है फैसला, सर्च कमेटी ने 3 नाम ट्रस्ट को सौंपे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में विशेष तैयारी, 15 मिनट के विशेष ड्रोन शो का हुआ आयोजन, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। पुणे समेत महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की अंतिम तैयारियां, डगरू शेट, पेशवाई और बाल गणेश जैसे रूपों में आकार ले रहे भक्त। सोशल मीडिया पर छाए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, बुजुर्ग महिला को गिफ्ट किया कीमती चश्मा, विजय के अंदाज की हो रही है तारीफ। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का अलर्ट, यूपी बिहार समेत कई राज्यों में भी बारिश की संभावना, बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पे लगा ब्रेक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में, दुल्हन की तरह सजी मथुरा नगरी। शहर के लगभग 25 प्रमुख चौराहों और तिराहों की विशेष साज सज्जा, नगर निगम की टीमें चौराहों को आकर्षक बनाने में जुटी। रात की रोशनी रंगीन रोशनी में जगमगाया श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, भव्य सजावट से माहौल में घुली दिव्यता। इस बार उत्सव को और भी ज्यादा खास बनाने की तैयारी, लगभग 500 ड्रोन के साथ किया जा रहा है विशेष ड्रोन शो का आयोजन। जन्माष्टमी के मौके पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद, नगर निगम ने सुरक्षा और साफ सफाई के लिए किए पुख्ता इंतजाम। देश भर में जन्माष्टमी की जोरदार तैयारियां, करनाल में कृष्ण जन्मोत्सव से पहले कान्हा को सजाने में जुटे श्रद्धालु। पार्लर में श्री कृष्ण का किया जा रहा है श्रृंगार, कान्हा जी का विशेष श्रृंगार करवाने दूर दूर से आते हैं भक्त। बाजारों में भी जन्माष्टमी की दिख रही है रौनक, ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर झूले, वस्त्र और मुकुट से सजे बाजार। जन्माष्टमी पर मथुरा में भाईचारे के अनोखे मिसाल, बड़ी ही शिद्दत के साथ भगवान की अद्भुत पोशाक तैयार करते हैं मुस्लिम कारीगर। सुंदर नक्काशी और रंग बिरंगे मोतियों से सजे है पोशाक, भारत ही नहीं विदेशों में भी इन पोशाकों की डिमांड। पुणे में गणेश उत्सव की तैयारियां आखिरी दौर में पहुंच गई हैं। गणपति कारखानों में दिन रात बप्पा की मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कहीं बप्पा की आंखों में जान डाली जा रही है तो कहीं शानदार नक्काशी और रंग रोगन का काम जारी है। मूर्तिकार छोटी से लेकर 12 फीट तक की गणपति मूर्तियों को कर रहे हैं तैयार। पुणे के कारखानों में डगड़ू शेठ, पेशवाई और बाल गणेश जैसे कई रूपों में हो रहे हैं बप्पा तैयार। हर मूर्ति को मूर्तिकार अपनी खास कारीगरी से दे रहे हैं अलग पहचान। बप्पा को घर लाने के लिए भक्त भी कारखानों का कर रहे हैं लगातार रुख। कोई पारंपरिक मूर्ति पसंद कर रहा है तो कोई आधुनिक अंदाज वाले गणपति को चुन रहा है। पुणे के बप्पा महाराष्ट्र ही नहीं देश विदेश तक पहुंचते हैं। गणेश उत्सव करीब आते ही कारखानों में गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से माहौल भक्तिम हो जाता है। नागपुर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, कहीं लाइटिंग तो कहीं भव्य सजावट से बप्पा के स्वागत की तैयारी। नागपुर के गणपति पंडालों में इस बार बद्रीनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल मंदिर की दिखेगी प्रतिकृति। भक्तों को पंडाल में ही इन प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराने की तैयारी। चितारोली में मूर्तिकार गणपति की मूर्तियों को अंतिम रंग और रूप देने में जुटे। बप्पा के आगमन की तैयारी पर तेजी से चल रहा है कार्य। गणपति बप्पा के श्रृंगार के लिए नागपुर की दुकानों पर पहुंच गया है खास सजावटी सामान। मालाओं से लेकर मुकुट और गहनों तक बप्पा के लिए हर तरह की सजावट मौजूद। बप्पा के स्वागत को पूरा शहर तैयार। गणपति बप्पा मोरिया से गूंजेगा पूरा नागपुर। गणेश उत्सव से पहले ही देशभर में उत्सव का माहौल। मुंबई के प्रसिद्ध पंडालों में हो रहा गणपति बप्पा का स्वागत। धूमधाम से पंडाल में पधारे परेल के महाराजा। गाजे बाजे के साथ भक्तों ने किया विघ्नहर्ता का स्वागत। 35 डिग्री पर संतुलित परेल के महाराजा पंडाल के प्रथम आकर्षण का मुख्य केंद्र बने प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण जी दत्ते ने बनाई है 21 फीट ऊंची प्रतिमा। इस वर्ष परेल चर राजा की मूर्ति को संत वारकरी के रूप में बनाया गया है जो महाराष्ट्र के सबसे पूजनीय संतों में से एक और भगवान विट्ठल के समर्पित अनुयायी थे। इस बार अपना 43वां सफल साल मना रहा है ये पंडाल। इस साल की तरह इस बार भी चर्चा में है बप्पा का रूप। झारखंड के गढ़वा जिले में श्री बंशीधर जी के दिव्य धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। यहां साक्षात विराजते हैं त्रिबंगी मुद्रा में योगेश्वर श्री कृष्ण। यहां विराजमान है श्री राधा रानी के साथ भगवान श्री बंशीधर जी की 32 मन शुद्ध सोने की मनमोहक प्रतिमा। शेषनाग के ऊपर कमल पुष्प पर है उगवान की प्रतिमा। राजगढ़ के भादो के पहले सोमवार को दिखा महाकाल का शाही वैभव। जयकारों से गूंजा पूरा शहर। फूलों से सजी पालकी में नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल। ढोल डमरू और धार्मिक झांकियों ने बांधा संभा। जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर शाही सवारी का स्वागत किया गया। देखिए बाबा महाकाल बाबा मना तो खाटू श्याम की आकर्षक धार्मिक झांकियां। जम्मू कश्मीर के भलेसा के कलगुनी मंदिर में मणि महेश यात्रा का वो शुभारंभ जिसमें पहले दिन करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु, दिखा आस्था और परंपरा का अनोखा संगम। यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जन्माष्टमी के शुभ दिन मणि महेश पहुंचे की भलेसा से शुरू हुई तीर्थयात्रा। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त भव्य मंगल आरती। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों के अलौकिक दर्शन। तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल ले जाने पर लगा बैन। तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में फोन रखने के लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध। 52 मंदिरों ने शुरू की नई व्यवस्था। भारतीय वायुसेना की शक्ति शर्मा ने रचा इतिहास। एयर वाइस मार्शल बनने वाली पहली महिला नॉन मेडिकल अफसर बनी। साल से ज्यादा की सेवा के बाद 1 सितंबर को उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली। उन्हें एयर स्टाफ की असिस्टेंट चीफ नियुक्त किया गया। यूपी पीईटी 2026 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी। अब 7 सितंबर तक कर सकेंगे पीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन। यूपीएसएससी ने आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर की। दिल्ली में महिलाओं ने सिर्फ 4 महीने में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुफ्त बस सेवा का आनंद लिया। पिंक टिकट 17 सितंबर तक चलेगी, इसके बाद स्मार्ट कार्ड से मुफ्त सफर होगा। मुजफ्फरपुर की 21 साल की पलक ने रंगों से बनाई है अपनी अलग पहचान, सोशल मीडिया पे धूम मचा रही उनकी पेंटिंग्स। पलक मुगल गार्डन मिनिएचर और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में आजमा रही है अपना हाथ, एक पेंटिंग को पूरा करने में 2 से 3 दिन तक करती है मेहनत। पलक के पिता उनकी पेंटिंग की गलतियां निकालकर उन्हें सुधारते थे, आज वही सीख बेटी के हुनर को लगातार निखार रही है। बिश्केक से पीएम मोदी की नई रील आई सामने, भारत की जीडीपी ग्रोथ पे देश को दी बधाई। कोटा के रहने वाले आकाश का पूरा हुआ आर्मी अफसर बनने का सपना, बतौर आर्मी लेफ्टिनेंट हुआ चयन, परिवार में खुशी के लिए। जालौर में शिक्षक की अनोखी पहल, स्कूल की चार दीवारी से बाहर पहुंचाई शिक्षा, पाठशाला की दीवारों पर हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला लेकर 32 ड्रॉपआउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने खोले कावेरी डेल्टा में सिंचाई के लिए मेट्टूर बांध के गेट, हुआ भव्य आयोजन। डेल्टा किसानों की जीवन रेखा माना जाता है मेट्टूर बांध, 13 जिलों में लगभग 16 लाख एकड़ कृषि भूमि को प्रदान करता है सिंचाई। दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई, बारिश ने उमस और गर्मी से लोगों को राहत दी। मौसम का मिजाज बदलने से राजधानी का मौसम हो गया है सुहाना, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से ट्रैफिक पर भी पड़ा असर, वाहनों की थमी रफ्तार। कुछ ही घंटों की बारिश में सड़कों में भर गया पानी, जल भराव से लोगों को हुई परेशानी। चंदौली समेत पूर्वी यूपी में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, प्रयागराज और बांदा में अगस्त में टूटा 125 सालों का रिकॉर्ड। मौसम ने केदारनाथ यात्रा पर लगाया ब्रेक, सोनप्रयाग में रोकी गई यात्रा, सोनप्रयाग पार्किंग में घुसा बरसात का पानी। टिहरी में देर रात से हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर, कई जगह भूस्खलन से सड़कें बंद। नैनीताल जिले में हो रही भारी बारिश के बीच उफान पर कोसी नदी, नदी किनारों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कैची धाम के करीब बहने वाली शिप्रा नदी का बड़ा जलस्तर, नदी के तेज बहाव को देखते हुए आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई जोरदार बारिश, कई जगह पर हुआ जल जमाव। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारी बारिश के कारण कालाकोट नदी उफान पर, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। अलवर में नन्ही जान को बचाने के लिए मैराथन रेस्क्यू, 5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सकुशल निकाला गया 400 फीट गहरे बोरवेल में फंसा 9 साल का भानु। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जारी मूसलाधार बारिश से अल्मोड़ा जिले में लैंडस्लाइड, रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम। झारखंड के गढ़वा जिले में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त किया, शहर के कई घरों दुकानों और स्कूलों में घुसा बारिश का पानी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी जारी मूसलाधार बारिश, गुवाहाटी में बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, अब तक करीब 11,500 लोगों का किया गया रेस्क्यू, राहत बचाव में जुटे 21,000 जवान। नेपाल की सेना ने जारी किया पृथ्रशूली 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग के अंदर से रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो, लिखा अंधेरी सुरंग में भी उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। नेपाल के बुसितुसु इलाके में बचाए गए 25 लोग, रेस्क्यू कार्य में लगे 15 हेलीकॉप्टर। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में फंसे 933 लोगों की तलाश जारी। नेपाल में तबाही की वजह से भूकंप या GLOF नहीं, हिमालय में भारी बर्फ पत्थर गिरने से आई बाढ़, विशेषज्ञों का बयान। अल सल्वाडोर में अनोखा फायरबॉल फेस्टिवल हुआ, लोग आग से भरी गेंदें एक दूसरे पर फेंकते हुए नजर आए। फेस्टिवल में लोग चेहरा ढककर आग की गोले उछालते हुए नजर आए, देखने वालों की भीड़ चीखती और रोमांचक नजर आई। निजापा में एक खतरनाक खेल 104 साल पुराना है, लोग इसे ज्वालामुखी विस्फोट की याद में मनाते हैं। फायरबॉल हवा में उड़ते रहे और लोग पीछे भागते रहे, विदेशी पर्यटक भी इस अनोखे नजारे को देखने के लिए पहुंचे। आग के गोले सड़क पर गिरते रहे और आग फैलती दिखी, खतरनाक खेल के बीच लोग लगातार एक दूसरे पर आग फेंकते रहे। चीन में 4 महीने बाद समुद्र में फिर मछली पकड़ने का काम हुआ शुरू, शानडोंग के बंदरगाहों से हजारों नावें समुद्र की ओर रवाना। चीन के बोहाई और येलो सी में मछली पकड़ने पर 4 महीने की थी रोक, अब 1 सितंबर से ये रोक खत्म हो गई है। किंगदाओ और रोंगचेंग से मछुआरों ने नए सीजन की शुरुआत कर दी है, मछली पकड़ने के सफर पर निकले मछुआर। मछुआरे इस बार हेयर टेल, स्पैनिश मैकरल और सिल्वर प्रॉम्फेक्ट पकड़ेंगे, समुद्र में अच्छी मात्रा में मछली मिलने की उम्मीद। चीन हर साल गर्मियों में मछली पकड़ने पर लगाता है रोक, इससे मछलियों को बढ़ने और समुद्र में उनकी संख्या बढ़ाने की मिलता है मौका। फिर चर्चा में है मिस्र के मशहूर राजा तूतन खामुन का सोने का मुखौटा, गाइड ने इसे चीन के सैन शिंग दुई में मिले सोने के मुखौटे से जोड़ा। मिस्र और चीन की सभ्यताओं में कई समानताएं, दोनों नदियों के किनारे फली फूली और दोनों की संस्कृति बेहद पुरानी है। म्यूजियम में रखा तूतन खामुन का तेल वाला दिया बेहद खास, जलाने पर इसमें तूतन खामुन और उनकी पत्नी की तस्वीर दिखाई देती है। इस प्राचीन दिए पे खास चित्र भी बना है जिसका मतलब है 10 लाख साल। गाइड के मुताबिक संदेश है, मैं तुम्हारे साथ 10 लाख साल रहूंगा। मिस्र के पास नील नदी है तो चीन के पास यात्सी और पीली नदी। गाइड के मुताबिक दोनों सभ्यताएं एक ही दुनिया में पली बड़ी और कई बातें मिलती जुलती हैं।

0: करीब 1000 साल पुरानी ब्योक्स्ट पेस्ट्री 10 सितंबर से लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में दिखेगी। इसमें 1066 में नॉर्मन लोगों के इंग्लैंड पर कब्जा करने की कहानी गढ़ाई गई है। ये खास पेस्ट्री करीब 70 मीटर यानी 230 फीट लंबी है और इसे देखने की होड़ मची है। 31 दिसंबर तक के टिकट पहले ही बिक चुके हैं। टेपेस्ट्री को किसी तरीके का नुकसान ना हो इसलिए फ्रांस में इसे धीरे धीरे निकाला गया, फिर इसे खास एयर कंडीशन स्पेशल बॉक्स में ब्रिटेन भेजा गया। इस ऐतिहासिक धरोहर को फ्रांसीसी पुलिस की सुरक्षा में यूरो टनल तक पहुंचाया गया, फिर इंग्लिश चैनल पार कर इसे ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया गया। टेपेस्ट्री की प्रदर्शनी को ब्रिटेन और फ्रांस के बेहतर होते रिश्ते की निशानी माना जा रहा है। ब्रेग्जिट के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई खटास अब कम होती नजर आ रही है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे हल षष्ठी के पर्व की, जिसको हल छठ भी कहा जाता है। हल षष्ठी के पर्व की मान्यता क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इस विषय पर बात करेंगे और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 6:12 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। हम आज बात कर रहे हैं हल षष्ठी के पर्व की। हल षष्ठी का व्रत और पर्व, इसका मतलब क्या है, ये है क्या। देखिए, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के अग्रज श्री बलराम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, यानी श्री बलराम जी का प्राकट्य उत्सव है। उनकी पूजा से अपूर्व शक्ति और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। हल षष्ठी के दिन संतान की प्राप्ति और कल्याण के लिए माताएं व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से और पूजा को करने से महिलाओं को मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। तो हल षष्ठी मुख्यतः संतान प्राप्ति का, संतान के कल्याण का पर्व है और श्री बलराम जी का जन्मोत्सव है, जिसमें भगवान बलराम की पूजा की जाती है। इस बार हल षष्ठी का व्रत 2 सितंबर को है, जिसका पालन महिलाएं करेंगी। हल षष्ठी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जैसा आपको बताया कि हल षष्ठी पर भगवान बलराम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, तो भगवान बलराम की पूजा कैसे करेंगे? प्रातः काल भगवान बलराम के चित्र की स्थापना करें, उनको पीली वस्तुएं अर्पित करें, हल और मूसल की भी पूजा करें, घर में शंख ध्वनि करें और भगवान का नाम लेकर घर में जल का छिड़काव करें, फल और मिठाई का वितरण करें। अगर घर में भगवान बलराम की पूजा की जाएगी तो घर में समृद्धि आएगी और घर के लोगों में आपसी तालमेल बढ़ेगा। यानी हल षष्ठी के दिन भगवान बलराम की पूजा करने से समृद्धि और शक्ति मिलेगी और जिनको जीवन में उच्च पद की कामना है उनको उच्च पद की प्राप्ति होगी भगवान बलराम की पूजा करने से। अब संतान के कल्याण के लिए माताएं हल षष्ठी पर कैसे पूजा करेंगी? महिलाओं को प्रातः काल 12 बजे के पहले नहा करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने घर में छत पर या आंगन में मिट्टी का एक छोटा सा तालाब बनाएं। इस तालाब के बीच में एक हर छठ लगा दें। हर छठ को कैसे बनाया जाता है? कुश की घास, महुआ और पलाश वृक्ष की एक शाखा को बांध करके एक पेड़ की तरह हर छठ बना लिया जाता है। हर छठ को तालाब के बीच में लगाएं, इसकी विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद संतान के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद चावल और साग सब्जी खा करके व्रत का पारायण करेंगी। इस व्रत में गाय का दूध दही और हल जुते हुए खेत का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। जो अनाज खेत में हल जोतने के बाद पैदा हुआ है वो अनाज नहीं खाते। बिना जोता बोया हुआ अनाज और बिना जोते बोए हुए साग का ही सेवन किया जाता है। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपका बहुत सारा पैसा फंस गया है तो हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाइए और मन ही मन में प्रार्थना करिए कि आपका फंसा हुआ पैसा निकल आए। अब जान लेते हैं दिनांक 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है।

0: करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूरवा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक, नए CEO समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम पर हो सकता है फैसला, सर्च कमेटी ने 3 नाम ट्रस्ट को सौंपे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में विशेष तैयारी, 15 मिनट के विशेष ड्रोन शो का होगा आयोजन, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। पुणे समेत महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में, डगरू शेठ पेशवाई और बाल गणेश जैसे रूपों में आकार ले रहे बप्पा। सोशल मीडिया पर छाए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, बुजुर्ग महिला को गिफ्ट किया कीमती चश्मा, विजय के अंदाज की हो रही है तारीफ। दिल्ली NCR में आज बारिश का अलर्ट, यूपी बिहार समेत कई राज्यों में भी बारिश की संभावना, बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर
5: नमस्कार। गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
5: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। आज के चर्चा का विषय है मंगल के राजयोग। मंगल के राजयोग के बारे में विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे, मंगल के राजयोग कौन कौन से होते हैं और अगर आपके जीवन में मंगल का राजयोग बन रहा है या बनता है किसी कारणवश तो उसका क्या कुछ फायदा आप ले सकते हैं और किस प्रकार से इसके फायदे ले सकते हैं, ये तमाम जानकारियां पंडित जी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
0: मंगलवार के दिन जहां तक हो सके कर्ज लेने से बचना चाहिए। अगर आप मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो कर्ज चुकाने में काफी समस्या हो सकती है, काफी दिक्कतें आ सकती हैं।
5: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं 2 सितंबर 2026 बुधवार के पंचांग के बारे में।
0: दिनांक 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 6:12 तक, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान।
5: चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। जैसे शुरुआत में मैंने आपको जानकारी दी है कि आज हम चर्चा करेंगे पंडित जी के साथ मंगल के राजयोग के बारे में, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो हम सबको समझना बहुत आवश्यक है वो ये कि मंगल के ज्योतिष नजरिए के साथ हम सबके जीवन में क्या भूमिका है और नॉर्मली भी क्या रोल होता है पंडित जी मंगल का।
0: जी, आज हम बात कर रहे हैं मंगल के शुभ योगों के बारे में, यानी मंगल के राजयोगों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल ज्योतिष में क्या स्थान रखता है, मंगल की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, ग्रहों को कंट्रोल करने वाला सेनापति है। और जैसे सेनापति का काम होता है सुरक्षा करना, तो मंगल सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह है, आपके जीवन को विपत्तियों से, समस्याओं से बचाता है। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है और मंगल व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति देता है। ये व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव से बचाता है। अगर मंगल का शुभ योग कुंडली में हो, मंगल अगर कुंडली में राजयोग दे, तो व्यक्ति को जीवन में कम उम्र में ही सफलता मिल जाती है, कम उम्र में व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है। तो मंगल का जो राजयोग है वो अलग अलग तरीके से जीवन में प्रभाव देता है, लेकिन मंगल का राजयोग कम उम्र में व्यक्ति को ऊंचाइयों पर और सफलता पर ले जाता है।
5: चलिए, इसी मुद्दे से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जो आगे जाकर पंडित जी से लेंगे। आपके सवालों को भी इस शो में हम शामिल करेंगे, महा उपाय के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आते हैं राशिफल पर। पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, करियर के प्रयास सफल होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60 प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलेगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

0: मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। प्रश्न पंडित जी आपसे यह है कि मंगल का पहला राजयोग कौन सा होता है और उसका क्या असर होता है?
0: देखिए मंगल का जो पहला शुभ योग है, मंगल का जो पहला राजयोग है, उसे कहते हैं रूचक योग। क्या होता है ये जो रूचक योग है, ये मंगल का पंच महापुरुष योग है। अगर कुंडली में मंगल मेष राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो तो रूचक नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। अगर रूचक योग कुंडली में है तो ये योग व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बना देता है। रूचक योग कुंडली में होने से व्यक्ति सेना, पुलिस, शक्ति या ताकत के क्षेत्र में जाता है। कभी कभी टेक्नोलॉजी में भी काफी ऊंचाई प्राप्त करता है और व्यक्ति साहस के क्षेत्र में, शक्ति के क्षेत्र में उच्चतम पदों तक पहुंचता है। अगर आपकी कुंडली में रूचक योग है तो आपको शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और अपने पद की सहायता से ज्यादा लोगों की सहायता करनी चाहिए। रूचक योग अगर कुंडली में है और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करें तो आपका पद और आपकी प्रतिष्ठा जीवन भर बनी रहेगी।
1: चलिए वापस आते हैं राशिफल पर और अगली तीन राशियों की बारी आ चुकी है। इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि इनका वक्त कैसा रहने वाला है। बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे कि इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: कर्क राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। कोई यात्रा हो सकती है, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है। करियर में लापरवाही

0: करें, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए बारी आ गई है आपके सवालों को इस शो में शामिल करने की। इससे पहले पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं और आपको बताऊं कि कौन सा है लकी दर्शक जिसका सवाल इस शो में हमने शामिल किया है। उससे पहले आपको सूचित कर दें कि आप भी कोई भी प्रश्न इस शो में भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। इसी ईमेल आईडी पर आपको अपने तमाम सवाल भेजने हैं, अपनी परेशानियां भेजनी है। तो पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है?
0: जी आज का पहला प्रश्न उपासना जी ने हमें लिखा है और उपासना जी बेंगलोर से हमें मेल लिखती हैं। 13 मार्च 1988 का जन्म है। शाम के 7:40 जन्म स्थान है भोपाल। ये कह रही हैं कि मेरा पहला विवाह टूटने की नौबत आ गई है और 2 साल से मैं अपने पति से अलग रह रही हूं, तो मेरा विवाह कब तक टूटेगा, कब तक सेपरेशन होगा और क्या आगे मेरा दूसरा विवाह हो सकता है? उपासना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपसी सुलह समझौते से साल 2027 के आरंभ में आपका सेपरेशन हो जाएगा और 2027 के अंत तक आपकी स्वयं की इच्छा से विवाह के योग बनते हैं। आपकी कुंडली में फिलहाल स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। एक मोती बनवा करके पहन लें, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की तरफ वक्त हो चला है बढ़ने का और पंडित जी आपको बताएंगे कि दूसरा प्रश्न इस शो में कौन से दर्शक ने भेजा है। पंडित जी,
0: जी अगला प्रश्न दीपशिखा जी ने हमें लिखा है और दीपशिखा जी हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1992, जन्म का समय शाम के 6:00, जन्म का स्थान है जयपुर। दीपशिखा जी कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी करती हूं लेकिन मेरे नौकरी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। बॉसेस के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा ऑफिशियल मामला बेहतर हो सके, ऑफिस में किसी तरह की दिक्कत ना आए। दीपशिखा जी, सबसे पहले तो आप अपने क्रोध पर और अपने स्वभाव पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, वाणी को थोड़ा शांत करिए, स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय जल अर्पित करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करना शुरू करें तो तो आपकी मुश्किलें हल होंगी, थोड़ी स्वभाव में शांति लाएं तो समस्या में सुधार होगा।
1: चलिए पंडित जी ने आपको पहले राजयोग के बारे में तो बताया, अब ये जानते हैं पंडित जी से कि मंगल का दूसरा राजयोग कौन सा होता है और इसका जीवन पर किस प्रकार का असर पड़ता है।
0: देखिए मंगल का जो दूसरा शुभ योग है, मंगल का जो दूसरा राजयोग है वो है लक्ष्मी योग। कैसे बनता है? कुंडली में चंद्रमा और मंगल अगर एक साथ हो तो लक्ष्मी योग बन जाता है। ये योग केंद्र में हो या त्रिकोण में बने तो ज्यादा लाभकारी होता है। लक्ष्मी योग अगर कुंडली में बने तो इस योग के होने से व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। और जिनकी कुंडली में लक्ष्मी योग है वो साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाते हैं। लक्ष्मी योग वाले लोग अक्सर जीवन में उच्च पदों तक पहुंच भी जाते हैं। इस योग के होने पर वाणी पर और स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी योग होने की मुश्किल ये है कि आदमी की वाणी खराब होती है और व्यक्ति किसी भी प्रकार से पैसा कमाने का प्रयास करता है। और लक्ष्मी योग होने पर धन और शक्ति के द्वारा दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए।
1: चलिए राशिफल पर वापस आ गए हैं और तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की बारी है और जानते हैं पंडित जी से विस्तार से कि इन राशि वालों के भाग्य में आज क्या लिखा है। पंडित जी आपको जानकारी देंगे।
0: तुला राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, विवाह तय हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए मंगल के तीसरे राजयोग के बारे में भी पंडित जी से अब जानते हैं। पंडित जी बताइए कि तीसरा राजयोग कौन सा है मंगल का और इसका हमारे जीवन पर किस प्रकार का असर पड़ता है?
0: मंगल का तीसरा शुभ योग है दशमस्थ मंगल, यानी दसवें भाव में बैठा हुआ मंगल। कुंडली का दसवां भाव अग्नि तत्व का मुख्य भाव है। यहां पर जब मंगल होता है कुंडली में तो वो विशेष शक्तिशाली हो जाता है, और दसवें भाव में अगर किसी व्यक्ति के मंगल बैठे तो व्यक्ति अपने परिवार का और अपने कुल का खानदान का नाम रोशन करता है। दसवें भाव का मंगल व्यक्ति को परिश्रम तो बहुत करवाता है लेकिन करियर में बड़ी सफलता भी देता है। करियर में व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयों तक जाता है। दसवें मंगल होने से व्यक्ति टेक्नोलॉजी में, सेना में या जमीन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को परिवार को साथ में लेकर चलना चाहिए और नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करना हमेशा बेहतर होगा।
1: चलिए अंतिम तीन राशियों के बारे भी आ गई है, पंडित जी से विस्तार से जान लेते हैं इन राशियों के बारे में। पंडित जी आपको जानकारी देंगे अब मकर कुंभ और मीन राशि वालों के बारे में।
0: मकर राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, निर्णय लेने में सावधानी रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की फिर से शुरुआत करते हैं, यानी आप दर्शकों के ही सवाल। बारी आती है तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने की। पंडित जी से जानते हैं कि ये प्रश्न कौन से दर्शक का है जो पंडित जी तक आया है।
0: जी अगला प्रश्न प्रदीप कुमार पांडे ने हमें लिखा है और ये लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 मार्च 1980। जन्म का समय रात में 8:35। जन्म स्थान है गोपालगंज बिहार। प्रदीप जी कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं चल रही है, मेरे ऊपर कर्ज भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो मेरी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी और कर्ज से मुझे छुटकारा कब मिलेगा? प्रदीप जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपका बेहतर समय फरवरी 2027 में आरंभ हो रहा है। फरवरी 2027 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और अगर आप प्रयास करेंगे तो 2027 में ही आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। आने वाला समय आपका बेहतर है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ बारी आ गई है इस शो में दर्शकों का अंतिम सवाल शामिल करने की, तो जानते हैं पंडित जी से कौन सा है लक्की दर्शक जिसका अंतिम सवाल है हम इस शो में शामिल करेंगे।
0: जी अंतिम प्रश्न संजीव जी ने हमें लिखा है और संजीव जी हमें मेल लिखते हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 13 दिसंबर 1975। जन्म का समय सुबह के अर्ली मॉर्निंग 3:15। जन्म स्थान है दमोह मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति भविष्य में कैसी रहेगी और मुझे संपत्ति का लाभ कब होगा। संजीव जी आपकी कुंडली के हिसाब से आप किसी प्रॉपर्टी का निर्माण करवाएंगे अगले साल, यानी साल 2027 में आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी अभी भी बेहतर है और इससे ज्यादा बेहतर आर्थिक स्थिति आपकी जून 2027 के बाद दिखाई दे रही है। फिलहाल ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पंडित जी से जान लेते हैं विस्तार से कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 2 सितंबर को, इनका हैप्पी बर्थडे इनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 2 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर उत्तम रहेगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। इस साल धन के निवेश में, पैसे के इन्वेस्टमेंट में सावधानी बनाए रखें। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर शिव जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी अब आपको विस्तार से जानकारी देंगे आज के शो की जिज्ञासा क्या कहती है।
0: देखिए, आज की जिज्ञासा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड का पाठ नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा है? देखिए, रामचरित मानस के अयोध्या कांड से ही आदर्श चरित्र का आरंभ होता है और यहीं से श्री राम के भगवान राम बनने की शुरुआत होती है। इसीलिए श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड का पाठ करने में कोई हर्ज नहीं है, आप अयोध्या कांड का पाठ कर सकते हैं।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 2 सितंबर 2026 बुधवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। धन और कर्ज की समस्याओं में आपके सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 2 सितंबर बुधवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। जैसे कि आपको ज्ञात है कि पंडित जी आपको बताते हैं विस्तार से आपकी गुड लक राशि कौन सी है, तो आपकी राशि कौन सी है वो पंडित जी आपको बताएंगे।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की कमजोरी क्या है और उन्हें किस बात का ध्यान देना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मीन राशि। आपको भावनात्मक समस्या से और मानसिक समस्या से बचना चाहिए और आपको नियमित रूप से निर्धनों को दान करते रहना चाहिए, आपका कल्याण होगा।
1: चलिए तमाम उपायों के बारे में, इस शो से जुड़े हुए तमाम सवालों के बारे में पंडित जी ने आपको विस्तार से और डिटेल में जानकारी दे दी है। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में जान लेने की, तो पंडित जी हम सबको बताएंगे कि आज का महा उपाय जिसका इंतजार आपको रहता है वो क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर किसी सर्जरी का योग बना हो और उसको टालना चाहते हो तो क्या करेंगे। रोज सवेरे 1 बार बजरंग बाण का पाठ कम से कम 1 महीने तक करिएगा। रविवार को भगवान भैरव को मिठाई का भोग लगाइएगा और लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करें तो सर्जरी कुछ समय के लिए टल जाएगी या आप सर्जरी से बच जाएंगे।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए, आज के इस खास एपिसोड में इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या है हल षष्ठी का पर्व? हल षष्ठी के पर्व से श्री बलराम जी का क्या है संबंध, और हल षष्ठी के पर्व का संतान प्राप्ति से क्या संबंध है? क्या है हल षष्ठी के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: नेपाल में आई भयानक बाढ़ ने सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि बेजुबानों का संसार भी उजाड़ दिया। नेपाल के ढूंगे से ऐसी ही दिल छू लेने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें एक डॉगी अपनों को तलाशता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ मलबा है, राहत बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन ये डॉगी यहां से जाने को तैयार नहीं है। लगता है जैसे अपनों के लौटने का इंतजार कर रहा हो।
9: छब्बीस अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और फ्लैश फ्लड ने ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते गांव के गांव पानी और मलबे में समा गए। कहीं उफनती नदियां अपने साथ पुल, सड़कें और इमारतें बहा ले गईं, तो कहीं पहाड़ों से आए सैलाब ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब प्रकृति अपना सबसे भयावह रूप दिखाती है, तब इंसानी जज्बे, उम्मीद और जिंदगी की ताकत ऐसे चमत्कार कर दिखाती है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। नेपाल की इस विनाशकारी बाढ़ के बीच भी ऐसी कई हैरान कर देने वाली कहानियां सामने आ रही हैं। कहीं घंटों तक मलबे में दबे रहने के बाद जिंदगी ने मौत को मात दे दी, तो कहीं तेज बहाव के बीच घर सुरक्षित बच गया, तो कहीं लड़के ने 7 लोगों की जान बचाई है। नेपाल के ढूंगे से ऐसी ही एक कहानी है। यहाँ बाढ़ की तबाही के बाद हर तरफ सिर्फ मलबा है, टूटी हुई दीवारें हैं, बिखरे हुए घर हैं और अपने अपनों को तलाशती आंखें। इस तबाही के बीच एक तस्वीर ऐसी भी है जो हर किसी को भावुक कर रही है। काले और सफेद रंग का ये डॉगी है लिली। लिली भी शायद किसी अपने को तलाश कर रही है। बाढ़ आने से पहले जहां इसका घर था, जहां इसके अपने रहते थे, आज वहां सिर्फ मलबे का ढेर बचा है। लेकिन लिली ने उस जगह का साथ नहीं छोड़ा। वो घंटों तक उसी मलबे के पास बैठी रहती है। लोग उसे वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिली अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं। उसकी आंखों में भी तबाही का दर्द दिखाई देता है। लिली की ये तस्वीर बता रही है कि कुदरत का कहर सिर्फ इंसानों का घर नहीं उजाड़ता, बेजुबानों से भी उनका संसार छीन लेता है, जिन्हें शायद ये भी नहीं समझ आता कि अचानक उनकी दुनिया आखिर कहां गई। मलबे के ढेर के पास बैठी लिली शायद किसी चमत्कार का इंतजार कर रही है।
6: दिन भर हमारा फसल में रहता था, शाम कभी कभार मंजली होटल में चले जाता था।
10: एक और होटल में रहते थे, खाना उना खिलाता, उसको भी खुद रहा है।
9: और अब बात नुआकोट के उस 20 साल के युवक की, जिसकी सूझबूझ और हिम्मत ने ऐसा कमाल किया कि वो अकेला नहीं बचा, बल्कि उसके साथ 7 लोग मौत के मुंह से सही सलामत बाहर निकल आए।
11: मेरा विलेज का नाम आंगिटार है, और हम मैं पढ़ ही रहा था कि तब मेरे ग्रैंडपा ने आकर बोला वो उधर से बाढ़ फूट गए है और बाढ़ आ रहा है। हमको 15 मिनट अगाड़ी इन्फॉर्म किया गया था, तो मैं नदी में जाकर देखा और मैं फिर रिटर्न हो गया घर को। सो मैं मेरे घर के रूफ पर गया, सो मैंने देखा बहुत बड़ा वेव आ रहा था वाटर का। सो मैंने मेरे मम्मी को और आंटी को जल्दी जल्दी करके घर से निकाला और हमको 2 बार बह कर ले गया। तब भी हम हमारे मम्मी को खींचते हुए डांडा पर चले गए, हिल पर, और वैसे ही करके मैंने कितना 7 लोगों का जान बचाया।
9: नेपाल के धागिंग से आई ये तस्वीर भी किसी चमत्कार से कम नहीं। यह है श्री बागेश्वरी माध्यमिक स्कूल। ये स्कूल ऐसा है जहां वक्त रहते लिया गया फैसला सैकड़ों जिंदगियों के लिए वरदान बन गया। अचानक आई भयानक बाढ़ ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन खतरे को भांपते हुए स्कूल के शिक्षकों ने समय रहते बच्चों को सुरक्षित और ऊंची जगहों पर पहुंचा दिया, और यही फैसला बन गया जिंदगी और मौत के बीच सबसे बड़ी दीवार। कुछ ही देर बाद बाढ़ का पानी और मलबा स्कूल परिसर तक पहुंच गया, लेकिन राहत की बात ये रही कि तब तक छात्र सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके थे। आज बाढ़ भले ही पीछे हट गई हो, लेकिन अपने निशान छोड़ गई है। स्कूल के कमरों में मलबा भरा है, सामान अस्त व्यस्त है, हर तरफ तबाही के निशान है। अब शिक्षक, स्थानीय लोग और बचाव कर्मी मिलकर स्कूल को फिर से संवारने में जुटे हैं। मलबा हटाया जा रहा है, और इन सबके बीच कुछ बच्चे भी अपने स्कूल को देखने पहुंच रहे हैं। वही स्कूल जहां वे रोज पढ़ने आते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, सपने देखते थे, आज इन बच्चों की आंखों में डर से ज्यादा एक उम्मीद है। उम्मीद कि जल्द ही मलबा हटेगा, पक्षियां फिर सजेंगी, घंटी फिर बजेगी, और एक बार फिर इस स्कूल के आंगन में बच्चों की हंसी गूंजेगी। नेपाल की भयानक बाढ़ में बड़े बड़े पुल और पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इस जल प्रलय में मकान और घरों की बिसाती क्या थी, लेकिन इस भीषण बाढ़ में एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। चारों तरफ मलबे, पत्थरों और उफनते पानी के खौफनाक सैलाब के बीच एक हरे रंग का 2 मंजिला मकान सुरक्षित खड़ा रहा। जब बाढ़ का पानी उतरा तो रसुआ का ये मकान पूरी तरह महफूज रहा और परिवार भी बच गया। आखिर इस चमत्कार के पीछे क्या वजह थी, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे GNT संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने इसे समझने की कोशिश की।
12: मन में लोगों को लगेगा ये चमत्कार है या विज्ञान है, दरअसल ये भूगोल ऐसा है, ये स्थिति यहाँ की ऐसी जिसकी वजह से घर बच गया। ये घर जिस जगह पर है इसके ठीक नीचे पत्थर है, लेकिन पानी की धारा दरअसल जहाँ पर है ये कटाव का हिस्सा है, यानी एक सी बेंड है, और उस सी बेंड के आगे दरअसल ये एक चट्टान है बहुत बड़ी, चूंकि पहाड़ है, पहाड़ी कहिए, देखिए ये पूरी चट्टान है, और जब पानी वहां से आई जहां पर बेंड हुआ उसके किनारे पर जो घर मकान थे वो तो बह गए, लेकिन उन घर के पीछे मकानों के पीछे ये जो पहाड़ था, ये चट्टान था, पानी उसको भेद नहीं पाया, पानी की दिशा वहां से मुड़ गई, और जब तक वो इस चमत्कारी घर तक पहुंचती तब तक पानी की दिशा में मोड़ आ चुका था। पानी का स्तर तो बढ़ रहा था लेकिन उसकी ताकत चट्टान से टकराने की वजह से कम हो गई थी, और इसी भौगोलिक स्थिति के चलते वो घर बच गया।
9: नेपाल से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
8: नेपाल में आपने राहत और बचाव का महाअभियान देखा, अब आपको दिखाते हैं समंदर में डूबते नाव से कैसे बचे सभी लोगों की जान। आपने समंदर में होने वाले कई रेस्क्यू ऑपरेशंस देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो उन सबसे अलग है। दरअसल गुजरात में मछुआरे नवाबंदर तट के पास समंदर में मछली पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन उनकी बोट अचानक लहरों के बीच फंस गई। नाव में धीरे धीरे पानी भरने लगा और सबकी जान पर बन गई। फिर कैसे बची नाव पे सवार सभी लोगों की जान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
13: ये है समंदर में जिंदगी बचाने की जंग। चारों तरफ अथाह समंदर, दूर दूर तक जमीन का कोई निशान नहीं और लहरों के बीच फंसी है नाव। नाव पर सवार लोगों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, सबको खतरे का एहसास हो चुका है। नाव में लगातार पानी भर रहा है। देखते ही देखते हालात इतने भयावह हो गए कि नाव का समंदर में डूबना तय नजर आने लगा। बोट पर सवार लोग समझ गए कि अब वक्त बहुत कम है, उनके सामने जिंदगी बचाने की चुनौती है। ऐसे में नाव पर मौजूद सभी लोगों ने एक एक करके समंदर में छलांग लगा दी। तस्वीरें गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना क्षेत्र में नवाबंदर तट के पास की है। ये नाव समंदर में मछली पकड़ने गई थी, लेकिन लहरों के बीच फंस गई। नाव के डूबने का पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नाव में कुल 5 मछुआरे मौजूद थे। नाव को डूबता देखकर आसपास मौजूद दूसरी नावों के मछुआरे तुरंत मदद के लिए पहुंचे। हादसे के दौरान मछुआरों को बचाने की पूरी कोशिश कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दूसरी नाव से रस्सियां फेंककर मछुआरों को समंदर से बाहर निकाला जा रहा है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त आसपास दूसरी नावें मौजूद थी, जिसके चलते सभी मछुआरों की जान बच गई और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना में नाव मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। फिलहाल 5 मछुआरे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं डूबी हुई नाव को लेकर आगे की कार्रवाई और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गिर सोमनाथ से दिलीप भाई पुंज भाई मोदी, गुड न्यूज टुडे।
8: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे।
14: पहले मेकअप, फिर पढ़ाई। स्कूल जाने की तैयारी करती इस नन्ही बच्ची का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बालों में गजरा सजाया गया, फिर चेहरे पर क्रीम लगाकर बड़े प्यार से उसका मेकअप किया जा रहा है। मेकअप के दौरान बच्ची का शर्माना और क्यूट एक्सप्रेशन देखने लायक है। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल जाने से पहले मैडम को भी थोड़ा सजने संवरने का शौक है। बच्ची का ये प्यारा अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है और यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं। आग की तेज लपटें और उसके बीच ट्रेनिंग करते ये जवान, ये जज्बा वाकई सलाम के काबिल है। देश की सेवा का जुनून हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी हौसला नहीं तोड़ सकते। वीडियो में जवान आग के बीच से गुजरते और अपने प्रशिक्षण का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये ट्रेनिंग फौज में शामिल होने से पहले जवानों को कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। आग की तपिश के बीच उनका साहस और आत्मविश्वास देखकर हर किसी के मन में देश के जवानों के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। पिंक ड्रेस में तैयार हुई बेटी ने सोचा क्यों न पापा से एक प्यारी सी फोटो क्लिक कराई जाए, लेकिन पापा ने फोटो खींचने की जगह बेटी का कार्टून ही बना डाला। बेटी ने जब अपनी तस्वीर देखी तो उसका क्यूट सा चेहरा उतर गया और नाराज होकर वहां से चली गई। पिता पुत्री के बीच की ये मजेदार नोकझोंक कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और लोग बच्चे के एक्सप्रेशन देखकर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। बॉयज विल बी बॉयज और बच्चों की मस्ती का ये वीडियो इसका एकदम सही उदाहरण है। डस्टबिन का डिब्बा बना खेल का सामान, एक बच्चा पैर से उसे दबाकर दूसरे के मुंह पर मारता है और फिर दूसरा भी उसी अंदाज में जवाब देता है। बारी बारी से दोनों अपनी मस्ती जारी रखते हैं और इस खेल में बच्चों की खिलखिलाहट देखने लायक है। बिना किसी खास खिलौने के बच्चों ने अपनी ही दुनिया में नया गेम बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब गुदगुदा रहा है। दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती और इन नन्हे दोस्तों ने ये बात साबित कर दी। दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ और प्यार देखकर लगता है कि दोस्ती का मतलब इन्हें अभी से समझ आ गया है। खिलौनों के साथ खेलना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना और मासूमियत से खुशियां बांटना, वीडियो में बच्चों की यही प्यारी बॉन्डिंग नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग भी मुस्कुरा रहे हैं और बच्चों की मासूम दोस्ती पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: क्या है हल षष्ठी का पर्व? हल षष्ठी के पर्व से श्री बलराम जी का क्या है संबंध, और हल षष्ठी के पर्व का संतान प्राप्ति से क्या संबंध है? क्या है हल षष्ठी के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: क्या है हल षष्ठी का पर्व? हल षष्ठी के पर्व से श्री बलराम जी का क्या है संबंध, और हल षष्ठी के पर्व का संतान प्राप्ति से क्या संबंध है? क्या है हल षष्ठी के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: श्री कृष्ण जन्माष्टमी में 2 दिन शेष, मथुरा वृंदावन में तैयारियां विशेष, 15 मिनट ड्रोन शो का होगा आयोजन, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने के लिए कर रहे हैं जबरदस्त तैयारी, नारी शक्ति भी करेगी कमाल। पुणे समेत महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरिया की धूम, डगड़ू शेठ पेशवाई और बाल गणेश के रूप की भारी डिमांड, बाजारों में विनायक की रौनक। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में आज होंगे बड़े फैसले। नए सीईओ समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम पर लग सकती है मुहर। सर्च कमेटी ने 3 नाम ट्रस्ट को सौंपे।

0: अमरनाथ यात्रा के समापन के बाद हजारों तीर्थयात्रियों ने नवदल तीर्थ में लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से की पूजा अर्चना, भंडारे का भी आयोजन। नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है भारत। पांचवी खेप में करीब 6 टन जरूरी दवाएं लेकर काठमांडू के लिए रवाना हुआ विमान। 11 सदस्यों की बचाव टीम भी साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
0: उम्मीदों भरे पैर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंचवास्तव, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
0: तो शुभ समाचार की शुरुआत श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ होगी। मथुरा समेत देश भर में इसको लेकर विशेष तैयारी भी जारी है। देखिए, शहर शहर सजावट की जा रही है, तो कैसे हैं इंतजाम, कहां होगा स्पेशल ड्रोन शो, ये सब कुछ आगे आपको बताएंगे।
2: तो वहीं जन्माष्टमी से पहले हरियाणा के करनाल का एक कान्हा पार्लर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। यहाँ पर लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कान्हा जी पार्लर के नाम से मशहूर इस जगह में ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल के भोग के साथ विशेष श्रृंगार होता है। यहाँ पर भी आपको लिए चलेंगे।
0: बिल्कुल, वहां लिए चलेंगे। और साथ ही जन्माष्टमी के साथ गणेश उत्सव की तैयारी भी जारी है। गणेश प्रतिमाओं का पंडालों में भव्य प्रदेश का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। हाल ही में मुंबई के परेड में 2 पंडालों में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं को बड़ी धूमधाम के साथ लगाया गया। इनमें परेलचा महाराजा भी शामिल है। तो गणेश उत्सव के रंग भी आपके सामने होंगे।
2: वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। ऐसे में इस 15 सदस्यीय टीम में वैभव सूर्यवंशी की भी एंट्री हुई। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे और कौन कौन है टीम में बताएंगे आगे।
0: बिल्कुल, बात क्रिकेट की भी होगी और इसके अलावा आपको थाईलैंड लिए चलेंगे, जहां आजकल एक बहुत पुरानी परंपरा जोर पकड़ रही है। एक अनूठे अनुष्ठान में लोगों का विश्वास तेजी से बढ़ा है। इस मान्यता के तहत यहाँ लोग चेहरे पर सोने की परत चढ़वाते हैं। आखिर क्या है ये परंपरा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे के 9 गुड न्यूज का।
2: मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। दुल्हन की तरह मथुरा नगरी सज चुकी है। शहर के लगभग 25 प्रमुख चौराहों और तिराहों की विशेष साज सज्जा हो रही है। नगर निगम की टीम चौराहों को आकर्षक बनाने में जुटी हुई है। इस बार उत्सव को और भी खास बनाने की तैयारी है। लगभग 500 ड्रोन के साथ विशेष ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है।
0: पुणे में गणेश उत्सव की तैयारियां आखिरी दौर में पहुंच गई हैं। गणपति कारखानों में दिन रात बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कई बप्पा की आंखों में जान डाली जा रही है, तो कई शानदार नक्काशी और रंग रोगन का कार्य भी जारी है। मूर्तिकार छोटी से लेकर 12 फीट तक के गणपति मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। पुणे के कारखानों में डगरू शेठ पेशवाई और बाल गणेश जैसे कई रूपों में बप्पा की मूर्ति तैयार हो रही है।
2: मौसम विभाग द्वारा दिल्ली NCR में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान बिजली भी कड़क सकती है।
0: उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। रुद्रप्रयाग जनपद में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में सोनप्रयाग में एहतियातन यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील भी कर दी है।
2: भारतीय वायुसेना की शक्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है। एयरवाइस मार्शल बनने वाली पहली महिला नॉन मेडिकल अफसर बनी है और 30 साल से ज्यादा की सेवा के बाद 1 सितंबर को उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली। उन्हें एयर स्टाफ की असिस्टेंट चीफ नियुक्त किया गया।
0: नेपाल में बाढ़ भूस्खलन के बीच राहत और बचाव अभियान में अब तक करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। नेपाल में रसुवा फ्लैश फ्लड पीड़ितों की पहचान के लिए भारत की 19 सदस्य फॉरेंसिक टीम ने मोर्चा संभाला है और डीएनए सैंपल की जांच भी शुरू कर दी है। लापता लोगों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। पुलिस अस्पताल में जांच प्रक्रिया जारी है। नेपाल सरकार ने इस आपदा को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे का चेतावनी संकेत बताया है।
2: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर से टीम में जगह मिली। श्रेयस अय्यर को ही कप्तान बनाया गया, जबकि संजू सैमसन और ईशान किशन विकेटकीपर के रूप में टीम में शामिल हुए हैं। सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। इस सीरीज के सभी मुकाबले नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे।
0: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान का दूसरा गाना रंगियारा रिलीज हो गया है। ये गाना सैफ अली खान के किरदार का इंट्रोडक्शन सॉन्ग है। प्रीतम ने इसे कंपोज किया है, जबकि शान, सुखविंदर सिंह और रोमी ने इसे अपनी आवाज दी है। प्रियदर्शन के निर्देशन बने इस फिल्म में अक्षय और सैफ 18 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। बोमन ईरानी, सयामी खेर, श्रिया पिंगलांकर और शारिब हाशमी भी अहम भूमिकाओं में इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। हैवान 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
2: अल सलवाडोर में अनोखा फायरबॉल फेस्टिवल हुआ। लोग आग से भरी गेंद एक दूसरे पर फेंकते नजर आए। फेस्टिवल में लोग चेहरा ढककर आग के गोले उछालते दिखे हैं। देखने वालों की भीड़ चीखती और रोमांचित नजर आई है। दरअसल निजापा में यह खतरनाक खेल 104 साल पुराना है। लोग इसे ज्वालामुखी विस्फोट की याद में मनाते हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर

तो चलिए शुभ समाचार की यहाँ पे शुरुआत करते हैं और शुरुआत कान्हा के जन्मोत्सव के भव्य इंतजाम के साथ होती है। देखिए जन्माष्टमी में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन पूरा देश जन्माष्टमी के रंग में रंग गया है। कहीं बाल गोपाल को सुंदर मुकुट मोरपंख और आभूषणों से सजाया जा रहा है, तो कहीं उनके लिए आकर्षक झूले और पालने भी तैयार किए जा रहे हैं। भक्तों में उत्साह ऐसा है कि हर कोई अपने नंदलाल के स्वागत की तैयारियों में जुटा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा वक्त है लेकिन तैयारियां जोरों शोरों से दिखाई दे रही हैं। ब्रज में रंग निराले हैं, मंदिर सच के तैयार हो गए हैं और बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजाई और सवारी जा रही है और तमाम मंदिर भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं। इन्हीं में एक है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जिसके शिखर से लेकर द्वार तक मनमोहक सजावट देखते ही बन रही है। करनाल में कान्हा जी का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है और वो भी पार्लर में। श्रृंगार करवाने के लिए कान्हा जी की प्रतिमाओं को करनाल के पार्लर में आसपास के लोगों ने भी भेजना शुरू कर दिया है।

0: आया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, तो ब्रज भूमि में रोशन हो उठे मंदिर और गूंजने लगे हैं बधाई गीत। ये उत्साह, ये उमंग और हर्षोल्लास भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव को लेकर है, जिसके लिए न सिर्फ पूरी मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजाई और सवारी जा रही है, बल्कि तमाम मंदिर भी रंग बिरंगी रोशन से जगमगा रहे हैं। इन्हीं में से एक है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जिसके शिखर से लेकर द्वार तक मनमोहक सजावट देखते ही बन रही है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्म उत्सव के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान सज धज कर तैयार है। तमाम जो लाइटिंग है, साज सज्जा है, वो बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ की गई है। 5 दिवसीय जो उत्सव है ना, वो आज शुरू हो गया है। और उसकी बात की जाए तो लीला मंच पे भगवान की जो बाल लीला है, भगवान की जो सारी लीलाएं है, वो की जा रही है।
0: बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को करीब 200 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। नवनिर्मित रजत कमल में विराजमान ठाकुर गोपाल जी का जन्म अभिषेक विशेष आकर्षण रहेगा। 4 सितंबर को सुबह 5:30 बजे मंगला आरती, सुबह 8 बजे पंचामृत अभिषेक और रात 10 बजे जन्म महाभिषेक होगा। रात 12 बजे भगवान के प्राकट्य दर्शन और आरती के बाद कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय से अभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद रजत कमल में ठाकुर जी का जन्म महाभिषेक होगा। वहीं श्रृंगार आरती रात 12:45 से लेकर 12:50 तक और शयन आरती रात 1:55 से लेकर 2 बजे तक होगी, जबकि श्रद्धालुओं का प्रवेश रात 1:30 बजे तक रहेगा।
1: सुबह से ही ढोल नगाड़े के साथ मंगला आरती होगी और भगवान कालहंस बंगले में विराज कर सुबह से शाम तक दर्शन देंगे। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो 5 दिवसीय उत्सव में ठाकुर जी की जो आराधना है, जो सेवा है, जो पूजा है और शाम के समय में भगवान का अभिषेक है, ये सारी चीजें होंगी। और वहीं अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है। विशेष प्रसाद यहाँ पंजीरी का, मेवा के लड्डू का, गोला की बर्फी का जो प्रसाद है, पंचामृत है, वो यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अर्पण किया जाएगा, दिया जाएगा भगवान का प्रसाद।
0: हर साल की तरह इस साल भी ब्रजभूमि में जन्मोत्सव के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित दर्शन का मौका मिले, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी और CCTV से निगरानी रहेगी। इसके अलावा ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है। जन्माष्टमी से जुड़ी इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए आला अफसरों ने ग्राउंड पर उतरकर तैयारियों का जायजा भी लिया।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्म भूमि में 5253वां जन्म दिवस बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया

0: जाएगा। इसके लिए पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर में बांट करके मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव सभी में खूब सजावट की जा रही है। यात्रियों को भीड़ से बचाने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से दर्शन कराया जाएगा। सभी मंदिरों के जो प्रबंधक हैं, जो पुजारी गण हैं, जो गोस्वामी बंधु हैं, सबके साथ बैठक करके किसी प्रकार से दर्शनार्थियों को और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन करने में असुविधा ना हो।
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे ब्रज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग मिलकर मनाते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो वहीं हरियाणा के करनाल में कान्हा पार्लर बहुत सुर्खियों में है। यहां जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। कान्हा जी पार्लर के नाम से मशहूर इस जगह में ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल का भोग के साथ विशेष श्रृंगार होता है, और केवल जन्माष्टमी ही नहीं बल्कि कई दूसरे त्योहारों के समय श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए कई दिनों पहले से लंबी वेटिंग भी चलती है।

0: नन्हे से कान्हा की मुस्कान प्यारी, मोर पंख सजे हाथों में बंसी भी प्यारी, जन्माष्टमी के लिए सजे लड्डू गोपाल की मूर्ति लगे सबसे न्यारी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर घर और मंदिरों को सजाने के अलावा राधा कृष्ण को नई पोशाक पहनाकर झांकियों का भी आयोजन होगा। ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर झूले, मुकुट, मोर पंख और वस्त्र भी लोग खरीद रहे हैं। तो वहीं लोगों के आराध्य कान्हा का भी पार्लर में श्रृंगार हो रहा है। जी हाँ, जिस तरह से विवाह और दूसरे समारोह में जाने के लिए लोग ब्यूटी पार्लर में सिंगार करवाते हैं, वैसे ही अब कान्हा जी को भी पार्लर में सजाने सवारने का काम काफी प्रचलित हो रहा है। जन्माष्टमी से पहले करनाल के कलंदरी गेट में कान्हा जी का पार्लर खुला है, जहां ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है और उनको सजाने सवारने वाले है संजीव सोनी।
1: थोड़ा ठाकुर जी, देखो सभी लोग अपने अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लेकर आते हैं और उसमें देखो हर तरह से जैसे उनके भाव होते हैं उस तरह से हमें बताते हैं कि श्रृंगार इस तरह से करना है ठाकुर जी का। और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है कि जैसे सबके ठाकुर जी, देखो आजकल थोड़ा श्रृंगार में समय लगता है, तो हमारे यहाँ ठाकुर जी की भोग सेवा भी पूरी तरह से होती है। हम सभी ठाकुर जी को, क्योंकि सेवा के ठाकुर जी, तो हमें भोग लगाना पड़ता है।
0: संजीव सोनी जो अपने इस पार्लर में लड्डू गोपाल की मूर्तियों का बेहद खूबसूरत और सलोना श्रृंगार करते हैं, वो बताते हैं कि जीवन में एक ऐसा भी समय था जब वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, मगर एक घटना ने उनको कान्हा जी की भक्ति में ही लीन करवाने के लिए मानो प्रेरित किया।
1: एक टाइम ऐसा भी था कि मैं मंदिर नहीं जाता था और अपने घर में तुलसी तक नहीं लगने देता था। वो ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी, हमारे घर के पास ही मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हुई और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने मुझे वहाँ सेवा और पूजा में जाने के लिए मनाया, तो मैं गया वहाँ पे। उस दिन मैंने अपने हाथ से ठाकुर जी का अभिषेक श्रृंगार किया और उसके बाद से ही ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपने साथ ही, मतलब अपने कार्य में सहभागी बनाया। मतलब मुझे कोई भी कार्य, मंदिर की सेवा मिल जाती है, जन्माष्टमी की शोभा यात्रा की, शिवरात्रि की शोभा यात्रा में कोई ना कोई छोटी मोटी सेवा या बड़ी सेवा कोई वो दे देते हैं। तो बस तभी से वो करते करते श्रृंगार की सेवा फिर ठाकुर जी ने तभी मेरा शुरू कराया।
0: पिछले कई साल से संजीव सोनी की कृष्ण भक्ति के माध्यम से साज सज्जा कला इतनी लोकप्रिय हो गई है कि आज हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब समेत दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु अपने अपने लड्डू गोपाल का संजीव सोनी के इस पार्लर से श्रृंगार कराना पसंद कर रहे हैं।
2: पूरी फैमिली इनके पास ही आती है, तो जो भी श्रृंगार का मटेरियल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, हर एक क्वालिटी वाइज होते हैं। जो भी हम लोग जैसे जन्माष्टमी के लिए आते हैं तो ड्रेसेस वगैरह भी डिफरेंट होती है, यूनिक, सब कुछ यूनिक होता है। बस
3: मैं इनसे लगभग 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ आने के बाद कहीं और जाने का मन ही नहीं हुआ, और जो इनकी कलाकारी है वो आप देख ही रहे हो, बहुत अति सुंदर और बिल्कुल एक समझ लो कि भावना से जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात ही है। और यहाँ जो भी चीज़ है मतलब एकदम प्योरिटी और स्वच्छता की गारंटी है।
0: इस पार्लर में जो भी आस्थावान अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लाता है उसे 15 से 20 दिन पहले एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है ताकि पूरे सेवा भाव और नियमों के अनुसार ही कान्हा जी का मेकअप किया जा सके। वैसे कहते भी हैं जहां कान्हा विराजते हैं वहां खुशियां खुद ही चली आती हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं के लिए भी उनके लड्डू गोपाल जी का इस पार्लर में आना, उनका भोग के साथ श्रृंगार होना ही शुभता का ही संकेत है। करनाल से कमलदीप संधु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: पूरे देश में इन दिनों कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। आपको मथुरा के बाजारों की एक झलक दिखाते हैं, यहाँ की हर गली और बाजार में एक जैसा नजारा है। दुकानें लड्डू गोपाल के सुंदर पोशाक, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और झूलों से भरी पड़ी है और कृष्ण भक्त बड़ी उत्साह के साथ अपने कान्हा के श्रृंगार की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं।

0: ब्रजधाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की उमंग हर ओर दिखाई दे रही है और मथुरा के तो कहने ही क्या। बाजार सज गए हैं, मुरलीधर की पोशाक और श्रृंगार के सामान से पूरा बाजार पटा हुआ है। यहाँ गिरधारी के सुंदर कपड़े, मुकुट, मोर पंख, बांसुरी और झूलों की भरमार है। होली गेट से द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के बाजार तक हर दुकान को जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष तौर पर सजाया गया है।
1: इस तरह के गोपाल जी बाजार में सज के तैयार हैं और ये पोशाक का बाजार है। यहाँ पोशाक भी बिक रही है, ठाकुर जी के झूला भी बिक रहे हैं, गोपाल जी भी बिक रहे हैं, तो सभी चीज इस दुकान पर बिक रही है। और जो द्वारकाधीश मंदिर के पास का बाजार है, सभी श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान की पोशाक अपने ठाकुर जी के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि ब्रज में एक बड़ा ठाकुर जी का जो जन्म है ना, वो बड़ा अद्भुत और अनोखे तरीके से मनाया जाता है। ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाई जाएगी, नए उनके झूले होंगे, नए वस्त्र होंगे, नई बांसुरी होगी, नई मुकुट होगा।
0: बड़ी तादाद में ग्राहक मथुरा के बाजारों का रुख कर रहे हैं। जाहिर है से दुकानदार खुश हैं और इनका मानना है कि इस साल कारोबार पहले की तुलना में बेहतर हो रहा है। दावा ये भी है कि इनके पास लड्डू गोपाल के श्रृंगार से जुड़े सामान का जबरदस्त कलेक्शन है जो कृष्ण भक्तों को लुभा रहा है।
2: इस बार सब जो भी हैंडक्राफ्ट वर्क है, थ्री पीस में, ये सब स्टोन बूटी वाला सब बुटीक पीस इस बार ट्रेंड में बहुत काफी है। कस्टमर की भी काफी डिमांड है। रेगुलर पैटर्न पहना पहना के तो कस्टमर परेशान हो चुका है, तो उन्हीं की डिमांड देखते हुए हम ये सुंदर सुंदर कली के पैटर्न में और यूनिक यूनिक इंग्लिश कलर जो है, रेड, पीला सब पहना चुके हैं। इसीलिए हम कस्टमर्स के लिए इस बार नए से नई वैरायटी लाने की हमने कोशिश की है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं हमारे स्टॉक में वेरिएशन, कितना सुंदर सुंदर कलर, कितना सुंदर सुंदर पगड़ी के साथ ये आपको अवेलेबल रहेगा। ये देखिए, ये तो स्पेशली जन्माष्टमी के लिए हमने डिजाइन करवाया है विद लड्डू गोपाला विद मैचिंग पगड़ी।
0: दिल्ली, भरतपुर और आगरा जैसी आसपास की जगहों से ग्राहक यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने आराध्य ठाकुर जी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। कोई अपने नन्हे काना के लिए मोर पंख थीम वाली ड्रेस ढूंढ रहा है, तो कोई फूलों से सजा झूला तलाश रहा है। इस जन्माष्टमी हर कृष्ण भक्त चाहता है कि उसके लड्डू गोपाल सबसे सुंदर दिखें।
3: होली की पूरी फूल तैयारी हो रही है। मथुरा जैसी जन्माष्टमी कहीं नहीं होती,
1: कहीं नहीं होती,
3: नहीं होती, नहीं।
1: एकदम यहाँ सारी पोशाक वोशाक सब
3: जी जी बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे
1: सब मिल जाता है,
3: जो हमारे राजस्थान में भी नहीं है।
1: नहीं है,
3: नहीं है।
1: क्या क्या क्या नाम है आपका?
4: भावना।
1: क्या तैयारी कर रही है
4: भैया? ठाकुर जी की कह रहे हैं जन्माष्टमी की, हम तो आगरा से मथुरा मनाने आए।
1: अच्छा।
4: तो यहाँ की तरह कहीं भी नहीं बनती है।
1: अच्छा।
4: यहाँ की भाई अलग ही वो है मनाने वाली, और यहाँ भगवान जी का जन्म हुआ है, सारी लीलाएं चाहिए भगवान ने, और यहाँ की तो है ही नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी सब कुछ है यहाँ, पोशाक, नेत्र, मालाएं, ठाकुर जी, यहाँ की से कोई, यहाँ की से तैयारी कहीं नहीं है भैया।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर स्थानीय दस्तकारों की भी चांदी है। यहाँ के कारीगर बड़ी ही शिद्दत और मेहनत के साथ बाल गोपाल की पोशाक तैयार कर रहे हैं और कृष्ण जन्मोत्सव में भागीदारी दर्ज करा रहे हैं।
5: जो है मतलब ये कि इस वक्त जो है मतलब तुम्हारे जो है पीले कलर की ज्यादा चल रही है इस वक्त, और इन पोशाकों की बाहर का ऑर्डर भी है हमारे पास में अपने, और जन्म स्थान का भी हमारे पास ऑर्डर है, तो ये चल रही है। और मतलब जो रात दिन मतलब जो कि हमारे कारीगर भी सबरे काम कर रहे हैं, तो उन पोशाकों को पूरा करके जल्दी से जन्माष्टमी के लिए तैयारी करी जा रही है।
1: पूरा जो बाजार है, पूरा बाजार है, बड़ी भीड़ है बाजार में, और तमाम जो लोग हैं भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। और पूरे मथुरा की बात करें तो पूरा मथुरा सज धज के ठाकुर जी के जन्मोत्सव के लिए तैयार है, और पोशाक का बाजार है, चाहे ठाकुर जी के मुकुट श्रृंगार का बाजार हो या और भी किसी चीज का बाजार हो, वहाँ सभी गुलजार हैं, लोग पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण के लाला का जन्मोत्सव मनाने के लिए, नंदलाल का जन्मोत्सव, अजन्मे का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग तैयार हैं। और बड़ी तादाद में ठाकुर जी के वस्त्र, नेत्र, ठाकुर जी का श्रृंगार खरीद कर ले जा रहे हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
6: तो वही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बीच ओडिशा के पुरी में भी अलग रौनक है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश के अलग अलग कोने से भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। सुबह के वक्त आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नेपाल में मिशन जिंदगी।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: क्या है हल षष्ठी का पर्व? हल षष्ठी के पर्व से श्री बलराम जी का क्या है संबंध, और हल षष्ठी के पर्व का संतान प्राप्ति से क्या संबंध है? क्या है हल षष्ठी के पर्व की महिमा? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: श्री कृष्ण जन्माष्टमी में दो दिन शेष, मथुरा वृंदावन में तैयारियां विशेष, 15 मिनट ड्रोन शो का होगा आयोजन, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने के लिए कर रहे हैं जबरदस्त तैयारी, नारी शक्ति भी करेगी कमाल। पुणे समेत महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरिया की धूम, डगरू शेठ पेशवाई और बाल गणेश के रूप की भारी डिमांड, बाजारों में विनायक की रौनक। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में आज होंगे बड़े फैसले, नए सीईओ समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम पर लग सकती है मुहर, सर्च कमेटी ने 3 नाम ट्रस्ट को सौंपे। अमरनाथ यात्रा के समापन के बाद हजारों तीर्थयात्रियों ने नवदल तीर्थ में लगाई आस्था की डुबकी, विधि विधान से की पूजा अर्चना, भंडारे का भी आयोजन। नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है भारत, 5वीं खेप में करीब 6 टन जरूरी दवाएं लेकर काठमांडू के लिए रवाना हुआ विमान, 11 सदस्यों की बचाव टीम साथ।
7: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शुभ समाचार में। चलिए अब बात कर लेते हैं नेपाल की। कुदरत की बेरुखी ने नेपाल के तमाम इलाकों की सूरत बदल दी है। फ्लैश फ्लड ने नेपाल के तमाम रिहायशी इलाके जिनको बर्बाद कर दिया है। अब हर जगह मलबा फैला दिखता है और इस मलबे में लोग जिंदगी के निशान ढूंढ रहे हैं। जिनके अपने इस बाढ़ में लापता हो गए उन्हें तलाशने की कोशिशें हैं। इस बाढ़ से नेपाल के तमाम इलाकों का संपर्क टूट गया। इस फ्लैश फ्लड ने विकास की कई परियोजनाओं पर भी असर डाला। नेपाल का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया है। बाढ़ की वजह से एक सुरंग में काम कर रहे तमाम कर्मचारी अंदर फंस गए। इन लोगों को निकालने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत और चीन भी नेपाल की मदद कर रहा है। तो तमाम तस्वीरें इसके बाद निकलकर सामने आ रही हैं। अभी भी नेपाल में कई लोग फंसे हुए हैं और उनको अभी भी तलाशा जा रहा है। 4000 से भी ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कई भारतीयों को अभी तक बचाया जा चुका है।
1: लेकिन नेपाल में आई आपदा के बीच भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है। भारत ने अपना 5वां विमान भी नेपाल भेज दिया है। ये जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी है। इस रेस्क्यू टीम के 11 सदस्य शामिल हैं। इस मदद के तहत विमान में स्पेशल इक्विपमेंट और 5.5 टन जरूरी दवाएं भी भेजी गई हैं। ये उपकरण और मेडिसिन प्रभावितों की मदद में काम आएगी। इस आपदा में कई लोग घायल हुए हैं और कई लोग लापता भी हैं जिन्हें लगातार ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन भारत की तरफ से नेपाल के लिए हर संभव मदद की जा रही है।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बीच मदद का हाथ बढ़ाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद नेपाल के त्रिशूली पहुंच गए हैं। सोनू सूद राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंचे और इनमें जरूरतमंदों के लिए खाने पीने का सामान और कंबल शामिल है। सोनू सूद ने कहा कि उनका मकसद मदद पहुंचाना, साथ ही मुश्किल में फंसे लोगों की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने में मदद करना है।
2: मुझे लगता है कि ये जब आप पूरा मंजर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस लेवल का इम्पैक्ट आया होगा, किस तरह उन लोगों को, जब घर नहीं बचे तो आप सोचिए कि लोगों के क्या हाल हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को आगे आना चाहिए। दुनिया भर से जो भी लोग जहां पर भी हैं आगे आइए और प्लीज मदद के लिए, इन लोगों के लिए खड़ा होना बड़ा जरूरी है ताकि हम नेपाल को वापस उसके कदमों पे खड़ा कर पाए।
1: देखिए, बारिश केवल दुश्वारियां लेकर ही नहीं आई है बल्कि देश की सूखी पहाड़ियों में नई जिंदगी लेकर भी आई है। बारिश के बीच खजुराहो के पास स्थित रने वाटरफॉल इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश के बाद झरने में पानी का बहाव बढ़ गया है और इसका खूबसूरत नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लगातार यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। केन नदी से बने करीब 30 मीटर गहरी घाटी के बीच स्थित ये झरना काफी ज्यादा खास है। चट्टानों के बीच तेज रफ्तार से गिरता पानी इसे काफी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। ये इतना खूबसूरत है कि इसे भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। मानसून के दौरान रने फॉल्स की खूबसूरती अपने चरम पर पहुंच जाती है और ये तस्वीरों से भी साफ देखने को मिलता है। चट्टानों पर गिरता झरने का पानी, आसपास की हरियाली और तेज बहाव पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहा है। ये जगह सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए भी जानी जाती है। अलग अलग रंग और आकार की चट्टाने यहाँ आने वाले पर्यटकों को खासा आकर्षित करती है।
0: जम्मू कश्मीर की वादियों में बसी माचिल घाटी सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। एलओसी के करीब बसे इस इलाके में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा होने से स्थानीय लोगों की उम्मीदें भी बड़ी हैं। उम्मीद है कि पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से कारोबार को रफ्तार मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। तो कुदरत की खूबसूरती के बीच माचिल अब तरक्की की नई राह पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आखिर क्या है इसकी खासियत, देखिए।
3: जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कुदरत की गोद में बसा माचिल सेक्टर, इसे देखकर लगता है मानो कुदरत ने अपने हाथों से सजाया। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पर छाई हरियाली, कल कल बहते झरने और दूर तक फैले खूबसूरत वादी। माचिल की यही खूबसूरती अब सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। एलओसी के करीब बसा ये इलाका बॉर्डर टूरिज्म के नए ठिकाने के तौर पर पहचाना जा रहा है। कभी जहां पहुंचना आसान नहीं था, अब वहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर बना है नाजे हिंद। ये स्मृति और पर्यटन स्थल माछिल की खूबसूरती के साथ साथ सीमा की हिफाजत करने वाले जवानों की वीरता की कहानी भी बताता है। यहाँ सेना के जवानों के स्टैचू, हथियार और सैन्य साजो सामान भी प्रदर्शित किए गए हैं। यानी नाजे हिंद में पर्यटकों को कुदरत के साथ देश की सुरक्षा और जवानों के शौर्य की झलक भी मिलती है। माछिल की पहचान का एक और खास हिस्सा है यहाँ लहराता विशाल तिरंगा। करीब 140 फीट ऊंचा ये ध्वज बर्फीले पहाड़ों के बीच दूर से ही नजर आता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, होम स्टे, स्थानीय कारोबार और परिवहन से जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ेगी। यानी माछिल की इन वादियों में अब कुदरत के साथ साथ विकास की नई तस्वीर भी आकार ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मानना है कि आज के युवाओं को आध्यात्मिक संस्कृति की जड़ों से जोड़ना जरूरी है ताकि वो बेहतर जिंदगी जी सके। इसी उद्देश्य के साथ इस ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है। 3 दिन का ये विशेष आयोजन किया गया जेनजीज के लिए कि ताकि उनको आत्मशुद्धि कैंप यहाँ पर कराया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा शामिल हुए।
4: माथे के सामने से सर के ऊपर लेना है, अब धीरे धीरे इस जुड़े हुए हाथों को ऊपर लेते जाना है, ऊपर लेते जाना है।
5: देखिए, उद्देश्य तो गुरु जी का यही है। आजकल के जितने भी यूथ है सब ओवर थिंकिंग है, आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, अपना लक्ष्य क्या है भूल रहे, अपना एक्चुअली संस्कृति क्या है भूल रहे। तो वो याद दिलाने के लिए और बाकी चीज जिसलिए अपन यहाँ धरती पे आए हैं वो कार्य करने के लिए ये उद्देश्य है कि माइंड स्टेबिलिटी मेंटेन करे, डिटॉक्स होए और काम अच्छे से करे, यही उद्देश्य था कि ऊर्जा का।
6: सारे हमारे भाई बहन यहाँ पे प्रतिभागी थे, हमारा यही सबसे कहना है कि ये बहुत अच्छा है। उसमें 3 दिन का ऊर्जा संचय शिविर में इंसान खुद को भूल जाता है कि हम क्या थे। वर्तमान में जीना गुरुदेव सिखाते हैं, तो हम सभी बच्चों को बहुत लाभदायक है, हम सभी को भाग लेना चाहिए, मेरा यही कहना है।
7: बोलूंगी कि मेरा अनुभव भी आज का बहुत अच्छा रहा है, मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस थी।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कृष्णोत्सव के बाद गणेश उत्सव की शुरुआत होगी, जिसके रंग अभी से शहर शहर दिखने लगे हैं। खासकर गणेश उत्सव की रौनक महाराष्ट्र में बिखरना तो अभी से शुरू हो गई है। भले ही अभी उत्सव का आरंभ कुछ दिन बाद है, लेकिन इस दौरान गणेश प्रतिमाओं का पंडालों में भव्य प्रवेश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हाल ही में मुंबई के परेल में 2 पंडालों में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं को बड़े ही धूमधाम के साथ लाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले हैं अनोखे संतुलन वाले परेलचा महाराजा, तो दूसरे है परेलचा राजा। वहीं पुणे में भक्तों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बात अगर बाजारों की करें तो बाजारों में भी रौनक जो है वो साफ देखने को मिल रही है। नागपुर में भी बाजार जो है वो अभी से सज चुके हैं। भव्य देवी गणपति बप्पा की प्रतिमा बाजार की रौनक बढ़ा रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस भव्यता के साथ मुंबई में भगवान गणेश के दोनों ही रूपों को आस्था की बयार के बीच बड़े ही उल्लास और उत्साह से पंडालों में लाया गया। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं हम किस तरीके से जो बाजार है वहां पर गणपति बप्पा की जो धूम है, जो रौनक है वो अभी से देखने को मिल रही है। कृष्णोत्सव है, लेकिन उसके साथ ही मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी जो है अभी से देखने को मिल रही है। बप्पा की जो प्रतिमाएं हैं उन्होंने आकार लेना शुरू कर दिया है। अब इंतजार है तो बस गणेश उत्सव का।
8: आ गए राजा धीराजा, छा गए परेलचा राजा और महाराजा। गणेश उत्सव के लिए मुंबई में जहां बप्पा की भव्य प्रतिमाओं को पंडाल मिलाने का सिलसिला चल रहा है, वहीं हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज के साथ अपने आराध्य को पंडाल तक लाने के ये अनोखे पल हर आस्थावान को ऊर्जा और जोश से भर दे रहे हैं। इस बीच बैलेंसिंग राजा के नाम से मशहूर परेल के महाराजा की 35 डिग्री पर संतुलित ये खूबसूरत और भव्य प्रतिमा खूब चर्चा में है, जिसकी ऊंचाई 21 फीट है। लेकिन इस बार गणपति बप्पा के अलावा नारद मुनि की भी बैलेंसिंग मूर्ति लगाई गई है, जिन्हें मूर्तिकार अरुण जी दत्ते ने आकार दिया है। परेल के महाराजा की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में भक्त सड़कों पर नजर आ रहे थे। हर कोई उत्साह और खुशी से सराबोर, बाकायदा नाचते झूमते गाते बजाते अपने महाराजा को पंडाल लेकर पहुंचा।
9: इस साल की आपको बात करें तो गणपति जी सिर्फ एक लेवल पर बैलेंस में थे, लेकिन इस बार देखिए दो दो बैलेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। पहले गणपति महाराज की खूबसूरती की आपको बात बताएं तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये मंडल मनाने वाला है, यानी कि परेल के महाराजा मनाने वाले हैं।
8: जहां परेलचा महाराजा के अपने पंडाल में भव्य आगमन के साथ अब गणेशोत्सव के शुरू होने का इंतजार है, तो वहीं इस बार परेलचा महाराजा पंडाल ने अपने 83वें सफल साल में दो दो प्रतिमाओं को बैलेंसिंग रूप में दर्शाकर श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया।
10: पिछले साल जो महाराजा था 2023 और 2024 और 2025 तो महाराजा युद्ध के लिए निकला था, जो अपने दानव है उनका वध करने के लिए। तो जो वध करने के बाद जो सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रेशन करने के लिए देवताओं के वो सेलिब्रेशन देवताओं में चालू है। वो सेलिब्रेशन के लिए नारद जी है, वो खुद अपने कंधे पे बप्पा को बप्पा की सवारी लेके वो देव देवताओं में वो सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये साल अब हमने दिखाया है, जो कि डबल बैलेंसिंग में है।
8: साल 1943 से विघ्नहर्ता गजानन महाराज हर बार यहाँ नए नए रूप और थीम में भक्तों को दर्शन देते आ रहे हैं, तो इस बार एक नहीं बल्कि दो दो बैलेंस के साथ यहाँ का गणेशोत्सव सुर्खियों में है। कुछ ऐसी ही आस्था, जोश और उत्साह के रंग बिखरे परेलचा राजा के पंडाल आगमन के दौरान भी। भले ही गणेशोत्सव आरंभ होने में कुछ दिन है, लेकिन पर्व का उत्साह ये तस्वीरें साफ बयां कर दे रही है। फिलहाल तो मुंबई समेत पूरे ही महाराष्ट्र में बप्पा के स्वागत में हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया का जयकार है। यकीनन अपने गजानन के प्रति आस्थावानों की ऐसी दीवानगी गणेशोत्सव के दौरान पूरे रंग में दिखने वाली है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: शहर शहर बप्पा के शानदार पूजा पंडाल आकार ले रहे हैं और इन पंडालों में बप्पा का आगमन भी शुरू हो चुका है। खासकर महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर एक अलग ही उत्साह लोगों में अभी से देखने को मिल रहा है। मुंबई के अलावा नागपुर और पुणे में भी बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव को लेकर तैयारी चल रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
8: आने वाले हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश, जिनके स्वागत के लिए कहीं आकार ले रहा है विशाल पंडाल, तो कहीं सजाई जा रही हैं मूर्तियां, और कहीं बाप्पा के स्वागत में बज रहे हैं ढोल नगाड़े। ये भव्य तैयारी उस पर्व को लेकर है जिसकी शुरुआत 14 तारीख से होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही गणेश चतुर्थी को लेकर महाराष्ट्र के शहरों में रौनक बिखरने लगी है, जिसकी एक तस्वीर नागपुर से सामने आई। यहां भगवान गणेश के लिए बद्रीनाथ मंदिर की थीम पर विशाल पंडाल बनाया जा रहा है।
11: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नागपुर में इस समय हम हैं, गणपति बाप्पा के उत्सव की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। सार्वजनिक पंडाल और घरों में 14 सितंबर को गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, उससे पहले यहाँ पर तैयारियां जो है वो हम देख सकते हैं। नागपुर में सार्वजनिक जो पंडाल है जहाँ पे गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, वहां अलग अलग प्रतिकृतियां बनाने का काम इस समय चल रहा है, अंतिम चरण में काम है। इस समय हम एक नागपुर के सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल पर है, जहां बद्रीनाथ धाम मंदिर की जो प्रतिकृति है जो बनाई जाने वाली है उसकी तैयारियां हम यहां देख सकते हैं।
8: इस गणेश पंडाल को नागपुर के जाने माने संती सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की ओर से तैयार कराया जा रहा है। ये मंडल अपने भव्य और शानदार पूजा पंडाल के लिए मशहूर है। इस बार इस मंडल ने पंडाल के लिए बद्रीनाथ मंदिर की थीम चुनी है, ताकि जो लोग देवभूमि उत्तराखंड नहीं जा सकते वो यहाँ आकर बप्पा के साथ मंदिर को देख पाए।
12: हमारा 3 महीने से काम चल रहा है गोडाउन पर, और यहाँ पे साइट पे हमारा 1 महीने से काम चालू हो गया, और ये सब हमारे प्रोडक्ट फाइबर प्रोडक्ट होते हैं, आयरन होता है, बॉटम्स होता है, सब मिक्स मटेरियल में काम होता है।
13: और हमारा मंडल बहुत पुराना है, जैसा ये 69वां साल है हमारा, और इस समय हमारा यही यानी प्रोविजन है कि जैसा लोगों को जो उत्तराखंड में नहीं जा सकते चार धाम में, वो यहाँ पे उसी टाइप का एक फील यहाँ पे ले सके, इस टाइप का हमारा विजन है इस बार का।
8: गणेशोत्सव का पर्व शुरू होने में अब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। ऐसे में बाप्पा की रंग बिरंगी मूर्तियां सजकर तैयार हैं। लोग ट्रेंड और अपनी जरूरत के हिसाब से मूर्तियां तैयार करा रहे हैं। मूर्ति निर्माण से जुड़े कारखानों में 1 फुट से लेकर करीब 12 फुट तक की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। इन दिनों मूर्तिकारों के हाथों की कारीगरी हर मूर्ति को एक अलग पहचान दे रही है।
14: इस साल भी हमेशा ऐसा प्रतिसाद ही है, लेकिन इस साल कलर जो स्पेशल कलर है, डेपरे वाला गणेश मूर्ति को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दगुड़शेठ, लालबाग राजा, बाल गणेश, चिंतामणि, ये गणपति को ज्यादा पसंद करते हैं।
15: हम आज मूर्ति देखने आए हैं, जल्दी आए क्योंकि बहुत टाइप के गणपति देखने को मिलते हैं, नहीं क्या उनके जो रूप है वो है वो सब ने क्या देखने को मिलता है। और आज इस बार हम 33 ईयर से गणपति हमारे घर में बिठा रहे हैं, तो हर बार अलग अलग टाइप का हम डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं। हम इस बार ऐसा महालक्ष्मी देवी या अंबाबाई देवी का डेकोरेशन करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से हमें उस उसके लिए जैसे उस डेकोरेशन को अच्छी लगे ऐसी मूर्ति देखने के लिए हम आइए।
8: खास बात यह है कि पुणे में तैयार होने वाली बाप्पा की ये मूर्तियां सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेशों में भी इनकी काफी डिमांड है। लोग महीनों पहले मूर्ति के लिए ऑर्डर दे देते हैं ताकि वक्त पर उन्हें मूर्ति के लिए ज्यादा भटकना ना पड़े। नागपुर से योगेश पांडे और पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बात कर लेते हैं तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय की, जो एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार वो सलेम जिले में मेटोर बांध के गेट खोलने के मौके पर गांव के लोगों से मिले और विजय को एक बुजुर्ग महिला ने खूब प्यार दिया। विजय ने रिटर्न में महिला की कीमती चश्मा भेंट किया। सीएम के इस अंदाज की तुलना एमजीआर से भी हो रही है। चश्मा पाकर बुजुर्ग महिला का चेहरा खुशी से खिलखिला उठा और उन्होंने फौरन विजय को गले लगा लिया और आशीर्वाद देती दिखाई दी। विजय की इस दरियादिली को देखकर वहां मौजूद हर शख्स गदगद हो गया। अभिनय की दुनिया से राजनीति में आए विजय के इस अंदाज को देखकर लोग सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ कर रहे हैं।
1: तो चलिए एबीसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात फिल्म हनुमान अंश की कर लेते हैं। तो पूजा, आपने हनुमान अंश देख ली?
0: अभी नहीं देखी, बट नाम बहुत हो रहा है,
1: ट्रेंड कर रहा है। और आपको बता दें कि फिल्म हनुमान अंश जो है वो रिकॉर्ड भी छू रही है, बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त ऐसा चमत्कार कर रही है जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना भी की हो। नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित इस भक्ति प्रधान फिल्म ने अब तक 60 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। और देखिए, सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जिस फिल्म की शुरुआत बेहद धीमी थी, अगर आप थिएटर्स गए हो तो 4 से 5 लोग ही थिएटर्स में बैठे हुए आपको मिलते होंगे, तो जो पहले 2 हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी, उसी फिल्म ने तीसरे हफ्ते से ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अब बड़े बड़े कलेक्शंस भी पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। मशहूर फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने भी इस फिल्म को सराहा है, इसकी काफी ज्यादा तारीफ की है और इस फिल्म को बॉलीवुड के लिए एक केस स्टडी भी बताया है। इसके साथ ही इस फिल्म ने यश की फिल्म टॉक्सिक को भी रिकॉर्ड्स के मामले में पीछे छोड़ दिया है। थाईलैंड में आजकल एक बहुत पुरानी परंपरा जोर पकड़ रही है। एक अनूठे अनुष्ठान में लोगों का विश्वास तेजी से बढ़ा है। इस मान्यता के तहत यहाँ लोग चेहरे पर सोने की परत चढ़वाते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
16: ये महज चेहरे पर सोने की परत नहीं, उम्मीद की वो चमक है जो थाईलैंड के इन लोगों में भरोसा जगा रही है कि सब ठीक हो जाएगा। आर्थिक उथल पुथल के बीच जिंदगी वापस पटरी पर लौट आएगी। तस्वीरें थाईलैंड के अयुथय़ा शहर की हैं, या न्यूगोन लान पार्क में एक विशेष मन्नत के साथ श्रद्धालु जुट रहे हैं। ये स्थान धन समृद्धि के आह्वान के लिए ढोल बजाने की अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। इसी मान्यता की वजह से ये श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि इनके चेहरे पर गोल्ड लीफ लगाई जा सके। दरअसल इस पार्क में पौरखे की प्रतिमा स्थापित है। पौरखे को यहाँ खुशहाली चाहने वालों के रक्षक के तौर पर पूजा जाता है। उनके अनुयायी चेहरे पर सोने की पत्तियां चढ़वा रहे हैं ताकि देव की इन पर कृपा हो और सौभाग्य की प्राप्ति हो। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से आंतरिक शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास भी। थाई इकोनॉमी की स्लो ग्रोथ, बढ़ती लागत और घटते उपभोक्ता खर्च के बीच यहाँ के लोगों में इस अनुष्ठान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। यहाँ कई व्यापारी इस प्रथा को मनोबल बढ़ाने और कारोबार में सौभाग्य लाने का माध्यम मानते हैं। जाहिर है आर्थिक कठिनाइयों के दौर में ये लोग मेहनत के साथ साथ सदियों पुरानी परंपरा में आस्था और उम्मीद तलाश रहे हैं, अपने इष्ट से सौभाग्य की कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: वक्त हो गया इंस्टा स्टोरी का, आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाएंगे जो कि अभिनव की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसा रहे हैं। देखिए अल्पना बोझ की फनी इंस्टा स्टोरी।
17: अरे बस कर यार, दो दिन हो गए और कितने दिन तक नहीं बोलेगी मुझसे? मत बोल, कम से कम ये तो बता दे मेरा लैपटॉप कहाँ रखा है, मुझे कुछ जरूरी काम करना है उसमें। इशारा क्या कर रही है, मुंह से बता दे। भगवान ने जबान दे रखी है ना, उसका इस्तेमाल कर ले।
0: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
1: बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: क्या है हल षष्ठी का पर्व? हल षष्ठी के पर्व से श्री बलराम जी का क्या है संबंध, और हल षष्ठी के पर्व का संतान प्राप्ति से क्या संबंध है? क्या है हल षष्ठी के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी में दो दिन शेष, मथुरा वृंदावन में तैयारियां विशेष, 15 मिनट ड्रोन शो का होगा आयोजन, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने के लिए कर रहे हैं जबरदस्त तैयारी, नारी शक्ति भी करेगी कमाल। देश भर में गणेश उत्सव की जोरदार तैयारियां, कर्नाटक में बनाई जा रही इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में आज होंगे बड़े फैसले, नए सीईओ समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम पर लग सकती है मुहर, सर्च कमेटी ने 3 नाम ट्रस्ट को सौंपे। अमरनाथ यात्रा के समापन के बाद हजारों तीर्थयात्रियों ने नवदल तीर्थ में लगाई आस्था की डुबकी, विधि विधान से की पूजा अर्चना, भंडारे का भी आयोजन। नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है भारत, 5वीं खेप में करीब 6 टन जरूरी दवाएं लेकर काठमांडू के लिए रवाना हुआ विमान, 11 सदस्यों की बचाव टीम भी साथ।

आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे हल षष्ठी के पर्व की, जिसको हल छठ भी कहा जाता है। हल षष्ठी के पर्व की मान्यता क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 6:12 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं हल षष्ठी के पर्व की। हल षष्ठी का व्रत और पर्व, इसका मतलब क्या है, ये है क्या। देखिए, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के अग्रज श्री बलराम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, यानी श्री बलराम जी का प्राकट्य उत्सव है। उनकी पूजा से अपूर्व शक्ति और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। हल षष्ठी के दिन संतान की प्राप्ति और कल्याण के लिए माताएं व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से और पूजा को करने से महिलाओं को मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। तो हल षष्ठी मुख्यतः संतान प्राप्ति का, संतान के कल्याण का पर्व है और श्री बलराम जी का जन्मोत्सव है, जिसमें भगवान बलराम की पूजा की जाती है। इस बार हल षष्ठी का व्रत 2 सितंबर को है, जिसका पालन महिलाएं
करेंगी। हल षष्ठी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, करियर के प्रयास सफल होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलेगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, यात्रा हो सकती है, रुके हुए काम पूरे होंगे, भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब जैसा आपको बताया कि हल षष्ठी पर भगवान बलराम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है।

घर में शंख ध्वनि करें और भगवान का नाम लेकर घर में जल का छिड़काव करें, फल और मिठाई का वितरण करें। अगर घर में भगवान बलराम की पूजा की जाएगी तो घर में समृद्धि आएगी और घर के लोगों में आपसी तालमेल बढ़ेगा। यानी हल षष्ठी के दिन भगवान बलराम की पूजा करने से समृद्धि और शक्ति मिलेगी और जिनको जीवन में उच्च पद की कामना है उनको उच्च पद की प्राप्ति होगी भगवान बलराम की पूजा करने से। संतान के लिए महिलाएं हल षष्ठी का पर्व कैसे मनाएंगी वो आगे आपको बताएंगे, साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर।

जी पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, करियर में लापरवाही ना करें, खर्चे बढ़ सकते हैं, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर की समस्या हल होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, विवाह तय हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब संतान के कल्याण के लिए माताएं हल षष्ठी पर कैसे पूजा करेंगी? महिलाओं को प्रातः काल 12 बजे के पहले नहा करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने घर में छत पर या आंगन में मिट्टी का एक छोटा सा तालाब बनाएं। इस तालाब के बीच में एक हर छठ लगा दें। हर छठ को कैसे बनाया जाता है? कुश की घास, महुआ और पलाश वृक्ष की एक शाखा को बांध करके एक पेड़ की तरह हर छठ बना लिया जाता है। हर छठ को तालाब के बीच में लगाएं, इसकी विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद संतान के

लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद चावल और साग सब्जी खा करके व्रत का पारायण करेंगी। इस व्रत में गाय का दूध दही और हल जुते हुए खेत का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। जो अनाज खेत में हल जोतने के बाद पैदा हुआ है वो अनाज नहीं खाते। बिना जोता बोया हुआ अनाज और बिना जोते बोए हुए साग का ही सेवन किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, निर्णय लेने में सावधानी रखें, ऑफिस में विवादों से बचें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएं।

कुंभ राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपका बहुत सारा पैसा फंस गया है तो हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाइए और मन ही मन में प्रार्थना करिए कि आपका फंसा हुआ पैसा निकल आए। अब जान लेते हैं दिनांक 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है।

करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूरवा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

एक बात तुम याद रखना मेरे पागलो, कुछ भी स्थाई है नहीं। एक पल में कब कैसे क्या बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है जिंदगी का। नेपाल से देखो, ना बारिश ना बादल, भयंकर धूप और 20 फुट ऊंची मलबे में घर दब गए, जिंदगियां दब गईं। परिवारों के परिवारों का आता पता नहीं है। जिंदगी कागज की पुड़िया की तरह है, कब ये गीली हो जाए कोई ठिकाना नहीं। जिंदगी पानी के बबूले की तरह है, कब फूट जाए कोई पक्का नहीं। जिंदगी धुआं के फुहार की तरह है, कब बिखर जाए कोई ठिकाना नहीं है। जिंदगी मिट्टी के ढेले की तरह है कि एक पानी की बूंद पड़ी नहीं कि बिखर गया। यहां कुछ भी पक्का नहीं है, इसलिए जो दिन है जो तुम्हें मिले हैं यार, वो मौज में जियो, मुस्कुरा के जियो, लड़के नहीं हंस के जियो। रोते तो सब हैं और रोके क्या जीना। एक बात तुम याद रखना, चाहे तुम रोके जियो या हमारी तरह हंस के, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी चाहे जो हो जाए। उसको तुम मना ना कर पाओगे, उसको तुम ना ना कह पाओगे, जीनी तो पड़ेगी। तो रोने से बेहतर है हंस के जिए। रोना तो है ही है सबको, अपन रोने वाली लाइन में क्यों खड़े हो जब लाखों लोग बुरा कर रहे हो तो हम उनके लाइन में अच्छा करके खड़े हो जाएं। जब लाखों लोग झूठ बोल रहे हो तो हम अकेले ही सही सच बोल करके खड़े हो जाएं। तुम कभी अंदाजा लगाना, हम कभी कभी एयरपोर्ट पर जब जाते हैं, विदेश जाते हैं, बड़े बड़े महंगे पैंट पहनने वाले लोग, प्राडा लुबटिन का चश्मा लगाने वाले लोग, गुच्ची का चश्मा लगाने वाले लोग, 5-5 लाख का चश्मा और 2.5-2.5 लाख के पैंट पहनने वाले लोग हमारे 60 रुपया के कुर्ता की तरफ देखते रहते। इसी को जलाना कहते। बड़े बड़े महंगे जूते पहनने वाले लोग, बाटा के जूता, अन्य अन्य ब्रांड के जूता पहनने वाले लोग, जब लाखों लोग लाइन में खड़े होते हजारों, और हम 250 रुपया की 200 रुपया की लकड़ी की चप्पल पहनकर जाते हैं तो उनके वो लाखों के जूते फीके पड़ जाते हैं, नजर हम पटक जाती। ये उदाहरण देकर हम तुम्हें ये समझाना चाह रहे कि जब लाखों लोग झूठ बोलकर करोड़पति बन गए हो तो तुम सच बनकर के फकीर बन जाना। गलत काम करके जब लाखों लोग अमीर बन जाए तो तुम अच्छा काम करके गरीब जरूर बन जाना, पर अमीर ना बनना। कम से कम तुम्हें संतुष्टि तो रहेगी। तुम मरोगे तो भले ही दुनिया तुमसे ना पूछे, पर तुम्हारा जिगर तो तुमसे पूछेगा कि जिए भी तो जी भर कर जिए। और मेरे पागलो, जिंदगी में कुछ भी स्थाई नहीं है, ये पक्का है। आर्मी की जब परेड होती है उसमें लाइन से खड़ा किया जाता है, तब परेड कराने वाला जो मुखिया होता है
वो खड़ा होता है और इशारे करके कुछ बोलता है, क्रिया करने को कहता है। तो जो सबसे आगे खड़ा होता, उसको जो परेड कराने वाला व्यक्ति होता है, ऑफिसर एकदम पास होता है, जो सबसे आगे खड़ा होता लाइन में, 100 लोग लाइन में लगे हो, जो सबसे आगे होता है वो ऑफिसर के एकदम नजदीक होता है। लेकिन उसी वक्त ऑफिसर कहता है पीछे मुड़, तो जो सबसे आगे खड़ा होता है वो सबसे पीछे हो जाता है, और जो सबसे पीछे होता है वो सबसे आगे हो जाता है। एक इशारा पीछे मुड़, तो जितने भी यहां पीछे बैठे हैं, यहां बैठे हैं, या संसार में तुम पीछे की लाइन में लगे हो, घबराना नहीं, बस इंतजार करो कब तुम्हारा गुरु और कब तुम्हारा परमात्मा कह दे पीछे मुड़। और जिस दिन उसने ये कह दिया पीछे मुड़, देखना तुम आगे हो जाओगे, जमाना पीछे हो जाएगा, और फिर तुम फिल्मी गीत गाओगे, आज मैं ऊपर जमाना नीचे। इंग्लैंड का एक दार्शनिक हुआ, बड़ा ऊंचा आदमी। इंग्लैंड में एक जगह है लेस्टर, लेस्टर के आसपास एक गांव में उसका जन्म हुआ। फकीर था, शादीशुदा था, पर बड़ा प्रसिद्ध था। एक चर्च में उसको बुलाया गया कि तुमको प्रवचन करने, भाषण देने आना है चर्च में। तो प्रवचन देने के लिए जिन्होंने निमंत्रण दिया, उन्होंने कहा कि सुनो, तुम भूलने में बहुत माहिर हो, 2 बजे की कह के 4 बजे आते, 12 बजे की कह के 2 बजे आते, भूलने में बहुत माहिर हो, तो कृपा करो कि कल 4 बजे ही आना, क्योंकि कल बहुत बड़ा भाषण है और चर्च में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पोप भी आ रहे हैं, इसलिए समय पे आ जाना। उसने कहा आप चिंता मत करो, हम समय पे आ जाएं। चर्च वालों ने फिर समझाया कि फिर सुनो, 4 बजे मतलब 4 बजे, 6 ना बजे। उसने कहा नहीं नहीं 4 बजे क्या, मैं 4:15 पे पहुंच जाऊंगा। चर्च वाले चले गए तैयारी करने। दूसरा दिन हुआ, पुराना जमाना था, घोड़े पर चर्च से एक घोड़ा आया, रात को ही रख दिया गया कि आप घोड़े से आए ताकि आप जल्दी आ सकें। वो फकीर उस घोड़े पर बैठा और चर्च की तरफ चला, और ठीक 2:30 बजे निकल भी गया कि लेट ना हो जाए। उन्होंने कहा था पक्के टाइम पे आना। बेचारा गया, चला, उसका मन हुआ कि घोड़ा चल ही रहा है, टाइम है ही है, जरा सिगरेट पी ली जाए, सिगरेट का मजा ले ले। उसने सिगरेट निकाली, लाइटर निकाला, तो बड़ी जोर की सामने से हवा आ रही थी, तो बार बार लाइटर बुझ जाए और सिगरेट जले ना, तो उसने सोचा कि ये तो बड़ा लफड़ा है, क्या किया जाए कि सिगरेट जल जाए। उसने देखा कि इस तरफ से हवा आ रही, पीछे की तरफ हवा नहीं आएगी, तो उसने घोड़ा मोड़ दिया, जिस तरफ से आया था उसी तरफ, और सिगरेट में इतना डूब गया, सिगरेट पीते पीते, कि उसे होश ही नहीं रहा कि घोड़ा मुड़ गया है और इस तरफ नहीं जाना, फिर से मोड़ना है। जिस तरफ मुड़ा था वो उसी तरफ चल पड़ा, घोड़ा लौटकर घर वापस आ गया। इधर 4 बज गए, चर्च वाले लोग भागे भागे घर गए कि हमने कल कहा था कि आप 4 बजे आ जाना। बोले हम तो 4 बजे पहुंच जाते, पर घोड़ा ही उल्टा है, ये कब मुड़ गया, कब इस तरफ आ गया, पता नहीं चला। मेरे पागलो, ये फकीर आज 4 बजे पहुंच जाता टाइम पर, यदि ये सिगरेट में ना फंसता, और सिगरेट में फंस भी गया था, यदि ये घोड़ा ना मोड़ता, और घोड़ा मोड़ भी लिया था तो वापस यदि मोड़ लेता तो 4 बजे चला जाता, लेकिन उसने घोड़ा मोड़ लिया तो वापस ना जा पाया, वापस उल्टा घर आ गया, चर्च ना पहुंच पाया। ऐसी जिंदगी है, जिंदगी में एक मोड़ तुम्हारी मंजिल बदल देती है। यदि तुम वापस घर की तरफ मुड़ना चाहते हो तो वापस घर जाओ, और यदि तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो यहां से बालाजी की तरफ मुड़ जाओ। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इस तरफ मुड़ना है या इस तरफ मुड़ना है। घर वापसी की तरफ मुड़ोगे कुछ ना पाओगे, और तुम हमारे तरफ भी मत मुड़ना,
मुड़ने का मतलब साइड बदलना नहीं होता, मुड़ने का मतलब मन का मुड़ना होता है। तुम भले ही घर चले जाओ पर मन बालाजी के पास हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास लोग आते हैं, हमें बताते हैं कि अब आजकल तो हम जब से घर गए हैं सपने में भी धाम दिखता है और 10-15 दिन से ज्यादा रह नहीं पाते, बार बार खुजली होती है और फिर लगता है कि चलो यार भाई बड़ी देर हो गई है, बड़े दिन हो गए हैं, मंगलवार शनिवार आता है तो फिर याद आती है, चाहे जो हो जाए चलो धाम। इसका मतलब है तुम मुड़ चुके हो, और तुम मुड़ चुके हो मतलब सही जगह मुड़ चुके हो। यदि तुम्हें बालाजी की बार बार याद आती है तो तुम मुड़ चुके हो, और ये याद बनी रहे, दुनिया की याद से तो बेहतर है परमात्मा की याद बनी रहे। अंत में एक बात और सुने तुम्हारे काम की, परमात्मा तब तक चमत्कार नहीं कर सकता जब तक तुम अपना चमत्कार खुद नहीं चाहते। और हम एक बात तुम्हें बहुत दावे के साथ कहना चाह रहे कि छोटे मोटे चमत्कारों से तुम प्रभावित ना हो, मन की बात बता देना, पर्चा बना लेना, पर्चे में नाम आ जाना या पर्चे में बिना बताए बातें आ जाना, ये बहुत छोटी बातें, इनसे तुम प्रभावित ना हो। ये कोई गहरे राज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा गहरा रहस्य नहीं है, क्योंकि जो मन की बातें तुम जानते हो वही हम बता देते हैं, कोई खास बात नहीं है। हम तो तुम्हें जीवन की बात बताने बैठे हैं, मन की बात बताने नहीं बैठे। हम चाहते हैं तुम्हारे जीवन में हमेशा दुख आते ही रहना है। आज हम तुम्हारा पर्चा बना दें, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, कल सिर का दर्द तुम्हारा करेगा, सिर का दर्द ठीक होगा परसों पड़ोसी दर्द करेगा, पड़ोसी का दर्द ठीक होगा लुगाई दर्द करने लगेगी, लुगाई ठीक होगी तो पड़ोसन परेशान करेगी। एक ना एक तुम्हें झंझट बने ही रहना है, एक ना एक तुम्हें दिक्कत बनी रहनी है। तुम हमारे पास आए हो, हम तुम्हें ऐसी चाबी देना चाहते हैं कि तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाएं, ताकि दर्द आते रहें, संकट आते रहें, पर संकट मोचन तुम्हारे बने रहे। भाई संकट तो आते रहना है, किसी ने जब छाता बनाया होगा बारिश से बचने के लिए तो पहले ऐसा छाता बनाया गया था कि एक बारिश में सिर्फ एक छाता काम आएगा, अब वो फट जाता था, ज्यादा तेज बारिश होती थी वो फट जाता था। तो छाता बनाने वालों ने शोध किया, रिसर्च किया, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे कि भाई एक बारिश छाता झेल पाता, आदमी ऐसे कितने छाता खरीदेगा, 4 महीने में बड़ी बारिशें होती हैं, हर रोज बारिश होती है, दिन में 2-2, 3-3 बार होती है, ऐसा छाता बनाया जाना चाहिए कि जो कई बारिश झेल पाए और फटे ना। और फिर बाद में धीरे धीरे अपग्रेड हुआ और ऐसा छाता बन गया आज कि अनेक बारिश होती है, छाता कई सालों तक चलता है। यही हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहां संकट तो रोज आते ही जाते रहने हैं, हम चाहते हैं हम तुम्हें एक ऐसा छाता, छाता नहीं बालाजी की ऐसी छत्र छाया तुमको दे दी जाए, ऐसी छत्र छाया तुम्हें मिल जाए ताकि तुम्हारे जीवन में संकट आते रहेंगे, आने दो आते रहेंगे, घबराओ मत। तुम कोई नए आदमी नहीं हो कि तुम पे दिक्कत है, तुम कोई अकेले आदमी नहीं हो कि तुम बहुत परेशान हो। यहां ये जितने भीड़ दिखाई पड़ रही है ये सब परेशान लोगों की दिखाई पड़ रही है। अरे तुम अपनी छोड़ो, हम तुम तो आम हैं। राम के जीवन में भी यही हुआ, मीरा को उसके देवर ने जहर दिया, सूरदास को गांव के लोगों ने धक्के दिए, तुम तो कुशल मनाओ कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जरा राम जी के जीवन में तो देखो, कल राजा बनना था, रात को ही वनवास मिल गया, तुम्हें तो घर से अभी निकाला भी नहीं गया। और उनके जीवन में तो देखो कि वो जंगल गए माता जानकी जी को लेके, लक्ष्मण जी को लेके, और घरवाली हर गई, चोरी हो गई, कम से कम तुम्हारी चोरी तो नहीं हुई, तुम्हारी अभी बची है। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं मिला, ज्यादा पीड़ा नहीं मिली। जब भगवान राम को भी इतनी पीड़ा सहनी पड़ी तो तुम सोचो तुम्हें कितनी सहनी पड़ेगी। पर हम इतना कहेंगे, समस्याओं के पास समस्या मिलेगी, संसार में समस्या होंगी, संसार में जन्म लिया है, समस्याएं आएंगी, तुम्हारे जीवन में भी आते, हमारे जीवन में भी आती, बस हमने जीने का तरीका बदल लिया। हम समस्याओं से डरते इसलिए नहीं है
इसलिए नहीं डरते क्योंकि जब भी समस्या आती है तो हम परमात्मा से नहीं कहते कि समस्या विकट है, हम परमात्मा के पास जाके नहीं कहते कि समस्या बड़ी विकट है, समस्या के पास जाकर के कहते हैं कि बालाजी निकट है और काम हो जाता है। वो लाज रख देते हैं, वो कृपा कर देते हैं। हमारे अंदर भी चिंता आती है कभी कभी, गुरुकुलम कैसे चलेगा, कन्या विवाह कैसे होगा, कैंसर हॉस्पिटल कैसे बनेगा। अभी नेपाल में हजारों लोग घर बेघर हो गए तो 1000 लोगों को राशन भेजा बागेश्वर धाम से, 1000 परिवार। तो हमें भी कभी कभी विचार आता पर सोचते नहीं है, भगवान दया कर देते हैं। जिनके सहारे बैठे हैं वो हमारी चिंता करते हैं क्योंकि हम उनका काम करने आए हैं, तो हमारी चिंता वो करें। हम तुमसे भी यही कह देते, अब तक की तुम्हारी जितनी बकवास थी, जितने झंझट थे, आज के बाद उनको तुम इन पे छोड़ दो, हम पे छोड़ दो, आगे की तुम देख लेना। हम इतना कह सकते हैं आज के बाद तुम फ्री होकर के जीना सीख लो, जो भी समस्या है छोड़ दो, या तो तुम गुरु को छोड़ दो या गुरु पर छोड़ दो। एक बात बताओ, हनुमान जी को कौन कौन छोड़ना चाहता? ठीक से सुना नहीं। एक बात बताओ, हनुमान जी को कौन कौन छोड़ना चाहता है? हाथ उठाओ। छोड़ना चाहती हैं, इन्हें खड़ा करो, जरा खड़ा करो बहन जी को। खड़ी हो बहन, खड़ी हो जाओ जगत जननी। छोड़ना चाहती हैं, कहो बहन जी। तो हनुमान जी को कौन कौन छोड़ना चाहता है बोलो, छोड़ना चाहते हो? तो एक बात बताओ, हनुमान जी पर कौन कौन अपने आप को छोड़ना चाहता है? पक्का या कच्चा? जोर से बोलो, पक्का? एक दो दिन के लिए या जीवन भर के लिए? सोच लो, पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, जब तक तुम्हारी समस्या ना निपट जाएगी तब तक हम बालाजी से तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वही फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था,
10: सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने, इस उम्र में फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है, तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
0: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
0: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
19: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: कृष्ण जन्माष्टमी के दो दिन शेष, मथुरा वृंदावन में तैयारियां, विशेष 15 मिनट ड्रोन शो का होगा आयोजन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने के लिए कर रहे जबरदस्त तैयारी, नारी शक्ति भी करेगी कमाल। देशभर में गणेश उत्सव की जोरदार तैयारियां, कर्नाटक में बनाई जा रही इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में आज होंगे बड़े फैसले, नए सीईओ समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम पर लग सकती है मुहर, सर्च कमेटी ने 3 नाम ट्रस्ट को सौंपे। अमरनाथ यात्रा के समापन के बाद हजारों तीर्थयात्रियों ने नवदल तीर्थ में लगाई आस्था की डुबकी, विधि विधान से पूजा पाठ किया, भंडारे का भी आयोजन। नेपाल त्रासदी के बीच मसीहा बनकर पहुंचे सोनू सूद, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, कहा पीड़ितों को हर संभव मदद करेंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में, दुल्हन की तरह सजी मथुरा नगरी। शहर के लगभग 25 प्रमुख चौराहों और तिराहों को विशेष साज सज्जा की गई, नगर निगम की टीमें चौराहों को आकर्षक बनाने में जुटी। रात की रोशनी रंगीन में जगमगाया श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, भव्य सजावट से माहौल में घुली दिव्यता। इस बार उत्सव को और भी खास बनाने की तैयारी, लगभग 500 ड्रोन के साथ किया जा रहा विशेष ड्रोन शो का आयोजन। जन्माष्टमी पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद, नगर निगम ने सुरक्षा और साफ सफाई के किए पुख्ता इंतजाम। देशभर में विघ्नहर्ता के आगमन की तैयारी तेज, कर्नाटक के रामनगर में बनाई जा रही बप्पा के अलग अलग स्वरूपों और आकार की प्रतिमाएं। प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी, गोबर और प्राकृतिक रंगों से हो रहा है मूर्ति निर्माण, पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेहद सराहनीय पहल। गणपति के श्रृंगार के लिए प्राकृतिक रंगों का किया जा रहा इस्तेमाल, बारीकी नक्काशी से हो रही है सजावट। धूमधाम से पंडाल में पधारे परेल के महाराजा, गाजे बाजे के साथ भक्तों ने किया विघ्नहर्ता का स्वागत। 35 डिग्री पर संतुलित परेल के महाराजा पंडाल की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही, प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण जी दत्ते ने बनाई है 21 फीट ऊंची प्रतिमा। पुणे में गणेश उत्सव की तैयारियां अब आखिरी दौर में पहुंच गई हैं, गणपति कारखानों में दिन रात बापा की मूर्तियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। कहीं बापा की आंखों में जान डाली जा रही है तो कहीं पर शानदार नक्काशी और रंग रोगन जारी है, मूर्तिकार छोटी से लेकर 12 फीट तक की गणपति मूर्तियां कर रहे हैं तैयार। पुणे के कारखानों में दगड़ूशेठ, पेशवाई और बाल गणेश जैसे कई रूपों में हो रहे हैं बापा तैयार, हर मूर्ति को मूर्तिकार अपनी खास कारीगरी से दे रहे हैं अलग पहचान। बापा को घर लाने के लिए भक्त भी कारखानों का कर रहे हैं रुख, कोई पारंपरिक मूर्ति पसंद कर रहा है तो कोई आधुनिक अंदाज वाले गणपति चुन रहा है। पुणे के बप्पा महाराष्ट्र ही नहीं देश विदेश तक पहुंचते हैं, गणेश उत्सव करीब आते ही कारखानों में गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष से माहौल हो गया भक्तिमय। नागपुर में गणेश उत्सव की तैयारी तेज, कहीं लाइटिंग तो कहीं पर भव्य सजावट से बप्पा के स्वागत की तैयारी। नागपुर के गणपति पंडालों में इस बार बद्रीनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल मंदिर की दिखेगी प्रतिकृति, वहीं भक्तों को पंडाल में ही इन प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराने की तैयारी। चितारोली में मूर्तिकार गणपति की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं भक्त। बाप्पा के आगमन की तैयारियों पर तेजी से चल रहा है काम। गणपति बाप्पा के श्रृंगार के लिए नागपुर की दुकानों पर पहुंच गया है खास सजावटी सामान। मालाओं से लेकर मुकुट और गहनों तक बाप्पा के लिए हर तरह की सजावट मौजूद। बाप्पा के स्वागत को शहर तैयार। गणपति बाप्पा मोरया से गूंजेगा पूरा नागपुर। श्री अमरनाथ यात्रा के आधिकारिक समापन के बाद पुलवामा के नवदल इलाके में पारंपरिक नवदल तीर्थ यात्रा आयोजित। हजारों तीर्थयात्रियों ने लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से पूजा पाठ के साथ भंडारे का भी आयोजन। अमरनाथ यात्रा को औपचारिक रूप देने का किया जा रहा है पूरा काम। आज तय होगा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ। हजारों में चुने गए केवल तीन नाम। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के स्थान मणि रामदास छावनी में होगी बैठक। राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक के लिए कई प्रमुख ट्रस्टी पहुंचे अयोध्या। सीईओ की नियुक्ति के साथ ट्रस्ट के डीड में बदलाव पर भी चर्चा संभव। प्रस्तावित संशोधन में सीईओ के नए अधिकार जिम्मेदारियां शामिल किए जाने की संभावना। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आस्था का भव्य नजारा। तिरुचेंदूर समेत प्रसिद्ध अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में अवनि उत्सव की शुरुआत। 12 दिन चलेगा धार्मिक उत्सव। तमिल महीने अवनि यानी कि अगस्त सितंबर में मनाया जाता है उत्सव। पारंपरिक ध्वजारोहण के साथ होती है अवनि उत्सव की शुरुआत। विशेष विश्व रूप दर्शन और पूजा अर्चना के लिए उमड़े भक्त। उत्सव में भाग लेने के लिए तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में थूथुकुड़ी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष अनुष्ठान और जुलूस की तैयारियां पूरी। पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती का आयोजन। भगवान जगन्नाथ को ब्रह्म मुहूर्त में जगाने के लिए की जाती है भव्य आरती। गया में ओटा ने समर टर्म के लिए आयोजित की कमेंडेंट अवार्ड समारोह। उत्कृष्ट कैडेट्स को ट्रॉफी से नवाजा गया। ड्रिल फिजिकल ट्रेनिंग हथियार ट्रेनिंग में कैडेट्स का शानदार प्रदर्शन। 4 और 5 सितंबर को होगी पासिंग आउट परेड। अकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे 554 कैडेट्स बनेंगे अधिकारी। कमांडेंट जनरल ने बढ़ाया उत्साह। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने कैडेट्स को चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सलाह दी। लगन और अनुशासन से कार्य करने को किया प्रेरित। वडोदरा में पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। भारतीय वायुसेना की शक्ति शर्मा ने रचा इतिहास। एयर वॉइस मार्शल बनने वाली पहली महिला नॉन मेडिकल ऑफिसर बनी। 30 साल से ज्यादा की सेवा के बाद 1 सितंबर को उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली। उन्हें एयर स्टाफ की असिस्टेंट चीफ नियुक्त किया गया। यूपीपीईटी 2026 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी। अब 7 सितंबर तक कर सकेंगे पीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन। यूपीएसएससी ने आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर की। दिल्ली में महिलाओं ने सिर्फ 4 महीने में 8 करोड़ से ज्यादा मुफ्त बस सफर किए। अब पिंक टिकट 17 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद स्मार्ट कार्ड से मुफ्त में सफर होगा। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे सोनू सूद। भारत से लाए गए कंबल राशन और बाकी जरूरी सामान। सोनू बोले संकट के इस दौर में जरूरतमंदों के साथ खड़े होना हम सभी का फर्ज है। सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले महीनों में भी पीड़ितों तक पहुंचती रहे मदद। संकट में नेपाल के साथ खड़ा है भारत। 5.5 टन दवाओं के साथ मदद की 5वीं खेप भेजी गई। इसमें से 11 सदस्यीय बचाव दल विशेष उपकरण शामिल। नेपाल में रसुवा फ्लैश फ्लड पीड़ितों की पहचान के लिए भारत की 19 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने संभाला मोर्चा। डीएनए सैंपल की जांच जारी। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ। त्रिशूली में मलबा हटाने में जुटी नेपाली सेना। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में प्रवासी पक्षियों का दिखा सुंदर नजारा। इस बार समय से पहले आए परिंदे। साइबेरिया से माना जा रहा है पक्षियों का प्रवास। पेरुंगुलम वेटलैंड्स पर इनको मिलता है भोजन पानी और उचित निवास स्थान। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सैन्य अधिकारियों ने गाड़ी को किया है रेस्क्यू। भूस्खलन में फंस गई थी गाड़ी।

0: लोगों को सावधान रहने की दी गई है हिदायत। उत्तरकाशी में बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पर भूस्खलन, पहाड़ी मलबे में फंसे यात्री, बस को निकाला गया सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी, सोलन में नदी नाले उफान पर, कई जगहों पर सड़कें बनी सैलाब। भारी मलबे और बड़े पत्थरों से सड़कें बाधित हुई, लोगों की बढ़ी मुश्किलें, 4 सितंबर तक बारिश से राहत के आसार नहीं। मिर्जापुर द मूवी के मेकर्स का बड़ा धमाका, रिलीज से 3 दिन पहले आउट हुआ नया गाना घूम घूम। मनोज वाजपेयी की फिल्म लास्ट मैन इन टार का ट्रेलर रिलीज हुआ, व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगर के नॉवल पर आधारित है ये फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हनुमान अंश ने किया कमाल, मूवी ने 25 दिनों में 47 करोड़ के आसपास की कमाई की। पर्दे पर आदमखोरों के शिकारी बनेंगे अक्षय कुमार, मशहूर शिकारी और पर्यावरण प्रेमी रहे जिम कॉर्बेट की बायोपिक में करेंगे काम। रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म ऐसा की रिलीज डेट का ऐलान, 27 नवंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में एक दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगी रश्मिका। लंदन स्क्वैश क्लासिक में भारत की अनाहत सिंह ने पहले दौर के मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। दुनिया के 20वें नंबर की अनाहत ने मिस्र की 30वें नंबर की मरियम मेटवाली को 11-3 11-2 से हराया, मैच खत्म करने के लगे केवल 11 मिनट। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर, कुमिली कामान, वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर से मिला मौका। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स बने बिग बैश लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने उन्हें करीब 3,41,00,000 रुपए में किया साइन। यूएस ओपन में डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज की 137 दिन बाद सिंगल्स कोर्ट पर जीत के साथ वापसी, रूस के रोमन को 6-4 से हराकर दूसरे दौर में पहुंचे। अब साल्वाडोर में अनोखा फायरबॉल फेस्टिवल हुआ, लोग आग से भरी गेंद एक दूसरे पर फेंकते नजर आए। फेस्टिवल में लोग चेहरा ढककर आग के गोले उछालते दिखे, देखने वालों की भीड़ चीखती और रोमांचित नजर आई। निजापा में ये खतरनाक खेल 104 साल पुराना, लोग इसे ज्वालामुखी विस्फोट की याद में मनाते हैं। फायरबॉल हवा में उड़ते रहे और लोग पीछे भागते रहे, विदेशी पर्यटक भी इस अनोखे नजारे को देखने के लिए पहुंचे। आग के गोले सड़क पर गिरते रहे, आग फैलती दिखी, खतरनाक खेल के बीच लोग लगातार एक दूसरे पर आग फेंकते रहे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए त्योहार के मौसम में लगेगा ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग

0: मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है, तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में, गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली, और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं, फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं, और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है, लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है, और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है। आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग। क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है। ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने के लिए कर रहे हैं जबरदस्त तैयारी, नारी शक्ति भी करेगी कमाल। देशभर में गणेश उत्सव की जोरदार तैयारियां, कर्नाटक में बनाई जा रही इको फ्रेंडली बापा की प्रतिमा, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में आज होंगे बड़े फैसले, नए सीईओ समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम पर लग सकती है मुहर, सर्च कमेटी ने 3 नाम ट्रस्ट को सौंपे। अमरनाथ यात्रा के समापन के बाद हजारों तीर्थ यात्रियों ने नवदल तीर्थ में लगाई आस्था की डुबकी, विधि विधान से पूजा पाठ, भंडारे का भी आयोजन। बीड़ में 4 पीढ़ियों के बाद परिवार में बेटी का जन्म, रथ में निकाली गई शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों से नवजात का भव्य स्वागत। नेपाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एक्टर सोनू सूद ने किया दौरा, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, कहा पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज स्पेशल में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। वो श्री कृष्ण जो कि एक ऐसा नाम है जिसमें आस्था भी है, अध्यात्म भी है और एक ऐसा विराट व्यक्तित्व भी जिसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जिन जिन धरतियों पर अपनी लीलाएं की, उन स्थानों की स्मृतियां आज भी किसी न किसी रूप में जीवित है। मथुरा की गलियां हो, वृंदावन की कुंज गलियां हो, गोवर्धन पर्वत हो, द्वारका की धरती या फिर कुरुक्षेत्र का मैदान, इन जगहों से जुड़ी ऐसी अनगिनत मान्यताएं हैं जिन्हें आज श्री कृष्ण की लीलाओं की जीवंत निशानी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक गोवर्धन है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जब ब्रज में इंद्र के प्रकोप से भारी बारिश हुई तब श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। आज भी श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और ब्रज से हजारों किलोमीटर दूर गुजरात में कृष्ण कथा का एक और सबसे रहस्यमय अध्याय जुड़ा है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित द्वारका को भगवान कृष्ण की नगरी माना जाता है। मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी बसाई, जिसके साक्ष्य आज भी वहां पर देखने के लिए मिलते हैं।
1: भगवान कृष्ण हिंदुस्तान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के प्राणवायु देवकी नंदन भगवान कृष्ण। सनातन के कालजयी ग्रंथों में, पुराणों में जिनकी अलौकिक लीलाओं का मनोहारी वर्णन मिलता है, इन पौराणिक ग्रंथों की ऐतिहासिकता को, प्रामाणिकता को कभी मिथक मानकर खारिज कर दिया गया, लेकिन पुरातात्विक अन्वेषणों और वैज्ञानिक साक्ष्यों की रोशनी में इन ग्रंथों की ऐतिहासिकता पुनः प्रतिष्ठित हुई है। इतना ही नहीं, पौराणिक घटनाओं से जुड़े प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखकर प्रतिष्ठित वैश्विक इतिहासकारों की आंखें चौंधिया रही हैं। आज हम आपको भगवान कृष्ण से जुड़े उन साक्ष्यों को दिखाएंगे जिनका जिक्र पुराणों में मौजूद है। गुजरात के सौराष्ट्र में समंदर के तट पर स्थित द्वारका को भगवान कृष्ण द्वारा बसाया गया नगर माना जाता है। द्वारका का जिक्र करीब 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास रचित परमहंस ग्रंथ भागवत पुराण में कई बार आता है। भागवत पुराण के दशम स्कंध के 50वें अध्याय के 49वें श्लोक में द्वारका के निर्माण का संदर्भ मिलता है। इति समन्ते भगवान दुर्गम द्वादश योजनम अंतः समुद्रे नगरम कृत्सान अद्भुतम अचिकरत। भागवत पुराण के इस श्लोक में बताया गया है कि इस प्रकार विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर 12 योजन में एक अत्यंत विशाल और अपराजेय नगर बनवाया, जो अद्भुत, आश्चर्यजनक और सभी तरह के ऐश्वर्यों से युक्त था। द्वारका नगर का संदर्भ भागवत पुराण के अलावा महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। महाभारत के मौसल पर्व के श्लोक में इस नगर के समंदर में समा जाने का जिक्र मिलता है। मौसल पर्व के 7वें अध्याय का 40वां श्लोक है। सतदा प्लवयते सर्वम रत्न पूर्णम पूरीम तदा यद यद देशम व्यतिक्रांतो अर्जुनस्य निवेशने तत् तद् देशम समुद्रस्य प्लावयामास सर्वतः। महाभारत के मौसल पर्व की श्लोक का अर्थ है कि तब उस समय रत्नों से भरी नगरी द्वारका को समुद्र ने सब ओर से अपनी आगोश में ले लिया। अर्जुन जैसे जैसे नगर में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे पीछे छूट गई नगरी को समुद्र अपनी लहरों में डुबोता चला गया। साफ है कि द्वारका नगर के निर्माण से लेकर समंदर की लहरों में समा जाने तक का वर्णन सनातन के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है।
2: भगवान 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में रहे, उसके उपरांत मथुरा और अवंतिकापुरी में अध्ययन करने के उपरांत आप द्वारकापुरी में पहुंचे। द्वारका जो कि गुजरात में समुद्र में स्थित थी, भेत द्वारका और द्वारका, यहाँ भगवान ने अनेकानेक लीलाएं की हैं और 100 वर्ष तक भगवान द्वारका में विराजमान रहे।
1: समंदर के बीच में बसी द्वारका नगरी के पौराणिक तथ्यों को 80 के दशक के पूर्वार्ध तक मुख्य धारा के स्थापित इतिहासकार मिथक मानकर खारिज कर देते थे। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक और जाने माने पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव ने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की ओर से पानी के नीचे बसी द्वारका नगरी की खोज का अभियान शुरू किया तो पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई। समंदर की अतल गहराइयों में शोधकर्ताओं को कई मीटर लंबी और सुव्यवस्थित प्राचीन पत्थर की दीवारें मिली, भव्य इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के खंभे और ब्लॉक मिले, जहाजों को बांधने में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के लंगर मिले। पत्थरों के ये लंगर त्रिकोणीय हैं और उनमें गोलाकार छेद पाए गए।
2: जब द्वारका पुरी में प्रवेश करते हैं, सप्तपुरियों में से एक पुरी भी है, तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि साक्षात द्वारकाधीश यहाँ विराज रहे हैं। भेंट द्वारका में जब देखते हैं तो वहाँ पर कई साक्ष्य ऐसे मिलते हैं कि जो 5000 साल पूर्व से आज तक विरासत के रूप में वहाँ पर विद्यमान हैं। तो वो साक्ष्य, समस्त जो साक्ष्य हैं, वो अपने आप में स्वयं भगवत रूप ही हैं।
1: भगवान कृष्ण की पावन महिमा का वर्णन सनातन के अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक भगवान कृष्ण की बाल लीला से लेकर रासलीला, गोचारण, गोवर्धन धारण, कालियानाग मर्दन, कंसवध और महाभारत युद्ध तक को लेकर अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। कमाल ये है कि इन सभी ग्रंथों की भाषा और शैली बेशक अलग हों, लेकिन घटनाओं और लीलाओं का भाव कमोबेश एक जैसा ही है। हैरानी तो ये है कि हजारों साल पहले लिखे ग्रंथों में वर्णित घटनाओं के मौजूदा साक्ष्य आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। भगवान कृष्ण की पवित्र जन्मस्थली मथुरा से करीब 26 किलोमीटर दूर स्थित गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण की अलौकिक लीला का लौकिक प्रमाण है। विशुद्ध रूप से मैदानी इलाके में स्थित गोवर्धन पर्वत इस बात की मुनादी करता है कि हमारे पौराणिक आख्यानों को बेशक मिथक मान लिया गया, लेकिन उन आख्यानों में गूढ़ जीवन दर्शन और आध्यात्मिक संदेशों के साथ ही प्रामाणिक इतिहास के अकाट्य साक्ष्य भी मौजूद हैं। श्रद्धावान सनातनी गोवर्धन पर्वत को साक्षात कृष्ण का स्वरूप मानकर पूजते हैं और 21 किलोमीटर में फैले इस पौराणिक पर्वत की परिक्रमा करते हैं।
2: भगवान ने जब इस धराधाम को छोड़ा, भगवान के समय से आज तक दो प्रत्यक्ष ऐसे गवाह हैं कि जिन्होंने भगवान की लीलाओं में सहभागिता की है, प्रथम श्री गिरिराज जी, द्वितीय श्री यमुना जी। तो जब हम सप्तकोशीय परिक्रमा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन शिला के रूप में मुकुट मुखारविंद मानसी गंगा पर होते हैं। वहां स्वयं गोपाल हैं और उंगली का संकेत करके कह रहे हैं कि गिरिराज जी की पूजा कीजिए। उसके आगे आप चलिए परिक्रमा में तो कहीं सुरभि गऊ के चरणों के निशान है, कहीं भगवान के हस्त कमल के निशान है, कहीं भगवान के मुख की आकृति के दर्शन है।
1: भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला का जिक्र श्रीमद् भागवत महापुराण, गर्ग संहिता, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में कथा आती है कि ब्रजवासी हर साल वर्षा का देवता माने जाने वाले इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा यज्ञ आदि करते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा करने की सलाह दी। भगवान कृष्ण की मोहिनी लीला से भाव विभोर रहने वाले ब्रजवासियों ने उनकी सलाह मानते हुए उसी समय से इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। इससे इंद्र के अहंकार को ठेस लगी और इंद्र ने ब्रजवासियों को सबक सिखाने के लिए ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू करा दी। मूसलाधार बारिश से ब्रज में जल प्रलय की स्थिति बन गई। तब सभी ब्रजवासियों ने त्राहिमाम करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें इंद्र के कोप से बचाएं। तब भगवान कृष्ण ने अपनी बाई हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को एक छतरी की तरह उठा लिया। सात दिन और सात रात तक सभी ब्रजवासी और गोवंश गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। आखिरकार इंद्र का अहंकार टूटा और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी।
2: समूचे गोवर्धन में ऐसा लगता है कि साक्षात गिरिराज जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के ही चारों तरफ दर्शन हो रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष स्वरूप में वहां अनुभूति भक्तों को निशानी के रूप में आज भी होती है।
1: भगवान कृष्ण की परम पावन लीला भूमि वृंदावन में स्थित निधिवन भगवान कृष्ण की पौराणिक लीला का अप्रतिम वर्तमान साक्ष्य है। निधिवन की रासलीला का जिक्र श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर स्वामी हरिदास, गौड़ीय और अन्य ब्रज साहित्य में मिलता है। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्तों का मानना है कि उनके आराध्य आज भी अर्धरात्रि के बाद अपनी प्रियसी राधिका जी के साथ निधिवन में रास रचाते हैं। इतना ही नहीं, रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में वो शयन भी करते हैं।
2: हमारे यहाँ वृंदावन स्थित निधिवन की ऐसी मान्यता है कि संयुक्त रूप में भगवान श्री कृष्ण और उनकी परमाह्लादिनी शक्ति श्री जी श्री राधा रानी संयुक्त रूप में रात्रि में वहाँ विराजमान रहते हुए और अपनी लीलाओं को करती हैं। तो भगवान की उन दिव्य लीलाओं को हर किसी को देखने का अधिकार नहीं है। प्रभु जानत जय देह जनाए, इसलिए ऐसी परंपरा चली आ रही है कि सायंकाल होते ही आरती होते ही वहाँ सब बंद कर दिया जाता है।
1: इसी विश्वास की वजह से रंग महल में आज भी माखन मिश्री का भोग हर दिन रखा जाता है। यहाँ तक कि पुजारी इस महल में दो दातून भी रख देते हैं। पुजारियों का दावा है कि सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी गई दातून गीली मिलती है। यहाँ तक कि कुछ सामान जो रात में व्यवस्थित रखे गए होते हैं वो सुबह बिखरे हुए मिलते हैं। निधिवन के प्रति श्रद्धा और विश्वास का आलम यह है कि रात्रि 8 बजे के बाद श्रद्धालुओं के साथ पुजारी भी यहां से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है।
2: आचार्य जनों का कहना है, संत महात्माओं का कहना है कि फिर वहां जो बंदर आदि जो जीव डोलते हैं वो भी वहां नहीं रहते और सब वहां से शांति में अलग निकल आते हैं और ठाकुर जी श्री जी के साथ में वहाँ उनकी एक दिव्य लीला होती है जो उचित भी है कि भगवान की जो गुप्त लीलाएं हैं उनके दर्शन हर कोई नहीं कर सकता, तो यह नियम बिल्कुल सही भी है।
1: भगवान कृष्ण सनातनी श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास के आधार अवलंब हैं। पर युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया गया उनका उपदेश भगवत गीता के रूप में पूरी दुनिया के लिए जीवन दर्शन का अतुल्य ग्रंथ बन चुका है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वह स्थान आज भी मौजूद है जहां भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिषर नामक स्थान पर आज भी एक वट वृक्ष खड़ा है। सनातनी श्रद्धालुओं का मानना है कि ये वही अक्षय वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिषर आज एक पवित्र धाम के रूप में विकसित हो चुका है जहां दूर दूर से लोग आते हैं और यहां के पारलौकिक सुरम्य वातावरण में भगवान कृष्ण की पाप विमोचनी उपस्थिति की अनुभूति करते हैं।
2: बहुत विशाल वृक्ष के दर्शन सभी भक्तजन करते हैं जहां भगवान ने गीता का उपदेश किया है, आज भी मौजूद है। वहां जाने से ही ऐसा लगता है कि अनुभूति होती है कि भगवान ने अपनी वाणी की जो दिव्यता है, वाणी रूप में एक जो आध्यात्मिक शक्ति का वहाँ अनुभव होता है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में जहाँ भगवान ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है, ज्योतिषार नाम के तीर्थ में वृक्ष आज भी वहाँ विद्यमान है और कई ऐसी निशानियां हैं जो प्रतीत तो होती हैं कि भगवान ने यहीं पर गीता का उपदेश किया है।
1: हमारे प्राचीन ग्रंथकारों का मानना है कि भगवान कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष 8 महीने और 7 दिन तक रहे। मान्यता है कि उनके इस धाराधाम को छोड़ते ही द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग की शुरुआत हुई। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण ने जहां देह त्याग किया वह स्थान आज गुजरात के गीर जिले के वेरावल में स्थित है, जिसे देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्वारका में जो नगरी बसाई थी वहां बाद में यदुवंशियों के बीच आपसी गृह युद्ध शुरू हो गया जिससे पूरा कुल नष्ट हो गया। कुल के विनाश से आहत होकर भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला को संवरण करने का निर्णय लिया। कथा आती है कि श्री कृष्ण एक जंगल में पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाकर विश्राम करने लगे। तभी शिकार की तलाश में आए एक बहेलिए ने भगवान के दैदीप्यमान चरण को हिरण की आंख समझ लिया और उस पर तीर मार दिया। बहेलिए का तीर भगवान कृष्ण के तलवे में लगा जिसके बाद उन्होंने अपना देहोत्सर्ग कर दिया।
2: वृक्ष के नीचे भगवान चतुर्भुज रूप में सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और चरण ऐसे लग रहे हैं कि जैसे सूर्य की आभा को बिखेर रहे हों। वहीं पर बहेलिया ने बाण मारा है, भगवान के बाण लगा हुआ है। आज भी ये स्वरूप के रूप में वहां भगवान विराज रहे हैं और कई निशानियां। सबसे पहले तो वहां ये अनुभूति होती है कि परम शांत क्षेत्र है, परम गंभीर क्षेत्र है। वहां के वातावरण में शांति और गंभीरता महसूस होती है। बड़ा पावन वो तीर्थ है, बड़ा पावन क्षेत्र है। आज भी भगवान के जब दर्शन वहां भक्त करते हैं तो नेत्रों में अश्रु आने लगते हैं कि यहीं से भगवान हमारे ठाकुर जी स्वधाम गमन किया है भगवान ने, और भगवान ने सशरीर अपने गोलोक धाम में वहीं से प्रवेश किया है।
1: कहते हैं कि वेरावल में पीपल का वो वृक्ष आज भी मौजूद है जिसके नीचे भगवान कृष्ण योग मुद्रा में समाधिस्थ हुए थे। भगवान के पावन चरणों के प्रतीक के रूप में चरण पादुका भी मौजूद है जिसका दर्शन कर भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा, इसको लेकर देश भर में दिव्य तैयारी चल रही है। पूरा देश उत्सव के रंग में सराबोर होता जा रहा है। बाजार भगवान श्री कृष्ण की पोशाक और श्रृंगार के सामानों से सजे हुए हैं। जगह जगह बाल गोपाल के जन्मोत्सव मनाने को लेकर गजब की रौनक दिख रही है।

0: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर देश भर में भक्ति में छटा बिखरी हुई है। श्री कृष्ण जन्मस्थली से लेकर जगह जगह जन्माष्टमी की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। रंग बिरंगे लाइट और भव्य सजावट से मंदिर रोशन हो गए हैं, तो बाजार पर भी कान्हा का रंग पूरी तरह चढ़ चुका है। कान्हा की नगरी मथुरा समेत पूरे ब्रज में जन्माष्टमी की रौनक छा चुकी है। 4 सितंबर को जन्मोत्सव के लिए मथुरा में कारीगर भगवान श्री कृष्ण के लिए पूरे तन्मयता से पोशाक तैयार करने में जुटे हैं। विशेष बात यह है कि सांस्कृतिक परंपरा के तहत पूरी बारीकी से कान्हा के इन पोशाकों को तैयार किया जा रहा है।
1: हमारा काम तो ये दस्तकारी का, और एक से एक बेहतरीन पोशाक बनती है, और ऊपर वाले की कृपा से हमें ऑर्डर मिलते हैं, और अब भी रात दिन हमारा काम हो रहा है, उस पोशाकों को पूरी करने में लगाऊंगा जल्दी। और जी भाग हमारे बहुत बड़े हैं कि जिस सब कुछ जुड़ने के बाद में हमारे पास धार्मिक काम होता है, सब कृष्ण का काम होता है, राधा जी का बनता है, सीता जी का बनता है, और जो रामलीला वगैरह निकलती है हमारे मथुरा शहर में, उनका भी सबका ऑर्डर हमारे पास ही रहता है।
2: जो ऊपर वाले ने हमें हुनर दिया, वो हम अपना हुनर बांट रहे हैं और आगे कर रहे हैं, करते रहेंगे। पिछली 5 पीढ़ियां हमारे यही काम करती आई है, बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए, और हम कर रहे हैं और करते ही रहेंगे आगे भी। हम मुस्लिम हो गए और दूसरे मतलब दूसरे धर्म के लिए कर रहे हैं, उनके लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए, वो हमारी पोशाक हमारे हाथ से बनी हुई वो दूसरे के धर्म में चढ़ेगी, अच्छे ही भाव से बनाते हैं।
0: जन्माष्टमी को लेकर बाजार भी सजे हुए हैं। दुकानें लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र से लेकर श्रृंगार के सामान से भरी हैं। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के पास मौजूद इस बाजार की रौनक वाकई देखते बनती है। यहाँ जन्माष्टमी को लेकर दुकानों में सिलिकॉन के बाल गोपाल से लेकर तरह तरह की पोशाकें, गहने, मुकुट, झूले श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रहे हैं।
3: कृष्ण भक्त या फिर जिनके घरों में भी लड्डू गोपाल हैं, वो उनके श्रृंगार की तैयारियां करने लग गए हैं, और उसी वजह से जो उनकी जितनी भी पोशाक होती है, श्रृंगार का सामान होता है, उनकी दुकानों पर लोगों का तांता लगा नजर आ रहा है। बहुत सारी नई पोशाकें नजर आ रही हैं, बहुत कलरफुल ये जो दुकानें हैं वो सजी हुई हैं। जो लड्डू गोपाल की मूर्तियां हैं वो भी समय पे लोग लेना पसंद कर रहे हैं, साथ ही साथ में अलग अलग रंगों में, अलग अलग पैटर्न्स में, प्रिंट्स में जो पोशाकें हैं ये इस बार मार्केट में नजर आ रही हैं। कुछ बंदेज प्रिंट की है तो कुछ लहरिया की है, कुछ मोर पंखी से सजी हुई है, तो कुछ काजू पिस्ता बादाम जैसे मेवे जो हैं उनसे सजी हुई पोशाक इस बार ये जो मार्केट है उसमें नजर आ रही है। इसी की लाइन में हम दिखा रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, कई सारे झूले जो है लड्डू गोपाल के वो लगाए गए हैं। पूरी तरीके से अभी सजावट जो है वो हो चुकी है इनकी, बाकी जितनी भी जो चीजें होती हैं, चाहे वो उनका बेड हो, चाहे वो उनके लिए खिलौने हो, चाहे वो उनकी पोशाक हो, उनकी ज्वेलरी हो, वो सब यहाँ पे समय पे पूरा जो कलेक्शन है वो आ चुका है।
0: यहाँ के हर दुकान पर कान्हा के स्वागत की सामग्री दिख रही है। पोशाकों में भी कई नए और आकर्षक ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं।
3: पोशाकों में आप मुझे यहाँ पे बताइए कि इस बार सबसे यूनिक क्या है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है?
4: मोर वाले, मोर के अंदर आती है, पूरी मोर की पोशाक है, और मोर का मुकुट साथ में इसके पगड़ी, और ये हैवी वर्क में पूरा जरी, एक जरी के अंदर आता है, मैं जरी में दिखा दूंगा आपको, देना जरी वाला पैकेट देना एक दो, ये जरी के अंदर है, हैंड वर्क है पूरा, ये हैवी से हैवी पोशाक आती है जन्माष्टमी के लिए, इसमें पूरा पूरा कलकत्ता पर काम हो रहा है इसके अंदर, है ना। इस टाइप से लोग कलर आइज बनवाते हैं, इस अकॉर्डिंग जो आइज बनाना पसंद करते हैं लोग, और इनमें नेकलेस वगैरह सब जो भी जैसे श्रृंगार चाहता है वैसा बन जाता है हमारे पास। इस बार सबसे जो खास है वो अभी इसमें चोकर हार आते हैं, स्टोन में आते हैं, इस टाइप में आते हैं, ये स्टोन हार होते हैं सारे, और इसके अंदर ज्वेलरी आती है पूरी, जिसमें पूरा सेट आता है, पूरा माला, इसमें पूरा सेट आता है, इसमें माला, मुकुट, बांसुरी, छड़ी सब कुछ आता है इसके अंदर।
0: यहाँ लड्डू गोपाल के श्रृंगार और मेकअप की भी पूरी व्यवस्था दिख रही है। लोग अपने घर
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

सास बहू और बेटिया में आज देखिए त्योहार के मौसम में लगेगा ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां, बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्मोत्सव पर होगा विशेष अनुष्ठान, मंदिर की विशेष सजावट की गई। जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने के लिए कर रहे हैं जबरदस्त तैयारी, नारी शक्ति भी करेगी कमाल। देश भर में गणेश उत्सव की जोरदार तैयारियां, कर्नाटक में बनाई जा रही इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा, मूर्तियों का अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। बीड़ में चार पीढ़ियों के बाद परिवार में बेटी का जन्म, रथ में निकाली गई शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों से नवजात का भव्य स्वागत। चित्रकूट में घटने लगा मंदाकिनी का जलस्तर, लोगों ने ली राहत की सांस, सड़कों से हटाया जा रहा मलबा। नेपाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एक्टर सोनू सूद ने किया दौरा, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, कहा पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
3: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: श्री अमरनाथ यात्रा के आधिकारिक समापन के बाद पुलवामा के नवदल इलाके में पारंपरिक नवदल तीर्थ यात्रा आयोजित की गई, हजारों तीर्थ यात्रियों ने लगाई आस्था की डुबकी। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव की तैयारियां, अंतिम चरण में दुल्हन की तरह सजी मथुरा नगरी। देश भर में विघ्नहर्ता के आगमन की तैयारी तेज, कर्नाटक के रामनगर में बनाई जा रही बप्पा के अलग अलग स्वरूपों और आकार की प्रतिमाएं। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आस्था का भव्य नजारा, तिरुचेंदूर स्थित प्रसिद्ध अरुलुमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में अवनी उत्सव की शुरुआत हुई। बीड़ में चार पीढ़ियों के बाद परिवार में बेटी का जन्म हुआ, रथ में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों से नवजात का भव्य स्वागत हुआ।
4: गया में OTA ने समर टर्म के लिए आयोजित की कमेंडेंट अवार्ड समारोह, उत्कृष्ट कैडेट्स को ट्रॉफी से नवाजा गया, 4 और 5 सितंबर को होगी पासिंग आउट परेड। भारतीय वायुसेना की शक्ति शर्मा ने रचते इतिहास, एयर वाइस मार्शल बनने वाली पहली महिला नॉन मेडिकल ऑफिसर बनी। वडोदरा में पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया इसमें हिस्सा। दिल्ली में सिर्फ 4 महीने में महिलाओं ने की 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुफ्त बस सफर, अब पिंक टिकट 17 सितंबर तक चलेगी, इसके बाद स्मार्ट कार्ड से मुफ्त सफर होगा। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में प्रवासी पक्षियों का देखा सुंदर नजारा, इस बार समय से पहले आए परिंदे।
3: बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे सोनू सूद, भारत से लाए कंबल, राशन और बाकी जरूरी सामान, बोले संकट के इस दौर में जरूरतमंदों के साथ खड़े होना हम सभी का फर्ज है। लंदन स्क्वाश क्लासिक में भारत की अनाहत सिंह ने पहले दौर के मुकाबले में जीत कर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई, मैच खत्म करने में लगे केवल 11 मिनट। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर को मिली कमान, वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर से मौका। इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन बेन स्टोक्स बने बिग बैश लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने उन्हें करीब 3.5 करोड़ रुपए में साइन किया। US ओपन में डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज की 139 दिन के बाद सिंगल्स कोर्ट पर जीत के साथ वापसी, रूस के रोमन सफ्यूलिन को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में पहुंचे। मिर्जापुर द मूवी के मेकर्स का बड़ा धमाका, रिलीज से 3 दिन पहले आउट हुआ नया गाना घूम घूम। मनोज बाजपेयी की फिल्म लास्ट मैन इन टावर का ट्रेलर रिलीज, व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा के नॉवल पर आधारित है ये। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हनुमान अंश ने किया कमाल, मूवी ने 25 दिनों में 47 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली। पर्दे पर आदमखोरी के शिकार बनेंगे, शिकारी बनेंगे अक्षय कुमार, मशहूर शिकारी और पर्यावरण प्रेमी रहे जिम कॉर्बेट की बायोपिक में करेंगे काम। रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म ऐसा की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, 27 नवंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में एक दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगी रश्मिका। एल सल्वाडोर में अनोखा फायरबॉल फेस्टिवल हुआ, आग से भरी गेंदें एक दूसरे पर फेंकते हुए नजर आए लोग। चीन में 4 महीने बाद समुद्र में फिर से मछली पकड़ने का काम शुरू हुआ, शानडोंग के बंदरगाहों से हजारों नावें समुद्र की तरफ रवाना हुई। फिर चर्चा में मिस्र के मशहूर राजा तूतन खामून का सोने का मुखौटा, गाइड ने इसे चीन के सैन चिंगदुई में मिले सोने के मुखौटों से जोड़ा। 10 सितंबर से लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में दिखेगी करीब 1000 साल पुरानी बियोटेक्स टेपेस्ट्री, जिसमें 1066 में नॉर्मन लोगों के इंग्लैंड पर कब्जे की कहानी कढ़ाई से दिखाई गई। थाईलैंड में गोल लीफ से चेहरा ढकने का अनोखा सा रिवाज वायरल हो रहा है, लोगों का मानना है कि इससे किस्मत और कारोबार दोनों चमकते हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: तो बच्चों से अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट बिल्कुल तैयार है।
3: तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
4: राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में आज होंगे बड़े फैसले, नए सीईओ समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम पर लग सकती है मोहर, सर्च कमेटी ने 3 नाम ट्रस्ट को सौंपे।
3: श्री कृष्ण जन्माष्टमी में 2 दिन बाकी, मथुरा वृंदावन में तैयारियां तेज, 15 मिनट ड्रोन शो का होगा आयोजन, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम।
4: जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने के लिए कर रहे हैं जबरदस्त तैयारी, नारी शक्ति भी करेगी कमाल।
3: देशभर में गणेशोत्सव की जोरदार तैयारियां, कर्नाटक में बनाई जा रही इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं कारीगर।
4: नेपाल त्रासदी के बीच मसीहा बनकर पहुंचे सोनू सूद, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, कहा पीड़ितों को हर संभव मदद करेंगे।

गोविंदा आलारे, यकीन मानिए तस्वीरें अगर आप लाइव देखते हैं ना मुंबई में जाकर या कहीं भी जहां पर इस उत्सव का आयोजन किया जाता है, बहुत मजा आता है और खासकर अगर आप इसका पार्ट बनते हैं। चलिए लंच टाइम में यही तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। दही हांडी उत्सव, जिसका इंतजार पूरे साल हम सबको रहता है। मुंबई में गोविंदाओं की टोलियां दही हांडी उत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पिरामिड के निर्माण की प्रैक्टिस की जा रही है क्योंकि दो दिन बाद दही हांडी उत्सव होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, इस खास मौके पर युवाओं का जोश और जज्बा आसमान छू रहा है। मानव पिरामिड

शोर सुनाई देता है। मुंबई की दही हांडी की भव्य और शानदार तस्वीरें देश भर में देखी जाती हैं। दही हांडी उत्सव के बहाने ही लोग भगवान श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं को याद भी करते हैं।

श्री कृष्ण के जन्म के ठीक एक दिन बाद भाद्रपद माह की नवमी तिथि को दही हांडी का उत्सव मनाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है, जिसके लिए मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश में तैयारी चल रही है। आयोजक मठ की ऊंचाई पर लटकाने की तैयारी कर रहे हैं, तो गोविंदाओं की टोली उन्हें फोड़ने के कुल मिलाकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ साथ दही हांडी की भी जोर शोर से तैयारी चल रही है।

0: जन्माष्टमी भी करीब है। मटकी फोड़ कार्यक्रम की धूम है। मुंबई समेत देश के कई इलाकों में गोविंदाओं की तैयारी बेजोड़ है। उमड़ने वाली है गोविंदाओं की टोलियां। जोश और उत्साह का अभी से हो रहा संचार है। लोग चाहे किसी भी उम्र के हों, समाज के किसी भी हिस्से के हों, जोश सब पर एक जैसा होता है। बच्चे बच्चियों से लेकर बड़ों में भी दही हांडी को लेकर जबरदस्त उत्साह रहता है। मुंबई और महाराष्ट्र में दही हांडी जोर शोर से मनाई जाती है। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग दही हांडी देखने के लिए दूर दूर से चले आते हैं। यहाँ पर त्योहार के दौरान गोविंदा या दही हांडी प्रतियोगिताओं की टोली ऊंचाई पर लटकी दही हांडी को तोड़ने के लिए एक के ऊपर एक चढ़कर मानव पिरामिड बनाते हैं।
1: हर वर्ग जुड़ने वाला है, हर आयु का वर्ग इसमें जुड़ने वाला है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ एक टीम के रूप में खेलें। तो हमारा ये मटकी फोड़ जो खेल है, गोविंदा ये मटकी फोड़ जो खेल है, ये ऐसा खेल है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ टीम के रूप में पैरामिड बनाते हैं और मटकियों को फोड़ने का जो प्रभु लीला का प्रदर्शन है वो करते हैं।
0: वक्त बदला तो दही हांडी या मटकी फोड़ अब प्रतियोगिता का रूप ले चुका है। जगह जगह अलग अलग नाम से इसका आयोजन किया जाता है। दिल्ली हो या मुंबई, मटकी फोड़ लीग या गोविंदा लीग के नाम से आयोजित किया जाता है। अब इसे खेल के रूप में भी स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।
2: ऑलरेडी अगर आप देखो तो ये बहुत फेमस है, अगर मुंबई में आप देखते हो, सब जगह महाराष्ट्र में तो और बड़ा होगा और मैं चाहूंगा कि ये ओलंपिक में भी जाए और बहुत अच्छा नाम कमाए।
0: मटकी फोड़ प्रतियोगिता भारत की संस्कृति और खेल भावना से भी जुड़ी हुई है। देश भर के युवाओं को भारतीय संस्कृति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पारंपरिक खेलों से जोड़ने का माध्यम बनता जा रहा है। हालांकि मटकी फोड़ने की परंपरा सदियों पुरानी है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भारतीय संस्कृति, सामूहिक उत्साह और सदियों पुरानी रीति रिवाजों का प्रतीक भी है। यही नहीं, मटकी फोड़ने की प्राचीन भारतीय परंपरा को आधुनिक खेल प्रतियोगिता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश भी जारी है। इसका उद्देश्य युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के साथ साथ उनमें टीम भावना, अनुशासन, साहस, नेतृत्व, शारीरिक क्षमता और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करना भी है। इसके अलावा गोविंदाओं की टीमें मटकी फोड़ने के दौरान अपनी क्षमता, संतुलन, रणनीति, समन्वय और टीम वर्क का प्रदर्शन करती हैं। ऊंचाई पर टंगी मटकी तक पहुंचने और उसे फोड़ने के लिए खिलाड़ियों को सामूहिक प्रयास और बेहतरीन तालमेल की आवश्यकता होती है।
1: इस खेल को खेलेंगे जहां एक और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा, साथ साथ वो

0: खिलेंगे, जितने खिलेंगे उतना ही उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, वो अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, धंधे में और मजबूती से लग के जो राष्ट्र का विकास है उसमें अपना योगदान देंगे।
1: ऐसा नहीं है कि हर जगह मटकी फोड़ने के लिए प्रतियोगिता का ही आयोजन किया जाता है, बल्कि मुंबई में तो दही हांडी को लेकर इतना उत्साह रहता है कि शहर भर में कई आवासीय सोसाइटियों, सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक मैदानों पर फूलों से सजी दही हांडी को जमीन से कई फुट ऊंचाई पर लटकाया जाता है और रंग बिरंगे परिधान पहने गोविंदा ट्रकों, टेम्पो, बसों और दोपहिया वाहनों में सवार होकर दही हांडी को तोड़ने के लिए मुंबई और पुणे जैसे शहरों में घूमते नजर आते हैं। मुंबई के मराठी बहुल इलाके परे, लालबाग, वर्ली, दादर, भांडुप, मुलुंड, गोरेगांव और अंधेरी समेत शहर के हर नुक्कड़ और कोने में पारंपरिक ढोल की थाप और लोकप्रिय फिल्मी गीतों की धुनें उत्सव के उत्साह को बनाए रहती हैं। दही हांडी कार्यक्रमों को देश भर में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका फिल्मों ने भी निभाई है, खासकर 90 के दशक में। हालांकि ये शुरुआत 1963 से ही शुरू हो गई थी, जब शमी कपूर ने गोविंदा आलारे गाने के जरिए इस खेल को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की थी। दही हांडी प्रतियोगिता को लेकर सावधानी भी बरती जाती है, पुलिस से लेकर प्रशासन तक इसके आयोजन को लेकर सजग रहते हैं। इस दौरान अस्पतालों में भी खास तैयारी की जाती है, क्योंकि ये खेल ही ऐसा है जिसमें कई गोविंदा घायल हो जाते हैं, इसलिए टोली के सदस्यों का बीमा भी करवाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब देखिए, दही हांडी उत्सव का इतिहास कान्हा जी से जुड़ा है। जिस तरह से वो बाल अवस्था में सखाओं के साथ मिलकर गोकुल के घरों से माखन की चोरी किया करते थे, ठीक उसी तरह से आज के गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी प्रैक्टिस की जाती है और कई कई गोविंदाओं की टोलियां साल भर इस जीत को हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करती हैं, योजना बनाती हैं। और यही नहीं, अब तो बाकायदा प्रतियोगिता का आयोजन होने लगा है जिसमें लाखों रुपए बतौर इनाम भी इनको दिए जाते हैं।
1: मुरलीधर की गोकुल में की गई बाल लीलाओं की याद दिलाता है मटकी फोड़ कार्यक्रम। जिस तरह से नन्हे घनश्याम अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऊंचाई पर लटकी मटकियों से माखन चुराते थे, उसी तरह मुंबई के युवक भी 30 से 40 फुट की ऊंचाई पर दही और हल्दी से भरी मटकियों तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर एक खड़े होकर मीनारे बनाते हैं। जिस टोली के हाथ मटकी लगती है उसे इनाम में मोटी रकम भी मिलती है। क्या आपको पता है कि आखिर दही हांडी का पर्व क्यों मनाया जाता है और दही हांडी की मटकी में क्या क्या भरा होता है? तो आज हम आपको दही हांडी पर्व का इतिहास भी बताएंगे और उससे जुड़ी हर जानकारी भी देंगे। सनातन में जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन श्री कृष्ण के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत, पूजा पाठ करते हैं और साथ में भगवान को प्रिय भोग भी अर्पित करते हैं। जन्माष्टमी के अगले दिन यानी 5 सितंबर को दही हांडी का पर्व मनाया जाने वाला है। दही हांडी खास तौर से महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, गोकुल में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस खास आयोजन को देखने और इसमें भाग लेने के लिए लाखों लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। इस उत्सव में भाग लेने वाले युवाओं को गोविंदा कहा जाता है।

दही हांडी केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि कान्हा की नटखट लीलाओं की यादों का उत्सव है जो हर कृष्ण भक्त के दिल को आनंद और भक्ति से भर देता है। दरअसल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय था। मुरलीधर अपने सखाओं के साथ आस पड़ोस के घरों के मक्खन को चोरी कर खाया करते थे। इसी वजह से लड्डू गोपाल को माखन चोर के नाम से पुकारा जाता है। कृष्ण की इस शरारत से परेशान होकर गांव की महिलाएं मक्खन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाने लगी ताकि कान्हा और उनके साथी मटकी तक न पहुंच सके। लेकिन कृष्ण ने अपने बाल सखाओं के साथ माखन चोरी का अनोखा उपाय खोज निकाला। कृष्ण अपने सखाओं के साथ मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी मटकी तक पहुंचकर माखन निकाल लेते थे। इस खेल में कई बार मटकी नीचे गिरकर टूट भी जाया करती थी। धीरे धीरे यही परंपरा दही हांडी उत्सव में बदल गई। श्री कृष्ण की इस बाल लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध में मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मक्खन एक तरह से धन का प्रतीक है। जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक धन हो जाता है तो उसे हम संचित यानी इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि धन अधिक होने पर पहले उसका कुछ भाग जरूरतमंदों को दान करें। श्री कृष्ण माखन चुरा कर पहले अपने उन मित्रों को खिलाते थे जो निर्धन थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके पास कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक है तो पहले उसका दान करो, बाद में उसका संचय करो। दही हांडी में दूध, दही, मक्खन, फल, शहद जैसी चीजें भरकर रस्सियों की मदद से किसी ऊंचे स्थान पर लटका दिया जाता है, जिसके बाद इस हांडी को फोड़ने के लिए प्रशिक्षित नौजवानों की टोली एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर मटके तक पहुंचने की कोशिश करते हुए मटकी फोड़ते हैं। मटकी फोड़ने वाली टोली को पुरस्कार से भी नवाजा जाता है। दही हांडी का पर्व एक संदेश भी देता है कि लक्ष्य चाहे जितना भी दूर हो, कठिन क्यों ना हो, उसे हिम्मत और एकता की मदद से हासिल किया जा सकता है, और इसका नजारा चारों ओर इस दौरान देखने को मिलता है। मुंबई में तो इस त्योहार को मनाने का तरीका एकदम अलग और रोमांचक है। यहाँ ये त्योहार संस्कृति को साहस से जोड़ता है। आमतौर पर मानव पिरामिड 6 या 7 मंजिलों तक बनती है, लेकिन कई टोलियां ऐसी हैं जो 9 से 10 मंजिलों की मीनारें बनाने की कोशिश करती हैं। इस जोखिम भरे खेल के लिए कई दिनों पहले से ही अभ्यास शुरू हो जाता है। दिन भर रोटी रोजगार में व्यस्त रहने के बाद रात के वक्त युवा खाली मैदानों में मानव पिरामिड बनाने का अभ्यास करते हैं। मानव पिरामिड बनाते वक्त नियम होता है कि भारी कदकाठी के लोग नीचे की ओर रहें, जबकि हल्के वजन के लोग पिरामिड के ऊपरी मंजिलों पर। पिरामिड के सबसे ऊपर आमतौर पर टोली का सबसे छोटा सदस्य होता है जो मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ता है। त्योहार के दौरान पारंपरिक भजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी विशेष धूम रहती है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण की उन बाल लीलाओं को जीवंत करना है जब वे अपने सखाओं के साथ मिलकर माखन चुराते थे। दुनिया में दही हांडी एक ऐसा खेल है जो श्री कृष्ण के जमाने से चला आ रहा है और इसको उसी श्रद्धा के साथ खेला जा रहा है।

0: दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट होगा जो हमारे श्री कृष्ण जी के जमाने से चलता आ रहा है। ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जो इतना पुराना चलता आ रहा होगा और उसको हमने जिंदा रखा हुआ है और आज ही हमारे संस्कृति जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इसको और प्रमोट करने की जरूरत है।
1: कहा जाता है कि दही हांडी की परंपरा 1907 में मुंबई से शुरू हुई थी। नवी मुंबई के पास गणसोली गांव में ये परंपरा पिछले 110 वर्षों से चली आ रही है। यहां सबसे पहले 1907 में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। यहां के हनुमान मंदिर में जन्माष्टमी के एक सप्ताह पहले से ही भजन कीर्तन शुरू हो जाता है। दही हांडी के आयोजन के साथ ये उत्सव समाप्त होता है। यहां से ये दही हांडी की परंपरा ठाणे, नवी मुंबई, डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, मीरा भयंदर, वसई विरार से लेकर पूरे महाराष्ट्र तक पहुंची और महाराष्ट्र के अलावा दूसरे कई राज्यों में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। वक्त के साथ साथ दही हांडी त्योहार में भी बदलाव आया है। इस त्योहार की चमक दमक बढ़ गई है और इसमें करोड़ों रुपए खर्च होने लगे हैं। त्योहार की लोकप्रियता को देखते हुए इसे भुनाने की खूब कोशिश होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां दही हांडी के कार्यक्रम को प्रायोजित करती हैं। मुंबई और ठाणे में राजनेताओं की ओर से प्रायोजित कई दही हांडियां लटकाई जाती हैं। यहां तक कि फिल्मी हस्तियों को भी आमंत्रित किया जाता है। लाखों रुपए तक के इनाम रखे जाते हैं। कई गोविंदाओं की टीमें इसके लिए पूरे साल तैयारी करती हैं। हालांकि हाल के सालों में सुरक्षा को लेकर काफी ध्यान दिया जाने लगा है। ऊंचाई सीमित रखी जाने लगी है। सुरक्षा के लिए गद्दे बिछाए जाते हैं और मेडिकल टीम तैनात रहती है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। इस पूरे आयोजन में संगीत, नृत्य और जोरदार जोश देखने को मिलता है। ढोल नगाड़ों की आवाज होती है और आसमान से फूलों की बारिश। कुल मिलाकर पूरा माहौल एकदम महोत्सव जैसा लगने लगता है। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: तो देखिए, जन्माष्टमी पर्व के साथ ही दही हांडी प्रतियोगिता का भी उत्साह हर साल ही रहता है। और देखिए, खासतौर से महाराष्ट्र के दही हांडी उत्सवों में तो कुछ सालों से महिला गोविंदाओं की टोलियां भी पूरे जोश और शक्ति के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती आ रही हैं। ऐसे में मुंबई की कुछ महिला टोलियां पिछले कई हफ्तों से पसीना बहा रही हैं और कई स्तर के पिरामिड बनाने का कड़ा अभ्यास भी कर रही हैं। इन्हीं में से एक है निर्भया महिला गोविंदा पथक। इस टोली की लड़कियों ने इस बार एक अनूठा और पारंपरिक लक्ष्मी लुक अपनाया है।

0: गोविंदाओं का यही जोश तो मुंबई की दही हांडी की शान है। मटकी फोड़ने के लिए तैयार हौसलों से भरी इन लड़कियों को देखो, जिनके दिल में हर साल बस जीत का अरमान है। वहीं मुंबई में टी शर्ट और शॉर्ट्स की बजाय लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहने ये महिला गोविंदा इंसानी पिरामिड बनाने का अभ्यास कर रही हैं। गोविंदा फेस्टिवल से पहले दही हांडी के लिए इस नारी शक्ति को तैयार कर रहे हैं महेश जगसनावले।
1: थर करके ऊपर जाके जो शंकर भगवान ऊपर जाके मतलब थर रचने वाले हैं, एंड उससे पहले हम लोग डांस भी इनको करवाते ताकि जो समाज के लिए जो पारंपरिक पद्धति का जो दही हांडी होना चाहिए वैसा हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। ज़्यादा थर न लगाते हुए 20 फुट का जो रूल है वैसे करके एक हमारा संदेश है कि सेफ्टी लेके ये सब करना जरूरी है।
0: दही हांडी पर्व के जश्न में सराबोर होने के लिए ये है निर्भया महिला गोविंदा पथक की लड़कियाँ। इस बार लक्ष्मी रूप लेकर सुरक्षा साधनों के साथ ऊंचाई पर बांधी गई हांडी फोड़ने के लिए ये लड़कियाँ पिरामिड बनाने की कड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं।
2: हम लोग को प्रैक्टिस करके एक महीना हो गया। हम लोग की पूरी गर्ल्स टीम है और हम लोग ने लक्ष्मी का लुक किया है। हम लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है, पूरा सेफ्टी रखा जाता है। हम लोग चार थर लगाते हैं। हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, मुझे 5-6 साल हुआ ये दही हांडी में।
0: देवी लक्ष्मी की तरह दिखने के लिए ये प्रतिभागी पारंपरिक आभूषण बिंदी और गजरा भी लगाती हैं, जो फैशन नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की मजबूती को दर्शा रही हैं। पिछले 2 महीने से यहाँ मौजूद छोटे बड़े लगभग 60 प्रतिभागी पूरे सुरक्षा साधनों के साथ बैलेंस आपसी तालमेल पर खास फोकस कर रहे हैं।
3: किसी का भी जो सेफ्टी है वो एकदम प्रॉपरली वो हैंडल करते हैं जैसे भी है चीज़ें। और फिर जैसे हमें ये बेल्ट दिया, ये टॉवल दिया है हमको अच्छे से बांध के, सो दैट हमको वहाँ पे पकड़ने के लिए प्रोटेक्ट कर सके हम एक दूसरे को। उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा है कैसे करना है, कहाँ पे पैर रखना है, कैसे बेल्ट पकड़ना है, ये सब वो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सर हम लोग को गाइड करते हैं।
0: पिछले 20 सालों से निर्भया महिला गोविंदा पथक से जुड़ी ये टीम न केवल दही हांडी जैसे पारंपरिक त्योहारों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी दर्ज करा रही है, बल्कि समाज को संदेश भी दे रही है कि मजबूत और सशक्त लड़कियां दही हांडी जैसे त्योहार की परंपरा को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कान्हा की नगरी की रौनक कैसी है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए त्योहार के मौसम में लगेगा ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां, बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्मोत्सव पर होगा विशेष अनुष्ठान, मंदिर की विशेष सजावट।
4: जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने के लिए कर रहे जबरदस्त तैयारी, नारी शक्ति भी करेगी कमाल।
3: देश भर में गणेशोत्सव की जोरदार तैयारियां, कर्नाटक में बनाई जा रही इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर।
4: बारिश थमने के बाद फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील।
3: भीड़ में 4 पीढ़ियों के बाद परिवार में बेटी का जन्म, रथ में निकाली गई शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों से नवजात का भव्य स्वागत हुआ।
4: चित्रकूट में घटने लगा मंदाग्नि का जलस्तर, लोगों ने ली राहत की सांस, सड़कों से हटाया जा रहा मलबा।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई में दही हांडी की रौनक दिख रही है, तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाने वाला है। मंदिर जो है वो सज रहे हैं और बाजार भी गुलजार है, लेकिन भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। जन्मोत्सव से जुड़ी तैयारियां करीब करीब अंतिम चरण में है। जन्माष्टमी के मौके पर देश भर से ब्रजभूमि आने वाले भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है।

0: आया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, तो ब्रज भूमि में रोशन हो उठे मंदिर और गूंजने लगे हैं बधाई गीत। ये उत्साह, ये उमंग और हर्षोल्लास भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव को लेकर है, जिसके लिए न सिर्फ पूरी मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजाई और सवारी जा रही है, बल्कि तमाम मंदिर भी रंग बिरंगी रोशन से जगमगा रहे हैं। इन्हीं में से एक है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जिसके शिखर से लेकर द्वार तक मनमोहक सजावट देखते ही बन रही है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान सज धज कर तैयार है। तमाम जो लाइटिंग है, साज सज्जा है, वो बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ की गई है। 5 दिवसीय जो उत्सव है ना, वो आज शुरू हो गया है। और उसकी बात की जाए तो लीला मंच पे भगवान की जो बाल लीला है, भगवान की जो सारी लीला है, वो की जा रही है।
0: बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को करीब 200 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। नवनिर्मित रजत कमल में विराजमान ठाकुर गोपाल जी का जन्म अभिषेक विशेष आकर्षण रहेगा। 4 सितंबर को सुबह 5:30 बजे मंगला आरती, सुबह 8 बजे पंचामृत अभिषेक और रात 10 बजे जन्म महाभिषेक होगा। रात 12 बजे भगवान के प्राकट्य दर्शन और आरती के बाद कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय से अभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद रजत कमल में ठाकुर जी का जन्म महाभिषेक होगा। वहीं श्रृंगार आरती रात 12:45 से लेकर 12:50 तक और शयन आरती रात 1:55 से लेकर 2 बजे तक होगी, जबकि श्रद्धालुओं का प्रवेश रात 1:30 बजे तक रहेगा।
1: सुबह से ही ढोल नगाड़े के साथ मंगला आरती होगी और भगवान कालहंस बंगले में विराज कर सुबह से शाम तक दर्शन देंगे। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो 5 दिवसीय उत्सव में ठाकुर जी की जो आराधना है, जो सेवा है, जो पूजा है और शाम के समय में भगवान का अभिषेक है, ये सारी चीजें होंगी। और वहीं अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है। विशेष प्रसाद यहाँ पंजीरी का, मेवा के लड्डू का, गोला की बर्फी का जो प्रसाद है, पंचामृत है, वो यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अर्पण किया जाएगा, दिया जाएगा भगवान का प्रसाद।
0: हर साल की तरह इस साल भी ब्रजभूमि में जन्मोत्सव के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित दर्शन का मौका मिले, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी और CCTV से निगरानी रहेगी। इसके अलावा ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है। जन्माष्टमी से जुड़ी इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए आला अफसरों ने ग्राउंड पर उतरकर तैयारियों का जायजा भी लिया।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि में 5253वां जन्म दिवस बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर में बांट करके मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव सभी में खूब सजावट की जा रही है। यात्रियों को भीड़ से बचाने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से दर्शन कराया जाएगा। सभी मंदिरों के जो प्रबंधक हैं, जो पुजारीगण हैं, जो गोस्वामी बंधु हैं, सबके साथ बैठक करके किसी प्रकार से दर्शनार्थियों को और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन करने में असुविधा ना हो।
0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे ब्रज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग मिलकर मनाते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पूरे देश में इन दिनों कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। आपको मथुरा के बाजारों की एक झलक अब दिखाते हैं। यहाँ की हर गली और बाजार में एक जैसा नजारा है। दुकानें लड्डू गोपाल के सुंदर पोशाक, मुकुट, मोर पंख, बांसुरी और झूलों से भरी पड़ी है और कृष्ण भक्त बड़े ही उत्साह के साथ अपने कान्हा के श्रृंगार की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं।

0: ब्रजधाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की उमंग हर ओर दिखाई दे रही है और मथुरा के तो कहने ही क्या। बाजार सज गए हैं, मुरलीधर की पोशाक और श्रृंगार के सामान से पूरा बाजार पटा हुआ है। यहाँ गिरधारी के सुंदर कपड़े, मुकुट, मोर पंख, बांसुरी और झूलों की भरमार है। होली गेट से द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के बाजार तक हर दुकान को जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष तौर पर सजाया गया है।
1: इस तरह के गोपाल जी बाजार में सज के तैयार हैं और ये पोशाक का बाजार है। यहाँ पोशाक भी बिक रही है, ठाकुर जी के झूला भी बिक रहे हैं, गोपाल जी भी बिक रहे हैं, तो सभी चीज इस दुकान पर बिक रही है। और जो द्वारकाधीश मंदिर के पास का बाजार है, सभी श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान की पोशाक अपने ठाकुर जी के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि ब्रज में एक बड़ा ठाकुर जी का जो जन्म है ना, वो बड़ा अद्भुत और अनेक तरीके से मनाया जाता है। ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाई जाएगी, नए उनके झूले होंगे, नए वस्त्र होंगे, नई बांसुरी होगी, नई मुकुट होगा।
0: बड़ी तादाद में ग्राहक मथुरा के बाजारों का रुख कर रहे हैं। जाहिर है इससे दुकानदार खुश हैं और इनका मानना है कि इस साल कारोबार पहले की तुलना में बेहतर हो रहा है। दावा ये भी है कि इनके पास लड्डू गोपाल के श्रृंगार से जुड़े सामान का जबरदस्त कलेक्शन है जो कृष्ण भक्तों को लुभा रहा है।
2: इस बार सब जो भी हैंडक्राफ्ट वर्क है, थ्री पीस में, ये सब स्टोन बूटी वाला सब बुटीक पीस इस बार ट्रेंड में बहुत काफी है। कस्टमर की भी काफी डिमांड है। रेगुलर पैटर्न पहना पहना के तो कस्टमर परेशान हो चुका है, तो उन्हीं की डिमांड देखते हुए हम ये सुंदर सुंदर कली के पैटर्न में और यूनिक इंग्लिश कलर जो है, रेड, पीला सब पहना चुके हैं। इसीलिए हम कस्टमर्स के लिए इस बार नए से नई वैरायटी लाने की हमने कोशिश की है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं हमारे स्टॉक में वेरिएशन, कितना सुंदर सुंदर कलर, कितना सुंदर सुंदर पगड़ी के साथ ये आपको अवेलेबल रहेगा। ये देखिए, ये तो स्पेशली जन्माष्टमी के लिए हमने डिजाइन करवाया है विद लड्डू गोपाला विद मैचिंग पगड़ी।
0: दिल्ली, भरतपुर और आगरा जैसी आसपास की जगहों से ग्राहक यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने आराध्य ठाकुर जी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। कोई अपने नन्हे काना के लिए मोर पंख थीम वाली ड्रेस ढूंढ रहा है, तो कोई फूलों से सजा झूला तलाश रहा है। इस जन्माष्टमी हर कृष्ण भक्त चाहता है कि उसके लड्डू गोपाल सबसे सुंदर दिखें।
3: होली की पूरी फूल तैयारी हो रही है। मथुरा जैसी जन्माष्टमी कहीं नहीं होती,
1: कहीं नहीं होती,
3: नहीं होती, नहीं।
1: एकदम यहाँ सारी पोशाक वोशाक सब
3: जी जी बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर
1: सब मिल जाता है,
3: जो हमारे राजस्थान में भी नहीं है।
1: नहीं है,
3: नहीं।
1: क्या क्या क्या नाम है आपका?
4: भावना।
1: क्या तैयारी कर रही है
4: भैया? ठाकुर जी की कह रहे जन्माष्टमी की, हम तो आगरा से मथुरा मनाने आए।
1: अच्छा।
4: तो यहाँ की तरह कहीं भी नहीं मनती है।
1: अच्छा।
4: यहाँ की भाई अलग ही वो है मनाने वाली, और यहाँ भगवान जी का जन्म हुआ है, सारी लीला है चाहिए भगवान ने, भाई यहाँ की तो है ही नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी सब कुछ है यहाँ, पोशाक, नेत्र, मालाएं, ठाकुर जी, यहाँ की से कोई, यहाँ की से तैयारी कहीं नहीं है भैया।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर स्थानीय दस्तकारों की भी चांदी है। यहाँ के कारीगर बड़ी ही शिद्दत और मेहनत के साथ बाल गोपाल की पोशाक तैयार कर रहे हैं और कृष्ण जन्मोत्सव में भागीदारी दर्ज करा रहे हैं।
5: जो है मतलब जो कि इस वक्त जो है मतलब तुम्हारे जो है पीले कलर की ज्यादा चल रही है इस वक्त, और पोशाकों की भार का ऑर्डर भी है हमारे पास में अपने, और जन्म स्थान का भी हमारे पास ऑर्डर है, तो ये चल रही है। और मतलब जो रात दिन मतलब जो हमारे कारीगर भी सबरे काम कर रहे हैं, तो उन पोशाकों को पूरा करके जल्दी से जन्माष्टमी के लिए तैयारी करी जा रही है।
1: पूरा जो बाजार है, पूरा बाजार है, बड़ी भीड़ है बाजार में, और तमाम जो लोग हैं भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। और पूरे मथुरा की बात करें तो पूरा मथुरा सज धज के ठाकुर जी के जन्मोत्सव के लिए तैयार है। और पोशाक का बाजार है, चाहे ठाकुर जी के मुकुट श्रृंगार का बाजार हो या और भी किसी चीज का बाजार हो, वहाँ सभी गुलजार हैं, लोग पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण के लाला का जन्मोत्सव मनाने के लिए, नंदलाल का जन्मोत्सव, अजन्मे का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग तैयार हैं। और बड़ी तादाद में ठाकुर जी के वस्त्र, नेत्र, ठाकुर जी का श्रृंगार खरीद कर ले जा रहे हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
6: चलिए ऐसी ही तस्वीरें हरियाणा के करनाल से भी सामने आ रही हैं। कान्हा पार्लर बहुत सुर्खियों में है। यहां जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कान्हा जी पार्लर नाम से मशहूर इस जगह में ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल का भोग के साथ विशेष श्रृंगार होता है और केवल जन्माष्टमी ही नहीं बल्कि कई दूसरे त्योहारों के समय भी ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए कई दिनों पहले से लंबी वेटिंग लिस्ट यहां पर चलती है।

0: नन्हे से कान्हा की मुस्कान प्यारी, मोर पंख सजे हाथों में बंसी भी प्यारी, जन्माष्टमी के लिए सजे लड्डू गोपाल की मूर्ति लगे सबसे न्यारी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर घर और मंदिरों को सजाने के अलावा राधा कृष्ण को नई पोशाक पहनाकर झांकियों का भी आयोजन होगा। ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर झूले, मुकुट, मोर पंख और वस्त्र भी लोग खरीद रहे हैं। तो वहीं लोगों के आराध्य कान्हा का भी पार्लर में श्रृंगार हो रहा है। जी हाँ, जिस तरह से विवाह और दूसरे समारोह में जाने के लिए लोग ब्यूटी पार्लर में सिंगार करवाते हैं, वैसे ही अब कान्हा जी को भी पार्लर में सजाने सवारने का काम काफी प्रचलित हो रहा है। जन्माष्टमी से पहले करनाल के कलंदरी गेट में कान्हा जी का पार्लर खुला है, जहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है और उनको सजाने सवारने वाले हैं संजीव सोनी।
1: थोड़ा ठाकुर जी, देखो सभी लोग अपने अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लेकर आते हैं और उसमें देखो हर तरह से जैसे उनके भाव होते हैं उस तरह से हमें बताते हैं कि श्रृंगार इस तरह से करना है ठाकुर जी का। और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है कि जैसे सबके ठाकुर जी, देखो आजकल थोड़ा श्रृंगार में समय लगता है, तो हमारे यहाँ ठाकुर जी की भोग सेवा भी पूरी तरह से होती है। हम सभी ठाकुर जी को, क्योंकि सेवा के ठाकुर जी है तो हमें भोग लगाना पड़ता है।
0: संजीव सोनी जो अपने इस पार्लर में लड्डू गोपाल की मूर्तियों का बेहद खूबसूरत और सलोना श्रृंगार करते हैं, वो बताते हैं कि जीवन में एक ऐसा भी समय था जब वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, मगर एक घटना ने उनको कान्हा जी की भक्ति में ही लीन करवाने के लिए मानो प्रेरित किया।
1: एक टाइम ऐसा भी था कि मैं मंदिर नहीं जाता था और अपने घर में तुलसी तक नहीं लगने देता था। वो ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी, हमारे घर के पास ही मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हुई और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने मुझे वहाँ सेवा और पूजा में जाने के लिए मनाया, तो मैं गया वहाँ पे। उस दिन मैंने अपने हाथ से ठाकुर जी का अभिषेक श्रृंगार किया और उसके बाद से ही ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपने साथ ही, मतलब अपने कार्य में सहभागी बनाया। मतलब मुझे कोई भी कार्य, मंदिर की सेवा मिल जाती है, जन्माष्टमी की शोभा यात्रा की, शिवरात्रि की शोभा यात्रा में कोई ना कोई छोटी मोटी सेवा या बड़ी सेवा कोई वो दे देते हैं। तो बस तभी से वो करते करते श्रृंगार की सेवा फिर ठाकुर जी ने तभी मेरा शुरू कराया।
0: पिछले कई साल से संजीव सोनी की कृष्ण भक्ति के माध्यम से साज सज्जा कला इतनी लोकप्रिय हो गई है कि आज हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब समेत दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु अपने अपने लड्डू गोपाल का संजीव सोनी के इस पार्लर से श्रृंगार कराना पसंद कर रहे हैं।
2: पूरी फैमिली इनके पास ही आती है, तो जो भी श्रृंगार का मटेरियल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, हर एक क्वालिटी वाइज होते हैं। जो भी हम लोग जैसे जन्माष्टमी के लिए आते हैं तो ड्रेसेस वगैरह भी डिफरेंट होती है, यूनिक, सब कुछ यूनिक होता है। बस
3: मैं इनसे लगभग 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ आने के बाद कहीं और जाने का मन ही नहीं हुआ, और जो इनकी कलाकारी है वो आप देख ही रहे हो, बहुत अति सुंदर और बिल्कुल एक समझ लो कि भावना से जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात ही है। और यहाँ जो भी चीज़ है मतलब एकदम प्योरिटी और स्वच्छता की गारंटी है।
0: इस पार्लर में जो भी आस्थावान अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लाता है उसे 15 से 20 दिन पहले एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है ताकि पूरे सेवा भाव और नियमों के अनुसार ही कान्हा जी का मेकअप किया जा सके। वैसे कहते भी हैं जहां कान्हा विराजते हैं वहां खुशियां खुद ही चली आती हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं के लिए भी उनके लड्डू गोपाल जी का इस पार्लर में आना, उनका भोग के साथ श्रृंगार होना ही शुभता का ही संकेत है। करनाल से कमलदीप संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए लंच टाइम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: चलिए, कृष्णोत्सव के बाद अब बात गणेशोत्सव की भी होगी, जिसके रंग अभी से शहर शहर नजर आने लगे हैं। खासकर गणेशोत्सव की रौनक महाराष्ट्र में बिखरना शुरू हो गई है। भले ही अभी उत्सव का आरंभ कुछ दिन बाद है, लेकिन इस दौरान गणेश प्रतिमाओं का पंडालों में भव्य प्रवेश का सिलसिला जारी है। हाल ही के दिनों में मुंबई के परेल में दो पंडालों में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं को बड़े ही धूमधाम के साथ लाया गया। पहले है अनोखे संतुलन वाले परेलचा महाराजा, तो दूसरे है परेलचा राजा। वहीं पुणे में भक्तों में भारी उत्साह है, बाजारों में रौनक है। नागपुर में बाजार सज गए हैं, भव्य दिव्य गणपति बप्पा की प्रतिमा बाजार की रौनक बढ़ा रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस भव्यता के साथ मुंबई में भगवान गणेश के दोनों ही रूपों को आस्था की बयार के बीच में बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ पंडालों में लाया गया।
2: आ गए राजा धीराजा, छा गए परेलचा राजा और महाराजा। गणेश उत्सव के लिए मुंबई में जहां बाप्पा की भव्य प्रतिमाओं को पंडाल मिलाने का सिलसिला चल रहा है, वहीं हर तरफ गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज के साथ अपने आराध्य को पंडाल तक लाने के ये अनोखे पल हर आस्थावान को ऊर्जा और जोश से भर दे रहे हैं। इस बीच बैलेंसिंग राजा के नाम से मशहूर परेल के महाराजा की 35 डिग्री पर संतुलित ये खूबसूरत और भव्य प्रतिमा खूब चर्चा में है, जिसकी ऊंचाई 21 फीट है। लेकिन इस बार गणपति बप्पा के अलावा नारद मुनि की भी बैलेंसिंग मूर्ति लगाई गई है, जिन्हें मूर्तिकार अरुण जी दत्ते ने आकार दिया है। परेल के महाराजा की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में भक्त सड़कों पर नजर आ रहे थे। हर कोई उत्साह और खुशी से सराबोर, बाकायदा नाचते झूमते गाते बजाते अपने महाराजा को पंडाल लेकर पहुंचा।
3: इस साल की आपको बात करें तो गणपति जी सिर्फ एक लेवल पर बैलेंस में थे, लेकिन इस बार देखिए दो दो बैलेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। पहले गणपति महाराज की खूबसूरती की आपको बात बताएं तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये मंडल मनाने वाला है, यानी कि परेल के महाराजा मनाने वाले हैं।
2: जहां परेलचा महाराजा के अपने पंडाल में भव्य आगमन के साथ अब गणेशोत्सव के शुरू होने का इंतजार है, तो वहीं इस बार परेलचा महाराजा पंडाल ने अपने 83वें सफल साल में दो दो प्रतिमाओं को बैलेंसिंग रूप में दर्शाकर श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया।
4: पिछले साल जो महाराजा था 2023 और 2024 और 2025, तो महाराजा युद्ध के लिए निकला था, जो अपने दानव है उनका वध करने के लिए। तो जो वध करने के बाद जो सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रेशन करने के लिए देवताओं के वो सेलिब्रेशन देवताओं में चालू है। वो सेलिब्रेशन के लिए नारद जी है, वो खुद अपने कंधे पे बप्पा की सवारी लेके वो देव देवताओं में वो सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं। ये कंसेप्ट ये साल अब हमने दिखाया जो कि डबल बैलेंसिंग में है।
2: साल 1943 से विघ्नहर्ता गजानन महाराज हर बार यहां नए नए रूप और थीम में भक्तों को दर्शन देते आ रहे हैं, तो इस बार एक नहीं बल्कि दो दो बैलेंस के साथ यहां का गणेशोत्सव सुर्खियों में है। कुछ ऐसी ही आस्था, जोश और उत्साह के रंग बिखरे परेलचा राजा के पंडाल आगमन के दौरान भी। भले ही गणेशोत्सव आरंभ होने में कुछ दिन है, लेकिन पर्व का उत्साह ये तस्वीरें साफ बयां कर दे रही है। फिलहाल तो मुंबई समेत पूरे ही महाराष्ट्र में बप्पा के स्वागत में हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया का जयकार है। यकीनन अपने गजानन के प्रति आस्थावानों की ऐसी दीवानगी गणेशोत्सव के दौरान पूरे रंग में दिखने वाली है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
5: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए त्योहार के मौसम में लगेगा ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां, बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्मोत्सव पर होगा विशेष अनुष्ठान, मंदिर की विशेष सजावट। देश भर में गणेश उत्सव की जोरदार तैयारियां, कर्नाटक में बनाई जा रही इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। बारिश थमने के बाद फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। भीड़ में चार पीढ़ियों के बाद परिवार में बेटी का जन्म, रथ में निकाली गई शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों से नवजात का हुआ भव्य स्वागत। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 78,000 पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने की योजना, 10 साल तक टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस माफ। चित्रकूट में घटने लगा मंदाकिनी का जलस्तर, लोगों ने ली राहत की सांस, सड़कों से हटाया जा रहा मलबा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: बाबा केदार के भक्तों के लिए राहत की खबर, बारिश थमने के बाद मौसम हुआ साफ, शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। देश भर में श्री कृष्णम जन्मोत्सव को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम स्वरूप, 4 सितंबर को बद्रीनाथ धाम में धूमधाम से मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। अर्धरात्रि में होगा भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीतात्मक उत्सव, जन्माष्टमी के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा के साथ लगाया जाएगा विशेष भोग, रात में जन्मोत्सव के समय विशेष आरती के बाद श्रद्धालुओं को वितरित होगा प्रसाद। मंदिर के सभा मंडप में श्री कृष्ण के लिए तैयार विशेष डोल में होता है जन्मोत्सव, जन्माष्टमी की रात सामान्य दिनों की तुलना में देर रात होती है बद्रीनाथ की शयन आरती। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के 5,253 जन्मोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में, दुल्हन की तरह सजी मथुरा नगरी। शहर के लगभग 25 प्रमुख चौराहों और तिराहों की विशेष साज सज्जा, नगर निगम की टीमें चौराहों को आकर्षक बनाने में जुटी। रात की रोशनी में जगमगाया श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, भव्य सजावट से माहौल में घुली दिव्यता। इस बार उत्सव को और भी खास बनाने की तैयारी, लगभग 500 ड्रोन के साथ किया जा रहा है विशेष ड्रोन शो का आयोजन। जन्माष्टमी पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद, नगर निगम ने सुरक्षा और साफ सफाई के किए पुख्ता इंतजाम। जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने के लिए कर रहे हैं जबरदस्त तैयारी। कई स्तर के मानव पिरामिड बनाने की चल रही है प्रैक्टिस, मुंबई और थाने में होती है बड़ी दही हांडी प्रतियोगिताएं, जहां रखे जाते हैं लाखों रुपए के नकद पुरस्कार। देश भर में विघ्नहर्ता के आगमन की तैयारियां तेज, कर्नाटक के रामनगर में बनाई जा रही बप्पा के अलग अलग स्वरूपों और आकार की प्रतिमाएं। प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी, गोबर और प्राकृतिक रंगों से हो रहा है मूर्ति का निर्माण, पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेहद सराहनीय पहल। गणपति के श्रृंगार के लिए प्राकृतिक रंगों का किया जा रहा है इस्तेमाल, बारीक नक्काशी से हो रही है सजावट। पुणे में गणेशोत्सव की तैयारियां अब आखिरी दौर में पहुंच गई हैं, गणपति कारखानों में दिन रात बप्पा की मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कहीं बप्पा की आंखों में जान डाली जा रही है तो कहीं शानदार नक्काशी और रंग रोगन का कार्य जारी है। मूर्तिकार छोटे से लेकर 12 फीट तक की गणपति मूर्तियां कर रहे हैं तैयार। कूड़े के कारखानों में डगरू शेठ, पेशवाई और बाल गणेश जैसे कई रूपों की हो रही बप्पा तैयार। हर मूर्ति को मूर्तिकार अपनी खास कारीगरी से दे रहे हैं अलग पहचान। बप्पा को घर लाने के लिए भक्त भी कारखानों का कर रहे हैं लगातार रुख। कोई पारंपरिक मूर्ति पसंद कर रहा है तो कोई आधुनिक अंदाज वाले गणपति चुन रहा है। पुणे के बप्पा महाराष्ट्र ही नहीं देश विदेश तक पहुंचते हैं। गणेश उत्सव करीब आते ही कारखानों में गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से माहौल भक्तिमय उठता है। श्री अमरनाथ यात्रा के आधिकारिक समापन के बाद पुलवामा के नवदल इलाके में पारंपरिक नवदल तीर्थ यात्रा आयोजित। हजारों तीर्थयात्रियों ने लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से पूजा पाठ के साथ भंडारे का भी किया गया आयोजन। अमरनाथ यात्रा के औपचारिक सम बेहद शुभ और अनिवार्य माना जाता है स्नान। आज तय होगा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ। हजारों में चुने गए केवल 3 नाम। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के स्थान मणि रामदास छावनी में होगी बैठक। राम मंदिर ट्रस्ट के महत्वपूर्ण बैठक के लिए कई प्रमुख ट्रस्टी पहुंचे अयोध्या। सीईओ की नियुक्ति के साथ ट्रस्ट के डीड में बदलाव पर भी होगी चर्चा। प्रस्तावित संशोधन में सीईओ के नए अधिकार जिम्मेदारियां शामिल किए जाने की संभावना। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में आस्था का भव्य नजारा। तिरुचेंदूर स्थित प्रसिद्ध अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में अग्नि उत्सव की शुरुआत। 12 दिन चलेगा ये धार्मिक उत्सव। तमिल महीने अवनी यानी अगस्त सितंबर में मनाया जाता है ये उत्सव। पारंपरिक ध्वजारोहण के साथ होती है अवनी उत्सव की शुरुआत। विशेष विश्व रूप दर्शन और पूजा अर्चना के लिए उमड़े भक्त। उत्सव में भाग लेने के लिए तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में थूथुकुड़ी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष अनुष्ठान और जुलूस की तैयारियां पूरी। पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती आयोजित। भगवान जगन्नाथ को ब्रह्म मुहूर्त में जगाने के लिए की जाती है ये भव्य आरती। बीड़ में 4 पीढ़ियों के बाद परिवार में बेटी का जन्म। मासूम बच्ची का अस्पताल से घर तक हुआ शानदार स्वागत। रथ में बिठा के निकाली गई बेटी के लिए शोभा यात्रा। नवजात बच्चे और उसकी मां का ढोल नगाड़ों के थाल पर और फूलों के साथ हुआ वेलकम। गार्गी रखा गया है मासूम का नाम। लंबे समय बाद घर में बच्चे के जन्म से परिवार हुआ भावुक। मोहन कैबिनेट का फैसला। कैबिनेट ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 3 हिस्सों में बांटने को मंजूरी दी। पुनर्गठन के बाद भोपाल में मध्य भारत उज्जैन में मालवा और जबलपुर में महाकौशल के नाम से बनेंगी 3 अलग अलग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज। त्योहारों से पहले यूपी में बिजली व्यवस्था होगी दुरुस्त। योगी सरकार 15 सितंबर से चलाएगी अनुरक्षण माह। जर्जर तार और पेड़ की डालियों की होगी छटाई। उत्तर प्रदेश में आयोजित आउटसोर्स कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। सेवा सुरक्षा और हितों के संरक्षण का भी दिया भरोसा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 78,000 पुराने कमर्शियल वाहन बदलने की तैयारी। केंद्र की परिवर्तन योजना को मिली मंजूरी। BS6 CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए वाहन मालिकों को आर्थिक प्रोत्साहन देगी रेखा सरकार। गाड़ी बदलने पर 10 साल तक टैक्स में छूट। दलाई लामा ने तिब्बत और नेपाल में बाढ़ की वजह से जान गंवाने वालों के प्रति जताई संवेदना। जिंदगियों के पटरी पर लौटने के लिए की प्रार्थना। गया में OTA ने समर टर्म के लिए आयोजित की कमेंडेंट अवार्ड समारोह।

0: में प्रशिक्षण ले रहे 254 कैडेट्स बनेंगे अधिकारी, कमांडेंट जनरल ने बढ़ाया उत्साह। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने कैडेट्स को चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए सलाह, लगन और अनुशासन से कार्य करने के लिए किया प्रेरित। वडोदरा में पत्र लेखन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया इसमें हिस्सा। भारतीय वायुसेना की शक्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, एयर वाइस मार्शल बनने वाली पहली महिला नॉन मेडिकल अफसर बनी। 30 साल से ज्यादा की सेवा के बाद 1 सितंबर को उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली, उन्हें एयर स्टाफ की असिस्टेंट चीफ नियुक्त किया गया। यूपी पीईटी 2026 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई। अब 7 सितंबर तक कर सकेंगे पीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन, यूपीएसएसएससी ने आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर की। दिल्ली में महिलाओं ने सिर्फ 4 महीने में 8 करोड़ से ज्यादा मुफ्त बस सफर किए, अब पिंक टिकट 17 सितंबर तक चलेगा, इसके बाद स्मार्ट कार्ड से मुफ्त सफर होगा। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे सोनू सूद, भारत से लाए कंबल, राशन और बाकी जरूरत का सामान। सोनू बोले, संकट के इस दौर में जरूरतमंदों के साथ खड़ा होना हम सभी का फर्ज, सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले महीनों में भी पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। संकट में नेपाल के साथ खड़ा हुआ भारत, 5.5 टन दवाओं के साथ मदद की 5वीं खेप भेजी, इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण शामिल। नेपाल में रसुवा फ्लैश फ्लड पीड़ितों की पहचान के लिए भारत की 19 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने संभाला अपना मोर्चा, डीएनए सैंपल की जांच शुरुआत। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, त्रिशूली में मलबा हटाने में जुटी नेपाली सेना। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में प्रवासी पक्षियों का देखा सुंदर नजारा, इस बार समय से पहले आए परिंदे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सैन्य अधिकारियों ने गाड़ी को किया रेस्क्यू, भूस्खलन में फंस गई थी गाड़ी। भारी बारिश के कारण बढ़ गई है भूस्खलन की घटनाएं, यात्रियों को दी गई है सावधान रहने की हिदायत। उत्तराखंड के खटीमा में भारी बारिश ने आम जनजीवन को कर दिया है बुरी तरीके से प्रभावित, सड़कों पर भरा पानी। शहर के निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति, लोगों को सावधान रहने की दी जा रही है हिदायत। उत्तरकाशी में बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन, पहाड़ी मलबे में फंसे यात्री, बस को निकाला गया सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी, सोलन में नदी नाले उफान पर, कई जगह पर सड़कें बनी सैलाब। भारी मलबे और बड़े पत्थरों से सड़कें बाधित, लोगों की बड़ी मुश्किलें, 4 सितंबर तक बारिश से राहत के आसार नहीं। मध्य प्रदेश के बाणसागर डैम के गेट खुलने से रोहतास में बढ़ा सोन नदी का जलस्तर, नदी किनारे रहने वालों को दूर जाने की सलाह। बिहार के नवगछिया में उफान पर गंगा, मंत्री विधायक ने किया इसका निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मिर्जापुर द मूवी के मेकर्स का बड़ा धमाका, रिलीज से 3 दिन पहले आउट हुआ नया गाना घूम घूम। मनोज बाजपेयी की फिल्म लास्ट मैन इन टावर का ट्रेलर हुआ रिलीज, व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा की नॉवल पर आधारित है ये फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हनुमान अंश ने कर दिया कमाल, मूवी ने 25 दिनों में 47 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई कर डाली। पर्दे पर आदमखोरों के शिकारी बनेंगे अक्षय कुमार, मशहूर शिकारी और पर्यावरण प्रेमी रहे जिम कॉर्बेट की बायोपिक में करेंगे काम। रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म मायसा के रिलीज डेट का ऐलान, 27 नवंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में एक दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगे रश्मिका मंदाना।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए त्योहार के मौसम में लगेगा ट्विस्ट का तड़का।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: थाईलैंड में आजकल एक बहुत पुरानी परंपरा जोर पकड़ रही है, एक अनूठे अनुष्ठान में लोगों का विश्वास तेजी से बढ़ा है। इस मान्यता के तहत यहाँ लोग चेहरे पर सोने की परत चढ़वाते हैं और उनका मानना है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
2: ये महज चेहरे पर सोने की परत नहीं, उम्मीद की वो चमक है जो थाईलैंड के इन लोगों में भरोसा जगा रही है कि सब ठीक हो जाएगा। आर्थिक उथल पुथल के बीच जिंदगी वापस पटरी पर लौट आएगी। तस्वीरें थाईलैंड के अयुथिया शहर की हैं, या न्यूगोन लान पार्क में एक विशेष मन्नत के साथ श्रद्धालु जुट रहे हैं। ये स्थान धन समृद्धि के आह्वान के लिए ढोल बजाने की अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। इसी मान्यता की वजह से ये श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि इनके चेहरे पर गोल्ड लीफ लगाई जा सके। दरअसल पार्क में पौरके की प्रतिमा स्थापित है। पौरके को यहाँ खुशहाली चाहने वालों के रक्षक के तौर पर पूजा जाता है। उनके अनुयायी चेहरे पर सोने की पत्तियां चढ़वा रहे हैं ताकि देव की इन पर कृपा हो और सौभाग्य की प्राप्ति हो। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से आंतरिक शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास भी। थाई इकोनॉमी की स्लो ग्रोथ, बढ़ती लागत और घटते उपभोक्ता खर्च के बीच यहाँ के लोगों में इस अनुष्ठान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। यहाँ कई व्यापारी इस प्रथा को मनोबल बढ़ाने और कारोबार में सौभाग्य लाने का माध्यम मानते हैं। जाहिर है आर्थिक कठिनाइयों के दौर में ये लोग मेहनत के साथ साथ सदियों पुरानी परंपरा में आस्था और उम्मीद तलाश रहे हैं, अपने ईष्ट से सौभाग्य की कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां, बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्मोत्सव पर होगा विशेष अनुष्ठान, मंदिर की विशेष सजावट। देश भर में गणेशोत्सव की जोरदार तैयारियां, कर्नाटक में बनाई जा रही इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। बारिश थमने के बाद फिर शुरू हुए केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन, लोगों से मौसम देखकर ही यात्रा करने की अपील। भीड़ में चार पीढ़ियों के बाद परिवार में बेटी का हुआ जन्म, रथ में निकाली गई शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों से नवजात का हुआ भव्य स्वागत। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 78,000 पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने की योजना, 10 साल तक टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस माफ। चित्रकूट में घटने लगा मंदाकिनी का जलस्तर, लोगों ने ली राहत की सांस, सड़कों से हटाया जा रहा मलबा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

हेलो दोस्तों, मैं हूं रिंकी भाभी और आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां, जहां आपको मिलता है सीरियल, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया का हर मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ।

सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए। जन्माष्टमी के मौके पर आएगा बंदूक वाला ट्विस्ट, क्या धैर्य लेगा विक्रांत की जान।

0: स्वाति को बांधनी है वृंदा को राखी। इसी बात पर माधवी ने किया बवाल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: अर्चना गौतम की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए सितारे, देखेंगे ये नज़ारे।
2: चलो एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं।
3: ओके।
2: आपकी फेवरेट आइसक्रीम
3: मैंगो।
2: आपकी बेस्ट फ्रेंड
3: प्रो।
2: आपको दुनिया में किससे ज्यादा डर लगता है?
3: आपको और पापा को डिसअपॉइंट करने से।
2: और वो लड़का कौन है जिसे आप पसंद करते हो?
0: मायरा की जिंदगी में हुई हम सफर की एंट्री, अभीरा को हुई चिंता।
4: ये क्या हो रहा है आज, मैं ऐसे कैसे घर जाऊंगा?
5: कान्हा जी प्लीज किसी को मेरी हेल्प के लिए भेज दीजिए।
0: दिलों की रामलीला की लीला यानी आस्था शर्मा का देखेंगे मेकओवर। जानेंगे कैसा है उनका सीरियल में लुक, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

सीरियल तू ही रे में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है और स्वाति बांधना चाहती है वृंदा को राखी, लेकिन स्वाति की इस बात से भड़क जाती है माधवी और कर देती है हंगामा।

ताजा हुई बीती यादें बरसे आंखों से आंसू। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में आज माधवी का गुस्सा अपनी ही बेटी स्वाति पर भड़क उठा है। असल में स्वाति वृंदा को रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधना चाहती थी। ऐसे में वहां पहुंच गई माधवी, जिसने न सिर्फ स्वाति के हाथ में रखी थाली को हाथ मारकर गिरा दिया बल्कि स्वाति पर चिल्लाने भी लगी। ऐसे में स्वाति अपने सामान को बिखरा देख फूट फूट कर रोने लगी, उसे समेटने लगी और माधवी ये देखकर हैरान है।

इसी बीच माधुरी की नजर पड़ जाती है टेबल पर रखे उस डिब्बे पर, जिसमें स्वाति अपनी बहन नीति के लिए सारी राखियां पिछले 17 सालों से इकट्ठा कर रही है। ऐसे में वो डिब्बा देखकर माधुरी का गुस्सा भड़क गया और वो पहुंच गई स्वाति पर अपना सारा गुस्सा उतारने के लिए।

0: स्वाति क्या है, क्या है? दीपी की राखी है, तुझे पता है ये क्या मीन करती है मेरे लिए? और तू इसे बांधे जा रही थी
1: 17 साल पहले? अगर आपने अपनी बेटी को ये
2: अम्मू को मैं संजू के घर पे छोड़ के आती हूँ, और क्योंकि मेरी जो छोटी बहन होती है नीति, वो बचपन में मर जाती है, तो मैंने कभी रक्षाबंधन नहीं मनाया होता, बट मुझे अम्मू में वो बहन दिखने लगती है, उसके साथ मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग ऐसा दिखने लगता है। मुझे मन करता है कि मैं जाती हूँ अपने ससुराल, पूरा रक्षाबंधन की डेकोरेशन करती हूँ कि राखी बांधूंगी मैं अम्मू को, बट फिर मम्मा आती है और बिल्कुल थाली वाली फेंक देती है, बिल्कुल मना करती है, नहीं मैं इसे बेटी नहीं मानती, स्टफ एंड ऑल दैट। पर फाइनली मैं इतने सालों के बाद अम्मू को राखी बांध पाती हूँ। तो
3: भाई वृंदा तो माधवी को फूटी आंख नहीं भाती, और आज तो स्वाति ने पिछले 17 सालों से जो यादें माधवी के दिल में दबी हुई हैं उन्हें ताजा कर दिया, और माधवी इमोशनल होने लगी। ऐसे में स्वाति ने अपनी माँ को गले तो लगाया, लेकिन उसे बताना चाहा कि उसका दिल बार बार वृंदा को अपनी बहन मानता है, लेकिन माधवी स्वाति को समझाने लगती है।
1: ये नीति नहीं है, ये कल आपको समझ क्यों नहीं आता है? अम्मू में मुझे मेरी नीति दिखती है, मेरी छोटी बहन दिखती है, आपको क्यों नहीं समझ आता है? अम्मू में मेरी नीति दिखती है मेरे को, मम्मा मैं आपको कैसे समझो? कई बार खून के रिश्तों से ऊपर दिल के रिश्ते होते, आप समझते क्यों नहीं है माँ?
3: भाई स्वाति के लिए तो अम्मू अब नीति पूरी तरह से बन चुकी है। ऐसे में स्वाति भी जिद पर आ गई है कि वो आज अम्मू को राखी बांध कर ही रहेगी, लेकिन माधवी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसीलिए देखिए कैसे वो स्वाति और वृंदा दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है। और तो और माधवी ने स्वाति के सामने शर्त भी रख दी, और स्वाति कहीं न कहीं उसे ये शर्त कबूल नहीं है।

0: नॉट फेयर। आप मेरी माँ हो और वो छोटी बहन। अम्मू हाथ धो। मम्मा प्लीज अम्मू हाथ धो। अम्मू हाथ धो।
1: मारा नहीं है, गलती से लगा है।
2: स्वाति भले ही जिद पर आ गई हो, लेकिन वृंदा उसने कभी किसी का दिल दुखाया नहीं है और वो माधवी का दिल दुखाना नहीं चाहती। इतना ही नहीं, उसने तो माधवी का दिल अब तक जीता नहीं है, तभी तो माधवी को उससे नफरत होती है। खैर, वृंदा ने तो अपनी तरफ से स्वाति को बखूबी समझा दिया। इतना ही नहीं, आंखों में आंसू लिए वो पहुँच गई माधवी के पास और घुटने टेक कर मांगने लगी माफी। वृंदा ने तो माधवी से वादा कर दिया है कि जो माधवी चाहेंगी वही होगा। इतना ही नहीं, वो तो उनके सामने कान पकड़कर खड़ी भी हो जाती है ताकि माधवी उसे माफ कर दे। कहीं न कहीं माधवी का दिल पिघलता है, लेकिन माधवी अपने आप को रोक लेती है। ऐसे में वृंदा उसे बैठने के लिए कहती है और चली जाती है माधवी के लिए पानी लाने के लिए। लेकिन दरवाजे के उस पार वृंदा भी अपना दिल संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं उसका दिल भी टूट रहा है। वो पानी लाकर माधवी को देती है, लेकिन माधवी उसके हाथ से पानी नहीं लेती। ऐसे में वृंदा वो पानी का ग्लास दे देती है स्वाति के हाथों में, ताकि स्वाति अपनी माँ को दे सके। ऐसे में माधवी उससे ग्लास ले भी लेती है और वृंदा चुपचाप वहाँ से चली जाती है और जमीन पर बिखरे सामान को इकट्ठा करने लगती है कि तभी वहाँ पर आ जाते हैं स्वाति के पापा, जो वृंदा को यूँ इमोशनल देख हैरान है। इतना ही नहीं, माधवी और स्वाति उन दोनों की आंखों में देखकर वो भी परेशान हो रहे हैं और जानने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर माजरा क्या है।
3: क्या हो रहा है, रो क्यों रहे हो आप लोग? प्लीज टेल मी नो, प्लीज मुझे नीचे आवाजें आई तो मुझे लगा ऊपर चल रहा है, मैंने सब कुछ की बोल के प्लीज टेल मी
2: प्लीज। खैर, माधवी तो अपने पति को ये बताकर निकल गई कि उसे आज नीति याद आ गई है, लेकिन स्वाति के पापा सामने रखी राखी को देखकर समझ गए हैं कि आखिर हुआ क्या है। ऐसे में वो अपनी बेटी स्वाति का साथ देते हैं और उसे राखी पकड़ाते हैं ताकि वो जाकर वृंदा की कलाई में बांध सके। खैर, स्वाति के पापा तो चले जाते हैं, लेकिन स्वाति वो वृंदा के पास खुश होकर जाती है, उसे अपने गले लगाती है और तो और बड़े ही प्यार से उसकी कलाई में राखी भी बांधती है। ऐसे दोनों के बीच बहनों का प्यार बन रहा है। अब देखना होगा क्या वाकई में स्वाति को वृंदा में नीति नजर आती है या फिर वृंदा वाकई में नीति है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने अपने जन्मदिन के मौके पर थ्रो की एक शानदार पार्टी। इस पार्टी में लगा अर्चना के दोस्तों और सितारों का मेला। तो देखते हैं कैसी रही अर्चना की बर्थडे पार्टी।

विकास निधि ढेर सारी बधाइयां। बिग बॉस फेम अर्चना गौतम ने अपना जन्मदिन मनाया और इस शुभ मौके पर उन्होंने थ्रो की बर्थडे पार्टी।

0: पर बात करें गेस्ट की, तो अर्चना के बर्थडे पर उन्हें विश करने उनके कई सारे दोस्त पहुंचे हैं, जैसे कि ऐश्वर्या शर्मा।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई।

0: पूरा फ्लोर खिल
1: गए। और कई और सितारे जो पहुँचे हैं अर्चना के बर्थडे पर उन्हें ढेर सारे विशेष देने और पार्टी एंजॉय करने के लिए।
0: मची है जो

0: तुम देना साथ मेरा।
1: शगुन के कंगन कहाँ गए?
2: किसी ने तो गायब कर दिए होंगे।
3: स्टार प्लस की सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में मैं फिर एक बार अपराजिता लोगों की नजरों में गलत साबित हो रही है।
1: शगुन के कंगन कहाँ गए?
2: किसी ने तो गायब कर दिए होंगे।
4: अगर आपको हम लोगों पर शक है तो आप हमारी तलाशी ले सकती हैं।
2: ये हुई ना समझदारी वाली बात। बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, मिल गई चोरनी।
1: अपराजिता,
5: अपराजिता को एक अंगन मैंने दिए थे। उसे आप ही कहती थी कि एक अंगन भारद्वाज परिवार की बहू के लिए।
3: नहीं, भले ही अपराजिता ने घर वालों की नजरों में रक्षित को अपनाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए गहरा होता ही जा रहा है। तभी तो देखिए, वही जब भी इन्हें मौका मिलता है ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आते हैं।

0: छोड़ने के थोड़ी ना हाथ पड़ रहा है तुम्हारा, अब तो जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही पकड़े रहने का इरादा है।
1: हदीत, हाथ पकड़ने के चक्कर में पता नहीं कब तक सच घुमाना पड़ेगा। रे, ये सब ऐसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। सुधा आंटी के सामने सच घुमाते हुए बहुत बुरा लग रहा था मुझे।
0: अरे मर्फीज लॉ ऑफ रिलेटिविटी नहीं पता है तुम्हें? अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ आधा सच होता है।
1: आप उसे सच घुमाना बोलिए या आधा सच बोले, होगा वो गलती।
0: जिस गलत काम से आरू और विवान की शादी हो जाए, हम दोनों एक हो जाए, ऐसा गलत काम मैं हजार बार करूंगा। अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब बैंड भी बजेगा, दुल्हन भी सजेगी और शादी भी होगी और उसके बाद।
1: अरे आप इतने सीरियस सिचुएशन में ऐसे चहक कैसे सकते हैं? एक झूठ बोला नहीं जाए मुझे सुधा आंटी से, पता नहीं इतना बड़ा सच कैसे छुपाऊंगी कि शादी कर रहे हैं हम लोग।
0: अरे छुपाएंगे ना, 12-13 साल से यही तो करते आए और यही करते करते यहाँ तो पहुँच गए।
1: मतलब क्या?
0: अरे मतलब जन्म जन्म का साथ है।
1: अब आप फिल्मी नहीं हो रहे
2: रचित, ये फितूर तेरा।
3: हमेशा की तरह जैसे तुम मुझे प्रोटेक्ट और मेरा साथ देती आई है, मैं भी तुझे हमेशा प्रोटेक्ट और तेरा साथ दूंगा।
4: स्टार प्लस की सीरियल ये फितूर तेरा में भाई जीत बिल्कुल ही अकेला पड़ गया है, तभी तो रक्षाबंधन का ये त्योहार भी वो अपने साथी यानी कि अपने बाइक के साथ मना रहा है।
3: रक्षाबंधन की खुशी में तेरे लिए नया इंजन ऑयल।
5: जीत लोगों को कितना दर्द होता होगा ना, गली के उस पार एक फुल फैमिली हैप्पी टुगेदर और गली के इस पार इज ऑल अलोन। सौम्या, हमारे बीच में कुछ भी हो लेकिन फिर भी हम लोग साथ तो हैं, तुम, मैं, मम्मा, पापा, बट ही इज ऑल अलोन। क्या हुआ, तुम ठीक हो?
1: पता है कृष्ण, जब से सच बोला है ना चीजें बदल गई है। बहुत अजीब लग रहा है मुझे, पापा नजरें नहीं मिला रहे, रुके रुके से है और मुझसे बहुत दूर हो गए। मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है।
5: सौम्या,
4: ऐसे में मोहल्ले वाले जीत और सौम्या के रिश्ते को लेकर काफी बातें कर रहे हैं, जो जीत सुन लेता है।
3: चुगली करने का बहुत शौक है ना, दूसरों की खबर चाहिए, अभी मैं तेरी खबर बनाता हूँ। एक चुगलखोर औरत को चुगली पड़ी भारी, खाई गोली हुई भगवान को प्यारी। कोई आखिरी ख्वाहिश?
1: हमको कपड़े धोने जाना है।
3: जीत,
1: भैया भैया बचा लो।
3: जीत,
1: भैया बचा लीजिए हमको, हमको गोली मार देंगे।
3: क्या ये?
1: भैया भैया भैया
3: जीत, ये बंदूक कहाँ से मिली?

0: ऐसे में देखिए कैसे वह अपने ही अनोखे अंदाज में वो इनको सबक सिखाता हुआ भी नजर आता है।
1: हाँ, आप सिर्फ कपड़े धोइए, लोगों की इज्जत नहीं। देखो अभी तो ये चेतावनी थे, अगर आइंदा सौम्या या मेरे बारे में चुगलखोरी करती हुई नजर आई आप, तो इस बार तो ये बंदूक नकली है, अगली बार ये बंदूक भी असली होगी और इसमें से निकले गोली भी असली होगी। चल मोहल्ले में दिखवा जाइए, चल चल चल।
2: हमें तो सौम्या बिटिया बहुत पसंद आई, क्यों सार्थक
3: जी? मम्मी
2: हमारी तरफ से सौम्या और सार्थक के रिश्ते को हाँ है। अब एक पूजा की सुपारी शगुन की तुम दोनों के लिए, चलो एक दूसरे के हाथ में हाथ रखो। सौम्या बेटा सार्थक के हाथ में हाथ रखो।
4: आप जानते हो ना सौम्या किसी भी लड़के के टच से अनकंफर्टेबल हो जाती है।
5: हथेली छू जाने से सौम्या के ये हालत।
6: कल को ब्याह होगा तो क्या होगा, पत्नी का रिश्ता वो निभा पाएगी कि नहीं होगा?
7: टीवी के नए सीरियल दिलों की रामलीला में लीला का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस आस्था शर्मा के साथ सास बहू और बेटियां की टीम ने किया एक मेकओवर वाला डे आउट। चलते हैं सीरियल के सेट पर।

0: आस्था शर्मा का मेकओवर। नए सीरियल की श्रृंगार लीला, नए किरदार का चुलबुला अंदाज, आस्था शर्मा जिन्हें आप कलर्स के सीरियल निर्जा एक नई पहचान और दंगल टीवी के सीरियल पिया अभिमानी में देख चुके हैं, लेकिन अब ये नए सीरियल दिलों की रामलीला में लीला का किरदार निभाने जा रही है। वो लीला जो बेहद ही चुलबुली है, वो लीला जो सबके दिलों को जीत लेती है, वो लीला जो राम के दिल की धड़कन है, वही लीला आज सास बहू और बेटिया के कैमरे के सामने अपना मेकओवर करेगी। तो आइए करते हैं मुलाकात आस्था शर्मा से, जो अपने इस नए किरदार के लिए बेहद ही खुश हैं और एक्साइटेड हैं टीवी पर आने के लिए।
1: राम और लीला का जो जहन है वो हमेशा से ही साथ में होते रहा है, और आई थिंक ये जोड़ी भी जब भी, ये नाम जब भी यूज होता है तो अलग ही चार्म बिखेरते हैं ये लोग स्क्रीन में आकर। आस्था क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए?
2: सबसे पहले तो हाय, मैं आस्था हूँ एंड आ गई हूँ मैं लीला बन के वापस। अभी बनूंगी लीला एंड राम के लिए मैं तैयार नहीं होंगी मैं अपने लिए तैयार होंगी, बिकॉज राम मेरा अभी फिलहाल तो दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। और आपकी एक्सपेक्टेशंस अभी दिखेगी आपको कैसे मैं आस्था से लीला में रेडी होती हूँ।
1: तो आस्था कितना समय लगता है इस कैरेक्टर में आने के लिए, क्या क्या डिटेलिंग्स हैं?
2: समय हमें ज़्यादा तो नहीं लगता है, बिकॉज अगर लीला की हम बात करें तो बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सिंपल उसका मेकअप है, उसका गेटअप है, और बाकी हमारे मेकअप टीम, हेयर टीम, हम लोग तो फटाफट रेडी हो जाते हैं। बट यस, कुछ कुछ डिटेलिंग्स है जो आपको दिखेगी जो लीला को यूनिक बनाती है। आस्था से जो लीला जो कन्वर्ट होता है कैरेक्टर मेरा, वो आपको पता चलेगा कैसे होता है। एक बहुत ही माइन्यूट एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है उसकी,
1: वो हमें अभी इस सफर में पता चलेगा। तो चले फिर।
2: हाँ बिल्कुल, आई एम रेडी। सो अभी हम करेंगे अपना मेकअप शुरू, लेकिन मेकअप शुरू होने से पहले, बिकॉज हम लोगों को रोज मेकअप करना होता है एंड जो रोज मेकअप करते भी नहीं है उनके लिए भी स्किन प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने स्किन को अगर अच्छा रखना है मेकअप से पहले और मेकअप के बाद, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो मॉइस्चराइज योर स्किन, पुट अ सनस्क्रीन एवरी डे इवन इफ यू आर नॉट शूटिंग आउटडोर। मैं तो अपना रोज सनस्क्रीन लगाती हूँ, सो आई हैव ऑलरेडी प्रेप्ड माई स्किन, आई हैव पुट माई मॉइस्चराइजर, द सीरम एंड सनस्क्रीन। अभी राजदादा है जो मेरा मेकअप करते हैं और वो शुरू करेंगे और हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे कैसे मैं आस्था से लीला बनूंगी। सो अभी हम शुरू करें बेस से।
0: आस्था शर्मा के लीला बनने की शुरुआत हो तो चुकी है। वैसे बता दें कि आस्था को मेकअप करना बहुत पसंद है और इन्होंने बचपन में ही मेकअप करना सीख लिया था, ऐसे में ये हमेशा एक्साइटेड रहती हैं और आज ये सास बहू और बेटिया को स्टेप बाय स्टेप अपने मेकअप का राज बताएंगी और साथ ही टिप्स भी बताएंगी कि कैसे अपने स्किन को खूबसूरती से निखारा जाए।
2: हमारे पास तीन बेस है और तीन के तीन वेज हम कुछ मिक्स करते हैं, फिर जाके मेरा एक टोन जो बनता है। सो मैंने अपना स्किन शेड, फाउंडेशन शेड ढूंढने के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन वो परफेक्ट मैच नहीं मिल पाता, तो इसलिए राज दादा को तीन चार फाउंडेशन शेड मिक्स करने पड़ते हैं, फिर जाके मेरा शेड बनता है।

मैं एक बस फॉलो करती हूँ, जब मुझे बहुत ज्यादा टैन हो जाता है तो उसके लिए वो अपना दही में बेसन हल्दी और कॉफी डाल के उसका एक पैक लगा लो, सो उससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, बट हाँ बहुत ज्यादा नहीं पर तो थोड़ा बहुत पड़ता है। अभी जैसे मैं मेरा पैकअप होता है तो मैं घर जाऊंगी, मैं अपना नहा धो के आई हैव टू डू माई नाइट स्किन केयर, मुझे मतलब अपना स्किन ताकि मेरी हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि पूरा दिन का वो जो मेकअप है वो जाके रात को उतरता है, सो फॉर दैट बस अपना स्किन थोड़ा हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चराइजर और एक सीरम लगा के आई स्लीप, तो वो मेरा रिलीजियसली रहता है। उस बीच में एक ऐसा पॉइंट आया था जब मैं बहुत ज़्यादा जंक खाने लग गई थी और वो मेरी स्किन पर, मेरे फेस पर, मेरी बॉडी पर मुझे खूब फील हुआ था। सो इफ़ यू ईट क्लीन एंड इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर गट, आपको अच्छा उसका रिस्पॉन्स अपनी बॉडी देगी आपको, सो वो अच्छा स्किन पर दिखेगा ग्लो।

0: छोटी।
1: ओके सो हमारा बेस हो चुका है, आप देख सकते हो क्या मस्त फ्लॉलेस स्किन मुझे दे दिया राजा ने। उसके बाद अब हम करेंगे थोड़ी सी कटिंग, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे हमारे चेहरे को। सो ये क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टोर। नोज पर करेंगे हम चीक बोन्स पर करेंगे और हम थोड़ा सा जॉ लाइन को डिफाइन करेंगे। कभी कभी ऐसी चीज होती है जो हमें रियल लाइफ में ऐसा लगता नहीं है, जैसे मैं रियल लाइफ में अपना नाक देखूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं मेरा नाक मोटा है, बट मैं स्क्रीन पर देखूँ तो कभी ऐसे कटिंग ना हो। और पहले तो हम इतना सोचते भी नहीं थे कि कटिंग करनी है नोज की या नहीं, बट फिर हम जब स्क्रीन पर देखते तो कुछ मतलब कैमरा से कुछ नहीं छुपता है, इतनी सी भी हड्डी बाहर होगी ना तो वो पता चलेगा कि नाक मोटी है। तो इसलिए हम अब थोड़ा सा कॉन्शियस रह रहे हैं हर चीज को लेकर, बट ऐसे बहुत हार्श कॉन्टोरिंग नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि राजदादा कहते हैं कि वो इतना ज्यादा फिर वो पता चलता है। सो बहुत ही सॉफ्ट और नेचुरल हम ट्राई करते रहेगा। आई एम वेरी गुड एट डूइंग मेकअप, बट यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा भी सीन होता है, सीन को पढ़ना है, तो इसलिए राजदादा है वो करते हैं, बट वैसे पर्सनली मुझे मेकअप आता है करना। मुझे याद है जब मेरी स्कूल में भी छुट्टी होती थी तो मैं तैयार होकर बैठ जाती थी एंड आई यूज टू क्लिक पिक्चर्स। मेरे पापा के पास एक कैमरा था सो आई यूज टू क्लिक पिक्चर्स, मैं अपनी सेल्फीज ले रही हूँ उस कैमरा में। तो मुझे याद है मुझे बहुत पसंद, मुझे आई लाइनर लगाना बहुत जल्दी आ गया था। सो माई मॉम इज ऑल्सो वेरी गुड एट मेकअप, तो उनको देख देख के आई यूज टू गेट वेरी फैसिनेटेड। और वो भी मेरा मतलब बचपन से मुझे अच्छे से तैयार करके रखते थे, तो आई लाइनर लगाना मुझे बहुत जल्दी आ गया था। एंड आई एम ऑल्सो गुड एट पेंटिंग, तो वो हाथ है मेरा एक मेकअप और वो आर्टिस्टिक हाथ। तो हमारी कटिंग हो गई है, पतला हो गया है मेरा फेस एकदम नेचुरली। अभी किसी को बताते नहीं है हम, बट आज हम आपको सीक्रेट सारे बता रहे हैं। अब हम करेंगे क्या, कॉम्पैक्ट, ताकि फेस हमारा ऑयली ना रहे और हमारा मेकअप टिका रहे।

0: सो मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ. जब ये शो हमारा शुरू होने वाला था तो मुझे चिकन पॉक्स हो गया था. When I got locked, हमारा टेस्ट शूट, हमारी शूट, हमारा एक्चुअली प्रोमो शूट होने वाला था और मुझे चिकन पॉक्स हो गया. एंड मैंने वो कैसे ही डील किया था, बिकॉज फॉर मी आई हैड टू बी ऑन कैमरा और वो चिकन पॉक्स के जो पूरा मार्क्स हो जाते वो जाते नहीं है इजिली. तो मैंने इतना आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे को वैसे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि मैं बहुत पेशेंस मैंने दिखाए थे. वो बोलते हैं उसको टच नहीं करना होता, मैंने कुछ नहीं, मुझे इतनी उसमें इच्छिंग होती थी फिर भी मैंने बिल्कुल उसको टच नहीं किया. एक जगह मैंने टच किया था, उसके एक दो छोटे छोटे हल्के से मार्क्स आप शायद देख सकते हो यहाँ पे और शायद यहाँ पे भी, बट थैंकफुली ऐसे मार्क्स नहीं आए मुझे, और जो थोड़े बहुत है वो कवर हो जाते हैं. तो मैं बहुत डर गई थी जब मुझे शो से पहले चिकन पॉक्स हुआ था, बट यस फाइनली वी आर बैक और ऐसा कुछ दिखता नहीं है थैंकफुली फेस पे.
1: मेकअप में आस्था के चेहरे पर बेस लगकर तैयार है और साथ ही साथ हो रही है इनके बालों की सेटिंग भी. इसी के साथ शुरू हुआ मेकअप का अगला स्टेप और वो है आंखों को निखारने का. और आंखों के मेकअप में तो वो खुद भी अपना हाथ आजमा ही लेती है.
0: हेयर के लिए नहीं कर पाती हूँ ज्यादा, क्योंकि मुझे अभी तक इतनी नॉलेज नहीं है हेयर की. और मैं और हेयर दीदी यही बात कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा किसी डॉक्टर से भी पूछना चाहिए, जस्ट फॉर कीपिंग द हेयर हेल्दी. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस आई हैव थिन हेयर और इतनी वॉल्यूम नहीं है इसलिए मुझे विग लगती है, बट अदरवाइज माई हेयर आर हेल्दी, दे वेरी सॉफ्ट एंड सिल्की. बट हाँ, हेयर की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं बस वो हेयर वॉश और जो रूटीन होती है एक नॉर्मल बेसिक वही फॉलो करती हूँ. हेयर ऑयलिंग भी मैं इतनी कर नहीं पाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है हेयर ऑयलिंग, इसलिए हेयर ऑयलिंग इतनी हो नहीं पाती है, बट हम करेंगे शुरू. हम आई शेडो में तो बहुत हम एक ही शेड रखते हैं, अपना बेसिक पिंक शेड, क्योंकि ऑब्वियसली पिंक सबके साथ चल जाता है. तो हम इतने एक्सपेरिमेंट्स अभी कर नहीं रहे हैं इस लुक में. कभी कोई सीक्वेंस होगा, कोई फंक्शन होगा तो हम उसमें करेंगे, बट अदरवाइज वी कीप द आईब्रो बेस वेरी बेसिक. आईब्रो नहीं, आई शेडो, कीप द आई शेडो वेरी बेसिक. बहुत ही न्यूड पिंक एंड न्यूड शेड्स. तो द आई शेडो इज डन, अब आएगा लाइनर. सो आई लाइनर बहुत ही एक सेकेंड मैं लगाती हूँ. सो ये देखो आप, फॉर द वॉल्यूम क्या हो रहा है अभी हेयर में, यहाँ पे इतनी वॉल्यूम नहीं है तो हम पैच लगा रहे हैं. ये पैच यहाँ लगेगा.

तो आईलाइनर भी हम बहुत ही वाटरी रखते हैं, उसको ज़्यादा जेट ब्लैक नहीं करते बिकॉज हमें बहुत नेचुरल लुक रखनी है, इसीलिए एकदम सिंपल वाटरी आईलाइनर करते हैं। मुझे एक्चुअली मेकअप में ना, मैं सबसे ज़्यादा कॉन्शियस आईब्रोज से रहती हूँ अपनी, बाकी कैसा भी हो कुछ भी हो इतना मुझे फ़र्क नहीं होता, आईब्रो सही होनी चाहिए। तो ये मैं खुद करती हूँ, और कोई और करे तो मुझे लगता है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ये कम हो गया, तो राज दादा बोलते हैं आप खुद करो।

मस्कारा, यस। सो फॉर मस्कारा पहले हम कर्ल करेंगे लैशेस को। मैंने ऑलरेडी कर्ल करी हुई थी। कुछ लोग करते नहीं है आई लैशेस कर्ल। मेरी फ्रेंड्स हैं तो वो कहती कि टूट जाती है लैशेस, बट टच वुड मेरे साथ अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। सो मैं कर्ल करती हूँ।

0: से कैसे आंखें मेरी खुल जाती है, बहुत बढ़िया होता है।
1: बन गई मोरी सखियां।
2: आस्था की आंखों का मेकअप भी हो गया और अब बारी है मेकअप में आस्था के फेवरेट स्टेप की, और वो है चेहरे पर ब्लश लगाना। और ब्लश आस्था को बहुत पसंद है, वो मेकअप करे न करे लेकिन ब्लश जरूर लगाती है।
0: ये हमने ब्लश लगाया। कहीं ऐसे भी बाहर जा रहे हो, यू डोंट वांट टू डू एनी मेकअप, आप बस ऐसे फटाफट ब्लश लगा लो, सो इट गिव्स एन इंस्टेंट लिफ्ट टू योर फेस, एकदम लाइवली हो जाता है आपका फेस ब्लश लगा के। तो या बट हम यहाँ पर वो इतना नहीं कर सकते क्योंकि मुझे लाल टमाटर नहीं बनना है लीला को। आस्था बन सकती है, लीला नहीं बन सकती। मेहंदी है लीला, फर्स्ट टाइम तो जब मैंने सुना, फिर धीरे धीरे, क्योंकि मुझे क्या था सबसे पहले कि एजुकेशन मिनिस्टर की बेटी अपने बेटी का नाम लीला क्यों रखेगी, जो मेरे दिमाग में थोड़ा था। बट फिर मैंने नहीं, ठीक है अब जो है वो मैं हूँ लीला, मुझे अपनाना है। आई वॉज हैप्पी धीरे धीरे, मतलब ऐसे नहीं आई वॉज नॉट हैप्पी जब मुझे नाम सुना, बट ऐसा था क्या लीला, बट फिर अच्छा है आपका, आई लव लीला नेम नाउ। तो अभी मुझे टिश्यू पेपर देना, अभी हम अपने लिपस्टिक लगाएंगे, ये भी मैं खुद ही करती हूँ। इसके लिए मैं पहले लिप बाम लगाऊंगी बिकॉज अब काफी देर हो गई। लिप लाइनर और उसको ही ब्लेंड कर देंगे।

मुझे तो बिंदी बहुत पसंद है एकदम से, आप प्यारे लगने लग जाते हो बिंदी लगा के। आज मौसम से उठ गए। So, अभी जो मैं कह रही थी ना, एक ऐसी चीज है जो लीला को लीला बनाती है और आस्था ये थी। और आस्था से मैं लीला कैसे बनती हूँ, बहुत ही एक ऐसी चीज है। हो गया, लग गया, दिखा देती हूँ। तो ये है लीला का मोल।

0: आप नहीं थे उस टाइम, कोई और था, यहाँ पे भी लगाया, बट फाइनली इधर फाइनल हुआ, मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक, और आप हेयर भी देख सकते हो। अब बस फटाफट मुझे अपना बस कॉस्ट्यूम चेंज करना है, एंड आई विल टर्न फ्रॉम आस्था टू लीला। सो आप देख सकते हैं, हेयर इज डन, मेकअप इज डन, द मोल इज डन, और अब हम करेंगे चेंज। तो ये है मेरा कॉस्ट्यूम, लीला का कॉस्ट्यूम, और मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ।
1: ये सारे कोयले बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियाँ पढ़े मजाकिया।
2: लीजिए मेकअप कर और लीला के कपड़े पहनकर आस्था पूरी तरह से अपने किरदार में ढल चुकी है और बन चुकी है लीला। इसी के साथ लीला ने पहन ली है घड़ी और ज्वेलरीज भी, और देखिए लीला की तरह वो बन गई है चुलबुली।

एक लीला का बर्थ मार्क है, एक मोल है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। तो जब हमारा लुक टेस्ट हो रहा था लीला के लिए, तो एक मेरा जो अपना मोल है यहाँ पर, उसको डार्क किया गया था। वो बहुत बेकार लग रहा था जब हमने वो लुक टेस्ट किया। तो हमने कई जगह देखा, लगा के यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, और कहाँ लगा।

सो दिस इज द फाइनल लुक हमारी प्यारी सी लीला की, और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी लुक ये. और प्लीज़ हमारा शो देखो, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है लीला को देखने में, क्योंकि लीला बहुत ही मस्त है. सो यस, आई होप आपको अच्छी लगी ये लुक, और हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें कन्वर्ट होने में, एंड मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है अपना लुक. एक्सेसरीज में सिर्फ एक वॉच है सिंपल, दो हमने ये क्या बोलते हैं इसको कड़ा बैंगल्स है, एंड ईयर रिंग्स है, दैट्स इट, नथिंग एक्स्ट्रा. मैं वही कह रही थी, मुझे तो बहुत पसंद है आस्था से लीला में आना, क्योंकि जैसे ही मैं लीला में आती हूँ मैं भूल जाती हूँ आस्था कौन है. मुझे अभी मैं बिहेव भी आई स्टार्ट बिहेविंग लाइक लीला ओनली. लीला इतनी मस्त है, इतनी प्यारी है, तो बस वैसा ही है, एकदम से ये रूप लेके लीला आ जाती है मेरे अंदर.

यानी लीला तो तैयार है अपना जादू चलाने के लिए। देखना होगा कि उसका जादू क्या असर करेगा लोगों के दिलों पर। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: मनोरंजन की सारी रॉकिंग और शॉकिंग खबरों को हम लेकर आए हैं आपके लिए, तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग न्यूज।
1: बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं सीरियल अनुपमा की, जहां मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्योहार। सामने आई है सीरियल के सेट से ये तस्वीरें, जहां है ये नन्हा कान्हा और साथ है अनुपमा।

सीरियल ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा में आ गया है बैंड बाजा वाला ट्विस्ट, जहां घोड़े पर सवार हो गई है अपराजिता और तैयार है बिहार जाने के लिए। देख लीजिए ये तस्वीरें और वीडियोस।

0: बहुत फिक्र हो रही है, आप अपना ख्याल रखना।
1: जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में जल्द होने वाली है एक्टर अनुराग चहल की एंट्री, जिन्हें आप उडारिया में देख चुके हैं, जो तू ही रे दिल में सीरियल में बनकर आएंगे संजोग।
2: गाड़ी चलानी नहीं आती तो भाई इतना बड़ा ट्रक लेके क्यों आ गए? अभी जी जाती मैं।
3: एक सेकंड, रुके रुके रुके रुके।
4: ये आपका फोन वहीं गिरा पड़ा था।
2: अरे बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तेरा घर कहाँ है बेटे?
4: मेरा घर?
2: और इस घर में तेरे घर वाले कौन कौन है?

0: जी टीवी के सीरियल जगधात्री में आने वाला है थप्पड़ वाला ट्विस्ट, जहां रुद्र की मौत का इल्जाम जगधात्री पर लगेगा।
1: जगधात्री, तुमने मारा है हमारे रुद्र को।
2: नहीं मारा था ही मैंने रुद्र को।
3: इस जगधात्री को इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए।
2: शिवाय, तुम मुझ पर यकीन करो।
4: इंस्पेक्टर,

हैदराबाद में हो रहे हैं। मिर्जापुर द मूवी के प्रमोशंस, ऐसे में रवि किशन ने कास्ट एंड क्रू के साथ अपना वायरल हुक स्टेप रिक्रिएट किया और स्टेज पर डांस से लगा दी आग।

टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में जल्दी होने वाली है जितेंद्र तेहरान और जील ठक्कर की एंट्री, जो कहानी में नया ट्विस्ट लाएंगी। आपको बता दें कि जील को आप इससे पहले सरू में देख चुके हैं। जी टीवी के सीरियल वसुधा में सुरभि मित्तल की एंट्री होगी और इसी के साथ कहानी में नए नए ट्विस्ट भी आएंगे। रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म मायसा का पोस्टर आप भी डाल लीजिए इस पर एक नजर। डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल लेकर आ रहा है नया शो जिसका नाम है द लिफ्ट, जिसमें नजर आएंगे प्रतीक सहजपाल, अदा खान, सीमा आजमी और मोहक मीत। देख लीजिए ये वीडियो।

0: प्लस पर जल्द शुरू होने वाला है नया शो सयोनी, जिस सीरियल में नजर आएंगी रश्मि देसाई। देख लीजिए इसकी खास झलक।
1: ये आश्रय मेरी दुनिया है, मेरा परिवार है, यही मेरी खुशियाँ हैं, लेकिन मेरा सब कुछ छिन गया। बचपन की सहेली पबली, पूरा परिवार, पर मैं कहीं नहीं जाने वाली।
2: अब तू अपनी माँ के साथ जिएगी पुत्र, वादा कर तेरी पहचान किसी को पता न चले, वरना तेरी माँ का घर टूट जाएगा, टूट जाएगा।
1: इसी प्यार को तरसी हूँ मैं, क्या माँ से मिलेगा अपनापन या रहूंगी पराई, या रहूंगी पराई।
3: अन्नत और विक्रांत के जन्माष्टमी उत्सव के बीच धैर्य ले आया जानलेवा ट्विस्ट, क्योंकि दही हांडी प्रतियोगिता के बीच धैर्य ने तानी विक्रांत पर बंदूक। आखिर क्यों, चलिए देखते हैं।
4: दही हांडी का सेलिब्रेशन,

कलर्स के सीरियल मन्नत में आज मन्नत और उसका पूरा परिवार दही हांडी के सेलिब्रेशन में पहुंच गया है और हर साल की तरह इस साल भी मन्नत बन गई है गोपाला और उसके साथ विक्रांत भी बने हैं गोपाला। भाई विक्रांत की याददाश्त तो आ ही चुकी है, ऐसे में भला वो मन्नत का साथ क्यों ना देते। जरा देखिए कैसे मन्नत और विक्रांत दोनों ही खुशी से सभी गोपाला के ऊपर चढ़ते हुए दही हांडी फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मन्नत उसकी नजर बार बार नीचे जा रही है क्योंकि नीचे धैर्य खड़ा है और वो सिर्फ धैर्य पर अपनी नजर रखना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि धैर्य कोई न कोई खतरनाक चाल जरूर चलेगा विक्रांत को अपने रास्ते से हटाने के लिए। तभी तो अचानक जब धैर्य वहाँ पर नजर नहीं आता तो मन्नत बेचैन हो उठती है।

0: विक्रम
1: बोला तो हम भी फुआरे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं, हम
0: भाई मन्नत और विक्रांत दोनों की नजरें धैर्य को ढूंढ ही रही थी कि तभी मन्नत की नजर धैर्य पर पड़ जाती है और तभी उसे चैन आ जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो धैर्य नहीं बल्कि धैर्य का बहरूपिया है जिसे धैर्य ने प्लांट किया है ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। ऐसे में इस बात से अनजान कि वो धैर्य नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट है, मन्नत और विक्रांत दोनों जुट गए हैं दही हांडी फोड़ने में।

यहाँ मन्नत और विक्रांत दोनों पहुँच गए हैं ऊपर दही हांडी फोड़ने के लिए। तो वहाँ दूर छत पर धैर्य खड़ा है, हाथों में बंदूक लिए वो विक्रांत पर निशाना साध रहा है।

0: हलाल की।
1: तो हम लोग दही हांडी का सीक्वेंस शूट कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे बहुत सारा डांस भी है, म्यूजिक है, खाना पीना है, डेकोरेशन है, सबके अच्छे अच्छे लुक्स हैं। और स्टोरी में ये हो रहा है कि मुझे मन्नत और विक्रांत को, जैसे कि हमें तीनों को पता है धैर्या का सच, तो हमें धैर्या पे शक है कि ये सब कुछ तैयारियाँ किसी रीज़न की वजह से किया है धैर्या ने। अब वो क्या रीज़न है, क्या करने वाला है, ये हमें नहीं पता। तो हम लोग धैर्या पे नज़र रखे हुए हैं कि वो नुकसान ना पहुंचाए किसी तरीके का विक्रांत को। तो मन्नत और विक्रांत को धैर्या ने मतलब इसमें बिजी कर दिया दही हांडी फोड़ने में, और मुझे मन्नत ने बोला कि मैं धैर्या पे नज़र रखूं, तो मैं नज़र रखती हूँ, पूरा ध्यान मेरा उसी पे होता है। बट पता नहीं, आई थिंक धैर्या को यशिका पे थोड़ा शक हुआ या पूरे कुछ ऐसा लगा कि मुझ पे नज़र है। तो मल्लिका मेरे पास जैसे ही आती है, मैं एक मिनट सिर्फ उससे बात करती हूँ, धैर्या गायब हो जाता है। अब उसके बाद मैं ढूंढ ही रही हूँ धैर्या कहाँ गया, कहाँ गया, तो वही सारा सीक्वेंस चल रहा है।
2: अब मन्नत और विक्रांत ने विशाखा को जो काम दिया है, विशाखा उसे पूरा कर रही है। तभी तो धैर्य का पीछा करते हुए वो भी छत पर पहुंच जाती है, और अचानक उसकी नजर पड़ती है धैर्य पर, जो विक्रांत पर बंदूक ताने हुए है, वो भी दूर से। ऐसे में जैसे ही धैर्य गोली चलाने वाला होता है, विशाखा दौड़ कर जाकर धैर्य को धक्का दे देती है।

जिसके चलते विक्रांत तो बच जाता है, लेकिन अब विशाखा पर मुसीबत आएगी क्योंकि धैर्य विशाखा को जान से मार देगा। देखना होगा क्या मन्नत और विक्रांत विशाखा को बचा पाएंगे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: सीरियल सैराब में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार, और इस सेलिब्रेशन में नौनिका और ईशान एक साथ हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब त्योहार की खुशी के बीच खुला ईशान के असली पापा का राज।
1: मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया।
2: नौनिका और ईशान मनाए जन्माष्टमी का त्योहार।
1: मेरा जीवन तो है तेरा साया।
2: त्योहार पर हुआ सच का खुलासा।
1: ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम।
2: सामने आया ईशान के पापा का सच।
1: कभी गम
2: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में नौनिका ईशान के घर रहने आ गई है, और ऐसे में देखिए कैसे दोनों मिलकर जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं। नौनिका कान्हा जी को सजा रही हैं, पूजा की तैयारियां कर रही हैं, और ईशान भी नौनिका का पूरा साथ दे रहा है। भाई कान्हा जी ने ही तो बनाई है ईशान और नौनिका की जोड़ी।
3: तो आज आप देख रहे हैं जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं हम। बहुत सुंदर से हमने कान्हा जी को सजाया है। अभी उनका अभिषेक होगा, फिर पूजा होगी। तो जैसे हम सभी कान्हा जी के आने का हमेशा वेट करते हैं, और जितने भी कान्हा भक्त हैं वो इस दिन उनको बहुत प्यार से सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो वैसे ही आज हमारी सेट पर भी जन्माष्टमी की पूजा चल रही है।
2: भाई इनके त्योहार की तैयारियां चल ही रही होती है कि आ जाते हैं बिशु दादा, जो आकर ईशान से कहते हैं कि वो ईशान की जिम्मेदारी अब नौनिका को देना चाहते हैं और इस घर से जाना चाहते हैं। लेकिन ईशान उन्हें जाने से रोकता है।
4: बेटा वो मैं कह रहा था, अब मैं इतने सालों से इस घर से जुड़ा हुआ, मेरी और भी तो जिम्मेदारी है।
5: अच्छा, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी आपकी? मुझे तो लगता था मैं आपकी इकलौती जिम्मेदारी हूँ।
4: मैं ये कह रहा था जब तक कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जिम्मेदार नहीं आ जाता, जब तक मेरी जिम्मेदारी ये आती है ना जिम्मेदारी,
6: इसका मतलब मैं आ गई हूँ।
4: नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ अब मैं जाऊँगा तो शांति से जाऊँगा, बस मैं ये कह रहा हूँ।
5: अभी घर से जा रहा
4: हूँ। किसी बात कर रहे हो, ये तुम्हारा घर है, तुम ही रहोगे यहाँ पर। चले जाओगे तो माँ लक्ष्मी क्या करेगी?
2: ऐसे में बिशु दादा शर्त रखते हैं कि अगर ईशान की मम्मी यहाँ आकर रहेंगी तो वो भी यहाँ रहेंगे। लेकिन ईशान नहीं चाहता कि ईशान की मम्मी इस घर में रहे, लेकिन बिशु दादा तो इस बात पर अड़ गए हैं। ऐसे में ईशान को ये पूछना ही पड़ा कि आखिरकार इन दोनों का रिश्ता क्या है। तब होता है असली सच का खुलासा, जब बिशु दादा बताते हैं कि वही ईशान के असली पापा है। जिसे सुनकर ईशान को और नौनिका को दोनों को ही लगता है जोर का झटका।
5: क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इनसे कहिए अभी के अभी यहाँ से चले जाए।
4: अगर ये यहाँ से जाएंगे तो मैं भी यहाँ से चला जाऊँ।
5: क्यों? ऐसा क्या रिश्ता है आपका मेरी माँ के साथ जो आप यहाँ से चले जाएंगे?
7: मेरी माँ के लिए तो मेरे घर पे कभी भी चला नहीं थी, आप रहे तो रहे थे।
4: पहले नहीं थी तो नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और रही बात इनके साथ में मेरा क्या रिश्ता है, रिश्ता है जो आदमी मिलिट्री में था और जंग में गया था वो मैं हूँ, विश्वनाथ सेन। एक मासूम लाचार बच्चे को लेकर तुम्हारी माँ पालने के लिए इधर उधर घूम रही थी, फिर इनकी जिंदगी में कोई इंसान आया जिसके साथ में इन्होंने शादी कर, और उसके बाद की कहानी तो तुम जानते ही हो तुम्हारे साथ में क्या हुआ, और तुम्हें इन्होंने स्कूल में हॉस्टल में एडमिट करा दिया। अपमान के चलते बच्चे माँ से मुंह मोड़ दिया। इलाज कराने के बाद जब मुझे छुट्टी मिली तो मैंने तो मुझे कोई नहीं मिला, मुझे अपना कोई नहीं मिला। उसके बाद कुछ दिन के बाद इनकी शादी कहानी मेरे सामने आई। काम और ये गिफ्ट है। इनके कहने की वजह से ही मैं तुम्हारे पास में आया। मैं सिर्फ इनका ऑर्डर मान रहा हूं बस। तब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था हम दोनों पति पत्नी हैं। तुम हमारे बेटे हो ईशान।
8: आपने देखा कि ये जो सीन है बहुत ही क्रूशल सीन है ईशान की ज़िंदगी का। इतने सालों तक ईशान को मोहब्बत नहीं मिली, उसके घर वालों की, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, और आज फाइनली एकदम से उसकी माँ और उसकी माँ उसके घर आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि उसके असली पापा कोई और नहीं, उसके असली पापा जो हैं वो बीशु दादा हैं जिसके साथ वो इतने सालों से रह रहा है, जो उनको बड़ा कर रहा है। तो ये बहुत ही कमाल का इमोशनल टर्निंग पॉइंट है ईशान के लिए। उसके पैरों के समय तले से ज़मीन खिसक जाती है एंड सेम वक्त पे उसको जीने की दो नई वजहें भी मिल जाती हैं। तो आपको ये सीन देख के बहुत मजा आएगा।
1: ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम।
2: भाई ये सुनकर ईशान को जोर का झटका जरूर लगता है, लेकिन फिर एहसास होता है कि इतने सालों से जो उनकी देखभाल कर रहे थे वो कोई और नहीं, उसके असली पापा ही हैं। ऐसे में अब देखिए ईशान और नोएना की ये फैमिली हो गई है कम्प्लीट। और देखा इनका ये हैप्पी परिवार, जिससे नोएनिका तो काफी खुश है क्योंकि नोएनिका भी जल्दी मम्मी बनने वाली है।
3: आज मैं आपको सीन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि काफ़ी बड़े खुलासे हुए हैं आज हमारे यहाँ पर। ईशान के जो हमेशा से ईशान का ख्याल रखते आए हैं हमारे विशु दादा, तो आज ये पता चला है कि वो उनके केयर टेकर नहीं हैं बट ईशान के फादर ही हैं। क्योंकि देखा जा सकता था कि वो जिस तरह से उसका ख्याल रखते थे, हमेशा उसके साथ रहे और कैसे आए हैं, इसके बारे में कभी पता नहीं चला। तो आज ये हमें पता चला है कि वो उसके पिताजी हैं और आज हम सभी लोग बहुत शौक हैं। तो अब ईशान का परिवार भी कम्प्लीट परिवार होगा अब, क्योंकि नोएनिका ईशान के घर आ गई है और अब उनकी भी शादी होने वाली है बिकॉज नोएनिका इज़ एक्सपेक्टिंग। तो अब नाउ नोएनिका अगेन हैज अ फैमिली। तो अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है।
2: यानी कि इस जन्माष्टमी नोएनिका की खुशी डबल हो गई है और हो गया है उसका परिवार कंप्लीट। लेकिन इन खुशियों में अब कौन से ट्विस्ट का तड़का लगता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
9: कहा ना, अगर ये यहाँ से जाएंगी तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा।
10: बिशु दादा, आप अचानक ऐसे क्यों बोल रहे हो?
11: नोएनिका प्लीज, तुम इस सब में इन्वॉल्व मत हो।
10: इन्वॉल्व होना पड़ेगा ईशान, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ।
12: तो तुम्हारी जिंदगी में क्या होता है क्या नहीं, सब में इन्वॉल्व होने का मेरा पूरा अधिकार है।
9: मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ।
11: एक सेकंड, ऐसा क्या रिश्ता है आपका मेरी माँ के साथ जो आप भी यहाँ से चले जाएंगे?
9: हम दोनों पति पत्नी हैं, तुम हमारे बेटे हो।
2: मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: सीरियल वसुधा में आया है बड़ा ट्विस्ट, जहां चंद्रिका को पता चला है कि वसुधा मुंडवा गांव में है। ऐसे में देव और चंद्रिका दोनों परेशान हैं, क्योंकि खतरे में पड़ने वाली है वसुधा की जान। कैसे, चलिए जानते हैं।
13: सब सच बताओ, साफ साफ बताओ, वसुधा किन लोगों के साथ है मुंडवा में?
2: वसुधा को लेकर देव की चिंता।
13: तुम्हें पता है कि वसुधा किसके खतरे में? अगर उन्हें पता चल गया कि वसुधा असल में वसुधा सिंह चौहान है तो वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं।
2: चंद्रिका के सामने आया सच।
11: वो तुम्हें अपने घर में अंदर क्यों आने देंगे?
10: क्योंकि हमारे पास
2: क्या खतरे में पड़ेगी वसुधा की जान?
12: हे माता रानी, हमारी देव की वसुधा अपने परिवार से बहुत दूर है।
10: खम्मा गणी काकी, खम्मा गणी काका,
12: उसकी रक्षा कीजिए।
13: तू कौन है?
2: जी टीवी के सीरियल वसुधा में देव मुंडवा गांव गया था, लेकिन गांव से वो लौट कर आया है। ऐसे में चंद्रिका अब देव से कहती है कि वो दोबारा वापस गांव कभी नहीं जाएगा। लेकिन अब तक चंद्रिका इस बात से अनजान है कि वसुधा उसी गांव में है और देव उसे वहां छोड़कर घर लौट आया है।
12: तकलीफ है,
13: कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से हम अपने परिवार से किसी को भी वहां जाने से मना कर रहे हैं।
14: मासा आखिर ऐसा क्या है जिसे आप?
13: देव, आज के बाद ना कोई उस गांव के बारे में हमसे कोई सवाल करेगा और ना कोई उस गांव में कदम रखने के लिए भी जाएगा। इसे तुम या तो हमारी जिद समझो या हमारा हुक्म।
14: ठीक है मासा, आज के बाद मैं आपसे मामला के बारे में कभी कोई बात नहीं करूंगा।
2: लेकिन चंद्रिका को मिल रहे हैं संकेत। पहले तो दिया बुझ गया और उसके बाद देव के लैपटॉप पर जिस पर वसुधा की तस्वीर थी उस पर दूध भी गिर गया, यानी कि अपशगुन पर अपशगुन हो रहे हैं, जिस वजह से चंद्रिका काफी परेशान है और उसे लग रहा है कि वसुधा खतरे में है।
13: ठीक नहीं लग रहा है। पहले हमें हमारे पूजा का दिया बुझ गया, फिर दूध गिर गया, वो भी तुम्हारे लैपटॉप पे जितने वसुधा का फोटो है स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे।
2: ऐसे में आखिरकार चंद्रिका को पता चल ही जाता है कि वह सुधा मड़वा गांव में है। उसे शक होता है और जब वो देव से पूछती है तो देव उसे बताता है कि वह सुधा मड़वा गांव में ही है, जिसे सुनकर चंद्रिका के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि मड़वा गांव में चंद्रिका का राज है। और क्या है वो राज, ये तो अब धीरे धीरे पता चलेगा ही।
13: सिर्फ और सिर्फ सच। सच सच बताओ हमें, क्या तुम वसुधा से बात कर रहे थे? इसका मतलब तुम्हें पता है कि वसुधा कहाँ है। वो देव कहाँ है वसुधा? चुका दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें पता है कि वसुधा कितने खतरे में है? अगर उन्हें पता चल गया कि वसुधा असल में वसुधा सिंह चौहान है तो वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं।
15: ये बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। वसुधा की जान को खतरा है।
8: जी, अब देव वापस आ गया है और मासा ने बोल दिया है कि अब वापस मुंडवा कोई नहीं जाएगा। और देव काफ़ी परेशान है क्योंकि वसु तो वहीं पर है और जो हम सॉल्व करने गए थे, जो फिगर आउट करने गए थे, वो भी फिगर आउट नहीं कर पाए हैं कि वो लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो देव बहुत परेशान है और मासा और ज़्यादा परेशान है क्योंकि मासा को सच पता लग गया है कि देव झूठ बोलकर मुंडवा गया था। हाँ, मासा के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि दिया बुझ गया है और फिर दूध गिर गया लैपटॉप पर। लैपटॉप पे वसु की फ़ोटो थी तो मासा को ऐसा वहम हो गया कि वसु की जान को खतरा है। लेकिन मासा का जो इंट्यूशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो देव को भी परेशानी हो गई है। देव भी सोच रहा है कि वसु को कुछ हो तो नहीं गया, तो मासा शायद मुंडवा जाए इसी लिए। अब वो पता लगेगा आपको जल्द।
2: वसुधा को लेकर देव काफी परेशान है और वो लेता है फैसला मुंडवा गांव जाने का वसुधा के लिए। इस बात पर चर्चा चल ही रही होती है कि पता चलता है कि चंद्रिका खुद मुंडवा गांव जाएगी।
14: सब जानते हो मैं उससे कहा इलाज करवाऊं, कुछ नहीं हो सकता।
16: देखो वसु वहां पर व्रत के लिए गई है और मेरा मन कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। अगर चंदा अकेले मुंडवा जाना चाहती है वसु को लेने, तो मुझे लगता है कि वही सही फैसला है। वैसे भी मुंडवा के बारे में हम सब कुछ कुछ नहीं जानते।
17: हरदेव की परेशानी और बढ़ गई है, उसको याद आ गई है कि वो वसु को अकेला छोड़कर आ गया है और अभी उससे बात करने की कोशिश करेगा, फिगर आउट करेगा कि वो ज़्यादा अपने आप को खतरे में ना डाले, टू फिगर थिंग्स आउट कि वहाँ पे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन है वो लोग। तो देव काफ़ी स्ट्रेस में क्योंकि अभी वो तो नहीं जा पाएगा, तो वसु को अकेले ही हैंडल करना होगा।
18: जो लोग रोज रात को आकर हमारा बोनट गंदा कर दे रहे हैं, उनके गुस्से और नफरत की कोई तो बहुत बड़ी वजह होगी।
19: कैसे पहुंचेंगे उन लोगों तक?
18: क्यों देखिए,
2: यानी कि अब कहानी में नया ट्विस्ट आएगा जब खुद चंद्रिका अपने अतीत के पन्ने खोलेगी उस गांव में जाकर। अब क्या है ये अतीत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से कैमरामैन सिद्धेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
20: ये माता रानी, हमारी देव की वसुधा अपने परिवार से बहुत दूर है।
18: खम्मा गणी काका,
20: उसकी रक्षा कीजिए।
21: तू कौन है?
22: क्या इस अनजान जगह पर वसुधा का इंतजार कर रही है एक नई मुसीबत?
0: चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखाते हैं आपको मनोरंजन जगत की रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज। तो पेश है आज की रॉकिंग खबरें।
2: एक्टर सोनू सूद पहुंच गए हैं नेपाल और वहां जाकर वो कर रहे हैं फ्लड से ग्रस्त लोगों की मदद। सामने आई हैं ये तस्वीरें।

0: all. Today is a really special day for me.
1: अमनदीप सिद्धू ने शेयर किया है ये वीडियो जहां उन्होंने बताया था कि कुछ साल पहले 1 सितंबर को ही उन्होंने एक्टिंग जर्नी की अपनी शुरुआत की थी. देख लीजिए ये फन वीडियो.
0: Moved from Delhi to Bombay. 19 years old girl decided to, you know, change her city, her dreams, her life, leaving her family behind. It's a very, very special day for me and for all Amandeepians. So, a few of my cute little family sent me this and this with a cute notes also. And one is from Pixel Vibes and another one from, of course, my favorite, Isha Bain. So, they have wrote a very nice notes for me.
1: साउथ एक्ट्रेस रुक्मणी मैत्र करने जा रही हैं बॉलीवुड में अपना डेब्यू अक्षय कुमार के साथ. वही इन दोनों की जल्दी फिल्म आएगी जिसका नाम है सामुक, जिसकी शूटिंग यूके में शुरू हो चुकी है.

कई खबरें आ रही हैं कि बिग बॉस सीजन 20 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकती हैं मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी। इसी के साथ मराठी पॉप स्टार यंग डीएसए भी बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसी के साथ बिग बॉस सीजन 20 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आने वाली है लवप्रीत कौर, जिसके लिए वो पहुंच गई हैं इस्कॉन मंदिर लेने भगवान जी का आशीर्वाद बिग बॉस के घर में जाने से पहले।

और फिल्म एक्ट्रेस कश्मीरा ईरानी जल्दी मम्मी बनने वाली है और तैयार है वो अपनी नई जर्नी के लिए। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने फैंस तक पहुंचाई है अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़।

अविनाश मिश्रा ने रखी थी हाउस वार्मिंग पार्टी, जिसमें पहुंचे उनकी क्लोज फ्रेंड्स और खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट्स भी, जो अब उनके दोस्त हैं। देख लीजिए ये तस्वीरें।

0: किसी अच्छे इज्जतदार।
1: सीरियल ये फितूर 13 में जल्दी सौम्या की शादी होगी। अब देखना होगा इस शादी के ट्विस्ट के साथ और कौन से ट्विस्ट आते हैं।
0: अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। बायोडाटा के लिए एक फोटो चाहिए।
2: शादी के लिए फोटो खिंचा रही हो भाई?
3: जिसको भी तुम्हें पसंद करना है वैसे करे, जैसी हो। बदल करे।
1: बीती शाम हुए इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड्स 2026, जिसमें शामिल हुए अजय देवगन, दिव्या दत्ता, रजत बेदी और शर्मन जोशी।

0: वाली है माला माल वीकली 2। ऐसे में इसकी कास्ट को ज्वाइन किया है ईशा देओल और सोनिया बंसल ने।
1: सास बहू और बेटियां में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां, बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्मोत्सव होगा विशेष अनुष्ठान, मंदिर की विशेष सजावट की गई। झांसी में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर बाजारों में रौनक, नई डिजाइन की पोशाकें, श्रृंगार के सामग्री की भारी डिमांड। अयोध्या में शिला पूजन के बाद पहली बार रजत शिला वृंदावन के सुदामा कुटी लाई गई, विधि विधान के साथ हुई पूजा, जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। बारिश थमने के बाद फिर से शुरू हुई केदारनाथ की यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, दोपहर में हुई जोरदार बारिश, उमस से मिली लोगों को राहत। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 78,000 पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने की योजना, 10 साल तक टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस माफ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: देशभर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप, 4 सितंबर को बद्रीनाथ धाम में धूमधाम से मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा के साथ लगाया जाएगा विशेष भोग, रात में जन्मोत्सव के समय विशेष आरती के बाद श्रद्धालुओं को वितरित होगा प्रसाद। मंदिर के सभा मंडप में श्री कृष्ण के लिए तैयार विशेष डोल में होता है जन्मोत्सव, जन्माष्टमी की रात सामान्य दिनों की तुलना में देर रात होती है बद्रीनाथ की शयनार्थी। देशभर के बाजारों में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर रौनक, झांसी में नई डिजाइन की पोशाकें, श्रृंगार की सामग्री की भारी डिमांड। लोग माखन, मटकी, बांसुरी, झूलों की कर रहे खरीदारी, श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमाओं और श्रृंगार का सामान खरीदने उमड़ रहे भक्त। अयोध्या में विधि विधान के साथ पूजन और सरयू स्नान के बाद पहली बार वृंदावन की सुदामा कुटी लाई गई, श्रीकृष्ण रजत संकल्प शिला, विशेष रथ से हुआ आगमन। सुदामा कुटी में नाभा पीठाधीश्वर जगतगुरु महाराज के सानिध्य में संतों ने रजत शिला का भव्य स्वागत किया, विधि विधान के साथ की पूजा। संकल्प शिला के आगमन पर भक्तिमय हुआ पूरा माहौल, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर किया जाएगा संकल्प शिला का सहस्त्र धाराभिषेक। वडोदरा के कारेली बाग में इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा का निर्माण हुआ, लगभग 82 किलो नाड़ा छड़ी का इस्तेमाल से तैयार की गई प्रतिमा, इसके निर्माण में आई है करीब 16,700 रुपए की लागत, पिछले 10 सालों से पर्यावरण अनुकूल गणेशोत्सव मनाया जा रहा वल्लभ नगर सोसाइटी की तरफ से। जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने के लिए कर रही जबरदस्त तैयारी। कई स्तर के मानव पिरामिड बनाने की चल रही प्रैक्टिस, मुंबई और ठाणे में होती है बड़ी दही हांडी प्रतियोगिताएं, जहां रखे जाते हैं लाखों रुपए के नगद पुरस्कार। देशभर में विघ्नहर्ता के आगमन की तैयारी तेज, कर्नाटक के रामनगर में बनाई जा रही बप्पा की अलग अलग स्वरूपों आकार की प्रतिमाएं। प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी, गोबर, प्राकृतिक रंगों से हो रहा मूर्ति का निर्माण, पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेहद सराहनीय पहल। गणपति के श्रृंगार के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा, बारीक नक्काशी से की जा रही सजावट। श्री अमरनाथ यात्रा के आधिकारिक समापन के बाद पुलवामा के नवदल इलाके में पारंपरिक नवदल तीर्थ यात्रा आयोजित, हजारों तीर्थ यात्रियों ने लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान के साथ पूजा पाठ के साथ भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा, अमरनाथ यात्रा के औपचारिक समय पर बेहद शुभ और अनिवार्य माना जाता है ये स्नान। आज तय होगा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ, हजारों में चुने गए केवल 3 नाम। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के स्थान मणि रामदास छावनी में बैठक, राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक के लिए कई प्रमुख ट्रस्टी पहुंचे अयोध्या। सीईओ की नियुक्ति के साथ ट्रस्ट की डीड में बदलाव पर भी चर्चा संभव, प्रस्तावित संशोधन में सीईओ के नए अधिकार जिम्मेदारियां शामिल किए जाने की संभावना। बाबा केदार के भक्तों के लिए राहत की खबर आई है, बारिश थमने के बाद मौसम हुआ साफ, शुरू हुई केदारनाथ की यात्रा। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आस्था का भव्य नजारा, तिरुचेंदूर स्थित प्रसिद्ध अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में अवनी उत्सव की शुरुआत। 12 दिन तक चले गए धार्मिक उत्सव, तमिल महीने में अवनी यानी अगस्त सितंबर में मनाया जाता है ये उत्सव। पारंपरिक ध्वजारोहण के साथ होती है अवनी उत्सव की यहां पर शुरुआत, विशेष विश्व रूप दर्शन और पूजा अर्चना के लिए उमड़े भक्त। उत्सव में भाग लेने के लिए तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में थूथुकुड़ी पहुंच रहे श्रद्धालु, मंदिर प्रशासन के द्वारा विशेष अनुष्ठान और जुलूस की तैयारियां पूरी हो गई हैं। भीड़ में चार पीढ़ियों के बाद परिवार में बेटी का जन्म हुआ, मासूम बच्चे का अस्पताल से घर तक शानदार स्वागत हुआ। रथ में बिठाकर निकाली गई शोभा यात्रा, नवजात बच्चे उसकी मां का ढोल नगाड़ों की थाप पर फूलों के बीच में वेलकम हुआ। गार्गी रखा गया है मासूम का नाम, लंबे समय के बाद घर में बच्चे के जन्म से भावुक है पूरा परिवार। असम के देरगांव दौरे पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा लाचित बर्फुकन पुलिस एकेडमी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दीक्षांत समारोह के साथ ही 403 नए प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर असम पुलिस बल में रखा पहला कदम। त्योहारों से पहले यूपी में बिजली व्यवस्था होगी और भी दुरुस्त, योगी सरकार 15 सितंबर से चलाएगी अनुरक्षण माह। यूपी में आयोजित होगा आउटसोर्स कर्मचारियों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, सेवा सुरक्षा हितों के संरक्षण का दिया भरोसा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 78,000 पुराने कमर्शियल वाहन बदलने की यहां पर तैयारी चल रही। BS6 CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए वाहन मालिकों को आर्थिक प्रोत्साहन देगी रेखा सरकार, गाड़ी बदलने पर 10 साल का टैक्स में छूट। दलाई लामा ने तिब्बत और नेपाल में बाढ़ की वजह से जान गंवाने वालों के प्रति जताई संवेदना, जिंदगियों के पटरी पर लौटने के लिए प्रार्थना की जा रही। गया में OTA ने समर टर्म के लिए आयोजित की कमेंट अवार्ड समारोह, उत्कृष्ट कैडेट्स को ट्रॉफी से नवाजा। ड्रिल, फिजिकल ट्रेनिंग, हथियार ट्रेनिंग में कैडेट्स का शानदार प्रदर्शन, 4 और 5 सितंबर को होगी पासिंग आउट परेड। एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे 254 कैडेट्स बनेंगे अधिकारी, कमांडेंट जनरल ने बढ़ाया इनका उत्साह। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने कैडेट्स को चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सलाह दी, लगन और अनुशासन से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वडोदरा में पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने यहां पर हिस्सा लिया। दिल्ली NCR में फिर से बारिश की फुहार, सुबह से छाए थे यहां पर बादल, तापमान में आई गिरावट। राजधानी के कई इलाकों में भर गया पानी, थमी ट्रैफिक की रफ्तार। दिल्ली में शाम को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, IMD ने 7 राज्यों के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। नेपाल त्रासदी में बागेश्वर महाराज ने बढ़ाया मदद का हाथ, पीड़ितों के लिए बागेश्वर धाम से भेजी जा रही राहत सामग्री। नेपाल के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 4 ट्रकों में पहुंचाई जा रही बुनियादी जरूरतों का सामान, भविष्य में हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे सोनू सूद, भारत से लाए कंबल, राशन और बाकी जरूरी सामान। सोनू सूद बोले, संकट के इस दौर में जरूरतमंदों के साथ खड़े होना हम सबका फर्ज बनता है, सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले महीनों में पीड़ितों तक मदद पहुंचे। संकट में नेपाल के साथ खड़ा हुआ भारत, 5.5 टन दवाओं के साथ मदद की 5वीं खेप भी भेजी गई। नेपाल में रसुवा फ्लैश फ्लड पीड़ितों की पहचान के लिए भारत की 19 सदस्य फॉरेंसिक टीम ने संभाला मोर्चा, DNA सैंपल्स की जांच शुरू। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, त्रिशूली में मलबा हटाने में जुटी है नेपाली सेना। गुजरात में RPF जवान बना देवदूत, चलती ट्रेन से लटके यात्री को खींचकर बचाई उसकी जान। रोहतास में कैमूर पहाड़ी के इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर है वाटरफॉल, दिखा सुंदर नजारा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते तबाही, फायर और एसडीआरएफ टीम ने आधा दर्जन परिवारों का रेस्क्यू किया। आसनसोल उत्तर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, कई इलाकों में जलजमाव हुआ, लोगों के साथ वाहन चालकों को परेशानी। गोला नदी और खकरा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में भर गया पानी, खटीमा के वन गांव में दर्जनों फंसे परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में प्रवासी पक्षियों का दिखा सुंदर नजारा, इस बार समय से पहले आए परिंदे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सैन्य अधिकारियों ने गाड़ी को किया रेस्क्यू, भूस्खलन में फंस गई थी गाड़ी। भारी बारिश के चलते बढ़ गई भूस्खलन की घटनाएं, यात्रियों को दी गई सावधान रहने की हिदायत। उत्तराखंड के खटीमा में भारी बारिश ने आम जनजीवन को किया प्रभावित, सड़कों पर भर गया पानी। शहर के निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति, लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से

0: कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे, और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है? जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है, बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है, और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है? रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है, क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है। अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर, ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्थर, ये गंधपुरा पत्थर में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा, ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: अंतिम चरण में जन्माष्टमी की तैयारियां, बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्मोत्सव पर होगा विशेष अनुष्ठान, मंदिर की विशेष सजावट की गई। झांसी में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर बाजारों में रौनक, नई डिजाइन की पोशाकें, श्रृंगार की सामग्री की भारी डिमांड, माखन, मटकी, बांसुरी और झूलों की लोग कर रहे खरीदारी। अयोध्या में शिला पूजन के बाद पहली बार रजत शिला वृंदावन के सुदामा कुटी लाई गई, विधि विधान के साथ हुई पूजा अर्चना, जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। बारिश थमने के बाद फिर से शुरू हुई केदारनाथ की यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की गई। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, दोपहर में हुई जोरदार बारिश, उमस से मिली लोगों को राहत। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 78,000 पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने की योजना, 10 साल तक टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस माफ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। श्री कृष्ण जो योग योगेश्वर कहलाते हैं, भाद्रपद में ना सिर्फ उनका जन्म हुआ बल्कि ये महीना उनकी लीलाओं का भी गवा रहा है। ऐसे में माधव के इस महाकल्याणकारी महीने में उनका ध्यान और पूजन करना आपके लिए परम फलदायी हो सकता है। आज हम आपको भगवान कृष्ण और उनके धारण किए गए आभूषणों की महिमा के बारे में बताएंगे। आपने वासुदेव श्री कृष्ण की लीलाओं और उनकी भक्ति की शक्ति के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप उनके दिव्य अलंकारों की महिमा जानते हैं, जो माधव का श्रृंगार भी हैं और उनके अस्त्र भी। तो चलिए जानते हैं कैसा है श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप।

भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरा पर धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। किसी न किसी स्वरूप में भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर आता हूँ। शास्त्रों में ईश्वर के जितने भी स्वरूपों का वर्णन मिलता है उसमें श्री कृष्ण ही लीलाधारी हैं।

0: तभी तो कुरुक्षेत्र में बिना शस्त्र उठाए ही पांडवों की विजय सुनिश्चित कर देते हैं। अद्भुत है गिरधारी का स्वरूप। जब देवराज इंद्र ने शक्ति और अहंकार दिखाया, तब मुरलीधर ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा की। द्वापर युग में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब श्री कृष्ण ने अधर्म पर धर्म की पटक कथा लिखी, चाहे कालिया नाग का मर्दन करना हो। या फिर कंस के भेजे राक्षसों का संहार करना हो। अपने लीलाओं से नटवर ने धरावासियों को कर्मपथ दिखाया है। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको श्री कृष्ण के धारण किए हुए उनके प्रिय अलंकारों की महिमा बताएंगे, जिनमें छिपी है मानव के लिए सीख। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि द्वारकाधीश संकटों का समाधान करने वाले हैं, और माधव की मनमोहिनी सूरत और व्यक्तित्व में ही समस्त दुश्वारियों का उपाय छिपा है। आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण क्यों कहे जाते हैं श्री हरि के सबसे दिव्य अवतार।
1: कृष्ण को हमारे यहाँ शास्त्रों में पूर्णावतार बताया गया। तो जो पूर्णावतार होता है ईश्वर के अंश के रूप में, तो उसकी उपासना के लिए हमें हमारे यहाँ जो बताया गया कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, और या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस पूरे महीने जप करके श्री कृष्ण की उपासना को हम सार्थक कर सकते हैं।
0: श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री हरि के सभी अवतारों में यही संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न थे। श्री कृष्ण को अलौकिक देव कहते हैं। श्री कृष्ण ने हर समय अपने भगवान होने का परिचय दिया है। श्री कृष्ण के मुख्य रूप से 3 स्वरूप हैं, ब्रज के कृष्ण, राजा कृष्ण और पार्थ सारथी कृष्ण। हर रूप में श्री कृष्ण अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं। हर रूप में वो भक्तों की कष्ट हर लेते हैं और उन्हें मुक्ति मोक्ष का वरदान देते हैं। माना जाता है कि भाद्रपद का ये महीना कृष्ण भक्ति के लिए सबसे खास है। इस महीने में कान्हा के मंत्रों का सही उच्चारण करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद माह से ही श्री कृष्ण का गहरा संबंध है, क्योंकि इसी माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हुआ था योग योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतार।
1: तो हमारे यहाँ कहा गया, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा, हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब मनुष्यों का आवश्यकता होती है ईश्वर की, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आता है। और कहा भी गया है, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
0: माना जाता है कि यह संसार श्री कृष्ण के अधीन है। धर्म ग्रंथ गीता में भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप से दुनिया को ज्ञान दिया। माना जाता है कि श्री कृष्ण इस जगत की वो शक्ति हैं जो संसार में व्याप्त 16 कलाओं के मालिक हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण के ध्यान और उपासना का फल अमोघ यानी कभी नष्ट न होने वाला होता है। आज हम आपको श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की महिमा बता रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि माधव के श्याम वर्ण स्वरूप पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: श्याम वर्ण का रहस्य है कि समुद्र को हम श्याम वर्ण कहते हैं और गगन को भी श्याम वर्ण कहते हैं, इसलिए मेघ श्यामम जो कहा गया है। मेघ रूपी श्याम है भगवान, देखने में तो बादल का सदृश है लेकिन उनके अंदर जल भरा हुआ है। वह कृपा की दृष्टि का जो जल भरा हुआ है, यह भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है।
0: भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर धारी भी कहा जाता है, क्योंकि वो पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं। पीताम्बर अर्थात पीले रंग का वस्त्र। माना जाता है कि पीला रंग शुद्धता, ज्ञान और स्पर्शता का प्रतीक है। ये हमें अपने विचारों और कर्मों में सात्विकता बनाए रखने की शिक्षा देता है। चलिए आपको बताते हैं केशव के पीताम्बरी वस्त्रों की महिमा।
1: पीताम्बर इसलिए है कि पीताम्बर सत्यता का प्रतीक है, तो जो भगवान का यह स्वरूप है बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, यह जो बाल मुकुंद का जो यह स्वरूप है, कृष्ण का यह जो स्वरूप है, यह परमार्थ चिंतन के लिए बहुत ही लाभदायक। और पीला वस्त्र पहनते हमारे अंदर ये भगवान की दिव्य छवि बन जाती है, जो पीताम्बरधारी भगवान है।
0: संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसार में प्रेम और धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग किया है? श्री कृष्ण के बहुत से अस्त्र हैं जिनसे उन्होंने लीलाएं की हैं। उनके तीन अस्त्र विशेष प्रभावशाली हैं, सुदर्शन चक्र, बांसुरी और सम्मोहन। इन तीनों का सही समय पर सटीक प्रयोग करके उन्होंने पापियों को दंड दिया और धर्म की स्थापना की। ये तीनों ही अस्त्र हमारे जीवन में भी जाने अनजाने प्रयुक्त होते रहते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण के अलंकारों में मोर पंख सर्वोपरि है, क्योंकि वे इसे अपने मुकुट में धारण करते हैं। मोर पंख को विनम्रता, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि मोर आकर्षक होता है, लेकिन उसमें जरा भी अहंकार नहीं होता। यही भाव इंसानों को याद दिलाता है कि सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, मानव को सदैव सरल बना रहना चाहिए।
1: मयूर पंख धारण करने का मतलब है सांसारिक जिन वस्तुओं को मयूर त्याग देता है। मेरे समान कोई नहीं, एको हम बहुधा नास्ति, मैं एक हूँ दूसरा नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं भक्तों के लिए अपने उसी प्रकार अनुग्रह करने वाला हूँ जैसा मेरा नाम है।
0: तो देखा अपने कान्हा के आभूषण कितने चमत्कारी हैं। कहते हैं कान्हा के भक्तों को न सुख की चिंता सताती है, न दुख परेशान कर पाते हैं, क्योंकि जिस मन में कान्हा का वास होता है वहाँ किसी अन्य सुख की आवश्यकता ही नहीं होती। आगे हम आपको लीलाधारी कृष्ण के और भी आभूषणों से आपको अवगत करवाएंगे। तब तक कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्री हरि के सब अवतारों में केवल कृष्ण को ही संपूर्ण अवतार माना गया है। श्री राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए तो श्री कृष्ण ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया और माना जाता है कि वासुदेव कृष्ण के अस्त्रों का संबंध कहीं ना कहीं आपके जीवन के सत्य से भी जुड़ा है। गौर से देखिए।
1: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
2: जिनकी प्रेम लीलाओं में डूबा है संसार।
1: हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
2: श्री कृष्ण के दिव्य अस्त्र करेंगे चमत्कार।
1: ते सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी, पूरन कीजे काज।
2: चमत्कारी है गिरधारी का सुदर्शन। मनोहारी है मुरलीधर की मुरली, श्री कृष्ण है श्री हरि के सबसे मनमोहक अवतार। जानकार बताते हैं कि कृष्ण का अर्थ सृष्टि को आकर्षित करने वाला भी होता है और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारे सृष्टि को आकर्षित किया। लेकिन जब जब टूटा स्वयं भगवान कृष्ण के धैर्य का बांध, तब तब उठा सुदर्शन चक्र। माना जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने उठाया सुदर्शन चक्र। तो क्या है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की महिमा और क्यों माना जाता है ये सबसे शक्तिशाली? चक्र एक विशेष तरह का घातक हथियार है जो बहुत सारे देवी देवताओं के पास है। श्री हरि के चक्र का नाम कांता चक्र है और शिव जी के चक्र है भवरेन्दु। सबसे शक्तिशाली चक्र सुदर्शन चक्र है जिसे केवल श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण शिव जी ने किया था। श्री हरि के प्रतीक के रूप में चक्र की पूजा भी की जाती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर शंख और चक्र की आकृति लगाई जाए तो व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से सुरक्षित रहता है।
3: भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। वे भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। आपने देखा होगा कि 100 गाली देने के बाद शिशु का पाल का भगवान ने चक्र से वध किया। जब गज ने पुकारा समुद्र में तो भगवान वहां भी पहुंच गए और उसकी रक्षा किया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र इसीलिए बनाया गया, वहां पर भगवान ने चक्र चलाया है। तो भगवान का मुरली मधुर तान के लिए है और धर्म की रक्षा और संस्थापन के लिए भगवान चक्र का धारण करते हैं।
2: जहां एक ओर धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने सुदर्शन रूपी अस्त्र उठाया, वहीं प्रेम की स्थापना के लिए बांसुरी थामी। माना जाता है कि श्री कृष्ण का सबसे दिव्य अस्त्र है बांसुरी। कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी में स्वयं मां सरस्वती का वास था और उनकी वंशी की धुन सबको मतवाला बना देती थी। तो देखिए कान्हा के इस दिव्य अलंकार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्री कृष्ण नटवर भी हैं और हर कला के महारथी भी हैं। संगीत के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया। ये बांस का बना हुआ एक वाद्य होता है जो वायु के सहारे मीठी ध्वनि पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से श्री कृष्ण अपने चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे। बांसुरी के छिद्र ये बताते हैं कि कृष्ण की कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बज सकता है। घर में बीम पर अगर बांसुरी लटका दी जाए तो बीम का बुरा असर समाप्त हो जाता है।
3: हमारे यहाँ कहा गया, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीताम्बरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्र महम न जाने। जब भगवान के अधरामृत पर, होठों पर वह जब बांस की बांसुड़ी लगती है और भगवान श्री कृष्ण जब उसमें हवा देते हैं, वो संसारे संसार को, केवल गोपियों को ही नहीं, सारे संसार को आह्लादित और आनंदित करती है।
2: मान्यता तो यहाँ तक है कि कान्हा को बांसुरी महादेव ने भेंट स्वरूप दी थी। जब वे पहली बार कान्हा को देखने आए थे, बांसुरी से हमेशा मीठी और शांत धुन निकलती है। ये संदेश देती है कि हमें हमेशा ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरे के मन को शांति दे और कड़वाहट को दूर करे। माना जाता है कि मुरली के प्रयोग से आप जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं, लेकिन कान्हा के सुदर्शन चक्र और मुरली से भी कहीं ताकतवर है उनका आकर्षण यानी सम्मोहन शक्ति, जो हर किसी को मोहित कर देती है। सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें विशेष तरीके से व्यक्ति के मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन शक्ति थी और इसी सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम आसानी से कर डाले थे। जयद्रथ का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके अंदर सम्मोहन के गुण अपने आप आने लगते हैं, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
3: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना, यो आकर्षते यदि सह कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। राम के नाम में आराम है, लेकिन कृष्ण के नाम में आकर्षण है, सबको आकर्षित करना।
2: श्री कृष्ण ने जो भी धारण किया वह कारण नहीं था, उनके पीछे प्रेम, शांति, समर्पण, संहार और संकटों का निवारण छिपा है। तो अगर आप भी सच्चे मन से कान्हा की भक्ति करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि कान्हा के भक्तों में कान्हा का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो आप भी श्री कृष्ण के इन अलंकार रूपी अस्त्रों और उनसे जुड़ी सीख को अपने जीवन में शामिल कीजिए। आगे हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के कुछ और चमत्कारी अलंकार, साथ ही जानेंगे श्री कृष्ण के पूजन में किन सावधानियों का रखे ध्यान।
0: हमने आपको श्री कृष्ण के उन दिव्य आभूषणों की महिमा के बारे में बताया है जिनका मानव जीवन से गहरा संबंध है। चलिए अब हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण की उपासना के नियम और सावधानियां क्या हैं, क्योंकि भादों का महीना नारायण की उपासना के लिए विशेष होता है।
2: परम फलदायी है श्री कृष्ण का ध्यान, श्री कृष्ण की उपासना से मिलेगा वरदान। भाद्रपद में कीजिए माधव का गुणगान, जीवन में आएगी समृद्धि, मिलेगा सम्मान। आज हम श्री कृष्ण के दिव्यास्त्रों और उनके आभूषणों की महिमा आपको बता रहे हैं। चलिए माधव के कुछ और प्रमुख अस्त्रों की महिमा आपको बताते हैं। कौमुद की गदा धारण करते हैं माधव। मान्यता है कि ये गदा न सिर्फ शारीरिक विकार मिटाती है बल्कि जीवन से अंधकार का भी नाश करती है। मान्यता है कि ये गदा श्री कृष्ण को वरुण देव ने दी थी। ये गदा शक्ति, बुद्धि, नीति, स्थायित्व और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। श्री कृष्ण का धनुष सारंग असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस धनुष को विश्वकर्मा ने बनाया था। माना जाता है कि इस दिव्य धनुष को भगवान विष्णु, परशुराम, श्री राम और श्री कृष्ण ने धारण किया। ये सिखाता है कि बल का प्रयोग सिर्फ अन्याय और अधर्म को मिटाने के लिए किया जाना चाहिए। ये तो श्री कृष्ण के संहारक अस्त्र थे। चलिए आपको बताते हैं श्री कृष्ण के एक और अलंकार वैजयंती माला की महिमा। मान्यता है कि इस माला को राधा ने कान्हा को भेंट किया था जब माधव ने पहली बार राधा संग रास रचाया था।
3: वैजयंती को हमारे यहाँ जंगल वृक्ष की संज्ञा दी गई है। यह जंगल का वृक्ष है, उपेक्षित है। तो भगवान कहते हैं जो जो वस्तुएं उपेक्षित हैं वो मुझे दे दो। मैं सर्वग्राही जनार्दन, मैं तो जनार्दन हूँ, सर्वग्राही हूँ कि ये सांसारिक जिन चीजों का तुम त्याग करते हो ईश्वर उसे अपना अलंकार, अपना श्रृंगार बना लेता है।
2: श्री कृष्ण के जीवन से ही जुड़ा है रास, जिसमें गोप और गोपियों संग श्री कृष्ण लीला दिखाते हैं, जिसे भक्ति और प्रेम रस की पराकाष्ठा माना जाता है। माना जाता है कि रास लीला में श्री कृष्ण को परमात्मा और गोपियों को जीवात्मा माना गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब जीव अपने अहंकार और संसारिक बंधनों को त्याग कर पूर्ण समर्पण करता है तब उसका मिलन ईश्वर से हो जाता है।
3: गोपियां कौन है? सभी जितनी गोपियां आई हैं मृत्यु लोक में उस समय भगवान के श्री कृष्ण के समय, वो सब देवता हैं। तो भगवान अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए और रास करते हैं। रास का मतलब कोई विकार नहीं है, रास का मतलब सबको साथ लेकर के चलने का जो परिमाप है उसे हमारे यहाँ रास। रास में कृष्ण केंद्र हैं और गोपियां पूर्ण समर्पित उनकी परिधि हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं।
2: तो देखा आपने श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ अस्त्र और अलंकार कैसे आपके जीवन को गति और दिशा दे सकते हैं। मान्यता है कि नारायण की महाकृपा वाला ये महीना वैसे तो हर तरह से कल्याणकारी है, पर हर महीने की तरह इस महीने में भी साधकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो अब आपको बताते हैं भगवान कृष्ण की उपासना में किन बातों का ध्यान रखें। इनकी उपासना प्रातः काल या संध्या काल में करें। पूजा में चंदन, तुलसी दल और शंख का प्रयोग जरूर करें। पंचामृत या अन्य वस्तुएं जब भी अर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डालें। मंत्रों का जप तुलसी या चंदन की माला से ही करें। पीले वस्त्र और पीले आसन का प्रयोग विशेष लाभकारी होगा। जब जब संसार में पाप ने अपनी चरम सीमा लांघी है, तब तब नारायण ने पाप का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले कृष्ण का ध्यान पूजन करके आप भी उनके दिव्य स्वरूप से बहुत कुछ सीख सकते हैं, धर्म का मर्म समझ सकते हैं, जीवन जीने की शैली को आत्मसात कर सकते हैं।
0: और इसी के साथ इस खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: थाईलैंड में आजकल एक बहुत पुरानी परंपरा जोर पकड़ रही है। एक अनूठे अनुष्ठान में लोगों का विश्वास तेजी के साथ बढ़ चला है। इस मान्यता के तहत यहां लोग चेहरे पर सोने की परत चढ़वाते हैं। इनका मानना यह है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है।
8: ये महज चेहरे पर सोने की परत नहीं, उम्मीद की वो चमक है जो थाईलैंड के इन लोगों में भरोसा जगा रही है कि सब ठीक हो जाएगा। आर्थिक उथल पुथल के बीच जिंदगी वापस पटरी पर लौट आएगी। तस्वीरें थाईलैंड के अयुथिया शहर की हैं, या न्यूगोन लान पार्क में एक विशेष मन्नत के साथ श्रद्धालु जुट रहे हैं। ये स्थान धन समृद्धि के आह्वान के लिए ढोल बजाने की अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। इसी मान्यता की वजह से ये श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि इनके चेहरे पर गोल्ड लीफ लगाई जा सके। दरअसल पार्क में पौरके की प्रतिमा स्थापित है। पौरके को यहाँ खुशहाली चाहने वालों के रक्षक के तौर पर पूजा जाता है। उनके अनुयायी चेहरे पर सोने की पत्तियां चढ़वा रहे हैं ताकि देव की इन पर कृपा हो और सौभाग्य की प्राप्ति हो। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से आंतरिक शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास भी।
9: เสริมพลังในตัวเองอ่ะเหมือนแบบสิ่งพวกนี้เราเป็นความเชื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเหมือนเป็นเสน่ห์เมตตาในตัวเองเหมือนเราทำมาค้าขายอะไรทำธุรกิจอะไรเราลงหน้าทองไปแล้วมันเสริมเป็นกำลัง
8: ไทยอีโคโนมิกีสโลว์กรอทบดติลากัตและ घटते उपभोक्ता खर्च के बीच यहां के लोगों में इस अनुष्ठान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। यहां कई व्यापारी इस प्रथा को मनोबल बढ़ाने और कारोबार में सौभाग्य लाने का माध्यम मानते हैं।
10: मा ทําประมาณ 4-5 ครั้งแล้วครั้งนี้ก็คือเอาทางหน้าเลยแล้วก็มารออาบน้ํามนต์แล้วก็บินใช่ครับแล้วก็มีธุรกิจขายอาหารตามสั่ง
8: जाहिर है आर्थिक कठिनाइयों के दौर में ये लोग मेहनत के साथ-साथ सदियों पुरानी परंपरा में आस्था और उम्मीद तलाश रहे हैं, अपने इष्ट से सौभाग्य की कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: शुक्र का राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए अनुकूल होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशि के लोगों को सतर्क रहना होगा? क्या है शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: देश भर में धूमधाम से जारी गणेशोत्सव की तैयारियां। सूरत में टिश्यू पेपर से बनी 17 फीट की गणेश प्रतिमा, आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जन्माष्टमी से पहले बाजारों में रौनक, माखन मटकी बांसुरी और झूलों की लोग कर रहे हैं खरीदारी, नए डिजाइन की पोशाकों की भारी डिमांड। अयोध्या में शिला पूजन के बाद पहली बार रजत शिला वृंदावन के सुदामा कुटी लाई गई, विधि विधान से पूजा हुई, जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा पूरा मंदिर परिसर। बारिश थमने के बाद फिर से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 78,000 पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने की योजना, 10 साल से टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस माफ।

0: चांदी सुस्त, आगे क्या? बस यही है आज की चर्चा का मुद्दा, इस पर आगे बात करेंगे। दरअसल निवेशक कीमती धातुओं में दिलचस्पी दिखाते हैं और उन्हें निवेश के लिहाज से सबसे बेहतर ऑप्शन सोना हमेशा नजर आता है। वैसे भी सोने को सेफ हेवन कहा ही जाता है, ये वजह कि सोने और चांदी हमेशा लोगों की पहली पसंद माने जाते हैं। लेकिन पिछले करीब एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो सोने और चांदी के दामों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सोने चांदी की तेजी पर फिर लगा है ब्रेक, कीमतों पर जंग का असर कितना है? सोना ना खरीदने की अपील क्यों? सोना शांत, चांदी सुस्त, आगे क्या होगा? इन तमाम पहलुओं पर आज हम देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। तो सोना चांदी और सस्ता हो गया है। आज भी अगर देखा जाए तो सोने चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह चांदी 3500 रुपए से ज्यादा गिरी है, हालांकि फिर यह थोड़ी संभली और गिरावट थोड़ी कम हुई। सोने की बात कर लेते हैं, सुबह लगभग 1.5% सोना सस्ता हुआ है। सोने के दाम प्रति 10 ग्राम करीब 2000 रुपए गिरे हैं। सोना 1.5 लाख के पार लुढ़क गया। और अगर हम पिछले 5 सेशंस में सोने की बात करें तो सोना करीब 9000 रुपए गिर चुका है। जनवरी में अपने हाई पर था सोना और चांदी भी, और कहा जा रहा है कि मुनाफा वसूली की वजह से दाम गिरे हैं। वैसे वजह एक और भी है, अमेरिका और ईरान में दोबारा से तनाव बढ़ गया है। इस जंग के फिर से बढ़ने से सोने और चांदी में कमजोरी हुई है। जंग से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी हो रही है, लिहाजा कच्चे तेल के दाम बढ़ने का असर सोने चांदी की कीमतों में हुआ है और डॉलर के मजबूत होने की वजह से ये नीचे खिसक रहे हैं। वहीं यूएस में ब्याज दरें बढ़ने का डर भी निवेशकों को सता रहा है। 15 और 16 सितंबर को फेडरल रिजर्व की बैठक है, लिहाजा सोने चांदी के दामों पर दुनिया की नजरें हैं। सवाल ऐसे में ये उठ रहे हैं कि सोने चांदी से क्यों डिगा निवेशकों का भरोसा? सोने और चांदी का आगे क्या होगा, और गिरेंगे सोने और चांदी के दाम या फिर आगे उठेंगे? क्या गोल्ड सिल्वर में फिर से होगी चांदी? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी चर्चा दुनिया में हो रही है। हालांकि हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से लोगों से सोना और चांदी खरीदने की अपील की है, न खरीदने की अपील उन्होंने की है ताकि देश पर आर्थिक बोझ न पड़े। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजेश रूटगी, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। हमारे साथ केके गुप्ता, फाइनेंशियल एंड मार्केट एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर हमारे साथ इस वक्त योगेश सिंगल, प्रेसिडेंट इंडियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, और योगेंद्र कपूर जी, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत राजेश जी आप ही से करेंगे। सबसे पहले जरा दर्शकों को समझाते हुए, सर वजह क्या इसके पीछे की देख रहे हैं?
1: देखिए, फिलहाल गोल्ड और सिल्वर थोड़ा दबाव में है निश्चित तौर पर, लेकिन ये 2 दिन का दबाव है। ओवरऑल अगर मैं 1 महीने के पीछे देखता हूँ तो आज से करीब 1 से 1.5 महीने पहले इंटरनेशनली ही गोल्ड बहुत नीचे था। अगर मैं इंटरनेशनली रेट देखता हूँ तो $3,900 तक के 2 महीने पहले गोल्ड के रेट थे, उससे धीरे धीरे $4,500-4,600 तक के इंटरनेशनली आया। अगर मैं भारत के रेट देखता हूँ गोल्ड में, तो गोल्ड में करीब करीब 1,39,000 तक के नीचे गोल्ड का रेट आया था, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी वो 1,60,000-1,62,000 तक के गया। और लेकिन अभी 1-2 दिन पहले से ही थोड़ा सा दबाव बनना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग, आपने भी यही कहा, अभी प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण थोड़ा सा ये एक दबाव बना है। साथ ही साथ अभी फेड के जो, देखिए गोल्ड के जो रेट होते हैं ना, उसमें 3-4 फैक्टर एक साथ जब इम्प्लीमेंट होते तब इसका रिजल्ट आता है। फेडरल फेड के जब रेट कट होने के संभावना होती है तो गोल्ड बढ़ता है, रेट कट अगर बढ़ते हैं तो गोल्ड नीचे आता है। तो फिलहाल ये संभावना है कि रेट बढ़ने की अनुमान है, इस वजह से गोल्ड पे थोड़ा दबाव बना हुआ है। लेकिन अगर मैं एक साल पहले का आपके सामने अगर फिगर रखता हूँ ओवरऑल, तो पिछले साल इसी दरमियान अगस्त में हमारे पास गोल्ड के रेट 1 लाख के आसपास ही थे। अगर मैं चांदी भी देखता हूँ तो चांदी भी 1,25,000 के आसपास थी, चांदी भी आज 2,28,000 आज है। फिर गोल्ड में देखता हूँ तो आज भी गोल्ड 1,50,000 भारत में है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड एक सुरक्षित निवेश है हमारे भारतीय संस्कृति में। शायद इसीलिए एक हर ऑकेजन पे गोल्ड खरीदा जाता है क्योंकि इसी बहाने लोग इसके इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, उसको यूज भी करते हैं। इसलिए भारत में गोल्ड के प्रति एक अलग सांस्कृतिक विशेष उसके तरफ अट्रैक्शन।
0: बिल्कुल, के गुप्ता जी आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है आपका इसको लेकर, क्या मानते हैं ये जो गिरावट आई है इसके पीछे की वजह?
2: हाँ, रजेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि गोल्ड जो है और सिल्वर है, ये इंडिया की परंपरा है भी, हर घर में आपको मिलेगा। हर घर में देखा जाए तो दिवाली आ रही है, कोई दशहरा आ रहा है, तो उसमें सब लोग परचेज करते हैं। देखिए जो गिरावट जो आ रही है, इसका कई फैक्टर्स है, जैसे इंटरनेशनल प्राइस है इसकी, मेजर एस्पेक्ट जो इंक्रीज हुआ है, जैसे सिल्वर की बात हम कर रहे हैं, सिल्वर में कस्टम ड्यूटी जो है इंक्रीज कर दिया गया, तो 6% था वो 15% कर दिया गया, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इफेक्ट इट। जैसे डॉलर रेट जो था वो 8% के करीब बढ़ गया है, रुपीस जो है वीक हो रहा है, जो आज से 1 साल पहले देखा जाए तो 88 रुपीज था, आज वो 95 रुपीज है। तो दैट इज ऑल्सो इंटरनेशनल प्राइस के अलावा भी इंडिया में ये जो कस्टम ड्यूटी है या फ्लक्चुएशन इन दी करेंसी है, इट इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट मीन ट्रिपल फैक्टर है जो इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं फॉर दी प्राइसेस। वोलेटाइल तो है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए तो जो सिल्वर है लॉन्ग टर्म तो फंडामेंटल इसके बड़े स्ट्रांग है, क्योंकि इट इज यूज नाउ इन इंडस्ट्री, सोलर पावर है उसमें यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज हो रहा है, सो मैनी फैक्टर्स आर देयर मैडम। तो इसलिए इसमें तो कह सकते हैं कि चांदी का जो है वॉलेटिलिटी तो है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म मैं समझता हूँ उसका प्रोस्पेक्टिव तो है।
0: वही अगर दोनों की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा। योगेश सिंगल जी, लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अब फिर दाम गिरे हैं, गिरने की वजह आप क्या देखते हैं? हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं, अगर हम कीमतों को कंपेयर करें पिछले साल से लेकर अभी तक, तो कीमतें अच्छी खासी बढ़ी भी हैं।
3: देखिए 3 सालों में, 2022 से 2025 में, 3 सालों में चांदी 7 गुना और सोना 4 गुना हो चुका है। एक तेजी की भी लिमिट है, सरकारें फेल हो जाएंगी, बैंक फेल हो जाएंगे, कौन रखेगा बैंकों में एफडी में पैसा, कौन शेयर बाजार में पैसा लगाएगा? अगर इसी तेज गति से ही सोने को तेज आंकते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से तो करेक्शन आएगा। यही करेक्शन है जो $5600 बिका, उसके बाद में $3800 पे आके रुका, तो ये करेक्शन 2-4-5 साल में बहुत तेजी से बढ़ता है और उसके बाद में गिरावट आती है। ऐसी जैसे बढ़ता है 2-3 साल में, ऐसी 2-3 साल तक मंदा रहता है, तो उसी की ये गिरावट है। अभी 1,65,000 पे एमसीएक्स गया था, जो 1,50,000 पे कुछ हो गया दोबारा से, तो ये तेजी मंदी मिला के, कुल मिला के बहुत मोटी तेजी में नहीं बैठना चाहिए, अभी थोड़ा सा सस्ताना चाहिए, और जहां पर भी सस्ता सोना या चांदी खरीदनी है वहां पर खरीदिए। पैनिक में आके जैसे पीछे 4 लाख में आने दो, 4,30,000 में भी चांदी आने दो, सोना है 2 लाख है, 1.5 लाख है, 2.5 लाख है, लाओ लाओ लाओ लाओ, तो ये चीज पैनिक में आकर के अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए। अभी डिप्स ऑन बाइंग, अभी जैसे नीचे सोना आया है, यहाँ पर खरीदने का है, आप खरीदिए, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए आने के बाद में हम लोग 1.25 लाख रुपए में बैठ जाते हैं, तो वहां नुकसान हो जाता है इन्वेस्टर का, या जिसको ज्वेलरी खरीदनी है, तो ये बहुत अच्छे भाव है, यहाँ पर इसको एंजॉय करना चाहिए। 1,93,000 रुपए का ऊपर में भाव था और 1,50 हो गया, पहले 1,40 तक भी गया, 1,30 तक भी गया, तो इसमें 9% कस्टम ड्यूटी भी बढ़ी है, 12% का जैसे रुपए का डिवेल्यूशन भी हुआ है, 21% सोना अभी भी इससे अगर घटाएंगे तो कितना इंडियन रुपीज में भाव आएगा, तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये भाव एंजॉय करने के हैं, खरीदने के हैं, और ज्यादा मंदी में बैठने से नुकसान होगा।
0: ठीक है, एक बार जल्दी से योगेंद्र कपूर जी आपका रिएक्शन, फिर उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे।
4: राइट नवजोत, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्रेजेंट लेवल्स
0: है, आवाज नहीं आ रही सर आपकी।
4: अभी ठीक आ रही है
0: जी?
4: ओके, देखिए मेरा ये कहना था कि जो प्रेजेंट लेवल्स हैं गोल्ड के एज वेल एज सिल्वर के, उसको मैं ये कहूंगा कि आज की डेट में अगर हम इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को देखें, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो चाहे पुअर स्वेटा से आता हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास से आता हो, उनके लिए जो प्रेजेंट लेवल्स हैं वो उनकी रेंज से बाहर जा चुके हैं, चाहे गोल्ड के हों या सिल्वर के रेट्स हैं। और इसके लिए, इसको फर्दर जस्टिफाई करने के लिए मैं एक स्टेटिस्टिक्स और शेयर करना चाहूंगा कि लेटेस्ट जो फिगर्स हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स इंडिया के अंदर फाइल हुई है, जो 7.5 करोड़ को भी क्रॉस कर गई हैं, इसमें आप ये देखिए कि जो एक्चुअल टैक्स पेइंग जो असेसीज हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो मात्र 2.5 करोड़ है, तो वो परसेंटेज नहीं बढ़ी है अगर हम इसको पिछले

0: हैं वो एक उनको एक रिस्की प्रोपोजिशन लगता है। और मैं यही देखता हूं कि गोइंग फॉरवर्ड जो है अगर हम ऐसे एवेन्यूज और अगर हम देखेंगे इकोनॉमी के अंदर जो है, अगर जो एक वेस्ट एशिया क्राइसिस जिसने एक मैं कहूंगा कि डेफिनेटली एक टोल ले रखा है कंट्री के ऊपर, जिसकी वजह से बिजनेसेस भी जो है वो अपने एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो नहीं मीट आउट कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं ये फील करता हूं कि आगे गोइंग फॉरवर्ड इन विद इन नेक्स्ट वन ईयर ऑल्सो सिल्वर के ऊपर जो है डेफिनेटली एक प्रेशर रहेगा जो अराउंड नियर सिमिलर लेवल्स पे प्रिवेल करेगी। लेकिन गोल्ड में मैं डेफिनेटली मानता हूं कि जो इंक्रीज है वो गोइंग फॉरवर्ड जो है 10-20% जो है वो इंक्रीज कर सकता है विद इन नेक्स्ट वन ईयर।
1: ठीक है राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, ये तमाम कारण इसके पीछे के क्या ये हमने समझे। सर एक चीज और समझाइए कि क्या इसका असर सिर्फ सोने और चांदी पर ही दिखता है या बाकी मेटल्स पर भी आगे इसका असर दिखेगा?
2: देखिए सब फंडामेंटल सबके अलग अलग होते हैं, बाकी मेटल का थोड़ा सा क्योंकि बाकी मेटल इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से नहीं देखा जाता है और गोल्ड और सिल्वर एज अ प्रीशियस मेटल होने के कारण इन्वेस्टमेंट ये एक अलग एंगल साथ में आता है, तो इस मेटल को थोड़ा सा अलग तरीके से ऑलवेज स्थान भी मिला और सोचा भी जाता है। ओवरऑल जिस तरीके से अभी आपका सवाल था रेट को लेके भी और ईरान और जिस तरीके से यूएस का नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब कभी भी लड़ाई होती है तो गोल्ड शूट अप होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। जब कभी भी यूएस ईरान का कुछ भी युद्ध बढ़ता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड के ऊपर दबाव आता है, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही तेल के ऊपर आप ईरान देखते हैं तेल क्रूड के लिए सबसे बड़ी एक देश है, उत्पादक है, तो कहीं ना कहीं तेल की कीमत बढ़ेगी तो इसके वजह से गोल्ड का खेल खराब होता है और गोल्ड कहीं ना कहीं इसके वजह से दबाव में आता है क्योंकि इन्फ्लेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका दबाव पड़ता है, तो ये इसके पीछे कारण है। और लेकिन भारत में देखिए गोल्ड के रेट कुछ भी हो, भारत में इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है। आपने थोड़ी देर पहले हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए आह्वान किया। निश्चित तौर पे इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई सोचते हैं तो मैं एज ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते मैं इन्वेस्टमेंट के बायर को कभी भी अट्रैक्ट करने की इच्छा नहीं रखते हम लोग, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, करीब करीब 5 लाख ज्वेलर्स है और 1 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयड है, तो कहीं ना कहीं जो ज्वेलरी बनाते हैं तो वैल्यू एडिशन होती है, तो इस वजह से इसका अट्रैक्शन कम होना मुझे नहीं लगता पॉसिबल, क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति में है और जब धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व आ जाता है तो व्यापारिक महत्व ऑलरेडी इसके साथ जुड़ जाता है।
1: ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन के गुप्ता जी एक सवाल यहाँ पर, देखिए तनाव जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में बढ़ा है, मिडिल ईस्ट में खास तौर पर अगर देखिए अमेरिका ईरान के बीच में दोनों में टेंशन, और अभी राजेश जी ने समझाया भी कि इसका असर किस तरीके से, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे जाहिर से बात है कि सोने चांदी पर इसका असर होगा, लेकिन जो अभी स्थिति एट प्रेजेंट अगर हम बात करें स्थिति की, दोनों के बीच में जो टेंशन अभी दोबारा से इंक्रीज हो रही है, अगर स्थिति ठीक नहीं होती तो आगे क्या भविष्य देखते हैं सोने और चांदी का?
3: देखिए मैडम वैसे है जो इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ेगा, जबकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ऑल सेक्टर इट विल गोइंग टू अफेक्ट। कोई सोना चांदी के अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, देखिए सबसे बड़ा टैरिफ है, टैरिफ भी बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी उसकी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, तो यदि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो वीक होंगे हम लोग तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो कोई भी लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है मैडम, उसका इफेक्ट तो इंडियन की इकोनॉमी पर हर सेक्टर पर पड़ेगा, गोल्ड पर भी पड़ेगा, सिल्वर पर भी पड़ेगा। लेकिन इसकी फ्लक्चुएशन क्या है कि जैसे सिल्वर था या गोल्ड था कितनी प्राइस हो गई थी, एकदम नीचे आ गया, अब देखा जाए तो पिछले साल जो था इसके प्राइस 1 लाख से ऊपर था, 2 लाख से ऊपर चला गया सिल्वर, अब देखे ना कितने 100% के करीब है इसमें है। तो इन्होंने एक अपने स्पीकर ने बोला था कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यदि इतनी ही ग्रोथ होती रही, इतनी परसेंटेज बढ़ता रहा तो डेफिनेटली शेयर मार्केट अदर पीपल विल नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन बैंकर आल्सो, दैट मीन ऑल इकोनॉमी विल बी इफेक्टेड। तो इसको कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर बोला है तो ये कोशिश कीजिए तो हम इस पर गोल्ड और सिल्वर पर परचेज ज्यादा ना करें। लेकिन इंडियन इकोनॉमी ऐसी है कि हर घर में यदि मेरा दिवाली का त्यौहार है या कोई भी त्यौहार है तो घर में एक चाहे हम छोटा सा गिफ्ट लेकर आए तो सोना हमारे यहाँ आता है, चांदी के आते हैं, आभूषण आते हैं, तो ये तो मैंडेटरी है, इंडिया में ये कल्चर नहीं रुक सकता है। तो डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला यहाँ पर रहता है, जो डिमांड जो इंडस्ट्री

0: है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर ये यूज होने लग गए हैं, टेक्नोलॉजी पे यूज होने लग गए हैं, अब लोग भी इन्वेस्टर भी जो है इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन दे शुड बी वेरी कॉशियस टू इन्वेस्ट बिकॉज फ्लक्चुएशन इज वेरी मच हाई, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन तो बहुत ज्यादा है, इसलिए दे शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ।
1: बिल्कुल। एक बार जरा योगेश सिंघल जी, अगर 2025 और 26 के दोनों के दामों को देखें, मैं स्पेसिफिकली गोल्ड की भी बात करूंगी, सिल्वर की, दोनों की बात कर लेते हैं। 25 में 1 लाख पार हो गया था, उसके बाद बीच में जब तनाव आया तो जब प्रधानमंत्री ने भी अपील की कि आप लोग सोना नहीं खरीदी, लोगों से कहा कि घर में जो सोना है आप उसको रीयूज कीजिए, एक अपील थी, अभी इसको लेकर चर्चा लगातार हम कर भी रहे, हमारे दोनों स्पीकर्स ने इस पर अपनी बात भी रखी है, लेकिन सोना सस्ता हुआ, ग्राहकों का मूड उस दौरान कैसा था? और उसके बाद फिर हम अभी अगर आज की तारीख की बात कर रहे हैं, 2 सितंबर की अगर हम बात करें, आज भले ही कम हुआ 2000, लेकिन बावजूद इसके दाम फिर भी कंपैरेटिवली बढ़े हैं, क्या मूड नजर आ रहा है ग्राहकों का?
2: देखिए, अभी मैं समझता हूँ मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है, दिल्ली के अंदर अगर देखे सराफा बाजार में तो कोई हलचल ज्यादा नहीं है। सोने के दाम जितने घटे हैं 15 लाख रुपए प्रति किलो घटे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बाढ़ नहीं आई है ग्राहकों की। जो मंजर हमने जनवरी में देखा था 4,30,000 चांदी और 1,93,000 सोने में भी लेने की तरफ बायर एक तरफ पागल था, तो वो उसकी हवा निकल चुकी है। अभी मार्केट में पैसा नहीं है, लोगों के घर में 4 लाख रुपए की चांदी है जो 2 लाख 2.5 लाख 2.25 लाख रुपए हो चुकी है, अभी वो नुकसान में है इन्वेस्टर, ना तो वो बेच पा रहा है और ना ही चांदी, आप देखिए ना 2.25 गुना रेशो था जब चांदी बड़ी थी, 1,93,000 के पास में था जब चांदी 4,30,000 रुपए थी, आज रेशो इसका बिगड़ गया, 1.5 गुना हो गया खाली, तो चांदी में तो दोहरी मार हो गई इन्वेस्टर को। तो इसलिए जो है ना, हर ट्रेड में बंदा है, हर ट्रेड में लिक्विडिटी की कमी है, कपड़े का हो, क्योंकि हर व्यक्ति ने सोना खरीदा है, हर व्यक्ति ने चांदी खरीदी है, चांदी तो तकरीबन सोना फिर भी अपना रिटर्न 1,65,000 में ऊपर ले आया, 1,70,000 भी हो सकता है, लेकिन चांदी वाला तो बिल्कुल बेचने की पोजिशन में नहीं है, किसी को बताने की पोजिशन में नहीं है कि मैंने चांदी खरीदी थी 2025 में। तो ये सबसे बड़ी विडंबना, ये मार्केट में जो हमारे फुटफॉल कम हुआ, जो लिक्विडिटी कम हुई, उसका सबसे बड़ा कारण है कि सबके घरों में चांदी रखी हुई है, अगर कोई गरीब से गरीब आदमी भी है तो 1 किलो चांदी वो जरूर लेके गया है। तो ये सबसे बड़ा कारण यही है कि बाजारों में अभी जब तक वो बाजार में बिकने नहीं आएगा सोना चांदी, तब तक ये लिक्विडिटी बाजार में नहीं घूमेगी, उसी की वजह से सोना चांदी बार बार बढ़ता है बार बार गिरता है।
1: बिल्कुल योगेश जी, एक सिंपल सी इसी के साथ जोड़ते हुए एक और जरा हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए, हाल फिलहाल में हमने देखा है कि हर चीज के दाम बढ़े हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, यूएस में भी लगातार हम देख रहे हैं कि महंगाई वहां भी बढ़ रही है, क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है?
2: महंगाई कारण है, जब भी तो सोना चांदी खरीदता है आदमी, आप दो तरह से चांदी सोना खरीदता है, अभी बैंक में है 6% का इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर एक साल में दुगना हो गया, 100% का प्रॉफिट मिला, तो पैसा जाएगा कहाँ? शेयर बाजार है, 3 साल से यही पड़ा हुआ है, शेयर बाजार को कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऐसी कमोडिटी को यूज करना चाहिए कि हर वक्त सोना सोना या चांदी चांदी नहीं करना चाहिए। अभी मेरे ख्याल में अभी शेयर बाजार के बढ़ने का समय है, तो अभी हमें वेट और वॉच करके अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करना चाहिए।
1: ठीक है योगेंद्र जी, इस पर एक ओपिनियन आपका भी।
3: देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो प्रेजेंट समय है वो जो है स्पेकुलेशन का नहीं है, और यही रीजन है कि आज हम देख रहे हैं कि जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करनी थी वो कर चुके हैं, और आज जो है जो इन्वेस्टर है जो एक स्पेकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन्वेस्ट करने में बिलीव करता है, वो इसलिए मार्केट से निकल चुका है अभी, क्योंकि उसको अभी जो एनवायरमेंट है इन शॉर्ट रन जो है वो वॉलेटाइल नजर आता है, और उनको लगता है कि उसमें उनको जो जहां तक प्रॉफिट बुकिंग की बात है फर्दर जो है वो उनको एक मार्जिन्स नहीं नजर आती हैं, और यही रीजन है कि हम ये देख रहे हैं कि एट प्रेजेंट लेवल्स जो है मार्केट के अंदर जो है एक थोड़ा सा पैनिक वाली भी सिचुएशन है, जिसमें मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या अगर दाम और कम हो जाए तो उस सिचुएशन में ही हम ये देखेंगे कि जो लोअर मिडिल क्लास है या लोअर स्टेटा का आदमी है वो इसमें दोबारा जो है इन्वेस्टमेंट करने में आगे जो है दिखाई देगा।
1: क्या योगेंद्र जी, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में भी बदलाव किया है, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है?
3: डेफिनेटली देखिए, मैं ये बोलूंगा कि अगर हम लास्ट 6 मंथ्स में देखें तो मैं ये बोलूंगा कि जनवरी टू मार्च वाला जो पीरियड था उसमें काफी लोगों ने जो है गोल्ड के अंदर एज वेल एज सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करी भी थी, और उसमें जिन्होंने पुराना होल्ड किया था उन्होंने उसमें प्रॉफिट जनरेट भी करा था। लेकिन अब जो हमने ये देखा है कि जून ऑनवर्ड्स जो वेस्ट एशिया क्राइसिस जो एक टाइम पे और सिचुएशन पे रेजोल्यूशन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जब से ये सिचुएशन एमर्ज होके आई कि एक फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में एक समझौता जो है वो नहीं हो पा रहा है ऑन आई मीन सीज फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वंस फॉर ऑल जो है, और क्योंकि वो रिन्यूड जो प्रेशर आ रहा है और दिखाई दे रहा है कि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस जो है अभी इट इज लाइक हेयर टू स्टे, उस वजह से हम ये देख रहे हैं कि लोगों में जो है और खासकर इसमें मैं ये बोलूंगा कि इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो जो है इस तरीके की जो अपना गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट से हटके वो जो है स्टॉक मार्केट्स या म्यूचुअल फंड की तरफ जो है फंड्स को जो है अपने इन्वेस्ट करने में बिलीव कर रहे हैं, सो दैट एटलीस्ट उनको चाहे एक विंडफॉल नहीं तो एक लोअर मार्जिन पे है एक प्रॉफिट जो है वो जनरेट होता हुआ नजर आए।
1: के गुप्ता जी जरा थोड़ा सा और समझाइए इसी यहीं से योगेंद्र जी की बात से ही आगे बढ़ेंगे, यंग पॉपुलेशन है उनका उनका थोड़ा रुझान चेंज हुआ, उनके प्रेफरेंसेस चेंज हुए हैं, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? और दूसरा सवाल सर ये भी है क्या पोर्टफोलियो लोगों ने चेंज किया है, ये भी एक कारण हो सकता है?
0: देखिए मैडम जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, जैसे आपने कहा पोर्टफोलियो चेंज करने की बात है, वो आजकल का जनरेशन जो है बहुत एक्सपर्ट है, वो देखता है कहाँ उसको मैक्सिमम रिटर्न होती है। जैसे भी बात कर रहे थे शेयर मार्केट इज ए पोजिशन इट नॉट कमिंग अप, तो देखा जाए तो बैंक इंटरेस्ट 6% है 7% है तो जाएगा कहाँ, व्हेन ही सीइंग दिस अपना सिल्वर एंड गोल्ड जो कि डबल ट्रिपल 4 times चला गया, तो ऑल जनरेशन दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो, सबने डाइवर्सिफाई लोगों ने किया है, मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है ये गोल्ड और सिल्वर में हुई है, और गवर्नमेंट की स्कीम है गोल्ड बॉन्ड आ गए, गोल्ड बॉन्ड में लोग इन्वेस्ट करी जा रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन तो है, म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां मैक्सिमम रिटर्न हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन तो मैडम सब जगह होगा, क्यों नहीं होगा, वो सब जगह होगा, लेकिन मेजर इश्यू है जो आजकल ये गोल्ड एंड सिल्वर की बात चल रही है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन इतना डाउन हो चुका है सिल्वर जो इन्वेस्टर थे दे हैव वर्न देयर फिंगर, और सिल्वर ऐसे गोल्ड में पोजिशन थी, गोल्ड भी काफी नीचे आ गया है, तो बड़ा ये डाउन ऐसी पोजिशन है, इंटरनेशनल मार्केट पर सबको डिपेंड करता है, जैसे आपने अभी बताया है जो बार चल रही है बार का इफेक्ट इमीडिएटली होता है, यदि बार को थोड़ा टाइम रुक जाती है तो आप देखिए क्रूड ऑयल जैसे नीचे आता है उसमें इन्फ्लेशन कम हो जाता है, तो डेफिनेटली इट इज ए जियो पोलिटिकल जो इन्फॉर्मेशन है जो भी एक्शन है वो दैट इज ए मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है यूएसए की आपने बात किया, यूएसए की इकोनॉमी यदि इन्फ्लेशन ज्यादा वहां हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इफेक्ट इन इंडिया ऑल्सो, तो इंडिया इफेक्ट कर रहा है ना, तो इंडिया क्या कर रहा है अभी डिपॉजिट के लिए दे आर टेकिंग ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो FCNRB डिपो आ रहा है इंडिया में, पैसे ही पैसा आ रहा है, तो फॉरेन पीपल आर इन्वेस्टिंग इन ए डॉलर इन इंडिया, तो दैट विल बी ए ऑर्डर ऑफ द डे।
1: फेड की बैठक है सर 15-16 सितंबर को, क्या उम्मीदें वहां से लगाई जा रही हैं?
0: मुझसे पूछ रहे हैं
1: जी जी जी आप ही से,
0: तो 15 सितंबर को क्या है जैसे रेट है मैं नहीं समझता कोई शॉर्ट टर्म रेट कोई बढ़ने वाले हैं, मुझे नहीं लगता है कोई अभी रेट बढ़ेगा, कोई ऐसा मौका है भी उसको इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन दिवाली के टाइम में शायद हो सकता है कोई परचेजेस बढ़े, तो क्यों डिमांड एंड सप्लाई की मेन फार्मूला है, यदि डिमांड बढ़ जाएगी सप्लाई कम हो जाएगा रेट बढ़ जाएगा रेट, यदि सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड कम हो जाएगा रेट कम हो जाएगा, आई थिंक दिस इज अ फार्मूला फिटिंग इन दिस सिल्वर एंड गोल्ड।
1: राजेश जी भारत के नजरिए से देखते हैं, अब देखिए आज का जो हमने टाइटल दिया चांदी सुस्त और सोना शांत, मैं सवाल सीधा सा ये है कि क्या ये तूफान से पहले की शांति है? दिवाली का जिक्र किया यहाँ पर के गुप्ता जी ने, क्योंकि देखिए सोना कितना महंगा हो जाए ये हम और आप जानते हैं कि भारतीयों के लिए हमेशा हर पर्व पर हर त्योहार पर वो भले कुछ छोटी सी चीज ले, चांदी भी फॉर दैट मैटर चांदी भी लोग खरीदते हैं, छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं लोग, निवेश का के लिए अलग चीजें हैं, लेकिन क्या बढ़ सकते हैं दाम, क्योंकि बहुत सी र्यूमर्स भी लगातार आ रही थी और अभी भी कहते हैं लोग कि अभी खरीद लो नहीं तो सोना और महंगा हो जाएगा।
4: बिल्कुल, देखिए आपने जैसा कहा कि चांदी सुस्त सोना शांत, मैं एक ही बात कहूंगा, अगर ये बात बाहर मतलब आपके माध्यम से अगर सबको जाती है तो उससे मार्केट सही में गुंजार होगा, क्योंकि अभी तक के कंप्लेंट ये आती थी कि सोना बहुत महंगा हो गया है, और आपके तरफ से अगर ये मैसेज पूरे इंडस्ट्री में जाता है तो चांदी और सोना सस्ता है तो 100% इसके तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। मैंने थोड़ी देर पहले भी यही कहा है कि पिछले साल इसी दरमियान में सोना 1 लाख के आसपास था जो कि आज 1.5 लाख है, मतलब एक साल में 50,000 रुपए का 10 ग्राम पे रेट का अंतर। अगर 1 किलो सोना पहले जो 1 करोड़ में आता था वो अभी 1.5 करोड़ का है, तो इतना ज्यादा अगर एप्रिसिएशन और किसी भी कमोडिटी में नहीं मिलता है, इस वजह से ये 100% मैं आपके बात से सहमत हूँ कि ये एक बड़े तूफान के पहले की शांति है, और हर बार अगस्त के बाद भारतीयों का खरीदारी का चलन शुरू हो जाता है। मैं मानता हूं पिछले 3 महीने उतने ज्यादा बाइंग के नहीं थे, लेकिन ओवरऑल आने वाले दिनों में फिर से एक नया कीर्तिमान खरीदारी का हो सकता है, क्योंकि भारत की 50% पॉपुलेशन जो कि महिलाएं पर्टिकुलरली जो भी सेविंग करती है वो ज्वेलरी में सबसे पहले प्रेफरेंस रखती है, क्योंकि उनको इससे अच्छा विकल्प कुछ इसलिए नहीं दिखता, क्योंकि अगर कोई 5,000 की भी सेविंग करे या 50,000 की भी सेविंग करे तो पहला उन्हें इन्वेस्टमेंट बोलिए या कोई भी चीज खरीदने के लिए उन्हें गोल्ड उनके घर के पास ज्वेलरी शॉप होती है, तुरंत जाके खरीदारी कर सकती है, शाम को जा सकती है, सुबह जा सकती है, इस वजह से इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ इसे यूज भी किया जाता है, तो इस वजह से इसका अट्रैक्शन आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और
1: एक इमोशनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो जाती है। चलिए इसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं आप हमारे साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: सोना शांत चांदी सुस्त आगे क्या, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले राजू जी से सवाल मैंने किया था कि क्या ये तूफान से पहले की शांति, इस पर एक रिएक्शन योगेश सिंगल जी आपका भी। आपको लगता है तूफान से पहले की शांति, क्योंकि बार बार हर बार जब भी आप हमारे साथ होते हैं इस तरह के शो में, सवाल यही होता है कि लोगों के जहन में और एक जो नॉर्मल एक अफवाह आप कह लीजिए या इसका रियलिटी क्या आप बताएंगे कि इस बार 2 लाख के पार चला जाएगा सोना इस दिवाली। सर आपका ऑडियो म्यूट है।
1: 1,65,000 रुपए से अभी यात्रा 1,50,000 की हुई है, जबकि 2 लाख रुपए में दिवाली पूजने की बात हम इसी शो में कर रहे हैं।
0: बार-बार की है इसको लेकर।
1: अब बीज है ना, इतनी जल्दी होगी कि हम लोग हाई तोड़ दें। चांदी है, अब चांदी जो है ना कैसे बढ़ेगी बताइए। लोगों के घर में चांदी पड़ी हुई है, इन्वेस्टमेंट के लिए वो मतलब वो पैसा कहाँ से लाएंगे। अभी वो तेजी मांग रहे हैं कि अभी भगवान करे 4 लाख चांदी हो जाए, 3.5 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए तो मैं बेच के निकल जाऊं और मैं दोबारा से चांदी ना खरीदूं। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए अभी हमें बहुत तेजी में नहीं बैठना चाहिए। 1.5 लाख रुपए का भाव बहुत अच्छा भाव है, 1,65,000 70,000 जहां पर भी आता है तो ये मतलब एक रेंज बाउंड पोजीशन में चलेगा। अभी बहुत ज्यादा तेजी हमें नहीं लगती है और दिवाली में डिमांड निकलेगी तो यही 1,50,000 वाला सोना 1,70,000 हो जाएगा। बहुत ज्यादा मोटी तेजी में हमारा दिमाग कभी नहीं काम करता कि 2 लाख रुपए में दिवाली पूजेगी या इस तरह का कोई और पंडा लगता है। अभी सुनहरियो देखिए कि हर देश क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और हर देश 1.5 गुना कीमत में उसका आयात बिल बढ़ गया है। उसको क्रूड पहले $60 में लेना पड़ता था, वही 90-95 डॉलर में खरीदना पड़ रहा है। तो सब देशों के बाजे बजे पड़े हैं, सब देशों को उनका बजट बिगड़ा पड़ा है, उनको कहीं ऐसा ना हो कि सोना बेचना पड़ जाए। हमें जो है ना हर चीज को ध्यान में रखते हुए ही तेजी मंदी पे दिमाग लगाना चाहिए। अभी तो इन्वेस्टर बैठा हुआ है जिनके घरों में चांदी पड़ी है, वो कब तक संभालेगा, 6 महीने 1 साल 2 साल कब तक। 2.5 लाख रुपए के भाव में 4 लाख रुपए की चांदी ली हुई, 3.5 लाख की ली हुई, वो कब तक संभालेगा। तो हमें सारे सुनहरियों को देखते हुए अभी बहुत मोटी तेजी में नहीं बैठना चाहिए और हमें हाँ इसको एंजॉय करना चाहिए कि नीचे आता है आप इन्वेस्ट करिए, ऊपर आता है बेच के बाहर निकल जाइए। तो प्रॉफिट टेकिंग ये होती रहेगी और ये जो बाजार है वोलेटाइल होता रहेगा।
0: बिल्कुल। केके गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। इस इन तमाम सिनेरियोस को अगर हम समझते हैं, क्योंकि देखिए बुलियन एसोसिएशन से भी हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो क्या अपने पोर्टफोलियो में हाल फिलहाल में बदलाव की हमें जरूरत है या नहीं है, कुछ चेंजेस करने चाहिए या इसको एज इट इज ही कंटिन्यू किया जाए।
2: देखिए मैडम, जिसने चेंज करना था ऑलरेडी चेंज कर चुका है। जब तेजी आती है ना तो हर आदमी उसमें इन्वेस्ट करने लग जाता है। अब जब बंदा आता है वो बेचने के लिए स्कोप होता नहीं उसके लिए। अब चांदी इतनी महंगी हो गई थी, सोना इतना महंगा हो गया था, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने लग गए, शेयर मार्केट से निकाला, बैंक से निकाला, सोना चांदी में लगा दिया। अब जब डाउन हो रहा है तो क्या करेंगे लोग, वो बैठे हुए हैं बेचने के लिए। वो बेचेंगे कब, जब इसका रेट बढ़ेगा। रेट बढ़ने की संभावना कोई है नहीं, क्यों ना क्वेश्चन है, इंटरनेशनल प्राइस भी इतने नीचे जा रही है तो दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है स्टेबल टाइप भी है, कोई ज्यादा नहीं है। अब देखा जाए तो करेंसी रिस्क जो है वो भी इतना ज्यादा नहीं रहा, तो कहाँ जाएगा। देयर आर सो मेनी फैक्टर जो प्राइस इंक्रीज करने के लिए है, इंटरनेशनल प्राइस हो या फिर करेंसी रिस्क हो या फिर उसकी डिमांड हो। डिमांड डेफिनेटली इंडिया में तो दिवाली में डिमांड तो आएगी, लेकिन फ्लक्चुएशन कितना होगा, 1-2%, 5%, जैसे इन्होंने कहा है, योगेश जी ने कहा है, सेम सिचुएशन विल बी गोइंग टू हैपन। कोई ऐसा मिरेकल नहीं होने वाला कि ये 2 लाख से ऊपर या 4 लाख से ऊपर चला जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना चाहिए, जो भी इन्वेस्टर है उसको डिसिप्लिन अप्रोच से ही चलना पड़ेगा, देन ही कैन सेव समथिंग। डाइवर्सिफिकेशन जो करना था पीपल ने कर चुके हैं ऑलरेडी।
0: योगेंद्र जी एक और सवाल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि अब त्योहारी सीजन शुरू होगा, शादियों का सीजन होगा, सोना कितना भी महंगा हो जाए लोगों का इंटरेस्ट रहता है, इनफैक्ट चांदी भी अगर देखा जाए तो। अब जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री की अपील अब यहाँ पर कितनी काम करती, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग सोना और चांदी खरीदने से थोड़ा सा परहेज करें, घर पर जो सोना चांदी बचा जिसको लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उसी को वापस रीयूज किया जाए।
3: अननोन कॉलर देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एक स्टेटमेंट दिया है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर हम अपने इस टाइम जीडीपी के सारे कंपोनेंट्स को देखें, जिसमें आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, कंजम्पशन भी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है, जो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है, वो इंडिया की जो इस टाइम हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि इंडिया के केस में हम ये देखते हैं कि हमारी जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है और जो ओवरऑल इम्पोर्ट्स है, इनको अगर हम आपस में मैच करके देखें तो जो ट्रेड बैलेंस का जो डेफिसिट है, विच बेसिकली मीन्स कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रही हैं और उस पेस से एक्सपोर्ट जो है वो नहीं ग्रो कर रही है, तो प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो स्पेसिफिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू के मध्य नजर आई है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जो प्रेशर है और वो इन चीजों से बढ़ जाता है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आई मीन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अगर चाहे गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं या अगर आप फॉरेन ट्रेवल करते हैं, तो उसमें एक इंडिया की जो प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारी जो है रिड्यूस होती है। तो मेरा ये मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है इस टाइम जो समय जो मैं मान के चलता हूं कि वो एक कॉशन का है और उसमें बहुत जरूरी यह है कि कोई भी आदमी किसी भी लेवल पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उनके लिए बहुत जरूरी यह है कि वो अगर स्पेसिफिकली गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उनको एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो जो है वो रखना पड़ेगा। और सिल्वर के लिए मैं अभी भी ये मान के चलता हूं कि जो शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम शॉर्ट टर्म पीरियड जो है वो वॉलेटाइल है और उसमें उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी तबके का आदमी।
0: राजेश जी, कब तक गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है? क्या हम इससे और कम कीमतें एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोने और चांदी दोनों में, या बढ़ेंगे आगे दोनों चीजें?
4: ऐसा है कि अभी मुझे और बहुत ज्यादा इसमें नरमी दिखती नहीं है। जैसे कि फेड के रेट बढ़ने की संभावना जैसी मालूम पड़ी, मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया। बीच में ये भी रूमर चली थी कि कस्टम ड्यूटी कम होने वाली है, इस वजह से भी मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया। तो मुझे बहुत ज्यादा अभी इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है, बट ये जरूर कह सकता हूँ कि जैसे योगेश जी ने भी कहा कि कुछ लोगों ने 4 लाख में चांदी खरीदी, अभी गोल्ड में भी 1,90,000 में कुछ लोगों ने खरीदी। तो मेरा इसमें एक मतलब सिंपल वे, किस तरीके से खरीदारी करनी चाहिए वो समझना जरूरी है आज के इस परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का जो रेट हो कभी भी फिक्स नहीं रहता, वो नीचे ऊपर होते ही रहता है, सडन बढ़ता है सडन कम होता है। 3 दिन पहले हम सिर्फ भाव बढ़ने वाली परिस्थिति में थे, 3 दिन में 4 दिन में हम लोग रेट कम वाले परिस्थिति में आ गए। तो कभी भी बाइंग करते समय में स्टेप बाय स्टेप खरीदना चाहिए, क्योंकि एक साथ खरीदने से नुकसान हो सकता है। अब जिन लोगों ने 4 लाख में चांदी खरीदी तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी इस रेट में भी चांदी खरीदे, जिससे कि उनका एक बीच का रेट हो जाए। अब गोल्ड भी अगर खरीदना है तो गोल्ड खरीदते समय भी अगर किसी को 1 लाख की ज्वेलरी खरीदनी है तो उन्होंने 50,000 की अभी खरीदनी चाहिए और 1 हफ्ते 10 दिन की राह देखनी चाहिए, फिर 50,000 की खरीदनी चाहिए, जिससे कि 2 पार्ट में अगर कर लेते तो मुझे नहीं लगता उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन के कस्टमर है और उसके बाद वेडिंग सीजन के भी कस्टमर है। अगर शादी के कस्टमर है तो शादी के कस्टमर ने भी 2 पार्ट में खरीदारी करनी चाहिए, आधी खरीदारी अभी इस रेट में कर लेना चाहिए, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार का दुख ना हो। क्योंकि सोना और चांदी एक ऐसा धातु है जो खरीदता है वो दुखी भी होता है सुखी भी होता है, क्योंकि जिसने खरीदा और भाव बढ़ गए तो उसे लगता है मैंने ज्यादा क्यों नहीं खरीदा, इसलिए दुखी होता है, और भाव अगर कम हो गए तो उसे लगता है दुख कि भाई ये मैं खरीद नहीं पाया ज्यादा। तो दोनों के लिए एकमात्र ये धातु ऐसा है कि दुख और सुख दोनों देता है, इस वजह से इसे पार्ट पार्ट में खरीदना सबसे अच्छा इसका एक सिस्टम है।
0: ठीक है, एक बार योगेश सिंगल जी, पैटर्न क्या होना चाहिए खरीदारी का?
1: बिल्कुल ठीक है, हमारे भाई राजेश रोकड़े जी ने कहा SIP की तरह से, मतलब थोड़ा थोड़ा खरीदते रहे, ये भी मैटर अच्छा है। लेकिन डिप्स ऑन बाइंग, जब भी बड़ी गिरावट आए सोने को बिना किसी से पूछे हुए खरीदना चाहिए। अभी 1,65,000 रुपए का जो भाव था और अभी 1,50,000 के अंदर ये घुस चुका है, तो ये क्या है? केविन वॉश की एक स्टेटमेंट से कि हमारी महंगाई 2% की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है और हमें बड़े एक्शन, कठोर एक्शन भी लेने पड़ेंगे तो हम लेंगे, ये बात बोलने से ही बाजार में 15 लाख रुपया पर केजी का मंदा आ गया। ना तो सोने की डिमांड बढ़ी, ना सोने की सप्लाई बढ़ी, ना ही और कुछ हुआ, सिर्फ बैठे बैठे एक बंदे की एक स्टेटमेंट से भाव बढ़ गया, घट गया। तो ये चीज समझने की है कि यदि एक स्टेटमेंट से अगर घट गया और 15-16 की दरमियानी रात में यदि उनके मुंह से निकल गया कि भाई अभी ब्याज दरों पे कोई फैसला नहीं ले रहे, तो फिर से ये 15 लाख रुपए रिकवर हो सकते हैं या नहीं? तो हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए कि फेड रेट की अभी चांस जो है वो अनचेंज के है, कल क्या होगा वो अलग चीज है। अभी लगता है कि दिसंबर की तिमाही में कहीं जाकर के ये 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुल मिला के मंदी की तलवार हमेशा लटकी रहेगी। खुला मैदान तेजी के लिए नहीं है, क्यों? क्योंकि सभी देशों की आर्थिक स्थिति खराब है, क्रूड ऑयल ने, हॉर्मुज संकट ने सबका खेल बिगाड़ा हुआ है। तो कोई भी देश अगर सोना बेचने अगर आ गया गलती से तो क्या होगा, फिर क्या 2025 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी बहुत मोटी मंदी में नहीं और बहुत मोटी तेजी में भी नहीं बैठना चाहिए। जहां गिरावट आए वहां पर अपनी क्षमता के अनुसार खरीद लीजिए, जहां बढ़ के आए उसको बेच लीजिए। जहां तक है ज्वेलरी खरीदने की बात, तो जिसके घर में शादी होती है वो तो अपने समय के अनुसार ज्वेलरी खरीदता ही खरीदता है, उसको भाव से कोई मतलब नहीं होता। अगर किसी को शादी में 5 लाख रुपए का जेवर देना है, पहले तो 10 तोला सोना, 5 तोला सोना ऐसे मांगते थे कि भाई 5 तोले में मेरे को शादी करनी है, 10 तोले में, लेकिन अब 5 लाख और 10 लाख रुपए वैल्यू आ गई, क्योंकि इनकम तो बढ़ी नहीं है और भाव सोने का बढ़ गया है। तो जाकर के कुल मिला के बजट जो है ना, सिर्फ हल्की ज्वेलरी पे या कुछ आइटम कम करके ही वो अपनी पूर्ति करता है।
0: के गुप्ता जी, क्या लगते हैं आपको आने वाले दिनों में या फिर आने वाले त्योहारी सीजन में कैसी रहे?
1: 10 तोला सोना, 5 तोला सोना ऐसे मांगते थे कि भाई 5 तोले में मेरे को शादी करनी है, 10 तोले में, लेकिन अब 5 लाख और 10 लाख रुपए वैल्यू आ गई, क्योंकि इनकम तो बढ़ी नहीं है और भाव सोने का बढ़ गया है। तो जाकर के कुल मिला के बजट जो है ना, सिर्फ हल्की ज्वेलरी पे या कुछ
2: कुछ खरीदेगा ही, हर घर में कुछ ना कुछ खरीदेगा, 5-10 हजार का, 20 हजार का, इससे ऊपर शक नहीं होने वाला। ये तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में ही खरीदना चाहिए, जैसे बता रहे हैं रजेश जी, बता रहे हैं योगेंद्र जी ने बताया, आई थिंक दैट इज ए प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी। इनको खरीदना चाहिए स्लो करके, जैसे थोड़ा सा दाम कम हुआ तो खरीद लीजिए, और कम हुआ तो खरीद लीजिए, एकदम इकट्ठा एक पैसा नहीं खरीदना चाहिए, स्लो एंड स्टडी, तो वही करने का इन्वेस्टर जो है दैट इज ए बेनिफिट। लेकिन जिसकी शादी ब्याह है उसको तो खरीदना ही खरीदना है, कुछ भी रेट होगा उसको तो लेना ही लेना है उस, लेकिन उसका बजट अपना है, 5 लाख है 10 लाख है 20 लाख है, जो भी उसका बजट है उसको तो रेट से तो कोई मतलब है नहीं, तो शादी करनी है तो खरीदना ही।
0: चलिए क्लास का मैं योगेश कपूर जी आपसे, फोमो बायर्स के लिए आप क्या सलाह देंगे?
3: देखिए मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हमें एक चीज को बहुत क्लियरली समझना है कि हर एक की कैपेसिटी जो है वो वेरी करती है। अब होम बायर जो है, आप ये देखिए अगर किसी के पास सरप्लस, सिर्फ मैं कहता हूँ कि 5 लाख रुपए ही अवेलेबल है जिसको वो इन्वेस्ट करना चाहे, ऑब्वियसली उसके लिए रियल एस्टेट की ऑप्शन बढ़ा दी है, गोल्ड लिए, सिल्वर, अगर हालांकि मैं खुद प्रोपगेट करता हूँ कि सिल्वर में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड भी जो है वो 5 लाख में कोई हार्डली कोई आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है उसको एज अ लॉन्ग टर्म रखते हुए। तो मेरा ये मानना है कि पहले तो एक हर एक आदमी को ये देखना पड़ेगा कि उसकी क्षमता कितनी है सरप्लस की। अगर उसकी क्षमता मैं कहता हूँ मार्केट में 50 लाख एंड अबव की है उसके पास, की अपनी सेविंग्स को जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको जरूर जो है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए अप टू एटलीस्ट 1/3 ऑफ इज सरप्लस, जिसका मतलब यह है कि कम से 15 से 20 लाख उसको ज्वेलरी में, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और बाकी को जो है उसे ऐसे वेन्यूज में डालना चाहिए जहां पे वो इजिली रेगुलर रिटर्न्स भी जनरेट कर सके और जब मर्जी चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो जिसको वो इजिली रियलाइज भी कर सके।
0: बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का यहाँ पर आने के लिए और चर्चा करने के लिए। फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए।

0: शुक्र का राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए अनुकूल होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशि के लोगों को सतर्क रहना होगा? क्या है शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: हरियाणा के करनाल में कान्हा पार्लर बहुत सुर्खियों में। यहाँ जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। कान्हा जी पार्लर के नाम से मशहूर इस जगह में ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल का भोग के साथ विशेष श्रृंगार होता है, और केवल जन्माष्टमी ही नहीं बल्कि कई दूसरे त्योहारों के समय भी ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए कई दिन पहले से ही यहाँ लंबी वेटिंग लिस्ट चलती है।
2: नन्हे से कान्हा की मुस्कान प्यारी, मोर पंख सजे हाथों में बंसी भी प्यारी, जन्माष्टमी के लिए सजे लड्डू गोपाल की मूर्ति लगे सबसे न्यारी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर घर और मंदिरों को सजाने के अलावा राधा कृष्ण को नई पोशाक पहनाकर झांकियों का भी आयोजन होगा। ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर झूले, मुकुट, मोर पंख और वस्त्र भी लोग खरीद रहे हैं। तो वहीं लोगों के आराध्य कान्हा का भी पार्लर में श्रृंगार हो रहा है। जी हाँ, जिस तरह से विवाह और दूसरे समारोह में जाने के लिए लोग ब्यूटी पार्लर में सिंगार करवाते हैं, वैसे ही अब कान्हा जी को भी पार्लर में सजाने सवारने का काम काफी प्रचलित हो रहा है। जन्माष्टमी से पहले करनाल के कलंदरी गेट में कान्हा जी का पार्लर खुला है, जहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है और उनको सजाने सवारने वाले हैं संजीव सोनी।
3: दिनों थोड़ा ठाकुर जी के देखो, सभी लोग अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लेकर आते हैं और उसमें देखो हर तरह से जैसे उनके भाव होते हैं उस तरह से हमें बताते हैं कि श्रृंगार इस तरह से करना है ठाकुर जी का। और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है कि जैसे सबके ठाकुर जी देखो आजकल थोड़ा श्रृंगार में समय लगता है, तो हमारे यहाँ ठाकुर जी की भोग सेवा भी पूरी तरह से होती है। हम सभी ठाकुर जी को, क्योंकि सेवा के ठाकुर जी, तो हमें भोग लगाना पड़ता है।
2: संजीव सोनी जो अपने इस पार्लर में लड्डू गोपाल की मूर्तियों का बेहद खूबसूरत और सलोना श्रृंगार करते हैं, वो बताते हैं कि जीवन में एक ऐसा भी समय था जब वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, मगर एक घटना ने उनको कान्हा जी की भक्ति में ही लीन करवाने के लिए मानो प्रेरित किया।
3: एक टाइम ऐसा भी था कि मैं मंदिर नहीं जाता था और अपने घर में तुलसी तक नहीं लगने देता था। वो ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी, हमारे घर के पास ही मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हुई और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने मुझे वहाँ सेवा और पूजा में जाने के लिए मनाया, तो मैं गया वहाँ पे। उस दिन मैंने अपने हाथ से ठाकुर जी का अभिषेक श्रृंगार किया और उसके बाद से ही ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपने साथ ही मतलब अपने कार्य में सहभागी बनाया। मतलब मुझे कोई भी कार्य, मंदिर की सेवा मिल जाती है, जन्माष्टमी की शोभा यात्रा की, शिवरात्रि की शोभा यात्रा में कोई ना कोई छोटी मोटी सेवा या बड़ी सेवा कोई वो दे देते हैं, तो बस तभी से वो करते करते श्रृंगार की सेवा फिर ठाकुर जी ने तभी मेरा शुरू कराया।
2: पिछले कई साल से संजीव सोनी की कृष्ण भक्ति के माध्यम से साज सज्जा कला इतनी लोकप्रिय हो गई है कि आज हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब समेत दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु अपने अपने लड्डू गोपाल का संजीव सोनी के इस पार्लर से श्रृंगार कराना पसंद कर रहे हैं।
4: पूरी फैमिली इनके पास ही आती है, तो जो भी श्रृंगार का मटेरियल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, हर एक क्वालिटी वाइज होते हैं। जो भी हम लोग जैसे जन्माष्टमी के लिए आते हैं तो ड्रेसेस वगैरह भी डिफरेंट होती है, यूनिक, सब कुछ यूनिक होता है। बस
5: मैं इनसे लगभग 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ आने के बाद कहीं और जाने का मन ही नहीं हुआ, और जो इनकी कलाकारी है वो आप देख ही रहे हो, बहुत अति सुंदर और बिल्कुल एक समझ लो कि भावना से जुड़े हैं ये, सबसे बड़ी बात ये है। और यहाँ जो भी चीज़ है मतलब एकदम प्योरिटी और स्वच्छता की गारंटी है।
2: इस पार्लर में जो भी आस्थावान अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लाता है उसे 15 से 20 दिन पहले एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है ताकि पूरे सेवा भाव और नियमों के अनुसार ही कान्हा जी का मेकअप किया जा सके। वैसे कहते भी हैं जहां कान्हा विराजते हैं वहां खुशियां खुद ही चली आती हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं के लिए भी उनके लड्डू गोपाल जी का इस पार्लर में आना, उनका भोग के साथ श्रृंगार होना ही शुभता का ही संकेत है। करनाल से कमलदीप संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: जम्मू कश्मीर की वादियों में बसी माचल घाटी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। एलओसी के पास बसे इस इलाके में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा होने से स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि उनका कारोबार बढ़ेगा, पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचेंगे।

0: जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कुदरत की गोद में बसा माछिल सेक्टर, इसे देखकर लगता है मानो कुदरत ने अपने हाथों से सजाया। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पर छाई हरियाली, कल कल बहते झरने और दूर तक फैले खूबसूरत वादी। माछिल की यही खूबसूरती अब सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। एलओसी के करीब बसा ये इलाका बॉर्डर टूरिज्म के नए ठिकाने के तौर पर पहचाना जा रहा है। कभी जहां पहुंचना आसान नहीं था, अब वहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है। माछिल की ऊंची पहाड़ियों पर बना है नाजे हिंद। ये स्मृति और पर्यटन स्थल माछिल की खूबसूरती के साथ साथ सीमा की हिफाजत करने वाले जवानों की वीरता की कहानी भी बताता है। यहाँ सेना के जवानों के स्टैचू, हथियार और सैन्य साजो सामान भी प्रदर्शित किए गए हैं। यानी नाजे हिंद में पर्यटकों को कुदरत के साथ देश की सुरक्षा और जवानों के शौर्य की झलक भी मिलती है। माछिल की पहचान का एक और खास हिस्सा है यहाँ लहराता विशाल तिरंगा। करीब 140 फीट ऊंचा ये ध्वज बर्फीले पहाड़ों के बीच दूर से ही नजर आता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, होम स्टे, स्थानीय कारोबार और परिवहन से जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ेगी। यानी माछिल की इन वादियों में अब कुदरत के साथ साथ विकास की नई तस्वीर भी आकार ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर

0: इतनी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। और आज सबसे पहले बात नेपाल की करेंगे, जहां मिशन जिंदगी पूरी रफ्तार से जारी है। मलबे के बीच एक एक उम्मीद को तलाशा जा रहा है, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाल की सेना के साथ भारतीय सेना भी जुटी है। नेपाल से रेस्क्यू ऑपरेशन की ग्राउंड रिपोर्ट थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। देखिए, बात हम चारधाम यात्रा की भी करेंगे, जहां इस बार खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल अगस्त में चार धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे।
4: नमस्कार, चाय पर चर्चा में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। चाय पर चर्चा में उस बाघिन का जिक्र करेंगे जिसे आप दुनिया की सबसे उम्रदराज बाघिन कह सकते हैं। हाल ही में उसने अपना 23वां जन्मदिन मनाया है, तो आखिर उसका ये जन्मदिन क्यों खास रहा ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जल्द से देख लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: देर में होने वाला है राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ के नाम का ऐलान। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के नाम पर लग सकती है मुहर, सूत्रों के हवाले से खबर। बेंगलुरु मेट्रो की बड़ी पहल, पिंक लाइन का उद्घाटन इसी महीने संभव। करीना अग्रहारा से तवरेके केर तक चलेगी ट्रेन, ट्रैफिक से मिलेगी निजात। देश भर में धूमधाम से जारी है गणेशोत्सव की तैयारी। सूरत में टिश्यू पेपर से बनी 17 फीट की गणेश प्रतिमा, आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश। जन्माष्टमी से पहले बाजारों में रौनक, माखन मटकी बांसुरी और झूलों की लोग कर रहे खरीदारी, नए डिजाइन के पोशाकों की भारी डिमांड। अयोध्या में शिला पूजन के बाद पहली बार रजत शिला वृंदावन के सुदामा कुटी लाई गई, जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर, नेपाल में आई त्रासदी के बाद किस तरह से वहां पर राहत और बचाव का महाअभियान चल रहा है उसकी खबर लगातार आपको गुड न्यूज टुडे हर रोज दिखा रहा है और बता रहा है। आपको बता दें, लगभग हफ्ते भर पहले भीषण तबाही आई थी, लेकिन इतने दिनों के बाद भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर लोग मदद का इंतजार अब भी कर रहे हैं। रास्ते और पुल बह जाने से उन तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन अब इसका तोड़ निकाल लिया गया है। रस्सी का रोपवे बनाकर लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है।
8: अब देखिए, अब तक 11,990 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। भारतीय सेना के जवान और विशेषज्ञ इसमें मदद कर रहे हैं। हाइड्रो पावर टनल के अंदर फंसे लोगों की तलाश का काम भी जोर शोर से जारी है। सुरंग में रेस्क्यू अभियान काफी मुश्किल है, लेकिन बचाव कर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर मलबे में हर एक कीमती जिंदगी को तलाश रहे हैं।
5: नेपाल से राहत और बचाव की आई ये वो तस्वीरें हैं जिसका इंतजार लोगों को कई दिनों से था। काफी मशक्कत के बाद टनल तक हेलीकॉप्टर से बचाव दल पहुंच चुका है और जिंदगी बचाने की जंग शुरू हो चुकी है। नेपाल में अब एक साथ दो दो जंग चल रही है। एक तरफ मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है, तो दूसरी तरफ जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। रास्ते तबाह हो चुके हैं, पुल टूट चुके हैं। ऐसे में सैलाब से कटे गांवों और कस्बों तक मदद पहुंचने के लिए तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं।
9: नेपाल की आपदा में जिन इलाकों तक अभी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, जहां हेलीपैड नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब वहां सबसे बड़ी चुनौती है। जिसके बाद जो लोग एक सप्ताह से ज्यादा अपने घरों से दूर हैं, अपनों से दूर हैं, अब यहां पर जो प्रशासन है उन्होंने इस तरह से देखिए पिलर इरेक्ट किए हैं, उसी के साथ ये रोप ब्रिज बनाया है। इसकी क्षमता एक बार में एक या दो लोगों की है। बुजुर्ग लोग जो है जो गाँव के दूसरी तरफ उन्हें निकाला जा रहा है। यहाँ ये वो लोग हैं जो लाइनों में खड़े हैं, जो अपने घरों से परिवार से दूर हैं, अब अपनी जरूरत का सामान लेकर के जाएंगे। और इस तरह पूरे इस वैली ब्रिज जो कहते हैं, आप सिंगल सोचिए कि केबल कार है, और इस केबल कार को जो जल्दी जल्दी में बनाया गया है जोखिम भरा, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है।
5: आवागमन और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए नेपाली सेना और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से त्रिशूली नदी के 5 जगहों पर रोपवे बनाए जा रहे हैं। इसी के तहत त्रिशूली में रोपवे के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है।
9: जब सड़कें बह गई हों, हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों को निकालना मुश्किल हो गया हो, तब नेपाल एक अद्भुत साहस का परिचय दे रहा है। त्रिशूली के जिस इलाके में धारा ने सब कुछ तबाह कर दिया, लोग एक सप्ताह से अपनों से दूर थे, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं धारा के उस तरफ फंसे हुए थे जहां पर सप्लाई भी नहीं पहुंच सकती थी, अब यहां इस तरह से रोपवे ब्रिज बना करके लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। और इसी के साथ त्रिशूली के धारा पर से लोग निकल रहे हैं उस पार, वहां से बच्चों महिलाओं को निकाला जा रहा है। यहां से लोग जो अपने गांव तक नहीं पहुंचे थे, अब उन्हें फिर से उनके गांव तक पहुंचाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य की वो तस्वीरें नेपाल में दिखाई दे रही हैं जो इसके पहले शायद ही कहीं देखी होंगी। ये नेपाल के लोग हैं जो एक दूसरे की मदद के लिए हर मुमकिन जोखिम उठा रहे हैं। नदी की धारा के ठीक ऊपर ये देखिए, ये त्रिशूली की धारा है जो तबाही लेकर के आई थी। इस धारा को रस्सियों के जरिए पार करते हुए यहाँ पर राहत बचाव कार्य अभियान का अब एक नया चरण शुरू हो चुका है।
5: भारत की टनल रेस्क्यू टीमें नेपाल सेना की मदद कर रही है। रसुआ जिले में हाइड्रो पावर टनल के अंदर फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। बचाव कर्मी भारी मशीनरी, हेलीकॉप्टर और एक्सकेवेटर का इस्तेमाल करके उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी भी लापता हैं। नेपाल में तबाह हुए हाइड्रो पावर स्टेशनों में कम से कम 600 से ज्यादा लोग फंसे हैं। रसुवागढ़ी, लांगटांग, चिलीने, अपर त्रिशूली 3A और अपर त्रिशूली 3B में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चीन, भारत और नेपाल की रेस्क्यू टीमों ने दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए अस्थायी पुल बनाए हैं। टीमों ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के मलबे को खोदा और टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए एक्सकेवेटर का इस्तेमाल किया। राहत बचाव अभियान में नेपाल के युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे जो बन पा रहा है वो कर रहा है। इसी के तहत नुवाकोट जिले के विदुर में आपदा प्रभावित परिवारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए पहल की गई। यूथ इनिशिएटिव नाम के स्वयंसेवी समूह के युवाओं ने मिलकर हेल्प पॉइंट बनाया है। इसके तहत
10: मुफ्त संचार सुविधा दी जा रही है। जिन लोगों के फोन बाढ़ में खो गए हैं या नेटवर्क ना होने से बंद है, उन्हें कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। यही नहीं, फोन और अतिरिक्त बैटरियों का भी इंतजाम किया गया है ताकि लोग अपने लापता परिजनों की जानकारी जुटा सके। बिजली सप्लाई ठप है, लेकिन इस हेल्प प्वाइंट पर मोबाइल चार्ज करने के लिए सोलर बैटरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
11: इसलिए कि बहुत लोग अपनी जान गुमा चुके हैं, बहुत जिंदा है, लेकिन अपनी फैमिली के पास वो कॉल कर नहीं पा रहा है। इसके वजह से भी वो बहुत परेशान में है। अब वो कॉल कर पाएंगे तो वो एक तरीका का उनको भी रिलीफ मिलेगा। इसके लिए हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इधर दिन भर में हम 40-45 लोग को कॉल भी हमने वो प्रोवाइड कराए हमने, और आज भी वही कर रहे हैं। अब ये कितना दिन तक जाएगा हमको पता नहीं।
10: आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए भारतीय फिल्म स्टार सोनू सूद भी नेपाल पहुंच गए हैं। सोनू सूद ने कहा कि उनके चैरिटी फाउंडेशन की टीम भारत से जरूरी सामान लेकर आई है और प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है।
12: जब आप पूरा मंजर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस लेवल का इम्पैक्ट आया होगा, किस तरह उन लोगों को, जब घर नहीं बचे तो आप सोचिए कि लोगों के क्या हाल हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को आगे आना चाहिए, दुनिया भर से जो भी लोग जहां पर भी हैं आगे आइए और प्लीज मदद के लिए, इन लोगों के लिए खड़ा होना बड़ा जरूरी है ताकि हम नेपाल को वापस उसके कदमों पर खड़ा कर पाए। पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे बहुत सारे दोस्त मित्र, लायंस फाउंडेशन वाले, खालसा एड की फैमिली, सूद चैरिटी फाउंडेशन के सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे मिलकर वापस एक ऐसा मैसेज दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर मदद कर पाए।
10: नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके तहत अब तक कई भारतीयों को रेस्क्यू किया जा चुका है।
13: यहाँ ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए अभी भी सड़क मार्ग नहीं है, और उन इलाकों में जो एकदम पतले रास्ते हैं वहाँ पर आप सिर्फ दो पहिया रास्तों के जरिए ही, थोड़ा ये जोखिम भरा इलाका है। लेकिन अब ये देखिए, ये जो सारा मलबा इसलिए क्योंकि कुछ रास्तों को बनाने की कोशिश की जा रही है सड़कों को फिर से सही करने के लिए।
10: जिस तरह दुनिया भर के देशों से बचाव और राहत अभियान में मदद की जा रही है, उससे उम्मीद है कि आपदा प्रभावित इलाकों के हालात तेजी से बदलेंगे और लोगों की जिंदगी तेजी से पटरी पर लौटेगी। नेपाल से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: सरहद पर देश की हिफाजत करने वाले भारतीय सेना के जवान मुश्किल की हर घड़ी में आम लोगों के लिए भी उम्मीद और भरोसे का नाम बन जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला।
5: बिल्कुल, आपको बता दें कि भारी बारिश के बीच पहाड़ से अचानक मलबा सड़क पर आ गिरा और एक कार उसमें फंस गई। ऊपर से लगातार गिरते पत्थर और मलबे के बीच हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन तभी वहां से गुजर रहे भारतीय सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर जवान बने मददगार।

0: मुसीबत की घड़ी, पहाड़ से गिरता मलबा, चारों तरफ खतरा और बीच सड़क पर फंसी एक कार। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भारतीय सेना के जवान संकट मोचक बनकर सामने आए। जवानों ने न सिर्फ अपनी सूझबूझ दिखाई बल्कि जान जोखिम में डालकर मलबे में फंसी कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारी बारिश के बीच पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे पर तुनुहट्टी के पास अचानक पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गिरा। मलबे की चपेट में एक कार फंस गई। हालात इसलिए भी ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि बारिश लगातार जारी थी और पहाड़ी से पत्थर और मिट्टी गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा था। ऐसे में वहां से गुजर रहे भारतीय सेना के जवानों ने हालात की गंभीरता को समझते हुए तुरंत मोर्चा संभाल लिया। जवानों ने सेना के ट्रक से रस्सी बांधी और फंसी हुई कार को सावधानी के साथ खींचना शुरू किया। चुनौती आसान नहीं थी लेकिन जवानों ने पूरी सतर्कता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद जवान कार को मलबे से बाहर निकालने में कामयाब रहे और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। सेना की इस तत्परता ने एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। चश्मदीदों के मुताबिक बारिश के चलते पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा था और सड़क से गुजरना बेहद जोखिम भरा हो गया था। ऐसे हालात में सेना के जवानों ने बिना देर किए जो मदद की उसने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। पहाड़ों में बारिश कई बार चंद मिनटों में हालात बदल देती है। ऐसे संवेदनशील इलाकों में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। चंबा प्रशासन ने वाहन चालकों से खराब मौसम के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और मलबा प्रभावित इलाकों में जल्दबाजी नहीं करने की अपील की है। वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की रक्षा करना सेना का फर्ज है, लेकिन जब रास्ते में किसी की जिंदगी मुश्किल में फंस जाए तो यही जवान मदद का हाथ बढ़ाने में भी सबसे आगे नजर आते हैं। तुनुहट्टी में भी पहाड़ में आए मलबे के बीच सेना के जवानों ने सिर्फ एक कार को नहीं निकाला बल्कि मुश्किल की घड़ी में भरोसे की डोर बनकर सामने आए। भारतीय सेना सरहद पर दुश्मनों के सामने ढाल भी है और संकट के समय अपनों के लिए सबसे भरोसेमंद मददगार भी। चंबा से विशाल आनंद, गुड न्यूज टुडे।
1: अब देखिए, मौसम की जब हम बात करते हैं तो मौसम एक जगह नहीं बल्कि अनेकों जगह पर चुनौतियां अपने साथ लेकर आता है। अब चारधाम यात्रा को ही देख लीजिए, तमाम तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर भी देखी हैं। कहीं पर यात्री फंसे हैं तो

0: की वजह से प्रशासन ने लोगों को जो जहां है वहीं पर सुरक्षित जगह पे रुकने की अपील भी की है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा, क्योंकि अभी देखिए आसपास उत्तराखंड में खास करके कई ऐसे चमोली और कई ऐसे रुद्रप्रयाग जैसी जगह है जहां पर तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, तो अभी भी यात्रा रोकी गई थी। बड़ी बात, श्रद्धालुओं का जोश फिर भी उतना ही देखने को, जस का तस है, वो देखने को लगातार मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो चलिए चारधाम यात्रा की ही बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एक यात्रा नहीं है, एक सफर नहीं है, बल्कि आस्था विश्वास की एक तस्वीर पेश करती है। इसमें हर मुश्किल के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह जस का तस रहता है।
0: बिल्कुल, मौसम ने श्रद्धालुओं की, आपको बता दें, कई बार परीक्षा ली है, रास्तों पर चुनौतियां आई, लेकिन धामों तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती गई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया है कि चारधाम की ओर आस्था का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है।

0: पहाड़ों की चढ़ाई, रास्ते की मुश्किलें और ऊपर से बदलता मौसम, कहीं बारिश तो कहीं भूस्खलन का खतरा, लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था नहीं रुकी।
1: जब भी बरसात की अलर्ट प्राप्त होता है या अत्यधिक बरसात हो रही होती है, ऐसी परिस्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों को कई बार यात्रा को रोकना पड़ता है और इसको कुछ देर के लिए रोका जाता है जब तक कि हालात सामान्य न हो जाएं।
0: जिस रास्ते पर कदम कदम पर मौसम परीक्षा ले रहा था, उसी रास्ते पर श्रद्धालुओं के कदम लगातार चारधाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इसी आस्था और उत्साह की वजह से अब अगस्त में चारधाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले चार साल में इस बार अगस्त का महीना चारधाम यात्रा के लिए सबसे खास रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धाम में श्रद्धालुओं की जबरदस्त रौनक देखने को मिली। अगस्त में चारों धाम में रिकॉर्ड 2,31,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजा अर्चना की। इनमें सबसे ज्यादा भीड़ बद्रीनाथ धाम में रही, जहां 1,25,000 से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुंचे।
2: केदारनाथ धाम में भी मौसम सुहावना बना हुआ है, हालांकि मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद रुद्रप्रयाग प्रशासन अलर्ट मोड पे है। प्रशासन के मुताबिक धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जवान तैनात हैं। इसके अलावा केदारनाथ, लिंचौली, भीमबली, गौरीकुंड सहित तमाम स्थानों पर स्वास्थ्य कैंपों की भी स्थापना की गई है।
0: खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार अगस्त में चारधाम यात्रा में 93,680 श्रद्धालु ज्यादा पहुंचे, यानी मौसम की चुनौतियां आई लेकिन आस्था के कदम नहीं रुके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
3: चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि उत्सवों का देश है हमारा देश, और उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। अगर आपको सही मायने में फेस्टिवल की रौनक देखनी है ना, तो आप गुड न्यूज टुडे कभी भी किसी भी समय लगा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया है और हम अब कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी शुरू कर चुके हैं और इसी के साथ साथ गणेशोत्सव की भी तैयारी चल रही है।
4: हाँ, उसके बाद भी लगातार त्योहार आते जाएंगे, वो तस्वीरें आपको लगातार दिखाई रहते
5: हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो तीन तरह के तीज होते हैं। हरियाली तीज, कजरी तीज, हरतालिका तीज, जो 14 सितंबर को आने वाली है।
3: ये खूबसूरती हमारे चाय पे चर्चा के शो की है कि देखिए, जितने एंकर्स है ना, हर कोई अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करता है, हर किसी के अपने तरह की तीज मनाई जाती है, फेस्टिवल की रौनक अलग अलग रहती है और हम सब एक साथ यहाँ चाय समोसे के साथ ये सारे फेस्टिवल मनाते हैं। अब हमारी तैयारी है कृष्ण जन्माष्टमी की। आई एम श्योर आपकी भी तैयारी हो गई होगी, क्योंकि बाजार सज चुके हैं, रौनक पूरे देश में नजर आ रही है और वो रौनक हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आते हैं छोटी छोटी स्टोरीज में। हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर मौजूद है, जो बता रहे हैं कि इस वक्त पूरे देश में, खास तौर पर अगर हम मथुरा की बात करें, तो किस तरह से रौनक है वहां पर।
4: देखिए, जन्माष्टमी के इस खास मौके पर देश भर से ब्रजभूमि आने वाले भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ तैयारी है आपको दिखाते हैं।

0: श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जिसके शिखर से लेकर द्वार तक मनमोहक सजावट देखते ही बन रही है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्म उत्सव के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान सज धज कर तैयार है। तमाम जो लाइटिंग है, साज सज्जा है, वो बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ की गई है। 5 दिवसीय जो उत्सव है ना, वो आज शुरू हो गया है। और उसकी बात की जाए तो लीला मंच पे भगवान की जो बाल लीला है, भगवान की जो सारी लीला है, वो की जा रही है।
0: बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को करीब 200 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। नवनिर्मित रजत कमल में विराजमान ठाकुर गोपाल जी का जन्म अभिषेक विशेष आकर्षण रहेगा। 4 सितंबर को सुबह 5:30 बजे मंगला आरती, सुबह 8 बजे पंचामृत अभिषेक और रात 10 बजे जन्म महाभिषेक होगा। रात 12 बजे भगवान के प्राकट्य दर्शन और आरती के बाद कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय से अभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद रजत कमल में ठाकुर जी का जन्म महाभिषेक होगा। वहीं श्रृंगार आरती रात 12:45 से लेकर 12:50 तक और शयन आरती रात 1:55 से लेकर 2 बजे तक होगी, जबकि श्रद्धालुओं का प्रवेश रात 1:30 बजे तक रहेगा।
1: सुबह से ही ढोल नगाड़े के साथ मंगला आरती होगी और भगवान कालहंस बंगले में विराज कर सुबह से शाम तक दर्शन देंगे। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो 5 दिवसीय उत्सव में ठाकुर जी की जो आराधना है, जो सेवा है, जो पूजा है और शाम के समय में भगवान का अभिषेक है, ये सारी चीजें होंगी। और वहीं अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है। विशेष प्रसाद यहाँ पंजीरी का, मेवा के लड्डू का, गोला की बर्फी का जो प्रसाद है, पंचामृत है, वो यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अर्पण किया जाएगा, दिया जाएगा भगवान का प्रसाद।
0: हर साल की तरह इस साल भी ब्रजभूमि में जन्मोत्सव के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित दर्शन का मौका मिले, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी और CCTV से निगरानी रहेगी। इसके अलावा ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है। जन्माष्टमी से जुड़ी इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए आला अफसरों ने ग्राउंड पर उतरकर तैयारियों का जायजा भी लिया।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि में 5253वां जन्म दिवस बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर में बांट करके मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव सभी में खूब सजावट की जा रही है। यात्रियों को भीड़ से बचाने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से दर्शन कराया जाएगा। सभी मंदिरों के जो प्रबंधक हैं, जो पुजारीगण हैं, जो गोस्वामी बंधु हैं, सबके साथ बैठक करके किसी प्रकार से दर्शनार्थियों को और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन करने में असुविधा ना हो।
0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे ब्रज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग मिलकर मनाते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो शहर किस तरह से और खास करके मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां कैसी है वो तो आपने देखी। अब बात कर लेते हैं गणपति बप्पा मोरिया की, क्योंकि महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है वो अब आने वाला है। और महाराष्ट्र में चूंकि आप मुंबई रह चुकी हैं काफी टाइम, तो आपको ये खबर सुनते ही आपके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान देखने को मिलती है।
4: बप्पा भी आते हैं और वड़ा पाव दोनों साथ में आते हैं और मुंबई जाने का मन करता है। मुझे लगता है किसी ने अगर मुंबई के इस फेस्टिवल के दौरान अगर आप मुंबई नहीं गए हैं एक भी बार, तो यू आर डेफिनेटली मिसिंग समथिंग। एक बार तो जाना चाहिए, वहां की रौनक अलग है।
3: बिल्कुल। और बहुत कुछ होता है ना शगुफ्ता, एक तो ये होता है कि पंडाल में गणपति आ रहे होते हैं, फिर दही हांडी,
5: वो पहले
6: वो कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन
4: अष्टमी
6: वो नवमी के दिन होता है।
4: ये होगा।
6: अच्छा देखिए बड़ी बात ये है कि हम चलो हम मुंबई नहीं गए हैं उस टाइम पे आप तो रही हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि जैसे अगर हम लोग दिल्ली एनसीआर में भी रहे हैं यहाँ पे भी ना बहुत सारे क्योंकि महाराष्ट्र लोग रहते हैं और आजकल हर कोई अपने घर में बप्पा बिठाता है तो वो चाहे डेढ़ दिन के हों चाहे
4: तीन दिन के
6: पांच दस दिन के कितने भी तो कहीं ना कहीं हम सब लोग इस फेस्टिवल में इन्वॉल्व हो गए एंड थैंक्स टू गुड न्यूज टुडे आल्सो क्योंकि तैयारियां जो हैं वो हम एक एक दिन की तैयारी दिखाते हैं।
5: बिल्कुल एक एक दिन की तैयारियां दिखाते हैं और वो भी दिखाएंगे, पहले जन्माष्टमी मना ले हम उसके बाद आपको बप्पा की भी हर एक तस्वीर हालांकि दिखानी हमने शुरू कर दी है महाराष्ट्र में लेकिन दिल्ली और बाकी दूसरे शहरों में भी किस तरह से तैयारियां चल रही है वो दिखाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में किस तरह से पंडाल में सज रहे हैं बप्पा विराजमान हो रहे हैं तस्वीरें देखिए।
7: आने वाले हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश जिनके स्वागत के लिए कहीं आकार ले रहा है विशाल पंडाल तो कहीं सजाई जा रही हैं मूर्तियां और कहीं बाप्पा के स्वागत में बज रहे हैं ढोल नगाड़े। ये भव्य तैयारी उस पर्व को लेकर है जिसकी शुरुआत 14 तारीख से होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही गणेश चतुर्थी को लेकर महाराष्ट्र के शहरों में रौनक बिखरने लगी है जिसकी एक तस्वीर नागपुर से सामने आई। यहां भगवान गणेश के लिए बद्रीनाथ मंदिर की थीम पर विशाल पंडाल बनाया जा रहा है।
8: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नागपुर में इस समय हम हैं, गणपति बाप्पा के उत्सव की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। सार्वजनिक पंडाल और घरों में 14 सितंबर को गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, उससे पहले यहाँ पर तैयारियां जो है वो हम देख सकते हैं। नागपुर में सार्वजनिक जो पंडाल है जहाँ पे गणपति बाप्पा विराजमान होंगे वहाँ अलग अलग प्रतिकृतियां बनाने का काम इस समय चल रहा है, अंतिम चरण में काम है। इस समय हम एक नागपुर के सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल पर है जहां बद्रीनाथ धाम मंदिर की जो प्रतिकृति है जो बनाई जाने वाली है उसकी तैयारियां हम यहां देख सकते हैं।
7: इस गणेश पंडाल को नागपुर के जाने माने संती सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की ओर से तैयार कराया जा रहा है। ये मंडल अपने भव्य और शानदार पूजा पंडाल के लिए मशहूर है। इस बार इस मंडल ने पंडाल के लिए बद्रीनाथ मंदिर की थीम चुनी है ताकि जो लोग देवभूमि उत्तराखंड नहीं जा सकते वो यहाँ आकर बप्पा के साथ मंदिर को देख पाए।
9: हमारा 3 महीने से काम चल रहा है गोडाउन पर और यहाँ पे साइट पे हमारा 1 महीने से काम चालू हो गया और ये सब हमारे प्रोडक्ट फाइबर प्रोडक्ट होते हैं, आयरन होता है, बॉटम्स होता है, सब मिक्स मटेरियल में काम होता है।
10: और हमारा मंडल बहुत पुराना है, जैसा ये 69वां साल है हमारा और इस समय हमारा यही यानी प्रोविजन है कि जैसा लोगों को जो उत्तराखंड में नहीं जा सकते चार धाम में वो यहाँ पे उसी टाइप का एक फील यहाँ पे ले सके, इस टाइप का हमारा विजन है इस बार का।
7: गणेशोत्सव का पर्व शुरू होने में अब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। ऐसे में बाप्पा की रंग बिरंगी मूर्तियां सजकर तैयार हैं। लोग ट्रेंड और अपनी जरूरत के हिसाब से मूर्तियां तैयार करा रहे हैं। मूर्ति निर्माण से जुड़े कारखानों में 1 फुट से लेकर करीब 12 फुट तक की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। इन दिनों मूर्तिकारों के हाथों की कारीगरी हर मूर्ति को एक अलग पहचान दे रही है।
11: इस साल भी हमेशा ऐसा प्रतिसाद ही है, लेकिन इस साल कलर जो स्पेशल कलर है डेपरे वाला गणेश मूर्ति को ज्यादा पसंद ही कर रहे हैं और सबसे ज्यादा दगुड़शेठ, लालबाग राजा, बाल गणेश, चिंतामणि ये गणपति को ज्यादा पसंद ही करते हैं।
12: हम आज मूर्ति देखने आए हैं, जल्दी आए क्योंकि बहुत टाइप के गणपति देखने को मिलते हैं, नहीं क्या उनके जो रूप है वो सब ने क्या देखने को मिलता है और आज इस बार हम 33 ईयर्स से गणपति हमारे घर में बिठा रहे हैं तो हर बार अलग अलग टाइप का हम डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं। हम इस बार सब महालक्ष्मी देवी या अंबाबाई देवी का डेकोरेशन करना चाह रहे हैं तो उस वजह से हमें उसके लिए वैसे उस डेकोरेशन को अच्छी लगे ऐसी मूर्ति देखने के लिए हम आइए।
0: खास बात यह है कि पुणे में तैयार होने वाली बाप्पा की ये मूर्तियाँ सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेशों में भी इनकी काफी डिमांड है। लोग महीनों पहले मूर्ति के लिए ऑर्डर दे देते हैं ताकि वक्त पर उन्हें मूर्ति के लिए ज्यादा भटकना ना पड़े। नागपुर से योगेश पांडे और पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: फिल्मों में अक्सर आप आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को देखते होंगे लेकिन वो सभी ना रियल कलाकार होते हैं। अब पर्दे पर आए हैं एक रियल आईएएस ऑफिसर। असम कैडर के आईएएस ऑफिसर अश्वनी कुमार पहली बार किसी फिल्म में नजर आ रहे हैं। इनकी दमदार एक्टिंग को देखकर लगता नहीं है कि ये एक आईएएस अधिकारी है।
4: बिल्कुल, देखिए अश्वनी कुमार की फिल्म देवयानी ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है जिसमें ये पुलिस अधिकारी बने हैं। देवयानी एक शॉर्ट फिल्म है जो वुमेन सेफ्टी को केंद्र में रखकर बनाई गई है। ये फिल्म इस वक्त काफी सुर्खियों में है फिल्म, और अपने रोल को लेकर अश्वनी कुमार से जीएनटी संवाददाता मनीष चौरसिया ने खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको।
13: फिल्म में आपने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को आईएएस आईपीएस का रोल प्ले करते हुए देखा होगा, लेकिन एक शॉर्ट फिल्म ऐसी आई है जिसमें एक रियल के आईएएस ऑफिसर ने एक्टिंग की है। मेरे साथ आईएएस अश्वनी कुमार हैं जो कि असम गवर्नमेंट में फिलहाल सेक्रेटरी के पद पर काम भी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो सवाल यही कि जो फिल्में हम लोग देखते आए हैं उसमें करेक्टर्स प्ले करते हैं आईएएस आईपीएस का रोल, ये कैसे हो रहा है कि एक आईएएस फिल्म में जाकर काम करने का उनको मौका मिल रहा है?
14: थैंक यू सो मच। देखिए, फिल्म्स हमारी सोसाइटी का एक तरह से मिरर हैं, जो भी हम सोसाइटी में देखते हैं वही फिल्मों में दर्शाया जाता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक आइडिया है हमारा कि हम जिसको वल्नरेबल समझते हैं, जिस बेटी को हम समझते हैं कि बेटी पैदा होने के बाद में हमारे सर के ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई है तो उसको निभाना बड़ा मुश्किल है, तो ये एक एक बदलाव है एक आइडिया का कि जो वल्नरेबल है वो प्रोटेक्टर भी बन सकती है, वो आपकी सेवा भी कर सकती है, आपकी सुरक्षा कर सकती है और आपको वो मान सम्मान दिला सकती है जो कहीं एक बेटा आपको ना दिला पाए। बचपन से मैं सोचता हूँ कि लोगों को लगता है कि उनको एक बेटी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनको दहेज देना पड़ेगा। वो उनको लगता है कि जो घर का नाम है, मतलब फादर का जो नाम है, वंश का जो नाम है, वो सिर्फ एक बेटा ही बढ़ा सकता है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोग बेटी इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वो इन सब चीज़ों को सोचते हैं। उनका मेन कारण, वन ऑफ द मेन रीजंस हर किसी का, मुझे जो मुझे लगता है वो ये है कि एक बेटी को अलग टाइप से हमें ज़्यादा जिम्मेदारी से पालना ज़रूरी है, उसको ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, वो बाहर सेफ नहीं है। बाहर का जो वातावरण, जितना भी आज की रेट में आप जाए बाहर, वो एक लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है और ये चिंता का विषय बना रहता है। तो ये उस चिंता के विषय को संबोधित करती है जहाँ पर जो सोसाइटी में एक प्रोटेक्टर है, जो एक पुलिस वाला है जो सभी को एक प्रोटेक्ट करता है, अगर उसको लगता है कि उसके घर में भी अगर कोई बेटी है तो उसके लिए भी कितना मुश्किल होता है इस फैक्ट को स्वीकार करना और उसके दिमाग में क्या क्या कश्मकश चलती है, तो ये इसमें उसको दर्शाया गया है। ये मैंने सोच के किया है, मुझे लगा कि इस समय ये मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाऊँ, तो मैंने किया ये।
13: थैंक यू सो मच सर, से बात करने के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
4: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है हनुमानंद।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

आया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, तो ब्रज भूमि में रोशन हो उठे मंदिर और गूंजने लगे हैं बधाई गीत। ये उत्साह, ये उमंग और हर्षोल्लास भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव को लेकर है, जिसके लिए न सिर्फ पूरी मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजाई और सवारी जा रही है, बल्कि तमाम मंदिर भी रंग बिरंगी रोशन से जगमगा रहे हैं। इन्हीं में से एक है

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: कुछ ही देर में होने वाला है राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ के नाम का ऐलान, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के नाम पर लग सकती है मोहर, सूत्रों के हवाले से खबर। बेंगलुरु मेट्रो की बड़ी पहल पिंक लाइन का उद्घाटन इसी महीने संभव, करेना अग्रहारा से तवरेकरे तक चलेगी ये ट्रेन, ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। रुद्रप्रयाग में धूमधाम से जारी है मां काली की देवरा यात्रा, केदार घाटी के गांव गांव तक पहुंच रही मां की दिव्य डोली, 15 सितंबर को केदारनाथ धाम पहुंचेगी डोली। देश भर में धूमधाम से जारी गणेशोत्सव की तैयारी, सूरत में टिश्यू पेपर से बनी 17 फीट की गणेश प्रतिमा, आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा संदेश। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जोर शोर से जारी है जन्माष्टमी की तैयारियां, कान्हा जी को लगेगा 500 प्रकार का भोग, 100 किलो से ज्यादा वजन का केक भी हो रहा तैयार।
4: देखिए चर्चा हनुमान अंश की सिर्फ हम यहाँ नहीं कर रहे हैं बल्कि ये चर्चा हर तरफ हर जगह हो रही है।
2: आप लोगों ने देखी?
5: नहीं अभी तक तो नहीं देखी है, लेकिन हाँ जैसा माहौल बन गया है और ऑफिस में भी लोगों ने बना दिया, देखनी बहुत जरूरी है।
2: हाँ क्योंकि बज इस फिल्म का बहुत ज्यादा है और आपको देखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मास्टरपीस बहुत रेयर तैयार होते हैं, तो ये वन ऑफ द मास्टरपीसेस कही जा रही है फिल्म।
5: बिल्कुल,
2: मतलब महज 2 करोड़ में बनी है ये फिल्म
5: और 40 करोड़ से ज्यादा कमाई
2: कर चुकी है,
4: और बड़े बड़े स्टार्स इसकी तारीफ कर रहे हैं, और अभी खबर ये भी आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी देखने गई है फिल्म।
2: तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी जाएंगे क्योंकि वीकेंड में प्लान बनाते हैं। अब देखिए वही बात ना, कि ना तो बड़े सितारों की फौज इसमें लगी है, ना करोड़ों का प्रमोशन है, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश की कमाई दमदार है। काफी कम बजट में बनी इस फिल्म का प्रमोशन लगभग ना के बराबर हुआ, इनफैक्ट हमने कहीं भी इसको प्रमोट होते देखा ही नहीं, बावजूद इसके इतना अच्छा कर गई है कि दर्शकों का लगातार दिल जीत रही है।
4: और कहा यह भी जा रहा है, देखिए अब चर्चा ना इस बात को लेकर भी हो रही है कि हम बड़े बड़े स्टार्स की बात करते हैं कि फला फिल्म में फला स्टार को ले लो तो फिल्म हिट हो जाएगी।
2: Yes.
4: हम और आप तो चर्चा इसको लेकर करते ही रहते हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में, मैं यहां पर पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी, लेकिन अब ये चर्चा है कि भाई फिल्म का जो असली हीरो है वो उसकी स्टोरी है, और इसीलिए शायद ये लोगों को बहुत पसंद आ रही है।
5: और हमारे यहाँ जो इंटरव्यू हुआ था उसमें भी ये बात सामने आई थी कि जो फिल्म के मेन एक्टर हैं वो असिस्ट कर रहे थे इस मूवी को, और उनको फिर ले लिया गया और वो आज इतने बड़े स्टार बन गए, और देखिए मूवी कहां से कहां पहुंच गई।
1: कैसी लगी सब लोगों को फिल्म? म्यूजिक कैसा लगा?
6: बॉक्स ऑफिस पर जहां बड़ी बड़ी फिल्मों की सांसें उखड़ रही हैं, वहीं हनुमान अंश की रफ्तार ने हर किसी को हैरान कर रखा है। ट्रेड पंडित भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर है। रिलीज के 26वें दिन भी फिल्म ने करीब 8.50 करोड़ की नेट कमाई कर ली है, यानी 4 हफ्ते बाद भी कमाई का मीटर डाउन होने को तैयार नहीं है, और अब फिल्म 60 करोड़ के आंकड़े पर दस्तक दे रही है। यही है हनुमान अंश का असली दमखम, न बड़ा सितारा, न सितारों की फौज, न करोड़ों का प्रमोशन, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश का डंका बज रहा है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की ये पहली फिल्म है और लीड एक्टर भी पहली बार बतौर मुख्य कलाकार बड़े पर्दे पर उतरे हैं। फिल्म का बजट बेहद कम है, प्रमोशन भी लगभग न के बराबर है, बावजूद इसके फिल्म को लेकर दर्शकों का प्यार अनलिमिटेड निकला। कमाई के आंकड़ों की बात करें तो हनुमान अंश का भारत में नेट बॉक्स ऑफिस आंकड़ा 53.63 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, यानी टिकट खिड़की से फिल्म करीब 54 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और अब 60 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। फिल्म की लागत के मुकाबले इसका प्रॉफिट करीब 2700% ज्यादा बताया जा रहा है और यही वजह है कि हनुमान अंश के कारोबार का ट्रेड भी सभी को चौंका रहा है। हनुमान अंश की इस कामयाबी ने ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने इसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल और रियलिटी चेक बताया है। उनका इशारा साफ है कि सिर्फ बड़े नाम का बोर्ड लगाकर अब बॉक्स ऑफिस नहीं जीता जा सकता। स्टार बड़ा हो या छोटा, असली स्टार आज की कहानी है और हनुमान अंश ने ये बात बाखूबी साबित कर दी है। फिल्म की तारीफ सिर्फ ट्रेड गलियारों तक सीमित नहीं है। फैशन जैसी फिल्मों के डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने भी हनुमान अंश को देखकर इसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि थिएटर में फिल्म देखकर उन्हें सिनेमाई जादू का अनुभव हुआ और बिना स्टार वाली ये फिल्म भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अहम केस स्टडी है। लेकिन हनुमान अंश की असली कहानी सिर्फ करोड़ों की कमाई में नहीं छिपी है। फिल्म का एक भजन सोशल मीडिया पर ऐसा छाया कि हर तरफ उसकी गूंज सुनाई दे रही है। इस भजन को आवाज दी है बुंदेलखंड के 25 साल के सुनील लोधी ने। सुनील जन्म से देख नहीं सकते लेकिन उनकी आवाज ने लाखों दिलों को भक्ति से रोशन कर दिया। हनुमान अंश की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ सिर्फ फिल्म नहीं चल रही, किस्मत के पन्ने भी पलटे जा रहे हैं। एक तरफ नए कलाकारों और सीमित बजट वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्मों को चुनौती दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया न देख पाने वाले गांव के एक गायक की आवाज थिएटर से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रही है। और अब सवाल सिर्फ 60 करोड़ का नहीं, सवाल ये है कि 60 करोड़ से आगे हनुमान अंश की कमाई कहां जाकर रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: देखिए, हमारे समाज में ही आसपास प्रेरणा की कई कहानियां, कई मिसाल जो है वो आती रहती है और गुड न्यूज टुडे आपको दिखाता भी रहता है। एक ऐसी कहानी जो है वो सामने आई है और वो आई है उत्तर प्रदेश के बलिया से। 7 साल की बच्ची है रागनी, एक एक्सीडेंट में उसका पैर चला गया। अब एक पैर के बदौलत वो स्कूल जाती है, 400 मीटर रोज वो चलती है और फिर वो स्कूल जाती है। देखिए, अमूमन हमें छोटी मोटी परेशानी कुछ हो जाए तो बहाना अगर हम ना भी कहें तो ये है कि हमें दिक्कत लगने लगती है और लगता है कि चलो इसको छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं और पता नहीं कितने ही हम अपने आसपास बहाने बना लेते हैं। लेकिन ये क्या है, इसे क्या कहेंगे?
2: मुझे लगता है कि आप वो चीज देखते हैं ना कि ये एक्सक्यूज दे दिया, वो एक्सक्यूज दे दिया, तो इनको देख के ये सीख लीजिए कि लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सक्यूजेस, लाइफ इज अबाउट द मेजर और बड़ी पिक्चर। कि आप अपने डिस्पाइट कि आप चल नहीं पा रहे हैं, आपका पैर नहीं है, उसके बावजूद आपका इंस्पिरेशन, आप मोटिवेट खुद को खुद ही कर रहे हैं, है ना, कोई आगे नहीं आ रहा,
5: मतलब
2: ब्रॉडर पिक्चर यही है।
5: मतलब सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर इच्छा हो
2: तो आप कुछ भी कर सकते हैं,
5: कुछ भी कर सकते हैं, सीधी सी बात ही है। यानी कि ऑफिसर्स के एक्सक्यूजेस जो
2: मची आने के, मैं कहना नहीं चाह रही थी लेकिन श्वेता ने बोल दिया कि हमें पेट दर्द हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, ये चीजें चलती रहती हैं। बट स्टिल ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जीएनटी पर। इनफैक्ट हम ऐसी स्टोरीज आपके लिए लेकर आते हैं। रागिनी इनका नाम है, जैसे श्वेता ने बताया, एक पैर के सहारे चलती है, करीब 400 मीटर का सफर तय करके स्कूल पहुंचते हैं हर रोज। फाइनेंशियल दिक्कत तो है ही परिवार की, उसके लिए कृत्रिम पैर या ट्राईसाइकिल का इंतजाम इनसे हो नहीं पा रहा। लेकिन अब इनकी स्टोरी जो है वो प्रशासन के कान तक पहुंची है और मदद की उम्मीद फाइनली जग गई है।
6: यह 400 मीटर का रास्ता रागिनी के सपनों तक पहुंचने की राह है। एक पैर के सहारे वो हर रोज कदम बढ़ाती है और इसी तरह 7 साल की रागिनी स्कूल पहुंचती है। रागिनी के लिए पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की पहली सीढ़ी है।
7: रागिनी कहाँ के रहने वाला हो?
8: रानीपुर के।
7: अभी कहाँ जाता रू? कहाँ पढ़े लू रागिनी?
8: सरकारी स्कूल।
7: कहाँ स्कूल वा? तो क्या दिक्कत बा रागिनी? तो कैसे पढ़े जा लू? जोर से बोला।
8: एक
7: गुड़ से कैसे जा पावे लू पढ़े? गिर के बैठ जा लू। का पढ़ल चाहत रू? तो फिर दिक्कत का होता पढ़े में? पढ़बू, साइकिल पैसे चाहिए ना।
6: रागिनी का परिवार यूपी के बलिया जिले के रानीपुर इलाके में रहता है। जब रागिनी महज 6 महीने की थी तब एक हादसे में उसका एक पैर डैमेज हो गया था, लेकिन वक्त के साथ उसका हौसला कम नहीं हुआ। उम्र बढ़ी तो उसके सपने भी बड़े होते गए।
8: दिक्कत यही होता है कि पढ़ने जाती है एक पैर पे गिर जाती है, रोने लगती है, पैर में दर्द उठ जाता है।
7: पढ़ना चाहती है
8: लड़का जाते हैं तो छपराती है, रोती है, हम लोग का करेजा फटता है।
7: क्या चाहिए आपको?
8: हमको सरकार अनुदान इसको सुविधा कुछ देती तो यही हम चाहते हैं।
6: रागिनी के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, ऐसे में उसके लिए कृत्रिम पैर का इंतजाम करना परिवार के लिए आसान नहीं। परिवार और स्कूल प्रशासन अब कोशिश कर रहे हैं कि रागिनी को कृत्रिम पैर या फिर ट्राइसाइकिल मिल सके।
9: विद्यालय में योजना आने के बाद उसका एडमिशन हुआ। योजना जो है विगत कुछ दिन पहले समाप्त हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है।
6: रागिनी की कहानी अब प्रशासन तक भी पहुंच गई है।
10: 7 साल की बच्ची है और उसका पैर इस स्थिति में नहीं है कि वो पैदल चल सके। मैंने अधिकारियों को इसीलिए भेजा है कि उसका चिकित्सीय परीक्षण करा करके जो भी उपकरण हम देने की स्थिति में है उसको तत्काल हम दे दें। अभी डॉक्टरों की रिपोर्ट आ रही है और जैसी रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है हम तत्काल आज ही उससे उपकरण प्राप्त कराएंगे और उस बच्ची को स्कूल जाने की स्थिति हम उसके सामने रखेंगे, जिससे वो बच्ची स्कूल जा करके अपना न केवल शैक्षणिक कार्य पूर्ण कर सके बल्कि उसके घर के लिए भी जो शौचालय या अन्य कोई कमियां और भी हैं हम उसे भी पूरा कराएंगे।
6: अब उम्मीद है कि मदद के साथ उसके सपनों की राह और आसान होगी। बलिया से अनिल कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए अब आपको दिखाते हैं देश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक की बर्थडे पार्टी की तस्वीरें। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने केक काटकर महक का जन्मदिन मनाया और उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की।
5: देखिए आमतौर पर चिड़ियाघर में बाघिन की उम्र करीब 16 से 18 साल के आसपास होती है। ऐसे में 22 साल की महक सामान्य जू लाइफ से करीब 4 साल आगे निकल चुकी है, यानी कि महक ने सिर्फ उम्र को ही मात नहीं दी है बल्कि उम्र के रिकॉर्ड को भी चुनौती दी है।

0: ये तस्वीर किसी जू में जीवन की जिंदा दिली की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। किसी बाघिन का 22 साल की उम्र को छू लेना आसान नहीं माना जाता, लेकिन 22 साल पूरे कर चुकी बाघिन महक ने ये कर दिखाया है। महक अब 23वें साल में पहुंच गई है और इसी बात ने इस बाघिन को खास बना दिया है। बाघिन महक के 23वें बर्थडे पर कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में जश्न मनाया गया।
1: May God bless you. Happy birthday.
0: दरअसल आमतौर पर चिड़ियाघरों में बाघ बाघिन की उम्र करीब 16 से 18 साल के आसपास मानी जाती है। वहीं जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में इनकी उम्र इससे भी कम हो सकती है। ऐसे में 22 साल की महक सामान्य जू लाइफ से करीब 4 साल आगे निकल चुकी है। यानी महक ने सिर्फ उम्र को ही मात नहीं दी बल्कि उम्र के रिकॉर्ड को भी चुनौती दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी महक एक्टिव है। पानी में अटखेलिया करना, एनक्लोजर की बाउंड्री के आसपास घूमना और पर्यटकों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना, महक आज भी ये सब करती है। हालांकि उम्र का असर दिखना शुरू हो चुका है। उठने में पहले के मुकाबले महक को थोड़ी सी परेशानी होती है, इसीलिए उसकी कैल्शियम डोज बढ़ाई गई है।
2: ये अभी 22 साल की हो चुकी है। 28 अगस्त 2004 में जन्मी थी। ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से उस समय उनका जन्म हुआ था और वहीं से जो 2012 में हमारे कोटा में जू में लाया गया था।
0: महक की उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसकी सेहत अच्छी है। उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक है, दांत और जबड़े मजबूत हैं और वजन भी लगभग सामान्य है। महक की लंबी उम्र के पीछे खानपान और मेडिकल केयर भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हर दिन उसे करीब 8 किलो चिकन और मांस दिया जाता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और आयरन टॉनिक भी, और उम्र को देखते हुए उसकी मेडिकल मॉनिटरिंग भी लगातार होती है। हर 3-4 दिन में उसकी मेडिकल जाँच की जाती है। महक की उम्र का राज सिर्फ उसकी देखभाल में नहीं, वन विभाग के मुताबिक जेनेटिक फैक्टर भी इसकी बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि अच्छी डाइट और मेडिकल केयर के बावजूद हर बाघिन 22 साल तक नहीं पहुंचती। महक का मामला इसलिए भी खास है क्योंकि उम्र बढ़ने के बावजूद उसकी सक्रियता और सेहत काफी हद तक बरकरार है। महक अब सिर्फ अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क की पहचान नहीं बल्कि लंबी उम्र तक जीवित रहने वाली बाघिन की एक मिसाल भी है। 22 साल पूरे, 23वें में कदम, उम्र बढ़ी है, रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन पानी में महक की अटखेलियां और एनक्लोजर में उसकी चाल आज भी बता रही है कि दहाड़ भले ही धीमी हुई हो, महक की कहानी अभी बाकी है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए अब आपको बताते हैं बाघिन महक की उम्र क्यों चर्चा का विषय बनी है। क्या है बाघिन महक की लंबी उम्र का राज? 23 साल की उम्र में महक का पाचन तंत्र पूरी तरह से दुरुस्त बताया जा रहा है। उम्र बढ़ने के बावजूद उसका खाना पचाने और सामान्य रूप से खाने का सिस्टम बेहतर तरीके से अब काम कर रहा है।
4: आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ ही बाघों के दांत या फिर जबड़े कमजोर होने लगते हैं, लेकिन महक के दांत और जबड़े पूरी तरह से मजबूत है जिससे वो मांस आसानी से खा लेती है।
5: देखिए, महक की लंबी उम्र के पीछे उसकी संतुलित डाइट और बेहतर मेडिकल केयर को अहम माना जा रहा है। नियमित निगरानी और जरूरत के मुताबिक इलाज ने भी उसकी सेहत को बनाए रखने में मदद की है।
3: और देखिए, महक को रोजाना करीब 8 किलो चिकन के साथ पर्याप्त मात्रा में मांस दिया जाता है। उसकी उम्र और शारीरिक जरूरतों को ख्याल में रखते हुए डाइट को लगातार मॉनिटर भी किया जा रहा है।
4: वैसे डाइट के साथ साथ मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, आयरन जैसे सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, जिसका मकसद उम्र के इस पड़ाव पर उसकी हड्डियों और शरीर की जरूरी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है।
5: बिल्कुल, 23 साल की उम्र को देखते हुए महक की सेहत पर लगातार नजर रखी जाती है। उसके खान पान, व्यवहार और शारीरिक स्थिति में होने वाले छोटे बदलावों को भी गंभीरता से मॉनिटर किया जाता है।
3: वो देखिए, महक की नियमित मेडिकल जांच हर 3-4 दिन में की जाती है। इस जांच के जरिए उसकी सेहत से जुड़ी किसी भी संभावित परेशानी का समय रहते पता लगाने की कोशिश भी पर की जा रही है।
4: एप्पल के नए सीईओ जॉन टेनिस ने जैसे ही कंपनी की कमान संभाली, उनकी सैलरी और पैकेज की चर्चा हर जगह हो रही है। एप्पल के नए सीईओ को इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 551 करोड़ रुपए का टारगेट कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन इस पैकेज की सबसे खास बात यह है कि इसमें सैलरी का हिस्सा बहुत छोटा है। जॉन टेनिस की सालाना फिक्स सैलरी होगी करीब $3 मिलियन, यानी कि लगभग 28.5 करोड़ रुपए, जबकि करीब $55 मिलियन, यानी कि लगभग 522 करोड़ रुपए उन्हें स्टॉक अवार्ड्स के तौर पर मिलेंगे।
5: यानी कि 551 करोड़ के पैकेज में सैलरी सिर्फ 28.5 करोड़ रुपए और करीब 522 करोड़ रुपए एप्पल के शेयरों से जुड़े हैं। आसान शब्दों में कहें तो एप्पल के नए सीईओ की कमाई का बड़ा हिस्सा कंपनी के शेयरों से तय होगा। वहीं अगर टिम कुक की बात करें तो सीईओ पद से हटने के बाद वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में रहेंगे। इस पद पर कुक का टारगेट कंपनसेशन करीब 446 करोड़ रुपए होगा।
4: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं रोमानिया की सड़कों पर निकले पुतले।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: शुक्र का राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए अनुकूल होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशि के लोगों को सतर्क रहना होगा? क्या है शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: देखिए थाईलैंड में आजकल ना एक बहुत पुरानी परंपरा जोर पकड़ रही है, एक अनूठे अनुष्ठान में लोगों का विश्वास तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इस मान्यता के तहत यहाँ के जो लोग हैं वो चेहरे पर सोने की परत चढ़वाते हैं।
4: लोगों का मानना है कि चेहरे पर सोने की परत चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। थाई इकोनॉमी की स्लो ग्रोथ, बढ़ती लागत और घटते उपभोक्ता खर्च के बीच यहाँ के लोगों में इस अनुष्ठान की लोकप्रियता बढ़ी है।
8: ये महज चेहरे पर सोने की परत नहीं, उम्मीद की वो चमक है जो थाईलैंड के इन लोगों में भरोसा जगा रही है कि सब ठीक हो जाएगा। आर्थिक उथल पुथल के बीच जिंदगी वापस पटरी पर लौट आएगी। तस्वीरें थाईलैंड के अयुथया शहर की हैं, या न्यूगोन लान पार्क में एक विशेष मन्नत के साथ श्रद्धालु जुट रहे हैं। ये स्थान धन समृद्धि के आह्वान के लिए ढोल बजाने की अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। इसी मान्यता की वजह से ये श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि इनके चेहरे पर गोल्ड लीफ लगाई जा सके। दरअसल पार्क में पौरके की प्रतिमा स्थापित है। पौरके को यहाँ खुशहाली चाहने वालों के रक्षक के तौर पर पूजा जाता है। उनके अनुयायी चेहरे पर सोने की पत्तियां चढ़वा रहे हैं ताकि देव की इन पर कृपा हो और सौभाग्य की प्राप्ति हो। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से आंतरिक शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास भी। थाई इकोनॉमी की स्लो ग्रोथ, बढ़ती लागत और घटते उपभोक्ता खर्च के बीच यहाँ के लोगों में इस अनुष्ठान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। यहाँ कई व्यापारी इस प्रथा को मनोबल बढ़ाने और कारोबार में सौभाग्य लाने का माध्यम मानते हैं।
9: मा थम प्रमाण 4-5 ครั้ง ला ครั้ง ने ก็ คือ เอา ทาง หน้า เลย แล้ว ก็ มา รอ อ่าง น้ำ มนต์ แล้ว ก็ บิน ใช่ ครับ แล้ว ก็ มี ธุรกิจ ขาย อาหาร ตาม สั่ง
8: जाहिर है आर्थिक कठिनाइयों के दौर में ये लोग मेहनत के साथ साथ सदियों पुरानी परंपरा में आस्था और उम्मीद तलाश रहे हैं, अपने ईष्ट से सौभाग्य की कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरें अभी जारी हैं।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

चीजों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और रोमानिया की सड़कों पर इन दिनों कुछ ऐसे मेहमानों ने दस्तक दी है जिन्हें देखकर बच्चे ही नहीं बड़े भी हैरान रह गए। आसमान छूती कठपुतलियां, रोशनी से जगमगाते पुतले और उनके साथ सर्कस आर्टिस्ट और परफॉर्मेंस। मौका है रोमानिया के क्राइयोवा शहर में शुरू हुए सालाना पपेट्स ऑक्यूपाई स्ट्रीट फेस्टिवल का। 8 दिनों तक चलने वाला ये फेस्टिवल पूरे शहर को एक विशाल ओपन एयर थिएटर में बदल देता है। मंगलवार रात रंग बिरंगी और जगमगाती विशाल कठपुतलियों ने शहर के बीचों बीच परेड निकाली। बच्चों ने इन विशालकाय पुतलों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और देखते ही देखते पूरा शहर किसी जादुई दुनिया जैसा नजर आने लगा।
2: और जयपुर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: शुक्र का राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए अनुकूल होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशि के लोगों को सतर्क रहना होगा? क्या है शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
2: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO। ऑपरेशन सिंदूर में संभाली थी वेस्टर्न कमांड की कमान, 3 ट्रस्टी के नाम का भी ऐलान। बेंगलुरु मेट्रो की बड़ी पहल पिंक लाइन का उद्घाटन इसी महीने संभव, का लेना अग्रहारा से तवरेकर तक चलेगी ट्रेन, ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। रुद्रप्रयाग में धूमधाम से जारी है मां काली की देवरा यात्रा, केदार घाटी के गांव गांव पहुंच रही मां की दिव्य डोली, 15 सितंबर को केदारनाथ धाम पहुंचेगी डोली। धूमधाम से देशभर में जारी है गणेश उत्सव की तैयारी, सूरत में टिश्यू पेपर से बनी 17 फीट की गणेश की प्रतिमा, आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जोर शोर से जारी है जन्माष्टमी की तैयारियां, कान्हा जी को लगेगा 500 प्रकार का भोग, 100 किलो से ज्यादा वजन का केक भी हो रहा तैयार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों

नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। देखिए, देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व है, उससे ठीक पहले अब शहर शहर बेसब्री से कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। आप भारत के किसी भी शहर में रहते हों, आपके आसपास के मंदिरों में अब आपको तैयारी दिखने लगी होगी। शहर शहर प्रसिद्ध मंदिरों से लेकर गली मोहल्लों तक के तमाम मंदिरों में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की परंपरा रही है। लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है कन्हैया के ब्रज में, जहां मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल से लेकर बरसाना तक जन्माष्टमी के रंग बिखरे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। तस्वीरें देखिए।

0: कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी भाद्र मास मनुहार चंद्र वंश रोहिणी नखत दिन विशुद्ध बुधवार वृषभ लग्न में चंद्रमा लग्न राशि एक साथ जब शुभ ये संजोग बना प्रकट भये श्रीनाथ। कोई 5000 साल पहले कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच भाद्रपद अष्टमी की रात मथुरा की काल कोठरी में प्रकाश बनकर स्वयं नारायण प्रकट हुए थे। फिर क्या मथुरा, क्या गोकुल और क्या वृंदावन, यमुना की हर लहर से लेकर गोवर्धन पर्वत के शिखर तक ब्रज की रज रज कृष्णमय हो उठी। मथुरा में जहां आज कृष्ण जन्म स्थान माना जाता है, वह 5000 साल पहले कटरा केशव देव नाम की जगह पर राजा कंस का कारागार हुआ करता था। उसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। आज कन्हैया की ये जन्मभूमि एक बार फिर प्रकाश से जगमगा रही है। भगवान कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव से पहले पूरे मथुरा को सजाया जा रहा है। ये तो तमाम मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि मंदिर की बात निराली है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान सज धज कर तैयार है। तमाम जो लाइटिंग है, साज सज्जा है, वो बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ की गई है। 5 दिवसीय जो उत्सव है ना, वो आज शुरू हो गया है। और उसकी बात की जाए तो लीला मंच पे भगवान की जो बाल लीला है, भगवान की जो सारी लीलाएं हैं, वो की जा रही हैं। और वहीं उत्सव की बात की जाए तो 3 तारीख को सुबह में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए भगवान के उत्सव की आगाज करेगी। वहीं शाम में 5:30 बजे के आसपास जो भगवान को पंचरत्नीय पोशाक है, वह अर्पण की जाएगी, जो ठाकुर जी जन्मदिन वाले दिन पहनेंगे और अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे।
0: बताया गया है कि 5 दिवसीय जन्माष्टमी उत्सव से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को करीब 200 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। जन्माष्टमी के दिन नए बने रजत कमल में विराजमान ठाकुर गोपाल जी का जन्म अभिषेक हर बार की तरह इस बार भी विशेष आकर्षण रहने वाला है। 4 सितंबर को सुबह 5:30 बजे भगवान कृष्ण की मंगला आरती होगी, सुबह 8 बजे पंचामृत अभिषेक और रात 10 बजे जन्म महाअभिषेक होगा। रात 12 बजे भगवान के प्राकट्य दर्शन और आरती होगी, जिसके बाद कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय से अभिषेक किया जाएगा। फिर रजत कमल में ठाकुर जी का जन्म महाअभिषेक होगा। वहीं श्रृंगार आरती रात 12:45 से 12:50 बजे तक होगी और शयन आरती रात 1:55 से 2 बजे तक होगी। इस मौके पर जन्मभूमि मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का प्रवेश रात 1:30 बजे तक चालू रहेगा। अगले दिन भी जन्माष्टमी के उत्सव और विशेष दर्शन का ये दौर जारी रहेगा।
1: दूसरे दिन भगवान का जो उत्सव है, वो भगवान सुबह से ही ढोल नगाड़े के साथ मंगला आरती होगी और भगवान कालहंस बंगले में विराज कर सुबह से शाम तक दर्शन देंगे। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो 5 दिवसीय उत्सव में ठाकुर जी की जो आराधना है, जो सेवा है, जो पूजा है और शाम के समय में भगवान का अभिषेक है, ये सारी चीजें होंगी। और वहीं अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है। विशेष प्रसाद यहाँ पंजीरी का, मेवा के लड्डू का, गोला की बर्फी का जो प्रसाद है, पंचामृत है, वो यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अर्पण किया जाएगा, दिया जाएगा भगवान का प्रसाद।
0: हर साल की तरह इस साल भी ब्रजभूमि में जन्मोत्सव के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देश भर से आने वाले इन श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित दर्शन का मौका मिले, इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। शहर में जगह जगह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी और CCTV से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि में 5253वां जन्म दिवस बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर में बांट करके मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव सभी में खूब सजावट की जा रही है। यात्रियों को भीड़ से बचाने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से दर्शन कराया जाएगा। सभी मंदिरों के जो प्रबंधक हैं, जो पुजारीगण हैं, जो गोस्वामी बंधु हैं, सबके साथ बैठक करके किसी प्रकार से दर्शनार्थियों को और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन करने में असुविधा ना हो।
0: ब्रज के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे ब्रजवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ एक साथ मिलकर मनाते हैं। फिलहाल सारा ब्रज अपने लाडले कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारी में जुटा है।
1: भगवान का जो उत्सव है ना, बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और वही शहर की बात करें तो पूरा शहर बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जा रहा है। कभी 24 चौराहे हैं और 24 चौराहों के पास 24 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, जहां से श्रद्धालु आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। पूरे शहर को बड़े भव्यता और दिव्यता और ऐसी लाइटिंग के साथ, दूधिया रोशनी के साथ सजाया गया है कि जो भी यहाँ आए ठाकुर जी का जन्म उत्सव बनाने, वो एक अच्छा संदेश लेके जाए और भगवान के प्रति जो आस्था है, जो समर्पण है, जो विश्वास है, जो ठाकुर जी के प्रति समर्पण, विश्वास और जो श्रद्धा है उसको लेके आए, वो उसकी श्रद्धा में कहीं कोई भाव अधूरा ना रहे। इसी को देखते हुए पूरे नगर को, पूरे ब्रजमंडल को अजन्मे के जन्म के लिए तैयार किया जा रहा है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
3: अनोखा है ब्रज और उतने ही अनूठे हैं ब्रज के बाल गोपाल। कान्हा ने जहां ब्रज भूमि को अपनी बाल लीलाओं और रास के रंग का साक्षी बनाया, तो वहीं कुरुक्षेत्र की धरती उनके मुख से निकले गीता ज्ञान सागर की गवाह बनी। भगवान कृष्ण की जीवन लीलाएं अद्भुत हैं। वह ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इंसानों की जिंदगी से जुड़े हर भाव और हर संवेदना को जिया है। श्री कृष्ण के जीवन में घटी घटनाओं में मानव जीवन के लिए वो तमाम संदेश छुपे हुए हैं जिन्हें समझे जाने की जरूरत है। भगवान कृष्ण के ब्रज में बीते बाल्यकाल से लेकर कुरुक्षेत्र में महाभारत के रण तक उनके जीवन की कहानियां अंधेरे में बिखरी रोशनी की तरह है। उसी तरह भगवान कृष्ण की कुछ प्रिय वस्तुएं जैसे मोरपंख, बांसुरी, दर्शन चक्र वगैरह, ये सभी अपने आप में कई सीख समेटे हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। सबके पहले बात मोरपंख की। भगवान कृष्ण का मोरपंख समझाता है कि जीवन में सभी तरह के रंग होते हैं, जैसे कि सुख, दुख, प्रेम, करुणा, रिश्ते आदि। अगर इन रंगों को सलीके और मर्यादा में रखा जाए तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। जरूरत है तो सिर्फ सही तालमेल की। इसी तरह भगवान कृष्ण की बांसुरी भी सुंदर संदेश देती है। बांसुरी में 8 छेद होते हैं, ये जीवन का प्रतीक है। इसमें जो छेद हैं वो कमियां हैं। कृष्ण कहते हैं जीवन में लाख कमियां हो लेकिन जीने का तरीका और सोच सकारात्मक हो तो कमियों के बावजूद जीवन को मधुरता से जिया जा सकता है। तो वहीं वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्या सीख समेटे हुए है, ये भी आपको बताते हैं। वैसे तो ये हथियार है लेकिन नाम है सुदर्शन। सु प्लस दर्शन, यानी जो दिखने में बहुत सुंदर हो, प्रभावशाली हो। इंसान के लिए उसका व्यक्तित्व ही सुदर्शन चक्र है। लोग आपके व्यक्तित्व को देखकर ही व्यवहार करते हैं। अगर व्यक्तित्व सुदर्शन है तो आपकी हर जगह जीत तय होगी। भगवान कृष्ण वैजयंती माला भी धारण करते हैं। कमल के फूल के बीजों से बनी माला को वैजयंती माला कहा जाता है। ये बीज बहुत सख्त होते हैं, आसानी से टूटते नहीं। ये सिखाते हैं कि इंसान को हर तरह की परिस्थिति में खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, जीत तभी मिलती है। और अंत में बात बाल गोपाल के पसंदीदा माखन मिश्री की। माखन नर्म और एकदम पिघलने वाला होता है, जबकि मिश्री सख्त होती है लेकिन माखन में घुलकर मिठास देती है। ये सिखाता है कि हमारा स्वभाव माखन की तरह नर्म और व्यवहार मिश्री की तरह घुलने वाला होना चाहिए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको मथुरा की तस्वीरें दिखाई, अब आपको लेकर चलते हैं वृंदावन। लेकिन ये ब्रज का वृंदावन नहीं है बल्कि राजस्थान की धरती पर मौजूद गुप्त वृंदावन धाम है। जयपुर का गुप्त वृंदावन धाम श्री कृष्ण का भव्य मंदिर है। 4 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम मनाने की पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। भगवान कृष्ण के लिए खास फूल बंगला झांकी तैयार हो रही है तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विशालकाय पंडाल लगाया गया है। भगवान के लिए 108 प्रकार का विशेष भोग बन रहा है। गुप्त वृंदावन धाम में इस बार जन्माष्टमी पर 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचने की पूरी संभावना है। ऐसे में भक्तों की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए दर्शन सुगम बनाने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या खास होने वाला है जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, इस बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रीतम जैन।
4: मैं अभी मौजूद हूं जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, जहां पर भी ये जो तैयारियां हैं ये भी देखने को मिल रही है। साज सज्जा जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। इनका कहना है कि 1 महीने पहले से ही जन्माष्टमी के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। ये जो थीम है ये फूल बंगले का थीम है, जिसमें 32 अलग अलग तरह के फूल जो हैं वो लाए गए हैं, जिनसे

0: वाले नहीं पर बाहर से भी कई सारे फूल हैं वो मंगवाए गए हैं। बहुत ही कलरफुल ये जो डेकोरेशन है ये यहाँ पे किया जा रहा है। भगवान कृष्ण की पोशाक की मैं बात करूँ तो पोशाक वृंदावन से आ रही है, खास पोशाक जो है वो भगवान कृष्ण के लिए उनके जन्मोत्सव के लिए बनवाई जा रही है जो कि वृंदावन से आ रही है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग रंगों के जो प्रॉप्स हैं वो रखे हुए हैं जिनकी सजावट चल रही है। दो दिन का समय अभी बच रहा है, जिन दो दिनों में ये पूरी सजावट जो है वो की जाएगी। ठीक,
1: देखिए जयपुर से अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के ही धौलपुर में, जहां कृष्ण जन्माष्टमी से पहले दिन रात कान्हा की पोशाकें बनाने का काम लगातार चल रहा है। धौलपुर जिले के 50 से ज्यादा कारखानों में कारीगर योगेश्वर श्री कृष्ण और राधा के लिए पोशाकें तैयार कर रहे हैं। इन पोशाकों पर मोतियों, नग, शीशा और स्टोन से काम किया जा रहा है। इन कारखानों में ज्यादातर मुस्लिम कारीगर काम करते हैं। यहाँ साल भर भगवान के लिए पोशाकें बनाने का काम इसी तरह से चलता है। जन्माष्टमी पर्व और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण, राधा और माता रानी की पोशाकों की खूब मांग होती है। ठाकुर जी और राधा के लिए तैयार की जाने वाली पोशाकों को मुस्लिम कारीगर हाथ से पूरी कढ़ाई की कारीगरी करते हैं और इसके बाद इन पोशाकों की कटाई और सिलाई की जाती है। कारीगर फिलहाल यहां राधा रानी के लिए आकर्षक लहंगा, ओढ़नी और पटुका बना रहे हैं। यहां से बनी पोशाक मथुरा वृंदावन से देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों समेत विदेशों में बने मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी के लिए भेजी जाती हैं। जन्माष्टमी से पहले हरियाणा के करनाल में कान्हा पार्लर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। यहाँ जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। कान्हा जी पार्लर के नाम से मशहूर इस जगह में ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल का भोग के साथ विशेष श्रृंगार होता है और केवल जन्माष्टमी ही नहीं बल्कि कई दूसरे त्योहारों के समय भी ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए कई दिनों पहले से लंबी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर चलती है।

0: नन्हे से कान्हा की मुस्कान प्यारी, मोर पंख सजे हाथों में बंसी भी प्यारी, जन्माष्टमी के लिए सजे लड्डू गोपाल की मूर्ति लगे सबसे न्यारी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर घर और मंदिरों को सजाने के अलावा राधा कृष्ण को नई पोशाक पहनाकर झांकियों का भी आयोजन होगा। ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर झूले, मुकुट, मोर पंख और वस्त्र भी लोग खरीद रहे हैं। तो वहीं लोगों के आराध्य कान्हा का भी पार्लर में श्रृंगार हो रहा है। जी हाँ, जिस तरह से विवाह और दूसरे समारोह में जाने के लिए लोग ब्यूटी पार्लर में सिंगार करवाते हैं, वैसे ही अब कान्हा जी को भी पार्लर में सजाने सवारने का काम काफी प्रचलित हो रहा है। जन्माष्टमी से पहले करनाल के कलंदरी गेट में कान्हा जी का पार्लर खुला है, जहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है और उनको सजाने सवारने वाले हैं संजीव सोनी।
1: दिनों थोड़ा ठाकुर जी, देखो सभी लोग अपने अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लेकर आते हैं और उसमें देखो हर तरह से जैसे उनके भाव होते हैं उस तरह से हमें बताते हैं कि श्रृंगार इस तरह से करना है ठाकुर जी का। और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है कि जैसे सबके ठाकुर जी, देखो आजकल थोड़ा श्रृंगार में समय लगता है, तो हमारे यहाँ ठाकुर जी की भोग सेवा भी पूरी तरह से होती है। हम सभी ठाकुर जी को, क्योंकि सेवा के ठाकुर जी हैं, तो हमें भोग लगाना पड़ता है।
0: संजीव सोनी जो अपने इस पार्लर में लड्डू गोपाल की मूर्तियों का बेहद खूबसूरत और सलोना श्रृंगार करते हैं, वो बताते हैं कि जीवन में एक ऐसा भी समय था जब वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, मगर एक घटना ने उनको कान्हा जी की भक्ति में ही लीन करवाने के लिए मानो प्रेरित किया।
1: एक टाइम ऐसा भी था कि मैं मंदिर नहीं जाता था और अपने घर में तुलसी तक नहीं लगने देता था। वो ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी, हमारे घर के पास ही मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हुई और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने मुझे वहाँ सेवा और पूजा में जाने के लिए मनाया, तो मैं गया वहाँ पे। उस दिन मैंने अपने हाथ से ठाकुर जी का अभिषेक श्रृंगार किया और उसके बाद से ही ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपने साथ ही, मतलब अपने कार्य में सहभागी बनाया। मतलब मुझे कोई भी कार्य, मंदिर की सेवा मिल जाती है, जन्माष्टमी की शोभा यात्रा के, शिवरात्रि की शोभा यात्रा में कोई ना कोई छोटी मोटी सेवा या बड़ी सेवा कोई वो दे देते हैं। तो बस तभी से वो करते करते श्रृंगार की सेवा भी फिर ठाकुर जी ने तभी मेरा शुरू कराया।
0: पिछले कई साल से संजीव सोनी की कृष्ण भक्ति के माध्यम से साज सज्जा कला इतनी लोकप्रिय हो गई है कि आज हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब समेत दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु अपने अपने लड्डू गोपाल

0: अलका संजीव सोनी के इस पार्लर से श्रृंगार कराना पसंद कर रहे हैं।
1: पूरी फैमिली इनके पास ही आती है, तो जो भी श्रृंगार का मटेरियल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, हर एक क्वालिटी वाइज होते हैं। जो भी हम लोग जैसे जन्माष्टमी के लिए आते हैं तो ड्रेसेस वगैरह भी डिफरेंट होती है, यूनिक, सब कुछ यूनिक होता है।
2: बस मैं इनसे लगभग 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ आने के बाद कहीं और जाने का मन ही नहीं हुआ, और जो इनकी कलाकारी है वो आप देख ही रहे हो, बहुत अति सुंदर और बिल्कुल एक समझ लो कि भावना से जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात ही है। और यहाँ जो भी चीज़ है मतलब एकदम प्योरिटी और स्वच्छता की गारंटी है।
0: इस पार्लर में जो भी आस्थावान अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लाता है उसे 15 से 20 दिन पहले एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, ताकि पूरे सेवा भाव और नियमों के अनुसार ही कान्हा जी का मेकअप किया जा सके। वैसे कहते भी हैं, जहां कान्हा विराजते हैं वहां खुशियां खुद ही चली आती हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं के लिए भी उनके लड्डू गोपाल जी का इस पार्लर में आना, उनका भोग के साथ श्रृंगार होना ही शुभता का ही संकेत है। करनाल से कमलदीप संधु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो जन्माष्टमी की तैयारियां शहर शहर जोर शोर से चल ही रही हैं, बाजारों में खूब रौनक है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, दो अलग अलग राज्यों के दो अलग अलग शहरों की तस्वीरें। एक तस्वीर है झांसी की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। शुक्रवार को मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव से पहले शहर के बाजार कान्हा की भक्ति के रंग में रंग गए हैं। बाजारों में जन्माष्टमी से जुड़ी सामग्री की दुकानें सज गई हैं और खरीदारी के लिए लोगों की चहलकदमी लगातार बढ़ रही है। जन्माष्टमी पर घरों, मंदिरों और विभिन्न स्थानों पर सजने वाली झांकियों और पंडालों के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर रंग बिरंगी झालरें, आकर्षक लाइटें, फूल मालाएं, पर्दे, पालने, मुकुट, पगड़ी, बांसुरी, माखन मटकी, सिंहासन और भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार से जुड़ी तमाम सामग्री बिक रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर एमपी के आगर मालवा से भी आई, जहां दुकानों पर भगवान के लिए रंग बिरंगी पोशाक, बांसुरी, झूले सब दिखाई दे रहे हैं। जन्माष्टमी तक बाजारों में ये रौनक यूं ही नजर आने वाली है। चलिए अब आपको कान्हा के मथुरा में सजे बाजारों की एक झलक भी दिखा देते हैं। यहाँ के हर गली बाजार में एक जैसा नजारा है। दुकानें लड्डू गोपाल की सुंदर पोशाक, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और झूलों से भरी पड़ी हैं और कृष्ण भक्त बड़े उत्साह के साथ अपने कान्हा के श्रृंगार की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं।

0: ब्रजधाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की उमंग हर ओर दिखाई दे रही है और मथुरा के तो कहने ही क्या। बाजार सज गए हैं, मुरलीधर की पोशाक और श्रृंगार के सामान से पूरा बाजार पटा हुआ है। यहाँ गिरधारी के सुंदर कपड़े, मुकुट, मोर पंख, बांसुरी और झूलों की भरमार है। होली गेट से द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के बाजार तक हर दुकान को जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष तौर पर सजाया गया है। बड़ी तादाद में ग्राहक मथुरा के बाजारों का रुख कर रहे हैं। जाहिर है इससे दुकानदार खुश हैं और इनका मानना है कि इस साल कारोबार पहले की तुलना में बेहतर हो रहा है। दावा ये भी है कि इनके पास लड्डू गोपाल के श्रृंगार से जुड़े सामान का जबरदस्त कलेक्शन है जो कृष्ण भक्तों को लुभा रहा है। दिल्ली, भरतपुर और आगरा जैसी आसपास की जगहों से ग्राहक यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने आराध्य ठाकुर जी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। कोई अपने नन्हे काना के लिए मोर पंख थीम वाली ड्रेस ढूंढ रहा है तो कोई फूलों से सजा झूला तलाश रहा है। इस जन्माष्टमी हर कृष्ण भक्त चाहता है कि उसके लड्डू गोपाल सबसे सुंदर दिखें।
1: होली की पूरी फूल तैयारी हो रही है। मथुरा जैसी जन्माष्टमी कहीं नहीं होती,
2: कहीं नहीं होती,
1: नहीं होती, नहीं।
2: एकदम यहाँ सारी पोशाक वोशाक सब
1: जी जी बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे
2: सब मिल जाता है,
1: जो हमारे राजस्थान में भी नहीं है।
2: नहीं है,
1: नहीं है।
2: क्या क्या क्या नाम है आपका?
3: भावना।
2: क्या तैयारी कर रही है
3: भैया? ठाकुर जी की कह रहे हैं जन्माष्टमी की, हम तो आगरा से मथुरा मनाने आए।
2: अच्छा।
3: तो यहाँ की तरह कहीं भी नहीं बनती है।
2: अच्छा।
3: यहाँ की भाई अलग ही वो है मनाने वाली,
1: और
3: यहाँ भगवान जी का जन्म हुआ है, सारी लीलाएं चाहिए भगवान ने। भाई यहाँ की तो है ही नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी सब कुछ है यहाँ, पोशाक, नेत्र, मालाएं, ठाकुर जी, यहाँ की से कोई, यहाँ की से तैयारी कहीं नहीं है भैया।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर स्थानीय दस्तकारों की भी चांदी है। यहाँ के कारीगर बड़ी ही शिद्दत और मेहनत के साथ बाल गोपाल की पोशाक तैयार कर रहे हैं और कृष्ण जन्मोत्सव में भागीदारी दर्ज करा रहे हैं।
4: जो है मतलब ये कि इस वक्त जो है मतलब तुम्हारे जो है पीले कलर की ज्यादा चल रही है इस वक्त, और पोशाकों की भार का ऑर्डर भी है हमारे पास में अपने, और जन्म स्थान का भी हमारे पास ऑर्डर है, तो ये चल रही है। और मतलब जो रात दिन मतलब जो के हमारे कारीगर भी सबरे काम कर रहे हैं, तो उन पोशाकों को पूरा करके जल्दी से जन्माष्टमी के लिए तैयारी करी जा रही है।
5: पूरा जो बाजार है, पूरा बाजार है, बड़ी भीड़ है बाजार में, और तमाम जो लोग हैं भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। और पूरे मथुरा की बात करें तो पूरा मथुरा सज धज के ठाकुर जी के जन्मोत्सव के लिए तैयार है, और पोशाक का बाजार है, चाहे ठाकुर जी के मुकुट श्रृंगार का बाजार हो या और भी किसी चीज का बाजार हो, वहाँ सभी गुलजार हैं, लोग पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण के लाला का जन्मोत्सव मनाने के लिए, नंदलाल का जन्मोत्सव, अजन्मे का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग तैयार हैं। और बड़ी तादाद में ठाकुर जी के वस्त्र, नेत्र, ठाकुर जी का श्रृंगार खरीद कर ले जा रहे हैं और भगवान का जन्म उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
6: तो तैयार हो जाइए जन्माष्टमी के इस पर्व को जीएनटी संघ मनाने के लिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें और रंग लगातार आपको गुड न्यूज टुडे पर हम दिखाते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अच्छे कपड़े जा रही है, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ ऑपरेशन सिंदूर में संभाली थी वेस्टर्न कमांड की कमान, 3 ट्रस्टी के नामों का भी ऐलान। बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित होगा 16वां एयरो इंडिया शो, 8 से 12 फरवरी 2027 तक चलेगा कार्यक्रम, दुनिया भर की डिफेंस कंपनियों को एक साथ आने का मिलेगा मौका। बेंगलुरु मेट्रो की बड़ी पहल, पिंक लाइन का उद्घाटन इसी महीने संभव, कलेना अग्रहार से तवरेकेरे तक चलेगी ट्रेन। रुद्रप्रयाग में धूमधाम से जारी है मां काली की देवरा यात्रा, केदार घाटी के गांव गांव पहुंच रही है मां की दिव्य डोली, 15 सितंबर को केदारनाथ धाम पहुंचेगी डोली। देशभर में धूमधाम से जारी गणेश उत्सव की तैयारियां, सूरत में टिश्यू पेपर से बनी 17 फीट की गणेश प्रतिमा, आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जोर शोर से जारी है जन्माष्टमी की तैयारियां, कान्हा जी को लगेगा 500 प्रकार का भोग, 100 किलो से ज्यादा वजन का केक भी हो रहा है तैयार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ, करगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज बनाए गए मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव, इससे पहले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की निभा रहे थे जिम्मेदारी। अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य, मंदिर मामले में सुनवाई में निभाई थी अहम भूमिका। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल 3 नए सदस्यों में महेश भी शामिल हैं, 2020 में मंदिर के भूमि पूजन में बनाए गए थे मुख्य यजमान। शिक्षाविद डॉक्टर निर्मला यादव भी बनाई गई हैं राम मंदिर ट्रस्ट की सदस्य, ट्रस्ट की पहली महिला सदस्य बनी। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, मंदिर में इस बार लोटस थीम पर बनाया जाएगा श्रीकृष्ण जन्मोत्सव। अहमदाबाद इस्कॉन मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण का होगा विशेष श्रृंगार, मंदिर के भगवान श्रीकृष्ण के लिए वृंदावन से तैयार कराई गई स्पेशल ड्रेस। भगवान लीलाधर के गर्भगृह के श्रृंगार के लिए देश भर के साथ सिंगापुर और मलेशिया से भी मंगाए गए फूल। चंपावन भोग के साथ साथ देश विदेश के 600 से ज्यादा व्यंजनों को लगाया जाएगा भोग। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार विशेष ड्रोन शो और 7 मिनट के लाइट और साउंड शो की तैयारी। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां जारी है। वृंदावन से मंगाए गए फूलों से की जा रही है मंदिर में सजावट। श्री कृष्ण को कई तरह के व्यंजनों के भोग अर्पित करने की तैयारी। 500 से ज्यादा तरह के प्रसाद का किया जा रहा है इंतजाम। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के लिए तैयार की जा रही विशेष ड्रेस। पिछले एक महीने से पोशाक तैयार करने में जुटे मंदिर के श्रद्धालु। श्रद्धालुओं को बारिश से बचाने के लिए किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुविधा का सुरक्षा का विशेष इंतजाम। देशभर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां भव्य। 4 सितंबर को बद्रीनाथ धाम और धूमधाम से मनाई जाएगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने के साथ ही किया जाएगा विशेष भोग। मंदिर के साथ मंडप में श्रीकृष्ण के लिए तैयार विशेष डूल में तैयार होता है जन्मोत्सव। देशभर के बाजारों में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर जबरदस्त रौनक। झांसी में नई डिजाइन की पोशाक श्रृंगार की सामग्री उपलब्ध। लोग बखाना मटकी बांसुरी और झूलों की कर रहे हैं खरीदारी। अयोध्या में विधि विधान के साथ पूजन और सरयू स्नान के बाद पहली बार वृंदावन की सुदामा कुटी लाई गई श्री कृष्ण रजत संकल्प शिला। सुदामा कुटी में नाभा पीठाधीश्वर जगत गुरु सीता क्षण दास महाराज के सानिध्य में संतों ने रजत शिला का किया भव्य स्वागत। संकल्प शिला के आगमन पर भक्तिमय हुआ माहौल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाएगा संकल्प शिला का सहस्त्रधाराभिषेक। वडोदरा के कारेली बाग में इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा का निर्माण हुआ। इसके निर्माण में आई है करीब 16,700 रुपए की लागत। पिछले 10 सालों से पर्यावरण अनुकूल गणेशोत्सव मना रहे हैं। जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल। दही हांडी फोड़ने के लिए कर रहे हैं जबरदस्त तैयारी। कई स्तर के मानव पिरामिड बनाने की चल रही है प्रैक्टिस। मुंबई और ठाणे में होती बड़ी दही हांडी प्रतियोगिताएं। देशभर में विघ्नहर्ता के आगमन की तैयारियां तेज। कर्नाटक के राम नगर में बनाई जा रही है बप्पा के अलग अलग स्वरूपों और आकार की प्रतिमाएं। प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी गोबर और प्राकृतिक रंगों से हो रहा है मूर्ति निर्माण। गणपति के श्रृंगार के लिए प्राकृतिक रंगों का हो रहा है इस्तेमाल। बारीक नक्काशी से सजावट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में देखे स्थानीय संस्कृति के अद्भुत रंग। 15 साल बाद धूमधाम से निकाली जा रही है महाकाली की देवराह यात्रा। केदार घाटी में गांव गांव पहुंचकर श्रद्धालुओं को आशीष दे रही है महाकाली। केदार घाटी में लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे हैं महाकाली के स्वागत की तैयारियां। केदारघाटी की शक्ति और करोड़ों भक्तों की आराध्य है महाकाली। 15 सितंबर को केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करेंगी महाकाली। परंपरा के साथ साथ इलाके की सदियों पुरानी संस्कृति और लोक विश्वास का प्रतीक है ये यात्रा। बाबा केदार के भक्तों के लिए राहत भरी खबर। बारिश थमने के बाद मौसम हुआ सुहाना। शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आस्था का भव्य नजारा। तिरुचेंदूर स्थित प्रसिद्ध अरुमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में अवनी उत्सव की शुरुआत। 15 दिन चलेगा धार्मिक उत्सव। तमिल महीने अवनी यानी अगस्त सितंबर में मनाया जाता है उत्सव। पारंपरिक ध्वजारोहण के साथ होती है अवनी उत्सव की शुरुआत। उत्सव में भोग लेने के लिए तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में थूथुकुड़ी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष अनुष्ठान और जुलूस की तैयारियां पूरी। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। उत्तर प्रदेश के मथुरा इलाके को मिली 1,051 करोड़ की लागत से तैयार 229 विकास योजनाओं की सौगात। इसी महीने शुरू हो सकती है बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन। कलेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक चलेगी ट्रेन। डेंगू चिकनगुनिया से राहत के लिए आईआईटी कानपुर में मच्छरों तक रिसर्च, मच्छरों के दिमाग और सूंघने की क्षमता पर जोर। 100 से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स ने अहमदाबाद में रेलवे ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का किया दौरा। पीड़ में चार पीढ़ियों के बाद परिवार में बेटी का हुआ जन्म, मासूम बच्ची का अस्पताल से घर तक शानदार स्वागत। रात में बैठाकर निकाली गई शोभा यात्रा, नवजात बच्ची और उसकी मां का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। गार्गी रखा गया मासूम का नाम, लंबे समय के बाद घर में बच्ची के जन्म से परिवार भावुक। असम के देर्रा गांव दौरे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, लाचित पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दीक्षांत समारोह के साथ ही 403 नए प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी करके असम पुलिस बल में रखा कदम। त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था होगी दुरुस्त, योगी सरकार 15 सितंबर से चलाएगी अनुरक्षण माह, जर्जर और पेड़ की डालियों की होगी छटाई। उत्तर प्रदेश में आयोजित आउटसोर्स कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी की बड़ी सौगात, सेवा सुरक्षा और हितों में संरक्षण का भरोसा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 78,000 पुराने कमर्शियल वाहन बदले जाएंगे। BS6 CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने के लिए वाहन मालिकों को आर्थिक प्रोत्साहन देगी रेखा सरकार। दलाई लामा ने तिब्बत और नेपाल में बाढ़ की वजह से जान गंवाने वालों की प्रति जताई संवेदना। गया में OTA ने समर टर्म के लिए आयोजित की कमेंडेंट अवार्ड समारोह। ड्रिल, फिजिकल ट्रेनिंग, हथियार ट्रेनिंग में कैडेट्स का शानदार प्रदर्शन। एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे 254 कैडेट्स बनेंगे अधिकारी, कमांडेंट जनरल ने बढ़ाया उत्साह। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने कैडेट्स को चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सलाह दी। बड़ौदा पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। दिल्ली NCR में फिर से बारिश की फुहार, सुबह से छाए बादल, तापमान में गिरावट। राजधानी के कई इलाकों में भरा पानी, थमी ट्रैफिक की रफ्तार। दिल्ली में शाम को भारी बारिश का रेड अलर्ट, IMD ने 7 राज्यों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नेपाल त्रासदी में बागेश्वर महाराज ने बढ़ाया मदद का हाथ, पीड़ितों के लिए बागेश्वर धाम से भेजी जा रही है सामग्री। नेपाल के पीड़ित परिवारों की मदद करने के लिए 4 ट्रकों में पहुंचाया जा रहा है बुनियादी जरूरतों का सामान। बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए नेपाल पहुंचे सोनू सूद, भारत के लाए कंबल, राशन और बाकी जरूरी सामान। सोनू बोले, संकट के इस दौर में जरूरतमंदों के साथ खड़े होना हम सभी का फर्ज। संकट में नेपाल के साथ खड़ा हुआ है भारत, 5.5 टन दवाओं के साथ मदद की 5वीं खेप भी भेजी। नेपाल में रसवा फ्लैश फ्लड पीड़ितों की पहचान करने के लिए भारत की 19 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने संभाला मोर्चा। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, त्रिशूली में मलबा हटाने में जुटी नेपाली सेना। गुजरात में RPF जवान बना देवदूत, चलती ट्रेन से लटके यात्री को खींचकर बाहर निकाला, CCTV में हुआ कैद। रोहतास में कैमूर पहाड़ी के इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर वाटरफॉल। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से तबाही, फायर और SDRF टीम ने आधा दर्जन परिवारों का रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला। आसनसोल उत्तर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गोला नदी और खकरा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में भर गया पानी। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में प्रवासी पक्षियों का दिखा डेरा, इस बार समय से पहले पहुंचे परिंदे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सैन्य अधिकारियों ने गाड़ी को किया रेस्क्यू, भूस्खलन में फंसी गई थी गाड़ी। भारी बारिश के कारण बढ़ गई भूस्खलन की घटनाएं, यात्रियों को दी जा रही है सावधान रहने की अपील। उत्तराखंड के खटीमा में भारी बारिश ने आम जनजीवन प्रभावित कर दिया, सड़कों पर भर गया है पानी। शहर के निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति, लोगों को सावधान रहने की हिदायत। उत्तरकाशी में बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन, पहाड़ी मलबे में फंसे यात्री बस को निकाला गया सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी, सोलन में नदी नाले उफान पर, कई जगहों पर सड़कें बनी सैलाब। भारी मलबे और बड़े पत्थरों से सड़कें बाधित, लोगों की बड़ी मुश्किलें, 4 सितंबर तक बारिश से राहत के आसार नहीं। मध्य प्रदेश के बाणासागर डैम के गेट खुलने से रोहतास में बढ़ा सोन नदी का जलस्तर, नदी किनारे रहने वाले दूर जाने की उनको सलाह। बिहार के नवगछिया में उफान पर गंगा मंत्री विधायक ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मिर्जापुर द मूवी के मेकर्स का बड़ा धमाका, रिलीज से 3 दिन पहले आउट हुआ नया गाना धूम धूम। मनोज वाजपेयी की फिल्म लास्ट मैन इन टावर का ट्रेलर हुआ रिलीज, व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद के नॉवल पर आधारित है फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हनुमान अंश ने किया कमाल, मूवी ने 25 दिनों में 47 करोड़ का आंकड़ा पार किया। पर्दे पर दमखोरों के शिकारी बनेंगे अक्षय कुमार, मशहूर शिकारी और पर्यावरण प्रेमी रहे जिम कॉर्बेट के बायोपिक में करेंगे काम। रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म मैसी की रिलीज डेट हुई ऐलान, 27 नवंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में एक दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगी रश्मिका। लंदन स्क्वैश क्लासिक में भारत की अनाहत सिंह ने पहले दौर में मुकाबले में जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दुनिया की 20वें नंबर की अनाहत ने मिस्र की 30वें नंबर की मरियम को 11-3 11-2 से हराया। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर को मिली कमान, वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से उनको मिला मौका। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स बने बिग बैश लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने उन्हें करीब 3.41 करोड़ में खरीदा। यूएस ओपन में डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस की 139 दिन बाद सिंगल्स कोर्ट पर जीत के साथ वापसी हुई। करीब 1000 साल पुरानी बेओक्स टेपेस्ट्री 10 सितंबर से लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में देखेगी। यह खास टेपेस्ट्री करीब 70 मीटर यानी 230 फीट लंबी और इसे देखने के लिए होड़ मची हुई है। टेपेस्ट्री को नुकसान ना हो इसलिए फ्रांस में इससे धीरे धीरे निकाला गया। इस ऐतिहासिक धरोहर को फ्रांसीसी पुलिस की सुरक्षा में यूरो टनल तक पहुंचाया गया। टेपेस्ट्री की प्रदर्शनी को ब्रिटेन और फ्रांस के बेहतर होते रिश्तों की निशानी माना जा रहा है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: जम्मू कश्मीर की वादियों में बसे माचल घाटी सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। LOC के करीब बसे इस इलाके में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है लगातार। ऐसा होने से स्थानीय लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। उम्मीद है कि पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से कारोबार को रफ्तार मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कुदरत की खूबसूरती के बीच माचल अब तरक्की की नई राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या है यहाँ पर खास और किस मौसम में यहाँ जाना चाहिए, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कुदरत की गोद में बसा माचल सेक्टर, इसे देखकर लगता है मानो कुदरत ने अपने हाथों से सजाया। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पर छाई हरियाली, कल कल बहते झरने और दूर तक फैले खूबसूरत वादी। माचल की यही खूबसूरती अब सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। LOC के करीब बसा ये इलाका बॉर्डर टूरिज्म के नए ठिकाने के तौर पर पहचाना जा रहा है। कभी जहां पहुंचना आसान नहीं था, अब वहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है। माचल की ऊंची पहाड़ियों पर बना है नाजे हिंद। ये स्मृति और पर्यटन स्थल माचल की खूबसूरती के साथ साथ सीमा की हिफाजत करने वाले जवानों की वीरता की कहानी भी बताता है। यहाँ सेना के जवानों के स्टैचू, हथियार और सैन्य साजो सामान भी प्रदर्शित किए गए हैं। यानी नाजे हिंद में पर्यटकों को कुदरत के साथ देश की सुरक्षा और जवानों के शौर्य की झलक भी मिलती है। माचल की पहचान का एक और खास हिस्सा है यहाँ लहराता विशाल तिरंगा। करीब 140 फीट ऊंचा ये ध्वज बर्फीले पहाड़ों के बीच दूर से ही नजर आता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, होम स्टे, स्थानीय कारोबार और परिवहन से जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ेगी। यानी माचल की इन वादियों में अब कुदरत के साथ साथ विकास की नई तस्वीर भी आकार ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे तो कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे।
3: पहले मेकअप, फिर पढ़ाई, स्कूल जाने की तैयारी करती इस नन्ही बच्ची का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बालों में गजरा सजाया गया, फिर चेहरे पर क्रीम लगाकर बड़े प्यार से उसका मेकअप किया जा रहा है। मेकअप के दौरान बच्ची का शर्माना और क्यूट एक्सप्रेशन देखने लायक है। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल जाने से पहले मैडम को भी थोड़ा सजने संवरने का शौक है। बच्ची का ये प्यारा अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है और यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं। आग की तेज लपटे और उसके बीच ट्रेनिंग करते ये जवान, ये जज्बा वाकई सलाम के काबिल है। देश की सेवा का जुनून हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी हौसला नहीं तोड़ सकते। वीडियो में जवान आग के बीच से गुजरते और अपने प्रशिक्षण का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये ट्रेनिंग फौज में शामिल होने से पहले जवानों को कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। आग की तपिश के बीच उनका साहस और आत्मविश्वास देखकर हर किसी के मन में देश के जवानों के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। पिंक ड्रेस में तैयार हुई बेटी ने सोचा क्यों ना पापा से एक प्यारी सी फोटो क्लिक कराई जाए, लेकिन पापा ने फोटो खींचने की जगह बेटी का कार्टून ही बना डाला। बेटी ने जब अपनी तस्वीर देखी तो उसका क्यूट सा चेहरा उतर गया और नाराज होकर वहाँ से चली गई। पिता पुत्री के बीच की ये मजेदार नोकझोंक कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और लोग बच्ची के एक्सप्रेशन देखकर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। बॉयज विल बी बॉयज और बच्चों की मस्ती का ये वीडियो इसका एकदम सही उदाहरण है। डस्टबिन का डिब्बा बना खेल का सामान, एक बच्चा पैर से उसे दबाकर दूसरे के मुंह पर मारता है और फिर दूसरा भी उसी अंदाज में जवाब देता है। बारी बारी से दोनों अपनी मस्ती जारी रखते हैं और इस खेल में बच्चों की खिलखिलाहट देखने लायक है। बिना किसी खास खिलौने के बच्चों ने अपनी ही दुनिया में नया गेम बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब गुदगुदा रहा है। दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती और इन नन्हे दोस्तों ने ये बात साबित कर दी। दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ और प्यार देखकर लगता है कि दोस्ती का मतलब इन्हें अभी से समझ आ गया है। खिलौनों के साथ खेलना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना और मासूमियत से खुशियां बांटना, वीडियो में बच्चों की यही प्यारी बॉन्डिंग नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग भी मुस्कुरा रहे हैं और बच्चों की मासूम दोस्ती पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: शुक्र का राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए अनुकूल होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशि के लोगों को सतर्क रहना होगा? क्या है शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
10: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO। ऑपरेशन सिंदूर में संभाली थी वेस्टर्न कमांड की कमान, 3 ट्रस्टी के नामों का भी ऐलान। बेंगलुरु के येलहंका एफओ स्टेशन में आयोजित होगा 16वां एरो इंडिया शो, 8 से 12 फरवरी 2027 तक चलेगा कार्यक्रम। दुनिया भर की डिफेंस कंपनियों को एक साथ आने का मिलेगा मौका। बेंगलुरु मेट्रो की बड़ी पहल, पिंक लाइन का उद्घाटन इसी महीने संभव। कलीना अग्रहारा से तवरेकेरे तक चलेगी ट्रेन, ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। रुद्रप्रयाग में धूमधाम से जारी है मां काली की देवरा यात्रा, केदार घाटी के गांव गांव पहुंच रही है मां की दिव्य डोली। 15 सितंबर को केदारनाथ धाम पहुंचेगी डोली। देश भर में धूमधाम से जारी है गणेशोत्सव की तैयारी। सूरत में टिश्यू पेपर से बनी 17 फीट की गणेश प्रतिमा। आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। नौरा के इस्कॉन मंदिर में जोर शोर से जारी है जन्माष्टमी की तैयारियां। कान्हा जी को लगेगा 500 प्रकार का भोग। 100 किलो से ज्यादा वजन का केक भी हो रहा तैयार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल के पद पर पहुंचकर शक्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है। शक्ति देश की पहली महिला है जिन्होंने एयर मार्शल या फिर इसके समकक्ष 2-स्टार रैंक हासिल किया है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। भारतीय वायुसेना में नारी शक्ति ने रचा इतिहास। भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल के पद पर पहुंचकर शक्ति शर्मा ने देश की रक्षा सेवाओं में महिलाओं की भूमिका का एक नया अध्याय लिख दिया है। वो सशस्त्र बलों में एयर वाइस मार्शल या उसके समकक्ष 2-स्टार रैंक हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं जो गैर चिकित्सा शाखा से आती हैं। 3 दशक से पहले अपने लंबे करियर में शिक्षा, प्रशिक्षण, संस्थागत नेतृत्व और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाली शक्ति शर्मा ने अब वायुसेना मुख्यालय में सहायक वायुसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल ली थी है। 18 जून 1994 को भारतीय वायुसेना की शिक्षा शाखा में अधिकारी के तौर पर कमीशन मिलने के बाद उन्होंने 3 दशक से अधिक के सेवा करियर में वायुसेना के प्रशिक्षण संस्थानों, फील्ड स्टेशनों, कमान मुख्यालयों और वायुसेना मुख्यालय में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है।
7: भारतीय वायुसेना के इतिहास में आज एक बड़ा मुकाम जुड़ गया है। एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, जिन्होंने 2-स्टार रैंक हासिल कर ली है। 1994 में शक्ति शर्मा ने वायुसेना की एजुकेशन ब्रांच से अपनी करियर की शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक वो कई महत्वपूर्ण पद संभाल चुकी हैं। वो देश की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने 3 सेनाओं के सैन्य स्कूल की जिम्मेदारी भी संभाली थी। उनका प्रमोशन सिर्फ एक प्रमोशन नहीं बल्कि भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती ताकत को भी दिखाता है।
10: और कान्हा के जन्मोत्सव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे भक्तों का उत्साह भी चरम पर पहुंचता जा रहा है। मंदिरों में सजावट का काम तेज हो गया है, बाजारों में जन्माष्टमी की रौनक दिखाई देने लगी है, तो घरों में भी लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियों को लगे पंख। जी हाँ, आपको बता दें कि कहीं कान्हा के लिए पालना सजाया जा रहा है तो कहीं बाल गोपाल के लिए नए वस्त्र और आभूषण तैयार किए जा रहे हैं। तो वहीं मुंबई में दही हांडी प्रतियोगिता की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है।

0: चारों तरफ कृष्ण नाम की गूंज है। मंदिरों में तैयारियां जोरों पर हैं, भक्तों के चेहरों पर एक अलग ही उत्साह है। कान्हा की नगरी मथुरा से लेकर मुंबई तक कृष्ण उत्सव को लेकर उल्लास और उमंग का माहौल है। मथुरा में अभी से भक्तों का जुटना शुरू हो गया है, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है और कान्हा की नगरी की रौनक देखते ही बन रही है। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया और सवारा जा रहा है। कहीं फूलों की आकर्षक सजावट है तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर परिसर जगमगा उठे हैं। मथुरा के साथ साथ झांसी की गलियों में कहीं राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां तैयार हो रही हैं, तो कहीं बाल गोपाल के लिए विशेष पालना सजाया जा रहा है। जन्माष्टमी की रात कान्हा के जन्म के साथ ही मंदिरों में होने वाले विशेष आयोजनों को लेकर भी तैयारियां अंतिम दौर में हैं।
1: अब त्योहार आने वाला है तो भगवान श्री कृष्ण का ये प्रोग्राम है, त्योहार है, उनका जन्मदिन है, जन्म दिवस है, तो उनके इसी मौके पर हमने राधा रानी की पोशाक वगैरह, उनके मुकुट वगैरह, मुकुट और उनके हार, उनके जो भी श्रृंगार का सामान है वो सब हम लोगों ने यहाँ से लिया हुआ है।
0: वैसे इस साल बद्रीनाथ धाम में भी कान्हा के जन्मोत्सव को भव्य तौर पर मनाने का इंतजाम किया जा रहा है। इस बार 4 सितंबर शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीकात्मक उत्सव होगा। जन्माष्टमी के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा के साथ विशेष भोग लगाया जाएगा।
2: पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है, जो अपने 16 कलाओं से युक्त है, ऐसे ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण अवतार भाद्रपद मास में परसों यहाँ 4 सितंबर को बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा।
0: मुंबई में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का आयोजन होता है, जिसमें गोविंदाओं का जोश हाई रहता है। मुंबई की गलियों में गोविंदाओं की टोलियां दही हांडी फोड़ने की तैयारियों में जुटी हैं। मुंबई में जन्माष्टमी का उत्सव गोविंदाओं के रोमांच और मानव पिरामिड के अभ्यास के साथ अपने चरम पर है। जन्माष्टमी से पहले ही मुंबई की गलियों में गोविंदाओं की टोलियां तैयारियों में जुट गई हैं। ऊंचाई पर बंदी दही हांडी तक पहुंचने के लिए मानव पिरामिड बनाने की प्रैक्टिस लगातार जारी है।
3: में कम से कम 400-500 लोग रहते हैं गोविंदा के साथ में, और हमारे मंडल के जो पदाधिकारी है, जो मंडल के विश्वस्त है, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, वो सब ये गोविंदा में शामिल होते हैं।
4: सर, कोई गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है वो आप फॉलो करते हो, मतलब कितना फॉलो करते हो उसमें, उस पर क्या देखते हो?
3: वो गवर्नमेंट का जो रूल्स है उस हिसाब से ही हम लोग जो हमारा प्रॉपर गोविंदा का लाइसेंस निकालते हैं। हमारा रूट हर साल हम लोग तय करते हैं कि कौन से रूट से जाना है और कहाँ तक दही हंडी फोड़ने जाना है, ये पूरा जानकारी हम लोग अपना लोकल पुलिस स्टेशन को देते हैं।
0: कई मंजिल ऊंचे इस मानव पिरामिड को तैयार करना आसान नहीं है, इसके लिए ताकत के साथ संतुलन, तालमेल और टीम वर्क की खास जरूरत होती है। पीछे खड़े गोविंदाओं से लेकर सबसे ऊपर चढ़ने वाले गोविंदा तक हर सदस्य बेहद अहम होता है।
5: ये मंडल का 87th ईयर है। लास्ट 87th ईयर मंडल ने हमारे हिंदू ग्रंथ जो है महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, उसके एक कथानक यहाँ पे साकार किए हैं और लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया है। यहाँ पे अभी हम लोग ये साल जो गोविंदा मनाते हैं, ये गोविंदा मनाते वक्त भी हम लोग ये अच्छा संदेश देते हैं। ये ऐसा उत्सव है कि जहाँ पर एक दूसरे के कोई पैर नहीं खींचता, उल्टा एक दूसरे को ऊपर जाने के लिए अपना कंधा देते हैं, हाथ देते हैं। ये
0: मथुरा में जहाँ कान्हा के जन्म की तैयारियां अंतिम चरण में है, वहीं मुंबई में गोविंदाओं का जोश आई है और दही हांडी का रोमांच देखते ही बन रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और बद्रीनाथ से कमल नयन सिलौड़ी के साथ झांसी से अजय झा, गुड न्यूज टुडे।
6: अब देखिए, गणेशोत्सव आने वाला है, लिहाजा इस त्यौहार के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। बापा पंडालों में विराजने लगे हैं और भक्त साज सज्जा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कई जगहों पर इस बार बापा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है देशभर के पंडालों में गणपति उत्सव का उल्लास। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी गणेशोत्सव का उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां पर वडोदरा में स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी में कलावे से गणेश प्रतिमा तैयार की गई है।

0: विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आगमन होने वाला है, जिनके स्वागत के लिए कहीं आकार ले रहा है विशाल पंडाल, तो कहीं सजाई जा रही है विशाल प्रतिमाएं, और कहीं बाप्पा के स्वागत में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये भव्य तैयारी गणेश उत्सव को लेकर की जा रही है, जिसकी शुरुआत 14 तारीख से होने जा रही है। लेकिन इससे पहले ही गणेश चतुर्थी को लेकर महाराष्ट्र के साथ गुजरात में खूब रौनक है। वडोदरा के करेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का श्री गणेश युवक मंडल ने गणेश उत्सव को लेकर जबरदस्त तैयारी शुरू की है। यहां इस बार गणेश जी प्रतिमा का निर्माण नाड़ा छड़ी यानी कलावा से किया गया है। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए 80 से 82 किलो कलावा का इस्तेमाल किया गया है। गणेश जी की प्रतिमा को मंडल के 20 से 25 युवाओं ने लगातार 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है, जिसकी निर्माण लागत करीब 17,000 रुपए आई।
1: छड़ी हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है और कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक है, इसलिए कोई भी शुभ काम करने से पहले हम लोग नारा छड़ी का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस साल हमने नारा छड़ी से गणेश जी की मूर्ति बनाई है
2: और
1: इस मूर्ति को मैं बनाने में कम से कम 1.5 से 2 महीना लगा और मूर्ति लगभग 80 किलो के आसपास हम लोग मूर्ति में नारा छड़ी का यूज हुआ है।
0: ये मंडल हर साल प्रकृति के करीब रहने वाली सामग्री से ही बापा की प्रतिमा बनाता है। इससे पहले ये मंडल दोने पत्तलों और नारियल की छाल से प्रतिमा का निर्माण कर चुका है। मंडल के सदस्यों के मुताबिक ईश्वर की भक्ति के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, इसलिए इस बार भी इस मंडल ने बेहद अनोखी इको फ्रेंडली श्री जी की प्रतिमा तैयार की है।
3: आज मैं करेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी में आ पहुंचा हूं, जहां पे इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव पिछले 10 सालों से खूब धामधूम से मनाया जाता है। इस महोत्सव की अगर बात करें तो सांस्कृतिक नगरी वडोदरा में एक अनूठा महत्व है गणेश महोत्सव का, और वहीं पे भक्ति और पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत ही सुंदर मिसाइल देखने को मिल रही है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आप जो मूर्ति देख रहे हैं वो श्री गणेश मंडल युवक मंडल ने बनाई हुई है, जो लगभग 82 किलो नाड़ा छड़ी, जिसे हम पवित्र धागे बोलते हैं, उससे बनाई गई है। 20 से 25 युवाओं ने करीब पिछले कई समय से भारी मेहनत करने के बाद इस मूर्ति को भगवान श्री जी का स्वरूप दिया है।
0: महाराष्ट्र के शहरों में गणेश उत्सव को लेकर खूब उत्साह है और यहां पर भी रौनक नजर आने लगी है। नागपुर में भगवान गणेश के लिए बद्रीनाथ मंदिर की थीम पर विशाल पंडाल बनाया गया है।
4: नागपुर में इस समय हम हैं, गणपति बाप्पा के उत्सव की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। सार्वजनिक पंडाल और घरों में 14 सितंबर को गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, उससे पहले यहां पर तैयारियां जो है वो हम देख सकते हैं। नागपुर में सार्वजनिक जो पंडाल है जहां पे गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, वहां अलग अलग प्रतिकृतियां बनाने का काम इस समय चल रहा है, अंतिम चरण में काम है। इस समय हम एक नागपुर के सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल पर है, जहाँ बद्रीनाथ धाम मंदिर की जो प्रतिकृति है जो बनाई जाने वाली है उसकी तैयारियां हम यहां देख सकते हैं।
0: इस गणी
5: और सरकारी स्कूलों को लेकर अक्सर सुविधाओं की कमी और बदहाल व्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आती है, लेकिन राजस्थान के सीकर में एक सरकारी स्कूल ने इस धारणा को बदलने की मिसाल पेश की है। दादिया का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कभी सीमित जगह और संसाधनों की कमी से जूझता था, लेकिन आज यही स्कूल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर शिक्षा और विकास की नई कहानी लिख रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है, शिक्षकों ने पैसे जुटाकर जर्जर स्कूल का किया कायाकल्प। जी हां, आपको बता दें कि दादिया के सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों और ग्रामीणों ने खुद पैसा इकट्ठा किया और जर्जर हो चुके स्कूल का कायाकल्प कर दिया। इससे सिर्फ भवन और सुविधाएं ही नहीं बढ़ी बल्कि पढ़ाई के परिणामों में भी जबरदस्त सुधार हुआ है।

ये राजस्थान के सीकर का वो सरकारी स्कूल है जो कभी जर्जर हालात में हुआ करता था, जहां सुविधाओं का अभाव था, बच्चों के लिए कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी और स्कूल की बदहाल तस्वीर सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन आज ये स्कूल बदलाव की ऐसी मिसाल बन चुका है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है कि कुछ साल पहले तक इसकी तस्वीर बिल्कुल अलग थी और अब सरकारी स्कूल की क्लास में व्हाइट बोर्ड भी है, बेहतर फर्नीचर भी है और बच्चों को पढ़ाई के लिए आधुनिक माहौल मिल रहा है। बदलाव की ये तस्वीर शुरू हुई अक्टूबर 2021 में, जब प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार ने स्कूल की कमान संभाली। तब विद्यालय गांव के बीच पुराने भवन में संचालित हो रहा था, जगह कम थी और विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं भी सीमित थी। स्कूल की जर्जर हालत देख प्रधानाचार्य ने स्टाफ के साथ बैठक की और स्कूल को पुराने भवन से नए परिसर में शिफ्ट करने का विचार रखा। बंद पड़ा भवन

0: रुपए के विकास कार्य करवाए गए।
1: मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में पैसे जमा करवाकर कमरे बनवाए, रंग रोगन करवाया, दीवार की मरम्मत करवाई, ये सारा जो आप देख रहे हैं झूले वगैरह, पर्यावरण की जो उपलब्धता यहाँ पे है, जो अच्छा काम हुआ है वो जन सहयोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें। इसके साथ ही सांसद कोटे से बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण हुआ, विधायक कोटे से 2 कमरों का निर्माण हुआ। इस तरह से धीरे धीरे ग्रामवासियों के सहयोग से और स्टाफ के सहयोग से विद्यालय उत्तरोत्तर भौतिक सुविधाएं इस यहाँ पे अच्छी हो गई।
0: आज विद्यालय में 200 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बोर्ड परीक्षा का परिणाम 96% तक पहुंच चुका है और 12 विद्यार्थियों को मिला स्कॉलरशिप, स्कूल की शैक्षणिक उपलब्धियों को और खास बना रहा है। दादिया का ये सरकारी स्कूल बता रहा है कि बदलाव के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि शिक्षकों की पहल, ग्रामीणों के सहयोग और बच्चों की मेहनत और हौसले के आगे कोई मंजिल मुश्किल नहीं होती। सही मार्गदर्शन और बेहतर माहौल मिले तो सरकारी स्कूल के बच्चे भी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। सीकर से सुशील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़टुडे।
2: यूपी के बलिया की 7 साल की रागिनी ने हादसे में अपना एक पैर खो दिया, लेकिन उसका पढ़ने का हौसला बरकरार रहा। आज रागिनी के पास एक पैर नहीं है, लेकिन आंखों में स्कूल जाने का सपना है। अब रागिनी की बात प्रशासन तक पहुंच गई है और उसको मदद की उम्मीद जगी है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है एक पैर से स्कूल के सपने को नापती रागिनी। आर्थिक तंगी के कारण परिवार उसके लिए कृत्रिम पैर या फिर ट्राईसाइकिल का इंतजाम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब रागिनी की कहानी प्रशासन के कानों तक पहुंच चुकी है और उसे वहां से मदद का भरोसा मिला है।
3: यह 400 मीटर का रास्ता रागिनी के सपनों तक पहुंचने की राह है। एक पैर के सहारे वो हर रोज कदम बढ़ाती है और इसी तरह 7 साल की रागिनी स्कूल पहुंचती है। रागिनी के लिए पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की पहली सीढ़ी है।
4: रागिनी कहाँ के रहने वाला हूँ?
5: रानीपुर के।
4: अभी कहाँ जाता रू? कहाँ पढ़े लू रागिनी?
5: सरकारी स्कूल।
4: कहाँ स्कूल बा? तो का दिक्कत बा रागिनी? तो कैसे पढ़े जा लू? जोर से बोला। एक और से कैसे जा पावे लू पढ़े? गिर के बैठ जा लू। का पढ़ल चाहत रहू? तो फिर दिक्कत का होता पढ़े में? पढ़ू साइकिल पैसे चाहिए ना।
3: रागिनी का परिवार यूपी के बलिया जिले के रानीपुर इलाके में रहता है। जब रागिनी महज 6 महीने की थी तब एक हादसे में उसका एक पैर डैमेज हो गया था, लेकिन वक्त के साथ उसका हौसला कम नहीं हुआ। उम्र बढ़ी तो उसके सपने भी बड़े होते गए।
6: दिक्कत यही होता है कि पढ़ने जाती है एक पैर पे गिर जाती है, रोने लगती है, पैर में दर्द उठ जाता है।
4: पढ़ना चाहती है?
6: पढ़ना चाहती है। लड़का जाते हैं तो छपराती है, रोती है, हम लोग का करेजा फटता है।
4: क्या चाहिए आपको?
6: हमको सरकार अनुदान इसको सुविधा कुछ देती तो यही हम चाहते हैं।
3: रागिनी के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, ऐसे में उसके लिए कृत्रिम पैर का इंतजाम करना परिवार के लिए आसान नहीं।
7: 7 साल की बच्ची है और उसका पैर इस स्थिति में नहीं है कि वो पैदल चल सके। मैंने अधिकारियों को इसीलिए भेजा है कि उसका चिकित्सीय परीक्षण करा करके जो भी उपकरण हम देने की स्थिति में है उसको तत्काल हम दे दें। अभी डॉक्टरों की रिपोर्ट आ रही है और जैसी रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है हम तत्काल आज ही उसे उपकरण प्राप्त कराएंगे।
3: अब उम्मीद है कि मदद के साथ उसके सपनों की राह और आसान होगी। बलिया से अनिल कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मध्य प्रदेश के मुरैना के एक सीआरपीएफ जवान को जिंदगी ने ऐसा मोड़ दिया कि वो मंदिर में करीब 2 दशक तक साधु का जीवन बिताता रहा, लेकिन 26 साल के बाद अदालत के आदेश के बाद जब उसकी नौकरी वापस मिली तो उन्होंने वापस सीआरपीएफ की वर्दी पहन ली। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 6ठी गुड न्यूज है वो

0: है 26 साल बाद संत को वापस मिली सीआरपीएफ की वर्दी। मुरैना के छिछावली गांव के रहने वाले गिरवर सिंह तोमर की 1991 में सीआरपीएफ में नौकरी लगी। गिरवर सिंह ने सीआरपीएफ में हवलदार के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी। करीब 8 साल तक नौकरी करने के बाद 1999 में एक अधिकारी से विवाद के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। नौकरी जाने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। कुछ समय तक घर पर रहने के बाद गिरवर सिंह ने सांसारिक जीवन से दूरी बना ली। पहले गांव के नजदीक मंदिर में रहने लगे और बाद में मुरैना के गुफा मंदिर पहुंच गए, जहां उन्होंने पूजा पाठ और भगवान की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। मंदिर में रहने के दौरान उन्हें गिरवर दास महाराज के नाम से पहचान मिली। हालांकि संत बनने के बाद भी उन्होंने अपनी नौकरी वापस पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। सेवा से बर्खास्तगी के खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू की। वर्षों तक अदालत में मामला चलता रहा। वर्ष 2009 में फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन नौकरी पर वापसी नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लंबे इंतजार के बाद वर्ष 2026 में उनके मामले में दोबारा राहत मिली। 28 अगस्त को अदालत के आदेश के बाद सीआरपीएफ में उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ और उन्हें छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तैनाती दी गई।
1: कुछ बात तो हो गई तो उन्होंने निकाल दिया उनको, आ करके वो यहाँ पे रहे, साधु हो गए। फिर उन्होंने मामला किया इलाहाबाद में, मामला चलता रहा, परेशानियों से जूझते रहे। आकर पे फैसला हुआ तो वो केस को जीत गए और नौकरी पे चले गए। उसके बाद वहाँ कोई झगड़ा हो गया आपस में, जैसे कोई बातचीत, थोड़े जो जिद्दी टाइप के थे, जो किसी मानते तो थे नहीं। अफसर ने कहा कुछ तो जिन्होंने कहा नहीं, मुझको घर भेज दो तुम, उसने भेज दिया। इन्होंने यहाँ करके कोर्ट में केस लगा दिया।
2: नहीं, हम तो बहुत परेशान रहे थे, बच्चों को वैसे अपनी कुछ काम कर कुरी गए, भैंस भैंस रखते थे ऐसे ही पाल पड़ा के। एक बच्चा हमने अपना एयरफोर्स में चला गया मेरा, और अब ठीक है, अब तो बढ़िया हो गया सब, भगवान की दया है। वो भगवान की पूजा करते थे, वहाँ आते थे, तब सीखो भगवान को नहीं तो दिया है सब।
3: अच्छा,
2: हाँ, बाबा की सब कृपा है,
3: पूरा श्रेय भगवान।
0: देश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक अब 23वें साल में प्रवेश कर गई है। महक का जन्मदिन पूरे धूमधाम से कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में मनाया गया। इस मौके पर वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने केक काटकर महक का जन्मदिन सेलिब्रेट किया और उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, सबसे उम्रदराज बाघिन 23वें साल में भी जवान। जी हाँ, आमतौर पर चिड़ियाघरों में बाघ बाघिन की उम्र करीब 16 से 18 साल के आसपास होती है। ऐसे में 22 साल की महक सामान्य जिंदगी से करीब 4 साल आगे निकल चुकी है।

0: ये तस्वीर किसी जू में जीवन की जिंदा दिली की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। किसी बाघिन का 22 साल की उम्र को छू लेना आसान नहीं माना जाता, लेकिन 22 साल पूरे कर चुकी बाघिन महक ने ये कर दिखाया है। महक अब 23वें साल में पहुंच गई है और इसी बात ने इस बाघिन को खास बना दिया है। बाघिन महक के 23वें बर्थडे पर कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में जश्न मनाया गया।
1: May God bless you. Happy birthday.
0: दरअसल आमतौर पर चिड़ियाघरों में बाघ बाघिन की उम्र करीब 16 से 18 साल के आसपास मानी जाती है। वहीं जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में इनकी उम्र इससे भी कम हो सकती है। ऐसे में 22 साल की महक सामान्य जू लाइफ से करीब 4 साल आगे निकल चुकी है। यानी महक ने सिर्फ उम्र को ही मात नहीं दी बल्कि उम्र के रिकॉर्ड को भी चुनौती दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी महक एक्टिव है। पानी में अटखेलिया करना, एनक्लोजर की बाउंड्री के आसपास घूमना और पर्यटकों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना, महक आज भी ये सब करती है। हालांकि उम्र का असर दिखना शुरू हो चुका है। उठने में पहले के मुकाबले महक को थोड़ी सी परेशानी होती है, इसीलिए उसकी कैल्शियम डोज बढ़ाई गई है। उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक है, दांत और जबड़े मजबूत हैं और वजन भी लगभग सामान्य है। महक की लंबी उम्र के पीछे खानपान और मेडिकल केयर भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हर दिन उसे करीब 8 किलो चिकन और मांस दिया जाता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और आयरन टॉनिक भी, और उम्र को देखते हुए उसकी मेडिकल मॉनिटरिंग भी लगातार होती है। हर 3-4 दिन में उसकी मेडिकल जाँच की जाती है। महक की उम्र का राज सिर्फ उसकी देखभाल में नहीं, वन विभाग के मुताबिक जेनेटिक फैक्टर भी इसकी बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि अच्छी डाइट और मेडिकल केयर के बावजूद हर बाघिन 22 साल तक नहीं पहुंचती। महक का मामला इसलिए भी खास है क्योंकि उम्र बढ़ने के बावजूद उसकी सक्रियता और सेहत काफी हद तक बरकरार है।
2: महक के खाने की भी खास ध्यान रखा जाता है उसकी उम्र को देखते हुए। उसके लिए 8 किलो चिकन रोज उसको दिया जाता है, साथ ही जो पाड़े का मांस है वो उसको दिया जाता है। हर 4 दिन में उसका चेकअप किया जाता है।
0: महक अब सिर्फ अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क की पहचान नहीं बल्कि लंबी उम्र तक जीवित रहने वाली बाघिन की एक मिसाल भी है। 22 साल पूरे, 23वें में कदम, उम्र बढ़ी है, रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन पानी में महक की अटखेलियां और एनक्लोजर में उसकी चाल आज भी बता रही है कि दहाड़ भले ही धीमी हुई हो, महक की कहानी अभी बाकी है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: पुलिस ने घर पर चलवाया बुलडोजर। लखनऊ में दरोगा को पीटने वाले के टूटे घर। नेपाल में पानी के तेज बहाव में पावर प्लांट टूटा। मासूम बातचीत पर जनता फिदा। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। ऑपरेशन सिंदूर में संभाली थी वेस्टर्न कमान की कमान। 3 ट्रस्टी के नामों का भी ऐलान। बेंगलुरु के यलंगा एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित होगा 16वां एयरो इंडिया शो। 8 से 12 फरवरी 2027 तक चलेगा कार्यक्रम। दुनिया भर की डिफेंस कंपनियों के आने की उम्मीद। बेंगलुरु मेट्रो की बड़ी पहल, पिंक लाइन का उद्घाटन इसी महीने संभव। कलेना अग्रहा से तवरखेड़े तक चलेगी मेट्रो, ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। रुद्रप्रयाग में धूमधाम से जारी है महाकाली की देवरा यात्रा। केदार घाटी के गांव गांव पहुंच रही है मां की दिव्य डोली। 15 सितंबर को केदारनाथ धाम पहुंचेगी डोली।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। किसी पुरानी घटना को नया बताकर परोसा जाता है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर हो। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे पर इन्हें शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल। हर झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले होगी वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दरोगा सहित पुलिसकर्मियों को पीटने वाले दबंगों के घर को बुलडोजर से तोड़ा गया है। क्या है सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि नेपाल में आई बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक पावर प्लांट टूट गया। क्या है सच्चाई आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बुलडोजर से घर को ढाया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दरोगा को पीटने वाले दबंगों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
5: दरोगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात है और बुलडोजर से घर को ढहाया जा रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं इसे रोकने की कोशिशें करती हैं, लेकिन महिला पुलिस उन्हें वहां से हटा देती है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह लखनऊ का वीडियो है और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि लखनऊ के पारा में दरोगा पर जानलेवा हमले करने वाले लोगों की भैंस बकरी को नीलाम कर दिया गया। अब मकान पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जितने भी मकान बिना नक्शे के बने या अवैध बने सब तोड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार वायरल कर रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी इलाके में भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं। वहां पर एक बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं विरोध प्रदर्शन करती दिख रही हैं, लेकिन महिला पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक नहीं चलती। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां पर दरोगा सहित कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वाले दबंगों के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इससे ये तो साफ हो गया कि वीडियो में बुलडोजर के जरिए एक्शन लिया जा रहा है। अब इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों के बैज को भी जूम करके ध्यान से देखा, तो ये साफ हुआ कि हरियाणा पुलिस के जवान हैं। अब वीडियो लखनऊ का है तो फिर वहां पर हरियाणा पुलिस का क्या काम है, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें जानकारी जरूर मिली कि हाल ही में लखनऊ में पारा इलाके में पुलिस नगर निगम की टीम के साथ अवैध डेयरियों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला करते हुए पथराव भी किया था। हमलावर यही नहीं रुके थे, उन्होंने बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी दरोगा विनय पटेल को दौड़ाकर बुरी तरह से पीटा भी था। इस मामले में पुलिस ने 24 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन हमें इस दौरान ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे ये पुष्टि हो सके कि पुलिस कर्मियों की टीम पर हमला करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। लिहाजा वायरल हो रहे वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को लखनऊ का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक फेसबुक अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 9 जून 2026 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वीडियो हरियाणा के नरवाना का है। पुलिस ने यहां नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 27 मकानों को ढहाया था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया और लगातार खोजबीन की। इस दौरान 10 जून 2026 को प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक नरवाना की चमेला कॉलोनी में नशा तस्करों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 अवैध मकानों और निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों का कहना था कि जिन 27 मकानों और निर्माणों को तोड़ा गया उनके खिलाफ जिला नगर योजनाकार जींद की ओर से पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ। असल में वायरल वीडियो हरियाणा का है और इस साल जून में हुई एक कार्रवाई का है। हरियाणा पुलिस ने जून में नरवाना शहर में नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण ढहाया था। यह वीडियो उसी घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में एक पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। लोग कह रहे हैं कि नेपाल की बाढ़ में यह पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए।
6: I'm पाते।
7: नेपाल में आई बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। इसे हालिया वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। इन सब के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में एक पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो जाता है। कुछ लोग इसे नेपाल की बाढ़ का बताकर शेयर कर रहे हैं। सोशल साइट एक्स पर इसे शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, नेपाल फ्लड। नेपाल में बाढ़ से करीब 13 पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। ये ज्यादातर प्रोजेक्ट रसुआ और नुवाकोट जिले में नदी पर बने हुए थे। लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई न्यूज आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को नेपाल का बताकर शेयर किया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि भीषण बाढ़ का ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पानी की तेज बहाव की चपेट में ये पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। सच के दौरान ये जानकारी सामने आई कि नेपाल में भीषण बाढ़ की वजह से 12 से अधिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा, जिससे करीब 431.1 मेगावाट बिजली का उत्पादन रुक गया है। अब ऐसे में जानना जरूरी हो गया था कि नेपाल के किस हिस्से का ये पावर प्लांट है। वीडियो को देखने से तो यही लग रहा है कि ये किसी पावर प्लांट का है, लेकिन लगातार खोजबीन करने के बावजूद फैक्ट चेक टीम को दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई ऐसी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल में बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हैं। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम लगातार इन तस्वीरों और वीडियोस की पड़ताल कर रही है। हमारी पड़ताल में सभी फेक साबित हुए हैं, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसके बाद पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो नेपाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जाने।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पर 16 फरवरी 2023 को छपी एक रिपोर्ट मिली, जिसमें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट मौजूद है। यहां इसे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के रानूलिया पावर प्लांट का बताया गया है। पाकिस्तान के इस इलाके में 2022 में भीषण बाढ़ आई थी। इस रिपोर्ट में इसी बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताया गया है। इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें ऐसे कई YouTube चैनल मिले जिन्होंने अगस्त 2022 में इस वीडियो को शेयर किया था। इन चैनलों ने भी इसे रानूलिया हाइड्रो पावर प्लांट का बताया है। सर्च के दौरान ही हमें YouTube पर रानूलिया हाइड्रो पावर प्लांट का जून 2022 का एक ब्लॉग भी मिला। इसमें साफ देखा जा सकता है कि यह जगह वायरल वीडियो से बिल्कुल मिलती है। जर्मनी के न्यूज आउटलेट की 2 सितंबर 2022 की रिपोर्ट में भी ये वीडियो देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान की डुबेर नदी में आई बाढ़ का है। वीडियो का क्रेडिट एक टिकटॉक हैंडल को दिया गया था। हमें इसी यूजर नेम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिल गया। पाकिस्तान के इस यूजर ने अपने बायो में खुद को एक नेचर एंथुजियास्ट बताया है। इस अकाउंट ने ये वीडियो 28 अगस्त 2022 को पोस्ट किया था। वीडियो वायरल होने के बाद इस अकाउंट ने 27 अगस्त 2026 को इसे दोबारा शेयर किया और साफ किया कि ये वीडियो अगस्त 2022 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के छोटे से गांव दुबेर में आई बाढ़ का है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2022 में आई बाढ़ का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला।
8: जल्द आ रहे हैं कान्हा, कृष्ण जन्माष्टमी, शहर शहर उत्सव का माहौल, आस्था संस्कृति और विरासत के संरक्षण का संकल्प। रियल लाइफ में रियल लाइफ IAS। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रातारे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चल।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: दिल्ली मेट्रो से सामने आया ये वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में एक छोटी बच्ची ड्यूटी पर तैनात सीएसएफ जवान को देखकर जिस अंदाज में सैल्यूट करती है, वह पल बेहद प्यारा और भावुक नजर आता है। मेट्रो कोच में यात्री अपने अपने सफर में व्यस्त थे, इसी दौरान बच्ची की नजर वर्दी पहने सीएसएफ जवान पर पड़ती है। बच्ची बिना किसी झिझक के जवान की ओर देखती है और अचानक अपना हाथ उठाकर सैल्यूट कर देती है। बच्ची के चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ सम्मान का भाव साफ नजर आता है। बच्चे का छोटा सा इशारा वहाँ मौजूद लोगों के लिए भी खास बन गया। आमतौर पर बच्चे किसी वर्दीधारी जवान को देखकर उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने जिस गंभीरता के साथ सैल्यूट किया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। जवान ने भी बच्चे के सम्मान को नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने बेहद सहज और प्यार भरे अंदाज में उसके सैल्यूट का जवाब दिया। कुछ सेकंड का ये संवाद बिना किसी शब्द के ही बहुत कुछ कह गया। इस प्यारे पल का वीडियो सीएसएफ के आधिकारिक एक्स अकाउंट में शेयर किया गया है। इस प्यारे पल का वीडियो सीआईएसएफ के आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची का प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची अपने क्यूट अंदाज और मासूमियत से लोगों का दिल जीतती नजर आ रही है। बच्ची की प्यारी हरकतें देखकर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं और वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े वीडियो अक्सर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटे बच्चे के अपने दोस्त के प्रति चिंता और मासूमियत लोगों का दिल जीत रही है। वीडियो देखने के बाद यूजर्स इसे बचपन की सच्ची दोस्ती की सबसे खूबसूरत झलक बता रहे हैं। वायरल वीडियो में एक प्ले स्कूल का नजारा दिखाई देता है। क्लासरूम में मौजूद एक बच्चा अपने दोस्त को फोन मिलाता है और बड़े ही मासूम अंदाज में पूछता है, तो आज स्कूल क्यों नहीं आया? दूसरी तरफ से बच्चे की आवाज आती है कि वे बारिश की वजह से स्कूल नहीं आ पाया। दोनों बच्चों के बीच चल रही छोटी सी बातचीत सुनकर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठे। बातचीत का सबसे प्यारा पल तब आता है जब फोन पर मौजूद दोस्त की बात सुनने के बाद बच्चा बेहद भोलेपन से कहता है, जब बारिश रुक जाए तब आ जाना। इतना कहकर वह आराम से फोन रख देता है। उसके चेहरे पर अपने दोस्त से मिलने की खुशी और चिंता साफ झलकती है। ये मासूमियत इस वीडियो को खास बना रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि साधु ने न केवल उस बच्चे के सामने हाथ जोड़े बल्कि उसे साक्षात शक्ति और देवी का स्वरूप मानकर नतमस्तक हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची साधु के पास पहुंचती है। साधु बच्चे के पैर को छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद साधु बच्चे के हाथ में कुछ रुपए रख देते हैं। बच्ची उसे आशीर्वाद समझकर रख लेती है। एक तपस्वी का ये व्यवहार समाज को एक गहरा संदेश देता है कि सनातन संस्कृति में बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं बल्कि पूजनीय शक्ति है। ये वीडियो केवल आस्था का नहीं बल्कि नारी सम्मान और बेटियों के प्रति आदर का एक अद्भुत उदाहरण है।
3: आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे ना?
2: एक पिता और उसकी मासूम बेटी के बीच ये बातचीत सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रही है। बच्चे जिस मासूम अंदाज में अपने माँ के बारे में पिता को एक एक बात बता रही है, उसे सुनकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हैं। आप भी सुनिए ये बातचीत।
3: आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे ना, मैंने मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जो मैं आपसे बिना पूछे बाहर जा सकता हूँ, कुछ भी मन में वो कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
4: फिर क्या बोला मम्मी?
3: मम्मी जी ने जो बोला ना वो मेरे दिल को छू गई।
4: क्या बोला?
3: मम्मी जी ने बोला कि इतना बड़ा तेरा बाप भी नहीं होया कभी।
2: हाँ हंसी मस्ती और स्वाद का मजेदार संगम, पैरों में बंधी रस्सी, उसी रस्सी में लटका बिस्किट और बिना हाथ लगाए उसे मुंह तक पहुंचाने की चुनौती। जितना पैर उठेगा बिस्किट उतना करीब आएगा। हर बच्चा पूरी लगन से कोशिश कर रहा है, कोई जल्दी सफल हो रहा है तो कोई बार बार प्रयास कर रहा है। इस मजेदार खेल ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है और बता दिया कि सीखने का सबसे आसान तरीका खेल ही होता है। एक लाइन लंबी कतार और बच्चों का शानदार तालमेल, एक एक कर सभी बच्चे ट्रेन की बोगियों की तरह एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कतार बढ़ती है वैसे वैसे खेल और भी रोमांचक होता जाता है। हर बच्चा पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहा है। इस खेल में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सहयोग, अनुशासन और टीम वर्क का भी संदेश छिपा है। यही वजह है कि बच्चे इस खेल का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे तेज बारिश में खेल रहे हैं। सभी बिना छतरी के मैदान में भर चुके पानी में खुशी खुशी नाच रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं। जबकि कुछ यूजर्स ने स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाया कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। रंग बिरंगे कपड़े, तेज म्यूजिक और उसी ताल पर बच्चों का शानदार प्रदर्शन। देखने में स्टेप भले ही आसान लग रहे हों, लेकिन इन्हें एक साथ सही तालमेल के साथ करना बिल्कुल आसान नहीं है। इन नन्हे बच्चों ने अपनी मेहनत और अभ्यास से हर मूवमेंट को बेहद खूबसूरती से पूरा किया। चेहरे पर मुस्कान और कदमों में गजब का तालमेल दिखाई दिया। बच्चों की इस प्यारी प्रस्तुति का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लोगों का खूब प्यार बटोर रहा है। उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, इस बात को बिल्कुल सच साबित कर दिया है 66 साल की फिटनेस एंटरप्रेन्योर रेनू सिंधु ने। रेनू अहमदाबाद की रहने वाली है और वहाँ पर अपना जिम चलाती है। वो सिर्फ जिम की मालकिन ही नहीं बल्कि खुद फिटनेस फ्रीक भी है। 66 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। और अब उनका एक लेटेस्ट वीडियो आया है जिसमें वो पोती को लेकर वर्कआउट कर रही है। उन्होंने अपने 66वें जन्मदिन पर ये किया। इस वीडियो को देखकर लोगों की खूब तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: शुक्र का राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए अनुकूल होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशि के लोगों को सतर्क रहना होगा? क्या है शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। जल्द आ रहे काना, बाल गोपाल की कृपा से बढ़ेगा धन धान्य। आस्था संस्कृति के साथ विरासत के संरक्षण का भी संकल्प, मुंबई का गणेश पंडाल जहां बद्री विशाल के होंगे दर्शन, और रियल लाइफ में रियल लाइफ आईएएस, देवयानी से आईएएस ऑफिसर का डेब्यू। शुरुआत हेडलाइंस के साथ,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
10: HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, ऑपरेशन सिंदूर में संभाली थी वेस्टर्न कमांड की कमान, तीन ट्रस्टीज के नामों का भी ऐलान। राम मंदिर सीईओ बनने पर जितेंद्र मिश्र के गांव में जश्न, लोगों ने मिठाई बांट कर मनाया जश्न। जितेंद्र मिश्र बोले, खुद को मानता हूं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति। बेंगलुरु के यलंका एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित होगा 16वां एयर इंडिया शो, आज से 12 फरवरी 2027 तक चलेगा कार्यक्रम, दुनिया भर की डिफेंस कंपनियों को एक साथ आने का मिलेगा मौका। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पार्टी चलाएगी सेवा संकल्प अभियान, सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना है मकसद। महाराष्ट्र में अब सरकारी दफ्तरों की कैंटीन, बैठकों और कार्यक्रमों में परोसा जाएगा केवल मिलेट से बना पौष्टिक और संतुलित आहार, मौसमी फल भी होंगे आहार का हिस्सा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात नंदलाल के स्वागत की तैयारी की, मथुरा और जयपुर से लेकर अहमदाबाद तक भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां की जा रही, मंदिरों की दिव्य सजावट की गई है, रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर परिसर सराबोर नजर आ रहे हैं। दर्शन पूजन के साथ ही जन्माष्टमी पर कई ऐसे भव्य आयोजन होंगे जो कि भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देंगे।

0: जगह जगह कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियों के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद मंदिर रोशनी से जगमगा रहे हैं। बाजारों में बाल गोपाल के श्रृंगार से लेकर झूले और दूसरे सजावट के सामानों से दुकानें सजी हुई हैं। भक्त खरीदारी में मग्न हैं। ये साफ है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में शुभ मुहूर्त के बारे में भी सटीक जानकारी होना जरूरी है।
1: जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस बार अष्टमी तिथि जो है वो 3 सितंबर की रात को 2:26 से शुरू होगी और 4 सितंबर की मध्य रात्रि के बाद 12:14 तक रहने वाली है। वहीं रोहिणी नक्षत्र की यदि हम बात करते हैं तो रोहिणी नक्षत्र 3 सितंबर को मध्य रात्रि से शुरू होकर 4 सितंबर को 12:14 तक रहने वाला है। तो इन सभी शुभ संयोगों की वजह से जन्माष्टमी जो है वो 4 सितंबर की मनाई जाएगी। अगर मैं शुभ मुहूर्त की निश्चित काल के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो वो होगा 4 सितंबर की रात्रि को 11:57 से लेकर 4 सितंबर की मध्य रात्रि को 12:43 तक निश्चित काल का शुभ मुहूर्त है।
0: इस बार ग्रह नक्षत्रों का शुभ संयोग भी है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ऐसे में इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग जन्माष्टमी की पूजा के महत्व को और बढ़ाने वाला है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं।
1: इस बार ग्रह नक्षत्र जो द्वापर युग में थे उसी तरह के कुछ खास ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, जैसे कि हमसा योग बन रहा है, मालवीय योग बन रहा है। इस बार चंद्रमा भी अपनी उच्च की राशि वृषभ में विराजमान है। वहीं गुरुदेव बृहस्पति भी कर्क राशि में विराजमान है, अपनी उच्च की राशि में है। सूर्यदेव की यदि हम बात करें तो वो स्वयं सिंह राशि में विराजमान है और शुक्रदेव अपनी स्वयं की राशि तुला में विराजमान है। तो ग्रह नक्षत्रों का बहुत शुभ संयोग।
0: इस बार शुभ संयोगों के साथ लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाने की भव्य तैयारी हो चुकी है। ब्रज में नंदलाल के जन्मोत्सव की दिव्य छटा दिख रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर समेत दूसरे मंदिर और रास्तों तक पर भव्य सजावट हो चुकी है। शानदार लाइटिंग से सब कुछ जगमगा रहा है।
2: भगवान श्री कृष्ण के 5253 जन्मोत्सव के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान सज धज कर तैयार है और तमाम जो लाइटिंग है, साज सज्जा है, वो बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ की गई है। तो 3 तारीख को सुबह में एक भव्य शोभा यात्रा यहां से निकलेगी जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए भगवान के उत्सव की आगाज करेगी। वहीं शाम में 5:30 के आसपास जो भगवान को पंचरत्नीय पोशाक है वह अर्पण की जाएगी, जो ठाकुर जी जन्मदिन वाले दिन पहनेंगे और अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। और उसी के साथ दूसरे दिन भगवान का जो उत्सव है वो भगवान सुबह से ही ढोल नगाड़े के साथ मंगला आरती होगी और भगवान कालहंस बंगले में विराज कर सुबह से शाम तक दर्शन देंगे। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। भगवान का जो उत्सव है ना बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और वही शहर की बात करें तो पूरा शहर बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जा रहा है। कभी 24 चौराहे हैं और 24 चौराहों के पास 24 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं जहां से श्रद्धालु आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। पूरे शहर को बड़े भव्यता और दिव्यता और ऐसी लाइटिंग के साथ दूधिया रोशनी के साथ सजाया गया है।
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि में 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो चुकी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी हो रहा है। 4 सितंबर को रात 9:00 से 10:00 के बीच भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी दिखाने वाला 15 मिनट का ड्रोन शो यहां आसमान को रोशन करेगा। ठाकुर जी खास कलहंस फूलों वाले बंगले में विराजमान होंगे और पारंपरिक पंचरत्नी पोशाक पहनेंगे। जन्माष्टमी पर लाखों की संख्या में भक्तों के मथुरा पहुंचने का अनुमान है। इसको देखते हुए सुविधा और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी खुद श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। इसी तरह देश के बाकी हिस्सों में भी नंदलाल के जन्मोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 4 सितंबर को नंदलाल के प्राकट्य उत्सव के लिए जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम को भी विशेष रूप से सजाया जा रहा है। जन्माष्टमी पर इस मंदिर में दिव्य छटा बिखरी होगी। आकर्षक सजावट के साथ यहां भक्ति, संगीत और सांस्कृतिक आयोजनों का संगम देखने को मिलेगा।
3: मैं अभी मौजूद हूं जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, जहां पर भी ये जो तैयारियां हैं ये भी देखने को मिल रही है। साज सज्जा जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। इनका कहना है कि एक महीने पहले से ही जन्माष्टमी के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। ये जो थीम है ये फूल बंगले का थीम है, जिसमें 32 अलग अलग तरह के फूल जो हैं वो लाए गए हैं, जिनसे इस पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम दिखाएं तो दूसरी ओर एक पांडाल भी हुआ है, जहां जिस पांडाल में भगवान कृष्ण का महा अभिषेक जो है वो होगा। इस ओर ये पांडाल लगा है जहां पे सभी भक्त जो है वो भगवान कृष्ण का महा अभिषेक देख पाएंगे।
0: जन्माष्टमी के दिन यहां 4 अभिषेक और 108 भोग भक्तों के लिए विशेष आकर्षण होंगे। श्रद्धालुओं के लिए लड्डू गोपाल, दुग्ध अभिषेक और झूलन सेवा भी आयोजित होगी।
4: भगवान की पोशाक होगी, बहुत ही स्पेशल अलंकार से उनको सजाया जाएगा। ये पोशाक हम लोग वृंदावन से स्पेशली ऑर्डर करके बनवा रहे हैं। 32 प्रकार के फूल हम लोग व्यवस्था की है, और कुछ फूल तो जो यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं है वो हम लोग बेंगलोर से मंगवा रहे हैं। 7:30 बजे विशेष अलंकार के साथ जो भी भक्त हैं आगे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे दिन भर में कुछ अभिषेक रहेंगे।
0: जयपुर की तरह ही अहमदाबाद में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य तैयारी की गई है। अहमदाबाद में SG हाईवे पर इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सजावट का काम तेजी से चल रहा है।
5: आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अहमदाबाद की इस्कॉन मंदिर की, जहां सुंदर भगवान कृष्ण और राधा की जो प्रतिमा है वो यहां पे देखने को मिल रही है, राधा गोविंद जी की प्रतिमा। तैयारियां आप देख पा रहे हैं मंदिर के अंदर की तरफ, तो तैयारियां जरूर से हो रही हैं। बाहर की तरफ टेंट अलग से लगाए गए हैं, क्योंकि सामान्य दिनों के अंदर जो संख्या आती है उससे कहीं ज़्यादा संख्या जन्माष्टमी में भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग पहुँचते हैं।
0: जन्माष्टमी के पावन मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस बार मंदिर प्रशासन की ओर से सजावट, जलाभिषेक, प्रसाद के साथ ही पार्किंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा विशेष ड्रोन शो के साथ 7 मिनट के लाइट एंड साउंड शो की तैयारी भी की जा रही है।
6: हमने एक विशेष 7D शो तैयार किया है मंदिर के गर्भगृह के अंदर ही, कि जहाँ पर जो भी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आएंगे उनको ऐसा फील होगा कि जैसे भगवान जब जन्म लिए थे, जब भगवान प्रकट हुए थे मध्य रात्रि में, उस समय जैसा माहौल था वैसे ही माहौल हम इधर इस मंदिर के अंदर ही क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने प्रोग्राम्ड लाइटनिंग सिक्वेंस रखा है, साथ में प्रोग्राम्ड साउंड सिस्टम हमने इस प्रकार से रखा है कि भगवान जब प्रकट, बिजलियाँ कड़की थी, लाइटनिंग ऐसी होगी, फिर जैसे बारिश हो रही थी उस समय, तो मंदिर के अंदर हमने ऐसा प्रोविजन रखा है कि जब वो म्यूजिक बजेगा तो वैसी प्रकार के पानी भी जो है वो गिरेगा। ऑब्वियसली हम गिले नहीं होंगे उस पानी से, लेकिन वैसा इफेक्ट्स हमने डाला है। तो पूरा 7 मिनट का ये शो हर आधे घंटे के अंदर आप जब मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर आएंगे तो आपको ये देखने को प्राप्त होगा। साथ ही साथ रात को जब भगवान प्रकट हुए थे उस समय हम विशेष एक ड्रोन शो इसको मंदिर अहमदाबाद करने जा रहा है इस बार, तो वो सरप्राइज है कि ड्रोन शो में हम क्या दिखाएंगे, लेकिन 300 ड्रोन के माध्यम से हम एक बहुत विशाल ड्रोन शो करने जा रहे हैं।
0: जन्माष्टमी पर यहाँ भगवान को 56 भोग के साथ देश विदेश की 600 से अधिक चीजें अर्पित की जाएंगी। ये मंदिर जन्मोत्सव को लेकर रात 2 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, जयपुर से रिदम जैन और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: चलिए बात करते हैं गणेश उत्सव की। महाराष्ट्र में 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव को लेकर खूब चहल पहल है। मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी गणेशोत्सव की तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। नागपुर से लेकर पुणे तक बप्पा की मूर्तियां भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं, तो दिव्य पंडालों का निर्माण भी तेज हो गया है। बाजारों में भी खूब रौनक है, जहां दुकानें सजावट से लेकर गणपति के श्रृंगार तक के सामान से सजी हुई हैं।

0: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, सामाजिक एकता और लोक परंपरा का एक भव्य उत्सव है। मुंबई से होकर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में 10 दिनों के उत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाले गणेश उत्सव को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर है। मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पंडाल निर्माता भव्य पंडालों का निर्माण करने में लगे हैं। बाजार भी सजे हुए हैं, जहां सजावट से लेकर गणपति के श्रृंगार तक के सभी सामान मिल रहे हैं। ये तस्वीरें नागपुर के एक ऐतिहासिक कला केंद्र और बाजार की हैं, जो विशेष रूप से गणेश मूर्तियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक पंडाल के लिए बड़े और घर में विराजमान होने वाले छोटे गणपति बनाए जाते हैं और इस साल गणेश उत्सव के लिए मूर्तिकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप रंग देने में जुटे हुए हैं।
1: हम लोगों ने इस बार ऐसे सजा के रखी हुई है, पर इस साल लोगों को सिंपल मूर्तियां होना, जैसे आपको दिख रही है ऐसे सिंपल में ऐसे ज्यादा वो पसंद कर रहे हैं। लोग इको फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल मार्केट में काफी पीओपी बिक रहा है, बट फिर भी लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग ना खरीदे। ये सबसे लोगों को ज्यादा इको फ्रेंडली होना, तो वो ना डेकोरेट ना लेते हुए वो सिंपल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के लिए सजावट से लेकर बप्पा के श्रृंगार के सामानों की खरीदारी के लिए भी बाजार में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद के हिसाब से खरीदारी करते नजर आ रहे हैं।
2: इस बार स्टोन के आइटम, स्टोन के हार ये ज्यादा चल रहा है, और जिस हिसाब से गणपति के लिए बड़े बड़े हार गोल्डन के जो आप तस्वीर में देख रहे हो, ये गोल्डन हार की डिमांड अच्छी है, और महालक्ष्मी के हिसाब से भी ये गोल्डन हार अच्छे चल रहे हैं, इनकी भी डिमांड है, गोल्डन हार की डिमांड ज्यादा है। डेकोरेशन के हिसाब से आजकल वेलवेट कपड़ा ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वर्क वाला, और गणपति में बॉर्डर वाला कपड़ा आजकल ज्यादा डिमांड है, जो मेरे यहाँ अवेलेबल है बॉर्डर वाला कपड़ा।
0: नागपुर में गणेश उत्सव की तैयारी अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पंडाल निर्माण से लेकर लाइटिंग और सजावट का काम रफ्तार पकड़ चुका है। ये तस्वीर यहाँ के मशहूर संती सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की है, जहाँ गणेश उत्सव के लिए हर वर्ष देश के अलग अलग मंदिर और धाम को थीम के तौर पर चुना जाता है। इस वर्ष यह बद्रीनाथ धाम जैसी प्रतिकृति बनाई जा रही है।
3: ये इस साल हम संती गणपति मंडल उत्सव में बद्रीनाथ का थीम बना रहे हैं, बद्रीनाथ टेंपल का। वहाँ पे हमने साइट विजिट करके सब लेआउट वगैरह सब देख के जगह के हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा 3 महीने से काम चल रहा है गोडाउन पर, और यहाँ पे साइट पे हमारे 1 महीने से काम चालू हो गया, और ये सब हमारे प्रोडक्ट फाइबर प्रोडक्ट होते हैं, आयरन होता है, बॉटम्स होता है, सब मिक्स मटेरियल में काम होता है, और इसका एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे 1 महीने से, और हमारे यहाँ पे टोटल 50-60 वर्कर काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ टेम्पल में जाके हमने विजिट किया, वहाँ का सब फील लेके, मेजरमेंट लेके, और थोड़ा एडिटिंग करके फिर हम जगह के हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं।
4: हमारा मंडल बहुत पुराना है, जैसा ये 69वां साल है हमारा, और इस समय हमारा यही यानी प्रोविजन है कि जैसा लोगों को जो उत्तर

0: में इस समय हम हैं गणपति बाप्पा के उत्सव की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। सार्वजनिक पंडाल और घरों में 14 सितंबर को गणपति बाप्पा विराजमान होंगे। उससे पहले यहां पर तैयारियां जो है वो हम देख सकते हैं। नागपुर में सार्वजनिक जो पंडाल है जहां पे गणपति बाप्पा विराजमान होंगे वहां अलग अलग प्रतिकृतियां बनाने का काम इस समय चल रहा है, अंतिम चरण में काम है।
1: महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। पुणे के कारखानों में दिन रात काम चल रहा है। कहीं बप्पा की आंखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं आकर्षक नक्काशी और रंग रोगन में मूर्तिकार जुटे हुए हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, पेशवाई, बाल गणेश और लालबाग चराजा जैसे अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां यहां दिख रही हैं। 1 फीट से लेकर करीब 12 फीट तक की गणपति मूर्तियां यहां तैयार की जा रही है। विशेष बात यह है कि यहां से भक्त गणपति की मूर्तियां विदेश तक ले जाते हैं।
2: जो स्पेशल कलर है डेपरे वाला गणेश मूर्ति को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा दगड़ू शेठ, लालबाग राजा, बाल गणेश, चिंतामणि, ये गणपति को ज्यादा पसंद करते हैं। और सबसे ज्यादा डेपरे पूरा 75% मेरा 2000 में से 1500-1600 मूर्ति तो डेपरे वाला ही है।
1: पप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है। टिटोडा गणपति से लेकर बच्चों को ध्यान में रखते हुए बाल गणेश भी बनाए गए हैं। मूर्तियों को पसंद करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं।
3: सॉरी से नहीं हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर मूर्ति है तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये लेना है वो लेना है। मतलब सभी मूर्तियाँ बेस्ट है।
4: तो हर बार अलग अलग टाइप का हम डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं। हम इस बार सब महालक्ष्मी देवी या अंबाबाई देवी का डेकोरेशन करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से हमें उस उसके लिए जैसे उस डेकोरेशन को अच्छी लगे ऐसी मूर्ति देखने के लिए हम आए।
1: इस बार भी रंगों के दाम बढ़ने के चलते मूर्तियों की कीमत भी थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन मूर्ति की खरीदारी के लिए भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। पुणे में भी गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और अब घर से लेकर पंडालों तक पप्पा के विराजमान होने की भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुणे से योगेश पांडे और नागपुर से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और बात एक ऐसे युवा आईएएस अधिकारी की जिन्होंने एक शॉर्ट फिल्म के जरिए एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया है। रियल लाइफ में रियल लाइफ आईएएस अश्विनी कुमार ने देवयानी नाम की फिल्म के जरिए बेटी के जन्म और फिर बाकी जिंदगी से जुड़े डर को सामने रखा। 20 मिनट की इस फिल्म के जरिए समाज को जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता का संदेश देने की कोशिश हुई है। पुरुषों की ही तरह महिलाओं को समान अधिकार, अवसर, जिम्मेदारियां और सम्मान मिलने की वकालत की गई है।

0: पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में दिख रहे अभिनेता असल जिंदगी में आईएएस अधिकारी है। देश की प्रशासनिक व्यवस्था के अहम स्तंभ है। फिलहाल असम सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव पद पर हैं। डायरेक्टर के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार निदेशालय का जिम्मा भी इनके पास ही है। नाम है अश्विनी कुमार। अश्विनी राज्य सरकारी नीतियों को लागू करने के अलावा सामाजिक संदेश देती एक शॉर्ट फिल्म से भी जुड़ गए हैं। 20 मिनट की देव यानी नाम की यह शॉर्ट फिल्म महिलाओं की सुरक्षा और समाज की सोच पर एक भावुक कहानी गढ़ती है। अगस्त महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देव यानी रिलीज हो चुकी है। एक पिता और उसकी बेटी के रिश्ते पर आधारित कहानी में आईएएस अश्विनी कुमार मुख्य किरदार निभा रहे हैं। अपने किरदारों के जरिए यह फिल्म महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, सशक्तिकरण और बदलती सामाजिक सोच जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाती है। महिलाओं की सुरक्षा और समाज की सोच को बदलने की नीयत से आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार ने फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है।
1: फिल्म में आपने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को आईएएस आईपीएस का रोल प्ले करते हुए देखा होगा, लेकिन एक शॉर्ट फिल्म ऐसी आई है जिसमें एक रियल के आईएएस ऑफिसर ने एक्टिंग की है।
0: महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने, पुरानी सोच को बदलने के लिए उन्होंने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया है।
2: मेरा सर्विस में आने का सबसे पहला मकसद था कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता था और ऑल दी इश्यूज रिगार्डिंग जेंडर सेंसिटाइजेशन

0: जेंडर एम्पावरमेंट, वो दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में देखा है आसपास लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सीरियसली लेते नहीं हैं. उनको लगता है कि ये चीज़ें हम बात करेंगे पर सीरियसली नहीं लेते हैं. तो वास्तव में मैं कुछ करना चाहता था और वो मुझे दिन प्रतिदिन फील होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. तो वो मैसेज मैं सब तक पहुँचाना चाहता था. मुझे लगा कि सिनेमा का जो माध्यम है, तो आई विल एड्रेस इट एज मोशन पिक्चर्स, वो बहुत ही आराम से आप अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं. और मुझे लगा कि इससे हमारी रीच ज़्यादा बढ़ेगी, जिसमें हमें इस मैसेज को पहुंचाने में बहुत आसानी से हम पहुंचा सकते हैं.
1: बेटी पैदा होने पर माता पिता को समाज, सुरक्षा और भविष्य को लेकर कई तरह की चिंताएं और डर महसूस होने लगता है. समाज की उसी रूढ़िवादी और पिछड़ी सोच को चुनौती देती है फिल्म देवयानी, ताकि अब भी देश के ग्रामीण इलाकों में लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने वाले अभियानों को ताकत मिले.
0: लोगों को लगता है कि उनको एक बेटी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनको दहेज देना पड़ेगा. वो उनको लगता है कि जो घर का नाम है, मतलब फादर का जो नाम है, वंश का जो नाम है, वो सिर्फ एक बेटा ही बढ़ा सकता है. तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोग बेटी इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वो इन सब चीज़ों को सोचते हैं. उनका मेन कारण, वन ऑफ द मेन रीजंस हर किसी का, मुझे जो मुझे लगता है वो ये है कि एक बेटी को अलग टाइप से हमें ज़्यादा जिम्मेदारी से पालना ज़रूरी है. उसको ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है. वो बाहर सेफ नहीं है. बाहर का जो वातावरण, जितना भी आज की रेट में आप जाए बाहर, वो एक लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है. और ये चिंता का विषय बना रहता है. तो ये उस चिंता के विषय को संबोधित करती है, जहाँ पर जो सोसाइटी में एक प्रोटेक्टर है, जो एक पुलिस वाला है.
1: सिनेमा के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी अपने कंटेंट के जरिए लोगों की सोच को बदलने और बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने के लिए सबसे ताकतवर माध्यम बन चुके हैं. यूपी के मेरठ जिले के छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले अश्वनी कुमार 12वीं तक जिले से बाहर नहीं गए. तब तक उनके लिए दुनिया को देखने का माध्यम सिनेमा ही था. 2010 में असम मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी बनने के बाद उनकी उस सोच को बढ़ावा मिला जो बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना किसी एक सरकार या कानून का नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा और नैतिक जिम्मेदारी है. दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
2: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं. नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ. आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों,
4: शुक्र का राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए अनुकूल होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशि के लोगों को सतर्क रहना होगा? क्या है शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं. अविश्वास में विश्वास बसता है जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शुक्र देव अपनी राशि बदल चुके हैं और आज हम ये जानेंगे कि शुक्र देव के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:25 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं शुक्र देव के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र देव के राशि परिवर्तन की स्थिति क्या है। देखिए, शुक्र अभी तक कन्या राशि में विद्यमान थे, अब 2 सितंबर को दोपहर में तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय वृश्चिक लग्न का उदय हो रहा है शुक्र के राशि परिवर्तन के समय और अष्टम भाव में मंगल विद्यमान है। शुक्र और चंद्रमा का संबंध भी बना हुआ है। इस समय रिश्तों को लेकर के सावधानी रखनी होगी। आर्थिक बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा और कीमती धातुओं का मूल्य नीचे की तरफ जा सकता है, उसमें भी उतार चढ़ाव आ सकता है। यानी शुक्र का ये राशि परिवर्तन रिश्तों के मामले में और फाइनेंशियल कंडीशन में जबरदस्त प्रभाव पैदा करेगा
और वो प्रभाव हम सबको अपने जीवन में दिखाई देगा। शुक्र के राशि परिवर्तन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ के तनाव से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जो अलग अलग राशियां हैं उन राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों को पारिवारिक समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है। वृषभ राशि, इस समय सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि, स्वास्थ्य के मामले में और आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। कर्क राशि, धन, वस्त्र और संपत्ति की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, करियर और आर्थिक मामलों में आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन जाएंगे। तुला राशि, करियर, परिवार और जीवन की मनचाही इच्छाएं पूरी होंगी। वृश्चिक राशि, जीवन में कोई मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि, धन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मकर राशि, मानसिक और पारिवारिक अशांति हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है। कुंभ राशि, धन, उपहार और समृद्धि का लाभ आपको मिलेगा। मीन राशि, लोगों से प्रेम और सहयोग मिलने की संभावना बन रही है।
शुक्र के राशि परिवर्तन पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपने ये तो जान लिया कि 12 राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर शुक्र का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है, लाभकारी नहीं है, तो क्या उपाय करेंगे? सामान्यतः शुक्र का राशि परिवर्तन सबके लिए अनुकूल है, फायदेमंद है, लेकिन मेष, वृषभ और मकर राशि के लिए ये परिवर्तन अनुकूल नहीं है। इनको नियमित रूप से श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए, ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करें, नियमित रूप से सफेद मिठाई का दान करना चाहिए और इस समय सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, दौड़ भाग बनी रहेगी,
भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, मानसिक समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुक्र का ये राशि परिवर्तन लोगों के रिश्तों पर, विवाह पर और वैवाहिक जीवन पर गहरा असर डालेगा। जो लोग शनि प्रधान हैं उनकी शादियां तय हो सकती हैं, उनको प्रेम संबंध में लाभ हो सकता है, रिश्तों की समस्या हल हो सकती है। और जो लोग बृहस्पति प्रधान हैं उन्हें धन का, संपत्ति का और समृद्धि का लाभ हो सकता है, उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है। तो अलग अलग स्थितियों के हिसाब से शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और सबके लिए अच्छा ही है। केवल मेष, वृषभ और मकर वालों को अपना ध्यान रखने की जरूरत अवश्य पड़ेगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप किसी केस में या मुकदमे में फंसे हुए हैं तो हर रविवार को भगवान काल भैरव की अगर उपासना करें तो केस और मुकदमे से छुटकारा जल्दी मिलेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 3 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: बात चारधाम यात्रा की, चारधाम की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि आस्था और विश्वास की यात्रा है, और इसमें हर मुश्किल के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कायम रहता है। इस बार अगस्त में भी कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ने साफ कर दिया है कि चारधाम की ओर आस्था का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है।

0: पहाड़ों की चढ़ाई, रास्ते की मुश्किलें और ऊपर से बदलता मौसम, कहीं बारिश तो कहीं भूस्खलन का खतरा, लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था नहीं रुकी।
1: जब भी बरसात की अलर्ट प्राप्त होता है या अत्यधिक बरसात हो रही होती है, ऐसी परिस्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों को कई बार यात्रा को रोकना पड़ता है और इसको कुछ देर के लिए रोका जाता है जब तक कि हालात सामान्य न हो जाएं।
0: जिस रास्ते पर कदम कदम पर मौसम परीक्षा ले रहा था, उसी रास्ते पर श्रद्धालुओं के कदम लगातार चार धाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इसी आस्था और उत्साह की वजह से अब अगस्त में चार धाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले चार साल में इस बार अगस्त का महीना चार धाम यात्रा के लिए सबसे खास रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धाम में श्रद्धालुओं की जबरदस्त रौनक देखने को मिली। अगस्त में चारों धाम में रिकॉर्ड 2,31,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजा अर्चना की। इनमें सबसे ज्यादा भीड़ बद्रीनाथ धाम में रही, जहां 1,25,000 से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुंचे।
2: केदारनाथ धाम में भी मौसम सुहावना बना हुआ है, हालांकि मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद रुद्रप्रयाग प्रशासन अलर्ट मोड पे है। प्रशासन के मुताबिक धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जवान तैनात हैं। इसके अलावा केदारनाथ, लिंचौली, भीमबली, गौरीकुंड सहित तमाम स्थानों पर स्वास्थ्य कैंपों की भी स्थापना की गई है।
0: खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार अगस्त में चार धाम यात्रा में 93,680 श्रद्धालु ज्यादा पहुंचे, यानी मौसम की चुनौती आई लेकिन आस्था के कदम नहीं रुके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। ऑपरेशन सिंदूर में संभाली थी वेस्टर्न कमांड की कमान, 3 ट्रस्टी के नामों का भी ऐलान। राम मंदिर के सीईओ बनने पर जितेंद्र मिश्र के गांव में जश्न, लोगों ने मिठाई बांटकर मनाया जश्न। जितेंद्र मिश्र बोले, खुद को मानता हूं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति। प्रधानमंत्री मोदी के जन सेवा में 25 साल पूरे होने पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पार्टी चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना है मकसद। महाराष्ट्र में अब सरकारी दफ्तरों की कैंटीन, बैठकों और कार्यक्रमों में परोसा जाएगा केवल मिलेट से बना पौष्टिक और संतुलित आहार, मौसमी फल भी होंगे आहार का हिस्सा। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एम्बुलेंस सेवा, परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार, काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा 26 साल संत बने रहने के बाद फिर से वर्दी पहनने वाले मुरैना के गिरवर सिंह तोमर की भी है।
5: कलाकृति हो या कोई जरूरत का सामान, बनाने वाले का हुनर दिखता है, उसके हाथ नहीं। तो फिर कारपेंटर का काम सिर्फ पुरुष ही क्यों करे, महिलाएं भी तो आरी और हथौड़ा उठा सकती हैं। अपनी लगन और मेहनत से इसे अपनी आत्मनिर्भरता का हथियार बना सकती है। शायद इसी सोच के साथ महाराष्ट्र वन विकास महामंडल ने चंद्रपुर और गढ़चिरौली की महिलाओं के लिए ये खास पहल शुरू की है। चंद्रपुर जिले के बल्लार शाह डिपो और गढ़चिरौली जिले के अल्लापल्ली डिपो में करीब 200 महिलाओं को कारपेंट्री की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके तहत महिलाएं लकड़ी की पहचान से लेकर उसे काटने, घिसने और जोड़ने के साथ साथ आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल से फर्नीचर और दूसरे सामान बनाना सीख रही हैं। अच्छी बात यह है कि जिन महिलाओं की ट्रेनिंग पूरी हो रही है वो दूसरी महिलाओं तक इसे पहुंचा भी रही है ताकि एक कड़ी तैयार हो सके। FDCM की ये पहल रंग भी ला रही है, महिलाओं द्वारा तैयार फर्नीचर और मूर्तियों को बाजार भी मिलने लगा है। कहने से डर नहीं भागता, डर के सामने खड़ा होना पड़ता है, खासकर जब बात बच्चों की। अमरावती के DM ने ये बात समझी और विद्यार्थियों के मन से भूत प्रेत का डर भगाने के लिए खुद रात में स्कूल पहुंच गए और पूरी रात वहीं रहे। वहीं परिजनों से संवाद किया, विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी, सबके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया ताकि बच्चे देख सकें कि जो बात उन्हें डरा रही है वो सिर्फ उनके मन का वहम है, सच्चाई नहीं। असल में यहाँ मेला घाट में डोमा आदिवासी आश्रम स्कूल में भूत प्रेत होने की अफवाह तेजी से फैल रही थी और इसे लेकर बच्चों के मन में भी डर बैठ गया था। बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया। ऐसे में छात्रों और परिजनों के मन से असुरक्षा का भाव निकालने के लिए DM आशीष येरेकर ने यह खास पहल की। इस दौरान SP और दूसरे अधिकारी भी शामिल रहे। DM को उम्मीद है कि उनकी ये पहल रंग लाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना के गिरवर सिंह तोमर इन दिनों चर्चा में है और इनकी चर्चा की वजह है इनकी सीआरपीएफ की वर्दी जो इन्हें 26 साल बाद वापस मिली है और चर्चा उन 26 सालों में इनकी जिंदगी में आए बदलावों की भी हो रही है। गिरवर सिंह मुरैना के छिछावली गांव के रहने वाले हैं। सीआरपीएफ में हवलदार थे। 1999 में एक अधिकारी से विवाद के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस घटना से वो इतने दुखी हुए कि परिवार से दूर संतों का जीवन जीने लगे और गिरवर सिंह से गिरवरदास महाराज बन गए। लेकिन वर्दी वापस पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई नहीं छोड़ी। आखिरकार 26 साल बाद पिछले महीने 28 अगस्त को उनके हक में फैसला आया। नौकरी वापस मिली और वर्दी भी। उन्हें छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तैनाती दी गई है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें गुजरात के नाडियाड रेलवे स्टेशन की है, जहां चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में एक यात्री की जान जाते जाते बची। वीडियो में आप देख सकते हैं ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है, तभी एक यात्री दौड़ते हुए कोच H6 की तरफ पड़ता है। यात्री चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पैर फिसल जाता है और वह दरवाजे के हैंडल के सहारे हवा में लटक जाता है। यात्री किसी भी पल प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच के गैप में समा सकता था, लेकिन ठीक उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर मुस्तैद आरपीएफ कांस्टेबल ताजुद्दीन की नजर उस पर पड़ती है और बिना एक सेकंड गवाए ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना वो लटके हुए मुसाफिर को कसकर पकड़ते हैं और पूरी ताकत से प्लेटफॉर्म की ओर खींच लेते हैं। इस आरपीएफ जवान की सूझबूझ और तत्परता की अब हर तरफ तारीफ हो रही है। केदार घाटी की शक्ति और करोड़ों भक्तों की आराध्य देवी काली मठ की मां काली इन दोनों तेवरा यात्रा पर है। मां की दिव्य डोली केदार घाटी के गांव-गांव पहुंच रही है और घर घर जाकर भक्तों को अपना आशीष दे रही है। जहां जहां मां की डोली पहुंच रही है, वहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं, श्रद्धालु पुष्प वर्षा कर रहे हैं और पूरा वातावरण मां काली के जयकारों से गूंज रहा है। मां काली की ये दिव्य यात्रा 15 सितंबर को केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जहां मां काली बाबा केदार के दर्शन करेंगी और हजारों श्रद्धालु मां काली और बाबा केदार के इस दिव्य मिलन के साक्षी बनेंगे।
2: और अब बात करते हैं नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन की। नेपाल में फ्लैश फ्लड से आई तबाही के बाद राहत और रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। बावजूद इसके हजारों लोग अब भी लापता हैं। अपने परिजनों की तलाश में लोग दर दर भटक रहे हैं। अस्पतालों, राहत शिविरों और शवों की पहचान केंद्रों पर लोग तस्वीरों और पहचान संबंधी जानकारी के जरिए अपनों को खोज रहे हैं। वहीं कई ऐसी जगह हैं जहां लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं रस्सी का रोपवे बनाकर लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। नेपाल में भारतीय सेना के जवान और विशेषज्ञ भी राहत बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं।
5: नेपाल में आई आपदा के बाद पीड़ित परिवार अब भी अपनों की तलाश में जुटे हैं। रेस्क्यू बेस उन लोगों की तस्वीरों से भरा हुआ है जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कुछ लोग अपने भाइयों की तलाश कर रहे हैं, तो कुछ ने अपनी बेटियों की तस्वीरें इस उम्मीद में लगाई हैं कि वे उन्हें ढूंढ पाएंगे। नेपाल के संजय तस्वीरों से अपनी पत्नी की पहचान कर रहे हैं। वे अपनी पत्नी की उंगली में पहनी अंगूठी से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें उनकी पत्नी का कुछ पता चल सका है या नहीं।
6: मेरे पीछे जिन्हें आप देख रहे हैं ये संजय हैं और इन कागजों में दरअसल वो अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। इनकी पत्नी लापता हो गई थी, अब वो अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर के आए हैं। उन तस्वीर में उनकी पत्नी के हाथ में अंगूठी है, उनका शव नहीं मिला है। लेकिन यहाँ कागजों में ऐसी जो लिस्ट है ना, इन लिस्ट में इसमें उन लोगों की तस्वीरें हैं जिनके शव नीचे तक गए थे और बहुत क्षत विक्षत अवस्था में थे। अब उन तस्वीरों से वो मिलान करके देख रहे हैं कि कहीं किसी हाथ में उनकी पत्नी की अंगूठी हो तो ये पता चल जाए कि उनकी पत्नी का शव कहाँ पर होगा, या वो जीवित है या नहीं है। वो लापता है, फोन नहीं चल रहा है, लेकिन जीवन इस तरह बेबसी दिखाएगा ये कभी कोई सोच सकता है भला? वो कहाँ है पता नहीं चला, जीवित है ये नहीं पता। लेकिन मरने वालों की जो तस्वीरें मिली हैं वो इस तरह की अवस्था में हैं कि आप चेहरा नहीं पहचान सकते, शरीर के एक एक हिस्से को ये देखते हुए कि कहीं पत्नी के दी प्यार से वो अंगूठी अगर वो दिख जाती है तो पता तो चल जाए कि वो इस दुनिया में है या नहीं।
5: बिहार से नुवाकोट पहुंचे करण अपने भाई की खोज में रात दिन जुटे हुए हैं। नेपाल में जब ये आपदा आई थी तो उनका भाई उस समय एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहा था।
6: ये जितेंद्र शाह की तस्वीर है, इनके भाई करण अपने भाई की फोटो लेकर के पहुंचे हैं पहाड़ों तक, नुआकोट तक। ये कहाँ काम करते थे?
7: ये पावर प्लांट में काम करते थे नीचे में। हम लोग बिहार से हैं, छपरा जिला।
6: आप उनको खोजने आए हैं?
7: खोजने चार दिन से सर इधर आए हैं हम लोग, कोई पता नहीं चल रहा है, ना कोई कुछ भी रिपोर्ट है। एमसीबी में गए थे तो वहाँ पे कुछ लिख के दे दिए, वो बोले कि जाओ साइबर के पास चेक करवाओ। उसमें हम लोग चेक कराए तो जैसे यहाँ पे तस्वीरों में फोटो दिख रहे हैं, छोटा छोटा पीस, और सही उसमें फोटो में
6: इनका दिखा?
7: देखा नहीं, इनका नहीं देखा। कैसे पता चलेगा ये मेरा भाई है कि कौन है? छोटा छोटा पीस है, किसी को पैर है, किसी को मुड़ी है, किसी का हाथ है। उसमें हम कैसे अपना भाई के पहचानेंगे? ना कहीं नाम है मेरा भाई का, ना कहीं का एड्रेस है।
5: आपदा के बाद से ही नेपाल में रेस्क्यू का कार्य लगातार जारी है। राहत और बचाव की ये वो तस्वीरें हैं जिसका इंतजार लोगों को कई दिनों से था। ऐसे में एक भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मलबे में फंसे होने के चार दिन बाद एक 5 साल के बच्चे को बचाया गया और उसे सेना का एक जवान खिचड़ी खिला रहा है और उसको ये आश्वासन दे रहा है कि उसके माँ बाप जल्द ही वापस आएंगे। नेपाल में अब एक साथ दो दो जंग चल रही है। एक तरफ मलबे में जिंदगी की तलाश तो दूसरी तरफ जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। इस आपदा में रास्ते तबाह हो चुके हैं, पुल टूट चुके हैं।
8: मैं त्रिशूली के उस इलाके में हूँ जहाँ पहले कभी एक पुल हुआ करता था। ठीक एक सप्ताह पहले जब ये पुल बह गया, गांव का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बिल्कुल कट गया। एक सप्ताह के बाद एक रोपवे ब्रिज बनाया गया है और अब जो गांव में वहां लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर लाने के लिए, क्योंकि हेली ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो रहा है, अब इस तरह की एक चेन बनाई गई है और उस चेन में देखिए जो गांव के लोग हैं अपना बचा खुचा सामान लेकर के इस रोपवे ब्रिज से एक एक करके धीरे धीरे उन्हें खींच करके लाया गया है। इन रस्सियों के सहारे दरअसल खींच करके अब देखिए जरूरत का सामान है वो एलिवेशन पर है, बिल्कुल त्रिशूली के धारा के ठीक ऊपर से। ये जोखिम भरा है लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि गांव के वो लोग एक सप्ताह से बिल्कुल अलग थलग पड़े हैं। वहां मदद पहुंचाना, खाना पहुंचाना और जैसे और लोगों की जरूरत पड़ती है। देखिए इस तरह वहां एक बुजुर्ग नागरिक हैं, उन्हें बाकायदा लाइफ वेस्ट पहना करके उनके घर में बचा खुचा जरूरत का सामान लेकर के उन्हें इवैक्यूएट किया गया है।
5: ऐसे में सैलाब से कटे गांव और कस्बों तक मदद पहुंचाने के लिए तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। आवागमन और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए नेपाली सेना और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से त्रिशूली नदी के 5 जगहों पर रोपवे बनाए जा रहे हैं। इसी के तहत त्रिशूली में रोपवे के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है।
8: नेपाल की आपदा में जिन इलाकों तक अभी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, जहां हेलीपैड नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब वहां सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके बाद जो लोग एक सप्ताह से ज्यादा अपने घरों से दूर हैं, अपनों से दूर हैं, अब यहां पर जो प्रशासन है उन्होंने इस तरह से देखिए पिलर इरेक्ट किए हैं, उसी के साथ ये रोप ब्रिज बनाया है। इसकी क्षमता एक बार में एक या दो लोगों की है। बुजुर्ग लोग जो है जो गांव के दूसरी तरफ उन्हें निकाला जा रहा है। यहाँ ये वो लोग हैं जो लाइनों में खड़े हैं, जो अपने घरों से परिवार से दूर हैं, अब अपनी जरूरत का सामान लेकर के जाएंगे। और इस तरह पूरे इस वैली ब्रिज जो कहते हैं, आप सिंगल सोचिए कि केबल कार है और इस केबल कार को जो जल्दी जल्दी में बनाया गया है जोखिम भरा लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। और इसीलिए इस केबल कार के जरिए वो त्रिशूली की इस विकराल धारा को पार करते हुए गाँव के उस हिस्से पर जा रहे हैं जो हिस्सा अब तक कटा हुआ था।
5: भारत की टनल रेस्क्यू टीमें नेपाल सेना की मदद कर रही हैं। रसुआ जिले में हाइड्रो पावर टनल के अंदर फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। बचाव कर्मी भारी मशीनरी, हेलीकॉप्टर और एक्सकेवेटर का इस्तेमाल करके उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी भी लापता हैं। नेपाल में तबाह हुए हाइड्रो पावर स्टेशनों में कम 600 से ज्यादा लोग फंसे हैं। रसुआ गढ़ी, लांगटांग, चिली में, अपर त्रिशूली 3A और अपर त्रिशूली 3B में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
8: सबसे ज्यादा नुकसान त्रिशूली की पावर परियोजना में हुआ है, जहां लोग फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए राहत अभियान कार्य चलाया जा रहा है ताकि उन्हें उन टनल से, उन सुरंगों से निकाला जा सके। ऐसे में दुनिया भर की जो एक्सपर्ट हैं, चाहे भारत हो, चीन हो, कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नेपाल की सेना हो, सब मिलकर बड़ा अभियान चला रही है ताकि इस त्रासदी में फंसे हुए उन लोगों को जल्दी से जल्दी निकाला जा सके, क्योंकि ये जिंदगी की जंग है, लड़ाई समय के खिलाफ है। हर घंटे जीने के वो पल जो हैं, वो सांसें हैं, वो कम हो जाती हैं। सबकी कोशिश है कि बाकी बचे हुए लोगों को भी निकाला जा सके।
5: राहत बचाव अभियान में नेपाल के युवा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी के तहत नुआकोट जिले के बिदुर में आपदा प्रभावित परिवारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ये पहल की गई है। यूथ इनिशिएटिव नाम के स्वयंसेवी समूह के युवाओं ने मिलकर हेल्प प्वाइंट बनाया है। इसके तहत मुफ्त संचार सुविधा दी जा रही है। जिन लोगों के फोन बाढ़ में खो गए या नेटवर्क न होने से बंद हैं, उन्हें कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। यही नहीं, फोन और अतिरिक्त बैटरियों का भी इंतजाम किया गया है ताकि लोग अपने लापता परिजनों की जानकारी जुटा सकें। हालांकि बिजली सप्लाई ठप है, लेकिन इस हेल्प प्वाइंट पर मोबाइल चार्ज करने के लिए सोलर बैटरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
9: बहुत लोग अपनी जान गुमा चुके हैं, बहुत जिंदा है, लेकिन अपनी फैमिली के पास वो कॉल कर नहीं पा रहा है, इसके वजह से भी वो बहुत परेशान में है। अब वो कॉल कर पाएंगे तो वो एक तरीका का उनको भी रिलीफ मिलेगा, इसके लिए हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दिन भर में हम 40-45 लोग को कॉल भी हमने वो प्रोवाइड कराए हमने, और आज भी वही कर रहे हैं। अब ये कितना दिन तक जाएगा हमको पता नहीं।
5: आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी नेपाल पहुंच गए हैं। सोनू सूद ने कहा कि उनकी टीम भारत से जरूरी सामान लेकर आई है और प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है।
8: आपदा में लोगों की मदद करने के लिए सोनू सूद यहां पहुंचे हैं। सोनू सूद, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुश्किलें हैं इस समय, जितनी मदद के लिए हाथ आए उतने कम हैं।
10: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जब आप पूरा मंजर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस लेवल का इम्पैक्ट आया होगा, किस तरह उन लोगों को, जब घर नहीं बचे तो आप सोचिए कि लोगों के क्या हाल हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को आगे आना चाहिए, दुनिया भर से जो भी लोग जहां पर भी हैं आगे आइए, और प्लीज मदद के लिए इन लोगों के लिए खड़ा होना बड़ा जरूरी है, ताकि हम नेपाल को वापस उसके कदमों पे खड़ा कर पाए। पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे बहुत सारे दोस्त मित्र, लायंस फाउंडेशन वाले, खालसा एड की फैमिली, सूद चैरिटी फाउंडेशन के सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे मिलकर वापस एक ऐसा मैसेज दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर मदद कर पाए।
5: नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके तहत अब तक कई भारतीयों को रेस्क्यू किया जा चुका है।
8: आप इस गांव के रहने वाले हैं? हाँ। आप इस गांव का है?
11: गांव का है।
8: कितना पॉपुलेशन था गांव का?
11: तो मैं हिंदी में आवे ना।
8: कितना जना था गांव में?
11: इस गांव में 15 मकान।
8: 15 मकान थे। हाँ। पता चला किसी का कहाँ गए वो? कोई जना मिला गांव में? फिर
11: मिला, जना
8: एक मिला, एक मिल गया,
11: एक मिला,
8: सिर्फ एक आदमी,
11: एक आदमी वो मर गया, एक आदमी है।
8: अच्छा,
11: और सब बच गया है।
8: वो भाग कहाँ गए थे? वो
11: ऊपर ऊपर इस जंगल पर
8: टाइम पे भाग गए थे। वो
11: भाग गए थे।
5: भारत ने नेपाल में आपदा से राहत के लिए राहत सामग्री की 5वीं खेप रवाना कर दी। इस मदद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से 5.5 टन जरूरी दवाइयां, विशेष बचाव उपकरण और 11 सदस्यों की एक विशेष रेस्क्यू टीम लेकर 5वां विमान नेपाल के लिए रवाना हो गया है। नेपाल में आई आपदा के पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने के लिए नुवाकोट जिले के एक मंदिर में बौद्ध भिक्षु और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। यहां पीड़ित परिवारों के लिए मंत्रोच्चार के साथ प्रार्थना की गई। जिस तरह दुनिया भर के देशों से बचाव और राहत अभियान में मदद की जा रही है, उम्मीद है कि आपदा प्रभावित इलाकों के हालात तेजी से बदलेंगे और लोगों की जिंदगी जल्द ही पटरी पर लौटेगी। नेपाल से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को मिला पहला सीईओ। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
5: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर का पहला सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अयोध्या की मणिराम दास छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को ऑपरेशन सिंदूर में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने केंद्र की परिवर्तन योजना को दिल्ली में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को सड़क से हटाकर उनकी जगह नए और कम प्रदूषण वाले वाहन लाएगी। इसके लिए दिल्ली में करीब 78,000 पुराने BS3 और BS4 भारी वाहनों की पहचान की गई है। सरकार इन पुराने वाहनों को स्क्रैप कराकर नए BS6 CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए गाड़ी मालिकों को आर्थिक प्रोत्साहन देगी। बिहार की सोन नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर ने नदी किनारे बसे इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

0: नेपाल में भीषण बाढ़ से आई तबाही के बीच भारत की ओर से नेपाल में लगातार मदद भेजी जा रही है। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी नेपाल के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और राहत सामग्री से भरे 4 ट्रक नेपाल सरकार को भेजे हैं। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति के सहयोग से नेपाल पहुंचाई गई इस राहत सामग्री में पीड़ित परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों का विशेष ख्याल रखा गया है। पहाड़ों में बारिश फिलहाल थम गई है। मौसम साफ होते ही केदारनाथ यात्रा ने भी फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बाबा केदार के दर्शन के आस्था लिए हजारों श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम में भी मौसम फिलहाल सुहावना बना हुआ है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में मौसम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।
1: और अब बात कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों की। जन्माष्टमी में अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन पूरा देश कान्हा के रंग में रंग चुका है। मथुरा और अहमदाबाद से लेकर बद्रीनाथ धाम तक भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की भव्य तैयारी है। रंग बिरंगी रोशनी से मंदिरों की सजावट की गई, बाजारों में जन्माष्टमी की रौनक दिखाई देने लगी है, तो घरों में भी लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई है। कहीं कान्हा के लिए पालना सजाया जा रहा है, तो कहीं नंदलाल के लिए नए वस्त्र और आभूषण तैयार किए जा रहे हैं।

0: कान्हा की नगरी मथुरा से लेकर माया नगरी मुंबई तक कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल है। अपने कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मथुरा में अभी से भक्तों का जुटना शुरू हो गया है। ब्रजभूमि में मंदिर रोशन हो उठे हैं और बधाई गीत गूंजने लगे हैं। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर पूरी मथुरा नगरी सजाई और संवारी जा रही है। तमाम मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के शिखर से लेकर द्वार तक मनमोहक सजावट देखते ही बन रही है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान सज धज कर तैयार है। तमाम जो लाइटिंग है, साज सज्जा है, वो बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ की गई है। 5 दिवसीय जो उत्सव है ना, वो आज शुरू हो गया है। और उसकी बात की जाए तो लीला मंच पे भगवान की जो बाल लीला है, भगवान की जो सारी लीलाएं हैं, वो की जा रही है।
0: बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को करीब 200 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। नवनिर्मित रजत कमल में विराजमान ठाकुर गोपाल जी का जन्म अभिषेक विशेष आकर्षण रहेगा। 4 सितंबर को सुबह 5:30 बजे मंगला आरती, सुबह 8 बजे पंचामृत अभिषेक और रात 10 बजे जन्म महाभिषेक होगा। रात 12 बजे भगवान की प्राकट्य दर्शन और आरती के बाद कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय से अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद रजत कमल में ठाकुर जी का जन्म महाभिषेक होगा। वहीं श्रृंगार आरती रात 12:45 से 12:50 तक और शयन आरती रात 1:55 से 2 बजे तक होगी, जबकि श्रद्धालुओं का प्रवेश रात 1:30 बजे तक रहेगा।
1: भगवान का जो उत्सव है वो भगवान सुबह से ही ढोल नगाड़े के साथ मंगला आरती होगी और भगवान कालहंस बंगले में विराज कर सुबह से शाम तक दर्शन देंगे। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो 5 दिवसीय उत्सव में ठाकुर जी की जो आराधना है, जो सेवा है, जो पूजा है और शाम के समय में भगवान का अभिषेक है, ये सारी चीजें होंगी। और वहीं अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है। विशेष प्रसाद यहाँ पंजीरी का, मेवा के लड्डू का, गोला की बर्फी का जो प्रसाद है, पंचामृत है, वो यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अर्पण किया जाएगा।
0: हर साल की तरह इस साल भी मथुरा में कान्हा के जन्मोत्सव के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देश भर से आने वाले इन श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित दर्शन का मौका मिले, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी और सीसीटीवी से निगरानी होगी। इसके अलावा ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि में 5253वां जन्म दिवस बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर में बांट करके मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव सभी में खूब सजावट

0: की जा रही है। यात्रियों को भीड़ से बचाने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से दर्शन कराया जाएगा। सभी मंदिरों के जो प्रबंधक हैं, जो पुजारीगण हैं, जो गोस्वामी बंधु हैं, सबके साथ बैठक करके किसी प्रकार से दर्शनार्थियों को और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन करने में असुविधा ना हो।
1: 4 सितंबर को नंदलाल के प्राकट्य उत्सव के लिए जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम को भी विशेष रूप से सजाया जा रहा है। जन्माष्टमी पर इस मंदिर में दिव्य छटा बिखरेगी।
2: मैं अभी मौजूद हूं जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, जहां पर भी ये जो तैयारियां हैं ये भी देखने को मिल रही है। साज सज्जा जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। इनका कहना है कि एक महीने पहले से ही जन्माष्टमी के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। ये जो थीम है ये फूल बंगले का थीम है, जिसमें 32 अलग अलग तरह के फूल जो हैं वो लाए गए हैं, जिनसे इस पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम दिखाएं तो दूसरी ओर एक पंडाल लगाया हुआ है, जहां जिस पांडाल में भगवान कृष्ण का महाअभिषेक जो है वो होगा। इस ओर ये पांडाल लगा है जहां पे सभी भक्त जो है वो भगवान कृष्ण का महाअभिषेक देख पाएंगे।
1: जन्माष्टमी के दिन यहां 4 अभिषेक और 108 भोग विशेष आकर्षण होंगे। श्रद्धालुओं के लिए लड्डू गोपाल, दुग्ध अभिषेक और झूलन सेवा भी आयोजित होगी।
3: जो भगवान की पोशाक होगी बहुत ही स्पेशल अलंकार से उनको सजाया जाएगा। ये पोशाक हम लोग वृंदावन से स्पेशली ऑर्डर करके बनवा रहे हैं। अभिषेक में 32 प्रकार के फूल हम लोग व्यवस्था की है, और कुछ फूल तो जो यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं है वो हम लोग बेंगलोर से मंगवा रहे हैं। ये दर्शन खुलेंगे 7:30 बजे। 7:30 बजे विशेष अलंकार के साथ जो भी भक्त हैं आगे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे दिन भर में कुछ अभिषेक रहेंगे।
1: जयपुर की तरह ही अहमदाबाद में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य तैयारी की गई है। अहमदाबाद में SG हाईवे पर स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है।
4: आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर की, जहां सुंदर भगवान कृष्ण और राधा की जो प्रतिमा है वो यहां पे देखने को मिल रही है। तैयारियां आप देख पा रहे हैं मंदिर के अंदर की तरफ, तो तैयारियां जरूर से हो रही हैं। बाहर की तरफ टेंट अलग से लगाए गए हैं, क्योंकि सामान्य दिनों के अंदर जो संख्या आती है उससे कहीं ज्यादा संख्या जन्माष्टमी में भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग पहुंचते हैं।
1: जन्माष्टमी पर यहां बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर प्रशासन की ओर से सजावट, जलाभिषेक और प्रसाद के साथ ही पार्किंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है। इस बार यहां विशेष ड्रोन शो के साथ 7 मिनट लाइट एंड साउंड शो की तैयारी भी की जा रही है। यूपी के झांसी में भी राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां तैयार हो रही हैं। कहीं बाल गोपाल के लिए विशेष पालना सजाया जा रहा है, तो कहीं जन्माष्टमी की रात कान्हा के जन्म के साथ ही मंदिरों में होने वाले विशेष आयोजनों को लेकर भी तैयारियां अंतिम दौर में हैं।
5: जन्माष्टमी का कार्य त्यौहार आने वाला है, तो भगवान श्री कृष्ण का ये प्रोग्राम है, त्यौहार है, उनका जन्मदिन है, जन्म दिवस है, तो उनके इसी मौके पर हमने राधा रानी की पोशाक वगैरह, उनके मुकुट वगैरह, मुकुट और उनके हार, उनके जो भी श्रृंगार का सामान है वो सब हम लोगों ने यहाँ से लिया हुआ है। देखिए कृष्ण भगवान तो मतलब सर्वज्ञ हैं, और जन्माष्टमी पे तो उनका विशेष, उत्तर प्रदेश में वृंदावन उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश की धरती पर तो श्री कृष्ण का जन्म के समय, जन्माष्टमी के समय तो बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। और झांसी में तो मटकी, और हमारे हर एक घर में झांसी के श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
1: वैसे इस साल बद्रीनाथ धाम में भी कान्हा के जन्मोत्सव को भव्य तौर पर मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे, और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा के साथ विशेष भोग लगाया जाएगा।
6: श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है, जो अपने 16 कलाओं से युक्त हैं, ऐसे ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण अवतार भाद्रपद मास में परसों यहाँ 4 सितंबर को बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा।
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे ब्रज में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। झांसी से अजय झा, चमोली से कमलनयन सिलोड़ी, जयपुर से रिदम जैन और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ अहमदाबाद से तुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे।
7: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
1: बुधवार 2 सितंबर को लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 374 अंक गिरकर 76,570 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 141 अंक फिसला, ये गिरकर 23,914 पर आ गया। सोने की कीमतों में गिरावट जारी है। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 2,100 रुपए लुढ़का। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,56,100 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 5,000 रुपए की गिरावट देखी गई। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,35,500 रुपए हो गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 2 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 94.97 रुपए हो गई।
7: न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। ऑपरेशन सिंदूर में संभाली थी वेस्टर्न कमांड की कमान। 3 ट्रस्टी के नामों का भी ऐलान। राम मंदिर सीईओ बनने पर जितेंद्र मिश्र के गांव में जश्न। लोगों ने मिठाई बांटकर मनाया जश्न। जितेंद्र मिश्र बोले, खुद को मानता हूं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति। प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा में 25 साल पूरे होने पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पार्टी चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना है मकसद। महाराष्ट्र में अब सरकारी दफ्तरों की कैंटीन, बैठकों और कार्यक्रमों में परोसा जाएगा केवल मिलेट से बना पौष्टिक और संतुलित आहार। मौसमी फल भी होंगे आहार का हिस्सा। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा। परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार। काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोज को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: बंदर भैया हैं कई सारे, लेकिन केला सिर्फ एक, वो भी गाड़ी के अंदर। बाहर बैठे बंदरों की नजर जैसे सिर्फ उसी केले पर टिकी है। कोई शीशे के पास आकर केला लेने की कोशिश कर रहा है तो कोई इंतजार में बैठा है, लेकिन केला है कि हाथ ही नहीं आ रहा। ये पूरा नजारा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बैंक में काम करना हो, सामने सब कुछ दिखाई दे लेकिन अपना कुछ भी हाथ न लगे। बंदरों की ये मजेदार हरकत सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसा रही है। ये छोटी सी बच्ची सचमुच कमाल की है, चेहरे पर मासूमियत और दिल में जीत का जुनून। प्रतियोगिता में हिस्से लेने पहुंची ये बच्ची धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। हर कदम के साथ उसका हौसला बढ़ता जा रहा है। आसपास मौजूद लोग भी बच्ची का उत्साह बढ़ाने के लिए लगातार तालियां बजा रहे हैं। जैसे जैसे बच्ची जीत के करीब पहुंचती है, उसकी आंखों में खुशी और चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आता है। बच्ची की मेहनत और मासूम मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया। इस वीडियो को देखकर आपकी हंसी शायद ही रुक पाए, क्योंकि बाइक पर दूध के साथ सवारी भी खास है। बाइक चला रहा एक शख्स और पीछे बैठा दूसरा व्यक्ति संभाल रहा है भैंस के बच्चे को। यानी सफर बाइक का है, लेकिन सवारी ऐसी कि देखकर हर कोई हैरान रह जाए। भैंस का बच्चा भी बड़े आराम से बाइक पर बैठा नजर आ रहा है। सड़क पर गुजरते इस अनोखे नजारे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर जमकर मजे ले रहे हैं। इन बच्चों ने साबित कर दिया कि मदद के लिए उम्र नहीं, बस एक बड़ा दिल चाहिए। स्कूल के ये बच्चे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी पॉकेट मनी एक साथ जमा कर रहे हैं। जिसके पास जितना है वो उतनी ही खुशी से मदद के बॉक्स में डाल रहा है। किसी ने थोड़े पैसे दिए तो किसी ने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा। बच्चों के चेहरों पर मदद करने की खुशी साफ दिखाई दे रही है। इंसानियत और संवेदनशीलता से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। मासूमियत भरी ये तस्वीरें देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। रंग बिरंगे कपड़ों में सजी ये प्यारी सी बच्ची अपने आसपास मौजूद बकरी के बच्चों के साथ खूब खेल रही है। कभी उन्हें प्यार करती है तो कभी उनके साथ खिलखिलाकर हंसती नजर आती है। बकरी के बच्चे भी बच्ची के साथ ऐसे घुले मिले हैं जैसे दोनों की पुरानी दोस्ती हो। तिब्बती लड़की और उसके रोएदार बकरी के बच्चों के बीच का ये प्यारा रिश्ता लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो दिल जीत रहा है।
7: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगी रोक की। मंदिरों में वीडियो रील बनाने और फोटो खींचने पर लगाम लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 52 प्रमुख मंदिरों में स्मार्टफोन ले जाने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। 1 सितंबर से लागू नए नियम के मुताबिक श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से पहले स्मार्टफोन काउंटर पर जमा करना होगा। इसके लिए प्रति फोन ₹5 चार्ज देना होगा। नए नियम के तहत केवल बिना कैमरे वाले मोबाइल फोन मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। नियम के मुताबिक मंदिर परिसर में फोटो खींचने, रील बनाने और वीडियो रिकॉर्ड करने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। इस नियम के तहत VIP, बड़ी हस्तियों और मशहूर लोगों को भी फोटो या फिर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी। तमिलनाडु सरकार ने यह कदम 2 दिसंबर 2022 को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच के आदेश के आधार पर उठाया है। मंदिर परिसरों में श्रद्धालु खास करके युवाओं के फोटो खींचने, रील बनाने और वीडियो रिकॉर्ड करने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। तमिलनाडु सरकार के नए नियम का उद्देश्य मंदिरों की पवित्रता और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है। तमिलनाडु में मंदिर अधिकारियों को प्रवेश द्वार और मंदिर परिसर के बाहर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा लाउड स्पीकर के जरिए भी श्रद्धालुओं को इस नए नियम की जानकारी देने को कहा गया है। मंदिरों में मोबाइल फोन से रील बनाने और फोटो खींचने पर देश के कई मंदिरों में पाबंदी। तमिलनाडु सरकार के नए नियम को लेकर हमने नोएडा में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
9: ये बहुत सही डिसीजन है। मैं कहती हूँ सभी मंदिरों में ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मंदिर में अगर मोबाइल लेके आते हैं तो एक तो इससे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बाकी मंदिर में और लोगों को दर्शन करने में भी समय लगता है, तो और लोगों को भी दर्शन जल्दी से नहीं हो पाते हैं। तो दर्शन तो भगवान को हमारा और हमारे भगवान के बीच में ही मंदिर, मोबाइल का तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। भगवान के दर्शन करो और अपने मतलब दिल में रखो उसको, दर्शन को।
10: कैमरा मैन होने चाहिए, क्योंकि भगवान का जो ये है विग्रह है, दर्शन करने से ही अच्छा लगना है। तो आजकल तो जो लोग करते हैं कि मोबाइल पे फोटो लेके मंदिरों में दर्शन के लिए नहीं आते, वो गलत है। भगवान को सीधा भगवान के पास जाके दर्शन करना चाहिए, ये अच्छा किया उन्होंने।
11: भगवान के मंदिर में जब हम आते हैं तो हमारे नेत्र भगवान को देखने चाहिए, और ऐसे नॉर्मल लोगों जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम जब कैमरे के साथ आते हैं तो हम भगवान को देखते नहीं, कैमरा देखता है, और जो रियलिटी होती है वो हम अपने आप हृदय में नहीं देख पाते। शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान को नेत्रों से देखना चाहिए, उनको जो पहन रखे हैं भगवान, जो फ्लावर है, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सही कर रहे हैं।
12: हम भगवान के दर्शन करने आए हैं, और भगवान के दर्शन में और जो श्रद्धा है हमें, तो हम बार बार आएंगे दर्शन की। भगवान कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे सजे, हम बार बार भगवान के दर्शन करने आएंगे। अब उसे फोटो लेंगे तो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग गलत तरीके से भी, गलत लोग भी आ जाते हैं फोटो लेने के लिए, और विचारधाराएँ कुछ अलग उनकी रहती हैं, और इस भीड़ में किसी को हम पहचान नहीं सकते। तो दर्शन करने आइए ना कि, इसलिए बैन होना चाहिए।
7: रिलीज से ठीक पहले बदला अरशद वारसी की फिल्म का नाम। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
1: अजय देवगन एक बार फिर दर्शकों को डराने और रोमांचित करने की तैयारी में हैं। शैतान और रेड 2 की सफलता के बाद देवगन फिल्म्स और पैनोरमा स्टूडियोज ने नई हॉरर थ्रिलर फिल्म पर काम शुरू कर दिया है। फिल्म का टाइटल फिलहाल तय नहीं हुआ है। इसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और फिल्म का निर्देशन रोहित जुगराज कर रहे हैं। अजय देवगन, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग आज से शुरू हो चुकी है। कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार किच्चा सुदीप के जन्मदिन पर फैंस को मिला एक बड़ा सरप्राइज। 2 सितंबर को उनकी भव्य ऐतिहासिक फिल्म देवराया की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। फिल्म में किच्चा सुदेव विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट श्री कृष्ण देव राय की भूमिका निभाते नजर आएंगे। सामने आए फर्स्ट लुक में सुदीप शाही अंदाज, मुकुट और पारंपरिक आभूषणों में बेहद दमदार दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री और सुप्रियान्वी पिक्चर स्टूडियोज मिलकर बना रहे हैं। फिल्म की घोषणा के साथ ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। बस 2 दिन बाद सिनेमाघरों में मिर्जापुर द मूवी का भौकाल शुरू होने वाला है। 4 सितंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म के एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन के लिए 69,000 से ज्यादा टिकटों की प्री सेल हो चुकी है और बिना ब्लॉक सीटों के करीब 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो चुका है। ब्लॉक सीटों के साथ प्री सेल कलेक्शन 3,37,00,000 रुपए तक पहुँच गया है। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है और इसका रन टाइम करीब 197 मिनट है। अर्शद वारसी पहली बार डबल रोल में नजर आने वाले हैं और फिल्म के रिलीज से पहले ही इसमें एक बड़ा बदलाव हो गया है।
13: आपके पति की 1 करोड़
1: क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म जीवन बीमा योजना का टाइटल बदलकर अब जीवन्या बीमा कौन कर दिया गया है, यानी एक्टर का डबल रोल, कहानी में डबल कंफ्यूजन और फिल्म का नया नाम।
14: भाई है कौन आप दोनों?
15: मारे हाथ से कोई पीसा छीन कर चला जाए।
1: अभिषेक डोगरा के निर्देशन में बनी ये फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अर्शद वारसी के साथ संजीदा शेख, विजय राज, पूजा चोपड़ा, ब्रजेंद्र काला और अतुल पुरचरे भी अहम भूमिका में नजर आएंगे।
16: तेरी लाइफ में आ गया विनायक नाम का।
7: कहते हैं मंजिल पाने का जज्बा हो तो रास्ते की मुश्किलें छोटी पड़ जाती है, और ये भी कि बात करने से ही बात बनती है। यूपी में बलिया की 7 साल की रागिनी इस बात की मिसाल है। बचपन में एक हादसे में उसका एक पैर खराब हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रागिनी एक पैर से ही करीब 400 मीटर का सफर तय कर स्कूल पहुंचती है, लेकिन उसका ये संघर्ष जब सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आया तो उसकी भावुक अपील प्रशासन तक पहुंची और उसके सपनों को नई उड़ान भी मिली।
17: क्या क्या
18: मिला,
17: मिला है आपको?
18: काट भी मिला है, साइकिल मिठाई मिला है।
17: अच्छा अच्छा, रागिनी पढ़ने जाओगी ना?
18: हाँ।
17: क्या बनोगी?
18: डॉक्टर।
17: क्या बनना है? और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए?
18: आप कुछ नहीं चाहिए।
1: रागिनी को अब कुछ नहीं चाहिए, छोटी सी जरूरत थी पूरी हो गई। अब मासूम चेहरे पर मुस्कान है, गले में डीएम अंकल ने माला पहनाई है, हर जंग जीतने का आशीर्वाद दिया है और हर कदम पर मदद का भरोसा भी। बात रखने से बात बनती है। बलिया की रागिनी ने भी सोशल मीडिया के जरिए एक अपील की थी, जिसने भी सुना और देखा, मासूम का दर्द दिलों को छू गया। उसके भावुक अपील सुनकर बलिया के डीएम मंगल प्रसाद सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए। पहले डॉक्टरों की टीम भेजी और फिर उससे मिलने खुद आए। साइकिल, खेलकूद की एक किट और मिठाइयां दी और हर संभव मदद और इलाज का भरोसा भी। जिस 400 मीटर लंबे रास्ते को रागिनी स्कूल जाने के लिए एक पैर से नापती है, वहां सड़क बनाने का भी भरोसा मिला, ताकि रागिनी अपने सपनों को नई उड़ान दे सके।
17: लोग उसी के गांव में, उसी के घर पे, उसके परिवार से मिलने आए हैं, बिटिया से भी मिले हैं। साइकिल तो एक औपचारिक है, ठीक है, साइकिल तो दिया ही हम लोगों ने, बट हम लोगों का प्रयास ये है कि बिटिया को और उसके परिवार को कोई परेशानी ना हो। जो जो भी हम लोग कर सकते हैं उसके लिए वो सब हर संभव प्रयास करेंगे। इस गांव में स्कूल तक और गांव तक आने का रास्ता बना हुआ है, बट थोड़ा मरम्मत की आवश्यकता, उसको भी हम कराएंगे। इनके यहाँ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम भी ठीक कराएंगे। अभी व्यक्तिगत शौचालय दिया गया है इनको, स्वीकृत हो चुका है वो, इनको पैसा भी मिल चुका है इनके खाते में, वो भी बनवाएंगे। बिटिया को मिल करके और बिटिया से मुलाकात बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। बिटिया टैलेंटेड है और इसको हम लोग एक पूरी किट दिए हैं, जिससे बिटिया खेल कूद सके, पढ़ाई कर सके, और बिटिया की इच्छा है कि वो पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बनना चाहती है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बिटिया का पैर भी जल्दी ठीक हो जाए। हम लोग प्रयास करेंगे, मेडिकल चेकअप भी हम कल करा रहे हैं, चूँकि पुराना केस है ये, 5-6 साल पुराना है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि बिटिया का अगर पैर ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, दोनों पैरों पर चल सकती है, तो यहाँ लखनऊ जहाँ भी ऑपरेशन हो सकता है हम लोग कराएंगे।
1: रागिनी रागिनी से तो आप अब तक परिचित हो ही चुके होंगे। 7 साल के इस मासूम का परिवार यूपी के बलिया जिले के रानीपुर इलाके में रहता है। जब रागिनी महज 6 महीने की ही थी तब एक हादसे में उसका एक पैर खराब हो गया। रागिनी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में उसके लिए कृत्रिम पैर का इंतजाम करना परिवार के लिए आसान नहीं था। लेकिन रागिनी ने हार नहीं मानी। पढ़ाई लिखाई के प्रति उसका लगाव बचपन से था, सो एक पैरों से ही स्कूल जाने की ठान ली।
19: दिक्कत यही होता है कि पढ़ने जाती है एक पैर पे गिर जाती है, रोने लगती है, पैर में दर्द उठ जाता है।
20: पढ़ना चाहती है
19: लड़का जाते हैं तो छपराती है, रोती है, हम लोग का करेजा फटता है।
20: क्या चाहिए आपको?
19: हमको सरकार अनुदान इसको सुविधा कुछ देती तो यही हम चाहते हैं।
1: रागिनी के पास एक पैर नहीं है लेकिन उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं, हौसले बुलंद हैं। और अब जब सोशल मीडिया के इस दौर में उसकी आवाज प्रशासन तक पहुंच गई है तो उसकी उम्मीदों को अब नए पंख भी मिल गए हैं। बलिया से अनिल कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: थाईलैंड में किस्मत बदलने वाली गोल्ड लीफ परंपरा हुई वायरल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही है आपका इंतजार।
1: अल सल्वाडोर में एक ऐसा फेस्टिवल हुआ जिसे देखकर रोमांच भी होगा और हैरानी भी। नेजापा में हुए इस अनोखे फायरबॉल फेस्टिवल में लोग चेहरे ढककर एक दूसरे पर आग से भरी गेंदें फेंकते नजर आए, हवा में उड़ते आग के गोले और उनसे बचने के लिए पीछे भागते लोग। पूरा नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा दिखाई दिया। सड़क पर गिरती गेंदों से आग फैलती रही जबकि देखने वालों की भीड़ चीखती और रोमांचित होती नजर आई। 104 साल पुराने इस आयोजन को ज्वालामुखी विस्फोट की याद में मनाया जाता है। विदेशी पर्यटक भी इस खतरनाक परंपरा को देखने पहुंचे। चीन में 4 महीने के इंतजार के बाद एक बार फिर समुद्र में मछली पकड़ने का काम शुरू हो गया है। 1 सितंबर से रोक खत्म होते ही शानडोंग के बंदरगाहों से हजारों नावें समुद्र की ओर रवाना हो गईं। किंगदाओ और रोंगचिंग से मछुआरों ने नए सीजन की शुरुआत की। इस बार समुद्र में हेयरटेल, स्पेनिश मैकेरल और सिल्वर पॉम्फ्रेट जैसी मछलियां पकड़ने की उम्मीद है। चीन हर साल गर्मियों में मछली पकड़ने पर रोक लगाता है ताकि समुद्री जीवों को प्रजनन और संख्या बढ़ाने का मौका मिल सके। अब मछुआरे अच्छी पकड़ की उम्मीद में समुद्र में उतर चुके हैं। मिस्र के मशहूर राजा तूतन खामून का सोने का मुखौटा एक बार फिर चर्चा में है। मिस्र के संग्रहालय में मौजूद इस ऐतिहासिक धरोहर को एक गाइड ने चीन के सैनशिंगदुई में मिले सोने के मुखौटों से जोड़ा है। गाइड के मुताबिक मिस्र और चीन की प्राचीन सभ्यताओं में कई समानताएं नजर आती हैं। दोनों ही नदियों के किनारे फली फूली संग्रहालय में रखा तूतन खामून का खास दिया भी लोगों का ध्यान खींचता है। मान्यता है कि इसे जलाने पर तूतन खामून और उनकी पत्नी की तस्वीर दिखाई देती है। इस प्राचीन कलाकृति पर बने चित्र का अर्थ 10 लाख साल बताया जाता है। करीब 1000 साल पुरानी बेयॉक्स टेपेस्ट्री अब लंदन में इतिहास की कहानी सुनाने वाली है। 10 सितंबर से ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित होने जा रही इस ऐतिहासिक कढ़ाई में 1066 में नॉर्मन लोगों के इंग्लैंड पर कब्जे की कहानी दिखाई गई है। करीब 70 मीटर लंबी ये टेपेस्ट्री अपने आप में अनमोल धरोहर है और इसे देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। 31 दिसंबर तक के टिकट पहले ही बिक चुके हैं। नुकसान से बचाने के लिए इसे फ्रांस से बेहद सावधानी से खास बॉक्स में ब्रिटेन भेजा गया। इसकी प्रदर्शनी दोनों देशों के बेहतर होते रिश्तों की निशानी भी मानी जा रही है। थाईलैंड में चेहरे पर गोल्ड लीफ लगाने की एक अनोखी रस्म इन दिनों खूब वायरल हो रही है। अयोध्या के एक पार्क में लोग चेहरे पर सोने की पत्तियां लगवाने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि इससे किस्मत चमकती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और कारोबार में सफलता मिलती है। महंगाई और कमजोर कारोबार के बीच छोटे कारोबारी इस परंपरा को अच्छी किस्मत पाने का जरिया मान रहे हैं। एक महिला का दावा है कि पूजा के बाद उसका रुका हुआ बिजनेस सौदा पूरा हो गया, जिसके बाद वो दोबारा आई और इस बार पूरे चेहरे पर गोल्ड लीफ लगवाई। यहाँ पवित्र पानी का आशीर्वाद भी दिया जाता है।
7: और अब आपको दिखाते हैं देश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक की बर्थडे के जश्न की तस्वीरें। जी हाँ, कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने केक काटकर महक का जन्मदिन मनाया और उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की।

0: ये तस्वीर किसी जू में जीवन की जिंदा दिली की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। किसी बाघिन का 22 साल की उम्र को छू लेना आसान नहीं माना जाता, लेकिन 22 साल पूरे कर चुकी बाघिन महक ने ये कर दिखाया है। महक अब 23वें साल में पहुंच गई है और इसी बात ने इस बाघिन को खास बना दिया है। बाघिन महक के 23वें बर्थडे पर कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में जश्न मनाया गया।
1: May God bless you. Happy birthday.
0: दरअसल आमतौर पर चिड़ियाघरों में बाघ बाघिन की उम्र करीब 16 से 18 साल के आसपास मानी जाती है। वहीं जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में इनकी उम्र इससे भी कम हो सकती है। ऐसे में 22 साल की महक सामान्य जू लाइफ से करीब 4 साल आगे निकल चुकी है। यानी महक ने सिर्फ उम्र को ही मात नहीं दी बल्कि उम्र के रिकॉर्ड को भी चुनौती दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी महक एक्टिव है। पानी में अटखेलिया करना, एनक्लोजर की बाउंड्री के आसपास घूमना और पर्यटकों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना, महक आज भी ये सब करती है। हालांकि उम्र का असर दिखना शुरू हो चुका है। उठने में पहले के मुकाबले महक को थोड़ी सी परेशानी होती है, इसीलिए उसकी कैल्शियम डोज बढ़ाई गई है।
2: ये अभी 22 साल की हो चुकी है। 28 अगस्त 2004 में जन्मी थी। ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से उस समय इनका जन्म हुआ था और वहीं से जो 2012 में हमारे कोटा में जू में लाया गया था।
0: महक की उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसकी सेहत अच्छी है। उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक है, दांत और जबड़े मजबूत हैं और वजन भी लगभग सामान्य है। महक की लंबी उम्र के पीछे खानपान और मेडिकल केयर भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हर दिन उसे करीब 8 किलो चिकन और मांस दिया जाता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और आयरन टॉनिक भी, और उम्र को देखते हुए उसकी मेडिकल मॉनिटरिंग भी लगातार होती है। हर 3-4 दिन में उसकी मेडिकल जाँच की जाती है। महक की उम्र का राज सिर्फ उसकी देखभाल में नहीं, वन विभाग के मुताबिक जेनेटिक फैक्टर भी इसकी बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि अच्छी डाइट और मेडिकल केयर के बावजूद हर बाघिन 22 साल तक नहीं पहुंचती। महक का मामला इसलिए भी खास है क्योंकि उम्र बढ़ने के बावजूद उसकी सक्रियता और सेहत काफी हद तक बरकरार है। महक अब सिर्फ अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क की पहचान नहीं बल्कि लंबी उम्र तक जीवित रहने वाली बाघिन की एक मिसाल भी है। 22 साल पूरे, 23वें में कदम, उम्र बढ़ी है, रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन पानी में महक की अटखेलियां और एनक्लोजर में उसकी चाल आज भी बता रही है कि दहाड़ भले ही धीमी हुई हो, महक की कहानी अभी बाकी है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
3: तेनजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स का ऐलान। खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चले खेल चक्कर।
7: खेल मंत्रालय ने साल 2024 के लिए तेनजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। लैंड एडवेंचर श्रेणी में बलजीत कौर और इसकल जांग रिगजिन को चुना गया है। वहीं वाटर एडवेंचर कैटेगरी में पैरा तैराक रिमो साह का नाम है। इनके अलावा उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख और ITVP के पूर्व DIG शिव प्रसाद चमोली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें सम्मानित करेंगी। इस सम्मान के तहत हर विजेता को एक स्टैचू, एक सर्टिफिकेट और 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारत और ब्राजील के बीच 3 अक्टूबर को कोलकाता में होने वाले इंटरनेशनल फ्रेंडली फुटबॉल मैच के टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। मैच साल्ट लेक स्टेडियम में होगा। टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप पर मिल रहे हैं। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने बुधवार को एक्स पर ये जानकारी दी। लंदन में खेले जा रहे लंदन स्क्वॉश क्लासिक में भारत की अनाहत सिंह और रमित टंडन प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अनाहत ने मिस्र की मरियम मेटवाली को सिर्फ 11 मिनट में 11-3, 11-2 से हराया। अब प्री क्वार्टर फाइनल में अनाहत का सामना बेल्जियम की नेले गिलिस से होगा। ये मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। वहीं पुरुष एकल में रमित टंडन ने अब्दुल्ला अल्तमीमी को 11-6, 11-7 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में रमित का सामना टूर्नामेंट के 8वीं वरीयता प्राप्त मोहम्मद अलशोर बागी से होगा।
3: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
8: शुक्र के राशि परिवर्तन से किस राशि को संपत्ति का फायदा होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से कौन सी राशि के लोगों के घर में शुभ कार्य होंगे और शुक्र की राशि परिवर्तन से किनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाएंगी? शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: Good news today.
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: शुक्र के राशि परिवर्तन से किस राशि को संपत्ति का फायदा होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से कौन सी राशि के लोगों के घर में शुभ कार्य होंगे और शुक्र की राशि परिवर्तन से किनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाएंगी? शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO, 3 ट्रस्टी के नामों का भी ऐलान। जितेंद्र मिश्र के गांव में मना जश्न, बटी मिठाइयां। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा, परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। महाराष्ट्र में अब सरकारी दफ्तरों की कैंटीन, बैठकों और कार्यक्रमों में परोसा जाएगा केवल मिलेट से बना पौष्टिक और संतुलित आहार। मौसमी फल भी होंगे आहार का हिस्सा। बद्रीनाथ मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां। इस साल फूलों से नहीं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा मंदिर। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार। काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देना मकसद। भारत को मिली 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया ऐलान। 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का आयोजन होगा।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां बात कर रहे हैं कृष्ण जन्मोत्सव की, जिसके लिए देश भर में भव्य तैयारियां। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में दिव्य सजावट की गई है और जन्मोत्सव के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। देखिए, मथुरा में जन्मोत्सव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वहां पर इस दौरान भक्ति की त्रिवेणी बहेगी। उत्सव में अयोध्या और काशी की छाप रहेगी। काशी विश्वनाथ धाम से बाल गोपाल के लिए विशेष उपहार आज भेजे गए हैं। इन उपहारों में क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद आपको लिए चलेंगे मथुरा, जहां पर दिव्य सजावट हो रही है इस साल जन्मोत्सव के कार्यक्रम में। वहां पर क्या खास होने जा रहा है इसकी जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा दिल्ली, नोएडा और अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव की कैसी धूम है, ये भी आपको तमाम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं बाबा विश्वनाथ की तरफ से बाल गोपाल को भेजे गए उपहार से। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर मथुरा में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं पर काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए चांदी की चम्मच, पायजेब, मुरली और कंगन समेत फल, मेवा और खिलौने उपहार के तौर पर मथुरा भेजे गए हैं। इन उपहारों को पहले बाबा विश्वनाथ को अर्पित करके उनका आशीर्वाद लिया गया। ये तीसरा साल है जब भक्ति के दो बड़े केंद्र यानी काशी और मथुरा में खास अवसर पर उपहारों का आदान प्रदान हो रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट।
1: चांदी के चम्मच, पाजेब, मुरली और कंकर, ये उपहार है लड्डू गोपाल के लिए, जिसे बाबा विश्वनाथ ने भेजा है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, देश भर में उमंग है और मथुरा में खुशियों की सीमा नहीं। इस आनंद को भक्ति की त्रिवेणी और भव्य बना रही है। यानी मथुरा के इस उत्सव में काशी और अयोध्या की भी छाप है। न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर से बल्कि अयोध्या के राम मंदिर से भी जन्मभूमि के लिए उपहार जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम में सबसे पहले उपहारों के साथ पूजा अर्चना हुई, मंत्रोच्चार हुआ। सभी उपहारों को पहले बाबा विश्वनाथ को अर्पित किया गया, उनका आशीर्वाद लिया गया। बाल गोपाल के लिए चांदी के चम्मच, मुरली, कंगन के साथ फल और मेवा भी भेजा गया है। खिलौने भी हैं और मंदिर का प्रसाद भी। पूजा अर्चना के बाद उपहारों को फूलों से सजी गाड़ी पर रखकर मथुरा रवाना किया गया। ये उपहार बेहद खास है क्योंकि ये सनातन के दो दिव्य और दो बड़े आध्यात्मिक केंद्र यानी काशी और मथुरा को प्रेम और भक्ति के धागे से जोड़ते हैं। इस उपहार में श्रद्धा भी और समर्पण भी, उससे बढ़कर सांस्कृतिक आदान प्रदान की परंपरा है जो पिछले दो साल से जारी है। 2024 में पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पहली बार श्री काशी विश्वनाथ धाम से मथुरा में लड्डू गोपाल को उपहार सामग्री भेजी गई थी। सिलसिला आगे बढ़ा तो रंग भरी एकादशी के अवसर पर मथुरा से काशी विश्वनाथ के लिए उपहार भेजे गए और ये नवाचार अब प्रमुख मंदिरों के बीच संवाद, समन्वय और मजबूत संबंधों का प्रतीक बन गया है। काशी विश्वनाथ धाम से भेजे गए ये उपहार गुरुवार को मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचेंगे और जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान कृष्ण की पोशाक शोभा यात्रा के दौरान इन्हें अर्पित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए मथुरा इस वक्त भक्ति और उल्लास के रंग में रंगी हुई है। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। गलियों से लेकर मंदिरों तक रोशनी और भव्य सजावट श्रद्धालुओं का मन मोह रही है। कृष्ण जन्मभूमि पर इस बार खास तैयारियां की गई हैं। पंचरत्नी पोशाक से लेकर रजत कमल और भव्य श्रृंगार तक हर इंतजाम में कान्हा की दिव्यता नजर आएगी। कृष्ण जन्माष्टमी की मध्यरात्रि में भगवान के प्राकट्य के साथ मथुरा जय कन्हैया लाल की गूंज से सराबोर होगी।

0: सड़कों पर सतरंगी शामियाना, चौराहों पर चमक दमक और गली गली रोशनी से गुलजार। मथुरा खुशियों से खिली है और हो भी क्यों ना, कान्हा जी का बर्थडे है, इसलिए हर तरफ आनंद ही आनंद है। श्याम रंग की खूबी यही है, जैसे जैसे मन इसमें रंगता गया और भी उज्जवल होता गया। भक्ति की यही आभा जैसे मथुरा में साकार है। नगर में एंट्री से लेकर भगवान कृष्ण के धाम तक जो भव्य सजावट है, उसमें हर जगह गिरधर गोपाल की छाप है।
1: के जन्माष्टमी महोत्सव के लिए पूरा जो मथुरा है वो सज के तैयार है। हम भूतेश्वर त्राये पर खड़े हुए हैं, ये सीधा श्री कृष्ण जन्म स्थान की तरफ रास्ता जाता है। तो इस तरह ये पूरा जो शहर है, जो चौक चौराहे हैं, वो सजाए गए हैं। और अजन्मे के जन्म के लिए जो तैयारी है ना ब्रज में, बड़ी अद्भुत और अनोखी चल रही है। तो इस तरह ये सजाए गए हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ आए वो भगवान में खो जाए और भगवान का हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। क्योंकि ठाकुर जी की नगरी में जब कोई आए तो उसे चारों तरफ ठाकुर जी की महिमा, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के चलचित्र, ये सारी चीज नजर आए। तो इस तरह के जो मंच हैं वो सभी चौक चौराहे पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला होगी, कहीं पर गायन होगा, कहीं पर मंचन, लीला मंचन होगा। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है पूरे ब्रज में 3 और 4 तारीख को देखने के मिलेंगे। जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे वो भगवान की जो आस्था लेके आए, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने को आए, अजन्मे के जन्म के लिए आए, तो भगवान में खो जाए और भगवान का हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है।
0: अंदाजा है कि जन्मोत्सव पर इस साल 50 से 75 लाख श्रद्धालु मथुरा और ब्रज आने वाले हैं। उत्सव बड़ा है इसलिए तैयारी भी बड़ी है। होली गेट से लेकर द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 16 ऐसे मंच तैयार किए गए हैं जहां भगवान की रास लीला की प्रस्तुति होगी। और हां, श्रद्धालुओं के लिए शानदार सेल्फी पॉइंट भी है।
1: तो पूरे मथुरा शहर की बात करें तो इस तरह के जो सेल्फी पॉइंट है वो यहां बनाए गए हैं। करीब 17 सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ श्रद्धालु आए और भगवान श्री कृष्ण की याद, जो जन्म उत्सव की याद है, उसको यहाँ से ले जाए। इस तरह के होर्डिंग बैनर पूरे जो रास्ता श्री कृष्ण जन्म स्थान की तरफ जाता है, श्री कृष्ण जन्म स्थान से हाईवे की तरफ जाता है, उस पर इस तरह के होर्डिंग बैनर पूरे में लगे हुए हैं। क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ 3 और 4 सितंबर को पहुंचे तो भगवान के चारों तरफ दर्शन नजर आए उसे, और भगवान की नगरी में आकर भगवान को समर्पण हो जाए।
0: जन्मभूमि पर कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष तैयारी है। इस साल जन्मोत्सव पर ठाकुर जी पंचरत्नी पोशाक धारण कर कलहंस पुष्प बंगले में विराजेंगे। पोशाक में समुद्र मंथन से प्राप्त 5 रत्नों, कामधेनु, 5 जन्य शंख, अमृत कलश, ऐरावत और कल्प वृक्ष को उकेरा गया है। रतन जड़ित मुकुट, बांसुरी और नवरत्न जड़ित कंठे से ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाएगा। भगवती योगमाया दिव्य स्वर्ण मुकुट धारण करेंगी। मथुरा में 5 दिवसीय जन्मोत्सव शुरू हो चुका है। जन्मभूमि के विशाल मंदिर परिसर को रंग और रोशनी से सजाया जा रहा है। अंदर बाहर चमक दमक और अद्भुत रौनक है। जैसा कि कार्यक्रम है, 3 सितंबर को शाम 5:30 बजे श्री ठाकुर जी की दिव्य पोशाक की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। भगवान को विशेष वस्त्र, आभूषण एवं श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाएगी। इसी दौरान ठाकुर जी को काशी विश्वनाथ धाम और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से प्राप्त उपहार और अभिषेक सामग्री अर्पित की जाएगी। घंटा घड़ियाल, झांझ बजीरे, मृदंग और डमरू की मंगल ध्वनि और अपार उत्साह के साथ मथुरा जन्मोत्सव मना रही है। जाहिर है तैयारी भी भव्य है। लगभग 200 किलोग्राम चांदी से श्री गर्भगृह के चबूतरे और दीवारों को सुंदर स्वरूप दिया गया है। इसी साल बनाए गए रजत कमल में विराजमान श्री गोपाल जी का जन्म अभिषेक होगा। श्री गर्भगृह के समीप अष्टभुजी माँ योग माया जी के मंदिर को भी भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। 4 सितंबर को यानी जन्मोत्सव के दिन सुबह मंगल आरती होगी, दिन में भजन गायन होगा और जन्म महाअभिषेक का मुख्य कार्यक्रम रात 10 बजे श्री गणेश नवग्रह आदि पूजन से शुरू होगा। इसके बाद 1008 कमल पुष्पों से ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन करते हुए उनका आवाहन किया जाएगा। मध्यरात्रि ठीक 12 बजे भगवान के प्राकट्य के साथ संपूर्ण मंदिर परिसर में ढोल नगाड़े, झांझ मंजीरे और मृदंग बज उठेंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हरि बोल के उद्घोष से मथुरा गूंजेगी। जन्मभूमि पर जैसे देवता उतर आएंगे, इस भव्य महोत्सव के लिए महाकाल की नगरी से डमरू और मृदंग के जाने माने वादकों को आमंत्रित किया गया है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, कान्हा के जन्मोत्सव की आहट के साथ देश भर में भक्ति का रंग गहराने लगा है। मंदिरों से लेकर बाजारों तक तैयारियां जोरों पर है। कहीं पर फूलों और रोशनी से मंदिर सजाए जा रहे हैं तो कहीं पर लल्लू गोपाल के लिए नए वस्त्र, मुकुट और आभूषण खरीदे जा रहे हैं। अहमदाबाद से लेकर आगरा, मालवा और झांसी तक कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक जबरदस्त देखने को मिल रही है। नन्हे बाल गोपाल और राधा के रूप में सजे बच्चे उत्सव का आकर्षण बढ़ा रहे हैं। हर तरफ कन्हैया के आगमन का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए।

0: हे मेरे गिरधर, हे गोपाल, तू ही दुख दूर करे।
1: मन मंदिर में सजे बिहारी।
0: ऐसे भक्ति भाव के बीच कान्हा के जन्म का इंतजार बस अब कुछ ही दिन। इसीलिए सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि लल्ला के स्वागत की भव्य तैयारी है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण, हर ओर श्री कृष्ण जन्म उत्सव की धूम दिखाई दे रही है। कहीं मंदिर सज रहे हैं तो कहीं बाजार कान्हा के रंग में रंगे हुए हैं, और इन सब के बीच नन्हे नन्हे बाल गोपाल भी अपने मनमोहक रूप में उत्सव की रौनक बढ़ा रहे हैं। माथे पर मुकुट, पीताम्बर, हाथ में बांसुरी, लेकिन यहाँ सिर्फ कृष्ण ही नहीं बल्कि साथ में सजी धजी राधा रानी भी हैं। जन्माष्टमी का उत्साह लोगों में साफ दिखाई देने लगा है। अहमदाबाद के एसजी हाईवे स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार यहां लोटस थीम पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वृंदावन से भगवान के लिए खास श्रृंगार और वस्त्र तैयार करवाए गए हैं, जबकि सिंगापुर और मलेशिया समेत अलग अलग जगहों से आए फूलों से गर्भगृह को सजाया जाएगा।
2: आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अहमदाबाद की इस्कॉन मंदिर की, जहां सुंदर भगवान कृष्ण और राधा की जो प्रतिमा है वो यहां पे देखने को मिल रही है, राधा गोविंद जी की प्रतिमा। और खास करके जब जन्माष्टमी होती है तो जन्मोत्सव भगवान का मनाने के लिए बड़ी संख्या में रात को 12 बजे लोगों की मौजूदगी अलग अलग कृष्ण मंदिरों में होती है। अहमदाबाद की इस इस्कॉन मंदिर की बात करें तो हजारों की तादाद में यहां पे लोग पहुंचते हैं और भगवान का जन्मोत्सव धामधूम से मनाया जाता है। तैयारियां आप देख पा रहे हैं, मंदिर के अंदर की तरफ तो तैयारियां जरूर से हो रही है, बाहर की तरफ टेंट अलग से लगाए गए हैं, क्योंकि सामान्य दिनों के अंदर जो संख्या आती है उससे कहीं ज्यादा संख्या जन्माष्टमी में भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग पहुंचते।
0: मंदिर में इस बार 7 मिनट का खास लाइट एंड साउंड शो भी होगा, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके जरिए भक्तों को कृष्ण जन्म के समय के वातावरण का अनुभव करवाया जाएगा। रात 12 बजे 300 ड्रोन के जरिए विशेष शो होगा। भक्त रात 2 बजे तक दर्शन कर पाएंगे और भगवान को 56 भोग के साथ देश विदेश की 600 से ज्यादा चीजें अर्पित की जाएंगी।
3: इस साल हमने एक विशेष 7D शो तैयार किया है मंदिर के गर्भगृह के अंदर ही, कि जहाँ पर जो भी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आएंगे उनको ऐसा फील होगा कि जैसे भगवान जब जन्म लिए थे, जब भगवान प्रकट

0: मिनट का ये शो हर आधे घंटे के अंदर आप जब मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर आएंगे तो आपको ये देखने को प्राप्त होगा। साथ ही साथ रात को जब भगवान प्रकट हुए थे उस समय हम विशेष एक ड्रोन शो इसको मंदिर अहमदाबाद करने जा रहा है इस बार, तो वो सरप्राइज है कि ड्रोन शो में हम क्या दिखाएंगे, लेकिन 300 ड्रोन के माध्यम से हम एक बहुत विशाल ड्रोन शो करने जा रहे हैं।
1: राधा गोविंद जी की सुंदर तस्वीरें, और खास करके जब जन्मोत्सव होता है तो बड़ी संख्या में लोग जन्मोत्सव और भगवान का जन्म दिन मनाने के लिए मंदिरों में रात को 12 बजे पहुंचते हैं। 2 बजे तक भक्तों की भीड़ मंदिरों में होती है और भीड़ भी इतनी ज़्यादा कई बार हो जाती है कि मंदिर को रात के समय पे बंद करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन वृंदावन से विशेष भगवान के लिए श्रृंगार के लिए पोशाक जो है वो तैयार करा दिए गए हैं देश विदेश से, और फूल भी जो है वो यहाँ पे लाए जाएंगे और भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। एक 3D शो का भी इस बार विशेष आयोजन अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में किया जा रहा है।
2: अहमदाबाद में मंदिर के भीतर भक्ति का रंग चढ़ रहा है, तो आगर मालवा में बाजार कान्हा के श्रृंगार से जगमगा रहे हैं। दुकानों पर छोटी बड़ी मूर्तियों के हिसाब से अलग अलग पोशाकें मौजूद हैं। कहीं रंग बिरंगी बांसुरियां हैं, तो कहीं मुकुट, मोतियों और तुलसी की मालाएं।
3: जन्माष्टमी को लेकर हर कोई उत्साहित है, दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी है और हर कोई अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगारित करने के लिए, उन्हें अलग अलग तरह से तैयार करने के लिए खरीदारी में जुटा हुआ है। दुकानों पर भीड़ लगी है, खासकर महिलाएं तरह तरह के पोशाक खरीद रही हैं, बांसुरियां खरीद रही हैं, भगवान कृष्ण के हाथों में पहनाने के लिए कुछ अंगूठियां, कुछ कड़े और उनके सर पर काफे पहनाने के लिए भी विभिन्न तरह के साफों की खरीदारी में।
4: जन्माष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है और इसे हम बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन हम माखन का भोग लगाते हैं, लड्डू जी को बहुत ही उत्साह से अच्छे से मनाते हैं, उनके लिए नए वस्त्र और बहुत सारी चीजें नई नई करते हैं उनके लिए और हमें बहुत खुशी मिलती है।
3: बहुत उत्साह है इस बार, क्या है, पगड़ी, पोशाक, श्रृंगार, जो भी भगवान से रिलेटेड आइटम होता है ग्राहक उत्सुकता से आता है, स्पेशली फोटो लेके आते हैं कि इस टाइप से हमको चाहिए। जैसे काफी आप देख सकते हैं सियासन है, भगवान जी के झूले हैं, माला है, श्रृंगार है, सब बहुत उत्साह से ले जा रहे हैं कस्टमर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ले रहे हैं।
5: जन्माष्टमी का हम हमेशा से मतलब पूरे साल इंतजार करते हैं जन्माष्टमी के त्योहार का, कि भगवान को इतना अच्छा डेकोरेट करें, भगवान को पूरा सजाए और जितना हो सके उतना उत्साह से इसको बनाए। आजकल यंगस्टर्स में इसके प्रति वो उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सब बहुत भगवान के प्रति विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और सब ना बहुत उत्साह से इस त्यौहार को मनाते हैं।
6: जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आगर नगर में भी ग्राहकों में एक उत्साह हर साल जो रहता है उससे और अच्छा उत्साह, लोग जन्माष्टमी का पावन पर्व से बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी का और बच्चों को लेके सजाना, जो स्कूलों में राधा कृष्ण बना के लेके जाते हैं, तो एक अलग ही उत्साह रहता है। और इस साल देखा जा रहा है कि बच्चों को लेके पेरेंट्स, हर वर्ग के लोग उत्साह के साथ में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने की तैयारी में।
2: लड्डू गोपाल के लिए आकर्षक झूले, सिंहासन, गद्दियां और लोटन सोफे भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। कान्हा को सजाने के लिए भक्त अपनी पसंद के मुताबिक सामान चुन रहे हैं। खास बात यह है कि युवाओं में भी खरीदारी को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हाथों की मेहंदी में भी कृष्ण और मोरपंख की छाप दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें झांसी से भी आई हैं। शहर के प्रमुख बाजारों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जन्माष्टमी की रौनक बढ़ने लगी है। झांकी और पंडालों के लिए झालरें, लाइटें, फूल मालाएं और पर्दे खरीदे जा रहे हैं। कान्हा के लिए नई डिजाइन वाली पोशाकों के साथ मुकुट, पगड़ी और आभूषण भी खूब पसंद किए जा रहे हैं।
7: त्योहार आने वाला है तो भगवान श्री कृष्ण का ये प्रोग्राम है, त्योहार है, उनका जन्मदिन है, जन्म दिवस है, तो उनके इसी मौके पर हमने राधा रानी की पोशाक वगैरह, उनके मुकुट वगैरह, मुकुट और उनके हार, उनके जो भी श्रृंगार का सामान है वो सब हम लोगों ने यहाँ से लिया हुआ है। कृष्ण भगवान तो मतलब सर्वज्ञ हैं और जन्माष्टमी पे तो उनका विशेष उत्तर प्रदेश में वृंदावन उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश की धरती पर तो श्री कृष्ण का जन्म के समय, जन्माष्टमी के समय तो बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। झांसी में तो मटकी और हमारे हर एक घर में झांसी के श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। केक काटा जाता है और भी तरह तरह के पकवान बनाकर भगवान को प्रसाद लगाया जाता है।
8: जैसे जन्माष्टमी बहुत पास ही है और ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मैं यहाँ पे पोशाकें लेने आई हूँ आज, जैसे कि उस दिन भड़बड़ी ना हो। मैंने पोशाकें ली है, बंसी ली है, उनके लिए आसन लिया है और अपनी बेटी के लिए, उसकी पहली जन्माष्टमी है तो पूरी राधा

0: रानी की ड्रेस लिए, उसको मैं राधा रानी की तरह तैयार करूंगी। और ये जन्माष्टमी का जो पर्व आता है वो हमें कृष्ण जी की यादों में ले जाता है, बताता है मथुरा के बारे में, बंसी के बारे में।
1: पोशाक ले रही हूँ कान्हा जी के लिए और उनके लिए आसन ले रही हूँ और मुकुट है ये देख रही हूँ।
2: कितना
1: उत्साह तो बहुत है और उनके, हाँ जैसे घर में बच्चे का लिए जन्म के लिए उत्साह होता है वैसे ही वो हमारे लिए लड्डू गोपाल जी जरूर हैं लेकिन मेरे लिए तो सर्वस्व हैं, तो मेरे मन में तो बहुत उत्साह है उनके लिए जन्म दिवस पर।
3: लेकिन सबसे ज्यादा मांग माखन मटकी बांसुरी और झूलों की है। बाल कृष्ण को पालने में झुलाने की परंपरा है और इसीलिए छोटे बड़े आकर्षक झूले लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। बच्चों में तो इसे लेकर खासा उत्साह है, कोई कान्हा बनेगा तो कोई राधा रानी, बांसुरी की धुन, कान्हा का श्रृंगार और जन्मोत्सव की तैयारी, ये झलकियाँ लोगों को और उत्साहित कर रही हैं। कान्हा के आने की आहट है इसीलिए हर ओर सजावट है, दिलों में भक्ति है, आंखों में इंतजार है। अब उस शुभ पल का इंतजार सभी को है जब नंदलाल के जन्म की बधाई गूंजेगी। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर, झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए दिल्ली NCR में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक जबरदस्त दिखने वाली है। न सिर्फ बड़े मंदिरों में चमक दमक है बल्कि बाजार भी सज चुके हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में भारी भीड़ होती है और इसीलिए वहां इंतजाम भी बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। चलिए आपको दिल्ली और नोएडा के इस्कॉन मंदिर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
5: जन्माष्टमी के महापर्व को लेकर नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जो तैयारियां हैं वो अब अंतिम रूप ले रही है। नोएडा के इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो यहां पर सजावट का काम है वो लगातार आपको होता हुआ नजर आ जाएगा, चाहे फिर वो लाइट्स की बात हो, फूलों की बात हो, मंदिर परिसर को आकर्षक रूप देने के लिए पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि दिन का समय है, हालांकि लाइट्स आपको जगमगाती हुई नजर नहीं आएगी लेकिन आप ऊपर की तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहां पर अच्छी खासी लाइट्स की जो अरेंजमेंट है वो नजर आ जाएगा कि किस तरीके से मंदिर में जो लाइट्स का काम है, चाहे मंदिर में अंदर ऑल्टर एरिया की हम बात करें या पूरे बाहर के इस एरिया की बात करें, आपको लाइट्स से मंदिर जो है इस वक्त पूरा सजा हुआ नजर आएगा। लेकिन बात जब फूलों की होती है तो फूलों से भी जो है मंदिर को अच्छा खासा सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर को आकर्षक रूप देने के लिए जो है दो मोर यहां पर स्पेशली लगाए गए, क्योंकि मोर का पंख जो है वो भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय है, तो हर कोई कोई उसकी थीम पर जो है पूरे मंदिर को सजाना चाहता, तो कोई इस तरीके से जो है नकली मोर जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं ताकि मंदिर को और भी ज्यादा जो उसकी खूबसूरती है वो बढ़ाया जा सके। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर को आर्टिफिशियल फूलों से जो है सजाया गया है और जन्माष्टमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है मंदिर पहुंचेंगे, ऐसे में भीड़ का भी जो है पूरी तरीके से जो है उसके भी अरेंजमेंट्स की जा रहे हैं। लेकिन अगर मंदिर के साथ सज्जा की बात करूं तो यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं किस तरीके से मंदिर को जो है वो सजाया जा रहा है। हालांकि ऑल्टर की तस्वीरें भी दिखाएंगे हम आपको कि अंदर किस तरीके से मंदिर को जो है वो आपको सजा हुआ मंदिर जो है नजर आ जाएगा। फूल जो है खासतौर पर वृंदावन से लाए गए हैं ताकि उसी से जो है भगवान श्री कृष्ण का जो पूरा परिसर है उसको सजाया जाए। और अगर हम कपड़ों की बात करें, जो भगवान के जो वस्त्र तैयार करे जाने हैं वो मंदिर के जितने भी डिवोटीज हैं अपने हाथों से खुद एक महीने से जो है उसकी तैयारियां कर रहे हैं
6: कि यहाँ पे वाटरप्रूफ पंडाल लग चुके हैं, बैरिकेटिंग प्रॉपर करी जा चुकी है। आज जो भक्त है, जो भी श्रद्धालु है, जब वो अंदर आएंगे तो मेटल डिटेक्टर्स लगे हैं ताकि उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा सके और किसी को भी कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। प्रॉपर वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आएंगे और दर्शन करेंगे राधा गोविंद देव के। टेंपल में पूरे दिन भर 24 आवर्स कीर्तन चलेगा और पूरे दिन भर भक्त जो है आरती उतार सकते हैं भगवान की, है ना। इसके अलावा प्रसादम में फ्री प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, बाहर काफी सारे स्टॉल्स लगाए जाएंगे, इवनिंग में कल्चरल इवेंट्स है। इस बार 500 से अधिक प्रकार के भी भोग लगाए जाएंगे भगवान को और विभिन्न प्रकार के न केवल देशी बल्कि विदेशी व्यंजन भी है वो भी लगाए जाएंगे, जिसमें पराठे होंगे, पिज्जा, लज़ानिया, माखन मिश्री तो मेन है ही है, धनिया प्रसाद हो गया, खीर हो गई, कचौड़ी हो गई, तो ये सारे हम भोग लगाएंगे। 10 किलो लगभग केक जो होगा उससे ज्यादा का भी है, तो हम ये कर रहे हैं कि 10 किलो से ज्यादा हम केक चढ़ाया जाएगा, भगवान को अर्पित होगा और प्रॉपर जो है उनको ऑफर किया जाएगा और सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, 3 ट्रस्टी के नामों का भी ऐलान। जितेंद्र मिश्र के गांव में मना जश्न, पटी मिठाइयां। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा, परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर हुआ तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। महाराष्ट्र में अब सरकारी दफ्तरों की कैंटीन, बैठकों और कार्यक्रमों में परोसा जाएगा केवल मिलेट से बना पौष्टिक और संतुलित आहार, मौसमी फल भी होंगे आहार का हिस्सा। बद्रीनाथ मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां, इस साल फूलों से नहीं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा मंदिर। मथुरा में रोशनी में नहाई श्री कृष्ण जन्मभूमि। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार, काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। भारत को मिली 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया ऐलान, 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ, करगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज बनाए गए राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव, इससे पहले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की निभा रहे थे जिम्मेदारी। अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य, मंदिर मामले की सुनवाई में निभाई थी अहम भूमिका। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल 3 सदस्यों में महेश भाग चंदका भी शामिल, 2020 में मंदिर के भूमि पूजन में बनाए गए थे मुख्य यजमान। शिक्षाविद डॉक्टर निर्मला यादव भी बनाई गई है राम मंदिर ट्रस्ट की सदस्य। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सजाया जा रहा है बद्रीनाथ मंदिर, मंदिर के सिंह द्वार के ऊपर की गई सजावट। फूलों की जगह इस बार रंग बिरंगी लाइटों से की जा रही है मंदिर की सजावट, रास्तों पर भी सजावट। रंग बिरंगी लाइटों की सजावट से जगमग हुआ भगवान बद्री विशाल का धाम, रात के अंधेरे में दूर तक दिख रही है मंदिर की भव्यता। मंदिर के सिंह द्वार के ऊपर भी की गई विशेष लाइटिंग। 4 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर रात में भी खुले रहेंगे भगवान बद्रीनाथ के कपाट। लड्डू गोपाल के जन्म के बाद भगवान बद्री विशाल को लगाया जाता है भोग, फिर की जाती है शयन आरती। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज। कृष्ण जन्मोत्सव के लिए की जा रही मंदिर सजावट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर राम मंदिर में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भीड़ प्रबंधन के लिए किए गए इंतजाम। मंदिर की सड़क का एक लेन किया गया बंद। जन्माष्टमी के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ के प्रबंधन के लिए लगाए गए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ हथियारबंद जवान भी रहे तैनात। बाबा विश्वनाथ धाम काशी से मथुरा भेजे गए विशेष उपहार। जन्माष्टमी के लिए भगवान लड्डू गोपाल के लिए भेजी गई विशेष उपहार सामग्री। बाबा विश्वनाथ के सामने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद रवाना की गई उपहार भेंट सामग्री। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज। मंदिर में इस बार लोटस थीम पर मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव। अहमदाबाद इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का होगा विशेष श्रृंगार। भगवान लीलाधर के गर्भगृह के श्रृंगार के लिए देश भर के साथ सिंगापुर और मलेशिया से भी मंगाए गए हैं फूल। 56 भोग के साथ साथ देश विदेश की 600 से ज्यादा व्यंजनों को लगाया जाएगा भोग। जन्माष्टमी के दिन रात 2 बजे तक कान्हा के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार विशेष ड्रोन शो और 7 मिनट के लाइट एंड साउंड शो की तैयारी। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज। वृंदावन से मंगाए गए फूलों से की जा रही मंदिर की सजावट। श्री कृष्ण को कई तरह के व्यंजनों के भोग अर्पित करने की तैयारी। 500 से ज्यादा तरह के प्रसाद किए जा रहे हैं इंतजाम। 100 किलो का बनाया जा रहा है केक। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के लिए तैयार की जा रही विशेष ड्रेस। पिछले 1 महीने में पोशाक तैयार करने में जुटे हुए मंदिर के श्रद्धालु। श्रद्धालुओं को बारिश से बचाने के लिए भी किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा करने के लिए विशेष इंतजाम। राजस्थान के जैसलमेर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह जबरदस्त। जैसलमेर में स्थित दर्जन भर से ज्यादा मंदिरों में जबरदस्त रौनक। मंदिर परिसर में स्थित गिरिधारी जी मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां तेज। कान्हा के जन्मोत्सव से पहले मंदिरों में बढ़ी रौनक। मेवों से बने खूबसूरत हिंडोली में ठाकुर जी को चूल्हा जला रहे श्रद्धालु। कृष्णमय हुआ शहर का माहौल। मंदिर में भजन गाते हुए नजर आए श्रद्धालु। मान्यता है कि अर्जुन की प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने जैसलमेर की त्रिकुट पहाड़ी पर सुदर्शन चक्र से खोदा था कुआं। अयोध्या में विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करके सरयू स्नान के बाद पहली बार वृंदावन से किए सुदामा कुटी लाई गई श्री कृष्ण रजत संकल्प शिला। सुदामा कुटी में नाभा पीठाधीश्वर जगतगुरु सीता क्षण दास महाराज के सानिध्य में संतों ने रजत शिला का भव्य स्वागत किया। संकल्प शिला के आगमन पर भक्तिमय हुआ माहौल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जबरदस्त माहौल। वडोदरा के कारेलीबाग में इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा का निर्माण। लगभग 82 किलो नाड़ा छड़ी का इस्तेमाल किया गया। इसके निर्माण में आई है करीब 16,700 रुपए की लागत। पिछले 10 सालों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे। जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल। दही हांडी फोड़ने के लिए कर रहे हैं जबरदस्त तैयारियां। कई स्तर पर मानव पिरामिड बनाने की चल रही है प्रैक्टिस। मुंबई और ठाणे में होती है बड़ी दही हांडी प्रतियोगिताएं। देशभर में विघ्नहर्ता के आगमन की तैयारियां तेज। कर्नाटक के रामनगर में बनाई जा रही है बप्पा की जबरदस्त प्रतिमाएं। प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी गोबर और प्राकृतिक रंगों से किया जा रहा है निर्माण। गणपति को श्रृंगार करने के लिए प्राकृतिक रंगों का किया जा रहा इस्तेमाल। बारीक नक्काशी से हो रही है सजावट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दिखे स्थानीय संस्कृति के जबरदस्त रंग। 15 साल बाद धूमधाम से निकाली जा रही है मां काली की देवरा यात्रा। केदार घाटी में गांव गांव पहुंचकर श्रद्धालुओं को आशीष दे रही है मां काली। केदार घाटी में लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे हैं मां काली के स्वागत। महिलाएं गा रही हैं मंगल गीत। केदार घाटी की शक्ति और करोड़ भक्तों की आराध्य है मां काली। परंपरा के साथ साथ इलाके की सदियों पुरानी संस्कृति और लोक विश्वास का प्रतीक है ये यात्रा। बाबा केदार के भक्तों के लिए राहत भरी खबर, बारिश थमने के बाद मौसम हुआ साफ, शुरू हुई यात्रा। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आस्था का भव्य नजारा, तिरुचेंदूर स्थित प्रसिद्ध अरुमिगुल्ला सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में अवनी उत्सव की शुरुआत। 12 दिन चलेगा यह धार्मिक उत्सव, तमिल महीने में अवनी यानी अगस्त सितंबर में मनाया जाता है यह उत्सव। पारंपरिक ध्वजारोहण के साथ होती है अवनी उत्सव की शुरुआत, विशेष विश्वरूप दर्शन और पूजा अर्चना के लिए उमड़े भक्त। उत्सव में भाग लेने के लिए तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में थूथुकुड़ी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 4 सितंबर को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 लॉन्च करेगा इसरो। आपदा प्रबंधन, मौसम की निगरानी और रणनीतिक सुरक्षा होगी बेहतर। दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय की विभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी दिनाजपुर में नशे के खिलाफ अभियान, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शिरकत की। गोरखपुर एम्स में शुरू हो सकती है एयर एम्बुलेंस सेवा, इस महीने के अंत तक का उद्घाटन हो सकता है। एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग में मानदंडों के मुताबिक तैयार है हेलीपैड, एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से पहले मरीजों के लिए होगी सुविधा। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 48 स्कूली शिक्षकों, 21 उच्च शिक्षा के शिक्षकों और MOSDE के 13 शिक्षकों को मिलेगा अवार्ड। उत्तर प्रदेश के मथुरा इलाके को मिला 1051 करोड़ की लागत से तैयार 230 विकास योजनाओं की सौगात। इसी महीने शुरू हो सकती है बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन। डेंगू चिकनगुनिया से राहत के लिए IIT कानपुर में मच्छरों पर हो रहा है रिसर्च। 100 से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स ने अहमदाबाद में रेलवे ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का किया दौरा। मीड में 4 पीढ़ियों के बाद परिवार में बेटी का हुआ जन्म, जबरदस्त तरीके से हुआ स्वागत। रात में पटाखा निकाली गई शोभा यात्रा, नवजात बच्ची और उसकी मां का ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत। गार्गी रखा गया है मासूम का नाम, लंबे समय के बाद घर में बच्ची की किलकारी। उमस के देरगांव दौरे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा लाचित पुलिस अकेडमी में दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दीक्षांत समारोह के साथ ही 403 नए प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था होगी दुरुस्त, योगी सरकार 15 सितंबर से चलाएगी अनुरक्षण माह, जर्जर और पेड़ की डालियों की होगी छटाई। उत्तर प्रदेश में आयोजित आउटसोर्स कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, सेवा सुरक्षा और हितों के संरक्षण का भरोसा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 78,000 पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलेगी सरकार। BS6 CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए सरकार देगी छूट। दलाई लामा ने तिब्बत और नेपाल में बाढ़ की वजह से जान गंवाने वालों के प्रति जताई संवेदना। गया में OTA ने समर टर्म के लिए आयोजित की कमेंडेंट अवार्ड समारोह। ड्रिल, फिजिकल ट्रेनिंग, हथियार ट्रेनिंग में कैडेट्स का शानदार प्रदर्शन। एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे 254 कैडेट्स बनेंगे अधिकारी, कमांडेंट जनरल ने बढ़ाया हौसला। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने कैडेट्स को चुनौतीपूर्ण तरीके से तैयार रहने की सलाह दी। वडोदरा में पत्र लिखने का प्रतियोगिता किया गया, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए नेपाल पहुंचे सोनू सूद, भारत से लाए कंबल, राशन और बाकी जरूरी सामान। सोनू बोले, संकट के इस दौर में जरूरतमंदों के साथ खड़े होना हम सबका फर्ज है। संकट में नेपाल के साथ खड़ा हुआ भारत, 5.5 टन दवाओं के साथ मदद की 5वीं खेप भेजी गई। नेपाल में रसवा फ्लैश फ्लड पीड़ितों की पहचान करने के लिए भारत की 19 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने संभाला मोर्चा। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन 30, त्रिशूली में मलबा हटाने में जुटी नेपाली सेना। गुजरात में आरपीएफ जवान बना रहे देवदूत, चलती ट्रेन से लटके यात्री को खींच कर बचाया बाहर, रहा सीसीटीवी फुटेज में सामने आया। रोहतास में कैमूर पहाड़ी के इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर वाटरफॉल। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से तबाही, फायर और एसडीआरएफ टीम ने आधा दर्जन परिवारों का रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला। आसनसोल उत्तर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में जल जमाव, लोगों के साथ साथ वाहन चालकों को भी हो रही है परेशानी। गौला नदी और खकरा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में भरा पानी। भारत को मिली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी, पहले श्रीलंका में खेली जानी है प्रतियोगिता। क्रिकेट प्रशासन से जुड़ी समस्याओं की वजह से श्रीलंका से छीनी गई मेजबानी, आईसीसी ने भारत को प्रतियोगिता का मेजबान बनाया। प्रतियोगिता में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका होंगे शामिल। अगले महीने भारत और ब्राजील के बीच होने वाले फ्रेंडली फुटबॉल मैच को लेकर फ्रांस में जबरदस्त क्रेज। मैच के लिए 999 से लेकर 15,000 तक के टिकट, विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ा में खेला जाएगा मैच। मिर्जापुर द मूवी के मेकर्स का बड़ा धमाका, रिलीज से 3 दिन पहले आउट हुआ नया गाना घूम घूम। मनोज वाजपेयी की फिल्म लास्ट मैन इन टावर का ट्रेलर हुआ आउट। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हनुमान अंश ने किया कमाल, मूवी ने 25 दिनों में 47 करोड़ का आंकड़ा पार किया। पर्दे पर आदमखोरों के शिकारी बनेंगे अक्षय कुमार, मशहूर शिकारी और पर्यावरण प्रेमी रहे जिम कॉर्बेट की बायोपिक में करेंगे काम। रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म मैसा की रिलीज डेट का ऐलान हुआ, 27 नवंबर को होगी रिलीज। लंदन स्क्वैश क्लासिक में भारत की अनाहत सिंह ने पहले दौर में मुकाबले में जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। दुनिया की 20वें नंबर की अनाहत ने मिस्र की 30वें नंबर की मरियम को 11-3, 11-2 से हरा दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर को मिली कमान, वैभव सूर्यवंशी को फिर मौका। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स बने बिग बैश लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। यूएस ओपन में डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कारेस की 139 दिन बाद सिंगल्स कोर्ट पर जीत के साथ हुई वापसी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: शुक्र के राशि परिवर्तन से किस राशि को संपत्ति का फायदा होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से कौन सी राशि के लोगों के घर में शुभ कार्य होंगे और शुक्र की राशि परिवर्तन से किनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाएंगी? शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: बात करेंगे चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं होता बल्कि आस्था और विश्वास की यात्रा होती है। इसमें हर मुश्किल के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कायम रहता है। इस बार अगस्त में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री ने साफ कर दिया कि चारधाम की ओर आस्था का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है।

0: पहाड़ों की चढ़ाई, रास्ते की मुश्किलें और ऊपर से बदलता मौसम, कहीं बारिश तो कहीं भूस्खलन का खतरा, लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था नहीं रुकी।
1: जब भी बरसात की अलर्ट प्राप्त होता है या अत्यधिक बरसात हो रही होती है, ऐसी परिस्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों को कई बार यात्रा को रोकना पड़ता है और इसको कुछ देर के लिए रोका जाता है जब तक कि हालात सामान्य न हो जाए।
0: जिस रास्ते पर कदम कदम पर मौसम परीक्षा ले रहा था, उसी रास्ते पर श्रद्धालुओं के कदम लगातार चार धाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इसी आस्था और उत्साह की वजह से अब अगस्त में चार धाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले चार साल में इस बार अगस्त का महीना चार धाम यात्रा के लिए सबसे खास रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धाम में श्रद्धालुओं की जबरदस्त रौनक देखने को मिली। अगस्त में चारों धाम में रिकॉर्ड 2,31,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजा अर्चना की। इनमें सबसे ज्यादा भीड़ बद्रीनाथ धाम में रही, जहां 1,25,000 से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुंचे।
2: केदारनाथ धाम में भी मौसम सुहावना बना हुआ है, हालांकि मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद रुद्रप्रयाग प्रशासन अलर्ट मोड पे है। प्रशासन के मुताबिक धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जवान तैनात हैं। इसके अलावा केदारनाथ, लिंचौली, भीमबली, गौरीकुंड सहित तमाम स्थानों पर स्वास्थ्य कैंपों की भी स्थापना की गई है।
0: खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार अगस्त में चार धाम यात्रा में 93,680 श्रद्धालु ज्यादा पहुंचे, यानी मौसम की चुनौती आई लेकिन आस्था के कदम नहीं रुके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: शुक्र के राशि परिवर्तन से किस राशि को संपत्ति का फायदा होगा? शुक्र के राशि परिवर्तन से कौन सी राशि के लोगों के घर में शुभ कार्य होंगे और शुक्र की राशि परिवर्तन से किनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाएंगी? शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
11: भारतीय वायुसेना को मिली बड़ी कामयाबी, स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम खगंदक 243 का सफल टेस्ट। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO, 3 ट्रस्टी के नामों का भी हुआ ऐलान। जितेंद्र मिश्र के गांव में मना जश्न, बटी मिठाई। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा, परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर हुआ तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। बद्रीनाथ मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां, इस साल फूलों से नहीं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा मंदिर। मथुरा में रोशनी में नहाई श्री कृष्ण जन्मभूमि। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार। काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। भारत को मिली 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, ICC ने वेन्यू और तारीख का किया ऐलान। 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ विस्तार से क्या चर्चा करने वाले हैं। आज का चर्चा का हमारा विषय है शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र अपनी राशि परिवर्तन चूंकि कर चुके हैं, लेकिन इस सब का हमारी और आपकी तमाम राशियों पर किस तरह का असर पड़ेगा और उससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं, पंडित जी इसके बारे में तमाम जानकारियां हमसे साझा करेंगे। उपाय के बारे में भी बताएंगे, महा उपाय के बारे में जानेंगे और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप अपने संतान की, अपने बेटे की, बेटी की उन्नति चाहते हैं तो अपने आहार, विचार और व्यवहार को सात्विक रखिए। माता पिता के कर्म भी संतानों को भुगतने पड़ते हैं, इसलिए संतान हो जाने के बाद अपने आहार, विचार और व्यवहार को सात्विक बनाए रखना चाहिए।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान

0: नक्षत्र चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:25 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा जीरा खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। तमाम सवाल पंडित जी से हम पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है कि शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, आखिर ये मामला क्या है, क्या होता है शुक्र का राशि परिवर्तन?
0: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि शुक्र देव अपनी राशि बदल चुके हैं। शुक्र देव के राशि बदलने का क्या असर पड़ेगा, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है। देखिए, शुक्र देव अभी तक कन्या राशि में विद्यमान थे। अब 2 सितंबर को दोपहर में तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र के राशि परिवर्तन के समय वृश्चिक लग्न का उदय हो रहा है और शुक्र के राशि परिवर्तन के समय अष्टम भाव में मंगल विद्यमान हैं। शुक्र और चंद्र का संबंध भी राशि परिवर्तन के समय में बना हुआ है। अब शुक्र के राशि परिवर्तन से रिश्तों में थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इसलिए इस समय रिश्तों को लेकर सावधानी रखनी पड़ेगी। जो फाइनेंशियल मार्केट है, आर्थिक बाजार है, वहां थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है और कीमती धातुओं का मूल्य नीचे की तरफ जा सकता है, वहां भी उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। किसी कीमती धातु का मूल्य ऊपर जा सकता है और किसी कीमती धातु का मूल्य नीचे आ सकता है।
1: चलिए, इसी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जो आगे जाकर हम इस शो में शामिल करने वाले हैं, आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। लेकिन अब आते हैं राशिफल पर और पहली 3 राशियों का पंडित जी आपको हाल बताएंगे कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की, इनके भाग्य में आज क्या है पंडित जी आपको बताएंगे।
0: मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिख रही है, करियर की समस्या आपकी हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे।

0: कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, यात्रा में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: पंडित जी से सवाल लेते हैं। पंडित जी, सवाल आपसे यह है कि शुक्र के राशि परिवर्तन की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा वो तो बताइए। पहली 6 राशियों के लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, शुक्र के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। शुक्र जो है वो भावनाओं का, पारिवारिक जीवन का, धन और वैभव का स्वामी है, तो इन तमाम मामलों को शुक्र प्रभावित करेगा। क्या करेगा आइए जानते हैं। अगर मेष राशि की बात करें तो पारिवारिक समस्या आपको परेशान कर सकती है, परिवार में दिक्कतें इस समय आ सकती हैं और आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, मानसिक चिंताएं आपको हो सकती हैं। वृषभ राशि, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहिए। यूरिन, किडनी, आंखों की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन, बेवजह की चिंताएं ये आपको परेशान कर सकती हैं। मिथुन राशि, स्वास्थ्य के मामले में और आर्थिक स्थिति के मामले में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मन की चिंताएं, पारिवारिक समस्याएं ये सब दूर होंगी, धन का लाभ होगा और सेहत बेहतर होगी। कर्क राशि, धन की प्राप्ति, वस्त्र की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति होती दिख रही है। मन प्रसन्न होगा, मन में और जीवन में खुशियां आएंगी। सिंह राशि, करियर और आर्थिक मामलों में आपको लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, मनोरंजन में आनंद में व्यस्त रहेंगे, पैसे आएंगे भी और आप आनंद के लिए खर्च भी करेंगे। कन्या राशि, धन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको संपत्ति का लाभ होगा, ये संभावनाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं। पैसे की दिक्कतें, पैसे की किल्लत समाप्त हो जाएगी।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और राशिफल पर वापस आते हैं और अगली 3 राशियों का हाल आपको पंडित जी बताएंगे कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब कर्क सिंह और कन्या वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: अच्छा रहेगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चले आते हैं सवाल जवाब पर, यानी दर्शकों के सवालों को इस शो में शामिल करने का वक्त आ गया है। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर देती हूं कि आप भी कोई भी प्रश्न इस शो में भेजना चाहते हैं, ईमेल के जरिए अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखाते हैं, आप नोट कर लीजिए, इसी ईमेल आईडी पर आपको अपने तमाम सवाल भेजने हैं। तो पहला प्रश्न कौन से दर्शक का आया है वो पंडित जी बताएंगे।
0: जी, आज का पहला प्रश्न वैदेही ने हमें लिखा है और वैदेही हमें राजस्थान से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जून 1996, जन्म का समय सुबह के 8 बजे, जन्म का स्थान है जयपुर, राजस्थान। वैदेही कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, हालांकि मेरा करियर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी शादी अब तक नहीं हो पाई है, तो मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैदेही, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी का समय साल 2027 में बनता है, अप्रैल 2027 से दिसंबर 2027 का जो समय है इसमें आपके विवाह होने की संभावना बन रही है और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से हो सकता है। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके आने वाले समय में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें नहीं हैं। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का। पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक का आया है, कौन सी समस्या का समाधान पंडित जी करने वाले हैं।
0: जी, अगला प्रश्न पीतांबर जी ने हमें लिखा है, बिहार से लिखते हैं। पीतांबर जी की जन्म की तारीख है 30 नवंबर 1965, जन्म का समय रात में 9 बजे, जन्म स्थान है छपरा, बिहार। पीतांबर जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और कुछ न कुछ समस्याएं मेरे स्वास्थ्य में लगातार लगी हुई हैं, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और मुझे क्या उपाय करना चाहिए। पीतांबर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ज्यादातर समस्याएं मानसिक हैं, बेवजह की चिंता, बेवजह का तनाव, बेवजह की परेशानी आपको ज्यादा दिक्कत दे रही है। शरीर में डाइजेशन के अलावा कोई और दिक्कत आपकी दिखाई नहीं दे रही है, तो आप ऐसा करिए पीताम्बर जी, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
1: चलिए शुक्र के राशि परिवर्तन का पहली 6 राशियों के लिए किस तरह का असर रहने वाला है वो तो पंडित जी ने आपको विस्तार से बता दिया है। बाकी बची हुई 6 राशियों के लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन क्या कुछ लेकर आया है, क्या प्रभाव इनका पड़ेगा, वो जानते हैं पंडित जी से विस्तार से।
0: तो हमने आपको 6 राशियों के बारे में बताया कि शुक्र के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा, अब बाकी 6 राशियों के बारे में जानते हैं। तुला राशि की अगर बात करें तो शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, मनचाही इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, विवाह का मामला, धन का मामला, करियर का मामला, ये सारे मामले एक एक करके आपके बेहतर होते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि, जीवन में कोई शुभ और मंगल कार्य होता दिख रहा है, परिवार में कोई विवाह हो जाए, संपत्ति का लाभ हो जाए, आप गाड़ी खरीद लें, आप किसी शुभ कार्य में व्यस्त हो जाएं, ये संभावना आपके लिए बन रही है। धनु राशि, धन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, इस समय आपको धन भी मिलेगा और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस समय आपको संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। मकर राशि, शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, बेवजह की मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, पारिवारिक अशांति हो सकती है, तनाव बिना वजह के आपका बढ़ सकता है। कुंभ राशि, धन का, उपहार का, समृद्धि का लाभ आपको मिलेगा,

0: धन वाले काम पूरे होंगे, रिश्तों की समस्या हल होगी और लोगों से प्रेम और सहयोग आपको प्राप्त होगा।
1: चलिए राशिफल पर आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है, पंडित जी से जानते हैं।
0: तुला राशि, बेवजह की चिंता इस समय परेशान कर सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: शुक्र का राशि परिवर्तन क्या रहने वाला है, राशियों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, ये तो पंडित जी ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं पंडित जी से कि अगर शुक्र का राशि परिवर्तन पंडित जी अनुकूल ना हो तो इस सिचुएशन में आपको क्या कुछ करना चाहिए, कौन कौन से उपाय हैं जो आप बताएंगे हमें।
0: देखिए, कुछ लोगों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, क्या उपाय करना चाहिए। सामान्यतः शुक्र का राशि परिवर्तन सबके लिए अनुकूल ही है, लेकिन मेष, वृषभ और मकर राशि के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। इनको नियमित रूप से श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए, ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। नियमित रूप से सफेद मिठाई का दान करना चाहिए और सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो शुक्र के राशि परिवर्तन से आपको दिक्कतें नहीं होंगी।
1: चलिए, इसी के साथ पहुंच गए हैं इस शो के अंत की तरफ और अंतिम तीन राशियां बची हैं, मकर, कुंभ और मीन की बारी है। जानते हैं इनके लिए आज क्या कुछ खास है।
0: मकर राशि,

बेहतर रहेगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

पालें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहे।

0: जाएंगे, मानसिक समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए दर्शकों के सवालों को एक बार फिर से शो में शामिल करते हैं। और अगला प्रश्न, कौन से दर्शक का आया है इस शो में, कौन सी समस्या आई है, वो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन सा है सवाल।
0: जी अगला प्रश्न हमें दीपक जी ने लिखा है, मुंबई से लिखते हैं। दीपक जी की जन्म की तारीख है 20 मार्च 1978, जन्म का समय रात में 11:55, जन्म स्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश। दीपक जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी बदलना चाहता हूं और साथ में जगह स्थान भी बदलना चाहता हूं, तो इसकी संभावना कब है, क्या मुंबई से बाहर निकल सकूंगा और नौकरी आगे कैसी रहेगी। दीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी बदलने का समय इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में दिखाई दे रहा है, उस समय आप नौकरी भी बदलेंगे और आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। नवंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच में बड़े परिवर्तन की संभावना आपके लिए दिख रही है। एक मोती बनवा के पहने, 8-10 रत्ती का मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है इस शो में दर्शकों का अंतिम सवाल यानी चौथा सवाल लेने की, और पंडित जी ही आपको बताएंगे कि कौन से दर्शक का अंतिम सवाल हमने लिया है।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न सविता जी ने हमें लिखा है, और सविता जी हमें गाजियाबाद से मेल लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म तारीख है 22 नवंबर 2012, जन्म का समय शाम के 6:32, जन्म स्थान है गाजियाबाद। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे की सेहत में अक्सर दिक्कतें लगी रहती हैं, अक्सर उसको चोट चपेट लगती रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा बेटा ठीक रहे। सविता जी, आपके पुत्र की कुंडली के अनुसार मंगल की स्थिति बेहतर ना होने की वजह से बार बार उसकी सेहत बिगड़ती है और बार बार दुर्घटना जैसी संभावनाएं बन जाती हैं। तो आप ऐसा करिए, एक तो अपने बच्चे का ध्यान अगले साल के अप्रैल तक रखिए, अप्रैल 2027 तक, उसके बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे सुबह शाम दोनों समय अपने बच्चे के नाम से हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डालकर अपने बच्चे के गले में मंगलवार को पहनाइए, स्थितियां बेहतर होंगी।
1: चलिए एक और प्रश्न लेते हैं इसी शो से जुड़ा हुआ। पंडित जी ये बताइए, शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में हम लगातार बात तो कर रहे हैं, लेकिन विशेष प्रकार से कौन कौन से फायदे लोगों के जीवन में इससे हो सकते हैं।
0: जी देखिए, शुक्र तुला राशि में चले गए, तुला राशि शुक्र की अपनी बड़ी प्रिय राशि मानी जाती है, इसीलिए शुक्र का तुला में जाना इस बात के लिए अच्छा है कि जो लोग शुक्र या शनि प्रधान हैं, अगर वो विवाह की बात करें, अगर वो रिश्तों की बात करें, अगर वो प्रेम संबंधों की बात करें, तो उसमें उनको फायदा अवश्य होगा। जो लोग बृहस्पति प्रधान हैं वो अगर पैसे के लिए कोशिश करें, अगर प्रॉपर्टी या गाड़ी के लिए कोशिश करें, तो इस समय उनको प्रॉपर्टी का, पैसे का, गाड़ी का लाभ हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक बात जरूर समझिए कि चूंकि बृहस्पति की ऐसी प्लेसमेंट है, शनि की ऐसी प्लेसमेंट है कि लोग थोड़ा एग्रेसिव हो रहे थे, अब थोड़ा माइल्ड होंगे। तो अगर प्रेम से, दुलार से आप संबंध बनाने या संभालने का प्रयास करेंगे तो इस समय शुक्र की वजह से आपको लाभ होगा। लेकिन मेष राशि, वृषभ राशि और मकर राशि के लोग अपने रिश्तों को लेके, अपने वैवाहिक जीवन को लेके, अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर थोड़ा सतर्क रहेंगे।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 3 सितंबर को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 3 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर मध्यम बना रहेगा, अविवाहितों का विवाह हो सकता है, धन के निवेश में सावधानी बनाए रखें। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर जप करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: चलिए पंडित जी आपको बताएंगे आज के शो की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि शुक्र की स्थिति को अच्छा करने के लिए किस देवी या देवता की पूजा करनी चाहिए। शुक्र का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है, इसीलिए शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन माता लक्ष्मी की पूजा अकेले ना करें, माता लक्ष्मी की पूजा श्री हरि के साथ अगर करें तो शुक्र को ताकत मिलेगी और आपके जीवन में वैभव और संपन्नता आएगी।
1: चलिए पंडित जी से अब जानेंगे 3 सितंबर 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 3 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी संतान की और करियर की समस्याएं हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 3 सितंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि आज के शो की गुड लक राशि, जिसके बारे में अक्सर हम जानकारी देते हैं, वो कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु, कौन सी मेटल सबसे ज्यादा बेहतर होती है। आज की गुडलक राशि है मेष। आपके लिए तांबा धारण करना सबसे ज्यादा अनुकूल होता है। ऐसा करने से आप तमाम दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे।
1: चलिए शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में पंडित जी ने आपको तमाम जानकारियां दे दी हैं, कौन सी राशि के लिए कैसा रहने वाला है वो भी बता दिया है, तमाम उपाय आपको क्या करने हैं वो भी जानकारी पंडित जी ने विस्तार से आपको दे दी है। अब बात करते हैं अंत की तरफ बढ़ते हुए खास उपाय के बारे में। तो आज का महा उपाय, जिसका इंतजार अक्सर आपको भी रहता है, उसके बारे में जान लेते हैं पंडित जी से ही।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप किसी अपयश के बदनामी के शिकार हो रहे हैं तो क्या करेंगे। रोज सवेरे जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा और सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। सप्ताह में एक दिन रविवार को नमक का सेवन बंद कर दीजिएगा। आप अपयश और बदनामी से बचेंगे, आपका नाम और यश बढ़ेगा।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जा रही हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: बात करेंगे नंदलाल के स्वागत की तैयारियों की। मथुरा और जयपुर से लेकर अहमदाबाद तक भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों की दिव्य सजावट की गई है, रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर परिसर सराबोर नजर आ रहे हैं। दर्शन पूजन के साथ जन्माष्टमी पर कई ऐसे भव्य आयोजन होंगे जो भक्तों को मंत्रमुग्ध भी कर देंगे।

0: जगह जगह कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियों के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद मंदिर रोशनी से जगमगा रहे हैं। बाजारों में बाल गोपाल के श्रृंगार से लेकर झूले और दूसरे सजावट के सामानों से दुकानें सजी हुई हैं। भक्त खरीदारी में मग्न हैं। ये साफ है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में शुभ मुहूर्त के बारे में भी सटीक जानकारी होना जरूरी है।
1: जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस बार अष्टमी तिथि जो है वो 3 सितंबर की रात को 2:26 से शुरू होगी और 4 सितंबर की मध्य रात्रि के बाद 12:14 तक रहने वाली है। वहीं रोहिणी नक्षत्र की यदि हम बात करते हैं तो रोहिणी नक्षत्र 3 सितंबर को मध्य रात्रि से शुरू होकर 4 सितंबर को 12:14 तक रहने वाला है। तो इन सभी शुभ संयोगों की वजह से जन्माष्टमी जो है वो 4 सितंबर की मनाई जाएगी। अगर मैं शुभ मुहूर्त की निश्चित काल के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो वो होगा 4 सितंबर की रात्रि को 11:57 से लेकर 4 सितंबर की मध्य रात्रि को 12:43 तक निश्चित काल का शुभ मुहूर्त है।
0: इस बार ग्रह नक्षत्रों का शुभ संयोग भी है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ऐसे में इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग जन्माष्टमी की पूजा के महत्व को और बढ़ाने वाला है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं।
1: इस बार ग्रह नक्षत्र जो द्वापर युग में थे उसी तरह के कुछ खास ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, जैसे कि हमसा योग बन रहा है, मालवीय योग बन रहा है। इस बार चंद्रमा भी अपनी उच्च की राशि वृषभ में विराजमान है। वहीं गुरुदेव बृहस्पति भी कर्क राशि में विराजमान है, अपनी उच्च की राशि में है। सूर्यदेव की यदि हम बात करें तो वो स्वयं सिंह राशि में विराजमान है और शुक्रदेव अपनी स्वयं की राशि तुला में विराजमान है। तो ग्रह नक्षत्रों का बहुत शुभ संयोग।
0: इस बार शुभ संयोगों के साथ लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाने की भव्य तैयारी हो चुकी है। ब्रज में नंदलाल के जन्मोत्सव की दिव्य छटा दिख रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर समेत दूसरे मंदिर और रास्तों तक पर भव्य सजावट हो चुकी है। शानदार लाइटिंग से सब कुछ जगमगा रहा है।
2: भगवान श्री कृष्ण के 5,253 जन्मोत्सव के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान सज धज कर तैयार है। तमाम जो लाइटिंग है, साज सज्जा है, वो बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ की गई है। तो 3 तारीख को सुबह में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए भगवान के उत्सव की आगाज करेगी। वहीं शाम में 5:30 के आसपास जो भगवान को पंचरत्नीय पोशाक है वह अर्पण की जाएगी, जो ठाकुर जी जन्मदिन वाले दिन पहनेंगे और अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। और उसी के साथ दूसरे दिन भगवान का जो उत्सव है वो भगवान सुबह से ही ढोल नगाड़े के साथ मंगला आरती होगी और भगवान कालहंस बंगले में विराज कर सुबह से शाम तक दर्शन देंगे। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है करीब 50-75 लाख श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। भगवान का जो उत्सव है ना, बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और वही शहर की बात करें तो पूरा शहर बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जा रहा है। कभी 24 चौराहे हैं और 24 चौराहों के पास 24 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं जहां से श्रद्धालु आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। पूरे शहर को बड़े भव्यता और दिव्यता और ऐसी लाइटिंग के साथ, दूधिया रोशनी के साथ सजाया गया है।
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि में 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी हो रहा है। 4 सितंबर को रात 9 से 10 बजे के बीच भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी दिखाने वाला 15 मिनट का ड्रोन शो यहां आसमान को रोशन करेगा। ठाकुर जी खास कलहंस फूलों वाले बंगले में विराजमान होंगे और पारंपरिक पंचरत्नी पोशाक पहनेंगे। जन्माष्टमी पर लाखों की संख्या में भक्तों के मथुरा पहुंचने का अनुमान है। इसको देखते हुए सुविधा और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी खुद श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। इसी तरह देश के बाकी हिस्सों में भी नंदलाल के जन्मोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 4 सितंबर को नंदलाल के प्राकट्य उत्सव के लिए जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम को भी विशेष रूप से सजाया जा रहा है। जन्माष्टमी पर इस मंदिर में दिव्य छटा बिखरी होगी। आकर्षक सजावट के साथ यहां भक्ति, संगीत और सांस्कृतिक आयोजनों का संगम देखने को मिलेगा।
3: मैं अभी मौजूद हूं जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, जहां पर भी ये जो तैयारियां हैं ये भी देखने को मिल रही है। साज सज्जा जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। इनका कहना है कि एक महीने पहले से ही जन्माष्टमी के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। ये जो थीम है ये फूल बंगले का थीम है, जिसमें 32 अलग अलग तरह के फूल जो हैं वो लाए गए हैं, जिनसे इस पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम दिखाएं तो दूसरी ओर एक पांडाल भी हुआ है, जहां जिस पांडाल में भगवान कृष्ण का महाअभिषेक जो है वो होगा। इस ओर ये पांडाल लगा है जहां पे सभी भक्त जो है वो भगवान कृष्ण का महाअभिषेक देख पाएंगे।
0: जन्माष्टमी के दिन यहां 4 अभिषेक और 108 भोग भक्तों के लिए विशेष आकर्षण होंगे। श्रद्धालुओं के लिए लड्डू गोपाल, दुग्ध अभिषेक और झूलन सेवा भी आयोजित होगी।
4: भगवान की पोशाक होगी, बहुत ही स्पेशल अलंकार से उनको सजाया जाएगा। ये पोशाक हम लोग वृंदावन से स्पेशली ऑर्डर करके बनवा रहे हैं। 32 प्रकार के फूल हम लोग व्यवस्था की है, और कुछ फूल तो जो यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं है वो हम लोग बेंगलोर से मंगवा रहे हैं। 7:30 बजे विशेष अलंकार के साथ जो भी भक्त हैं आगे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे दिन भर में कुछ अभिषेक रहेंगे।
0: जयपुर की तरह ही अहमदाबाद में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य तैयारी की गई है। अहमदाबाद में SG हाईवे पर इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सजावट का काम तेजी से चल रहा है।
5: आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अहमदाबाद की इस्कॉन मंदिर की, जहां सुंदर भगवान कृष्ण और राधा की जो प्रतिमा है वो यहां पे देखने को मिल रही है, राधा गोविंद जी की प्रतिमा। तैयारियां आप देख पा रहे हैं मंदिर के अंदर की तरफ, तो तैयारियां जरूर से हो रही हैं। बाहर की तरफ टेंट अलग से लगाए गए हैं, क्योंकि सामान्य दिनों के अंदर जो संख्या आती है उससे कहीं ज़्यादा संख्या जन्माष्टमी में भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग पहुँचते हैं।
0: जन्माष्टमी के पावन मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस बार मंदिर प्रशासन की ओर से सजावट, जलाभिषेक, प्रसाद के साथ ही पार्किंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा विशेष ड्रोन शो के साथ 7 मिनट के लाइट एंड साउंड शो की तैयारी भी की जा रही है।
6: हमने एक विशेष 7D शो तैयार किया है मंदिर के गर्भगृह के अंदर ही, कि जहाँ पर जो भी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आएंगे उनको ऐसा फील होगा कि जैसे भगवान जब जन्म लिए थे, जब भगवान प्रकट हुए थे मध्य रात्रि में, उस समय जैसा माहौल था वैसा ही माहौल हम इधर इस मंदिर के अंदर ही क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने प्रोग्राम्ड लाइटनिंग सीक्वेंस रखा है, साथ में प्रोग्राम्ड साउंड सिस्टम हमने इस प्रकार से रखा है कि भगवान जब प्रकट, बिजलियाँ कड़की थी, लाइटनिंग ऐसी होगी, फिर जैसे बारिश हो रही थी उस समय, तो मंदिर के अंदर हमने ऐसा प्रोविजन रखा है कि जब वो म्यूजिक बजेगा तो वैसी प्रकार के पानी भी जो है वो गिरेगा। ऑब्वियसली हम गिले नहीं होंगे उस पानी से, लेकिन वैसा इफेक्ट्स हमने डाला है। तो पूरा 7 मिनट का ये शो हर आधे घंटे के अंदर आप जब मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर आएंगे तो आपको ये देखने को प्राप्त होगा। साथ ही साथ रात को जब भगवान प्रकट हुए थे उस समय हम विशेष एक ड्रोन शो इसको मंदिर अहमदाबाद करने जा रहा है इस बार, तो वो सरप्राइज है कि ड्रोन शो में हम क्या दिखाएंगे, लेकिन 300 ड्रोन के माध्यम से हम एक बहुत विशाल ड्रोन शो करने जा रहे हैं।
0: जन्माष्टमी पर यहाँ भगवान को 56 भोग के साथ देश विदेश की 600 से अधिक चीजें अर्पित की जाएंगी। ये मंदिर जन्मोत्सव को लेकर रात 2 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, जयपुर से रिदम जैन और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को लेकर खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी गणेशोत्सव की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। नागपुर से लेकर पुणे तक बप्पा की मूर्तियां भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं, तो दिव्य पंडालों का निर्माण भी किया जा रहा है। बाजारों में भी खूब रौनक है, जहां दुकानें सजावट से लेकर गणपति के श्रृंगार तक के सामान से सजी हुई हैं।

0: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, सामाजिक एकता और लोक परंपरा का एक भव्य उत्सव है। मुंबई से होकर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में 10 दिनों के उत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाले गणेश उत्सव को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर है। मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पंडाल निर्माता भव्य पंडालों का निर्माण करने में लगे हैं। बाजार भी सजे हुए हैं, जहां सजावट से लेकर गणपति के श्रृंगार तक के सभी सामान मिल रहे हैं। ये तस्वीरें नागपुर के एक ऐतिहासिक कला केंद्र और बाजार की हैं, जो विशेष रूप से गणेश मूर्तियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक पंडाल के लिए बड़े और घर में विराजमान होने वाले छोटे गणपति बनाए जाते हैं और इस साल गणेश उत्सव के लिए मूर्तिकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप रंग देने में जुटे हुए हैं।
1: हम लोगों ने इस बार ऐसे सजा के रखी हुई है, पर इस साल लोगों को सिंपल मूर्तियां होना, जैसे आपको दिख रही है, ऐसे सिंपल में ऐसे ज्यादा वो पसंद कर रहे हैं। लोग इको फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल मार्केट में काफी पीओपी बिक रहा है, बट फिर भी लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग ना खरीदे। ये सबसे लोगों को ज्यादा इको फ्रेंडली होना, तो वो ना डेकोरेट ना लेते हुए वो सिंपल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के लिए सजावट से लेकर बप्पा के श्रृंगार के सामानों की खरीदारी के लिए भी बाजार में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद के हिसाब से खरीदारी करते नजर आ रहे हैं।
2: इस बार स्टोन के आइटम, स्टोन के हार, ये ज्यादा चल रहा है, और जिस हिसाब से गणपति के लिए बड़े बड़े हार गोल्डन के, जो आप तस्वीर में देख रहे हो, ये गोल्डन हार की डिमांड अच्छी है, और महालक्ष्मी के हिसाब से भी ये गोल्डन हार अच्छे चल रहे हैं, इनकी भी डिमांड है, गोल्डन हार की डिमांड ज्यादा है। डेकोरेशन के हिसाब से आजकल वेलवेट कपड़ा ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वर्क वाला, और गणपति में बॉर्डर वाला कपड़ा आजकल ज्यादा डिमांड है, जो मेरे यहाँ अवेलेबल है बॉर्डर वाला कपड़ा।
0: नागपुर में गणेश उत्सव की तैयारी अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पंडाल निर्माण से लेकर लाइटिंग और सजावट का काम रफ्तार पकड़ चुका है। ये तस्वीर यहाँ के मशहूर संती सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की है, जहाँ गणेश उत्सव के लिए हर वर्ष देश के अलग अलग मंदिर और धाम को थीम के तौर पर चुना जाता है। इस वर्ष यह बद्रीनाथ धाम जैसी प्रतिकृति बनाई जा रही है।
3: ये इस साल हम संती गणपति मंडल उत्सव में बद्रीनाथ का थीम बना रहे हैं, बद्रीनाथ टेंपल का। वहाँ पे हमने साइट विजिट करके सब लेआउट वगैरह सब देख के जगह के हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा 3 महीने से काम चल रहा है गोडाउन पर, और यहाँ पे साइट पे हमारा 1 महीने से काम चालू हो गया, और ये सब हमारे प्रोडक्ट फाइबर प्रोडक्ट होते हैं, आयरन होता है, बॉटम्स होता है, सब मिक्स मटेरियल में काम होता है, और इसका एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे 1 महीने से, और हमारे यहाँ पे टोटल 50-60 वर्कर काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ टेम्पल में जाके हमने विजिट किया है, वहाँ का सब फील लेके, मेजरमेंट लेके, और थोड़ा एडिटिंग करके फिर हम जगह के हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं।
4: हमारा मंडल बहुत पुराना है, जैसा ये 69वां साल है हमारा, और इस समय हमारा यही यानी प्रोविजन है कि जैसा लोगों को जो उत्तराखंड में नहीं जा सकते चार धाम में, वो यहाँ पे उसी टाइप का एक फील यहाँ पे ले सके, इस टाइप का हमारा विजन है इस बार का।
0: शहर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल बनाए जा रहे हैं।
5: नागपुर में इस समय हम हैं, गणपति बाप्पा के उत्सव की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। सार्वजनिक पंडाल और घरों में 14 सितंबर को गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, उससे पहले यहाँ पर तैयारियां जो है वो हम देख सकते हैं। नागपुर में सार्वजनिक जो पंडाल है जहाँ पे गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, वहाँ अलग अलग प्रतिकृतियां बनाने का काम इस समय चल रहा है, अंतिम चरण में काम है।
0: महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। पुणे के कारखानों में दिन रात काम चल रहा है, कहीं बप्पा की आंखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो कहीं आकर्षक नक्काशी और रंग रोगन में मूर्तिकार जुटे हुए हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, पेशवाई, बाल गणेश और लालबाग चा राजा जैसे अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां यहां दिख रही हैं। 1 फीट से लेकर करीब 12 फीट तक की गणपति मूर्तियां यहां तैयार की जा रही हैं। विशेष बात यह है कि यहां से भक्त गणपति की मूर्तियां विदेश तक ले जाते हैं।
6: जो स्पेशल कलर है डेपरे वाला गणेश मूर्ति को ज्यादा पसंद ही कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दगुड़शेठ, लालबाग राजा, बाल गणेश, चिंतामणि, ये गणपति को ज्यादा पसंद ही करते हैं। और सबसे ज्यादा डेपरे पूरा 75% मेरा 2000 में से 1500-1600 मूर्ति तो डेपरे वाला ही।
0: पप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है। टिटोडा गणपति से लेकर बच्चों को ध्यान में रखते हुए बाल गणेश भी बनाए गए हैं। मूर्तियों को पसंद करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं।
7: सॉल से नहीं हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर मूर्ति है तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये लेना है वो लेना है। मतलब सभी मूर्तियाँ बेस्ट है।
8: तो हर बार अलग अलग टाइप का हम डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं। हम इस बार सब महालक्ष्मी देवी या अंबाबाई देवी का डेकोरेशन करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से हमें उस उसके लिए जैसे उस डेकोरेशन को अच्छी लगे ऐसी मूर्ति देखने के लिए हम आए।
0: इस बार भी रंगों के दाम बढ़ने के चलते मूर्तियों की कीमत भी थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन मूर्ति की खरीदारी के लिए भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। पुणे में भी गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और अब घर से लेकर पंडालों तक पप्पा के विराजमान होने की भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुणे से योगेश पांडे और नागपुर से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: भारतीय वायुसेना को मिली बड़ी कामयाबी, स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम खगंदक 243 का सफल टेस्ट। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, 3 ट्रस्टी के नामों का भी हुआ ऐलान। जितेंद्र मिश्र के गांव में मना जश्न, बटी मिठाई। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा, परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर हुआ तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। बद्रीनाथ मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां, साल फूलों से नहीं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा मंदिर, मथुरा में रोशनी में नहाई श्री कृष्ण जन्मभूमि। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार, काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। भारत को मिली 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया ऐलान, 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। जेएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। देखिए, देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व है, उससे ठीक पहले अब शहर शहर बेसब्री से कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो, आपके आसपास के मंदिरों में अब आपको तैयारी दिखने लगी होगी। शहर शहर प्रसिद्ध मंदिरों से लेकर गली मोहल्लों तक के तमाम मंदिरों में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की परंपरा रही है। लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है कन्हैया के ब्रज में, जहां मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल से लेकर बरसाना तक जन्माष्टमी के रंग बिखरे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। तस्वीरें देखिए।

0: कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी भाद्र मास मनुहार चंद्र वंश रोहिणी नखत दिन विशुद्ध बुधवार वृषभ लग्न में चंद्रमा लग्न राशि एक साथ जब शुभ ये संजोग बना प्रकट भये श्रीनाथ। कोई 5000 साल पहले कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच भाद्रपद अष्टमी की रात मथुरा की काल कोठरी में प्रकाश बनकर स्वयं नारायण प्रकट हुए थे। फिर क्या मथुरा, क्या गोकुल और क्या वृंदावन, यमुना की हर लहर से लेकर गोवर्धन पर्वत के शिखर तक ब्रज की रज रज कृष्णमय हो उठी। मथुरा में जहां आज कृष्ण जन्म स्थान माना जाता है, वहां 5000 साल पहले कटरा केशव देव नाम की जगह पर राजा कंस का कारागार हुआ करता था। उसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। आज कन्हैया की ये जन्मभूमि एक बार फिर प्रकाश से जगमगा रही है। भगवान कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव से पहले पूरे मथुरा को सजाया जा रहा है। ये तो तमाम मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि मंदिर की बात निराली है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान सज धज कर तैयार है। तमाम जो लाइटिंग है, साज सज्जा है, वो बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ की गई है। 5 दिवसीय जो उत्सव है ना, वो आज शुरू हो गया है। और उसकी बात की जाए तो लीला मंच पे भगवान की जो बाल लीला है, भगवान की जो सारी लीलाएं हैं, वो की जा रही है। और वहीं उत्सव की बात की जाए तो 3 तारीख को सुबह में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए भगवान के उत्सव की आगाज करेगी। वहीं शाम में 5:30 बजे के आसपास जो भगवान को पंचरत्नीय पोशाक है, वह अर्पण की जाएगी, जो ठाकुर जी जन्मदिन वाले दिन पहनेंगे और अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे।
0: बताया गया है कि 5 दिवसीय जन्माष्टमी उत्सव से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को करीब 200 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। जन्माष्टमी के दिन नए बने रजत कमल में विराजमान ठाकुर गोपाल जी का जन्म अभिषेक हर बार की तरह इस बार भी विशेष आकर्षण रहने वाला है। 4 सितंबर को सुबह 5:30 बजे भगवान कृष्ण की मंगला आरती होगी, सुबह 8 बजे पंचामृत अभिषेक और रात 10 बजे जन्म महाअभिषेक होगा। रात 12 बजे भगवान के प्राकट्य दर्शन और आरती होगी, जिसके बाद कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय से अभिषेक किया जाएगा। फिर रजत कमल में ठाकुर जी का जन्म महाअभिषेक होगा। वहीं श्रृंगार आरती रात 12:45 से 12:50 बजे तक होगी और शयन आरती रात 1:55 से 2 बजे तक होगी। इस मौके पर जन्मभूमि मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का प्रवेश रात 1:30 बजे तक चालू रहेगा। अगले दिन भी जन्माष्टमी के उत्सव और विशेष दर्शन का ये दौर जारी रहेगा।
1: दूसरे दिन भगवान का जो उत्सव है, वो भगवान सुबह से ही ढोल नगाड़े के साथ मंगला आरती होगी और भगवान कालहंस बंगले में विराजकर सुबह से शाम तक दर्शन देंगे। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो 5 दिवसीय उत्सव में ठाकुर जी की जो आराधना है, जो सेवा है, जो पूजा है और शाम के समय में भगवान का अभिषेक है, ये सारी चीजें होंगी। और वहीं अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है। विशेष प्रसाद यहाँ पंजीरी का, मेवा के लड्डू का, गोला की बर्फी का जो प्रसाद है, पंचामृत है, वो यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अर्पण किया जाएगा, दिया जाएगा भगवान का प्रसाद।
0: हर साल की तरह इस साल भी ब्रजभूमि में जन्मोत्सव के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देश भर से आने वाले इन श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित दर्शन का मौका मिले, इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। शहर में जगह जगह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी और CCTV से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि में 5253वां जन्म दिवस बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर में बांट करके मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव सभी में खूब सजावट की जा रही है। यात्रियों को भीड़ से बचाने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से दर्शन कराया जाएगा। सभी मंदिरों के जो प्रबंधक हैं, जो पुजारीगण हैं, जो गोस्वामी बंधु हैं, सबके साथ बैठक करके किसी प्रकार से दर्शनार्थियों को और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन करने में असुविधा ना हो।
0: ब्रज के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे ब्रजवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ एक साथ मिलकर मनाते हैं। फिलहाल सारा ब्रज अपने लाडले कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारी में जुटा है।
1: भगवान का जो उत्सव है ना, बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और वही शहर की बात करें तो पूरा शहर बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जा रहा है। कभी 24 चौराहे हैं और 24 चौराहों के पास 24 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, जहां से श्रद्धालु आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। पूरे शहर को बड़े भव्यता और दिव्यता और ऐसी लाइटिंग के साथ, दूधिया रोशनी के साथ सजाया गया है कि जो भी यहाँ आए ठाकुर जी का जन्म उत्सव बनाने, वो एक अच्छा संदेश लेके जाए और भगवान के प्रति जो आस्था है, जो समर्पण है, जो विश्वास है, जो ठाकुर जी के प्रति समर्पण, विश्वास और जो श्रद्धा है उसको लेके आए, वो उसकी श्रद्धा में कहीं कोई भाव अधूरा ना रहे। इसी को देखते हुए पूरे नगर को, पूरे ब्रजमंडल को अजन्मे के जन्म के लिए तैयार किया जा रहा है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
3: अनोखा है ब्रज और उतने ही अनूठे हैं ब्रज के बाल गोपाल। कान्हा ने जहां ब्रज भूमि को अपनी बाल लीलाओं और रास के रंग का साक्षी बनाया, तो वहीं कुरुक्षेत्र की धरती उनके मुख से निकले गीता ज्ञान सागर की गवाह बनी। भगवान कृष्ण की जीवन लीलाएं अद्भुत हैं। वह ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इंसानों की जिंदगी से जुड़े हर भाव और हर संवेदना को जिया है। श्री कृष्ण के जीवन में घटी घटनाओं में मानव जीवन के लिए वो तमाम संदेश छुपे हुए हैं जिन्हें समझे जाने की जरूरत है। भगवान कृष्ण के ब्रज में बीते बाल्यकाल से लेकर कुरुक्षेत्र में महाभारत के रण तक उनके जीवन की कहानियां अंधेरे में बिखरी रोशनी की तरह हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण की कुछ प्रिय वस्तुएं जैसे मोरपंख, बांसुरी, दर्शन चक्र वगैरह, ये सभी अपने आप में कई सीख समेटे हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। सबके पहले बात मोरपंख की। भगवान कृष्ण का मोरपंख समझाता है कि जीवन में सभी तरह के रंग होते हैं, जैसे कि सुख, दुख, प्रेम, करुणा, रिश्ते आदि। अगर इन रंगों को सलीके और मर्यादा में रखा जाए तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। जरूरत है तो सिर्फ सही तालमेल की। इसी तरह भगवान कृष्ण की बांसुरी भी सुंदर संदेश देती है। बांसुरी में 8 छेद होते हैं, ये जीवन का प्रतीक है। इसमें जो छेद हैं वो कमियां हैं। कृष्ण कहते हैं जीवन में लाख कमियां हो लेकिन जीने का तरीका और सोच सकारात्मक हो तो कमियों के बावजूद जीवन को मधुरता से जिया जा सकता है। तो वहीं वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्या सीख समेटे हुए है, ये भी आपको बता दें। तो वहीं वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्या सीख समेटे है, ये भी आपको बता देते हैं। वैसे तो ये हथियार है लेकिन नाम है सुदर्शन। सु प्लस दर्शन, यानी जो दिखने में बहुत सुंदर हो, प्रभावशाली हो। इंसान के लिए उसका व्यक्तित्व ही सुदर्शन चक्र है। लोग आपके व्यक्तित्व को देखकर ही व्यवहार करते हैं। अगर व्यक्तित्व सुदर्शन है तो आपकी हर जगह जीत तय होगी। भगवान कृष्ण वैजयंती माला भी धारण करते हैं। कमल के फूल के बीजों से बनी माला को वैजयंती माला कहा जाता है। ये बीज बहुत सख्त होते हैं, आसानी से टूटते नहीं। ये सिखाते हैं कि इंसान को हर तरह की परिस्थिति में खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, जीत तभी मिलती है। और अंत में बात बाल गोपाल के पसंदीदा माखन मिश्री की। माखन नर्म और एकदम पिघलने वाला होता है, जबकि मिश्री सख्त होती है लेकिन माखन में घुलकर मिठास देती है। ये सिखाता है कि हमारा स्वभाव माखन की तरह नर्म और व्यवहार मिश्री की तरह घुलने वाला होना चाहिए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको मथुरा की तस्वीरें दिखाई, अब आपको लेकर चलते हैं वृंदावन। लेकिन ये ब्रज का वृंदावन नहीं है बल्कि राजस्थान की धरती पर मौजूद गुप्त वृंदावन धाम है। जयपुर का गुप्त वृंदावन धाम श्री कृष्ण का भव्य मंदिर है। 4 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम मनाने की पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। भगवान कृष्ण के लिए खास फूल बंगला झांकी तैयार हो रही है, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विशालकाय पंडाल लगाया गया है। भगवान के लिए 108 प्रकार का विशेष भोग बन रहा है। गुप्त वृंदावन धाम में इस बार जन्माष्टमी पर 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचने की पूरी संभावना है। ऐसे में भक्तों की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए दर्शन सुगम बनाने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या खास होने वाला है जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, इस बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रीतम जैन।
4: मैं अभी मौजूद हूं जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, जहां पर भी ये जो तैयारियां हैं ये भी देखने को मिल रही है। साज सज्जा जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। इनका कहना है कि 1 महीने पहले से ही जन्माष्टमी के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। ये जो थीम है ये फूल बंगले का थीम है, जिसमें 32 अलग अलग तरह के फूल जो हैं वो लाए गए हैं, जिनसे इस पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है जो भगवान का दरबार है सिर्फ उसका जो सजावट है वो की जाती है, पर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा मंदिर फूलों से सजेगा। फूल बंगला जो है वो उसको कहा जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे सिर्फ जयपुर में मिलने वाले नहीं पर बाहर से भी कई सारे फूल हैं वो मंगवाए गए हैं। बहुत ही कलरफुल ये जो डेकोरेशन है ये यहाँ पे किया जा रहा है। भगवान कृष्ण की पोशाक की मैं बात करूँ तो पोशाक वृंदावन से आ रही है। खास पोशाक जो है वो भगवान कृष्ण के लिए उनके जन्मोत्सव के लिए बनवाई जा रही है, जो कि वृंदावन से आ रही है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग रंगों के जो प्रॉप्स हैं वो रखे हुए हैं, जिनकी सजावट चल रही है। 2 दिन का समय अभी बच रहा है, जिन 2 दिनों में ये पूरी सजावट जो है वो की जाएगी।
3: अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के ही धौलपुर में, जहां कृष्ण जन्माष्टमी से पहले दिन रात कान्हा की पोशाकें बनाने का काम लगातार चल रहा है। धौलपुर जिले के 50 से ज्यादा कारखानों में कारीगर योगेश्वर श्री कृष्ण और राधा के लिए पोशाकें तैयार कर रहे हैं। इन पोशाकों पर मोतियों, नग, शीशा और स्टोन से काम किया जा रहा है। इन कारखानों में ज्यादातर मुस्लिम कारीगर काम करते हैं। यहाँ साल भर भगवान के लिए पोशाकें बनाने का काम इसी तरह से चलता है। जन्माष्टमी पर्व और नवरात्रि में भगवान श्री कृष्ण, राधा और माता रानी की पोशाकों की खूब मांग होती है। ठाकुर जी और राधा के लिए तैयार की जाने वाली पोशाकों को मुस्लिम कारीगर हाथ से पूरी कढ़ाई की कारीगरी करते हैं और इसके बाद इन पोशाकों की कटाई और सिलाई की जाती है। कारीगर फिलहाल यहाँ राधा रानी के लिए आकर्षक लहंगा, ओढ़नी और पटुका बना रहे हैं। यहाँ से बनी पोशाक मथुरा वृंदावन से देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों समेत विदेशों में बने मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी के लिए भेजी जाती है। जन्माष्टमी से पहले हरियाणा के करनाल में कान्हा पार्लर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। यहां जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। कान्हा जी पार्लर के नाम से मशहूर इस जगह में ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल का भोग के साथ विशेष श्रृंगार होता है। और केवल जन्माष्टमी ही नहीं बल्कि कई दूसरे त्योहारों के समय भी ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए कई दिनों पहले से लंबी वेटिंग लिस्ट यहां पर चलती है।

0: नन्हे से कान्हा की मुस्कान प्यारी, मोर पंख सजे हाथों में बंसी भी प्यारी, जन्माष्टमी के लिए सजे लड्डू गोपाल की मूर्ति लगे सबसे न्यारी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर घर और मंदिरों को सजाने के अलावा राधा कृष्ण को नई पोशाक पहनाकर झांकियों का भी आयोजन होगा। ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर झूले, मुकुट, मोर पंख और वस्त्र भी लोग खरीद रहे हैं। तो वहीं लोगों के आराध्य कान्हा का भी पार्लर में श्रृंगार हो रहा है। जी हाँ, जिस तरह से विवाह और दूसरे समारोह में जाने के लिए लोग ब्यूटी पार्लर में सिंगार करवाते हैं, वैसे ही अब कान्हा जी को भी पार्लर में सजाने सवारने का काम काफी प्रचलित हो रहा है। जन्माष्टमी से पहले करनाल के कलंदरी गेट में कान्हा जी का पार्लर खुला है, जहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है और उनको सजाने सवारने वाले हैं संजीव सोनी।
1: थोड़ा ठाकुर जी, देखो सभी लोग अपने अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लेकर आते हैं और उसमें देखो हर तरह से जैसे उनके भाव होते हैं उस तरह से हमें बताते हैं कि श्रृंगार इस तरह से करना है ठाकुर जी का। और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है कि जैसे सबके ठाकुर जी, देखो आजकल थोड़ा श्रृंगार में समय लगता है, तो हमारे यहाँ ठाकुर जी की भोग सेवा भी पूरी तरह से होती है। हम सभी ठाकुर जी को, क्योंकि सेवा के ठाकुर जी है तो हमें भोग लगाना पड़ता है।
0: संजीव सोनी जो अपने इस पार्लर में लड्डू गोपाल की मूर्तियों का बेहद खूबसूरत और सलोना श्रृंगार करते हैं, वो बताते हैं कि जीवन में एक ऐसा भी समय था जब वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, मगर एक घटना ने उनको कान्हा जी की भक्ति में ही लीन करवाने के लिए मानो प्रेरित किया।
1: एक टाइम ऐसा भी था कि मैं मंदिर नहीं जाता था और अपने घर में तुलसी तक नहीं लगने देता था। वो ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी, हमारे घर के पास ही मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हुई और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने मुझे वहाँ सेवा और पूजा में जाने के लिए मनाया, तो मैं गया वहाँ पे। उस दिन मैंने अपने हाथ से ठाकुर जी का अभिषेक श्रृंगार किया और उसके बाद से ही ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपने साथ ही, मतलब अपने कार्य में सहभागी बनाया। मतलब मुझे कोई भी कार्य, मंदिर की सेवा मिल जाती है, जन्माष्टमी की शोभा यात्रा की, शिवरात्रि की शोभा यात्रा में कोई ना कोई छोटी मोटी सेवा या बड़ी सेवा कोई वो दे देते हैं। तो बस तभी से वो करते करते श्रृंगार की सेवा फिर ठाकुर जी ने तभी मेरा शुरू कराया।
0: पिछले कई साल से संजीव सोनी की कृष्ण भक्ति के माध्यम से साज सज्जा कला इतनी लोकप्रिय हो गई है कि आज हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब समेत दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु अपने अपने लड्डू गोपाल का संजीव सोनी के इस पार्लर से श्रृंगार कराना पसंद कर रहे हैं।
2: पूरी फैमिली इनके पास ही आती है, तो जो भी श्रृंगार का मटेरियल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, हर एक क्वालिटी वाइज होते हैं। जो भी हम लोग जैसे जन्माष्टमी के लिए आते हैं तो ड्रेसेस वगैरह भी डिफरेंट होती है, यूनिक, सब कुछ यूनिक होता है। बस
3: मैं इनसे लगभग 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ आने के बाद कहीं और जाने का मन ही नहीं हुआ, और जो इनकी कलाकारी है वो आप देख ही रहे हो, बहुत अति सुंदर और बिल्कुल एक समझ लो कि भावना से जुड़े हैं, सबसे बड़ी बात ही है। और यहाँ जो भी चीज़ है मतलब एकदम प्योरिटी और स्वच्छता की गारंटी है।
0: इस पार्लर में जो भी आस्थावान अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लाता है उसे 15 से 20 दिन पहले एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, ताकि पूरे सेवा भाव और नियमों के अनुसार ही कान्हा जी का मेकअप किया जा सके। वैसे कहते भी हैं, जहां कान्हा विराजते हैं वहां खुशियां खुद ही चली आती हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं के लिए भी उनके लड्डू गोपाल जी का इस पार्लर में आना, उनका भोग के साथ श्रृंगार होना ही शुभता का ही संकेत है। करनाल से कमलदीप संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो जन्माष्टमी की तैयारियां शहर शहर जोर शोर से चल ही रही हैं, बाजारों में खूब रौनक है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, दो अलग अलग राज्यों के, दो अलग अलग शहरों की तस्वीरें। एक तस्वीर है झांसी की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। शुक्रवार को मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव से पहले शहर के बाजार कान्हा की भक्ति के रंग में रंग गए हैं। बाजारों में जन्माष्टमी से जुड़ी सामग्री की दुकानें सज गई हैं और खरीदारी के लिए लोगों की चहलकदमी लगातार बढ़ रही है। जन्माष्टमी पर घरों, मंदिरों, और विभिन्न स्थानों पर सजने वाली झांकियों और पंडालों के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर रंग बिरंगी झालरें, आकर्षक लाइटें, फूल मालाएं, पर्दे, पालने, मुकुट, पगड़ी, बांसुरी, माखन मटकी, सिंहासन और भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार से जुड़ी तमाम सामग्री बिक रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर एमपी के आगर मालवा से भी आई, जहां दुकानों पर भगवान के लिए रंग बिरंगी पोशाक, बांसुरी, झूले सब दिखाई दे रहे हैं। जन्माष्टमी तक बाजारों में ये रौनक यूं ही नजर आने वाली है। चलिए अब आपको कान्हा के मथुरा में सजे बाजारों की एक झलक भी दिखा देते हैं। यहाँ के हर गली बाजार में एक जैसा नजारा है। दुकानें लड्डू गोपाल की सुंदर पोशाक, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और झूलों से भरी पड़ी हैं और कृष्ण भक्त बड़े उत्साह के साथ अपने कान्हा के श्रृंगार के

0: ब्रजधाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की उमंग हर ओर दिखाई दे रही है और मथुरा के तो कहने ही क्या। बाजार सज गए हैं, मुरलीधर की पोशाक और श्रृंगार के सामान से पूरा बाजार पटा हुआ है। यहाँ गिरधारी के सुंदर कपड़े, मुकुट, मोर पंख, बांसुरी और झूलों की भरमार है। होली गेट से द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के बाजार तक हर दुकान को जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष तौर पर सजाया गया है।
1: इस तरह के गोपाल जी बाजार में सज के तैयार हैं और ये पोशाक का बाजार है। यहाँ पोशाक भी बिक रही है, ठाकुर जी के झूला भी बिक रहे हैं, गोपाल जी भी बिक रहे हैं, तो सभी चीज इस दुकान पर बिक रही है। और जो द्वारकाधीश मंदिर के पास का बाजार है, सभी श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान की पोशाक अपने ठाकुर जी के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि ब्रज में एक बड़ा ठाकुर जी का जो जन्म है ना, वो बड़ा अद्भुत और अनोखे तरीके से मनाया जाता है। ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाई जाएगी, नए उनके झूले होंगे, नए वस्त्र होंगे, नई बांसुरी होगी, नई मुकुट होगा।
0: बड़ी तादाद में ग्राहक मथुरा के बाजारों का रुख कर रहे हैं। जाहिर है इससे दुकानदार खुश हैं और इनका मानना है कि इस साल कारोबार पहले की तुलना में बेहतर हो रहा है। दावा ये भी है कि इनके पास लड्डू गोपाल के श्रृंगार से जुड़े सामान का जबरदस्त कलेक्शन है जो कृष्ण भक्तों को लुभा रहा है।
2: इस बार सब जो भी हैंडक्राफ्ट वर्क है, थ्री पीस में, ये सब स्टोन बूटी वाला सब बुटीक पीस इस बार ट्रेंड में बहुत काफी है। कस्टमर की भी काफी डिमांड है। रेगुलर पैटर्न पहना पहना के तो कस्टमर परेशान हो चुका है, तो उन्हीं की डिमांड देखते हुए हम ये सुंदर सुंदर कली के पैटर्न में और यूनिक यूनिक इंग्लिश कलर जो है, रेड, पीला सब पहना चुके हैं। इसीलिए हम कस्टमर्स के लिए इस बार नए से नई वैरायटी लाने की हमने कोशिश की है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं हमारे स्टॉक में वेरिएशन, कितना सुंदर सुंदर कलर, कितना सुंदर सुंदर पगड़ी के साथ ये आपको अवेलेबल रहेगा। ये देखिए, ये तो स्पेशली जन्माष्टमी के लिए हमने डिजाइन करवाया है विद लड्डू गोपाला विद मैचिंग पगड़ी।
0: दिल्ली, भरतपुर और आगरा जैसी आसपास की जगहों से ग्राहक यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने आराध्य ठाकुर जी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। कोई अपने नन्हे काना के लिए मोर पंख थीम वाली ड्रेस ढूंढ रहा है, तो कोई फूलों से सजा झूला तलाश रहा है। इस जन्माष्टमी हर कृष्ण भक्त चाहता है कि उसके लड्डू गोपाल सबसे सुंदर दिखें।
3: होली की पूरी फूल तैयारी हो रही है। मथुरा जैसी जन्माष्टमी कहीं नहीं होती,
1: कहीं नहीं होती,
3: नहीं होती, नहीं।
1: एकदम यहाँ सारी पोशाक वोशाक सब
3: जी मिल जी बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे
1: सब मिल जाता है,
3: जो हमारे राजस्थान में भी नहीं है।
1: नहीं है,
3: नहीं है।
1: क्या क्या क्या नाम है आपका?
4: भावना।
1: क्या तैयारी कर रही है
4: भैया? ठाकुर जी की कह रहे हैं जन्माष्टमी की, हम तो आगरा से मथुरा मनाने आए।
1: अच्छा।
4: तो यहाँ की तरह कहीं भी नहीं मनती है।
1: अच्छा।
4: यहाँ की भाई अलग ही वो है मनाने वाली, और यहाँ भगवान जी का जन्म हुआ है, सारी लीला है चाहिए भगवान ने, और यहाँ की तो है ही नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी सब कुछ है यहाँ, पोशाक, नेत्र, मालाएं, ठाकुर जी, यहाँ की से कोई, यहाँ की से तैयारी कहीं नहीं है भैया।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर स्थानीय दस्तकारों की भी चांदी है। यहाँ के कारीगर बड़ी ही शिद्दत और मेहनत के साथ बाल गोपाल की पोशाक तैयार कर रहे हैं और कृष्ण जन्मोत्सव में भागीदारी दर्ज करा रहे हैं।
5: जो है मतलब ये कि इस वक्त जो है मतलब तुम्हारे जो है पीले कलर की ज्यादा चल रही है इस वक्त, और पोशाकों की बाहर का ऑर्डर भी है हमारे पास में अपने, और जन्म स्थान का भी हमारे पास ऑर्डर है, तो ये चल रही है। और मतलब जो रात दिन मतलब जो कि हमारे कारीगर भी सबरे काम कर रहे हैं, तो उन पोशाकों को पूरा करके जल्दी से जन्माष्टमी के लिए तैयारी करी जा रही है।
1: पूरा जो बाजार है, पूरा बाजार है, बड़ी भीड़ है बाजार में, और तमाम जो लोग हैं भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। और पूरे मथुरा की बात करें तो पूरा मथुरा सज धज के ठाकुर जी के जन्मोत्सव के लिए तैयार है, और पोशाक का बाजार है, चाहे ठाकुर जी के मुकुट श्रृंगार का बाजार हो या और भी किसी चीज का बाजार हो, वहाँ सभी गुलजार हैं, लोग पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण के लाला का जन्मोत्सव मनाने के लिए, नंदलाल का जन्मोत्सव, अजन्मे का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग तैयार हैं। और बड़ी तादाद में ठाकुर जी के वस्त्र, नेत्र, ठाकुर जी का श्रृंगार खरीद कर ले जा रहे हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
6: तो तैयार हो जाइए।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: भारतीय वायुसेना को मिली बड़ी कामयाबी, स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम खगंदक 243 का सफल टेस्ट। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, 3 ट्रस्टी के नामों का भी हुआ ऐलान। जितेंद्र मिश्र के गांव में मना जश्न, बटी मिठाई। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा, परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर हुआ तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। बद्रीनाथ मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां, इस साल फूलों से नहीं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा मंदिर, मथुरा में रोशनी में नहाई श्री कृष्ण जन्मभूमि। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार, काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। भारत को मिली 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया ऐलान, 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। किसी पुरानी घटना को नया बताकर परोसा जाता है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर हो। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे परखे इन्हें शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, हर झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले होगी वायरल हो रहे उस वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दरोगा सहित पुलिसकर्मियों को पीटने वाले दबंगों के घर को बुलडोजर से तोड़ा गया है, क्या है सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि नेपाल में आए बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक पावर प्लांट टूट गया, क्या है सच्चाई आगे जानी है। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बुलडोजर से घर को ढाया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दरोगा को पीटने वाले दबंगों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्या है सच्चाई देखिए इस रिपोर्ट में।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात है और बुलडोजर से घर को ढहाया जा रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं इसे रोकने की कोशिशें करती हैं, लेकिन महिला पुलिस उन्हें वहां से हटा देती है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह लखनऊ का वीडियो है और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि लखनऊ के पारा में दरोगा पर जानलेवा हमले करने वाले लोगों की भैंस बकरी को नीलाम कर दिया गया। अब मकान पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जितने भी मकान बिना नक्शे के बने या वैध बने सब तोड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार वायरल कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी इलाके में भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं। वहां पर एक बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं विरोध प्रदर्शन करती दिख रही हैं, लेकिन महिला पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक नहीं चलती। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां पर दरोगा सहित कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वाले दबंगों के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इससे ये तो साफ हो गया कि वीडियो में बुलडोजर के जरिए एक्शन लिया जा रहा है। अब इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों के बैज को भी जूम करके ध्यान से देखा, तो ये साफ हुआ कि हरियाणा पुलिस के जवान हैं। अब वीडियो लखनऊ का है तो फिर वहां पर हरियाणा पुलिस का क्या काम है, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें जानकारी जरूर मिली कि हाल ही में लखनऊ में पारा इलाके में पुलिस नगर निगम की टीम के साथ अवैध डेयरियों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला करते हुए पथराव भी किया था। हमलावर यही नहीं रुके थे, उन्होंने बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी दरोगा विनय पटेल को दौड़ाकर बुरी तरह से पीटा भी था। इस मामले में पुलिस ने 24 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन हमें इस दौरान ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे ये पुष्टि हो सके कि पुलिस कर्मियों की टीम पर हमला करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। लिहाजा वायरल हो रहे वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को लखनऊ का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक फेसबुक अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 9 जून 2026 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वीडियो हरियाणा के नरवाना का है। पुलिस ने यहां नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 27 मकानों को ढहाया था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया और लगातार खोजबीन की। इस दौरान 10 जून 2026 को प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक नरवाना की चमेला कॉलोनी में नशा तस्करों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 अवैध मकानों और निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों का कहना था कि जिन 27 मकानों और निर्माणों को तोड़ा गया उनके खिलाफ जिला नगर योजनाकार जींद की ओर से पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ। असल में वायरल वीडियो हरियाणा का है और इस साल जून में हुई एक कार्रवाई का है। हरियाणा पुलिस ने जून में नरवाना शहर में नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण ढहाया था। यह वीडियो उसी घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में एक पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। लोग कह रहे हैं कि नेपाल की बाढ़ में यह पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए।
5: Oh my God! नेपाल में आई बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। इसे हालिया वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। इन सब के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में एक पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो जाता है। कुछ लोग इसे नेपाल की बाढ़ का बताकर शेयर कर रहे हैं। सोशल साइट एक्स पर इसे शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, नेपाल फ्लड। नेपाल में बाढ़ से करीब 13 पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। ये ज्यादातर प्रोजेक्ट रसुआ और नुवाकोट जिले में नदी पर बने हुए थे। लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई न्यूज आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को नेपाल का बताकर शेयर किया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि भीषण बाढ़ का ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पानी की तेज बहाव की चपेट में ये पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। सच के दौरान ये जानकारी सामने आई कि नेपाल में भीषण बाढ़ की वजह से 12 से अधिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा, जिससे करीब 431.1 मेगावाट बिजली का उत्पादन रुक गया है। अब ऐसे में जानना जरूरी हो गया था कि नेपाल के किस हिस्से का ये पावर प्लांट है। वीडियो को देखने से तो यही लग रहा है कि ये किसी पावर प्लांट का है, लेकिन लगातार खोजबीन करने के बावजूद फैक्ट चेक टीम को दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई ऐसी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल में बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हैं। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम लगातार इन तस्वीरों और वीडियोस की पड़ताल कर रही है। हमारी पड़ताल में सभी फेक साबित हुए हैं, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसके बाद पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो नेपाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जाने।
5: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटे। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पर 16 फरवरी 2023 को छपी एक रिपोर्ट मिली, जिसमें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट मौजूद है। यहां इसे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के रानोलिया पावर प्लांट का बताया गया है। पाकिस्तान के इस इलाके में 2022 में भीषण बाढ़ आई थी। इस रिपोर्ट में इसी बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताया गया है। इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें ऐसे कई YouTube चैनल मिले जिन्होंने अगस्त 2022 में इस वीडियो को शेयर किया था। इन चैनलों ने भी इसे रानोलिया हाइड्रो पावर प्लांट का बताया है। सर्च के दौरान ही हमें YouTube पर रानोलिया हाइड्रो पावर प्लांट का जून 2022 का एक ब्लॉग भी मिला। इसमें साफ देखा जा सकता है कि ये जगह वायरल वीडियो से बिल्कुल मिलती है। जर्मनी के न्यूज आउटलेट की 2 सितंबर 2022 की रिपोर्ट में भी ये वीडियो देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान की डुबेर नदी में आई बाढ़ का है। वीडियो का क्रेडिट एक टिकटॉक हैंडल को दिया गया था। हमें इसी यूजर नेम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिल गया। पाकिस्तान के इस यूजर ने अपने बायो में खुद को एक नेचर एंथुजियास्ट बताया है। इस अकाउंट ने ये वीडियो 28 अगस्त 2022 को पोस्ट किया था। वीडियो वायरल होने के बाद इस अकाउंट ने 27 अगस्त 2026 को इसे दोबारा शेयर किया और साफ किया कि ये वीडियो अगस्त 2022 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के छोटे से गांव दुबेर में आई बाढ़ का है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2022 में आई बाढ़ का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: दिल्ली मेट्रो से सामने आया ये वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में एक छोटी बच्ची ड्यूटी पर तैनात सीएसएफ जवान को देखकर जिस अंदाज में सैल्यूट करती है वह पल बेहद प्यारा और भावुक नजर आता है। मेट्रो कोच में यात्री अपने अपने सफर में व्यस्त थे, इसी दौरान बच्ची की नजर वर्दी पहने सीआईएसएफ जवान पर पड़ती है। बच्ची बिना किसी झिझक के जवान की ओर देखती है और अचानक अपना हाथ उठाकर सैल्यूट कर देती है। बच्ची के चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ सम्मान का भाव साफ नजर आता है। बच्चे का यह छोटा सा इशारा वहाँ मौजूद लोगों के लिए भी खास बन गया। आमतौर पर बच्चे किसी वर्दीधारी जवान को देखकर उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने जिस गंभीरता के साथ सैल्यूट किया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। जवान ने भी बच्चे के सम्मान को नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने बेहद सहज और प्यार भरे अंदाज में उसके सैल्यूट का जवाब दिया। कुछ सेकंड का ये संवाद बिना किसी शब्द के ही बहुत कुछ कह गया। इस प्यारे पल का वीडियो सीआईएसएफ के आधिकारिक एक्स अकाउंट में शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची का प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चे अपने क्यूट अंदाज और मासूमियत से लोगों का दिल जीतती नजर आ रही है। बच्चे की प्यारी हरकतें देखकर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं और वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े वीडियो अक्सर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटे बच्चे के अपने दोस्त के प्रति चिंता और मासूमियत लोगों का दिल जीत रही है। वीडियो देखने के बाद यूजर्स इसे बचपन की सच्ची दोस्ती की सबसे खूबसूरत झलक बता रहे हैं। वायरल वीडियो में एक प्ले स्कूल का नजारा दिखाई देता है। क्लासरूम में मौजूद एक बच्चा अपने दोस्त को फोन मिलाता है और बड़े ही मासूम अंदाज में पूछता है, तो आज स्कूल क्यों नहीं आया? दूसरी तरफ से बच्चे की आवाज़ आती है कि वे बारिश की वजह से स्कूल नहीं आ पाया। दोनों बच्चों के बीच चल रही छोटी सी बातचीत सुनकर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठे। बातचीत का सबसे प्यारा पल तब आता है जब फोन पर मौजूद दोस्त की बात सुनने के बाद बच्चा बेहद भोलेपन से कहता है, जब बारिश रुक जाए तब आ जाना। इतना कहकर वह आराम से फोन रख देता है। उसके चेहरे पर अपने दोस्त से मिलने की खुशी और चिंता साफ झलकती है। ये मासूमियत इस वीडियो को खास बना रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि साधु ने न केवल उस बच्चे के सामने हाथ जोड़े बल्कि उसे साक्षात शक्ति और देवी का स्वरूप मानकर नतमस्तक हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची साधु के पास पहुंचती है। साधु बच्चे के पैर को छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद साधु बच्चे के हाथ में कुछ रुपए रख देते हैं। बच्ची उसे आशीर्वाद समझकर रख लेती है। एक तपस्वी का ये व्यवहार समाज को एक गहरा संदेश देता है कि सनातन संस्कृति में बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं बल्कि पूजनीय शक्ति है। ये वीडियो केवल आस्था का नहीं बल्कि नारी सम्मान और बेटियों के प्रति आदर का एक अद्भुत उदाहरण है।
7: आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे ना?
6: एक पिता और उसकी मासूम बेटी के बीच ये बातचीत सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रही है। बच्चे जिस मासूम अंदाज में अपने माँ के बारे में पिता को एक एक बात बता रही है उसे सुनकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हैं। आप भी सुनिए ये बातचीत।
7: आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे ना, मैंने मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जो मैं आपसे बिना पूछे बाहर जा सकता हूँ, कुछ भी मन में वो कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
8: फिर क्या बोला मम्मी?
7: मम्मी जी ने जो बोला ना वो मेरे दिल को छू गई।
8: क्या बोला?
7: मम्मी जी ने बोला कि इतना बड़ा तेरा बाप भी नहीं होया कभी।
6: हंसी मस्ती और स्वाद का मजेदार संगम पैरों में बंधी रस्सी, उसी रस्सी में लटका बिस्किट और बिना हाथ लगाए उसे मुंह तक पहुंचाने की चुनौती। जितना पैर उठेगा बिस्किट उतना करीब आएगा। हर बच्चा पूरी लगन से कोशिश कर रहा है, कोई जल्दी सफल हो रहा है तो कोई बार बार प्रयास कर रहा है। इस मजेदार खेल ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है और बता दिया कि सीखने का सबसे आसान तरीका खेल ही होता है। एक लाइन लंबी कतार और बच्चों का शानदार तालमेल, एक एक कर सभी बच्चे ट्रेन की बोगियों की तरह एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कतार बढ़ती है वैसे वैसे खेल और भी रोमांचक होता जाता है। हर बच्चा पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहा है। इस खेल में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सहयोग, अनुशासन और टीम वर्क का भी संदेश छिपा है। यही वजह है कि बच्चे इस खेल का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे तेज बारिश में खेल रहे हैं। सभी बिना छतरी के मैदान में भर चुके पानी में खुशी खुशी नाच रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं। जबकि कुछ यूजर्स ने स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाया कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। रंग बिरंगे कपड़े, तेज म्यूजिक और उसी ताल पर बच्चों का शानदार प्रदर्शन। देखने में ये स्टेप भले ही आसान लग रहे हो लेकिन इन्हें एक साथ सही तालमेल के साथ करना बिल्कुल आसान नहीं है। इन नन्हे बच्चों ने अपनी मेहनत और अभ्यास से हर मूवमेंट को बेहद खूबसूरती से पूरा किया। चेहरे पर मुस्कान और कदमों में गजब का तालमेल दिखाई दिया। बच्चों की इस प्यारी प्रस्तुति का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लोगों का खूब प्यार बटोर रहा है। उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, इस बात को बिल्कुल सच साबित कर दिया है 66 साल की फिटनेस एंटरप्रेन्योर रेनू सिंधु ने। रेनू अहमदाबाद की रहने वाली हैं और वहां पर अपना जिम चलाती हैं। वो सिर्फ जिम की मालकिन ही नहीं बल्कि खुद फिटनेस फ्रीक भी हैं। 66 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। और अब उनका एक लेटेस्ट वीडियो आया है जिसमें वो पोती को लेकर वर्कआउट कर रही हैं। उन्होंने अपने 66वें जन्मदिन पर ये किया। इस वीडियो को देखकर लोगों की खूब तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
9: कहते हैं मंजिल पाने का जज्बा हो तो रास्ते की मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं, और ये भी कि बात करने से ही बात बनती है। यूपी में बलिया की 7 साल की रागिनी इस बात की मिसाल है। बचपन में एक हादसे में उसका एक पैर खराब हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रागिनी एक पैर से ही करीब 400 मीटर का सफर तय कर स्कूल पहुंचती है। लेकिन उसका ये संघर्ष जब सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आया तो उसकी भावुक अपील प्रशासन तक पहुंची और उसके सपनों को नई उड़ान भी मिली।
10: क्या क्या
11: दिया
10: मिला है आपको?
11: काट भी मिला है, साइकिल मिठाई मिला है।
10: अच्छा अच्छा, रागिनी पढ़ने जाओगी ना?
11: हाँ।
10: क्या बनोगी?
11: डॉक्टर।
10: डॉक्टर बनना है। और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए?
11: आप कुछ नहीं चाहिए।
5: रागिनी को अब कुछ नहीं चाहिए, छोटी सी जरूरत थी पूरी हो गई। अब मासूम चेहरे पर मुस्कान है, गले में डीएम अंकल ने माला पहनाई है, हर जंग जीतने का आशीर्वाद दिया है और हर कदम पर मदद का भरोसा भी। बात रखने से बात बनती है, बलिया की रागिनी ने भी सोशल मीडिया के जरिए एक अपील की थी। जिसने भी सुना और देखा, मासूम का दर्द दिलों को छू गया। उसके भावुक अपील सुनकर बलिया के डीएम मंगल प्रसाद सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए। पहले डॉक्टरों की टीम भेजी और फिर उससे मिलने खुद आए। साइकिल, खेलकूद की एक किट और मिठाइयां दी और हर संभव मदद और इलाज का भरोसा भी। जिस 400 मीटर लंबे रास्ते को रागिनी स्कूल जाने के लिए एक पैर से नापती है, वहां सड़क बनाने का भी भरोसा मिला, ताकि रागिनी अपने सपनों को नई उड़ान दे सके।
12: लोग उसी के गांव में, उसी के घर पे, उसके परिवार से मिलने आए हैं, बिटिया से भी मिले हैं। साइकिल तो एक औपचारिक है, ठीक है, साइकिल तो दिया ही हम लोगों ने, बट हम लोगों का प्रयास ये है कि बिटिया को और उसके परिवार को कोई परेशानी ना हो। जो जो भी हम लोग कर सकते हैं उसके लिए वो सब हर संभव प्रयास करेंगे। इस गांव में स्कूल तक और गांव तक आने का रास्ता बना हुआ है, बट थोड़ा मरम्मत की आवश्यकता, उसको भी हम कराएंगे। इनके यहाँ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम भी ठीक कराएंगे। अभी व्यक्तिगत शौचालय दिया गया है, इनको स्वीकृत हो चुका है, वो इनको पैसा भी मिल चुका है इनके खाते में, वो भी बनवाएंगे। बिटिया को मिल करके और बिटिया से मुलाकात बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। बिटिया टैलेंटेड है और इसको हम लोग एक पूरी किट दिए हैं, जिससे बिटिया खेल कूद सके, पढ़ाई कर सके। और बिटिया की इच्छा है कि वो पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बनना चाहती है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बिटिया का पैर भी जल्दी ठीक हो जाए। हम लोग प्रयास करेंगे, मेडिकल चेकअप भी हम कल करा रहे हैं, क्योंकि पुराना केस है ये, 5-6 साल पुराना है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि बिटिया का अगर पैर ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, दोनों पैरों पर चल सकती है, तो यहाँ लखनऊ जहाँ भी ऑपरेशन हो सकता है हम लोग कराएंगे।
5: रागिनी से तो आप अब तक परिचित हो ही चुके होंगे। 7 साल के इस मासूम का परिवार यूपी के बलिया जिले के रानीपुर इलाके में रहता है। जब रागिनी महज 6 महीने की ही थी, तब एक हादसे में उसका एक पैर खराब हो गया। रागिनी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में उसके लिए कृत्रिम पैर का इंतजाम करना परिवार के लिए आसान नहीं था। लेकिन रागिनी ने हार नहीं मानी। पढ़ाई लिखाई के प्रति उसका लगाव बचपन से था, सो एक पैरों से ही स्कूल जाने की ठान ली।
13: दिक्कत यही होता है कि पढ़ने जाती है, एक पैर पे गिर जाती है, रोने लगती है, पैर में दर्द उठ जाता है।
14: पढ़ना चाहती है?
13: पढ़ना चाहती है, लड़का जाते हैं तो छपराती है, रोती है, हम लोग का करेजा फटता है।
14: क्या चाहिए आपको?
13: हमको सरकार अनुदान इसको सुविधा कुछ देती तो यही हम चाहते हैं।
5: रागिनी के पास एक पैर नहीं है, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं, हौसले बुलंद है। और अब जब सोशल मीडिया के इस दौर में उसकी आवाज प्रशासन तक पहुंच गई है, तो उसकी उम्मीदों को अब नए पंख भी मिल गए हैं। बलिया से अनिल कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: और अब आपको दिखाते हैं देश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक की बर्थडे के जश्न की तस्वीरें। जी हाँ, कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने केक काटकर महक का जन्मदिन मनाया और उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की।

0: ये तस्वीर किसी जू में जीवन की जिंदा दिली की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। किसी बाघिन का 22 साल की उम्र को छू लेना आसान नहीं माना जाता, लेकिन 22 साल पूरे कर चुकी बाघिन महक ने ये कर दिखाया है। महक अब 23वें साल में पहुंच गई है और इसी बात ने इस बाघिन को खास बना दिया है। बाघिन महक के 23वें बर्थडे पर कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में जश्न मनाया गया।
1: May God bless you. Happy birthday.
0: दरअसल आमतौर पर चिड़ियाघरों में बाघ बाघिन की उम्र करीब 16 से 18 साल के आसपास मानी जाती है। वहीं जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में इनकी उम्र इससे भी कम हो सकती है। ऐसे में 22 साल की महक सामान्य जू लाइफ से करीब 4 साल आगे निकल चुकी है। यानी महक ने सिर्फ उम्र को ही मात नहीं दी बल्कि उम्र के रिकॉर्ड को भी चुनौती दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी महक एक्टिव है। पानी में अठखेलिया करना, एनक्लोजर की बाउंड्री के आसपास घूमना और पर्यटकों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना, महक आज भी ये सब करती है। हालांकि उम्र का असर दिखना शुरू हो चुका है। उठने में पहले के मुकाबले महक को थोड़ी सी परेशानी होती है, इसीलिए उसकी कैल्शियम डोज बढ़ाई गई है।
2: ये अभी 22 साल की हो चुकी है। 28 अगस्त 2004 में जन्मी थी। ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से उस समय इनका जन्म हुआ था और वहीं से जो 2012 में हमारे कोटा में जू में लाया गया था।
0: महक की उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसकी सेहत अच्छी है। उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक है, दांत और जबड़े मजबूत हैं और वजन भी लगभग सामान्य है। महक की लंबी उम्र के पीछे खानपान और मेडिकल केयर भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हर दिन उसे करीब 8 किलो चिकन और मांस दिया जाता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और आयरन टॉनिक भी, और उम्र को देखते हुए उसकी मेडिकल मॉनिटरिंग भी लगातार होती है। हर 3-4 दिन में उसकी मेडिकल जाँच की जाती है। महक की उम्र का राज सिर्फ उसकी देखभाल में नहीं, वन विभाग के मुताबिक जेनेटिक फैक्टर भी इसकी बड़ी वजह हो सकता है। क्योंकि अच्छी डाइट और मेडिकल केयर के बावजूद हर बाघिन 22 साल तक नहीं पहुंचती। महक का मामला इसलिए भी खास है क्योंकि उम्र बढ़ने के बावजूद उसकी सक्रियता और सेहत काफी हद तक बरकरार है। महक अब सिर्फ अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क की पहचान नहीं बल्कि लंबी उम्र तक जीवित रहने वाली बाघिन की एक मिसाल भी है। 22 साल पूरे, 23वें में कदम, उम्र बढ़ी है, रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन पानी में महक की अटखेलियां और एनक्लोजर में उसकी चाल आज भी बता रही है कि दहाड़ भले ही धीमी हुई हो, महक की कहानी अभी बाकी है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ पता है
5: कि भाग्य कहीं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: भारतीय वायुसेना को मिली बड़ी कामयाबी, स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम खगंदक 243 का सफल टेस्ट। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, 3 ट्रस्टी के नामों का भी हुआ ऐलान। जितेंद्र मिश्र के गांव में मना जश्न, बटी मिठाइयां। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा, परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर हुआ तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। बद्रीनाथ मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां, साल फूलों से नहीं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा मंदिर। मथुरा में रोशनी में नहाई श्री कृष्ण जन्मभूमि। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार। काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। भारत को मिली 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया ऐलान। 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। देखिए, देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व है, उससे ठीक पहले अब शहर शहर बेसब्री से कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। आप भारत के किसी भी शहर में रहते हों, आपके आसपास के मंदिरों में अब आपको तैयारी दिखने लगी होगी। शहर शहर प्रसिद्ध मंदिरों से लेकर गली मोहल्लों तक के तमाम मंदिरों में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की परंपरा रही है। लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है कन्हैया के ब्रज में, जहां मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल से लेकर बरसाना तक जन्माष्टमी के रंग बिखरे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। तस्वीरें देखिए।

0: कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी भाद्र मास मनुहार चंद्र वंश रोहिणी नखत दिन विशुद्ध बुधवार वृषभ लग्न में चंद्रमा लग्न राशि एक साथ जब शुभ ये संजोग बना प्रकट भये श्रीनाथ। कोई 5000 साल पहले कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच भाद्रपद अष्टमी की रात मथुरा की काल कोठरी में प्रकाश बनकर स्वयं नारायण प्रकट हुए थे। फिर क्या मथुरा, क्या गोकुल और क्या वृंदावन, यमुना की हर लहर से लेकर गोवर्धन पर्वत के शिखर तक ब्रज की रज रज कृष्णमय हो उठी। मथुरा में जहां आज कृष्ण जन्म स्थान माना जाता है, वहां 5000 साल पहले कटरा केशव देव नाम की जगह पर राजा कंस का कारागार हुआ करता था। उसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। आज कन्हैया की ये जन्मभूमि एक बार फिर प्रकाश से जगमगा रही है। भगवान कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव से पहले पूरे मथुरा को सजाया जा रहा है। ये तो तमाम मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि मंदिर की बात निराली है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान सज धज कर तैयार है। तमाम जो लाइटिंग है, साज सज्जा है, वो बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ की गई है। 5 दिवसीय जो उत्सव है ना, वो आज शुरू हो गया है। और उसकी बात की जाए तो लीला मंच पे भगवान की जो बाल लीला है, भगवान की जो सारी लीलाएं हैं, वो की जा रही हैं। और वहीं उत्सव की बात की जाए तो 3 तारीख को सुबह में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए भगवान के उत्सव की आगाज करेगी। वहीं शाम में 5:30 बजे के आसपास जो भगवान को पंचरत्नीय पोशाक है, वह अर्पण की जाएगी, जो ठाकुर जी जन्मदिन वाले दिन पहनेंगे और अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे।
0: बताया गया है कि 5 दिवसीय जन्माष्टमी उत्सव से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को करीब 200 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। जन्माष्टमी के दिन नए बने रजत कमल में विराजमान ठाकुर गोपाल जी का जन्म अभिषेक हर बार की तरह इस बार भी विशेष आकर्षण रहने वाला है। 4 सितंबर को सुबह 5:30 बजे भगवान कृष्ण की मंगला आरती होगी, सुबह 8 बजे पंचामृत अभिषेक और रात 10 बजे जन्म महाअभिषेक होगा। रात 12 बजे भगवान के प्राकट्य दर्शन और आरती होगी, जिसके बाद कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय से अभिषेक किया जाएगा। फिर रजत कमल में ठाकुर जी का जन्म महाअभिषेक होगा। वहीं श्रृंगार आरती रात 12:45 से 12:50 बजे तक होगी और शयन आरती रात 1:55 से 2 बजे तक होगी। इस मौके पर जन्मभूमि मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का प्रवेश रात 1:30 बजे तक चालू रहेगा। अगले दिन भी जन्माष्टमी के उत्सव और विशेष दर्शन का ये दौर जारी रहेगा।
1: दूसरे दिन भगवान का जो उत्सव है, वो भगवान सुबह से ही ढोल नगाड़े के साथ मंगला आरती होगी और भगवान कालहंस बंगले में विराजकर सुबह से शाम तक दर्शन देंगे। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो 5 दिवसीय उत्सव में ठाकुर जी की जो आराधना है, जो सेवा है, जो पूजा है और शाम के समय में भगवान का अभिषेक है, ये सारी चीजें होंगी। और वहीं अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है। विशेष प्रसाद यहाँ पंजीरी का, मेवा के लड्डू का, गोला की बर्फी का जो प्रसाद है, पंचामृत है, वो यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अर्पण किया जाएगा, दिया जाएगा भगवान का प्रसाद।
0: हर साल की तरह इस साल भी ब्रजभूमि में जन्मोत्सव के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देश भर से आने वाले इन श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित दर्शन का मौका मिले, इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। शहर में जगह जगह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी और CCTV से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि में 5253वां जन्म दिवस बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर में बांट करके मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव सभी में खूब सजावट की जा रही है। यात्रियों को भीड़ से बचाने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से दर्शन कराया जाएगा। सभी मंदिरों के जो प्रबंधक हैं, जो पुजारीगण हैं, जो गोस्वामी बंधु हैं, सबके साथ बैठक करके किसी प्रकार से दर्शनार्थियों को और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन करने में असुविधा ना हो।
0: ब्रज के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे ब्रजवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ एक साथ मिलकर मनाते हैं। फिलहाल सारा ब्रज अपने लाडले कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारी में जुटा है।
1: भगवान का जो उत्सव है ना, बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और वही शहर की बात करें तो पूरा शहर बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जा रहा है। कभी 24 चौराहे हैं और 24 चौराहों के पास 24 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, जहां से श्रद्धालु आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। पूरे शहर को बड़े भव्यता और दिव्यता और ऐसी लाइटिंग के साथ, दूधिया रोशनी के साथ सजाया गया है कि जो भी यहाँ आए ठाकुर जी का जन्म उत्सव बनाने, वो एक अच्छा संदेश लेके जाए और भगवान के प्रति जो आस्था है, जो समर्पण है, जो विश्वास है, जो ठाकुर जी के प्रति समर्पण, विश्वास और जो श्रद्धा है उसको लेके आए, वो उसकी श्रद्धा में कहीं कोई भाव अधूरा ना रहे। इसी को देखते हुए पूरे नगर को, पूरे ब्रजमंडल को अजन्मे के जन्म के लिए तैयार किया जा रहा है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
3: अनोखा है ब्रज और उतने ही अनूठे हैं ब्रज के बाल गोपाल। कान्हा ने जहां ब्रज भूमि को अपनी बाल लीलाओं और रास के रंग का साक्षी बनाया, तो वहीं कुरुक्षेत्र की धरती उनके मुख से निकले गीता ज्ञान सागर की गवाह बनी। भगवान कृष्ण की जीवन लीलाएं अद्भुत हैं। वह ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इंसानों की जिंदगी से जुड़े हर भाव और हर संवेदना को जिया है। श्री कृष्ण के जीवन में घटी घटनाओं में मानव जीवन के लिए वो तमाम संदेश छुपे हुए हैं जिन्हें समझे जाने की जरूरत है। भगवान कृष्ण के ब्रज में बीते बाल्यकाल से लेकर कुरुक्षेत्र में महाभारत के रण तक उनके जीवन की कहानियां अंधेरे में बिखरी रोशनी की तरह हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण की कुछ प्रिय वस्तुएं जैसे मोरपंख, बांसुरी, दर्शन चक्र वगैरह, ये सभी अपने आप में कई सीख समेटे हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। सबके पहले बात मोरपंख की। भगवान कृष्ण का मोरपंख समझाता है कि जीवन में सभी तरह के रंग होते हैं, जैसे कि सुख, दुख, प्रेम, करुणा, रिश्ते आदि। अगर इन रंगों को सलीके और मर्यादा में रखा जाए तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। जरूरत है तो सिर्फ सही तालमेल की। इसी तरह भगवान कृष्ण की बांसुरी भी सुंदर संदेश देती है। बांसुरी में 8 छेद होते हैं, ये जीवन का प्रतीक है। इसमें जो छेद हैं वो कमियां हैं। कृष्ण कहते हैं जीवन में लाख कमियां हो लेकिन जीने का तरीका और सोच सकारात्मक हो तो कमियों के बावजूद जीवन को मधुरता से जिया जा सकता है। तो वहीं वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्या सीख समेटे हुए है, ये भी आपको बता दें। वैसे तो ये हथियार है लेकिन नाम है सुदर्शन। सु प्लस दर्शन, यानी जो दिखने में बहुत सुंदर हो, प्रभावशाली हो। इंसान के लिए उसका व्यक्तित्व ही सुदर्शन चक्र है। लोग आपके व्यक्तित्व को देखकर ही व्यवहार करते हैं। अगर व्यक्तित्व सुदर्शन है तो आपकी हर जगह जीत तय होगी। भगवान कृष्ण वैजयंती माला भी धारण करते हैं। कमल के फूल के बीजों से बनी माला को वैजयंती माला कहा जाता है। ये बीज बहुत सख्त होते हैं, आसानी से टूटते नहीं। ये सिखाते हैं कि इंसान को हर तरह की परिस्थिति में खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, जीत तभी मिलती है। और अंत में बात बाल गोपाल के पसंदीदा माखन मिश्री की। माखन नर्म और एकदम पिघलने वाला होता है, जबकि मिश्री सख्त होती है लेकिन माखन में घुलकर मिठास देती है। ये सिखाता है कि हमारा स्वभाव माखन की तरह नर्म और व्यवहार मिश्री की तरह घुलने वाला होना चाहिए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको मथुरा की तस्वीरें दिखाई, अब आपको लेकर चलते हैं वृंदावन। लेकिन ये ब्रज का वृंदावन नहीं है बल्कि राजस्थान की धरती पर मौजूद गुप्त वृंदावन धाम है। जयपुर का गुप्त वृंदावन धाम श्री कृष्ण का भव्य मंदिर है। 4 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम मनाने की पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। भगवान कृष्ण के लिए खास फूल बंगला झांकी तैयार हो रही है, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विशालकाय पंडाल लगाया गया है। भगवान के लिए 108 प्रकार का विशेष भोग बन रहा है। गुप्त वृंदावन धाम में इस बार जन्माष्टमी पर 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचने की पूरी संभावना है। ऐसे में भक्तों की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए दर्शन सुगम बनाने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या खास होने वाला है जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, इस बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रीतम जैन।
4: मैं अभी मौजूद हूं जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, जहां पर भी ये जो तैयारियां हैं ये भी देखने को मिल रही है। साज सज्जा जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। इनका कहना है कि 1 महीने पहले से ही जन्माष्टमी के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। ये जो थीम है ये फूल बंगले का थीम है, जिसमें 32 अलग अलग तरह के फूल जो हैं वो लाए गए हैं, जिनसे पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है जो भगवान का दरबार है सिर्फ उसका जो सजावट है वो की जाती है, पर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा मंदिर फूलों से सजेगा। फूल बंगला जो है वो उसको कहा जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे सिर्फ जयपुर में मिलने वाले नहीं पर बाहर से भी कई सारे फूल हैं वो मंगवाए गए हैं। बहुत ही कलरफुल ये जो डेकोरेशन है ये यहाँ पे किया जा रहा है। भगवान कृष्ण की पोशाक की मैं बात करूँ तो पोशाक वृंदावन से आ रही है। खास पोशाक जो है वो भगवान कृष्ण के लिए उनके जन्मोत्सव के लिए बनवाई जा रही है, जो कि वृंदावन से आ रही है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग रंगों के जो प्रॉप्स हैं वो रखे हुए हैं, जिनकी सजावट चल रही है। 2 दिन का समय अभी बच रहा है, जिन 2 दिनों में ये पूरी सजावट जो है वो की जाएगी।
3: अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के ही धौलपुर में, जहां कृष्ण जन्माष्टमी से पहले दिन रात कान्हा की पोशाकें बनाने का काम लगातार चल रहा है। धौलपुर जिले के 50 से ज्यादा कारखानों में कारीगर योगेश्वर श्री कृष्ण और राधा के लिए पोशाकें तैयार कर रहे हैं। इन पोशाकों पर मोतियों, नग, शीशा और स्टोन से काम किया जा रहा है। इन कारखानों में ज्यादातर मुस्लिम कारीगर काम करते हैं। यहां साल भर भगवान के लिए पोशाकें बनाने का काम इसी तरह से चलता है। जन्माष्टमी पर्व और नवरात्रि में भगवान श्री कृष्ण, राधा और माता रानी की पोशाकों की खूब मांग होती है। ठाकुर जी और राधा के लिए तैयार की जाने वाली पोशाकों को मुस्लिम कारीगर हाथ से पूरी कढ़ाई की कारीगरी करते हैं और इसके बाद इन पोशाकों की कटाई और सिलाई की जाती है। कारीगर फिलहाल यहाँ राधा रानी के लिए आकर्षक लहंगा, ओढ़नी और पटुका बना रहे हैं। यहाँ से बनी पोशाक मथुरा वृंदावन से देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों समेत विदेशों में बने मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी के लिए भेजी जाती है। जन्माष्टमी से पहले हरियाणा के करनाल में कान्हा पार्लर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। यहां जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। कान्हा जी पार्लर के नाम से मशहूर इस जगह में ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल का भोग के साथ विशेष श्रृंगार होता है। और केवल जन्माष्टमी ही नहीं बल्कि कई दूसरे त्योहारों के समय भी ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए कई दिनों पहले से लंबी वेटिंग लिस्ट यहां पर चलती है।

0: नन्हे से कान्हा की मुस्कान प्यारी, मोर पंख सजे हाथों में बंसी भी प्यारी, जन्माष्टमी के लिए सजे लड्डू गोपाल की मूर्ति लगे सबसे न्यारी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर घर और मंदिरों को सजाने के अलावा राधा कृष्ण को नई पोशाक पहनाकर झांकियों का भी आयोजन होगा। ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर झूले, मुकुट, मोर पंख और वस्त्र भी लोग खरीद रहे हैं। तो वहीं लोगों के आराध्य कान्हा का भी पार्लर में श्रृंगार हो रहा है। जी हाँ, जिस तरह से विवाह और दूसरे समारोह में जाने के लिए लोग ब्यूटी पार्लर में सिंगार करवाते हैं, वैसे ही अब कान्हा जी को भी पार्लर में सजाने सवारने का काम काफी प्रचलित हो रहा है। जन्माष्टमी से पहले करनाल के कलंदरी गेट में कान्हा जी का पार्लर खुला है, जहां ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है और उनको सजाने सवारने वाले हैं संजीव सोनी।
1: थोड़ा ठाकुर जी, देखो सभी लोग अपने अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लेकर आते हैं और उसमें देखो हर तरह से जैसे उनके भाव होते हैं उस तरह से हमें बताते हैं कि श्रृंगार इस तरह से करना है ठाकुर जी का। और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है कि जैसे सबके ठाकुर जी, देखो आजकल थोड़ा श्रृंगार में समय लगता है, तो हमारे यहाँ ठाकुर जी की भोग सेवा भी पूरी तरह से होती है। हम सभी ठाकुर जी को, क्योंकि सेवा के ठाकुर जी, तो हमें भोग लगाना पड़ता है।
0: संजीव सोनी जो अपने इस पार्लर में लड्डू गोपाल की मूर्तियों का बेहद खूबसूरत और सलोना श्रृंगार करते हैं, वो बताते हैं कि जीवन में एक ऐसा भी समय था जब वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, मगर एक घटना ने उनको कान्हा जी की भक्ति में ही लीन करवाने के लिए मानो प्रेरित किया।
1: एक टाइम ऐसा भी था कि मैं मंदिर नहीं जाता था और अपने घर में तुलसी तक नहीं लगने देता था। वो ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी, हमारे घर के पास ही मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हुई और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने मुझे वहाँ सेवा और पूजा में जाने के लिए मनाया, तो मैं गया वहाँ पे। उस दिन मैंने अपने हाथ से ठाकुर जी का अभिषेक श्रृंगार किया और उसके बाद से ही ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपने साथ ही, मतलब अपने कार्य में सहभागी बनाया। मतलब मुझे कोई भी कार्य, मंदिर की सेवा मिल जाती है, जन्माष्टमी की शोभा यात्रा की, शिवरात्रि की शोभा यात्रा में कोई ना कोई छोटी मोटी सेवा या बड़ी सेवा कोई वो दे देते हैं, तो बस तभी से वो करते करते श्रृंगार की सेवा फिर ठाकुर जी ने तभी मेरा शुरू कराया।
0: पिछले कई साल से संजीव सोनी की कृष्ण भक्ति के माध्यम से साज सज्जा कला इतनी लोकप्रिय हो गई है कि आज हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब समेत दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु अपने अपने लड्डू गोपाल का संजीव सोनी के इस पार्लर से श्रृंगार कराना पसंद कर रहे हैं।
2: पूरी फैमिली इनके पास ही आती है, तो जो भी श्रृंगार का मटेरियल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, हर एक क्वालिटी वाइज होते हैं। जो भी हम लोग जैसे जन्माष्टमी के लिए आते हैं तो ड्रेसेस वगैरह भी डिफरेंट होती है, यूनिक, सब कुछ यूनिक होता है। बस
3: मैं इनसे लगभग 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ आने के बाद कहीं और जाने का मन ही नहीं हुआ, और जो इनकी कलाकारी है वो आप देख ही रहे हो, बहुत अति सुंदर और बिल्कुल एक समझ लो कि भावना से जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात ही है। और यहाँ जो भी चीज़ है मतलब एकदम प्योरिटी और स्वच्छता की गारंटी है।
0: इस पार्लर में जो भी आस्थावान अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लाता है उसे 15 से 20 दिन पहले एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है ताकि पूरे सेवा भाव और नियमों के अनुसार ही कान्हा जी का मेकअप किया जा सके। वैसे कहते भी हैं जहां कान्हा विराजते हैं वहां खुशियां खुद ही चली आती हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं के लिए भी उनके लड्डू गोपाल जी का इस पार्लर में आना, उनका भोग के साथ श्रृंगार होना ही शुभता का ही संकेत है। करनाल से कमलदीप संधु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो जन्माष्टमी की तैयारियां शहर शहर जोर शोर से चल ही रही हैं, बाजारों में खूब रौनक है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, दो अलग अलग राज्यों के दो अलग अलग शहरों की तस्वीरें। एक तस्वीर है झांसी की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। शुक्रवार को मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव से पहले शहर के बाजार कान्हा की भक्ति के रंग में रंग गए हैं। बाजारों में जन्माष्टमी से जुड़ी सामग्री की दुकानें सज गई हैं और खरीदारी के लिए लोगों की चहलकदमी लगातार बढ़ रही है। जन्माष्टमी पर घरों, मंदिरों और विभिन्न स्थानों पर सजने वाली झांकियों और पंडालों के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर रंग बिरंगी झालरें, आकर्षक लाइटें, फूल मालाएं, पर्दे, पालने, मुकुट, पगड़ी, बांसुरी, माखन मटकी, सिंहासन और भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार से जुड़ी तमाम सामग्री बिक रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर एमपी के आगर मालवा से भी आई, जहां दुकानों पर भगवान के लिए रंग बिरंगी पोशाक, बांसुरी, झूले सब दिखाई दे रहे हैं। जन्माष्टमी तक बाजारों में ये रौनक यूं ही नजर आने वाली है। चलिए अब आपको कान्हा के मथुरा में सजे बाजारों की एक झलक भी दिखा देते हैं। यहाँ के हर गली बाजार में एक जैसा नजारा है। दुकानें लड्डू गोपाल की सुंदर पोशाक, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और झूलों से भरी पड़ी हैं और कृष्ण भक्त बड़े उत्साह के साथ अपने कान्हा के श्रृंगार की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं।

0: ब्रजधाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की उमंग हर ओर दिखाई दे रही है और मथुरा के तो कहने ही क्या। बाजार सज गए हैं, मुरलीधर की पोशाक और श्रृंगार के सामान से पूरा बाजार पटा हुआ है। यहाँ गिरधारी के सुंदर कपड़े, मुकुट, मोर पंख, बांसुरी और झूलों की भरमार है। होली गेट से द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के बाजार तक हर दुकान को जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष तौर पर सजाया गया है।
1: इस तरह के गोपाल जी बाजार में सज के तैयार हैं और ये पोशाक का बाजार है।

0: एक बड़ा ठाकुर जी का जो जन्म है ना, वो बड़ा अद्भुत और अनेक तरीके से मनाया जाता है। ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाई जाएगी, नए उनके झूले होंगे, नए वस्त्र होंगे, नई बांसुरी होगी, नई मुकुट होगा।
1: बड़ी तादाद में ग्राहक मथुरा के बाजारों का रुख कर रहे हैं। जाहिर है इससे दुकानदार खुश हैं और इनका मानना है कि इस साल कारोबार पहले की तुलना में बेहतर हो रहा है। दावा ये भी है कि इनके पास लड्डू गोपाल के श्रृंगार से जुड़े सामान का जबरदस्त कलेक्शन है जो कृष्ण भक्तों को लुभा रहा है।
2: इस बार सब जो भी हैंडक्राफ्ट वर्क है, थ्री पीस में, ये सब स्टोन बूटी वाला सब बुटीक पीस इस बार ट्रेंड में बहुत काफी है। कस्टमर की भी काफी डिमांड है। रेगुलर पैटर्न पहना पहना के तो कस्टमर परेशान हो चुका है, तो उन्हीं की डिमांड देखते हुए हम ये सुंदर सुंदर कली के पैटर्न में और यूनिक यूनिक इंग्लिश कलर जो है, रेड पीला सब पहना चुके हैं। इसीलिए हम कस्टमर्स के लिए इस बार नए से नई वैरायटी लाने की हमने कोशिश की है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं हमारे स्टॉक में वेरिएशन, कितना सुंदर सुंदर कलर, कितना सुंदर सुंदर पगड़ी के साथ ये आपको अवेलेबल रहेगा। ये देखिए, ये तो स्पेशली जन्माष्टमी के लिए हमने डिजाइन करवाया है विद लड्डू गोपाला विद मैचिंग पगड़ी।
1: दिल्ली, भरतपुर और आगरा जैसी आसपास की जगहों से ग्राहक यहां पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य ठाकुर जी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। कोई अपने नन्हे काना के लिए मोर पंख थीम वाली ड्रेस ढूंढ रहा है, तो कोई फूलों से सजा झूला तलाश रहा है। इस जन्माष्टमी हर कृष्ण भक्त चाहता है कि उसके लड्डू गोपाल सबसे सुंदर दिखें।
3: उनकी पूरी फूल तैयारी हो रही है। मथुरा जैसी जन्माष्टमी कहीं नहीं होती,
0: कहीं नहीं होती,
3: नहीं होती, नहीं।
0: एकदम यहाँ सारी पोशाक वोशाक सब
3: जी जी बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे
0: सब मिल जाता है।
3: हाँ, जो हमारे राजस्थान में भी नहीं है।
0: नहीं है,
3: नहीं है।
0: क्या क्या क्या नाम है आपका?
4: आपने
0: क्या तैयारी कर रही है
4: भैया? ठाकुर जी की कर रहे हैं जन्माष्टमी की। हम तो आगरा से मथुरा मनाने आए हैं।
0: अच्छा।
4: तो यहाँ की तरह कहीं भी नहीं मनती है। अच्छा। यहाँ की भाई अलग ही वो है मनाने वाली, और यहाँ भगवान जी का जन्म हुआ है, सारी लीला है चाहिए भगवान ने। भाई यहाँ की तो है ही नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी सब कुछ है यहाँ, पोशाक नेत्र मालाएं ठाकुर जी, यहाँ की से कोई यहाँ की से तैयारी कहीं नहीं है भैया।
1: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर स्थानीय दस्तकारों की भी चांदी है। यहाँ के कारीगर बड़ी ही शिद्दत और मेहनत के साथ बाल गोपाल की पोशाक तैयार कर रहे हैं और कृष्ण जन्मोत्सव में भागीदारी दर्ज करा रहे हैं।
5: जो है मतलब ये कि इस वक्त जो है मतलब तुम्हारे जो है पीले कलर की ज्यादा चल रही है इस वक्त, और पोशाकों की बाहर का ऑर्डर भी है हमारे पास में अपने, और जन्म स्थान का भी हमारे पास ऑर्डर है, तो ये चल रही है। और मतलब जो रात दिन मतलब जो कि हमारे कारीगर भी सबरे काम कर रहे हैं, तो उन पोशाकों को पूरा करके जल्दी से जन्माष्टमी के लिए तैयारी करी जा रही है।
0: पूरा जो बाजार है, पूरा बाजार है, बड़ी भीड़ है बाजार में, और तमाम जो लोग हैं भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। और पूरे मथुरा की बात करें तो पूरा मथुरा सज धज के ठाकुर जी के जन्मोत्सव के लिए तैयार है। और पोशाक का बाजार है, चाहे ठाकुर जी के मुकुट श्रृंगार का बाजार हो या और भी किसी चीज का बाजार हो, वहां सभी गुलजार हैं, लोग पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण के लाला का जन्मोत्सव मनाने के लिए, नंदलाल का जन्मोत्सव, अजन्मे का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग तैयार हैं। और बड़ी तादाद में ठाकुर जी के वस्त्र नेत्र ठाकुर जी का श्रृंगार खरीद कर ले जा रहे हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
6: तो तैयार हो जाइए जन्माष्टमी के इस पर्व को जीएनटी संघ मनाने के लिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें और रंग लगातार आपको गुड न्यूज टुडे पर हम दिखाते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अच्छे कपड़े जारी है, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम

0: अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: भारतीय वायुसेना को मिली बड़ी कामयाबी, स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम खगंदक 243 का सफल टेस्ट। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। 3 ट्रस्टी के नामों का भी हुआ ऐलान। जितेंद्र मिश्र के गांव में मना जश्न, बटी मिठाई। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा। परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर हुआ तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। बद्रीनाथ मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां। साल फूलों से नहीं, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा मंदिर। मथुरा में रोशनी में नहाई श्री कृष्ण जन्मभूमि। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार। काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। भारत को मिली 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया ऐलान। 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। किसी पुरानी घटना को नया बताकर परोसा जाता है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर हो। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे पर इन्हें शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल। हर झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले होगी वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दरोगा सहित पुलिसकर्मियों को पीटने वाले दबंगों के घर को बुलडोजर से तोड़ा गया है। क्या है सच्चाई, आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि नेपाल में आई बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक पावर प्लांट टूट गया। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बुलडोजर से घर को ढाया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दरोगा को पीटने वाले दबंगों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात है और बुलडोजर से घर को ढहाया जा रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं इसे रोकने की कोशिशें करती हैं, लेकिन महिला पुलिस उन्हें वहां से हटा देती है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह लखनऊ का वीडियो है और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि लखनऊ के पारा में दरोगा पर जानलेवा हमले करने वाले लोगों की भैंस बकरी को नीलाम कर दिया गया। अब मकान पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जितने भी मकान बिना नक्शे के बने या अवैध बने सब तोड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार वायरल कर रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी इलाके में भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं। वहां पर एक बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं विरोध प्रदर्शन करती दिख रही हैं, लेकिन महिला पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक नहीं चलती। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां पर दरोगा सहित कुछ पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले दबंगों के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इससे ये तो साफ हो गया कि वीडियो में बुलडोजर के जरिए एक्शन लिया जा रहा है। अब इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों के बैज को भी जूम करके ध्यान से देखा, तो ये साफ हुआ कि हरियाणा पुलिस के जवान है। अब वीडियो लखनऊ का है तो फिर वहां पर हरियाणा पुलिस का क्या काम है, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें जानकारी जरूर मिली कि हाल ही में लखनऊ में पारा इलाके में पुलिस नगर निगम की टीम के साथ अवैध डेयरियों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला करते हुए पथराव भी किया था। हमलावर यही नहीं रुके थे, उन्होंने बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी दरोगा विनय पटेल को दौड़ाकर बुरी तरह से पीटा भी था। इस मामले में पुलिस ने 24 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन हमें इस दौरान ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे ये पुष्टि हो सके कि पुलिस कर्मियों की टीम पर हमला करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। लिहाजा वायरल हो रहे वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को लखनऊ का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक फेसबुक अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 9 जून 2026 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वीडियो हरियाणा के नरवाना का है। पुलिस ने यहां नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 27 मकानों को ढहाया था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया और लगातार खोजबीन की। इस दौरान 10 जून 2026 को प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक नरवाना की चमेला कॉलोनी में नशा तस्करों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 अवैध मकानों और निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों का कहना था कि जिन 27 मकानों और निर्माणों को तोड़ा गया उनके खिलाफ जिला नगर योजनाकार जीन की ओर से पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ। असल में वायरल वीडियो हरियाणा का है और इस साल जून में हुई एक कार्रवाई का है। हरियाणा पुलिस ने जून में नरवाना शहर में नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण ढहाया था। ये वीडियो उसी घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में एक पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। लोग कह रहे हैं कि नेपाल की बाढ़ में यह पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए।
5: नेपाल में आई बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। इसे हालिया वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। इन सब के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में एक पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो जाता है। कुछ लोग इसे नेपाल की बाढ़ का बताकर शेयर कर रहे हैं। सोशल साइट एक्स पर इसे शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, नेपाल फ्लड। नेपाल में बाढ़ से करीब 13 पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। ये ज्यादातर प्रोजेक्ट रसुआ और नुवाकोट जिले में नदी पर बने हुए थे। लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई न्यूज आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को नेपाल का बताकर शेयर किया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि भीषण बाढ़ का ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पानी की तेज बहाव की चपेट में ये पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। सच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि नेपाल में भीषण बाढ़ की वजह से 12 से अधिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा, जिससे करीब 431.1 मेगावाट बिजली का उत्पादन रुक गया है। अब ऐसे में जानना जरूरी हो गया था कि नेपाल के किस हिस्से का ये पावर प्लांट है। वीडियो को देखने से तो यही लग रहा है कि ये किसी पावर प्लांट का है, लेकिन लगातार खोजबीन करने के बावजूद फैक्ट चेक टीम को दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई ऐसी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल में बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हैं। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम लगातार इन तस्वीरों और वीडियोस की पड़ताल कर रही है। हमारी पड़ताल में सभी फेक साबित हुए हैं, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसके बाद पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो नेपाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जाने।
5: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पर 16 फरवरी 2023 को छपी एक रिपोर्ट मिली, जिसमें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट मौजूद है। यहां इसे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के रानोलिया पावर प्लांट का बताया गया है। पाकिस्तान के इस इलाके में 2022 में भीषण बाढ़ आई थी। इस रिपोर्ट में इसी बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताया गया है। इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें ऐसे कई यूट्यूब चैनल मिले जिन्होंने अगस्त 2022 में इस वीडियो को शेयर किया था। इन चैनलों ने भी इसे रानोलिया हाइड्रो पावर प्लांट का बताया है। सर्च के दौरान ही हमें यूट्यूब पर रानोलिया हाइड्रो पावर प्लांट का जून 2022 का एक ब्लॉग भी मिला। इसमें साफ देखा जा सकता है कि यह जगह वायरल वीडियो से बिल्कुल मिलती है। जर्मनी के न्यूज आउटलेट की 2 सितंबर 2022 की रिपोर्ट में भी ये वीडियो देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान की डुबेर नदी में आई बाढ़ का है। वीडियो का क्रेडिट एक टिकटॉक हैंडल को दिया गया था। हमें इसी यूजर नेम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिल गया। पाकिस्तान के इस यूजर ने अपने बायो में खुद को एक नेचर एंथुजियास्ट बताया है। इस अकाउंट ने ये वीडियो 28 अगस्त 2022 को पोस्ट किया था। वीडियो वायरल होने के बाद इस अकाउंट ने 27 अगस्त 2026 को इसे दोबारा शेयर किया और साफ किया कि ये वीडियो अगस्त 2022 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के छोटे से गांव दुबेर में आई बाढ़ का है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2022 में आई बाढ़ का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: दिल्ली मेट्रो से सामने आया वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में एक छोटी बच्ची ड्यूटी पर तैनात सीएसएफ जवान को देखकर जिस अंदाज में सैल्यूट करती है, वह पल बेहद प्यारा और भावुक नजर आता है। मेट्रो कोच में यात्री अपने अपने सफर में व्यस्त थे। इसी दौरान बच्ची की नजर वर्दी पहने सीआईएसएफ जवान पर पड़ती है। बच्ची बिना किसी झिझक के जवान की ओर देखती है और अचानक अपना हाथ उठाकर सैल्यूट कर देती है। बच्ची के चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ सम्मान का भाव साफ नजर आता है। बच्ची का यह छोटा सा इशारा वहाँ मौजूद लोगों के लिए भी खास बन गया। आमतौर पर बच्चे किसी वर्दीधारी जवान को देखकर उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने जिस गंभीरता के साथ सैल्यूट किया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। जवान ने भी बच्चे के सम्मान को नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने बेहद सहज और प्यार भरे अंदाज में उसके सैल्यूट का जवाब दिया। कुछ सेकंड का ये संवाद बिना किसी शब्द के ही बहुत कुछ कह गया। इस प्यारे पल का वीडियो सीआईएसएफ के आधिकारिक एक्स अकाउंट में शेयर किया गया है। इस प्यारे पल का वीडियो सीआईएसएफ के आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची का प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची अपने क्यूट अंदाज और मासूमियत से लोगों का दिल जीतती नजर आ रही है। बच्ची की प्यारी हरकतें देखकर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं और वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े वीडियो अक्सर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटे बच्चे के अपने दोस्त के प्रति चिंता और मासूमियत लोगों का दिल जीत रही है। वीडियो देखने के बाद यूजर्स इसे बचपन की सच्ची दोस्ती की सबसे खूबसूरत झलक बता रहे हैं। वायरल वीडियो में एक प्ले स्कूल का नजारा दिखाई देता है। क्लासरूम में मौजूद एक बच्चा अपने दोस्त को फोन मिलाता है और बड़े ही मासूम अंदाज में पूछता है, तो आज स्कूल क्यों नहीं आया? दूसरी तरफ से बच्चे की आवाज़ आती है कि वे बारिश की वजह से स्कूल नहीं आ पाया। दोनों बच्चों के बीच चल रही छोटी सी बातचीत सुनकर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठे। बातचीत का सबसे प्यारा पल तब आता है जब फोन पर मौजूद दोस्त की बात सुनने के बाद बच्चा बेहद भोलेपन से कहता है, जब बारिश रुक जाए तब आ जाना। इतना कहकर वह आराम से फोन रख देता है। उसके चेहरे पर अपने दोस्त से मिलने की खुशी और चिंता साफ झलकती है। ये मासूमियत इस वीडियो को खास बना रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि साधु ने न केवल उस बच्चे के सामने हाथ जोड़े, बल्कि उसे साक्षात शक्ति और देवी का स्वरूप मानकर नतमस्तक हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची साधु के पास पहुंचती है। साधु बच्चे के पैर को छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद साधु बच्चे के हाथ में कुछ रुपए रख देते हैं। बच्ची उसे आशीर्वाद समझ कर रख लेती है। एक तपस्वी का ये व्यवहार समाज को एक गहरा संदेश देता है कि सनातन संस्कृति में बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं बल्कि पूजनीय शक्ति है। ये वीडियो केवल आस्था का नहीं बल्कि नारी सम्मान और बेटियों के प्रति आदर का एक अद्भुत उदाहरण है।
7: आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे ना?
6: एक पिता और उसकी मासूम बेटी के बीच ये बातचीत सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रही है। बच्चे जिस मासूम अंदाज में अपने माँ के बारे में पिता को एक एक बात बता रही है, उसे सुनकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हैं। आप भी सुनिए ये बातचीत।
7: आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे ना, मैंने मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जो मैं आपसे बिना पूछे बाहर जा सकता हूँ, कुछ भी मन में वो कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
8: फिर क्या बोला मम्मी?
7: मम्मी जी ने जो बोला ना वो मेरे दिल को छू गई।
8: क्या बोला?
7: मम्मी जी ने बोला कि इतना बड़ा तेरा बाप भी नहीं होया कभी।
6: हंसी मस्ती और स्वाद का मजेदार संगम, पैरों में बंधी रस्सी, उसी रस्सी में लटका बिस्किट और बिना हाथ लगाए उसे मुंह तक पहुंचाने की चुनौती। जितना पैर उठेगा बिस्किट उतना करीब आएगा। हर बच्चा पूरी लगन से कोशिश कर रहा है, कोई जल्दी सफल हो रहा है तो कोई बार बार प्रयास कर रहा है। इस मजेदार खेल ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है और बता दिया कि सीखने का सबसे आसान तरीका खेल ही होता है। एक लाइन लंबी कतार और बच्चों का शानदार तालमेल, एक एक कर सभी बच्चे ट्रेन की बोगियों की तरह एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कतार बढ़ती है वैसे वैसे खेल और भी रोमांचक होता जाता है। हर बच्चा पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहा है। इस खेल में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सहयोग, अनुशासन और टीम वर्क का भी संदेश छिपा है। यही वजह है कि बच्चे इस खेल का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे तेज बारिश में खेल रहे हैं। सभी बिना छतरी के मैदान में भर चुके पानी में खुशी खुशी नाच रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं। जबकि कुछ यूजर्स ने स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाया कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। कपड़े, तेज म्यूजिक और उसी ताल पर बच्चों का शानदार प्रदर्शन। देखने में स्टेप भले ही आसान लग रहे हों, लेकिन इन्हें एक साथ सही तालमेल के साथ करना बिल्कुल आसान नहीं है। इन नन्हे बच्चों ने अपनी मेहनत और अभ्यास से हर मूवमेंट को बेहद खूबसूरती से पूरा किया। चेहरे पर मुस्कान और कदमों में गजब का तालमेल दिखाई दिया। बच्चों की इस प्यारी प्रस्तुति का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लोगों का खूब प्यार बटोर रहा है। उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, इस बात को बिल्कुल सच साबित कर दिया है 66 साल की फिटनेस एंटरप्रेन्योर रेनु सिंधु ने। रेनु अहमदाबाद की रहने वाली हैं और वहां पर अपना जिम चलाती हैं। वो सिर्फ जिम की मालकिन ही नहीं बल्कि खुद फिटनेस फ्रीक भी हैं। 66 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। और अब उनका एक लेटेस्ट वीडियो आया है जिसमें वो पोती को लेकर वर्कआउट कर रही हैं। उन्होंने अपने 66वें जन्मदिन पर ये किया। इस वीडियो को देखकर लोगों की खूब तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच।
1: कहते हैं मंजिल पाने का जज्बा हो तो रास्ते की मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं, और ये भी कि बात करने से ही बात बनती है। यूपी में बलिया की 7 साल की रागिनी इस बात की मिसाल है। बचपन में एक हादसे में उसका एक पैर खराब हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रागिनी एक पैर से ही करीब 400 मीटर का सफर तय कर स्कूल पहुंचती है, लेकिन उसका ये संघर्ष जब सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आया तो उसकी भावुक अपील प्रशासन तक पहुंची और उसके सपनों को नई उड़ान भी मिली।
2: क्या क्या
3: लिया
2: मिला है आपको?
3: काट भी मिला है, शायद मिठाई मिला है।
2: अच्छा अच्छा, रागिनी पढ़ने जाओगी ना?
3: हाँ।
2: क्या बनोगी?
3: डॉक्टर
2: बनना है। और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए?
3: आप कुछ नहीं चाहिए।
4: रागिनी को अब कुछ नहीं चाहिए, छोटी सी जरूरत थी पूरी हो गई। अब मासूम चेहरे पर मुस्कान है, गले में डीएम अंकल ने माला पहनाई है, हर जंग जीतने का आशीर्वाद दिया है और हर कदम पर मदद का भरोसा भी। बात रखने से बात बनती है। बलिया की रागिनी ने भी सोशल मीडिया के जरिए एक अपील की थी, जिसने भी सुना और देखा मासूम का दर्द दिलों को छू गया। उसके भावुक अपील सुनकर बलिया के डीएम मंगल प्रसाद सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए, पहले डॉक्टरों की टीम भेजी और फिर उससे मिलने खुद आए। साइकिल, खेलकूद की एक किट और मिठाइयां दी और हर संभव मदद और इलाज का भरोसा भी। जिस 400 मीटर लंबे रास्ते को रागिनी स्कूल जाने के लिए एक पैर से नापती है, वहां सड़क बनाने का भी भरोसा मिला, ताकि रागिनी अपने सपनों को नई उड़ान दे सके।
5: लोग उसी के गांव में, उसी के घर पे उसके परिवार से मिलने आए हैं, बिटिया से भी मिले हैं। साइकिल तो एक औपचारिक है, ठीक है, साइकिल तो दिया ही हम लोगों ने, बट हम लोगों का प्रयास ये है कि बिटिया को और उसके परिवार को कोई परेशानी ना हो। जो जो भी हम लोग कर सकते हैं उसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। इस गांव में स्कूल तक और गांव तक आने का रास्ता बना हुआ है, बट थोड़ा मरम्मत की आवश्यकता, उसको भी हम कराएंगे। इनके यहाँ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम भी ठीक कराएंगे। अभी व्यक्तिगत शौचालय दिया गया है इनको, स्वीकृत हो चुका है वो, इनको पैसा भी मिल चुका है इनके खाते में, वो भी बनवाएंगे। बिटिया को मिल करके और बिटिया से मुलाकात बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। बिटिया टैलेंटेड है और इसको हम लोग एक पूरी किट दिए हैं, जिससे बिटिया खेल कूद सके, पढ़ाई कर सके। और बिटिया की इच्छा है कि वो पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बनना चाहती है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बिटिया का पैर भी जल्दी ठीक हो जाए। हम लोग प्रयास करेंगे, मेडिकल चेकअप भी हम कल करा रहे हैं, चूँकि पुराना केस है ये, 5-6 साल पुराना है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि बिटिया का अगर पैर ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, दोनों पैरों पर चल सकती है, तो यहाँ लखनऊ जहाँ भी ऑपरेशन हो सकता है हम लोग कराएंगे।
4: रागिनी से तो आप अब तक परिचित हो ही चुके होंगे। 7 साल के इस मासूम का परिवार यूपी के बलिया जिले के रानीपुर इलाके में रहता है। जब रागिनी महज 6 महीने की ही थी, तब एक हादसे में उसका एक पैर खराब हो गया। रागिनी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में उसके लिए कृत्रिम पैर का इंतजाम करना परिवार के लिए आसान नहीं था, लेकिन रागिनी ने हार नहीं मानी। पढ़ाई लिखाई के प्रति उसका लगाव बचपन से था, सो एक पैरों से ही स्कूल जाने की ठान ली।
6: दिक्कत यही होता है कि पढ़ने जाती है, एक पैर पे गिर जाती है, रोने लगती है, पैर में दर्द उठ जाता है।
7: पढ़ना चाहती है,
6: लड़का जाते हैं तो छपराती है, रोती है, हम लोग का करेजा फटता है।
7: क्या चाहिए आपको?
6: हमको सरकार अनुदान इसको सुविधा कुछ देती तो यही हम चाहते हैं।
4: रागिनी के पास एक पैर नहीं है, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं, हौसले बुलंद हैं। और अब जब सोशल मीडिया के इस दौर में उसकी आवाज प्रशासन तक पहुंच गई है, तो उसकी उम्मीदों को अब नए पंख भी मिल गए हैं। बलिया से अनिल कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब आपको दिखाते हैं देश की सबसे उम्र दराज बाघिन महक की बर्थडे के जश्न की तस्वीरें। जी हाँ, कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने केक काटकर महक का जन्मदिन मनाया और उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की।

0: ये तस्वीर किसी जू में जीवन की जिंदा दिली की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। किसी बाघिन का 22 साल की उम्र को छू लेना आसान नहीं माना जाता, लेकिन 22 साल पूरे कर चुकी बाघिन महक ने ये कर दिखाया है। महक अब 23वें साल में पहुंच गई है और इसी बात ने इस बाघिन को खास बना दिया है। बाघिन महक के 23वें बर्थडे पर कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में जश्न मनाया गया।
1: May God bless you. Happy birthday.
0: दरअसल आमतौर पर चिड़ियाघरों में बाघ बाघिन की उम्र करीब 16 से 18 साल के आसपास मानी जाती है। वहीं जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में इनकी उम्र इससे भी कम हो सकती है। ऐसे में 22 साल की महक सामान्य जू लाइफ से करीब 4 साल आगे निकल चुकी है। यानी महक ने सिर्फ उम्र को ही मात नहीं दी बल्कि उम्र के रिकॉर्ड को भी चुनौती दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी महक एक्टिव है। पानी में अटखेलिया करना, एनक्लोजर की बाउंड्री के आसपास घूमना और पर्यटकों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना, महक आज भी ये सब करती है। हालांकि उम्र का असर दिखना शुरू हो चुका है। उठने में पहले के मुकाबले महक को थोड़ी सी परेशानी होती है, इसीलिए उसकी कैल्शियम डोज बढ़ाई गई है।
2: ये अभी 22 साल की हो चुकी है, 28 अगस्त 2004 में जन्मी थी। ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से उस समय इनका जन्म हुआ था और वहीं से जो 2012 में हमारे कोटा में जू में लाया गया था।
0: महक की उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसकी सेहत अच्छी है। उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक है, दांत और जबड़े मजबूत हैं और वजन भी लगभग सामान्य है। महक की लंबी उम्र के पीछे खानपान और मेडिकल केयर भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हर दिन उसे करीब 8 किलो चिकन और मांस दिया जाता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और आयरन टॉनिक भी, और उम्र को देखते हुए उसकी मेडिकल मॉनिटरिंग भी लगातार होती है। हर 3-4 दिन में उसकी मेडिकल जाँच की जाती है। महक की उम्र का राज सिर्फ उसकी देखभाल में नहीं, वन विभाग के मुताबिक जेनेटिक फैक्टर भी इसकी बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि अच्छी डाइट और मेडिकल केयर के बावजूद हर बाघिन 22 साल तक नहीं पहुंचती। महक का मामला इसलिए भी खास है क्योंकि उम्र बढ़ने के बावजूद उसकी सक्रियता और सेहत काफी हद तक बरकरार है। महक अब सिर्फ अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क की पहचान नहीं बल्कि लंबी उम्र तक जीवित रहने वाली बाघिन की एक मिसाल भी है। 22 साल पूरे, 23वें में कदम, उम्र बढ़ी है, रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन पानी में महक की अटखेलियां और एनक्लोजर में उसकी चाल आज भी बता रही है कि दहाड़ भले ही धीमी हुई हो, महक की कहानी अभी बाकी है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भारतीय वायुसेना को मिली बड़ी कामयाबी, स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम खगंदक 243 का सफल टेस्ट। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, 3 ट्रस्टी के नामों का भी हुआ ऐलान। जितेंद्र मिश्र के गांव में मना जश्न, बटी मिठाई। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा, परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर हुआ तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। बद्रीनाथ मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां, इस साल फूलों से नहीं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा मंदिर, मथुरा में रोशनी में नहाई श्री कृष्ण जन्मभूमि। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार, काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। भारत को मिली 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया ऐलान, 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जेएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। देखिए, देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व है, उससे ठीक पहले अब शहर शहर बेसब्री से कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। आप भारत के किसी भी शहर में रहते हों, आपके आसपास के मंदिरों में अब आपको तैयारी दिखने लगी होगी। शहर शहर प्रसिद्ध मंदिरों से लेकर गली मोहल्लों तक के तमाम मंदिरों में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की परंपरा रही है। लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है कन्हैया के ब्रज में, जहां मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल से लेकर बरसाना तक जन्माष्टमी के रंग बिखरे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। तस्वीरें देखिए।

0: कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी भाद्र मास मनुहार चंद्र वंश रोहिणी नखत दिन विशुद्ध बुधवार वृषभ लग्न में चंद्रमा लग्न राशि एक साथ जब शुभ ये संजोग बना प्रकट भये श्रीनाथ। कोई 5000 साल पहले कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच भाद्रपद अष्टमी की रात मथुरा की काल कोठरी में प्रकाश बनकर स्वयं नारायण प्रकट हुए थे। फिर क्या मथुरा, क्या गोकुल और क्या वृंदावन, यमुना की हर लहर से लेकर गोवर्धन पर्वत के शिखर तक ब्रज की रज रज कृष्णमय हो उठी। मथुरा में जहां आज कृष्ण जन्म स्थान माना जाता है, वह 5000 साल पहले कटरा केशव देव नाम की जगह पर राजा कंस का कारागार हुआ करता था। उसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। आज कन्हैया की ये जन्मभूमि एक बार फिर प्रकाश से जगमगा रही है। भगवान कृष्ण के 5253 जन्मोत्सव से पहले पूरे मथुरा को सजाया जा रहा है। ये तो तमाम मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि मंदिर की बात निराली है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253 जन्मोत्सव के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान सज धज कर तैयार है। तमाम जो लाइटिंग है, साज सज्जा है, वो बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ की गई है। 5 दिवसीय जो उत्सव है ना, वो आज शुरू हो गया है। और उसकी बात की जाए तो लीला मंच पे भगवान की जो बाल लीला है, भगवान की जो सारी लीलाएं वो की जा रही है। और वहीं उत्सव की बात की जाए तो 3 तारीख को सुबह में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए भगवान के उत्सव की आगाज करेगी। वहीं शाम में 5:30 के आसपास जो भगवान को पंचरत्नीय पोशाक है वह अर्पण की जाएगी, जो ठाकुर जी जन्मदिन वाले दिन पहनेंगे और अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे।
0: बताया गया है कि 5 दिवसीय जन्माष्टमी उत्सव से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को करीब 200 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। जन्माष्टमी के दिन नए बने रजत कमल में विराजमान ठाकुर गोपाल जी का जन्म अभिषेक हर बार की तरह इस बार भी विशेष आकर्षण रहने वाला है। 4 सितंबर को सुबह 5:30 भगवान कृष्ण की मंगला आरती होगी, सुबह 8 पंचामृत अभिषेक और रात 10 जन्म महाअभिषेक होगा। रात 12 भगवान के प्राकट्य दर्शन और आरती होगी, जिसके बाद कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय से अभिषेक किया जाएगा। फिर रजत कमल में ठाकुर जी का जन्म महाअभिषेक होगा। वहीं श्रृंगार आरती रात 12:45 से 12:50 तक होगी और शयन आरती रात 1:55 से 2 तक होगी। इस मौके पर जन्मभूमि मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का प्रवेश रात 1:30 तक चालू रहेगा। अगले दिन भी जन्माष्टमी के उत्सव और विशेष दर्शन का ये दौर जारी रहेगा।
1: दूसरे दिन भगवान का जो उत्सव है वो भगवान सुबह से ही ढोल नगाड़े के साथ मंगला आरती होगी और भगवान कालहंस बंगले में विराज कर सुबह से शाम तक दर्शन देंगे। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो 5 दिवसीय उत्सव में ठाकुर जी की जो आराधना है, जो सेवा है, जो पूजा है और शाम के समय में भगवान का अभिषेक है, ये सारी चीजें होंगी। और वहीं अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है। विशेष प्रसाद यहाँ पंजीरी का, मेवा के लड्डू का, गोला की बर्फी का जो प्रसाद है, पंचामृत है, वो यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अर्पण किया जाएगा, दिया जाएगा भगवान का प्रसाद।
0: हर साल की तरह इस साल भी ब्रजभूमि में जन्मोत्सव के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देश भर से आने वाले इन श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित दर्शन का मौका मिले, इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। शहर में जगह जगह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी और CCTV से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि में 5253 जन्म दिवस बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर में बांट करके मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव सभी में खूब सजावट की जा रही है। यात्रियों को भीड़ से बचाने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से दर्शन कराया जाएगा। सभी मंदिरों के जो प्रबंधक हैं, जो पुजारी गण हैं, जो गोस्वामी बंधु हैं, सबके साथ बैठक करके किसी प्रकार से दर्शनार्थियों को और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन करने में असुविधा ना हो।
0: ब्रज के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे ब्रजवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ एक साथ मिलकर मनाते हैं। फिलहाल सारा ब्रज अपने लाडले कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारी में जुटा है।
1: भगवान का जो उत्सव है ना, बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और वही शहर की बात करें तो पूरा शहर बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जा रहा है। कभी 24 चौराहे हैं और 24 चौराहों के पास 24 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, जहां से श्रद्धालु आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। पूरे शहर को बड़े भव्यता और दिव्यता और ऐसी लाइटिंग के साथ, दूधिया रोशनी के साथ सजाया गया है कि जो भी यहाँ आए ठाकुर जी का जन्म उत्सव बनाने, वो एक अच्छा संदेश लेके जाए और भगवान के प्रति जो आस्था है, जो समर्पण है, जो विश्वास है, जो ठाकुर जी के प्रति समर्पण, विश्वास और जो श्रद्धा है उसको लेके आए, वो उसकी श्रद्धा में कहीं कोई भाव अधूरा ना रहे, इसी को देखते हुए पूरे नगर को, पूरे ब्रजमंडल को अजन्मे के जन्म के लिए तैयार किया जा रहा है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
3: अनोखा है ब्रज और उतने ही अनूठे हैं ब्रज के बाल गोपाल। कान्हा ने जहां ब्रज भूमि को अपनी बाल लीलाओं और रास के रंग का साक्षी बनाया, तो वहीं कुरुक्षेत्र की धरती उनके मुख से निकले गीता ज्ञान सागर की गवाह बनी। भगवान कृष्ण की जीवन लीलाएं अद्भुत हैं। वह ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इंसानों की जिंदगी से जुड़े हर भाव और हर संवेदना को जिया है। श्री कृष्ण के जीवन में घटी घटनाओं में मानव जीवन के लिए वो तमाम संदेश छुपे हुए हैं जिन्हें समझे जाने की जरूरत है। भगवान कृष्ण के ब्रज में बीते बाल्यकाल से लेकर कुरुक्षेत्र में महाभारत के रण तक उनके जीवन की कहानियां अंधेरे में बिखरी रोशनी की तरह हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण की कुछ प्रिय वस्तुएं जैसे मोरपंख, बांसुरी, दर्शन चक्र वगैरह, ये सभी अपने आप में कई सीख समेटे हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। सबके पहले बात मोरपंख की। भगवान कृष्ण का मोरपंख समझाता है कि जीवन में सभी तरह के रंग होते हैं, जैसे कि सुख, दुख, प्रेम, करुणा, रिश्ते आदि। अगर इन रंगों को सलीके और मर्यादा में रखा जाए तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। जरूरत है तो सिर्फ सही तालमेल की। इसी तरह भगवान कृष्ण की बांसुरी भी सुंदर संदेश देती है। बांसुरी में 8 छेद होते हैं, ये जीवन का प्रतीक है। इसमें जो छेद हैं वो कमियां हैं। कृष्ण कहते हैं जीवन में लाख कमियां हो लेकिन जीने का तरीका और सोच सकारात्मक हो तो कमियों के बावजूद जीवन को मधुरता से जिया जा सकता है। तो वहीं वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्या सीख समेटे हुए है, ये भी आपको बताते हैं। वैसे तो ये हथियार है लेकिन नाम है सुदर्शन। सु प्लस दर्शन, यानी जो दिखने में बहुत सुंदर हो, प्रभावशाली हो। इंसान के लिए उसका व्यक्तित्व ही सुदर्शन चक्र है। लोग आपके व्यक्तित्व को देखकर ही व्यवहार करते हैं। अगर व्यक्तित्व सुदर्शन है तो आपकी हर जगह जीत तय होगी। भगवान कृष्ण वैजयंती माला भी धारण करते हैं। कमल के फूल के बीजों से बनी माला को वैजयंती माला कहा जाता है। ये बीज बहुत सख्त होते हैं, आसानी से टूटते नहीं। ये सिखाते हैं कि इंसान को हर तरह की परिस्थिति में खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, जीत तभी मिलती है। और चलिए अंत में बात बाल गोपाल के पसंदीदा माखन मिश्री की। माखन नर्म और एकदम पिघलने वाला होता है, जबकि मिश्री सख्त होती है लेकिन माखन में घुलकर मिठास देती है। ये सिखाता है कि हमारा स्वभाव माखन की तरह नर्म और व्यवहार मिश्री की तरह घुलने वाला होना चाहिए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको मथुरा की तस्वीरें दिखाई, अब आपको लेकर चलते हैं वृंदावन। लेकिन ये ब्रज का वृंदावन नहीं है बल्कि राजस्थान की धरती पर मौजूद गुप्त वृंदावन धाम है। जयपुर का गुप्त वृंदावन धाम श्री कृष्ण का भव्य मंदिर है। 4 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम मनाने की पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। भगवान कृष्ण के लिए खास फूल बंगला झांकी तैयार हो रही है, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विशालकाय पंडाल लगाया गया है। भगवान के लिए 108 प्रकार का विशेष भोग बन रहा है। गुप्त वृंदावन धाम में इस बार जन्माष्टमी पर 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचने की पूरी संभावना है। ऐसे में भक्तों की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए दर्शन सुगम बनाने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या खास होने वाला है जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, इस बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रीतम जैन।
4: मैं अभी मौजूद हूं जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, जहां पर भी ये जो तैयारियां हैं ये भी देखने को मिल रही है। साज सज्जा जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। इनका कहना है कि 1 महीने पहले से ही जन्माष्टमी के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। ये जो थीम है ये फूल बंगले का थीम है, जिसमें 32 अलग अलग तरह के फूल जो हैं वो लाए गए हैं, जिनसे इस पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है जो भगवान का दरबार है सिर्फ उसका जो सजावट है वो की जाती है, पर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा मंदिर फूलों से सजेगा। फूल बंगला जो है वो उसको कहा जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे सिर्फ जयपुर में मिलने वाले नहीं पर बाहर से भी कई सारे फूल हैं वो मंगवाए गए हैं। बहुत ही कलरफुल ये जो डेकोरेशन है ये यहाँ पे किया जा रहा है। भगवान कृष्ण की पोशाक की मैं बात करूँ तो पोशाक वृंदावन से आ रही है। खास पोशाक जो है वो भगवान कृष्ण के लिए उनके जन्मोत्सव के लिए बनवाई जा रही है, जो कि वृंदावन से आ रही है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग रंगों के जो प्रॉप्स हैं वो रखे हुए हैं, जिनकी सजावट चल रही है। 2 दिन का समय भी बच रहा है, जिन 2 दिनों में ये पूरी सजावट जो है वो की जाएगी।
3: अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के ही धौलपुर में, जहां कृष्ण जन्माष्टमी से पहले दिन रात कान्हा की पोशाकें बनाने का काम लगातार चल रहा है। धौलपुर जिले के 50 से ज्यादा कारखानों में कारीगर योगेश्वर श्री कृष्ण और राधा के लिए पोशाकें तैयार कर रहे हैं। इन पोशाकों पर मोतियों, नग, शीशा और स्टोन से काम किया जा रहा है। इन कारखानों में ज्यादातर मुस्लिम कारीगर काम करते हैं। यहाँ साल भर भगवान के लिए पोशाकें बनाने का काम इसी तरह से चलता है। जन्माष्टमी पर्व और नवरात्रि में भगवान श्री कृष्ण, राधा और माता रानी की पोशाकों की खूब मांग होती है। ठाकुर जी और राधा के लिए तैयार की जाने वाली पोशाकों को मुस्लिम कारीगर हाथ से पूरी कढ़ाई की कारीगरी करते हैं और इसके बाद इन पोशाकों की कटाई और सिलाई की जाती है। कारीगर फिलहाल यहाँ राधा रानी के लिए आकर्षक लहंगा, ओढ़नी और पटुका बना रहे हैं। यहाँ से बनी पोशाक मथुरा वृंदावन से देशभर के प्रसिद्ध मंदिरों समेत विदेशों में बने मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी के लिए भेजी जाती है। जन्माष्टमी से पहले हरियाणा के करनाल में कान्हा पार्लर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। यहाँ जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। कान्हा जी पार्लर के नाम से मशहूर इस जगह में ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल का भोग के साथ विशेष श्रृंगार होता है, और केवल जन्माष्टमी ही नहीं बल्कि कई दूसरे त्योहारों के समय भी ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए कई दिनों पहले से लंबी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर चलती है।

0: नन्हे से कान्हा की मुस्कान प्यारी, मोर पंख सजे हाथों में बंसी भी प्यारी, जन्माष्टमी के लिए सजे लड्डू गोपाल की मूर्ति लगे सबसे न्यारी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर घर और मंदिरों को सजाने के अलावा राधा कृष्ण को नई पोशाक पहनाकर झांकियों का भी आयोजन होगा। ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर झूले, मुकुट, मोर पंख और वस्त्र भी लोग खरीद रहे हैं। तो वहीं लोगों के आराध्य कान्हा का भी पार्लर में श्रृंगार हो रहा है। जी हाँ, जिस तरह से विवाह और दूसरे समारोह में जाने के लिए लोग ब्यूटी पार्लर में सिंगार करवाते हैं, वैसे ही अब कान्हा जी को भी पार्लर में सजाने सवारने का काम काफी प्रचलित हो रहा है। जन्माष्टमी से पहले करनाल के कलंदरी गेट में कान्हा जी का पार्लर खुला है, जहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है और उनको सजाने सवारने वाले हैं संजीव सोनी।
1: दिनों थोड़ा ठाकुर जी के देखो, सभी लोग अपने अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लेकर आते हैं और उसमें देखो हर तरह से जैसे उनके भाव होते हैं उस तरह से हमें बताते हैं कि श्रृंगार इस तरह से करना है ठाकुर जी का। और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है कि जैसे सबके ठाकुर जी, देखो आजकल थोड़ा श्रृंगार में समय लगता है, तो हमारे यहाँ ठाकुर जी की भोग सेवा भी पूरी तरह से होती है। हम सभी ठाकुर जी को, क्योंकि सेवा के ठाकुर जी, तो हमें भोग लगाना पड़ता है।
0: संजीव सोनी जो अपने इस पार्लर में लड्डू गोपाल की मूर्तियों का बेहद खूबसूरत और सलोना श्रृंगार करते हैं, वो बताते हैं कि जीवन में एक ऐसा भी समय था जब वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, मगर एक घटना ने उनको कान्हा जी की भक्ति में ही लीन करवाने के लिए मानो प्रेरित किया।
1: एक टाइम ऐसा भी था कि मैं मंदिर नहीं जाता था और अपने घर में तुलसी तक नहीं लगने देता था। वो ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी, हमारे घर के पास ही मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हुई और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने मुझे वहाँ सेवा और पूजा में जाने के लिए मनाया, तो मैं गया वहाँ पे। उस दिन मैंने अपने हाथ से ठाकुर जी का अभिषेक श्रृंगार किया और उसके बाद से ही ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपने साथ ही, मतलब अपने कार्य में सहभागी बनाया। मतलब मुझे कोई भी कार्य, मंदिर की सेवा मिल जाती है, जन्माष्टमी की शोभा यात्रा की, शिवरात्रि की शोभा यात्रा में कोई ना कोई छोटी मोटी सेवा या बड़ी सेवा कोई वो दे देते हैं। तो बस तभी से वो करते करते श्रृंगार की सेवा फिर ठाकुर जी ने तभी मेरा शुरू कराया।
0: पिछले कई साल से संजीव सोनी की कृष्ण भक्ति के माध्यम से साज सज्जा कला इतनी लोकप्रिय हो गई है कि आज हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब समेत दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु अपने अपने लड्डू गोपाल का संजीव सोनी के इस पार्लर से श्रृंगार कराना पसंद कर रहे हैं।
2: पूरी फैमिली इनके पास ही आती है, तो जो भी श्रृंगार का मटेरियल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, हर एक क्वालिटी वाइज होते हैं। जो भी हम लोग जैसे जन्माष्टमी के लिए आते हैं तो ड्रेसेस वगैरह भी डिफरेंट होती है, यूनिक, सब कुछ यूनिक होता है इनके पास।
3: मैं इनसे लगभग 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ आने के बाद कहीं और जाने का मन ही नहीं हुआ, और जो इनकी कलाकारी है वो आप देख ही रहे हो, बहुत अति सुंदर और बिल्कुल एक समझ लो कि भावना से जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात ही है। और यहाँ जो भी चीज़ है मतलब एकदम प्योरिटी और स्वच्छता की गारंटी है।
0: इस पार्लर में जो भी आस्थावान अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लाता है उसे 15 से 20 दिन पहले एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, ताकि पूरे सेवा भाव और नियमों के अनुसार ही कान्हा जी का मेकअप किया जा सके। वैसे कहते भी हैं, जहां कान्हा विराजते हैं वहां खुशियां खुद ही चली आती हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं के लिए भी उनके लड्डू गोपाल जी का इस पार्लर में आना, उनका भोग के साथ श्रृंगार होना ही शुभता का ही संकेत है। करनाल से कमलदीप संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो जन्माष्टमी की तैयारियां शहर शहर जोर शोर से चल ही रही हैं, बाजारों में खूब रौनक है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, दो अलग अलग राज्यों के, दो अलग अलग शहरों की तस्वीरें। एक तस्वीर है झांसी की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। शुक्रवार को मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव से पहले शहर के बाजार कान्हा की भक्ति के रंग में रंग गए हैं। बाजारों में जन्माष्टमी से जुड़ी सामग्री की दुकानें सज गई हैं और खरीदारी के लिए लोगों की चहलकदमी लगातार बढ़ रही है। जन्माष्टमी पर घरों, मंदिरों और विभिन्न स्थानों पर सजने वाली झांकियों और पंडालों के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर रंग बिरंगी झालरें, आकर्षक लाइटें, फूल मालाएं, पर्दे, पालने, मुकुट, पगड़ी, बांसुरी, माखन मटकी, सिंहासन और भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार से जुड़ी तमाम सामग्री बिक रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर एमपी के आगर मालवा से भी आई, जहां दुकानों पर भगवान के लिए रंग बिरंगी पोशाक, बांसुरी, झूले सब दिखाई दे रहे हैं। जन्माष्टमी तक बाजारों में ये रौनक यूं ही नजर आने वाली है। चलिए अब आपको कान्हा के मथुरा में सजे बाजारों की एक झलक भी दिखा देते हैं। यहाँ के हर गली बाजार में एक जैसा नजारा है। दुकानें लड्डू गोपाल की सुंदर पोशाक, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और झूलों से भरी पड़ी हैं और कृष्ण भक्त बड़े उत्साह के साथ अपने कान्हा के श्रृंगार की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं।

0: ब्रजधाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की उमंग हर ओर दिखाई दे रही है और मथुरा के तो कहने ही क्या। बाजार सज गए हैं, मुरलीधर की पोशाक और श्रृंगार के सामान से पूरा बाजार पटा हुआ है। यहाँ गिरधारी के सुंदर कपड़े, मुकुट, मोर पंख, बांसुरी और झूलों की भरमार है। होली गेट से द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के बाजार तक हर दुकान को जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष तौर पर सजाया गया है।
1: इस तरह के गोपाल जी बाजार में सज के तैयार हैं और ये पोशाक का बाजार है। यहाँ पोशाक भी बिक रही है, ठाकुर जी के झूला भी बिक रहे हैं, गोपाल जी भी बिक रहे हैं, तो सभी चीज इस दुकान पर बिक रही है। और जो द्वारकाधीश मंदिर के पास का बाजार है, सभी श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान की

0: ग्राहक मथुरा के बाजारों का रुख कर रहे हैं। जाहिर है इससे दुकानदार खुश हैं और इनका मानना है कि इस साल कारोबार पहले की तुलना में बेहतर हो रहा है। दावा ये भी है कि इनके पास लड्डू गोपाल के श्रृंगार से जुड़े सामान का जबरदस्त कलेक्शन है जो कृष्ण भक्तों को लुभा रहा है।
1: इस बार सब जो भी हैंडक्राफ्ट वर्क है थ्री पीस में, ये सब स्टोन बूटी वाला सब बुटीक पीस इस बार ट्रेंड में बहुत काफी है। कस्टमर की भी काफी डिमांड है। रेगुलर पैटर्न पहना पहना के तो कस्टमर परेशान हो चुका है, तो उन्हीं की डिमांड देखते हुए हम ये सुंदर सुंदर कली के पैटर्न में और यूनिक यूनिक इंग्लिश कलर जो है रेड पीला सब पहना चुके हैं। इसीलिए हम कस्टमर्स के लिए इस बार नए से नई वैरायटी लाने की हमने कोशिश की है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं हमारे स्टॉक में वेरिएशन, कितना सुंदर सुंदर कलर, कितना सुंदर सुंदर पगड़ी के साथ ये आपको अवेलेबल रहेगा। ये देखिए, ये तो स्पेशली जन्माष्टमी के लिए हमने डिजाइन करवाया है विद लड्डू गोपाला विद मैचिंग पगड़ी।
0: दिल्ली, भरतपुर और आगरा जैसी आसपास की जगहों से ग्राहक यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने आराध्य ठाकुर जी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। कोई अपने नन्हे काना के लिए मोर पंख थीम वाली ड्रेस ढूंढ रहा है, तो कोई फूलों से सजा झूला तलाश रहा है। इस जन्माष्टमी हर कृष्ण भक्त चाहता है कि उसके लड्डू गोपाल सबसे सुंदर दिखें।
2: उनकी पूरी फूल तैयारी हो रही है। मथुरा जैसी जन्माष्टमी कहीं नहीं होती,
3: कहीं नहीं होती,
2: नहीं होती, नहीं।
3: एकदम यहाँ सारी पोशाक वोशाक सब कुछ
2: जी जी बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर
3: सब मिल जाता है,
2: जो हमारे राजस्थान में भी नहीं है।
3: नहीं है,
2: नहीं है।
3: क्या क्या क्या नाम है आपका?
4: आपने
3: क्या तैयारी कर रही है
4: भैया? ठाकुर जी की कह रहे जन्माष्टमी की, हम तो आगरा से मथुरा मनाने आए हैं।
3: अच्छा।
4: तो यहाँ की तरह कहीं भी नहीं मनती है।
3: अच्छा।
4: यहाँ की भाई अलग ही वो है मनाने वाली, और यहाँ भगवान जी का जन्म हुआ है, सारी लीला है चाहिए भगवान ने, भाई यहाँ की तो है ही नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी सब कुछ है यहाँ, पोशाक नेत्र माला है ठाकुर जी, यहाँ की से कोई यहाँ की से तैयारी कहीं नहीं है भैया।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर स्थानीय दस्तकारों की भी चांदी है। यहाँ के कारीगर बड़ी ही शिद्दत और मेहनत के साथ बाल गोपाल की पोशाक तैयार कर रहे हैं और कृष्ण जन्मोत्सव में भागीदारी दर्ज करा रहे हैं।
5: जो है मतलब जो कि इस वक्त जो है मतलब तुम्हारे जो है पीले कलर की ज्यादा चल रही है इस वक्त, और पोशाकों की भार का ऑर्डर भी है हमारे पास में अपने, और जन्म स्थान का भी हमारे पास ऑर्डर है, तो ये चल रही है। और मतलब जो कि रात दिन मतलब जो कि हमारे कारीगर भी सबरे काम कर रहे हैं, तो उन पोशाकों को पूरा करके जल्दी से जन्माष्टमी के लिए तैयारी करी जा रही है।
6: पूरा जो बाजार है, पूरा बाजार है, बड़ी भीड़ है बाजार में, और तमाम जो लोग हैं भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। और पूरे मथुरा की बात करें तो पूरा मथुरा सज धज के ठाकुर जी के जन्मोत्सव के लिए तैयार है, और पोशाक का बाजार है, चाहे ठाकुर जी के मुकुट श्रृंगार का बाजार हो या और भी किसी चीज का बाजार हो, वहाँ सभी गुलजार हैं, लोग पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण के लाला का जन्मोत्सव मनाने के लिए, नंदलाल का जन्मोत्सव, अजन्मे का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग तैयार हैं। और बड़ी तादाद में ठाकुर जी के वस्त्र नेत्र ठाकुर जी का श्रृंगार खरीद कर ले जा रहे हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
7: तो तैयार हो जाइए जन्माष्टमी के इस पर्व को जीएनटी संघ मनाने के लिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें और रंग लगातार आपको गुड न्यूज टुडे पर हम दिखाते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अच्छे कपड़े जा रही है, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भारतीय वायुसेना को मिली बड़ी कामयाबी, स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम खगंदक 243 का सफल टेस्ट। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, 3 ट्रस्टी के नामों का भी हुआ ऐलान। जितेंद्र मिश्र के गांव में मना जश्न, बटी मिठाई। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा, परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर हुआ तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। बद्रीनाथ मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां, साल फूलों से नहीं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा मंदिर, मथुरा में रोशनी में नहाई श्री कृष्ण जन्मभूमि। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार, काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। भारत को मिली 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया ऐलान, 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत सुंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। किसी पुरानी घटना को नया बताकर परोसा जाता है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती जो असलियत से कोसों दूर हो। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे पर इन्हें शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, हर झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले होगी वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दरोगा सहित पुलिसकर्मियों को पीटने वाले दबंगों के घर को बुलडोजर से तोड़ा गया है। क्या है सच्चाई, आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि नेपाल में आई बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक पावर प्लांट टूट गया। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बुलडोजर से घर को ढाया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दरोगा को पीटने वाले दबंगों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात है और बुलडोजर से घर को ढहाया जा रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं इसे रोकने की कोशिशें करती हैं, लेकिन महिला पुलिस उन्हें वहां से हटा देती है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह लखनऊ का वीडियो है और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि लखनऊ के पारा में दरोगा पर जानलेवा हमले करने वाले लोगों की भैंस बकरी को नीलाम कर दिया गया, अब मकान पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जितने भी मकान बिना नक्शे के बने या वैध बने सब तोड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार वायरल कर रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी इलाके में भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं, वहां पर एक बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं विरोध प्रदर्शन करती दिख रही हैं, लेकिन महिला पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक नहीं चलती। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां पर दरोगा सहित कुछ पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले दबंगों के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। एसएमएस का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इससे ये तो साफ हो गया कि वीडियो में बुलडोजर के जरिए एक्शन लिया जा रहा है। अब इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों के बैज को भी जूम करके ध्यान से देखा तो ये साफ हुआ कि हरियाणा पुलिस के जवान है। अब वीडियो लखनऊ का है तो फिर वहां पर हरियाणा पुलिस का क्या काम है, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें जानकारी जरूर मिली कि हाल ही में लखनऊ में पारा इलाके में पुलिस नगर निगम की टीम के साथ अवैध डेयरियों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला करते हुए पथराव भी किया था। हमलावर यही नहीं रुके थे, उन्होंने बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी दरोगा विनय पटेल को दौड़ाकर बुरी तरह से पीटा भी था। इस मामले में पुलिस ने 24 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। लेकिन हमें इस दौरान ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे ये पुष्टि हो सके कि पुलिस कर्मियों की टीम पर हमला करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। लिहाजा वायरल हो रहे वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को लखनऊ का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानेंगे।
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक फेसबुक अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 9 जून 2026 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वीडियो हरियाणा के नरवाना का है। पुलिस ने यहां नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 27 मकानों को ढहाया था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया और लगातार खोजबीन की। इस दौरान 10 जून 2026 को प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक नरवाना की चमेला कॉलोनी में नशा तस्करों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 अवैध मकानों और निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों का कहना था कि जिन 27 मकानों और निर्माणों को तोड़ा गया उनके खिलाफ जिला नगर योजनाकार जींद की ओर से पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ। असल में वायरल वीडियो हरियाणा का है और इस साल जून में हुई एक कार्रवाई का है। हरियाणा पुलिस ने जून में नरवाना शहर में नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण ढहाया था। यह वीडियो उसी घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में एक पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। लोग कह रहे हैं कि नेपाल की बाढ़ में यह पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए।
4: नेपाल में आई बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो गई है जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। इसे हालिया वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। इन सब के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में एक पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो जाता है। कुछ लोग इसे नेपाल की बाढ़ का बताकर शेयर कर रहे हैं। सोशल साइट एक्स पर इसे शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, नेपाल फ्लड। नेपाल में बाढ़ से करीब 13 पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। ये ज्यादातर प्रोजेक्ट रसुआ और नुवाकोट जिले में नदी पर बने हुए थे। लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई न्यूज आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को नेपाल का बताकर शेयर किया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि भीषण बाढ़ का ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पानी की तेज बहाव की चपेट में ये पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। सच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि नेपाल में भीषण बाढ़ की वजह से 12 से अधिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा, जिससे करीब 431.1 मेगावाट बिजली का उत्पादन रुक गया है। अब ऐसे में जानना जरूरी हो गया था कि नेपाल के किस हिस्से का ये पावर प्लांट है। वीडियो को देखने से तो यही लग रहा है कि ये किसी पावर प्लांट का है, लेकिन लगातार खोजबीन करने के बावजूद फैक्ट चेक टीम को दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई ऐसी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल में बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हैं। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम लगातार इन तस्वीरों और वीडियोस की पड़ताल कर रही है। हमारी पड़ताल में सभी फेक साबित हुए हैं, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसके बाद पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो नेपाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जाने।
4: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पर 16 फरवरी 2023 को छपी एक रिपोर्ट मिली, जिसमें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट मौजूद है। यहां इसे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के रानोलिया पावर प्लांट का बताया गया है। पाकिस्तान के इस इलाके में 2022 में भीषण बाढ़ आई थी। इस रिपोर्ट में इसी बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताया गया है। इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें ऐसे कई YouTube चैनल मिले जिन्होंने अगस्त 2022 में इस वीडियो को शेयर किया था। इन चैनलों ने भी इसे रानोलिया हाइड्रो पावर प्लांट का बताया है। सर्च के दौरान ही हमें YouTube पर रानोलिया हाइड्रो पावर प्लांट का जून 2022 का एक ब्लॉग भी मिला। इसमें साफ देखा जा सकता है कि यह जगह वायरल वीडियो से बिल्कुल मिलती है। जर्मनी के न्यूज आउटलेट की 2 सितंबर 2022 की रिपोर्ट में भी ये वीडियो देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान की डुबेर नदी में आई बाढ़ का है। वीडियो का क्रेडिट एक टिकटॉक हैंडल को दिया गया था। हमें इसी यूजर नेम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिल गया। पाकिस्तान के इस यूजर ने अपने बायो में खुद को एक नेचर एंथुजियास्ट बताया है। इस अकाउंट ने ये वीडियो 28 अगस्त 2022 को पोस्ट किया था। वीडियो वायरल होने के बाद इस अकाउंट ने 27 अगस्त 2026 को इसे दोबारा शेयर किया और साफ किया कि ये वीडियो अगस्त 2022 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के छोटे से गांव दुबेर में आई बाढ़ का है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2022 में आई बाढ़ का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: दिल्ली मेट्रो से सामने आया ये वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में एक छोटी बच्ची ड्यूटी पर तैनात सीएसएफ जवान को देखकर जिस अंदाज में सैल्यूट करती है, वह पल बेहद प्यारा और भावुक नजर आता है। मेट्रो कोच में यात्री अपने अपने सफर में व्यस्त थे। इसी दौरान बच्ची की नजर वर्दी पहने सीएसएफ जवान पर पड़ती है। बच्ची बिना किसी झिझक के जवान की ओर देखती है और अचानक अपना हाथ उठाकर सैल्यूट कर देती है। बच्ची के चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ सम्मान का भाव साफ नजर आता है। बच्चे का एक छोटा सा इशारा वहाँ मौजूद लोगों के लिए भी खास बन गया। आमतौर पर बच्चे किसी वर्दीधारी जवान को देखकर उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने जिस गंभीरता के साथ सैल्यूट किया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। जवान ने भी बच्चे के सम्मान को नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने बेहद सहज और प्यार भरे अंदाज में उसके सैल्यूट का जवाब दिया। कुछ सेकंड का ये संवाद बिना किसी शब्द के ही बहुत कुछ कह गया। इस प्यारे पल का वीडियो सीआईएसएफ के आधिकारिक एक्स अकाउंट में शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची का प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची अपने क्यूट अंदाज और मासूमियत से लोगों का दिल जीतती नजर आ रही है। बच्ची की प्यारी हरकतें देखकर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं और वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। सोशल सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े वीडियो अक्सर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटे बच्चे के अपने दोस्त के प्रति चिंता और मासूमियत लोगों का दिल जीत रही है। वीडियो देखने के बाद यूजर्स इसे बचपन की सच्ची दोस्ती की सबसे खूबसूरत झलक बता रहे हैं। वायरल वीडियो में एक प्ले स्कूल का नजारा दिखाई देता है। क्लासरूम में मौजूद एक बच्चा अपने दोस्त को फोन मिलाता है और बड़े ही मासूम अंदाज में पूछता है, तो आज स्कूल क्यों नहीं आया? दूसरी तरफ से बच्चे की आवाज आती है कि वे बारिश की वजह से स्कूल नहीं आ पाया। दोनों बच्चों के बीच चल रही छोटी सी बातचीत सुनकर आसपास के लोग भी मुस्कुरा उठे। बातचीत का सबसे प्यारा पल तब आता है जब फोन पर मौजूद दोस्त की बात सुनने के बाद बच्चा बेहद भोलेपन से कहता है, जब बारिश रुक जाए तब आ जाना। इतना कहकर वह आराम से फोन रख देता है। उसके चेहरे पर अपने दोस्त से मिलने की खुशी और चिंता साफ झलकती है। ये मासूमियत इस वीडियो को खास बना रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि साधु ने न केवल उस बच्चे के सामने हाथ जोड़े, बल्कि उसे साक्षात शक्ति और देवी का स्वरूप मानकर नतमस्तक हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची साधु के पास पहुंचती है। साधु बच्चे के पैर को छूकर आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद साधु बच्चे के हाथ में कुछ रुपए रख देते हैं। बच्ची उसे आशीर्वाद समझ कर रख लेती है। एक तपस्वी का ये व्यवहार समाज को एक गहरा संदेश देता है कि सनातन संस्कृति में बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं बल्कि पूजनीय शक्ति है। ये वीडियो केवल आस्था का नहीं बल्कि नारी सम्मान और बेटियों के प्रति आदर का एक अद्भुत उदाहरण है।
6: आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे ना?
5: एक पिता और उसकी मासूम बेटी के बीच ये बातचीत सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रही है। बच्चे जिस मासूम अंदाज में अपने माँ के बारे में पिता को एक एक बात बता रही है, उसे सुनकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हैं। आप भी सुनिए ये बातचीत।
6: आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे ना, मैंने मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जो मैं आपसे बिना पूछे बाहर जा सकता हूँ, कुछ भी मन में वो कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
7: फिर क्या बोला मम्मी?
6: मम्मी जी ने जो बोला ना वो मेरे दिल को छू गई।
7: क्या बोला?
6: मम्मी जी ने बोला कि इतना बड़ा तेरा बाप भी नहीं होया कभी।
5: हंसी मस्ती और स्वाद का मजेदार संगम, पैरों में बंधी रस्सी, उसी रस्सी में लटका बिस्किट और बिना हाथ लगाए उसे मुंह तक पहुंचाने की चुनौती। जितना पैर उठेगा बिस्किट उतना करीब आएगा। हर बच्चा पूरी लगन से कोशिश कर रहा है, कोई जल्दी सफल हो रहा है तो कोई बार बार प्रयास कर रहा है। इस मजेदार खेल ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है और बता दिया कि सीखने का सबसे आसान तरीका खेल ही होता है। एक लाइन लंबी कतार और बच्चों का शानदार तालमेल, एक एक कर सभी बच्चे ट्रेन की बोगियों की तरह एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कतार बढ़ती है वैसे वैसे खेल और भी रोमांचक होता जाता है। हर बच्चा पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहा है। इस खेल में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सहयोग, अनुशासन और टीम वर्क का भी संदेश छिपा है। यही वजह है कि बच्चे इस खेल का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे तेज बारिश में खेल रहे हैं। सभी बिना छतरी के मैदान में भर चुके पानी में खुशी खुशी नाच रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं। जबकि कुछ यूजर्स ने स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाया कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। रंग बिरंगे कपड़े, तेज म्यूजिक और उसी ताल पर बच्चों का शानदार प्रदर्शन। देखने में इस स्टेप भले ही आसान लग रहे हो लेकिन इन्हें एक साथ सही तालमेल के साथ करना बिल्कुल आसान नहीं है। इन नन्हे बच्चों ने अपनी मेहनत और अभ्यास से हर मूवमेंट को बेहद खूबसूरती से पूरा किया। चेहरे पर मुस्कान और कदमों में गजब का तालमेल दिखाई दिया। बच्चों की इस प्यारी प्रस्तुति का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लोगों का खूब प्यार बटोर रहा है। उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, इस बात को बिल्कुल सच साबित कर दिया है 66 साल की फिटनेस एंटरप्रेन्योर रेनु सिंधु ने। रेनु अहमदाबाद की रहने वाली है और वहाँ पर अपना जिम चलाती है। वो सिर्फ जिम की मालकिन ही नहीं बल्कि खुद फिटनेस फ्रीक भी है। 66 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। और अब उनका एक लेटेस्ट वीडियो आया है जिसमें वो पोती को लेकर वर्कआउट कर रही हैं। उन्होंने अपने 66वें जन्मदिन पर ये किया। इस वीडियो को देखकर लोगों की खूब तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
8: कहते हैं मंजिल पाने का जज्बा हो तो रास्ते की मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं, और ये भी कि बात करने से ही बात बनती है। यूपी में बलिया की 7 साल की रागिनी इस बात की मिसाल है। बचपन में एक हादसे में उसका एक पैर खराब हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रागिनी एक पैर से ही करीब 400 मीटर का सफर तय कर स्कूल पहुंचती है, लेकिन उसका ये संघर्ष जब सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आया तो उसकी भावुक अपील प्रशासन तक पहुंची और उसके सपनों को नई उड़ान भी मिली।
9: क्या क्या
10: मिला है
9: आपको?
10: काट भी मिला है, साइकिल मिला है, मिठाई मिला
9: है। अच्छा अच्छा, रागिनी पढ़ने जाओगी ना?
10: हाँ।
9: क्या बनोगी?
10: डॉक्टर।
9: डॉक्टर बनना है? और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए?
10: आप कुछ नहीं चाहिए।
11: रागिनी को अब कुछ नहीं चाहिए, छोटी सी जरूरत थी पूरी हो गई। अब मासूम चेहरे पर मुस्कान है, गले में डीएम अंकल ने माला पहनाई है, हर जंग जीतने का आशीर्वाद दिया है और हर कदम पर मदद का भरोसा भी। बात रखने से बात बनती है। बलिया की रागिनी ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपील की थी। जिसने भी सुना और देखा, मासूम का दर्द दिलों को छू गया। उसके भावुक अपील सुनकर बलिया के डीएम मंगल प्रसाद सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए। पहले डॉक्टरों की टीम भेजी और फिर उससे मिलने खुद आए। साइकिल, खेलकूद की एक किट और मिठाइयां दी और हर संभव मदद और इलाज का भरोसा भी। जिस 400 मीटर लंबे रास्ते को रागिनी स्कूल जाने के लिए एक पैर से नापती है, वहां सड़क बनाने का भी भरोसा मिला ताकि रागिनी अपने सपनों को नई उड़ान दे सके।
9: लोग उसी के गांव में, उसी के घर पे उसके परिवार से मिलने आए हैं, बिटिया से भी मिले हैं। साइकिल तो एक औपचारिक है, ठीक है, साइकिल तो दिया ही हम लोगों ने, बट हम लोगों का प्रयास ये है कि बिटिया को और उसके परिवार को कोई परेशानी ना हो। जो जो भी हम लोग कर सकते हैं उसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। इस गांव में स्कूल तक और गांव तक आने का रास्ता बना हुआ है, बट थोड़ा मरम्मत की आवश्यकता, उसको भी हम कराएंगे। इनके यहाँ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम भी ठीक कराएंगे। अभी व्यक्तिगत शौचालय दिया गया है इनको, स्वीकृत हो चुका है वो, इनको पैसा भी मिल चुका है इनके खाते में, वो भी बनवाएंगे। बिटिया को मिल करके और बिटिया से मुलाकात बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। बिटिया टैलेंटेड है और इसको हम लोग एक पूरी किट दिए हैं जिससे बिटिया खेल कूद सके, पढ़ाई कर सके। और बिटिया की इच्छा है कि वो पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बनना चाहती है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बिटिया का पैर भी जल्दी ठीक हो जाए। हम लोग प्रयास करेंगे, मेडिकल चेकअप भी हम कल करा रहे हैं, क्योंकि पुराना केस है ये, 5-6 साल पुराना है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि बिटिया का अगर पैर ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, दोनों पैरों पर चल सकती है, तो यहाँ लखनऊ जहाँ भी ऑपरेशन हो सकता है हम लोग कराएंगे।
11: रागिनी से तो आप अब तक परिचित हो ही चुके होंगे। 7 साल के इस मासूम का परिवार यूपी के बलिया जिले के रानीपुर इलाके में रहता है। जब रागिनी महज 6 महीने की ही थी तब एक हादसे में उसका एक पैर खराब हो गया। रागिनी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में उसके लिए कृत्रिम पैर का इंतजाम करना परिवार के लिए आसान नहीं था। लेकिन रागिनी ने हार नहीं मानी। पढ़ाई लिखाई के प्रति उसका लगाव बचपन से था, सो एक पैरों से ही स्कूल जाने की ठान ली।
12: दिक्कत यही होता है कि पढ़ने जाती है एक पैर पे गिर जाती है, रोने लगती है, पैर में दर्द उठ जाता है।
13: पढ़ना चाहती है
12: लड़का जाते हैं तो छपराती है, रोती है, हम लोग का करेजा फटता है।
13: क्या चाहिए आपको?
12: हमको सरकार अनुदान इसको सुविधा कुछ देती तो यही हम चाहते हैं।
11: रागिनी के पास एक पैर नहीं है लेकिन उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं, हौसले बुलंद हैं। और अब जब सोशल मीडिया के इस दौर में उसकी आवाज प्रशासन तक पहुंच गई है तो उसकी उम्मीदों को अब नए पंख भी मिल गए हैं। बलिया से अनिल कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
14: और अब आपको दिखाते हैं देश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक की बर्थडे के जश्न की तस्वीरें। जी हाँ, कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने केक काटकर महक का जन्मदिन मनाया और उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की।

0: ये तस्वीर किसी जू में जीवन की जिंदा दिली की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। किसी बाघिन का 22 साल की उम्र को छू लेना आसान नहीं माना जाता, लेकिन 22 साल पूरे कर चुकी बाघिन महक ने ये कर दिखाया है। महक अब 23वें साल में पहुंच गई है और इसी बात ने इस बाघिन को खास बना दिया है। बाघिन महक के 23वें बर्थडे पर कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में जश्न मनाया गया।
1: May God bless you. Happy birthday.
0: दरअसल आमतौर पर चिड़ियाघरों में बाघ बाघिन की उम्र करीब 16 से 18 साल के आसपास मानी जाती है। वहीं जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में इनकी उम्र इससे भी कम हो सकती है। ऐसे में 22 साल की महक सामान्य जू लाइफ से करीब 4 साल आगे निकल चुकी है। यानी महक ने सिर्फ उम्र को ही मात नहीं दी बल्कि उम्र के रिकॉर्ड को भी चुनौती दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी महक एक्टिव है। पानी में अटखेलिया करना, एनक्लोजर की बाउंड्री के आसपास घूमना और पर्यटकों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना, महक आज भी ये सब करती है। हालांकि उम्र का असर दिखना शुरू हो चुका है। उठने में पहले के मुकाबले महक को थोड़ी सी परेशानी होती है, इसीलिए उसकी कैल्शियम डोज बढ़ाई गई है।
2: ये अभी 22 साल की हो चुकी है। 28 अगस्त 2004 में जन्मी थी। ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से उस समय इनका जन्म हुआ था और वहीं से जो 2012 में हमारे कोटा में जू में लाया गया था।
0: महक की उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसकी सेहत अच्छी है। उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक है, दांत और जबड़े मजबूत हैं और वजन भी लगभग सामान्य है। महक की लंबी उम्र के पीछे खानपान और मेडिकल केयर भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हर दिन उसे करीब 8 किलो चिकन और मांस दिया जाता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और आयरन टॉनिक भी, और उम्र को देखते हुए उसकी मेडिकल मॉनिटरिंग भी लगातार होती है। हर 3-4 दिन में उसकी मेडिकल जाँच की जाती है। महक की उम्र का राज सिर्फ उसकी देखभाल में नहीं, वन विभाग के मुताबिक जेनेटिक फैक्टर भी इसकी बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि अच्छी डाइट और मेडिकल केयर के बावजूद हर बाघिन 22 साल तक नहीं पहुंचती। महक का मामला इसलिए भी खास है क्योंकि उम्र बढ़ने के बावजूद उसकी सक्रियता और सेहत काफी हद तक बरकरार है। महक अब सिर्फ अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क की पहचान नहीं बल्कि लंबी उम्र तक जीवित रहने वाली बाघिन की एक मिसाल भी है। 22 साल पूरे, 23वें में कदम, उम्र बढ़ी है, रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन पानी में महक की अटखेलियां और एनक्लोजर में उसकी चाल आज भी बता रही है कि दहाड़ भले ही धीमी हुई हो, महक की कहानी अभी बाकी है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: भारतीय वायुसेना को मिली बड़ी कामयाबी, स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम खगंदक 243 का सफल टेस्ट। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। जस्ट बटी मिठाई। परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर हुआ तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। बद्रीनाथ मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां, साल फूलों से नहीं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा मंदिर। मथुरा में रोशनी में नहाई श्री कृष्ण जन्मभूमि। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार। काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। भारत को मिली 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया ऐलान, 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। देखिए, देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व है, उससे ठीक पहले अब शहर शहर बेसब्री से कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो, आपके आसपास के मंदिरों में अब आपको तैयारी दिखने लगी होगी। शहर शहर प्रसिद्ध मंदिरों से लेकर गली मोहल्लों तक के तमाम मंदिरों में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की परंपरा रही है। लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है कन्हैया के ब्रज में, जहां मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल से लेकर बरसाना तक जन्माष्टमी के रंग बिखरे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। तस्वीरें देखिए।

0: कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी भाद्र मास मनुहार चंद्र वंश रोहिणी नखत दिन विशुद्ध बुधवार वृषभ लग्न में चंद्रमा लग्न राशि एक साथ जब शुभ ये संजोग बना प्रकट भये श्रीनाथ। कोई 5000 साल पहले कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच भाद्रपद अष्टमी की रात मथुरा की काल कोठरी में प्रकाश बनकर स्वयं नारायण प्रकट हुए थे। फिर क्या मथुरा, क्या गोकुल और क्या वृंदावन, यमुना की हर लहर से लेकर गोवर्धन पर्वत के शिखर तक ब्रज की रज रज कृष्णमय हो उठी। मथुरा में जहां आज कृष्ण जन्म स्थान माना जाता है, वह 5000 साल पहले कटरा केशव देव नाम की जगह पर राजा कंस का कारागार हुआ करता था। उसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। आज कन्हैया की ये जन्मभूमि एक बार फिर प्रकाश से जगमगा रही है। भगवान कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव से पहले पूरे मथुरा को सजाया जा रहा है। ये तो तमाम मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि मंदिर की बात निराली है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान सज धज कर तैयार है। तमाम जो लाइटिंग है, साज सज्जा है, वो बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ की गई है। 5 दिवसीय जो उत्सव है ना, वो आज शुरू हो गया है। और उसकी बात की जाए तो लीला मंच पे भगवान की जो बाल लीला है, भगवान की जो सारी लीलाएं हैं, वो की जा रही हैं। और वहीं उत्सव की बात की जाए तो 3 तारीख को सुबह में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए भगवान के उत्सव की आगाज करेगी। वहीं शाम में 5:30 बजे के आसपास जो भगवान को पंचरत्नीय पोशाक है, वह अर्पण की जाएगी, जो ठाकुर जी जन्मदिन वाले दिन पहनेंगे और अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे।
0: बताया गया है कि 5 दिवसीय जन्माष्टमी उत्सव से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को करीब 200 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। जन्माष्टमी के दिन नए बने रजत कमल में विराजमान ठाकुर गोपाल जी का जन्म अभिषेक हर बार की तरह इस बार भी विशेष आकर्षण रहने वाला है। 4 सितंबर को सुबह 5:30 बजे भगवान कृष्ण की मंगला आरती होगी, सुबह 8 बजे पंचामृत अभिषेक और रात 10 बजे जन्म महाअभिषेक होगा। रात 12 बजे भगवान के प्राकट्य दर्शन और आरती होगी, जिसके बाद कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय से अभिषेक किया जाएगा। फिर रजत कमल में ठाकुर जी का जन्म महाअभिषेक होगा। वहीं श्रृंगार आरती रात 12:45 से 12:50 बजे तक होगी और शयन आरती रात 1:55 से 2 बजे तक होगी। इस मौके पर जन्मभूमि मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का प्रवेश रात 1:30 बजे तक चालू रहेगा। अगले दिन भी जन्माष्टमी के उत्सव और विशेष दर्शन का ये दौर जारी रहेगा।
1: दूसरे दिन भगवान का जो उत्सव है, वो भगवान सुबह से ही ढोल नगाड़े के साथ मंगला आरती होगी और भगवान कालहंस बंगले में विराज कर सुबह से शाम तक दर्शन देंगे। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो 5 दिवसीय उत्सव में ठाकुर जी की जो आराधना है, जो सेवा है, जो पूजा है और शाम के समय में भगवान का अभिषेक है, ये सारी चीजें होंगी। और वहीं अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है। विशेष प्रसाद यहाँ पंजीरी का, मेवा के लड्डू का, गोला की बर्फी का जो प्रसाद है, पंचामृत है, वो यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अर्पण किया जाएगा, दिया जाएगा भगवान का प्रसाद।
0: हर साल की तरह इस साल भी ब्रजभूमि में जन्मोत्सव के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देश भर से आने वाले इन श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित दर्शन का मौका मिले, इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। शहर में जगह जगह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि में 5253वां जन्म दिवस बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर में बांट करके मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव सभी में खूब सजावट की जा रही है। यात्रियों को भीड़ से बचाने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से दर्शन कराया जाएगा। सभी मंदिरों के जो प्रबंधक हैं, जो पुजारीगण हैं, जो गोस्वामी बंधु हैं, सबके साथ बैठक करके किसी प्रकार से दर्शनार्थियों को और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन करने में असुविधा ना हो।
0: ब्रज के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे ब्रजवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ एक साथ मिलकर मनाते हैं। फिलहाल सारा ब्रज अपने लाडले कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारी में जुटा है।
1: भगवान का जो उत्सव है ना, बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और वही शहर की बात करें तो पूरा शहर बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जा रहा है। कभी 24 चौराहे हैं और 24 चौराहों के पास 24 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, जहां से श्रद्धालु आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। पूरे शहर को बड़े भव्यता और दिव्यता और ऐसी लाइटिंग के साथ, दूधिया रोशनी के साथ सजाया गया है कि जो भी यहाँ आए ठाकुर जी का जन्म उत्सव बनाने, वो एक अच्छा संदेश लेके जाए और भगवान के प्रति जो आस्था है, जो समर्पण है, जो विश्वास है, जो ठाकुर जी के प्रति समर्पण, विश्वास और जो श्रद्धा है उसको लेके आए, वो उसकी श्रद्धा में कहीं कोई भाव अधूरा ना रहे। इसी को देखते हुए पूरे नगर को, पूरे ब्रजमंडल को अजन्मे के जन्म के लिए तैयार किया जा रहा है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
3: अनोखा है ब्रज और उतने ही अनूठे हैं ब्रज के बाल गोपाल। कान्हा ने जहां ब्रज भूमि को अपनी बाल लीलाओं और रास के रंग का साक्षी बनाया, तो वहीं कुरुक्षेत्र की धरती उनके मुख से निकले गीता ज्ञान सागर की गवाह बनी। भगवान कृष्ण की जीवन लीलाएं अद्भुत हैं। वह ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इंसानों की जिंदगी से जुड़े हर भाव और हर संवेदना को जिया है। श्री कृष्ण के जीवन में घटी घटनाओं में मानव जीवन के लिए वो तमाम संदेश छुपे हुए हैं जिन्हें समझे जाने की जरूरत है। भगवान कृष्ण के ब्रज में बीते बाल्यकाल से लेकर कुरुक्षेत्र में महाभारत के रण तक उनके जीवन की कहानियां अंधेरे में बिखरी रोशनी की तरह हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण की कुछ प्रिय वस्तुएं जैसे मोरपंख, बांसुरी, दर्शन चक्र वगैरह, ये सभी अपने आप में कई सीख समेटे हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। सबके पहले बात मोरपंख की। भगवान कृष्ण का मोरपंख समझाता है कि जीवन में सभी तरह के रंग होते हैं, जैसे कि सुख, दुख, प्रेम, करुणा, रिश्ते आदि। अगर इन रंगों को सलीके और मर्यादा में रखा जाए तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। जरूरत है तो सिर्फ सही तालमेल की। इसी तरह भगवान कृष्ण की बांसुरी भी सुंदर संदेश देती है। बांसुरी में 8 छेद होते हैं, ये जीवन का प्रतीक है। इसमें जो छेद हैं वो कमियां हैं। कृष्ण कहते हैं जीवन में लाख कमियां हो लेकिन जीने का तरीका और सोच सकारात्मक हो तो कमियों के बावजूद जीवन को मधुरता से जिया जा सकता है। तो वहीं वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्या सीख समेटे हुए है, ये भी आपको बता दें। वैसे तो ये हथियार है लेकिन नाम है सुदर्शन। सु प्लस दर्शन, यानी जो दिखने में बहुत सुंदर हो, प्रभावशाली हो। इंसान के लिए उसका व्यक्तित्व ही सुदर्शन चक्र है। लोग आपके व्यक्तित्व को देखकर ही व्यवहार करते हैं। अगर व्यक्तित्व सुदर्शन है तो आपकी हर जगह जीत तय होगी। भगवान कृष्ण वैजयंती माला भी धारण करते हैं। कमल के फूल के बीजों से बनी माला को वैजयंती माला कहा जाता है। ये बीज बहुत सख्त होते हैं, आसानी से टूटते नहीं। ये सिखाते हैं कि इंसान को हर तरह की परिस्थिति में खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, जीत तभी मिलती है। और अंत में बात बाल गोपाल के पसंदीदा माखन मिश्री की। माखन नर्म और एकदम पिघलने वाला होता है, जबकि मिश्री सख्त होती है लेकिन माखन में घुलकर मिठास देती है। ये सिखाता है कि हमारा स्वभाव माखन की तरह नर्म और व्यवहार मिश्री की तरह घुलने वाला होना चाहिए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको मथुरा की तस्वीरें दिखाई, अब आपको लेकर चलते हैं वृंदावन। लेकिन ये ब्रज का वृंदावन नहीं है बल्कि राजस्थान की धरती पर मौजूद गुप्त वृंदावन धाम है। जयपुर का गुप्त वृंदावन धाम श्री कृष्ण का भव्य मंदिर है। 4 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम मनाने की पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। भगवान कृष्ण के लिए खास फूल बंगला झांकी तैयार हो रही है, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विशालकाय पंडाल लगाया गया है। भगवान के लिए 108 प्रकार का विशेष भोग बन रहा है। गुप्त वृंदावन धाम में इस बार जन्माष्टमी पर 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचने की पूरी संभावना है। ऐसे में भक्तों की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए दर्शन सुगम बनाने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या खास होने वाला है जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, इस बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रीतम जैन।
4: मैं अभी मौजूद हूं जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, जहां पर भी ये जो तैयारियां हैं ये भी देखने को मिल रही है। साज सज्जा जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। इनका कहना है कि 1 महीने पहले से ही जन्माष्टमी के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। ये जो थीम है ये फूल बंगले का थीम है, जिसमें 32 अलग अलग तरह के फूल जो हैं वो लाए गए हैं, जिनसे पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है जो भगवान का दरबार है सिर्फ उसका जो सजावट है वो की जाती है, पर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा मंदिर फूलों से सजेगा। फूल बंगला जो है वो उसको कहा जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे सिर्फ जयपुर में मिलने वाले नहीं पर बाहर से भी कई सारे फूल हैं वो मंगवाए गए हैं। बहुत ही कलरफुल ये जो डेकोरेशन है ये यहाँ पे किया जा रहा है। भगवान कृष्ण की पोशाक की मैं बात करूँ तो पोशाक वृंदावन से आ रही है। खास पोशाक जो है वो भगवान कृष्ण के लिए उनके जन्मोत्सव के लिए बनवाई जा रही है, जो कि वृंदावन से आ रही है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग रंगों के जो प्रॉप्स हैं वो रखे हुए हैं, जिनकी सजावट चल रही है। 2 दिन का समय अभी बच रहा है, जिन 2 दिनों में ये पूरी सजावट जो है वो की जाएगी।
3: अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के ही धौलपुर में, जहां कृष्ण जन्माष्टमी से पहले दिन रात कान्हा की पोशाकें बनाने का काम लगातार चल रहा है। धौलपुर जिले के 50 से ज्यादा कारखानों में कारीगर योगेश्वर श्री कृष्ण और राधा के लिए पोशाकें तैयार कर रहे हैं। इन पोशाकों पर मोतियों, नग, शीशा और स्टोन से काम किया जा रहा है। इन कारखानों में ज्यादातर मुस्लिम कारीगर काम करते हैं। यहां साल भर भगवान के लिए पोशाकें बनाने का काम इसी तरह से चलता है। जन्माष्टमी पर्व और नवरात्रि में भगवान श्री कृष्ण, राधा और माता रानी की पोशाकों की खूब मांग होती है। ठाकुर जी और राधा के लिए तैयार की जाने वाली पोशाकों को मुस्लिम कारीगर हाथ से पूरी कढ़ाई की कारीगरी करते हैं और इसके बाद इन पोशाकों की कटाई और सिलाई की जाती है। कारीगर फिलहाल यहाँ राधा रानी के लिए आकर्षक लहंगा, ओढ़नी और पटुका बना रहे हैं। यहाँ से बनी पोशाक मथुरा वृंदावन से देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों समेत विदेशों में बने मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी के लिए भेजी जाती है। जन्माष्टमी से पहले हरियाणा के करनाल में कान्हा पार्लर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। यहां जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। कान्हा जी पार्लर के नाम से मशहूर इस जगह में ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल का भोग के साथ विशेष श्रृंगार होता है, और केवल जन्माष्टमी ही नहीं बल्कि कई दूसरे त्योहारों के समय भी ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए कई दिनों पहले से लंबी वेटिंग लिस्ट यहां पर चलती है।

0: नन्हे से कान्हा की मुस्कान प्यारी, मोर पंख सजे हाथों में बंसी भी प्यारी, जन्माष्टमी के लिए सजे लड्डू गोपाल की मूर्ति लगे सबसे न्यारी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर घर और मंदिरों को सजाने के अलावा राधा कृष्ण को नई पोशाक पहनाकर झांकियों का भी आयोजन होगा। ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर झूले, मुकुट, मोर पंख और वस्त्र भी लोग खरीद रहे हैं। तो वहीं लोगों के आराध्य कान्हा का भी पार्लर में श्रृंगार हो रहा है। जी हाँ, जिस तरह से विवाह और दूसरे समारोह में जाने के लिए लोग ब्यूटी पार्लर में सिंगार करवाते हैं, वैसे ही अब कान्हा जी को भी पार्लर में सजाने सवारने का काम काफी प्रचलित हो रहा है। जन्माष्टमी से पहले करनाल के कलंदरी गेट में कान्हा जी का पार्लर खुला है, जहां ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है और उनको सजाने सवारने वाले हैं संजीव सोनी।
1: दिनों थोड़ा ठाकुर जी के देखो, सभी लोग अपने अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लेकर आते हैं और उसमें देखो हर तरह से जैसे उनके भाव होते हैं उस तरह से हमें बताते हैं कि श्रृंगार इस तरह से करना है ठाकुर जी का। और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है कि जैसे सबके ठाकुर जी, देखो आजकल थोड़ा श्रृंगार में समय लगता है, तो हमारे यहाँ ठाकुर जी की भोग सेवा भी पूरी तरह से होती है। हम सभी ठाकुर जी को, क्योंकि सेवा के ठाकुर जी, तो हमें भोग लगाना पड़ता है।
0: संजीव सोनी जो अपने इस पार्लर में लड्डू गोपाल की मूर्तियों का बेहद खूबसूरत और सलोना श्रृंगार करते हैं, वो बताते हैं कि जीवन में एक ऐसा भी समय था जब वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, मगर एक घटना ने उनको कान्हा जी की भक्ति में ही लीन करवाने के लिए मानो प्रेरित किया।
1: एक टाइम ऐसा भी था कि मैं मंदिर नहीं जाता था और अपने घर में तुलसी तक नहीं लगने देता था। वो ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी, हमारे घर के पास ही मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हुई और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने मुझे वहाँ सेवा और पूजा में जाने के लिए मनाया, तो मैं गया वहाँ पे। उस दिन मैंने अपने हाथ से ठाकुर जी का अभिषेक श्रृंगार किया और उसके बाद से ही ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपने साथ ही, मतलब अपने कार्य में सहभागी बनाया। मतलब मुझे कोई भी कार्य, मंदिर की सेवा मिल जाती है, जन्माष्टमी की शोभा यात्रा के, शिवरात्रि की शोभा यात्रा में कोई ना कोई छोटी मोटी सेवा या बड़ी सेवा कोई वो दे देते हैं, तो बस तभी से वो करते करते श्रृंगार की सेवा फिर ठाकुर जी ने तभी मेरा शुरू कराया।
0: पिछले कई साल से संजीव सोनी की कृष्ण भक्ति के माध्यम से साज सज्जा कला इतनी लोकप्रिय हो गई है कि आज हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब समेत दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु अपने अपने लड्डू गोपाल का संजीव सोनी के इस पार्लर से श्रृंगार कराना पसंद कर रहे हैं।
2: पूरी फैमिली इनके पास ही आती है, तो जो भी श्रृंगार का मटेरियल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, हर एक क्वालिटी वाइज होते हैं। जो भी हम लोग जैसे जन्माष्टमी के लिए आते हैं तो ड्रेसेस वगैरह भी डिफरेंट होती है, यूनिक, सब कुछ यूनिक होता है। बस
3: मैं इनसे लगभग 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ आने के बाद कहीं और जाने का मन ही नहीं हुआ, और जो इनकी कलाकारी है वो आप देख ही रहे हो, बहुत अति सुंदर और बिल्कुल एक समझ लो कि भावना से जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात ही है। और यहाँ जो भी चीज़ है मतलब एकदम प्योरिटी और स्वच्छता की गारंटी है।
0: इस पार्लर में जो भी आस्थावान अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लाता है उसे 15 से 20 दिन पहले एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, ताकि पूरे सेवा भाव और नियमों के अनुसार ही कान्हा जी का मेकअप किया जा सके। वैसे कहते भी हैं, जहां कान्हा विराजते हैं वहां खुशियां खुद ही चली आती हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं के लिए भी उनके लड्डू गोपाल जी का इस पार्लर में आना, उनका भोग के साथ श्रृंगार होना ही शुभता का ही संकेत है। करनाल से कमलदीप संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो जन्माष्टमी की तैयारियां शहर शहर जोर शोर से चल ही रही हैं, बाजारों में खूब रौनक है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, दो अलग अलग राज्यों के, दो अलग अलग शहरों की तस्वीरें। एक तस्वीर है झांसी की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। शुक्रवार को मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव से पहले शहर के बाजार कान्हा की भक्ति के रंग में रंग गए हैं। बाजारों में जन्माष्टमी से जुड़ी सामग्री की दुकानें सज गई हैं और खरीदारी के लिए लोगों की चहलकदमी लगातार बढ़ रही है। जन्माष्टमी पर घरों, मंदिरों और विभिन्न स्थानों पर सजने वाली झांकियों और पंडालों के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर रंग बिरंगी झालरें, आकर्षक लाइटें, फूल मालाएं, पर्दे, पालने, मुकुट, पगड़ी, बांसुरी, माखन मटकी, सिंहासन और भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार से जुड़ी तमाम सामग्री बिक रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर एमपी के आगर मालवा से भी आई, जहां दुकानों पर भगवान के लिए रंग बिरंगी पोशाक, बांसुरी, झूले सब दिखाई दे रहे हैं। जन्माष्टमी तक बाजारों में ये रौनक यूं ही नजर आने वाली है। चलिए अब आपको कान्हा के मथुरा में सजे बाजारों की एक झलक भी दिखा देते हैं। यहाँ के हर गली बाजार में एक जैसा नजारा है। दुकानें लड्डू गोपाल की सुंदर पोशाक, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और झूलों से भरी पड़ी हैं और कृष्ण भक्त बड़े उत्साह के साथ अपने कान्हा के श्रृंगार की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं।

0: ब्रजधाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की उमंग हर ओर दिखाई दे रही है और मथुरा के तो कहने ही क्या। बाजार सज गए हैं, मुरलीधर की पोशाक और श्रृंगार के सामान से पूरा बाजार पटा हुआ है। यहाँ गिरधारी के सुंदर कपड़े, मुकुट, मोर पंख, बांसुरी और झूलों की भरमार है। होली गेट से द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के बाजार तक हर दुकान को जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष तौर पर सजाया गया है।
1: इस तरह के गोपाल जी बाजार में सज के तैयार हैं और ये पोशाक का बाजार है। यहाँ पोशाक भी बिक रही है, ठाकुर जी के झूला भी बिक रहे हैं, गोपाल जी भी बिक रहे हैं, तो सभी चीज इस दुकान पर बिक रही है। और जो द्वारकाधीश मंदिर के पास का बाजार है, सभी श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान की पोशाक अपने ठाकुर जी के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि ब्रज में एक बड़ा ठाकुर जी का जो जन्म है ना, वो बड़ा अद्भुत और अनोखे तरीके से मनाया जाता है। ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाई जाएगी, नए उनके झूले होंगे, नए वस्त्र होंगे, नई बांसुरी होगी, नई मुकुट होगा।
0: बड़ी तादाद में ग्राहक मथुरा के बाजारों का रुख कर रहे हैं। जाहिर से दुकानदार खुश हैं और इनका मानना है कि इस साल कारोबार पहले की

0: इसमें ये सब स्टोन बूटी वाला सब बुटीक पीस इस बार ट्रेंड में बहुत काफी है, कस्टमर की भी काफी डिमांड है। रेगुलर पैटर्न पहना पहना के तो कस्टमर परेशान हो चुका है, तो उन्हीं की डिमांड देखते हुए हम ये सुंदर सुंदर कली के पैटर्न में और यूनिक इंग्लिश कलर जो है रेड पीला सब पहना चुके हैं। इसीलिए हम कस्टमर्स के लिए इस बार नई से नई वेरायटी लाने की हमने कोशिश की है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं हमारे स्टॉक में वेरिएशन, कितना सुंदर सुंदर कलर, कितना सुंदर सुंदर पगड़ी के साथ ये आपको अवेलेबल रहेगा। ये देखिए, ये तो स्पेशली जन्माष्टमी के लिए हमने डिजाइन करवाया है विद लड्डू गोपाला विद मैचिंग पगड़ी।
1: दिल्ली, भरतपुर और आगरा जैसी आसपास की जगहों से ग्राहक यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने आराध्य ठाकुर जी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। कोई अपने नन्हे काना के लिए मोर पंख थीम वाली ड्रेस ढूंढ रहा है, तो कोई फूलों से सजा झूला तलाश रहा है। इस जन्माष्टमी हर कृष्ण भक्त चाहता है कि उसके लड्डू गोपाल सबसे सुंदर दिखें।
2: होली की पूरी फूल तैयारी हो रही है, मथुरा जैसी जन्माष्टमी कहीं नहीं होती,
3: कहीं नहीं होती,
2: नहीं होती, नहीं
3: एकदम यहाँ सारी पोशाक वोशाक सब कुछ
2: जी जी बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर
3: सब मिल जाता है,
2: जो हमारे राजस्थान में भी नहीं है।
3: नहीं है,
2: नहीं।
3: क्या क्या क्या नाम है आपका?
4: भावना।
3: क्या तैयारी कर रही है?
4: भैया ठाकुर जी की कर रहे जन्माष्टमी की, हम तो आगरा से मथुरा मनाने आए।
3: अच्छा।
4: तो यहाँ की तरह कहीं भी नहीं मनती है।
3: अच्छा।
4: यहाँ की भाई अलग ही वो है मनाने वाली, और यहाँ भगवान जी का जन्म हुआ है, सारी लीला है चाहिए भगवान ने, और यहाँ की तो है ही नहीं है कोई तैयारी भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी सब कुछ है यहाँ, पोशाक नेत्र माल आए ठाकुर जी, यहाँ के से कोई यहाँ की से तैयारी कहीं नहीं है भैया।
1: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर स्थानीय दस्तकारों की भी चांदी है। यहाँ के कारीगर बड़ी ही शिद्दत और मेहनत के साथ बाल गोपाल की पोशाक तैयार कर रहे हैं और कृष्ण जन्मोत्सव में भागीदारी दर्ज करा रहे हैं।
5: जो है मतलब जो कि इस वक्त जो है मतलब तुम्हारे जो है पीले कलर की ज्यादा चल रही है इस वक्त, और पोशाकों की भार का ऑर्डर भी है हमारे पास में अपने, और जन्म स्थान का भी हमारे पास ऑर्डर है, तो ये चल रही है। और मतलब जो कि रात दिन मतलब जो कि हमारे कारीगर भी सबरे काम कर रहे हैं, तो उन पोशाकों को पूरा करके जल्दी से जन्माष्टमी के लिए तैयारी करी जा रही है।
6: पूरा जो बाजार है, पूरा बाजार है, बड़ी भीड़ है बाजार में, और तमाम जो लोग हैं भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। और पूरे मथुरा की बात करें तो पूरा मथुरा सज धज के ठाकुर जी के जन्मोत्सव के लिए तैयार है, और पोशाक का बाजार है, चाहे ठाकुर जी के मुकुट श्रृंगार का बाजार हो या और भी किसी चीज का बाजार हो, वहाँ सभी गुलजार हैं, लोग पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण के लाला का जन्मोत्सव मनाने के लिए, नंदलाल का जन्मोत्सव, अजन्मे का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग तैयार हैं। और बड़ी तादाद में ठाकुर जी के वस्त्र नेत्र ठाकुर जी का श्रृंगार खरीद कर ले जा रहे हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
7: तो तैयार हो जाइए जन्माष्टमी के इस पर्व को जीएनटी संघ मनाने के लिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें और रंग लगातार आपको गुड न्यूज टुडे पर हम दिखाते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अच्छे कपड़े जारी है, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: दौड़ दौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भारतीय वायुसेना को मिली बड़ी कामयाबी, स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम खगंदक 243 का सफल टेस्ट। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, 3 ट्रस्टी के नामों का भी हुआ ऐलान। जितेंद्र मिश्र के गांव में मना जश्न, बटी मिठाई। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा, परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर हुआ तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। बद्रीनाथ मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां, इस साल फूलों से नहीं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा मंदिर। मथुरा में रोशनी में नहाई श्री कृष्ण जन्मभूमि। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार, काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। भारत को मिली 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया ऐलान, 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत सुंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। किसी पुरानी घटना को नया बताकर परोसा जाता है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती जो असलियत से कोसों दूर हो। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे पर इन्हें शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, हर झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले होगी वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दरोगा सहित पुलिस कर्मियों को पीटने वाले दबंगों के घर को बुलडोजर से तोड़ा गया है। क्या है सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि नेपाल में आई बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक पावर प्लांट टूट गया। क्या है सच्चाई आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बुलडोजर से घर को ढाया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दरोगा को पीटने वाले दबंगों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात है और बुलडोजर से घर को ढहाया जा रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं इसे रोकने की कोशिशें करती हैं, लेकिन महिला पुलिस उन्हें वहां से हटा देती है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह लखनऊ का वीडियो है और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि लखनऊ के पारा में दरोगा पर जानलेवा हमले करने वाले लोगों की भैंस बकरी को नीलाम कर दिया गया। अब मकान पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जितने भी मकान बिना नक्शे के बने या अवैध बने सब तोड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार वायरल कर रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी इलाके में भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं, वहां पर एक बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं विरोध प्रदर्शन करती दिख रही हैं, लेकिन महिला पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक नहीं चलती। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां पर दरोगा सहित कुछ पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले दबंगों के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। एसएमएस का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इससे ये तो साफ हो गया कि वीडियो में बुलडोजर के जरिए एक्शन लिया जा रहा है। अब इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों के बैज को भी जूम करके ध्यान से देखा तो ये साफ हुआ कि हरियाणा पुलिस के जवान है। अब वीडियो लखनऊ का है तो फिर वहां पर हरियाणा पुलिस का क्या काम है, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें जानकारी जरूर मिली कि हाल ही में लखनऊ में पारा इलाके में पुलिस नगर निगम की टीम के साथ अवैध डेयरियों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला करते हुए पथराव भी किया था। हमलावर यही नहीं रुके थे, उन्होंने बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी दरोगा विनय पटेल को दौड़ाकर बुरी तरह से पीटा भी था। इस मामले में पुलिस ने 24 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। लेकिन हमें इस दौरान ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे ये पुष्टि हो सके कि पुलिस कर्मियों की टीम पर हमला करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। लिहाजा वायरल हो रहे वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को लखनऊ का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानेंगे।
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक फेसबुक अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 9 जून 2026 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वीडियो हरियाणा के नरवाना का है। पुलिस ने यहां नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 27 मकानों को ढहाया था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया और लगातार खोजबीन की। इस दौरान 10 जून 2026 को प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक नरवाना की चमेला कॉलोनी में नशा तस्करों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 अवैध मकानों और निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों का कहना था कि जिन 27 मकानों और निर्माणों को तोड़ा गया उनके खिलाफ जिला नगर योजनाकार जींद की ओर से पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ। असल में वायरल वीडियो हरियाणा का है और इस साल जून में हुई एक कार्रवाई का है। हरियाणा पुलिस ने जून में नरवाना शहर में नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण ढहाया था। यह वीडियो उसी घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में एक पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। लोग कह रहे हैं कि नेपाल की बाढ़ में यह पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए।
4: नेपाल में आई बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो गई है जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। इसे हालिया वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। इन सब के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में एक पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो जाता है। कुछ लोग इसे नेपाल की बाढ़ का बताकर शेयर कर रहे हैं। सोशल साइट एक्स पर इसे शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, नेपाल फ्लड। नेपाल में बाढ़ से करीब 13 पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। ये ज्यादातर प्रोजेक्ट रसुआ और नुवाकोट जिले में नदी पर बने हुए थे। लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को नेपाल का बताकर शेयर किया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि भीषण बाढ़ का ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पानी की तेज बहाव की चपेट में ये पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। सच के दौरान ये जानकारी सामने आई कि नेपाल में भीषण बाढ़ की वजह से 12 से अधिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा, जिससे करीब 431.1 मेगावाट बिजली का उत्पादन रुक गया है। अब ऐसे में जानना जरूरी हो गया था कि नेपाल के किस हिस्से का ये पावर प्लांट है। वीडियो को देखने से तो यही लग रहा है कि ये किसी पावर प्लांट का है, लेकिन लगातार खोजबीन करने के बावजूद फैक्ट चेक टीम को दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई ऐसी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल में बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हैं। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम लगातार इन तस्वीरों और वीडियोस की पड़ताल कर रही है। हमारी पड़ताल में सभी फेक साबित हुए हैं, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसके बाद पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो नेपाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जाने।
4: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पर 16 फरवरी 2023 को छपी एक रिपोर्ट मिली, जिसमें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट मौजूद है। यहां इसे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के रानुलिया पावर प्लांट का बताया गया है। पाकिस्तान के इस इलाके में 2022 में भीषण बाढ़ आई थी। इस रिपोर्ट में इसी बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताया गया है। इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें ऐसे कई YouTube चैनल मिले जिन्होंने अगस्त 2022 में इस वीडियो को शेयर किया था। इन चैनलों ने भी इसे रानुलिया हाइड्रो पावर प्लांट का बताया है। सर्च के दौरान ही हमें YouTube पर रानुलिया हाइड्रो पावर प्लांट का जून 2022 का एक ब्लॉग भी मिला। इसमें साफ देखा जा सकता है कि यह जगह वायरल वीडियो से बिल्कुल मिलती है। जर्मनी के न्यूज आउटलेट की 2 सितंबर 2022 की रिपोर्ट में भी ये वीडियो देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान की डुबेर नदी में आई बाढ़ का है। वीडियो का क्रेडिट एक टिकटॉक हैंडल को दिया गया था। हमें इसी यूजर नेम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिल गया। पाकिस्तान के इस यूजर ने अपने बायो में खुद को एक नेचर एंथुजियास्ट बताया है। इस अकाउंट ने ये वीडियो 28 अगस्त 2022 को पोस्ट किया था। वीडियो वायरल होने के बाद इस अकाउंट ने 27 अगस्त 2026 को इसे दोबारा शेयर किया और साफ किया कि ये वीडियो अगस्त 2022 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के छोटे से गांव दुबेर में आई बाढ़ का है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2022 में आई बाढ़ का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: दिल्ली मेट्रो से सामने आया ये वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में एक छोटी बच्ची ड्यूटी पर तैनात सीएसएफ जवान को देखकर जिस अंदाज में सैल्यूट करती है, वह पल बेहद प्यारा और भावुक नजर आता है। मेट्रो कोच में यात्री अपने अपने सफर में व्यस्त थे। इसी दौरान बच्ची की नजर वर्दी पहने सीएसएफ जवान पर पड़ती है। बच्ची बिना किसी झिझक के जवान की ओर देखती है और अचानक अपना हाथ उठाकर सैल्यूट कर देती है। बच्ची के चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ सम्मान का भाव साफ नजर आता है। बच्ची का यह छोटा सा इशारा वहाँ मौजूद लोगों के लिए भी खास बन गया। आमतौर पर बच्चे किसी वर्दीधारी जवान को देखकर उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने जिस गंभीरता के साथ सैल्यूट किया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। जवान ने भी बच्चे के सम्मान को नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने बेहद सहज और प्यार भरे अंदाज में उसके सैल्यूट का जवाब दिया। कुछ सेकंड का ये संवाद बिना किसी शब्द के ही बहुत कुछ कह गया। इस प्यारे पल का वीडियो सीएसएफ के आधिकारिक एक्स अकाउंट में शेयर किया गया है। इस प्यारे पल का वीडियो सीआईएसएफ के आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची का प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची अपने क्यूट अंदाज और मासूमियत से लोगों का दिल जीतती नजर आ रही है। बच्ची की प्यारी हरकतें देखकर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं और वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े वीडियो अक्सर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटे बच्चे के अपने दोस्त के प्रति चिंता और मासूमियत लोगों का दिल जीत रही है। वीडियो देखने के बाद यूजर्स इसे बचपन की सच्ची दोस्ती की सबसे खूबसूरत झलक बता रहे हैं। वायरल वीडियो में एक प्ले स्कूल का नजारा दिखाई देता है। क्लासरूम में मौजूद एक बच्चा अपने दोस्त को फोन मिलाता है और बड़े ही मासूम अंदाज में पूछता है, तो आज स्कूल क्यों नहीं आया? दूसरी तरफ से बच्चे की आवाज आती है कि वे बारिश की वजह से स्कूल नहीं आ पाया। दोनों बच्चों के बीच चल रही छोटी सी बातचीत सुनकर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठे। बातचीत का सबसे प्यारा पल तब आता है जब फोन पर मौजूद दोस्त की बात सुनने के बाद बच्चा बेहद भोलेपन से कहता है, जब बारिश रुक जाए तब आ जाना। इतना कहकर वह आराम से फोन रख देता है। उसके चेहरे पर अपने दोस्त से मिलने की खुशी और चिंता साफ झलकती है। ये मासूमियत इस वीडियो को खास बना रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि साधु ने ना केवल उस बच्चे के सामने हाथ जोड़े, बल्कि उसे साक्षात शक्ति और देवी का स्वरूप मानकर नतमस्तक हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची साधु के पास पहुंचती है। साधु बच्चे के पैर को छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद साधु बच्चे के हाथ में कुछ रुपए रख देते हैं। बच्ची उसे आशीर्वाद समझकर रख लेती है। एक तपस्वी का ये व्यवहार समाज को एक गहरा संदेश देता है कि सनातन संस्कृति में बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं बल्कि पूजनीय शक्ति है। ये वीडियो केवल आस्था का नहीं बल्कि नारी सम्मान और बेटियों के प्रति आदर का एक अद्भुत उदाहरण है।
6: आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे ना?
5: एक पिता और उसकी मासूम बेटी के बीच ये बातचीत सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रही है। बच्चे जिस मासूम अंदाज में अपने माँ के बारे में पिता को एक एक बात बता रही है, उसे सुनकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हैं। आप भी सुनिए ये बातचीत।
6: आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे ना, मैंने मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जो मैं आपसे बिना पूछे बाहर जा सकता हूँ, कुछ भी मन में वो कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
7: फिर क्या बोला मम्मी?
6: मम्मी जी ने जो बोला ना, वो मेरे दिल को छू गई।
7: क्या बोला?
6: मम्मी जी ने बोला कि इतना बड़ा तेरा बाप भी नहीं होया कभी।
5: हंसी मस्ती और स्वाद का मजेदार संगम, पैरों में बंधी रस्सी, उसी रस्सी में लटका बिस्किट और बिना हाथ लगाए उसे मुंह तक पहुंचाने की चुनौती। जितना पैर उठेगा बिस्किट उतना करीब आएगा। हर बच्चा पूरी लगन से कोशिश कर रहा है, कोई जल्दी सफल हो रहा है तो कोई बार बार प्रयास कर रहा है। इस मजेदार खेल ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है और बता दिया कि सीखने का सबसे आसान तरीका खेल ही होता है। एक लाइन लंबी कतार और बच्चों का शानदार तालमेल, एक एक कर सभी बच्चे ट्रेन की बोगियों की तरह एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कतार बढ़ती है वैसे वैसे खेल और भी रोमांचक होता जाता है। हर बच्चा पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहा है। इस खेल में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सहयोग, अनुशासन और टीम वर्क का भी संदेश छिपा है। यही वजह है कि बच्चे इस खेल का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे तेज बारिश में खेल रहे हैं। सभी बिना छतरी के मैदान में भर चुके पानी में खुशी खुशी नाच रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं। जबकि कुछ यूजर्स ने स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाया कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। रंग बिरंगे कपड़े, तेज म्यूजिक और उसी ताल पर बच्चों का शानदार प्रदर्शन। देखने में ये स्टेप भले ही आसान लग रहे हो, लेकिन इन्हें एक साथ सही तालमेल के साथ करना बिल्कुल आसान नहीं है। इन नन्हे बच्चों ने अपनी मेहनत और अभ्यास से हर मूवमेंट को बेहद खूबसूरती से पूरा किया। चेहरे पर मुस्कान और कदमों में गजब का तालमेल दिखाई दिया। बच्चों की इस प्यारी प्रस्तुति का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लोगों का खूब प्यार बटोर रहा है। उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, इस बात को बिल्कुल सच साबित कर दिया है 66 साल की फिटनेस एंटरप्रेन्योर रेनू सिंधु ने। रेनू अहमदाबाद की रहने वाली हैं और वहां पर अपना जिम चलाती हैं। वो सिर्फ जिम की मालकिन ही नहीं बल्कि खुद फिटनेस फ्रीक भी हैं। 66 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। और अब उनका एक लेटेस्ट वीडियो आया है जिसमें वो पोती को लेकर वर्कआउट कर रही हैं। उन्होंने अपने 66वें जन्मदिन पर ये किया। इस वीडियो को देखकर लोगों की खूब तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
8: कहते हैं मंजिल पाने का जज्बा हो तो रास्ते की मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं, और ये भी कि बात करने से ही बात बनती है। यूपी में बलिया की 7 साल की रागिनी इस बात की मिसाल है। बचपन में एक हादसे में उसका एक पैर खराब हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रागिनी एक पैर से ही करीब 400 मीटर का सफर तय कर स्कूल पहुंचती है, लेकिन उसका ये संघर्ष जब सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आया तो उसकी भावुक अपील प्रशासन तक पहुंची और उसके सपनों को नई उड़ान भी मिली।
10: क्या क्या
11: दिया
10: मिला है आपको?
11: काट भी मिला है, साइकिल मिठाई मिला है।
10: अच्छा अच्छा, रागिनी पढ़ने जाओगी ना?
11: हाँ।
10: क्या बनोगी?
11: डॉक्टर।
10: डॉक्टर बनना है। और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए?
11: आप कुछ नहीं चाहिए।
4: रागिनी को अब कुछ नहीं चाहिए, छोटी सी जरूरत थी पूरी हो गई। अब मासूम चेहरे पर मुस्कान है, गले में डीएम अंकल ने माला पहनाई है, हर जंग जीतने का आशीर्वाद दिया है और हर कदम पर मदद का भरोसा भी। बात रखने से बात बनती है। बलिया की रागिनी ने भी सोशल मीडिया के जरिए एक अपील की थी, जिसने भी सुना और देखा, मासूम का दर्द दिलों को छू गया। उसके भावुक अपील सुनकर बलिया के डीएम मंगल प्रसाद सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए। पहले डॉक्टरों की टीम भेजी और फिर उससे मिलने खुद आए। साइकिल, खेलकूद की एक किट और मिठाइयां दी, और हर संभव मदद और इलाज का भरोसा भी। जिस 400 मीटर लंबे रास्ते को रागिनी स्कूल जाने के लिए एक पैर से नापती है, वहां सड़क बनाने का भी भरोसा मिला, ताकि रागिनी अपने सपनों को नई उड़ान दे सके।
10: लोग उसी के गांव में, उसी के घर पे, उसके परिवार से मिलने आए हैं, बिटिया से भी मिले हैं। साइकिल तो एक औपचारिक है, ठीक है, साइकिल तो दिया ही हम लोगों ने, बट हम लोगों का प्रयास ये है कि बिटिया को और उसके परिवार को कोई परेशानी ना हो। जो जो भी हम लोग कर सकते हैं उसके लिए वो सब हर संभव प्रयास करेंगे। इस गांव में स्कूल तक और गांव तक आने का रास्ता बना हुआ है, बट थोड़ा मरम्मत की आवश्यकता, उसको भी हम कराएंगे। इनके यहाँ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम भी ठीक कराएंगे। अभी व्यक्तिगत शौचालय दिया गया है इनको, स्वीकृत हो चुका है, वो इनको पैसा भी मिल चुका है इनके खाते में, वो भी बनवाएंगे। बिटिया को मिल करके और बिटिया से मुलाकात बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। बिटिया टैलेंटेड है और इसको हम लोग एक पूरी किट दिए हैं जिससे बिटिया खेल कूद सके, पढ़ाई कर सके, और बिटिया की इच्छा है कि वो पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बनना चाहती है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बिटिया का पैर भी जल्दी ठीक हो जाए। हम लोग प्रयास करेंगे, मेडिकल चेकअप भी हम कल करा रहे हैं, क्योंकि पुराना केस है ये, 5-6 साल पुराना है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि बिटिया का अगर पैर ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, दोनों पैरों पर चल सकती है, तो यहाँ लखनऊ जहाँ भी ऑपरेशन हो सकता है हम लोग कराएंगे।
4: रागिनी से तो आप अब तक परिचित हो ही चुके होंगे। 7 साल के इस मासूम का परिवार यूपी के बलिया जिले के रानीपुर इलाके में रहता है। जब रागिनी महज 6 महीने की ही थी, तब एक हादसे में उसका एक पैर खराब हो गया। रागिनी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में उसके लिए कृत्रिम पैर का इंतजाम करना परिवार के लिए आसान नहीं था। लेकिन रागिनी ने हार नहीं मानी, पढ़ाई लिखाई के प्रति उसका लगाव बचपन से था, सो एक पैरों से ही स्कूल जाने की ठान ली।
9: दिक्कत यही होता है कि पढ़ने जाती है एक पैर पे गिर जाती है, रोने लगती है, पैर में दर्द उठ जाता है।
12: पढ़ना चाहती है?
9: पढ़ना चाहती है, लड़का जाते हैं तो छपराती है, रोती है, हम लोग का करेजा फटता है।
12: क्या चाहिए आपको?
9: हमको सरकार अनुदान इसको सुविधा कुछ देती तो यही हम चाहते हैं।
4: रागिनी के पास एक पैर नहीं है लेकिन उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं, हौसले बुलंद है और अब जब सोशल मीडिया के इस दौर में उसकी आवाज प्रशासन तक पहुंच गई है तो उसकी उम्मीदों को अब नए पंख भी मिल गए हैं। बलिया से अनिल कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और अब आपको दिखाते हैं देश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक की बर्थडे के जश्न की तस्वीरें। जी हाँ, कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने केक काटकर महक का जन्मदिन मनाया और उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की।

0: ये तस्वीर किसी जू में जीवन की जिंदा दिली की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। किसी बाघिन का 22 साल की उम्र को छू लेना आसान नहीं माना जाता, लेकिन 22 साल पूरे कर चुकी बाघिन महक ने ये कर दिखाया है। महक अब 23वें साल में पहुंच गई है और इसी बात ने इस बाघिन को खास बना दिया है। बाघिन महक के 23वें बर्थडे पर कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में जश्न मनाया गया।
1: May God bless you. Happy birthday.
0: दरअसल आमतौर पर चिड़ियाघरों में बाघ बाघिन की उम्र करीब 16 से 18 साल के आसपास मानी जाती है। वहीं जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में इनकी उम्र इससे भी कम हो सकती है। ऐसे में 22 साल की महक सामान्य जू लाइफ से करीब 4 साल आगे निकल चुकी है। यानी महक ने सिर्फ उम्र को ही मात नहीं दी बल्कि उम्र के रिकॉर्ड को भी चुनौती दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी महक एक्टिव है। पानी में अठखेलिया करना, एनक्लोजर की बाउंड्री के आसपास घूमना और पर्यटकों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना, महक आज भी ये सब करती है। हालांकि उम्र का असर दिखना शुरू हो चुका है। उठने में पहले के मुकाबले महक को थोड़ी सी परेशानी होती है, इसीलिए उसकी कैल्शियम डोज बढ़ाई गई है।
2: ये अभी 22 साल की हो चुकी है। 28 अगस्त 2004 में जन्मी थी। ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से उस समय उनका जन्म हुआ था और वहीं से जो 2012 में हमारे कोटा में जू में लाया गया था।
0: महक की उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसकी सेहत अच्छी है। उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक है, दांत और जबड़े मजबूत हैं और वजन भी लगभग सामान्य है। महक की लंबी उम्र के पीछे खानपान और मेडिकल केयर भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हर दिन उसे करीब 8 किलो चिकन और मांस दिया जाता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और आयरन टॉनिक भी, और उम्र को देखते हुए उसकी मेडिकल मॉनिटरिंग भी लगातार होती है। हर 3-4 दिन में उसकी मेडिकल जाँच की जाती है। महक की उम्र का राज सिर्फ उसकी देखभाल में नहीं, वन विभाग के मुताबिक जेनेटिक फैक्टर भी इसकी बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि अच्छी डाइट और मेडिकल केयर के बावजूद हर बाघिन 22 साल तक नहीं पहुंचती। महक का मामला इसलिए भी खास है क्योंकि उम्र बढ़ने के बावजूद उसकी सक्रियता और सेहत काफी हद तक बरकरार है। महक अब सिर्फ अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क की पहचान नहीं बल्कि लंबी उम्र तक जीवित रहने वाली बाघिन की एक मिसाल भी है। 22 साल पूरे, 23वें में कदम, उम्र बढ़ी है, रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन पानी में महक की अटखेलियां और एनक्लोजर में उसकी चाल आज भी बता रही है कि दहाड़ भले ही धीमी हुई हो, महक की कहानी अभी बाकी है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
5: 'असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: भारतीय वायुसेना को मिली बड़ी कामयाबी, स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम खगंदक 243 का सफल टेस्ट। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, 3 ट्रस्टी के नामों का भी हुआ ऐलान। जितेंद्र मिश्र के गांव में मना जश्न, बटी मिठाई। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा, परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर हुआ तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। बद्रीनाथ मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां, इस साल फूलों से नहीं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा मंदिर। मथुरा में रोशनी में नहाई श्री कृष्ण जन्मभूमि। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार, काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। भारत को मिली 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया ऐलान, 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। देखिए, देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व है, उससे ठीक पहले अब शहर शहर बेसब्री से कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। आप भारत के किसी भी शहर में रहते हों, आपके आसपास के मंदिरों में अब आपको तैयारी दिखने लगी होगी। शहर शहर प्रसिद्ध मंदिरों से लेकर गली मोहल्लों तक के तमाम मंदिरों में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की परंपरा रही है। लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है कन्हैया के ब्रज में, जहां मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल से लेकर बरसाना तक जन्माष्टमी के रंग बिखरे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। तस्वीरें देखिए।

0: पक्ष तिथि अष्टमी भाद्र मास मनुहार चंद्र वंश रोहिणी नखत दिन विशुद्ध बुधवार वृषभ लग्न में चंद्रमा लग्न राशि एक साथ जब शुभ ये संजोग बना प्रकट भये श्रीनाथ। कोई 5000 साल पहले कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच भाद्रपद अष्टमी की रात मथुरा की काल कोठरी में प्रकाश बनकर स्वयं नारायण प्रकट हुए थे। फिर क्या मथुरा, क्या गोकुल और क्या वृंदावन, यमुना की हर लहर से लेकर गोवर्धन पर्वत के शिखर तक ब्रज की रज रज कृष्णमय हो उठी। मथुरा में जहां आज कृष्ण जन्म स्थान माना जाता है, वह 5000 साल पहले कटरा केशव देव नाम की जगह पर राजा कंस का कारागार हुआ करता था। उसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। आज कन्हैया की ये जन्मभूमि एक बार फिर प्रकाश से जगमगा रही है। भगवान कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव से पहले पूरे मथुरा को सजाया जा रहा है। ये तो तमाम मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि मंदिर की बात निराली है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान सज धज कर तैयार है। तमाम जो लाइटिंग है, साज सज्जा है, वो बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ की गई है। 5 दिवसीय जो उत्सव है ना, वो आज शुरू हो गया है। और उसकी बात की जाए तो लीला मंच पे भगवान की जो बाल लीला है, भगवान की जो सारी लीलाएं हैं, वो की जा रही हैं। और वहीं उत्सव की बात की जाए तो 3 तारीख को सुबह में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए भगवान के उत्सव की आगाज करेगी। वहीं शाम में 5:30 बजे के आसपास जो भगवान को पंचरत्नीय पोशाक है, वह अर्पण की जाएगी, जो ठाकुर जी जन्मदिन वाले दिन पहनेंगे और अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे।
0: बताया गया है कि 5 दिवसीय जन्माष्टमी उत्सव से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को करीब 200 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। जन्माष्टमी के दिन नए बने रजत कमल में विराजमान ठाकुर गोपाल जी का जन्म अभिषेक हर बार की तरह इस बार भी विशेष आकर्षण रहने वाला है। 4 सितंबर को सुबह 5:30 बजे भगवान कृष्ण की मंगला आरती होगी, सुबह 8 बजे पंचामृत अभिषेक और रात 10 बजे जन्म महाअभिषेक होगा। रात 12 बजे भगवान के प्राकट्य दर्शन और आरती होगी, जिसके बाद कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय से अभिषेक किया जाएगा। फिर रजत कमल में ठाकुर जी का जन्म महाअभिषेक होगा। वहीं श्रृंगार आरती रात 12:45 से 12:50 बजे तक होगी और शयन आरती रात 1:55 से 2 बजे तक होगी। इस मौके पर जन्मभूमि मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का प्रवेश रात 1:30 बजे तक चालू रहेगा। अगले दिन भी जन्माष्टमी के उत्सव और विशेष दर्शन का ये दौर जारी रहेगा।
1: दूसरे दिन भगवान का जो उत्सव है, वो भगवान सुबह से ही ढोल नगाड़े के साथ मंगला आरती होगी और भगवान कालहंस मंगले में विराजकर सुबह से शाम तक दर्शन देंगे। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो 5 दिवसीय उत्सव में ठाकुर जी की जो आराधना है, जो सेवा है, जो पूजा है और शाम के समय में भगवान का अभिषेक है, ये सारी चीजें होंगी। और वहीं अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है। विशेष प्रसाद यहाँ पंजीरी का, मेवा के लड्डू का, गोला की बर्फी का जो प्रसाद है, पंचामृत है, वो यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अर्पण किया जाएगा, दिया जाएगा भगवान का प्रसाद।
0: हर साल की तरह इस साल भी ब्रजभूमि में जन्मोत्सव के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देश भर से आने वाले इन श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित दर्शन का मौका मिले, इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। शहर में जगह जगह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी और CCTV से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है।
2: भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि में 5253वां जन्म दिवस बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर में बांट करके मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव सभी में खूब सजावट की जा रही है। यात्रियों को भीड़ से बचाने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से दर्शन कराया जाएगा। सभी मंदिरों के जो प्रबंधक हैं, जो पुजारी गण हैं, जो गोस्वामी बंधु हैं, सबके साथ बैठक करके किसी प्रकार से दर्शनार्थियों को और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन करने में असुविधा ना हो।
0: ब्रज के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे ब्रजवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ एक साथ मिलकर मनाते हैं। फिलहाल सारा ब्रज अपने लाडले कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारी में जुटा है।
1: भगवान का जो उत्सव है ना, बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और वही शहर की बात करें तो पूरा शहर बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जा रहा है। कभी 24 चौराहे हैं और 24 चौराहों के पास 24 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, जहां से श्रद्धालु आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। पूरे शहर को बड़े भव्यता और दिव्यता और ऐसी लाइटिंग के साथ, दूधिया रोशनी के साथ सजाया गया है कि जो भी यहाँ आए ठाकुर जी का जन्म उत्सव बनाने, वो एक अच्छा संदेश लेके जाए और भगवान के प्रति जो आस्था है, जो समर्पण है, जो विश्वास है, जो ठाकुर जी के प्रति समर्पण, विश्वास और जो श्रद्धा है उसको लेके आए, वो उसकी श्रद्धा में कहीं कोई भाव अधूरा ना रहे, इसी को देखते हुए पूरे नगर को, पूरे ब्रजमंडल को अजन्मे के जन्म के लिए तैयार किया जा रहा है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
3: अनोखा है ब्रज और उतने ही अनूठे हैं ब्रज के बाल गोपाल। कान्हा ने जहां ब्रज भूमि को अपनी बाल लीलाओं और रास के रंग का साक्षी बनाया, तो वहीं कुरुक्षेत्र की धरती उनके मुख से निकले गीता ज्ञान सागर की गवाह बनी। भगवान कृष्ण की जीवन लीलाएं अद्भुत हैं। वह ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इंसानों की जिंदगी से जुड़े हर भाव और हर संवेदना को जिया है। श्री कृष्ण के जीवन में घटी घटनाओं में मानव जीवन के लिए वो तमाम संदेश छुपे हुए हैं जिन्हें समझे जाने की जरूरत है। भगवान कृष्ण के ब्रज में बीते बाल्यकाल से लेकर कुरुक्षेत्र में महाभारत के रण तक उनके जीवन की कहानियां अंधेरे में बिखरी रोशनी की तरह है। उसी तरह भगवान कृष्ण की कुछ प्रिय वस्तुएं जैसे मोरपंख, बांसुरी, दर्शन चक्र वगैरह, ये सभी अपने आप में कई सीख समेटे हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। सबके पहले बात मोरपंख की। भगवान कृष्ण का मोरपंख समझाता है कि जीवन में सभी तरह के रंग होते हैं, जैसे कि सुख, दुख, प्रेम, करुणा, रिश्ते आदि। अगर इन रंगों को सलीके और मर्यादा में रखा जाए तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। जरूरत है तो सिर्फ सही तालमेल की। इसी तरह भगवान कृष्ण की बांसुरी भी सुंदर संदेश देती है। बांसुरी में 8 छेद होते हैं, ये जीवन का प्रतीक है। इसमें जो छेद हैं वो कमियां हैं। कृष्ण कहते हैं जीवन में लाख कमियां हो लेकिन जीने का तरीका और सोच सकारात्मक हो तो कमियों के बावजूद जीवन को मधुरता से जिया जा सकता है। तो वहीं वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्या सीख समेटे हुए है, ये भी आपको बता दें। तो वहीं वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्या सीख समेटे है, ये भी आपको बता देते हैं। वैसे तो ये हथियार है लेकिन नाम है सुदर्शन। सु प्लस दर्शन, यानी जो दिखने में बहुत सुंदर हो, प्रभावशाली हो। इंसान के लिए उसका व्यक्तित्व ही सुदर्शन चक्र है। लोग आपके व्यक्तित्व को देखकर ही व्यवहार करते हैं। अगर व्यक्तित्व सुदर्शन है तो आपकी हर जगह जीत तय होगी। भगवान कृष्ण वैजयंती माला भी धारण करते हैं। कमल के फूल के बीजों से बनी माला को वैजयंती माला कहा जाता है। ये बीज बहुत सख्त होते हैं, आसानी से टूटते नहीं। ये सिखाते हैं कि इंसान को हर तरह की परिस्थिति में खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, जीत तभी मिलती है। और अंत में बात बाल गोपाल के पसंदीदा माखन मिश्री की। माखन नर्म और एकदम पिघलने वाला होता है, जबकि मिश्री सख्त होती है लेकिन माखन में घुलकर मिठास देती है। ये सिखाता है कि हमारा स्वभाव माखन की तरह नर्म और व्यवहार मिश्री की तरह घुलने वाला होना चाहिए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको मथुरा की तस्वीरें दिखाई, अब आपको लेकर चलते हैं वृंदावन। लेकिन ये ब्रज का वृंदावन नहीं है बल्कि राजस्थान की धरती पर मौजूद गुप्त वृंदावन धाम है। जयपुर का गुप्त वृंदावन धाम श्री कृष्ण का भव्य मंदिर है। 4 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम मनाने की पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। भगवान कृष्ण के लिए खास फूल बंगला झांकी तैयार हो रही है, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विशालकाय पंडाल लगाया गया है। भगवान के लिए 108 प्रकार का विशेष भोग बन रहा है। गुप्त वृंदावन धाम में इस बार जन्माष्टमी पर 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचने की पूरी संभावना है। ऐसे में भक्तों की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए दर्शन सुगम बनाने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या खास होने वाला है जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, इस बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रीतम जैन।
4: मैं अभी मौजूद हूं जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में, जहां पर भी ये जो तैयारियां हैं ये भी देखने को मिल रही है। साज सज्जा जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। इनका कहना है कि 1 महीने पहले से ही जन्माष्टमी के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। ये जो थीम है ये फूल बंगले का थीम है, जिसमें 32 अलग अलग तरह के फूल जो हैं वो लाए गए हैं, जिनसे इस पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है जो भगवान का दरबार है सिर्फ उसका जो सजावट है वो की जाती है, पर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा मंदिर फूलों से सजेगा। फूल बंगला जो है वो उसको कहा जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे सिर्फ जयपुर में मिलने वाले नहीं पर बाहर से भी कई सारे फूल हैं वो मंगवाए गए हैं। बहुत ही कलरफुल ये जो डेकोरेशन है ये यहाँ पे किया जा रहा है। भगवान कृष्ण की पोशाक की मैं बात करूँ तो पोशाक वृंदावन से आ रही है। खास पोशाक जो है वो भगवान कृष्ण के लिए उनके जन्मोत्सव के लिए बनवाई जा रही है, जो कि वृंदावन से आ रही है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग रंगों के जो प्रॉप्स हैं वो रखे हुए हैं, जिनकी सजावट चल रही है। 2 दिन का समय भी बच रहा है, जिन 2 दिनों में ये पूरी सजावट जो है वो की जाएगी।
3: अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के ही धौलपुर में, जहां कृष्ण जन्माष्टमी से पहले दिन रात कान्हा की पोशाकें बनाने का काम लगातार चल रहा है। धौलपुर जिले के 50 से ज्यादा कारखानों में कारीगर योगेश्वर श्री कृष्ण और राधा के लिए पोशाकें तैयार कर रहे हैं। इन पोशाकों पर मोतियों, नग, शीशा और स्टोन से काम किया जा रहा है। इन कारखानों में ज्यादातर मुस्लिम कारीगर काम करते हैं। यहाँ साल भर भगवान के लिए पोशाकें बनाने का काम इसी तरह से चलता है। जन्माष्टमी पर्व और नवरात्रि में भगवान श्री कृष्ण, राधा और माता रानी की पोशाकों की खूब मांग होती है। ठाकुर जी और राधा के लिए तैयार की जाने वाली पोशाकों को मुस्लिम कारीगर हाथ से पूरी कढ़ाई की कारीगरी करते हैं और इसके बाद इन पोशाकों की कटाई और सिलाई की जाती है। कारीगर फिलहाल यहाँ राधा रानी के लिए आकर्षक लहंगा, ओढ़नी और पटुका बना रहे हैं। यहाँ से बनी पोशाक मथुरा वृंदावन से देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों समेत विदेशों में बने मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी के लिए भेजी जाती है। जन्माष्टमी से पहले हरियाणा के करनाल में कान्हा पार्लर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। यहाँ जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। कान्हा जी पार्लर के नाम से मशहूर इस जगह में ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल का भोग के साथ विशेष श्रृंगार होता है, और केवल जन्माष्टमी ही नहीं बल्कि कई दूसरे त्योहारों के समय भी ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए कई दिनों पहले से लंबी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर चलती है।

0: नन्हे से कान्हा की मुस्कान प्यारी, मोर पंख सजे हाथों में बंसी भी प्यारी, जन्माष्टमी के लिए सजे लड्डू गोपाल की मूर्ति लगे सबसे न्यारी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर घर और मंदिरों को सजाने के अलावा राधा कृष्ण को नई पोशाक पहनाकर झांकियों का भी आयोजन होगा। ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर झूले, मुकुट, मोर पंख और वस्त्र भी लोग खरीद रहे हैं। तो वहीं लोगों के आराध्य कान्हा का भी पार्लर में श्रृंगार हो रहा है। जी हाँ, जिस तरह से विवाह और दूसरे समारोह में जाने के लिए लोग ब्यूटी पार्लर में सिंगार करवाते हैं, वैसे ही अब कान्हा जी को भी पार्लर में सजाने सवारने का काम काफी प्रचलित हो रहा है। जन्माष्टमी से पहले करनाल के कलंदरी गेट में कान्हा जी का पार्लर खुला है, जहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है और उनको सजाने सवारने वाले हैं संजीव सोनी।
1: दिनों थोड़ा ठाकुर जी के देखो, सभी लोग अपने अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लेकर आते हैं और उसमें देखो हर तरह से जैसे उनके भाव होते हैं उस तरह से हमें बताते हैं कि श्रृंगार इस तरह से करना है ठाकुर जी का। और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है कि जैसे सबके ठाकुर जी, देखो आजकल थोड़ा श्रृंगार में समय लगता है, तो हमारे यहाँ ठाकुर जी की भोग सेवा भी पूरी तरह से होती है। हम सभी ठाकुर जी को, क्योंकि सेवा के ठाकुर जी, तो हमें भोग लगाना पड़ता है।
0: संजीव सोनी जो अपने इस पार्लर में लड्डू गोपाल की मूर्तियों का बेहद खूबसूरत और सलोना श्रृंगार करते हैं, वो बताते हैं कि जीवन में एक ऐसा भी समय था जब वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, मगर एक घटना ने उनको कान्हा जी की भक्ति में ही लीन करवाने के लिए मानो प्रेरित किया।
1: एक टाइम ऐसा भी था कि मैं मंदिर नहीं जाता था और अपने घर में तुलसी तक नहीं लगने देता था। वो ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी, हमारे घर के पास ही मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हुई और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने मुझे वहाँ सेवा और पूजा में जाने के लिए मनाया, तो मैं गया वहाँ पे। उस दिन मैंने अपने हाथ से ठाकुर जी का अभिषेक श्रृंगार किया और उसके बाद से ही ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपने साथ ही, मतलब अपने कार्य में सहभागी बनाया। मतलब मुझे कोई भी कार्य, मंदिर की सेवा मिल जाती है, जन्माष्टमी की शोभा यात्रा के, शिवरात्रि की शोभा यात्रा में कोई ना कोई छोटी मोटी सेवा या बड़ी सेवा कोई वो दे देते हैं, तो बस तभी से वो करते करते श्रृंगार की सेवा फिर ठाकुर जी ने तभी मेरा शुरू कराया।
0: पिछले कई साल से संजीव सोनी की कृष्ण भक्ति के माध्यम से साज सज्जा कला इतनी लोकप्रिय हो गई है कि आज हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब समेत दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु अपने अपने लड्डू गोपाल का संजीव सोनी के इस पार्लर से श्रृंगार कराना पसंद कर रहे हैं।
2: पूरी फैमिली इनके पास ही आती है, तो जो भी श्रृंगार का मटेरियल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, हर एक क्वालिटी वाइज होते हैं। जो भी हम लोग जैसे जन्माष्टमी के लिए आते हैं तो ड्रेसेस वगैरह भी डिफरेंट होती है, यूनिक, सब कुछ यूनिक होता है। बस
3: मैं इनसे लगभग 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ आने के बाद कहीं और जाने का मन ही नहीं हुआ, और जो इनकी कलाकारी है वो आप देख ही रहे हो, बहुत अति सुंदर और बिल्कुल एक समझ लो कि भावना से जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात ही है। और यहाँ जो भी चीज़ है मतलब एकदम प्योरिटी और स्वच्छता की गारंटी है।
0: इस पार्लर में जो भी आस्थावान अपने ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए लाता है उसे 15 से 20 दिन पहले एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, ताकि पूरे सेवा भाव और नियमों के अनुसार ही कान्हा जी का मेकअप किया जा सके। वैसे कहते भी हैं, जहां कान्हा विराजते हैं वहां खुशियां खुद ही चली आती हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं के लिए भी उनके लड्डू गोपाल जी का इस पार्लर में आना, उनका भोग के साथ श्रृंगार होना ही शुभता का ही संकेत है। करनाल से कमलदीप संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो जन्माष्टमी की तैयारियां शहर शहर जोर शोर से चल ही रही हैं, बाजारों में खूब रौनक है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, दो अलग अलग राज्यों के, दो अलग अलग शहरों की तस्वीरें। एक तस्वीर है झांसी की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। शुक्रवार को मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव से पहले शहर के बाजार कान्हा की भक्ति के रंग में रंग गए हैं। बाजारों में जन्माष्टमी से जुड़ी सामग्री की दुकानें सज गई हैं और खरीदारी के लिए लोगों की चहलकदमी लगातार बढ़ रही है। जन्माष्टमी पर घरों, मंदिरों और विभिन्न स्थानों पर सजने वाली झांकियों और पंडालों के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर रंग बिरंगी झालरें, आकर्षक लाइटें, फूल मालाएं, पर्दे, पालने, मुकुट, पगड़ी, बांसुरी, माखन मटकी, सिंहासन और भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार से जुड़ी तमाम सामग्री बिक रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर एमपी के आगर मालवा से भी आई, जहां दुकानों पर भगवान के लिए रंग बिरंगी पोशाक, बांसुरी, झूले सब दिखाई दे रहे हैं। जन्माष्टमी तक बाजारों में ये रौनक यूं ही नजर आने वाली है। चलिए अब आपको कान्हा के मथुरा में सजे बाजारों की एक झलक भी दिखा देते हैं। यहाँ के हर गली बाजार में एक जैसा नजारा है। दुकानें लड्डू गोपाल की सुंदर पोशाक, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और झूलों से भरी पड़ी हैं और कृष्ण भक्त बड़े उत्साह के साथ अपने कान्हा के श्रृंगार की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं।

0: ब्रजधाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की उमंग हर ओर दिखाई दे रही है और मथुरा के तो कहने ही क्या। बाजार सज गए हैं, मुरलीधर की पोशाक और श्रृंगार के सामान से पूरा बाजार पटा हुआ है। यहाँ गिरधारी के सुंदर कपड़े, मुकुट, मोर पंख, बांसुरी और झूलों की भरमार है। होली गेट से द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के बाजार तक हर दुकान को जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष तौर पर सजाया गया है।
1: इस तरह के गोपाल जी बाजार में सज के तैयार हैं और ये पोशाक का बाजार है। यहाँ पोशाक भी बिक रही है, ठाकुर जी के झूला भी बिक रहे हैं, गोपाल जी भी बिक रहे हैं, तो सभी चीज इस दुकान पर बिक रही है। और जो द्वारकाधीश मंदिर के पास का बाजार है, सभी श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान की पोशाक अपने ठाकुर जी के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि ब्रज में एक बड़ा ठाकुर जी का जो जन्म है ना, वो बड़ा अद्भुत और अनेक तरीके से मनाया जाता है। ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाई जाएगी, नए उनके झूले होंगे, नए वस्त्र होंगे, नई बांसुरी होगी, नई मुकुट होगा।
0: बड़ी तादाद में ग्राहक मथुरा के बाजारों का रुख कर रहे हैं। जाहिर है इससे दुकानदार खुश हैं और इनका मानना है कि इस साल कारोबार पहले की तुलना में बेहतर हो रहा है। दावा ये भी है कि इनके पास लड्डू गोपाल के श्रृंगार से जुड़े सामान का जबरदस्त कलेक्शन है जो कृष्ण भक्तों को लुभा रहा है।
2: इस बार सब जो भी हैंडक्राफ्ट वर्क है, थ्री पीस में, ये सब स्टोन बूटी वाला सब बुटीक पीस इस बार ट्रेंड में बहुत काफी है। कस्टमर की भी काफी डिमांड है। रेगुलर पैटर्न पहना पहना के तो कस्टमर परेशान हो चुका है, तो उन्हीं की डिमांड देखते हुए हम ये सुंदर सुंदर कली के पैटर्न में और यूनिक यूनिक इंग्लिश कलर जो है, रेड, पीला, सब पहना चुके हैं। इसीलिए हम कस्टमर्स के लिए

0: पगड़ी।
1: दिल्ली, भरतपुर और आगरा जैसी आसपास की जगहों से ग्राहक यहां पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य ठाकुर जी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। कोई अपने नन्हे कान्हा के लिए मोरपंख थीम वाली ड्रेस ढूंढ रहा है, तो कोई फूलों से सजा झूला तलाश रहा है। इस जन्माष्टमी हर कृष्ण भक्त चाहता है कि उसके लड्डू गोपाल सबसे सुंदर दिखें।
2: होली की पूरी फूल तैयारी हो रही है। मथुरा जैसी जन्माष्टमी कहीं नहीं होती,
3: कहीं नहीं होती,
2: नहीं होती, नहीं।
3: एकदम यहाँ सारी पोशाक वोशाक सब कुछ,
2: जी जी बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे
3: सब मिल जाता है।
2: जो हमारे राजस्थान में भी नहीं है।
3: नहीं है,
2: नहीं है।
3: क्या क्या क्या नाम है आपका?
4: भावना।
3: क्या तैयारी कर रही है
4: भैया ठाकुर जी की? कह रहे हैं जन्माष्टमी की, हम तो आगरा से मथुरा मनाने आए।
3: अच्छा।
4: तो यहाँ की तरह कहीं भी नहीं मनती है।
3: अच्छा।
4: यहाँ की भाई अलग ही वो है मनाने वाली,
2: और
4: यहाँ भगवान जी का जन्म हुआ है, सारी लीलाएं चाहिए भगवान ने। भाई यहाँ की तो है ही नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी सब कुछ है यहाँ, पोशाक नेत्र मालाएं ठाकुर जी, यहाँ की से कोई यहाँ की से तैयारी कहीं नहीं है भैया।
1: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर स्थानीय दस्तकारों की भी चांदी है। यहाँ के कारीगर बड़ी ही शिद्दत और मेहनत के साथ बाल गोपाल की पोशाक तैयार कर रहे हैं और कृष्ण जन्मोत्सव में भागीदारी दर्ज करा रहे हैं।
5: जो है मतलब ये कि इस वक्त जो है मतलब तुम्हारा जो है पीले कलर की ज्यादा चल रही है इस वक्त, और पोशाकों की बाहर का ऑर्डर भी है हमारे पास में अपने, और जन्म स्थान का भी हमारे पास ऑर्डर है, तो ये चल रही है। और मतलब जो रात दिन मतलब जो के हमारे कारीगर भी सबरे काम कर रहे हैं, तो उन पोशाकों को पूरा करके जल्दी से जन्माष्टमी के लिए तैयारी करी जा रही है।
6: पूरा जो बाजार है, पूरा बाजार है, बड़ी भीड़ है बाजार में, और तमाम जो लोग हैं भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। और पूरे मथुरा की बात करें तो पूरा मथुरा सज धज के ठाकुर जी के जन्मोत्सव के लिए तैयार है, और पोशाक का बाजार है, चाहे ठाकुर जी के मुकुट श्रृंगार का बाजार हो या और भी किसी चीज का बाजार हो, वहाँ सभी गुलजार हैं, लोग पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण के लाला का जन्मोत्सव मनाने के लिए, नंदलाल का जन्मोत्सव, अजन्मे का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग तैयार हैं। और बड़ी तादाद में ठाकुर जी के वस्त्र नेत्र ठाकुर जी का श्रृंगार खरीद कर ले जा रहे हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।
7: तो तैयार हो जाइए जन्माष्टमी के इस पर्व को जीएनटी संघ मनाने के लिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें और रंग लगातार आपको गुड न्यूज टुडे पर हम दिखाते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अच्छे कपड़े जा रही है, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: भारतीय वायुसेना को मिली बड़ी कामयाबी, स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम खगंदक 243 का सफल टेस्ट। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, 3 ट्रस्टी के नामों का भी हुआ ऐलान। जितेंद्र मिश्र के गांव में मना जश्न, बटी मिठाई।

0: गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा। परिसर में आधुनिक हेलीपैड बनकर हुआ तैयार, इसी महीने के अंत तक हो सकता है उद्घाटन। बद्रीनाथ मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां। इस साल फूलों से नहीं, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा मंदिर। मथुरा में रोशनी में नहाई श्री कृष्ण जन्मभूमि। जन्माष्टमी से पहले काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए मथुरा भेजा गया विशेष उपहार। काशी और मथुरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाना है मकसद। भारत को मिली 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया ऐलान। 14 से 28 फरवरी तक टूर्नामेंट का होगा आयोजन।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बुलडोजर से घर को ढाया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दरोगा को पीटने वाले दबंगों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात है और बुलडोजर से घर को ढहाया जा रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं इसे रोकने की कोशिशें करती हैं, लेकिन महिला पुलिस उन्हें वहां से हटा देती है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह लखनऊ का वीडियो है और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि लखनऊ के पारा में दरोगा पर जानलेवा हमले करने वाले लोगों की भैंस बकरी को नीलाम कर दिया गया। अब मकान पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जितने भी मकान बिना नक्शे के बने या अवैध बने सब तोड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार वायरल कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी इलाके में भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं। वहां पर एक बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं विरोध प्रदर्शन करती दिख रही हैं, लेकिन महिला पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक नहीं चलती। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां पर दरोगा सहित कुछ पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले दबंगों के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इससे ये तो साफ हो गया कि वीडियो में बुलडोजर के जरिए एक्शन लिया जा रहा है। अब इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों के बैज को भी जूम करके ध्यान से देखा, तो ये साफ हुआ कि हरियाणा पुलिस के जवान है। अब वीडियो लखनऊ का है तो फिर वहां पर हरियाणा पुलिस का क्या काम है, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें जानकारी जरूर मिली कि हाल ही में लखनऊ में पारा इलाके में पुलिस नगर निगम की टीम के साथ अवैध डेयरियों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला करते हुए पथराव भी किया था। हमलावर यही नहीं रुके थे, उन्होंने बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी दरोगा विनय पटेल को दौड़ाकर बुरी तरह से पीटा भी था। इस मामले में पुलिस ने 24 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन हमें इस दौरान ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे ये पुष्टि हो सके कि पुलिस कर्मियों की टीम पर हमला करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। लिहाजा वायरल हो रहे वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को लखनऊ का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक फेसबुक अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 9 जून 2026 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वीडियो हरियाणा के नरवाना का है। पुलिस ने यहां नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 27 मकानों को ढहाया था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया और लगातार खोजबीन की। इस दौरान 10 जून 2026 को प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक नरवाना की चमेला कॉलोनी में नशा तस्करों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 अवैध मकानों और निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों का कहना था कि जिन 27 मकानों और निर्माणों को तोड़ा गया उनके खिलाफ जिला नगर योजनाकार जींद की ओर से पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ। असल में वायरल वीडियो हरियाणा का है और इस साल जून में हुई एक कार्रवाई का है। हरियाणा पुलिस ने जून में नरवाना शहर में नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण ढहाया था। ये वीडियो उसी घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में एक पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। लोग कह रहे हैं कि नेपाल की बाढ़ में यह पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए।
3: नेपाल में आई बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। इसे हालिया वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। इन सब के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में एक पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो जाता है। कुछ लोग इसे नेपाल की बाढ़ का बताकर शेयर कर रहे हैं। सोशल साइट एक्स पर इसे शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, नेपाल फ्लड। नेपाल में बाढ़ से करीब 13 पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। ये ज्यादातर प्रोजेक्ट रसुआ और नुवाकोट जिले में नदी पर बने हुए थे। लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई न्यूज आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को नेपाल का बताकर शेयर किया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि भीषण बाढ़ का ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पानी की तेज बहाव की चपेट में ये पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। सच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि नेपाल में भीषण बाढ़ की वजह से 12 से अधिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा, जिससे करीब 431.1 मेगावाट बिजली का उत्पादन रुक गया है। अब ऐसे में जानना जरूरी हो गया था कि नेपाल के किस हिस्से का ये पावर प्लांट है। वीडियो को देखने से तो यही लग रहा है कि ये किसी पावर प्लांट का है, लेकिन लगातार खोजबीन करने के बावजूद फैक्ट चेक टीम को दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई ऐसी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल में बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हैं। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम लगातार इन तस्वीरों और वीडियोस की पड़ताल कर रही है। हमारी पड़ताल में सभी फेक साबित हुए हैं, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसके बाद पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो नेपाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जाने।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पर 16 फरवरी 2023 को छपी एक रिपोर्ट मिली, जिसमें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट मौजूद है। यहां इसे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के रानोलिया पावर प्लांट का बताया गया है। पाकिस्तान के इस इलाके में 2022 में भीषण बाढ़ आई थी। इस रिपोर्ट में इसी बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताया गया है। इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें ऐसे कई यूट्यूब चैनल मिले जिन्होंने अगस्त 2022 में इस वीडियो को शेयर किया था। इन चैनलों ने भी इसे रानोलिया हाइड्रो पावर प्लांट का बताया है। सर्च के दौरान ही हमें YouTube पर रानोलिया हाइड्रो पावर प्लांट का जून 2022 का एक ब्लॉग भी मिला। इसमें साफ देखा जा सकता है कि ये जगह वायरल वीडियो से बिल्कुल मिलती है। जर्मनी के न्यूज आउटलेट की 2 सितंबर 2022 की रिपोर्ट में भी ये वीडियो देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान की डुबेर नदी में आई बाढ़ का है। वीडियो का क्रेडिट एक टिकटॉक हैंडल को दिया गया था। हमें इसी यूजर नेम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिल गया। पाकिस्तान के इस यूजर ने अपने बायो में खुद को एक नेचर एंथुजियास्ट बताया है। इस अकाउंट ने ये वीडियो 28 अगस्त 2022 को पोस्ट किया था। वीडियो वायरल होने के बाद इस अकाउंट ने 27 अगस्त 2026 को इसे दोबारा शेयर किया और साफ किया कि ये वीडियो अगस्त 2022 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के छोटे से गांव दुबेर में आई बाढ़ का है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2022 में आई बाढ़ का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: दिल्ली मेट्रो से सामने आया वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में एक छोटी बच्ची ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ जवान को देखकर जिस अंदाज में सैल्यूट करती है वह पल बेहद प्यारा और भावुक नजर आता है। मेट्रो कोच में यात्री अपने अपने सफर में व्यस्त थे। इसी दौरान बच्ची की नजर वर्दी पहने सीआईएसएफ जवान पर पड़ती है। बच्ची बिना किसी झिझक के जवान की ओर देखती है और अचानक अपना हाथ उठाकर सैल्यूट कर देती है। बच्ची के चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ सम्मान का भाव साफ नजर आता है। बच्ची का छोटा सा इशारा वहाँ मौजूद लोगों के लिए भी खास बन गया। आमतौर पर बच्चे किसी वर्दीधारी जवान को देखकर उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने जिस गंभीरता के साथ सैल्यूट किया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। जवान ने भी बच्चे के सम्मान को नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने बेहद सहज और प्यार भरे अंदाज में उसके सैल्यूट का जवाब दिया। कुछ सेकंड का ये संवाद बिना किसी शब्द के ही बहुत कुछ कह गया। इस प्यारे पल का वीडियो सीआईएसएफ के आधिकारिक एक्स अकाउंट में शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची का प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची अपने क्यूट अंदाज और मासूमियत से लोगों का दिल जीतती नजर आ रही है। बच्ची की प्यारी हरकतें देखकर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं और वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े वीडियो अक्सर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटे बच्चे के अपने दोस्त के प्रति चिंता और मासूमियत लोगों का दिल जीत रही है। वीडियो देखने के बाद यूजर्स इसे बचपन की सच्ची दोस्ती की सबसे खूबसूरत झलक बता रहे हैं। वायरल वीडियो में एक प्ले स्कूल का नजारा दिखाई देता है। क्लासरूम में मौजूद एक बच्चा अपने दोस्त को फोन मिलाता है और बड़े ही मासूम अंदाज में पूछता है, तो आज स्कूल क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ से बच्चे की आवाज आती है कि वह बारिश की वजह से स्कूल नहीं आ पाया। दोनों बच्चों के बीच चल रही छोटी सी बातचीत सुनकर आसपास के लोग भी मुस्कुरा उठे। बातचीत का सबसे प्यारा पल तब आता है जब फोन पर मौजूद दोस्त की बात सुनने के बाद बच्चा बेहद भोलेपन से कहता है, जब बारिश रुक जाए तब आ जाना। इतना कहकर वह आराम से फोन रख देता है। उसके चेहरे पर अपने दोस्त से मिलने की खुशी और चिंता साफ झलकती है। ये मासूमियत इस वीडियो को खास बना रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि साधु ने न केवल उस बच्चे के सामने हाथ जोड़े बल्कि उसे साक्षात शक्ति और देवी का स्वरूप मानकर नतमस्तक हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची साधु के पास पहुंचती है। साधु बच्चे के पैर को छूकर आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद साधु बच्चे के हाथ में कुछ रुपए रख देते हैं। बच्ची उसे आशीर्वाद समझ कर रख लेती है। एक तपस्वी का ये व्यवहार समाज को एक गहरा संदेश देता है कि सनातन संस्कृति में बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं बल्कि पूजनीय शक्ति है। ये वीडियो केवल आस्था का नहीं बल्कि नारी सम्मान और बेटियों के प्रति आदर का एक अद्भुत उदाहरण है।
5: आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे
4: एक पिता और उसकी मासूम बेटी के बीच ये बातचीत सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रही है। बच्चे जिस मासूम अंदाज में अपने माँ के बारे में पिता को एक एक बात बता रही है उसे सुनकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हैं। आप भी सुनिए ये बातचीत।
5: आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे ना, मैंने मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जो मैं आपसे बिना पूछे बाहर जा सकता हूँ, कुछ भी मन में वो कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
6: फिर क्या बोला मम्मी?
5: मम्मी जी ने जो बोला ना वो मेरे दिल को छू गई।
6: क्या बोला?
5: मम्मी जी ने बोला कि इतना बड़ा तेरा बाप भी नहीं होया कभी।
4: हंसी मस्ती और स्वाद का मजेदार संगम, पैरों में बंधी रस्सी, उसी रस्सी में लटका बिस्किट और बिना हाथ लगाए उसे मुंह तक पहुंचाने की चुनौती। जितना पैर उठेगा बिस्किट उतना करीब आएगा। हर बच्चा पूरी लगन से कोशिश कर रहा है, कोई जल्दी सफल हो रहा है तो कोई बार बार प्रयास कर रहा है। इस मजेदार खेल ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है और बता दिया कि सीखने का सबसे आसान तरीका खेल ही होता है। एक लाइन लंबी कतार और बच्चों का शानदार तालमेल, एक एक कर सभी बच्चे ट्रेन की बोगियों की तरह एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कतार बढ़ती है वैसे वैसे खेल और भी रोमांचक होता जाता है। हर बच्चा पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहा है। इस खेल में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सहयोग, अनुशासन और टीम वर्क का भी संदेश छिपा है। यही वजह है कि बच्चे इस खेल का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे तेज बारिश में खेल रहे हैं, सभी बिना छतरी के मैदान में भर चुके पानी में खुशी खुशी नाच रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं। जबकि कुछ यूजर्स ने स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाया कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। रंग बिरंगे कपड़े, तेज म्यूजिक और उसी ताल पर बच्चों का शानदार प्रदर्शन। देखने में स्टेप भले ही आसान लग रहे हो लेकिन इन्हें एक साथ सही तालमेल के साथ करना बिल्कुल आसान नहीं है। इन नन्हे बच्चों ने अपनी मेहनत और अभ्यास से हर मूवमेंट को बेहद खूबसूरती से पूरा किया। चेहरे पर मुस्कान और कदमों में गजब का तालमेल दिखाई दिया। बच्चों की इस प्यारी प्रस्तुति का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लोगों का खूब प्यार बटोर रहा है। उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, इस बात को बिल्कुल सच साबित कर दिया है 66 साल की फिटनेस एंटरप्रेन्योर रेनु सिंधु ने। रेनु अहमदाबाद की रहने वाली है और वहाँ पर अपना जिम चलाती है। वो सिर्फ जिम की मालकिन ही नहीं बल्कि खुद फिटनेस फ्रीक भी है। 66 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। और अब उनका एक लेटेस्ट वीडियो आया है जिसमें वो पोती को लेकर वर्कआउट कर रही है। उन्होंने अपने 66वें जन्मदिन पर ये किया। इस वीडियो को देखकर लोगों की खूब तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
8: कहते हैं मंजिल पाने का जज्बा हो तो रास्ते की मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं। और ये भी कि बात करने से ही बात बनती है। यूपी में बलिया की 7 साल की रागिनी इस बात की मिसाल है। बचपन में एक हादसे में उसका एक पैर खराब हो गया लेकिन उसने हार नहीं मानी। रागिनी एक पैर से ही करीब 400 मीटर का सफर तय कर स्कूल पहुंचती है। लेकिन उसका ये संघर्ष जब सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आया तो उसकी भावुक अपील प्रशासन तक पहुंची और उसके सपनों को नई उड़ान भी मिली।
10: मैं
9: क्या मिला है आपको?
5: कॉपी मिला है, साइकिल मिला है, मिठाई मिला है।
9: अच्छा अच्छा, रागिनी पढ़ने जाओगी ना?
5: हाँ।
9: क्या बनोगी?
5: डॉक्टर।
9: डॉक्टर बनना है। और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए?
5: कुछ नहीं चाहिए।
3: रागिनी को अब कुछ नहीं चाहिए, छोटी सी जरूरत थी पूरी हो गई। अब मासूम चेहरे पर मुस्कान है, गले में डीएम अंकल ने माला पहनाई है, हर जंग जीतने का आशीर्वाद दिया है और हर कदम पर मदद का भरोसा भी। बात रखने से बात बनती है। बलिया की रागिनी ने भी सोशल मीडिया के जरिए एक अपील की थी, जिसने भी सुना और देखा मासूम का दर्द दिलों को छू गया। उसके भावुक अपील सुनकर बलिया के डीएम मंगल प्रसाद सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए, पहले डॉक्टरों की टीम भेजी और फिर उससे मिलने खुद आए। साइकिल, खेलकूद की एक किट और मिठाइयां दी और हर संभव मदद और इलाज का भरोसा भी। जिस 400 मीटर लंबे रास्ते को रागिनी स्कूल जाने के लिए एक पैर से नापती है, वहां सड़क बनाने का भी भरोसा मिला, ताकि रागिनी अपने सपनों को नई उड़ान दे सके।
10: लोग उसी के गांव में, उसी के घर पे, उसके परिवार से मिलने आए हैं, बिटिया से भी मिले हैं। साइकिल तो एक औपचारिक है, ठीक है, साइकिल तो दिया ही हम लोगों ने, बट हम लोगों का प्रयास ये है कि बिटिया को और उसके परिवार को कोई परेशानी ना हो। जो जो भी हम लोग कर सकते हैं उसके लिए वो सब हर संभव प्रयास करेंगे। इस गांव में स्कूल तक और गांव तक आने का रास्ता बना हुआ है, बट थोड़ा मरम्मत की आवश्यकता, उसको भी हम कराएंगे। इनके यहाँ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम भी ठीक कराएंगे। अभी व्यक्तिगत शौचालय दिया गया है इनको, स्वीकृत हो चुका है वो, इनको पैसा भी मिल चुका है इनके खाते में, वो भी बनवाएंगे। बिटिया को मिल करके और बिटिया से मुलाकात बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। बिटिया टैलेंटेड है और इसको हम लोग एक पूरी किट दिए हैं, जिससे बिटिया खेल कूद सके, पढ़ाई कर सके। और बिटिया की इच्छा है कि वो पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बनना चाहती है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बिटिया का पैर भी जल्दी ठीक हो जाए। हम लोग प्रयास करेंगे, मेडिकल चेकअप भी हम कल करा रहे हैं, चूँकि पुराना केस है ये, 5-6 साल पुराना है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि बिटिया का अगर पैर ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, दोनों पैरों पर चल सकती है, तो यहाँ लखनऊ जहाँ भी ऑपरेशन हो सकता है हम लोग कराएंगे।
3: रागिनी से तो आप अब तक परिचित हो ही चुके होंगे। 7 साल के इस मासूम का परिवार यूपी के बलिया जिले के रानीपुर इलाके में रहता है। जब रागिनी महज 6 महीने की ही थी, तब एक हादसे में उसका एक पैर खराब हो गया। रागिनी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में उसके लिए कृत्रिम पैर का इंतजाम करना परिवार के लिए आसान नहीं था। लेकिन रागिनी ने हार नहीं मानी, पढ़ाई लिखाई के प्रति उसका लगाव बचपन से था, सो एक पैरों से ही स्कूल जाने की ठान ली।
11: दिक्कत यही होता है कि पढ़ने जाती है, एक पैर पे गिर जाती है, रोने लगती है, पैर में दर्द उठ जाता है।
12: पढ़ना चाहती है?
11: पढ़ना चाहती है, लड़का जाते हैं तो छपराती है, रोती है, हम लोग का करेजा फटता है।
12: क्या चाहिए आपको?
11: हमको सरकार अनुदान इसको सुविधा कुछ देती तो यही हम चाहते हैं।
3: रागिनी के पास एक पैर नहीं है, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं, हौसले बुलंद है। और अब जब सोशल मीडिया के इस दौर में उसकी आवाज प्रशासन तक पहुंच गई है, तो उसकी उम्मीदों को अब नए पंख भी मिल गए हैं। बलिया से अनिल कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और अब आपको दिखाते हैं देश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक की बर्थडे के जश्न की तस्वीरें। जी हाँ, कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने केक काटकर महक का जन्मदिन मनाया और उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की।

0: ये तस्वीर किसी जू में जीवन की जिंदा दिली की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। किसी बाघिन का 22 साल की उम्र को छू लेना आसान नहीं माना जाता, लेकिन 22 साल पूरे कर चुकी बाघिन महक ने ये कर दिखाया है। महक अब 23वें साल में पहुंच गई है और इसी बात ने इस बाघिन को खास बना दिया है। बाघिन महक के 23वें बर्थडे पर कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में जश्न मनाया गया।
1: May God bless you. Happy birthday.
0: दरअसल आमतौर पर चिड़ियाघरों में बाघ बाघिन की उम्र करीब 16 से 18 साल के आसपास मानी जाती है। वहीं जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में इनकी उम्र इससे भी कम हो सकती है। ऐसे में 22 साल की महक सामान्य जू लाइफ से करीब 4 साल आगे निकल चुकी है। यानी महक ने सिर्फ उम्र को ही मात नहीं दी बल्कि उम्र के रिकॉर्ड को भी चुनौती दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी महक एक्टिव है। पानी में अठखेलिया करना, एनक्लोजर की बाउंड्री के आसपास घूमना और पर्यटकों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना, महक आज भी ये सब करती है। हालांकि उम्र का असर दिखना शुरू हो चुका है। उठने में पहले के मुकाबले महक को थोड़ी सी परेशानी होती है, इसीलिए उसकी कैल्शियम डोज बढ़ाई गई है।
2: ये अभी 22 साल की हो चुकी है। 28 अगस्त 2004 में जन्मी थी। ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से उस समय इनका जन्म हुआ था और वहीं से जो 2012 में हमारे कोटा में जू में लाया गया था।
0: महक की उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसकी सेहत अच्छी है। उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक है, दांत और जबड़े मजबूत हैं और वजन भी लगभग सामान्य है। महक की लंबी उम्र के पीछे खानपान और मेडिकल केयर भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हर दिन उसे करीब 8 किलो चिकन और मांस दिया जाता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और आयरन टॉनिक भी, और उम्र को देखते हुए उसकी मेडिकल मॉनिटरिंग भी लगातार होती है। हर 3-4 दिन में उसकी मेडिकल जाँच की जाती है। महक की उम्र का राज सिर्फ उसकी देखभाल में नहीं, वन विभाग के मुताबिक जेनेटिक फैक्टर भी इसकी बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि अच्छी डाइट और मेडिकल केयर के बावजूद हर बाघिन 22 साल तक नहीं पहुंचती। महक का मामला इसलिए भी खास है क्योंकि उम्र बढ़ने के बावजूद उसकी सक्रियता और सेहत काफी हद तक बरकरार है। महक अब सिर्फ अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क की पहचान नहीं बल्कि लंबी उम्र तक जीवित रहने वाली बाघिन की एक मिसाल भी है। 22 साल पूरे, 23वें में कदम, उम्र बढ़ी है, रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन पानी में महक की अठखेलियां और एनक्लोजर में उसकी चाल आज भी बता रही है कि दहाड़ भले ही धीमी हुई हो, महक की कहानी अभी बाकी है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।